0: तभी लोगों में, खासकर यंग जनरेशन या बच्चों में तभी आएगा अगर वो स्कूल कॉलेज इन जगहों से, ये तमाम जगहों से जब लगातार ये एक एक हैबिट बनाया जाए, एक आदत बनाया जाए, लोगों के बच्चों के करिकुलम में इसे ऐड किया जाए, मैंडेटरी बनाया जाए, तब जाकर इसका असर आने वाले समय में 10-15 साल बाद आगे की पीढ़ियों में भी ये देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो योग दिवस का जो कार्यक्रम इस बार मनाया जा रहा है पहली बार पश्चिम बंगाल में, वो इतने बड़े पैमाने पे ये कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। सभी को इंतजार उस वक्त का है कि प्रधानमंत्री स्टेज में कब पहुंचेंगे। औपचारिक तौर पर 6:25 का वक्त है, ये बताया जा रहा है कि 6:15 तक वो पहुंच सकते हैं और उसके बाद औपचारिक तौर पर जो कार्यक्रम है वो शुरुआत होगी और तकरीबन 7:30 का वक्त है तब तक ये कार्यक्रम रेड रोड पे चलेगा, जहां हजारों की तादाद में आम नागरिक मौजूद है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये पूरा जो कार्यक्रम है ये किया जाएगा। और सिर्फ ये बंगाल ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में आज योग को जिस तरीके से लोकप्रिय किया गया है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि योग बहुत पुरानी एक परंपरा जैसी है और लोगों में काफी ज्यादा इसके इसके बारे में जो कॉन्शियसनेस था, वो कॉन्शियसनेस बहुत हद तक बढ़ा है जब भारत ने यह पहल उठाया 12 साल पहले, और 12 साल देखते देखते
1: चलिए ठीक है, वापस आपके पास लौटेंगे। आप और तस्वीरें भी दिखाइएगा, एक बार फिर से विजयवाड़ा की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि विजयवाड़ा में भी एक भव्य आयोजन योग का चल रहा है। यहाँ पर हजारों से भी ज्यादा की संख्या में लोग मौजूद है और सभी योग कर रहे हैं, स्वामी जी को फॉलो कर रहे हैं, एक एक कर योग कर रहे हैं। स्वामी जी योग के फायदे भी लगातार गिनवा रहे हैं और साथ ही लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि अपने जीवन में योग को उतारे, क्योंकि इस बार का थीम है, जो थीम रखा गया है कि स्वस्थ अगर आपको रहना है बढ़ती उम्र में तो योग जरूर आपको करना पड़ेगा, वो भी स्वामी जी लगातार समझा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ योग गुरु स्वामी रामदेव की।
2: वाम अश्व संचालनासन, फिर पाद हस्तासनम, ऊर्ध्व हस्तासन, प्राणायामासन, प्राणायामासनम, ऊर्ध्वहस्तासनम, पादहस्तासनम, दक्षिणाश्व संचालनासनम, पर्वतासनम, साष्टांगासनम और पुनः पर्वता भुजंगासनम, पर्वतासनम, वामश्व संचालनासनम, पादहस्तासनम, ट्वेल्व पोस्चर्स। दिस इज कंप्लीट फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ फुल बॉडी एक्सरसाइज होगी। अब ताड़ासन करें, पूरा फुल स्ट्रेचिंग योग फॉर बॉडी, योग फॉर माइंड, योग फॉर सॉल, एंड दिस इज फ्री फॉर ऑल। ताड़ासन, श्वास भर के पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना। फास्ट इनहेल द ब्रेथ, देन रेज योर बॉडी अपर साइड, और अब नाउ वी विल प्रैक्टिस द पावर योगा। सबको पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो दिस इज फर्स्ट वन एंड टू, वन एंड टू। अब इसको वी कैन प्रैक्टिस दिस 5 or 10 times लाइक दिस। यू कैन स्ट्रेंथन योर बॉडी थ्रू योगा। सो दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज वेरी पावरफुल। कीप योर बोथ हैंड्स फ्रंट साइड एंड अब राइट साइड में ऐसे ये बैठना है और लेफ्ट साइड में ऐसे बैठना है, ये राइट एंड लेफ्ट साइड में ऐसे पूरी बॉडी को साधते, ये थोड़ा सा ताकत ज्यादा लगती है। अब पेट के बल लेटेंगे, पेट के बल ऐसे भुजंगासन। वी कैन डू भुजंगासन 5 or 10 times मिनिमम। आफ्टर प्रैक्टिस वी कैन डू दिस 50 to 100 टाइम्स लाइक दिस. फास्ट इनहेल द ब्रेथ, देन रेज योर बॉडी अपर साइड, देन एक्सहेल द ब्रेथ एंड कम बैक टू.
1: चलिए अब आपको एक बार फिर से कोलकाता लिए चलते हैं. इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे कोलकाता से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योग करने वाले हैं. इंद्रजीत, ये योग का जब कार्यक्रम शुरू होगा तो लगभग कितनी देर तक चलेगा, क्योंकि विजयवाड़ा में लगभग 2.5 घंटे तक योग चलने वाला है. 5 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी जो लगभग 7:30 बजे तक चलेगा, तो वहां पर कितने समय तक योग का पूरा कार्यक्रम चलने वाला है इंद्रजीत, और तस्वीरें भी दिखाइएगा.
3: पूजा, इस वक्त हम लोग कोलकाता के रेड रोड में हैं. 1 घंटे से करीबन थोड़ा सा ज्यादा वक्त यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद आज गुजारेंगे, और 12वीं जो योग दिवस का, इंटरनेशनल योग दिवस का कार्यक्रम है, जो मूल कार्यक्रम है, वो आज कोलकाता के रेड रोड में होगा. इसका यहाँ का नजारे थोड़ा दर्शकों को दिखा दे. हजारों की तादाद में लोग अभी से यहाँ पे अपने पोस्चर में बिल्कुल तैयार है, क्योंकि 6:25 वो समय है जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आके पहुंचेंगे, और उसके साथ साथ ये पूरा जो कार्यक्रम है उसका आगाज शुरू हो जाएगा. और ये पहली बार इस भव्य तरीके से योग दिवस का जो सेलिब्रेशन है वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में देखने को मिल रहा है. आपको पता होगा पिछले ही महीने जब नया सरकार बनाया पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सरकार, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम इस बार यहां पे करने की जो मांग उन्होंने रखी थी, और केंद्र सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है, आयुष मंत्रालय ने. और आपको यहां पे दिखा दें जिस तरह से लोगों का तादाद सुबह से पिछले 1 घंटे से लोग यहां पे वेट कर रहे हैं, अभी भी लोग अंदर आ रहे हैं. और देखिए इधर दूसरा साइड हम दिखा देते हैं रेड रोड का, जो मेन इलाका है जहां पे एक स्टेज बनाया गया है, सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम है, बहुत बड़ा एक गेट यहां पे आप देख सकते हैं, जहां पे पीएम मोदी की तस्वीर है, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का तस्वीर है, और उसके साथ साथ लोग या इस पूरे रेड रोड के जो हिस्सा है वो पूरे खचाखच भरा हुआ इस वक्त दिख रहा है. अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन कहां बैठेंगे, ज्यादा जो स्पेस है वो खाली दिखता नहीं है. और मैं एक बार कैमरा पर्सन शुभजीत को कहता हूं थोड़ा जूम करके दिखाएं, दूर में हमें दिख रहा है इस वक्त रेड रोड का जो उत्तरी हिस्सा है, वहां पे दूर तक हम लोगों को एक स्टेज दिख रही है, वहीं पे खुद प्रधानमंत्री आएंगे और उस स्टेज पर वो शामिल होंगे, और योग दिवस के इस ये जो कार्यक्रम है उसको शिरकत करेंगे. और हजारों की तादाद में एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश यहां पे चल रही है. पहली बार हम लोगों को कोलकाता के सड़कों में इस तरह का भव्य आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह और उमंग है. कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे. स्कूल से, कॉलेज से, भारी तादाद में क्लब से लोग आ रहे हैं, दूर दूर दराज इलाके से लोग आ रहे हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए. हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं. हम लोग कहाँ से आए हैं?
4: हम मिदनापुर से आए हैं, लेकिन हम लोगों को एंट्री नहीं मिल रहा है. हम लोगों को 7 दिन से.
3: कौन से मिदनापुर से? पूर्व या पश्चिम?
4: पूर्व. काथी.
3: शुभेंदु मुख्यमंत्री के सीएम के जिले से,
4: घर के पास में ही घर है. सीएम का होम टाउन है.
5: सीएम का होम टाउन के ही हम लोग हैं.
4: लेकिन हम लोग
3: योग करते हैं,
4: योग इंस्ट्रक्टर हैं हम. ठीक है. और हम लोग को 7 दिन से प्रैक्टिस करवाया गया. हम लोग कोलकाता आके प्रैक्टिस किए, सिलेक्शन हुआ. साई कॉम्प्लेक्स, जादवपुर यूनिवर्सिटी, सब में हुआ. 7 दिन से ऑनलाइन क्लासेस हुआ, और अभी एंट्री के लिए हम लोगों को
3: भीड़ तो काफी हुई है. आप लोगों का अभी तक
4: एंट्री नहीं मिल रहा है.
6: कल हम लोग पूरा मिनिस्टर लोगों को कराया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम से हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे. कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ही बात है, सबको योग करना, चाहे बाहर हो अंदर हो, कि मैं वहाँ भाग नहीं ले पाया अंदर.
3: ये बताइए, पहली बार इतना बड़ा जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे कोलकाता में, कैसा लग रहा है आप लोगों को?
7: वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा.
3: आप सब योग करते हैं अपने घर?
7: जो करते हैं, इंस्ट्रक्टर हूँ हम लोग, योगा इंस्ट्रक्टर है.
8: हम लोग करती है और लोगों को भी कराती हूँ.
3: तो ये बताइए कैसा लग रहा है आपको पहली बार प्रधानमंत्री
1: आएंगे? इंद्रजीत यहाँ पर भी एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं आपके पास लौटेंगे. इंद्रजीत कोलकाता का आप नजारा जरूर दिखाइएगा. अभी मेरे पीछे देखिए, योग गुरु स्वामी रामदेव अलग अलग आसन लोगों को करा रहे हैं, और लगातार लोग उनको फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, और साथ ही महिलाओं की भी तादाद आप यहाँ पर देख सकते हैं. भारी तादाद में यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, और वो भी लगातार योग कर रही हैं. देखिए योग दिवस का थीम इस बार जो रखा गया है उसका योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग रखी गई है और ये थीम इस बात पर केंद्रित है कि बढ़ती उम्र में भी व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्रिय मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से मजबूत रह सकता है। अब आप देखिए योग गुरु स्वामी रामदेव योग कर रहे हैं और अलग अलग आसन वो कर रहे हैं जिसको लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं। आपको इतिहास भी हमने बताया, योग का एक काफी लंबा इतिहास रहा है और कई देशों की इसमें भागीदारी भी रही है योग को यहां तक पहुंचाने में और इस बार 2026 का आप ये योग दिवस देख रहे हैं। विजयवाड़ा से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं जहां पर भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। ड्रोन यहां पर लगाए गए हैं, सीसीटीवी एलईडी यहां पर लगी हुई है, उसकी भी व्यवस्था की गई है और बहुत ही आराम से यहां पर लोगों के लिए मैट लगाए गए हैं और पानी की भी व्यवस्था है और लोग यहां पर योग कर रहे हैं, योग गुरु को फॉलो कर रहे हैं। ताड़ासन और न जाने कितने प्रकार के योगासन हैं जो योग गुरु ने अभी तक किए हैं और 100 से ज्यादा योगासन आज वो करेंगे भी ऐसा कहा जा रहा है। लगभग 7:30 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। एक बार फिर से आपको कोलकाता लिए चलते हैं, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, इस बार कोलकाता में क्योंकि पहली बार इतने भव्य तरीके से योग का आयोजन हो रहा है, वहां पर महिलाओं की भागीदारी आप कितनी देख पा रहे हैं?
3: बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है। मैं कैमरा पर्सन शुभजीत को कहूंगा दिखाने के लिए। भारी तादाद में महिला युवा आप देख सकते हैं, दूर में सब अपना हाथ हिला रहे हैं। महिला युवा एक बार सब दिखा दें कितने सारे महिलाएं यहाँ पे हैं सुबह सुबह। मुझे तो लगता है पिछले एक घंटे से ये लोग वेट कर रहे हैं, अभी 5:40 ही हुआ है, 6:25 को प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे। कुछ युवा यहाँ पे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं थोड़ा बता दीजिए।
9: हम पश्चिम बंगाल का कृष्णनगर से आए हैं।
3: कैसा महसूस कर रहे हैं आज रेड रोड पे ऐसा हो रहा है? आप घर में योगा प्रैक्टिस करते हैं?
9: हाँ, हम तो नेशनल चैंपियन है, नेशनल में गोल्ड मेडल भी है, तो आज बहुत अच्छा मौका मिला है इस जगह पे और बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, हमारा बंगाल को एक बहुत अच्छा मौका दिए है कि हम हमारा जो योग इसको और भी आगे ले जाए, पूरे विश्व में दिखाए।
3: तो आप कृष्णनगर से आ रहे हैं, नदिया जिले से, तो यहाँ पे आने की तैयारी कितने दिन से बन रही थी?
9: लगभग 7 दिन से, क्योंकि इंडियन योग फेडरेशन जो है वो हमारा ट्रायल कर रहा था योग इंस्ट्रक्टर के लिए, तो 7 दिन से लगभग हमारा प्रैक्टिस हो रहा था और आज हम लगभग 1 बजे में यहाँ पहुँचे।
3: आपको 1 बजे पहुँच गए?
9: हाँ,
3: हम से यहीं पे हैं,
9: हम तब से यहीं पे हैं, हम एक दिन में। लगभग
3: तो ये बताइए, 2015 में पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सेलिब्रेशन हुआ था भारत में और तब से अब तक इस पिछले 10 सालों में आपको लगता है कि लोगों में योग का प्रचार प्रसार बढ़ा है?
9: जरूर, बहुत ज्यादा बढ़ा है और हम देख रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी टीचर है, ये भी टीचर है, हम भी टीचर है, तो एक चीज देख रहे हैं ना, हम बहुत सारा बीमारी है वो योग के माध्यम से ठीक हो जा रहा है। और एक चीज जो पहले लोग ज्यादा से ज्यादा दवाई खाते थे वो अब सिर्फ योग और आयुर्वेद के माध्यम से पूरा ठीक हो रहे, ये हमारे लिए बहुत गर्व है और हमारा प्रसिद्ध प्रधानमंत्री।
3: कहीं योग एक मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। बाकी लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप सुबह यहाँ पे पहुंच गई है, कहाँ से आए हैं थोड़ा बताइए और कैसा लग रहा है?
10: जी, मैं न्यू अलीपुर कोलकाता से आई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि योग को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, मतलब बहुत खुशी की बात है कि हमारी संस्कृति है, शुरू से हम जुड़े हुए हैं।
3: आप योगा करते हैं घर में?
10: रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर, किसी भी दुनिया के पार्ट में हो, आज के दिन तो स्पेशली मतलब एफर्ट करते कि सबको लेके हम योगा करें।
3: बिल्कुल, आप बताइए आप कितने बजे से यहाँ पे आई हैं?
11: मैं 2:30 बजे से यहाँ पे आ गई इतना एक्साइटेड हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये योग जो है दुनिया भर में फैल गया है, इसका जो बेनिफिट्स है उसी लिए और अच्छा लगता है, क्योंकि निरोग रहने का ये ही एक तरीका है कि तुम बिना दवाई के बिना कुछ स्वस्थ।
3: लेकिन ये बताइए, कोलकाता का रेड रोड का ये जो नजारा है हर रोज तो देखने को नहीं मिलता है, इस तरह से इतने लोग एक साथ आके इकट्ठा होके योग करने वाले हैं, वो कैसा लग रहा है आप?
11: ये तो मतलब हाँ, मैं तो चौंक गई देख के मतलब इतने सारे लोग योग के लिए उत्साहित है, मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए इतना कॉन्शियस है।
3: आप जब कल प्रिपेयर कर रही थी रात को, तब ऐसा लग रहा था कि इतने सारे लोगों से मिल पाएंगे?
11: वैसे हमारा ट्रेनिंग भी हुआ है पहले से, प्रोटोकॉल जो यहाँ होने वाला है उसके लिए तो पता चल गया ग्रुप से कि कितने लोग आने वाले हैं, पर मतलब बहुत सारे कोई रात भर सोए नहीं।
12: कितने लोग आपकी टीम से आए?
11: मेरी टीम से तो 153 इतना आए हैं।
12: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन सकते हैं टीम लेकर लोग यहाँ पे आए हैं, बड़े बड़े टीम के साथ लोग आए हैं। ऐसे कुछ लोगों से कुछ देर पहले मैंने मिला जो जिनको अभी तक अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली है और वो कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक टीम है, इनसे पूछ लेते हैं आप लोग कहाँ से आए हैं।
13: गार्डन
12: रिच दिख रहा है। योग दिवस का पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कैसा लग रहा है?
13: ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतना सालों बाद, 15 साल के बाद ये जो नजारा, ये पहले होना चाहिए, ये बंगाल को पहले सुधरना चाहिए। ये वो आज जाके हमारे मोदी जी आए हैं तो ये नया जो परिवर्तन के साथ नया उज्जवल हुआ है कि आप जो देख रहे हैं यहाँ से।
12: योग करने आए हैं या मोदी जी को देखने आए
13: जी? अरे हम लोग दोनों ही करने आए हैं, हम लोग दो दो दो काम होगा। वो हम लोग को कुछ सिखाने भी आए हैं और हम लोग उनसे सीखते भी हैं। बिल्कुल, तो आज उनके साथ में हम लोग को योग करने का ये सौभाग्य मिला है कि उनके साथ में हम लोग रह के योग करेंगे।
12: पूरी साल योग होती है घर में?
14: थोड़ा बहुत तो कोशिश करते हैं, लेकिन आज तो मोदी जी के साथ एकदम जरूर करेंगे। देखते हैं मोदी जी जब शुरू करेंगे हम लोग सब कोशिश करेंगे।
12: बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं आज तक में हम लोग दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों का नजारा कोलकाता के रेड रोड में दिख रहा है। सुबह से भारी तादाद में लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 4 या 5 घंटे से लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। पूजा, मैं कोलकाता में इस तरह का नजारा मैंने खुद कभी नहीं देखा है और ये जो पहली बार इतनी बड़ी भव्य आयोजन किया जा रहा है उससे लोग काफी उत्साहित है, खुश है। आप बताइए आप कितने बजे से यहाँ पे आए?
1: बहुत बड़ा आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है इसलिए कभी भी ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला। इंद्रजीत, लोगों से तो बात करिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि इस बार के ये जो आयोजन हो रहा है वहाँ पर व्यवस्था लोगों के लिए कैसी की गई है? क्या पानी की व्यवस्था है क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है, और क्या वहाँ पर योगा ट्रेनर भी मौजूद है जो लोगों से थोड़ा थोड़ा योग करवाए?
2: ये है लोहड़ी दुनिया, लोहड़ी। अब थोड़ा सा अनुलोम विलोम करने, वहां भी एक्टिव है अनुलोम विलोम, युद्ध अनुलोम विलोम कर रहे
1: हैं। इंद्रजीत, आपको आवाज आ रही है?
2: ये बहुत ही जबरदस्त है।
12: अगर आप फिर से दोहराए,
2: एक सॉन्ग है
1: जी। इंद्रजीत, देखिए क्योंकि लोगों से आपने बात की और लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं आज योग करने के लिए, कुछ योग करने के लिए, कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भी। ऐसे में उन लोगों के लिए जो वहां पर योग अभ्यास करेंगे उनके लिए व्यवस्था कैसी की गई है? क्या पानी की व्यवस्था है वहां पर, कुछ खाने पीने की व्यवस्था है? और ये भी बताइएगा साथ ही कि योग करते समय क्या वहां पर कुछ प्रोफेशनल ट्रेनर मौजूद रहेंगे योग के लिए जो लोगों से थोड़ा थोड़ा योग करवाएं?
12: बिल्कुल, जो इंतजाम है वो काफी इलैबोरेट इंतजाम किया गया है, जैसा मैंने दिखाया सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनर्स भी हैं जो ये जो योगाभ्यास है या जो ये जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। मैम आप कहाँ से आई हैं?
15: मैं यही कोलकाता बेलेघाटा से।
12: अच्छा, तो आप ट्रेनर हैं या प्रैक्टिस?
15: नहीं, मैं जिम भी करती हूँ। प्लीज थोड़ा बना दी, मैं जिम भी करती हूँ और योगा भी करती हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बर्दवान में रहती थी, तो अभी कोलकाता 2 साल से हूँ तो यहाँ मुझे मिला है।
12: जो अरेंजमेंट है इस कार्यक्रम का, इतने बड़े स्केल पे पहली बार हो रहा है, कैसा लग रहा है? अरेंजमेंट अच्छा है,
15: मतलब बियॉन्ड ऑफ माई एक्सपेक्टेशन, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे आके लगा कि सच में मैंने कुछ अच्छा किया है कि मुझे देखने को मिल रहा है कोलकाता में ऐसा नजारा, और मोदी जी ने जो अरेंजमेंट कर रखा है इतना।
1: विजयवाड़ा में काफी भव्य तरीके से अब आयोजन हो रहा है। एक बार मैं फिर से तस्वीरें दिखा देती हूँ, योग गुरु स्वामी रामदेव काफी उत्साह के साथ लोगों से यहाँ योग करवा रहे हैं और देखिए तालियों की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है।
2: मलखम्बा योगा, रोप योगा एंड मलखम्बा योगा, एडवांस योगा। तो ये योग फॉर स्पाइनल कॉर्ड, भुजंगासन, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, और बहुत ही पावरफुल योग चल रहा है। ऐसे अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। योग फॉर यूथ, योग फॉर स्टूडेंट्स, योग फॉर चिल्ड्रन, ये बहुत जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, क्राइसिस एंड चैलेंजेस इन देयर लाइफ। और ये है योग का पूरा परचम, ऐसे सहजता के साथ भुजंगासन और उसके बाद सलभासन, ये सलभासन स्पाइनल कॉर्ड, एंड जो कर तो सलभासन के बाद धनुरासन, ये योग फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड योग फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस वी आर प्रैक्टिसिंग हियर। अब बैठ जाइए, बैठ करके नीज के ऊपर बैठ जाते हैं और अभी कर रहे हैं उष्ट्रासन कैमल पोज, और इधर बच्चे तो वृश्चिकासन कर रहे हैं और पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे बच्चे मेरे साथ। चलो बेटियों आप भी करो, राइट साइड में मंच के ऊपर पूर्ण उष्ट्रासन, मेरे सामने भी पूर्ण उष्ट्रासन, यू प्रैक्टिस नॉर्मल कैमल पोज
16: योगा।

अभी देखो अब आंध्रा में है और एडवांस योग का एक ही सेशन हुआ है अभी विद इन 5 to 7 years और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू गारू जी आने वाले हैं। उससे पहले जरा आपको मेडिटेशन करा देते। चलो बच्चों एक बार रिलैक्स बैठ जाओ सर। एक बार सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। और नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग द मेडिटेशन। और पहले अंगुली बात एक बार से मुझे आंखों पर कान अंगूठे से बंद एक क्षण का ध्यान एक मिनट का ध्यान आपको बहुत एनर्जी देता है। 86 ब्रेन की न्यूरॉन्स से 100 बिलियन से ज्यादा पॉजिटिव सेंस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लिकेशन सिग्नलिंग निकलती है डिवाइन सिग्नलिंग जो रोम रोम को तीव्रता से भर देती है। लंबा गहरा श्वास

0: योग का आयोजन हो रहा है और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुंच जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू जी भी यहाँ पर आएंगे और वो भी थोड़ा सा योग सभी के सामने करने वाले हैं। हजारों की तादाद में लोग तो यहाँ पर योग कर रहे हैं। एक बार फिर से इंद्रजीत कुंडू के पास आपको लिए चलते हैं। इंद्रजीत, अब कितना समय और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुँचने में और लोग कितने कैसे इंतजार कर रहे हैं उनके पहुँचने का योग करने के लिए?
1: देखिए पूजा, और महज 30 मिनट का वेट यहां पे लोगों को करना पड़ेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री खुद यहां पे पहुंच जाएंगे। और खचाखच भरा हुआ है, जैसे मैं कुछ देर से आपको दिखा रहा हूं, ये सीधे तस्वीरें आज तक कोलकाता के रेड रोड से बिल्कुल जगह नहीं है और अभी भी लोगों की जो तादाद है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी भी लोग आ रहे हैं, बच्चे युवा वो यहाँ पे आ रहे हैं इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश भी है। यहाँ कुछ युवा जिनसे मेरी बात हो रही थी उनको मैं कहूंगा थोड़ा सा योगासन दिखा के जो वो यहाँ पे आए हैं, और उनके साथ साथ जी योगा का जो शिविर है आज होने वाला है उसमें आप देख सकते हैं कैसे वो लोग योग प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। और 30 मिनट की वेट है, लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग 4 घंटे पहले, कुछ लोग 2 घंटे पहले कोलकाता के रेड रोड में इस तरह से मौजूद हैं। और ये जो कार्यक्रम है 12वीं योग दिवस का ये भव्य कार्यक्रम कुछ देरों में, कुछ ही क्षणों में के शुरू हो जाएगी और उसके बाद ऑफिशियली इसका शुरुआत हो जाएगा। पहली बार, पहला दफा है जब पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में ये योग दिवस का जो मेन प्रोग्राम है भारत सरकार का, केंद्रीय आयुष मंत्रालय का, वो इस बार हो रहा है। और राज्य में जो राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला था सरकार नई सरकार बनने के बाद बीजेपी का, ये पहली दफा है कि इस तरह से ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। और लोगों में काफी उत्साह उमंग इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री भी आज यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो युवा कृष्णनगर नदिया जिले से है तो वो कह रहे थे कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग करीब 1-1.5 बजे वो लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो कोलकाता का रेड रोड है, जो मेन स्थल है जहां पे ये प्रोग्राम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं महिलाओं की भागीदारी भी काफी बढ़ चढ़ के महिलाएं भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और उसके साथ साथ बुजुर्ग भी है। इस साल का थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, कैसे आप योग को इस्तेमाल करते हुए जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिले कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं स्पेशली बुढ़ापे में, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार
0: बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए योग किया जा रहा है। इंद्रजीत, ये भी बताइएगा महिलाओं बुजुर्गों के अलावा क्या छोटे छोटे बच्चे वहां पर योग करने के लिए पहुंचे हुए, युवा की भागीदारी आप इस बार कितनी देख पा रहे हैं, वो कितना ज्यादा एक्साइटेड है योग करने के लिए?
1: बिल्कुल पूजा, ये हमारे सामने इस वक्त जो तस्वीरें हैं, जो युवा दल है वो योग का प्रयोग करके दिखा रहे हैं और ये सब कृष्णनगर नदिया से आए हैं। भारी तादाद में युवा कॉलेजेस से, स्कूल से, क्लब से यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। अभी भी जैसा कि मैंने कहा कि करीबन आधा घंटा अभी भी इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का, लेकिन उससे पहले किस तरीके से आप देख सकते हैं योग अभ्यास शुरू हो चुका है। पूरा जो वेन्यू है वो खचाखच भर चुका है और मैं देख रहा हूं कैमरा पर्सन शुभजीत को कहूंगा एक और टीम पार्टिसिपेट करने के लिए। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में युवा वो आ रहे हैं। ये दरअसल कोलकाता का रेड रोड है, इसके बगल में जो जगह है वो है ईस्टर्न कमांड आर्मी का फोर्ट विलियम, और ईस्टर्न कमांड से ये जो युवा आते हैं तो मुझे लग रहा है कि आर्मी के परिवार के जो साथी है, मैं शुभजीत को फिर से कहूंगा दिखाने के लिए, वो इधर पहुंच रहे हैं। आर्मी के परिवार के जो सदस्य हैं वो भी आ चुके हैं।
2: ये विजन है हमारे चंद्र, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों साथ साथ आगे बढ़े, ये विजन है।
0: तस्वीरें आप देखिए, योग गुरु स्वामी रामदेव यहाँ पर योग कर रहे हैं और लगातार लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और एक भव्य आयोजन जो हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में वहाँ पर योग की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में है और वो थोड़ी देर बाद योग करेंगे, उसकी तस्वीरें इंद्रजीत हमें लगातार दिखाएंगे। और देखिये भारी तादाद में क्योंकि वहां पर महिलाएं पहुंची हुई है, युवा है और बुजुर्ग पहुंचे हुए, तो यहाँ पर भी ऐसा ही नजारा है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और साथ ही यहाँ पे नृत्य कला का भी प्रदर्शन किया जाएगा। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, योग के बारे में उस कला के जरिए समझाया जाएगा और यहाँ पे नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योगासन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस बार का थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। हुगली में पश्चिम बंग दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। 5,000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा। लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरे से नजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा। चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाएं का कोई रिकॉर्ड नहीं। लगातार 7 दिन से जांच पूछताछ। और अमेरिका ईरान डील पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हुए उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। जिनीवा पहुंच चुकी ईरान की टीम। परमाणु कार्यक्रम से लेकर लेबनान संकट पर होगी बैठक।

0: नमस्कार, आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस के मौके पर देश भर में कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, हमारे स्टूडियो में भी है। इस बार योग दिवस का थीम जो है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग। इस थीम का उद्देश्य ये बताना है कि योग सिर्फ फिटनेस का जरिया नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर, मन और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का एक तरीका है। और स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि ये दोनों योग गुरु हैं। मेरे साथ अक्षय राठी हैं, साथ में मानसी गुलाटी मेरे साथ बैठे हैं, और ये हमें बताएंगे कि किस तरीके से इस बार का जो थीम है उसे वाकई में आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, उसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि उम्र सबकी बढ़ती है और उसके साथ शरीर में परेशानियां आती हैं, लेकिन कैसे उन्हें योग के मदद से सेहत को अपनी सटीक रखना, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ये भी बता दें कि आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो देश भर में हो रहे हैं। सबसे अहम कार्यक्रम कोलकाता के रेड रोड में है, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचने वाले हैं। उनके साथ वहां हजारों लोग योग में शामिल होंगे, और आज वो इस कार्यक्रम के बाद एक अहम नौसेना का कार्यक्रम में भी जाएंगे, वहां पे भी शिरकत करेंगे, जहां वो 3 नौसेना के शिप्स को लॉन्च करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा कार्यक्रम जो हो रहा है वो विजयवाड़ा में भी हो रहा है, जहां योग गुरु रामदेव पहुंचे हैं और वहां वो लोगों को योग के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का मंत्र दे रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद गेस्ट के साथ, और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस साल के थीम को आप अपने जीवन का मंत्र बना सकते हैं। तो अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, योग कई लोग मानते हैं कि इतना कठिन है कि इसके लिए तो स्वस्थ ही होना पड़ता है, लेकिन उम्र जब बढ़ती है तो घुटने नहीं चलते हैं, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, तो योग क्या वाकई में आयु के साथ जैसे जैसे बढ़ती है उसके साथ उसके साथ कदम मिला के चल सकता है?
1: देखिए, योग की एक खास बात है, ये बच्चे से लेके और 90 साल के जो वृद्ध लोग होते हैं वो भी इसे अच्छे से कर पाते हैं। ऐसा नहीं है, उम्र के साथ में जब आपकी उम्र बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं कर पाएंगे। आसन जो है वो बहुत ही सरल और बहुत ही, मतलब इस हिसाब से इसमें लिखे गए हैं या बताए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कि हर इंसान अपने जीवन में स्वस्थ रहे। तो मेरा कहने का अर्थ तात्पर्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन आसनों का अभ्यास करें, आगे बढ़े और अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहने का एक निश्चय ले योगा के द्वारा।
0: बिल्कुल, और योग एक प्रण है जिसे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। मानसी, खास तौर पर महिलाओं के लिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मुश्किलें भी बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स बदलते हैं, क्या योग उसमें भी मदद कर पाता है या लोगों को वही HRT की गोलियां, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ही करनी पड़ती है?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, योग सिर्फ आसन नहीं है, योग सिर्फ मंत्र को जपना नहीं है, ये साधना है, कॉन्सेंट्रेशन है। जीवन में कोई भी कर्म करो, पूरा करो, वही योग है। देखिए, अगर आप योगासन करोगे, सूर्य नमस्कार करोगे, वैसे तो सीधे बैठ गए, यही योग है, आप लोग निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और योग हमें डिसिप्लिन सिखाता है, सही सोना, उठना, खाना, ये सब चीजें आपको योग सिखाता है।
0: तो मानसी, शुरुआत ही कर लेते हैं क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं
1: जी।
0: आप से मैं जानना चाहूंगी, आप दोनों से पहले शुरुआत मानसी जी से कर लेते हैं। मानसी जी, कोई 3 आसन आप अगर थोड़ा झटपट हमें दिखा सकें जो हर कोई अपनी जिंदगी में नित, जिसे कहते हैं नित क्रिया का हिस्सा बना सकता है, दिनचर्या का हिस्सा बना सकता है।
2: बिल्कुल, तो मैं, बिकॉज आपने आज का जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, सबसे पहले मैं एक फेस योगा का अभ्यास कराना चाहूंगी। इसमें आप अपने चेहरे की मसल को स्क्वीज करोगे, एंड अगर आप इस आसन को करोगे आपको कभी भी कॉस्मेटिक की, कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए करते हैं, स्क्वीज योर फेस टाइटली, होल्ड इट एंड रिलीज। अमेजिंग, अ वेरी जेंटल टैपिंग ऑन योर फेस। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। चलिए मैं आपको दूसरा आसन बताऊंगी। महिलाओं की बात कर रहे थे तो मैं सोचा अपनी महिलाओं को ही कराया जाए। हम बैठेंगे वज्रासन में, वज्रासन में बैठ जाइए। मैं आपको आज एक ऐसी क्रिया बताती हूँ जिसको खाना खाने के 10 मिनट के पहले आपको करना है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिया आपके वेट के लिए, ओबिसिटी के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने की और हॉर्मोन्स की समस्या को जड़ से दूर करने के लिए। इंटरलॉक करिए अपने हाथ को, मेकअप फेस, कीप इट क्लोज टू योर नेवल, गहरी सांसें लीजिए, सांस छोड़िए, टेक अ डीप इनहेल, एक्सहेल, वन मोर टाइम डीप इनहेल, एक्सहेल, धीरे से अपनी बॉडी को बेंड करिए, फोर्सफुल एक्सहेल थ्रू योर माउथ, हेड डाउन, कम अप, इंटरलॉक, स्ट्रेच योर बॉडी नाइसली एंड रिलीज। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिया, इसको महाक्रिया बोलते हैं, खाना खाने के 10 मिनट के पहले। अब हम करेंगे बालासन। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए सबसे अच्छा आसन है ये, थोड़ा सा नी अपार्ट, धीरे से अपनी बॉडी को बेंड करो, धीरे से, एंड स्ट्रेटन योर हैंड, फील द सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, फील द पॉजिटिविटी, फील द हैप्पीनेस, एंड धीरे धीरे कम बैक, वेरी गुड। सो ये तीन आसन का अभ्यास आप कर सकते हो, साथ में मैं ओम चैंट जरूर कराऊंगी, क्योंकि हम अपने सेशन की शुरुआत हमेशा ओम के उच्चारण के साथ में करते हैं। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ओम का उच्चारण करेंगे, टेक अ डीप इनहेल,

0: Very gently rub your palm. Keep it on your eyes, keep it on your face and release. Om ka ucharan zarur kariye.
1: Bilkul. Aur urja bilkul mehsoos ho rahi hai hum is om ucharan ke saath. हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्र जुड़ गए हैं जो कि दिल्ली से हैं और कोलकाता से तापस है. लेकिन शुरुआत पहले आशुतोष से करते हैं जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद है. आशुतोष, वहां पर भी बहुत सारे लोग जुटे हैं और आसन करने की तैयारी होगी. चलिए जरा बताइए क्या चल रहा है वहां पर.
2: जो दिवस है उसकी भव्यता वो भारत ने ये लेगेसी पूरी दुनिया को दी है. तो इतने सालों से जब हम लगातार ये एक तरह का ये पर्व हो जाता है और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आपको सियाचिन में हमारे जवान करते हुए दिखेंगे तो यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और हम जहाँ पर हैं दरअसल केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडावे और उनके साथ अभिनेता अक्षय कुमार भी यहाँ आने वाले हैं. और उत्साह योग का था कि इतने बड़े पैमाने पर अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको ये भव्यता दिखाई देती है. 100, 150, 200 संख्या और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ आपको ये भव्यता दिखाई देती है. क्योंकि योग जो थीम है इस बार का कि आप कैसे हेल्दी एजिंग के लिए, बढ़ती उम्र को लेकर के हम सब चिंतित होते हैं, हजारों रुपए इन्वेस्ट करते हैं दवाइयों के लिए, वेलनेस की दवाइयां खाते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं, लेकिन एक सबसे अहम पड़ाव होता है वो है खुद को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना, योग करना. अब सोचिए कि 40-41 की उम्र में एक या डेढ़ साल से अंजलि मैंने योग सीखना शुरू किया, हमारे जो टीचर हैं और जो सिखाते हैं, और मुझे ये अंदाजा नहीं था कि व्यायाम में 2 घंटे में अगर आप 200-300 कैलोरी बर्न करते हैं. एक समय मैंने देखा है कि उस एक घंटे के योग में इतनी जो क्रिटिकल मुद्राएं होती हैं, जो विशेष मुद्राएं होती हैं, ये उन मुद्राओं में भी जाकर के सिर्फ एक घंटे में 500-600 कैलोरी हम बर्न कर सकते हैं. तो कई बार एक मिथ जो होती है कि अगर आप जिम जा रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तभी बहुत सारी चीजें संभव हो सकती हैं. मतलब आप सोचिए कि सांस लेने से लेकर के अभी आप जो हमारी योगा टीचर है वो बता रही थी वहां पर कि आप देखिए चेहरे के लिए भी, वेलनेस के लिए आप कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन योग में मंडूकासन ऐसे तमाम सारे कई आसन है जिसमें आप अपने बालों को, अपने चेहरे को, अपने पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं. लेकिन एक बार जरा तस्वीरें दिखाते हैं आपको त्यागराज स्टेडियम में. छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई इसका हिस्सा है. क्योंकि ज्यादातर धीरे धीरे हमने देखिए पैंडेमिक के बाद एक और चीज देखी कि हमारा सबसे बड़ा जो निवेश है वो है स्वास्थ्य. और स्वास्थ्य के लिए जितनी संभावनाएं हो सकती हैं और वो हो सकता है कि आप योग में खुद को ध्यान दें. और इसीलिए चाहे अलग अलग जिसके पास मान लीजिए बहुत सारी चीजें नहीं आती है, बहुत मुश्किल आसन नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम आप शुरुआत जरूर कर सकते हैं. बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, आयुर्वेद में हमेशा कहते थे कि खाने के पास आप वज्रासन की मुद्रा में बैठे, और ऐसे कई सारी मुद्राएं जो घर में अक्सर इसकी चर्चा होती है. लेकिन धीरे धीरे जब हम एक स्वस्थ भारत की ओर, अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देते हैं तो कई सारी चीजें होती है कि हम सीखते हैं अपने शरीर पर ध्यान दें, अलग अलग मुद्राओं पर ध्यान दें. तो आप लोग जब वहां पर दरअसल हमारे दर्शकों को मुद्राएं दिखा रही थी तो मैं भी ये कोशिश कर रहा था कि अलग अलग मुद्राएं यहाँ पर हम, चाहे भुजंगासन हो, अपने स्पाइन को सीधा रखने के लिए. आप कई सारे ऐसे लोग हैं मेरी तरह जिनके पास L1-L5 की इंजुरी है, वैसे में फॉरवर्ड बेंडिंग अगर करें तो कितनी सावधानी से करें, चक्रासन करें तो कितने मुश्किल से करें. तो उन तौर तरीकों को धीरे धीरे समय के साथ सीखते हुए, जानते हुए, विशेषज्ञों की नजर में जब आप करते हैं तो यकीन मानिए जितना मजा जिम जाने में, हैवी डंबल्स उठाने में या वर्कआउट करने में, रनिंग में, कार्डियो में आता है, योग में उससे कम मजा नहीं है. मतलब आपको अपने ऑब्लिक्स तोड़ने हो, एप्स ठीक करने हो, ये तो नहीं कहूंगा सिक्स पैक आप बन सकते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं देखिए हमारा पेट बड़ा, हमने बहुत ज्यादा खा लिया. योग ने हर चीज का समाधान दिया है अंजलि.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और शायद मेरे लिए निजी तौर पर सूर्य नमस्कार से ज्यादा अहम और कोई योगासन नहीं रहा है जो जिसने बहुत बदलाव लाया मेरी जिंदगी में भी. लेकिन अब रुक करते हैं कोलकाता का, जहां तापसेन गुप्ता हैं. तापस, हम यहां पर अपना सूर्य नमस्कार शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपना नमस्कार जो ऑडियंस के लिए उसकी शुरुआत कीजिए और बताइए क्या तैयारियां हैं वहां पर.
3: जी अंजलि, आपको नमस्कार और सारे दर्शकों को भी. आज कोलकाता में एक अलग चित्र देखने को मिल रहा है. सुबह 4:30 बजे से हम फील्ड पर हैं और लगातार कतारों में लोग दिख रहे थे. और आप देख सकते हैं मेरे आसपास अभी भी कॉलेज के कुछ बच्चे यहां पर मौजूद हैं जो यहां पर योग में जो शिविर है उसमें शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक उन्हें एंट्री नहीं मिली. जो हमें बताया जा रहा है कि जो रेड रोड है, हम जहां पे खड़े यहां से तक कुल मिलाकर 50 मीटर के आसपास की दूरी में है. प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे तकरीबन 15 मिनट के समय बाकी अभी तक, लेकिन ये जो रेड रोड का इलाका है पूरी तरीके से खचाखच भर चुका है. हम इन बच्चों से बात करते हैं कि आप कहां से आ रहे हैं और यहां पर आप लोग एंट्री आपको क्यों नहीं मिला.
4: हमें अभी मतलब जाना है, हम लोग की एंट्री हो चुकी है, अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं कुछ देर में, बट हम लोग का एरिया दूसरी तरफ से और लोग भी आ रहे हैं तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा भी यहाँ पे वेट करें। हम लोग आनंदपुर रूबी एरिया से आ रहे हैं।
3: ओके। और कभी इतना सुबह उठ के कभी एक साथ दोस्तों के साथ कहीं और कार्यक्रम में शामिल हो पाया?
5: 19 तारीख को ही हुए थे, अभी एक और योगा का प्रोग्राम था, मैराथन था 19 तारीख को, उसमें गए थे ऐसे ही सुबह 4 बजे उठ के।
3: योगा कितना महत्वपूर्ण लगता है?
6: योगा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है और हमारी मोबिलिटी, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, एवरीथिंग, इट्स गुड फॉर अस।
3: तो आप लोग सारे विद्यार्थी हैं अगर मैं गलत ना हो तो आप लोग सारे विद्यार्थी हैं, तो ये बताएं कि इस बार जिस पैमाने पे योगा को सेलिब्रेट किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, हमने पहले कभी नहीं देखा था, कितना जरूरी है आप की पीढ़ी के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए जागरूकता के तौर पे कितना महत्वपूर्ण लगता है?
7: जिस हिसाब से पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, इसलिए बहुत जरूरी है योगा करना। योगा करने से पूरा बॉडी आपका फिट रहता है।
3: जिम या योगा क्या लगता है?
7: योगा करते हैं। योगा
3: तो आप समझ सकते हैं अंजलि, यहाँ योगा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए हजारों की तादाद में लोग आए हैं। मैं आपको एक बार चित्र दिखाता हूँ, यहाँ ये जो बैरिकेडिंग है ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी बैरिकेडिंग है प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम के लिए, और यहाँ लगातार जो एंट्री है अब धीरे धीरे चारों ओर से बैन कर दिया गया है क्योंकि 5 बजे का एक कट ऑफ टाइम था, उस टाइम के बाद किसी को एंटर करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो हमें खबरें मिल रही है कि रेड रोड जो है वो पूरी तरीके से भर चुकी है। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, एक सेल्फी स्टैंड भी बनाया गया है, योगा थ्रू द एजेस, यहां एक सेल्फी स्टैंड बनाया गया है, यहां पर लोग आ रहे हैं और अपनी सेल्फी ले रहे हैं। तो एक काफी ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार के तौर पर जो भी मुहिम लिया जा सकता था वो हर एक कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल में इस पैमाने पे पहले कभी भी योगा शिविर इस तरीके से पालन नहीं किया गया था, आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद इस बार जो 12 साल पूरा हुआ है और इस 12th योगा डे को काफी बड़े पैमाने पे इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। अमूमन ये रेड रोड का जो इलाका है ये 26 जनवरी में काफी लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता है, लेकिन सुबह 4-4:30 बजे से जिलों से लोगों का आना, कोलकाता के दूर दराज के इलाकों से आना, 20-30 किलोमीटर तय करके लोगों को यहां तक पहुंचना, आपको पता है इतना सुबह ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बावजूद इसके काफी तादाद में, हजारों के तादाद में लोग आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि बच्चे अभी दिख रहे हैं कि वो कतारों में भागते हुए आ रहे हैं क्योंकि ये जो कट ऑफ टाइम है वो कहीं ना कहीं पार हो चुका है, तो इसलिए बच्चे भी यहां पर जल्द से जल्द अंदर पहुंचने की कोशिश में है। और यहाँ प्रधानमंत्री कुछ ही देर में आ पहुंचेंगे, 6:25 का टाइम है उनका, 6:25 को वो पहुंचेंगे मंच पे। शुभेंदु अधिकारी राज्य के मुख्यमंत्री वो खुद पहुंच चुके हैं, ठीक 6 बजे वो पहुंच चुके हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे औपचारिक तौर पर योगा का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा, लेकिन तमाम लोगों का ये कहना है कि ये जो पहल सरकार की तरफ से उठाया गया है खासकर आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही बड़ी जो कदम है उठाया गया और काफी अच्छा माना जा रहा है लोगों के लिए।
1: जी बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को अब एक नई पहचान मिली है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
9: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
10: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योगासन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस बार का थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। हुगली में पश्चिम बंग दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने टीएमसी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। 5,000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा। लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरे से नजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा। चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। लगातार 7 दिन से जांच पूछताछ। और अमेरिका ईरान डील पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हुए उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। पहुंच चुकी है ईरान की टीम। परमाणु कार्यक्रम से लेकर लेबनान संकट पर होगी बैठक।

0: 50 साल।
1: और ये तस्वीरें हम आपके लिए सीधा लेकर आ रहे हैं कोलकाता से, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भी जल्दी वहां पहुंचने की उम्मीद है। ये सभी लोग वहां योगासन करने के लिए पहुंचे हैं, सब एक साथ मिलकर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करेंगे। ये सब लोग जो हैं वो योग का नित्य व्यायाम करते आए हैं और आज योग दिवस के मौके पर वो इस भव्य कार्यक्रम में भी पहुंचे हैं। योग जो माना जाता है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक तरीका है। और ये तस्वीरें इस वक्त सीधी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रेड रोड से, जहां पर लोगों ने तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी के आने का बस इंतजार है। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, कई दूसरे देशों में भी योग दिवस का आयोजन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए सीधा रुख करते हैं वहीं का।
2: दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ, उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति। प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। पहली बार देश के अंदर भारत की परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्होंने आयुष मंत्रालय के रूप में मान्यता दी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष मंत्री यहां पर स्वयं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे, जिनका उद्बोधन अभी आपने कुछ देर पहले सुनने को आपको प्राप्त हुआ था। याद रखना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, ये हम बचपन में सुनते रहे। और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी, और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी, उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। यानी प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सके, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। 21 जून की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप याद रखिए, हमारी ऋषि परंपरा ने जो कुछ भी का किया है, कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता वो किस बात के लिए, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम ग्लोबल
1: मूवमेंट एम्ब्रेस्ड बाय ह्यूमैनिटी। तस्वीरें इस वक्त सीधी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कोलकाता से। रेड रोड में आयोजित किया गया है ये पूरा कार्यक्रम, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। अहम दिन है क्योंकि जब से इलेक्शंस हुए, चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की और नई सरकार बनने के बाद, ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं इस दौरे के लिए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बन रहे हैं। इस मौके पर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी वहां पर मौजूद हैं लोग जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही में वो तस्वीरें सीधी इस वक्त कोलकाता से, योग का ये जो कार्यक्रम है, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है आज का, जिसमें वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर भी जाएंगे और वहां युद्ध पोतों का भी लॉन्च करेंगे। तो ये अहम दिन आज, प्रधानमंत्री का दौरा बंगाल का, कल बंग दिवस, पश्चिम बंग दिवस के मौके पर हमने वहां देखा था कि किस तरीके से गृहमंत्री भी पहुंचे थे। और ये मौका रहा था प्रधानमंत्री के लिए भी, इस बार मौका रहेगा कि वो अपनी नई सरकार के साथ, लोगों के साथ रूबरू हों। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता, जो कि लगातार मौजूद है रेड रोड पर। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तापस, प्रोग्राम वहां शुरू हो चुका है, कड़ी सुरक्षा भी है, लोगों में उत्साह भी है, बताएं क्या चल रहा है वहां पर।
0: जी देखिए, यहाँ काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रहा है। जहां हम खड़े हैं ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी एरिया है और प्रधानमंत्री पहुंचे हैं 50 मीटर दूर। अभी 6:25 का टाइम था, वो 6:25 पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री और तमाम बड़े जो मंत्री हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो सारे यहां पर पहुंच चुके हैं। लोग अभी भी सड़कों पर हैं और वो पहुंचने की कोशिश में है। हालांकि अभी जो एंट्री है वो एंट्री बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई सैकड़ों लोग अभी सड़कों पर है, कभी एक गेट कभी दूसरे गेट पर जाने की पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें अंदर जाने का एक मौका मिल जाए। लेकिन जो खबरें मिल रही है कि रेड रोड अभी पूरी तरीके से भर चुका है और यहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से अभी एंट्री नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सुबह 4 बजे से हम फील्ड में थे, 4:30 बजे से जिस तरीके से कतारों में लोग कोलकाता और जिलों के अलग अलग जगहों से पहुंच रहे थे, वो ऐसा मंसर पश्चिम बंगाल में या खासकर कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी में पहले देखने को नहीं मिला था। यहां हम क्या किसी से बात करेंगे। आप कहां से आ रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं आप?
3: सर, मैं कलकत्ता बड़ा बाजार के अंदर रहता हूं, बिजनेसमैन हूं, समाज सेवी भामाशाह हूं, मैं राष्ट्रहित के लिए काम करता हूं देश में।
0: तो आज योगा में एंट्री मिला आपको रेड रोड में? अभी तक
3: अभी मैं आया था, मुझे पास भी मिला हुआ था, लेकिन मैं लेट हो गया था, इसकी वजह से जगह बहुत सारा बुक हो गया है। लेकिन ये बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है और भारत देश के लिए, वर्ल्ड के लिए और मनुष्य जीवन के लिए फिट्स रहने के लिए बहुत बड़ा मोदी जी ने ये अनुष्ठान किया है। और वेस्ट बंगाल में ये पहली बार ऐसा जुनून देखने को मिल रहा है कि आज पूरे वेस्ट बंगाल की जनता है जो अपने आप को बहुत गौरविंद समझती है और स्वतंत्र और आजाद पब्लिक अपने आप को समझती है, कि ऐसा लगता है कि हम लोग ही शुभेंदु अधिकारी है, हम लोग ही नरेंद्र मोदी है, हम लोग ही भारत के कार्यकर्ता है और देश की सेवा में योगदान करने वाले हैं।
0: ये जो संदेश आज रेड रोड से प्रधानमंत्री के मौजूदगी में लोगों तक पहुंच रहा है, कितना महत्वपूर्ण लगता है आने वाले पीढ़ी के लिए खासकर?
3: देखिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और आने वाले युवा युवतियों और सामाजिक संस्कृति के लिए बहुत बड़ा संदेश आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है। और मोदी जी ने ये कहा है कि जो जहाँ पे है, यहाँ पे है, अपने घर पे है, मठ में है, कहीं पे भी है, आप योगा कीजिए। और गिनीज बुक के अंदर में, आज वर्ल्ड के अंदर में ये उसका गिनीज बुक में नाम बुक होगा, ऐसा हम लोग सुनने को मिल रहा है और ऐसा हम लोग समझ भी रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर में ऐसा काम पहले बार भारत के अंदर और इस वेस्ट बंगाल की धरती पे होने जा रहा है। वेस्ट बंगाल और कोलकाता के लिए बड़े गौरव की बात है और पब्लिक के लिए बड़ी गौरव की बात है। जय हिंद, वंदे मातरम।
0: तो आप समझ सकते हैं कि ये गौरव की बात है पूरे मानव जाति के लिए, और खासकर अगर कोलकाता की बात की जाए, पश्चिम बंगाल में इस पैमाने पे पहले कभी भी योग दिवस पालन नहीं किया गया था। पिछले सरकार के टेनियर में हमने देखा था कि योग दिवस के जो कार्यक्रम होते थे वो बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, लेकिन बड़े पैमाने पे नेता मंत्री इन लोगों शामिल नहीं होते थे। लेकिन इस बार सिर्फ नेता मंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री ही नहीं, आम लोग, आप और मेरे जैसे आम लोग इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये रेड रोड का जो जगह है ये ऐतिहासिक माना जाता है, कई मायनों में इस ऐतिहासिक रेड रोड में एक इतिहास रचने का एक और चांस मिला है लोगों को। और कई लोगों का कहना है कि आज जिस तरीके से भीड़ उमर पड़ी है रेड रोड पे, ये आने वाले समय पे जाके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना जगह बना सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो पीछे का इलाका मैं दिखाता हूं, काफी चहल पहल से भरा हुआ था, लेकिन 5 बजे का कट ऑफ टाइम दिया हुआ था एंट्री के लिए, लेकिन फिर भी 6:45 बजे तक एंट्री लोगों को दिया गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री आ चुके हैं और जो योगा शिविर है वो कुछ ही देर में अब औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी प्राप्ति मानी जाती है लोगों के लिए, खासकर बंगाल के लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम पहले पश्चिम बंगाल के लोगों ने ना कभी हिस्सा लिया था, ना कभी उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों का चश्मदीद बना था। लेकिन आज एक अलग दिन है, एक अलग अवसर है, और सारे लोगों को घुल मिलकर एक आने वाले पीढ़ी के लिए स्वस्थ समाज बनाने का एक संदेश कहीं ना कहीं रेड रोड से प्रधानमंत्री और तमाम जो बड़े बुजुर्ग माने जाते हैं, चाहे वो योग गुरु हों, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में एक संदेश आने वाले पीढ़ी के लिए एक देना चाहते हैं। और इसी का एक जो गवाह वो पश्चिम बंगाल के आज कोलकाता के रेड रोड है। अंजलि,
1: बिल्कुल। और समय की पाबंदी बहुत अहम होती है योग के लिए भी, और कुछ लोग जो वहां नहीं पहुंच पाए उनको बेहद दुख जरूर हो रहा होगा, लेकिन वहां पर जो कार्यक्रम है उसको भी वक्त पर शुरू होना था। लेकिन तपस अहम ये भी है, हम भी यहाँ पर योग की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे क्योंकि हमारी भी ये कोशिश है कि योग दिवस का हिस्सा बने। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, हम अपना योग शुरू करते हैं, आप इस बात का हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर हर साल पहुँचते रहे हैं, इस बार क्योंकि उन्होंने कोलकाता को चुना, वो क्यों अहम है और वहाँ के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं?
0: जी देखिए, अगर कोलकाता की बात की जाए, इस बार प्रधानमंत्री का जो दौरा है कई मायने में अलग है और कई मायने में खास भी है, क्योंकि एक तो पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री का ये जो सफर है, जो विजिट है, ये काफी बड़ा माना जाता है जा रहा है। और यहाँ प्रधानमंत्री अलग अलग कार्यक्रम में, कल उन्होंने हिस्सा लिया था, आज योग के शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन दूसरे छोर पर अगर योग की बात की जाए तो आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर अपना तजुर्बा अगर आपको बताऊं कि मैं जहां रहता हूं वो उस बिल्डिंग में भी आज कम से कम 150 लोग ये फैसला किए कि वो आज जो कंपाउंड में वो आज योग मनाएंगे, और हर सुबह 6 बजे से 7 बजे का वक्त वो रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो असर वो लोगों में दिख रहा है कि अब प्रधानमंत्री इसकी अगुवाई कर रहे हैं। औपचारिक तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार भी चाहती है कि लोग योग करें, और ये इसका जो एक रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि इन्हें अभी अंदर जाने के लिए एंट्री मिला नहीं है, तो ये रेड रोड के सामने ही डफरिन रोड पर अपना योगा शुरू कर चुके हैं, दूसरे छोर पर रेड रोड पे योगा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेड रोड पर ही आना है, ऐसा नहीं, आप जहां भी हो, रास्ते में हो, घर पे हो, छत पर हो, पार्क गार्डन में हो, कहीं भी हो, आप योगा कीजिए। तो ये असर आज देखने को मिल रहा है। आज हालांकि योगा डे के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन ये माना जा रहा है, कई लोगों से हमने बात की सुबह से, कि आज का दिन जो शुरुआत हुआ है, ये आने वाले समय में जो बच्चे हैं, खासकर एडुकेशनल करिकुलम में इसे जोड़ने की मैंडेटरी बनाने की कोशिश में है पश्चिम बंगाल सरकार। तो अगर ये मैंडेटरी बनाया जाता है तो इसका जो फायदा है कई मायने में कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका फायदा जाकर सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बच्चे, बड़े और खासकर बुजुर्ग, इन्हें हर किसी को इसका फायदा मिलेगा। तो ये कई मायने में प्रधानमंत्री का आना, और उन्हें एक स्टेट्समैन की तरह देखा जाता है कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं, अगर उनके बातों को, उनके फैसलों को लोग फॉलो करते हैं। तो जब योगा डे में वो अगुवाई कर रहे हैं, वो भी पश्चिम बंगाल कोलकाता में आकर पहली बार, तो ये कई मायने में लोग फॉलो करेंगे, जो आने वाले पीढ़ी है वो फॉलो करेंगे, ये माना जा रहा है। तो ये कई मायनों में प्रधानमंत्री का इस बार पश्चिम बंगाल का दौरा काफी कई मायनों में खास माना जा रहा है। खासकर योगा दिवस का जो ये आयोजन किया गया है, इस आयोजन के पीछे प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और प्रधानमंत्री का यहां पर मौजूदगी कई मायने में लोगों के लिए संदेश है कि अपने स्वास्थ्य को अपने संतुलन बनाएं, और उसके लिए योगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंजलि
1: जी, तपस्या, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अगर आ रहे हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो उसके लिए तैयारियां भी खूब हुई होंगी, और अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों में बहुत बिजी भी रहे हैं, वहां की राजनीति बेहद सक्रिय रही है। इस सबके बीच में किस तरीके से आयोजन किया गया, किस तरह के वहां पर आप इंतजाम देख रहे हैं, और क्या उम्मीद की जा रही है कि ये कार्यक्रम कितना सक्सेसफुल रहेगा?
0: जी, कार्यक्रम उम्मीद जताया जा रहा है कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि सुबह से अलग अलग जगहों पर, कोलकाता के अलग अलग जगहों पर सरकारी जो बसें हैं उन बसों को प्लेस किया गया था। अमूमन 3-3:30 बजे के आसपास से जो सरकारी बसें हैं उन बसों को रखा गया था कि जो भी लोग रेड रोड पहुंचना चाहते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, जिन इलाकों से वो अपना सफर शुरू करेंगे उन जगहों पर बसों की कमी ना हो, इस वजह से बसों को तैनात किया गया था। अगर सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा भी पूरी तरीके से चौक चौबंद किया गया है, कोलकाता का जो मेट्रो है, ऐतिहासिक मेट्रो, अमूमन 8 बजे से वो मेट्रो चलना शुरू होता है। आज सुबह 4 बजे से उस मेट्रो को शुरू किया गया, मेट्रो सर्विसेज शुरू किया गया। हमें पता है कि आज नीट का परीक्षा भी है, लेकिन बावजूद इसके सुबह 4 बजे से मेट्रो अवेलेबल किया गया है, ताकि लोग जो कोलकाता और हावड़ा के इलाकों से कोलकाता पहुंचना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो हर
1: तरीके इस वक्त हमारे साथ अमन भारद्वाज भी जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। आइए सीधा रुक करते हैं उन्हीं का। अमन, आपके पीछे भी मैं देख सकती हूँ कई लोग हैं जो इस वक्त योग आसन करने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। शुरुआत कार्यक्रम की लगता है नहीं हुई है, क्या तैयारियां हैं वहां पर और क्या क्या होगा आज?
4: देखिए, तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई और कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। राज्यपाल जो पंजाब के हैं गुलाब चंद कटारिया और चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, तो वो यहां पर पहुंच चुके हैं और उनकी ओर से भी योगा किया जाएगा। और चंडीगढ़ के जितने अफसर हैं, शहरवासी हैं, वो एक जगह यहां पर, ये चंडीगढ़ सेक्टर 17 का तिरंगा पार्क है, जो तिरंगे के लिए आप देखिए कि नीचे जो पार्क है इसकी छांव हेठ योगा किया जाएगा। और लोग सुबह 5:30 से ही यहां पर पहुंचे हुए थे और अब औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने स्वास्थ्य को साधने को लेकर, खुद के खुद पर डिसिप्लिन और उद्धान के लिए, तो जितनी और साथ साथ आप देखिए कि जो संस्कृति जुड़ती आई है योगा के साथ, तो उस योग को लेकर आज सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं। और वही मैसेज स्टेज पर से जो पंजाब के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, उनकी ओर से दिया भी गया। और चंडीगढ़ में आप देखिए कि सैकड़ों लोग हैं जो इस सेक्टर 17 के तिरंगा पार्क में इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री पंचकुला के अंदर, और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो जालंधर के अंदर पंजाब में आज योगा कर रहे हैं। तो और इसके अलावा चाहे हिमाचल हो, अलग अलग जहां जहां से हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, तो लोग हों चाहे किसी भी वर्ग के हों, साथ साथ किसी भी आयु के हों, तो उनके लिए अब उनकी जीवन का हिस्सा एक तरीके से योग करना इस इंटरनेशनल योगा डे पर बन गया। और साथ साथ उसी का संदेश भी, चाहे सरकार हो, प्रशासन हो या एनजीओज हो, सोसाइटी के अलग अलग लोग हों, छोटे हिस्सों में, बड़े हिस्सों में, हर कोई इसकी अहमियत समझकर योगा के लिए एकत्रित हो रहा है और योग कर रहा है। अंजलि
1: है तो वहां जो लोग पहुंचे। चलिए हम सीधा रुक करते कोलकाता।
5: राज्यपाल श्री आर एन रवि जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, यह कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के, मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. Sathiyo, Gita mein Bhagwan Krishna ne yoga ke vishay mein kaha hai, yukta ahar viharasya yukta cheshtasya karmasu yukta swapna avabodhasya yogo bhavati dukha. Arthat, santulit ahar vihar se, santulit kriya aur karmo se, santulit nind aur jagne se, yog dukhon ka naas karne wala ho jata hai. Ye santulan hi योग का आधार है. यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है. लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं. बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको. योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है. योग हमें डूज और डोंट सिखाता है. और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है. साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता. योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है. इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है. यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध. ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रधानमंत्री मोदी, इस वक्त आपने देखा अभी अभी उन्होंने अपना संबोधन खत्म किया है, वो योगासनों में भी शामिल होंगे।
6: ऑनरेबल चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, वी आर नाउ अराइव्ड एट दैट पार्ट वेयर वी विल बी हैविंग द योगा प्रोटोकॉल्स। अनुरोध है,
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि योग हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक, आज जब सब एक साथ बैठे हैं तो योग की जो ऊर्जा पैदा हो रही है देश से, वो वाकई सराहनीय है। और एक अहम बात जो उन्होंने कही वो ये कि जब वो कोलकाता पहुंचे तो उनका स्वागत स्वच्छता के साथ हुआ और ये देखकर वो खुश हुए। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें हम देख सकते हैं कि लोगों ने योग शुरू कर दिया है।
7: आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस का 12वें संस्करण का शुभकामनाएं और बधाइयां।
8: দ্বাদশতম আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। কলকাতাকে সুন্দর নগরী মে আপ সবকা স্বাগত হে আর অভিনন্দন হে। কলকাতার এই সুন্দর শহরে আপনাদের সকলকে উষ্ণ স্বাগত এবং শুভেচ্ছা। সামান্য যোগ সত্র মে আপ সবকা স্বাগত হে। যোগাসনের এই অধিবেশনে আপনাদের সবাইকে উষ্ণ স্বাগত। আইয়ে আজ কা সত্র হাম প্রার্থনা সে প্রারম্ভ করেঙ্গে। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधा रखे। आसन आज के अधिवेशन टी प्रार्थना माध्यम में शुरू करी, जे कोनो ध्यानात्मक आसन में घुसे जान।
7: दोनों हाथों को मिलाकर नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए।
8: दुटो हाथेर तालु नमस्कार मुद्राएं नियासुन।
7: कोमलता से दोनों आंखों को बंद कीजिए।
8: आलतो कोड़े दुटो चोक बंद करुन।
7: अब हम एक स्वर में ओमकार का उच्चारण 3 बार करेंगे, उसके पश्चात प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे।
8: एबार आमरा समस्त स्वरे 3 बार ओमकारेर उच्चारण करबो एवं तारपरे प्रार्थना शुरू करबो।

0: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए,
1: आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून,
0: दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था में आसुन,
0: जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए,
1: निजर जाएगा दाड़िये पोड़ून।
0: हम सब आज का सत्र चालन क्रिया से शुरू करेंगे।
1: आज के हमारा चालन क्रिया माध्यम अधिवेशन टी शुरू कर बो,
0: जिसे सूक्ष्म व्यायाम शीतलीकरण व्यायाम का नाम से भी बोला जाता है। यहाँ चालन क्रिया अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है, उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन शुरू उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम हम चालन क्रिया से शुरू करेंगे, गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे।
1: घर सामने पीछे नहीं गौड़ा,
0: दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखे,
1: दुटो पायर माझखाने 2 इंची दूरत्व बजाय रखो,
0: दोनों हाथों को कमर पर रखिए,
1: दुटो हाथ के कोमरे ऊपर रखो।
0: पहला अभ्यास गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास।
1: प्रथम अभ्यास घर सामने एवं पीछे झुकानो,
0: श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर और गर्दन को आगे की ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा एवं घर के सामने दिखे झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए,
1: सांस नीते नीते पीछे दिखे माथा झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: सांस नीते नीते स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे।
1: यही अभ्यास पुनरावृत्ति करून,
0: पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है, गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट एंड लेफ्ट झुकाने का अभ्यास।
1: परवर्ती अभ्यास डाने एवं बामे कात करार,
0: श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को राइट साइड दाएं के ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा डांदी के कात करान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे,
1: बाम दिक थे के वो अनुशीलन टी अभ्यास करून,
0: पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला क्रिया गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास,
1: घर डाने एवं बामे घोरान और अभ्यास।
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते अपना घर डान दिखे घोरान,
0: और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए,
1: सामान्य अवस्था ही फिर आसुन।
0: पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे।
1: यही अभ्यास थी,
0: श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए, और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया को कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे, पूरा ध्यान श्वास पर श्वास पर, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का,
1: परवर्ती अभ्यास घर घोरान और,
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा सामने दिखे झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे,
1: सांस नीते नीते घोड़ी काटार दिखे घूर्णन दिन,
0: और श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः आगे लेके आइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते सामने दिखे न्यास।
0: एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया में आंखें खुली रखना है, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार
1: विपरीत दिख थे क्यों एवं अनुशीलन की अभ्यास करून,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए, और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे,
1: कांध एवं बाहुर आंदोलन,
0: जिसे भी कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए।
1: सांस नीते नीते दोनों हाथ के ऊपर नियासुन,
0: दोनों हाथों को हथेलिया बाहर की तरफ रहना है,
1: दोनों हाथेर तालु बाहर दिखे।
0: इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूर्ण श्वास प्रश्वास पर, धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए हथेलिया का, और मुख बाहर की तरफ रहना है, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए,
1: सांस छोड़ते छोड़ते सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए,
1: आस्ते आस्ते दोनों कांध के हाथेर सामने
0: और हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए,
1: दोनों कोनोई के भाज करुन,
0: दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए,
1: दोनों कोनोई के छाती के सामने नियासुन,
0: और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए, श्वास प्रश्वास के साथ
1: धीरे धीरे गोलाकार आकृति तक घोड़ान,
0: पूरा ध्यान कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए, और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए,
1: दो पैर माझखाने कांधेर समान दूरत्व बजाय रखुन,
0: दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए कंधों के समानांतर,
1: दो हाथ के कांधेर समान सामने,
0: हथेलियों को मुख अंदर की तरफ रहे,
1: हाथेर दो तालु सामने दिखे,
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर से घुमाइए,
1: सांस छोड़ते छोड़ते शरीर के डान दिखे घोड़ान।
0: इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए,
1: सांस छोड़ते छोड़ते स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे,
1: विपरीत दिशा से अपनी अभ्यास करुन,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास, दाई तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास हाटूर संचालन,
0: श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए,
1: सांस नीते नीते हाथ के छाती सामने नियासुन,
0: हथेली का रुख नीचे की ओर रहना है,
1: हाथेर तालु नीचे दिखे,
0: श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए,
1: सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों के भाज कोडून,
0: कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है, और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन,
0: और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे,
1: एबार हमारा आसन अभ्यास शुरू कर दो।
0: पहला अभ्यास ताड़ासन,
1: प्रथम अभ्यास ताड़ासन,
0: दोनों पैरों के बीच में 2 इंची की दूरी बना के रखे,
1: दो पैर माझखाने 2 इंची दूरत्व बजाय रखो,
0: दोनों हाथों को कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए,
1: दो हाथ के छाती सामने कांधेर समान नियासुन,
0: दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए,
1: दो हाथ के जोड़ो करुन,
0: और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए,
1: बाहर दिखे घूरिए दिन हाथेर तालु,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए,
1: सांस नीते नीते हाथों को दिखे,
0: हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास,
1: संभव होले गोड़ाली रोपोर
0: संतुलन संतुलन बनाने का प्रयास इस, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए,
1: सांस छोड़ते छोड़ते हाथ नीचे
0: और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए,
1: आराम करो।
0: अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास पादहस्तासन।
0: जिसे भी हाइपर बीपी है, हर्निया है, हाइपर गैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए,
1: दोनों पैर माझखाने 4 इंची दूरत्व बचाए दिन।
0: दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से सिर के ऊपर उठाइए,
1: दोनों हाथ के सामने थे के माथार ऊपर निये जान,
0: और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते कोमर थे के झुकान।
0: दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखने का प्रयास,
1: दोनों हाथ के पायर पास स्थापित करूं,
0: और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास,
1: दोनों हाथों के सोजा करार प्रयास करूं।
0: इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए,
1: सांस नीते नीते फिर आसुन,
0: और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए,
1: आराम करो।
0: अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन,
1: परवर्ती अभ्यास अर्ध चक्रासन।
0: दोनों हाथों को कमर पर रखिए,
1: दोनों हाथ के कोमड़े ऊपर रखून,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए,
1: धीरे धीरे अपनर बॉडी के पिछन दिखे झोंकान।
0: इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रखना है,
1: ये अनुशीलन समय चोख दुटो खोला थाकबे,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन,
0: और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास त्रिकोणासन।
0: दोनों पैरों के बीच में 3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए,
1: दोनों पैर माझखाने 3 से 4 फीट दूरत्व बजाय रखून।
0: दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए,
1: दोनों हाथ के कांधे समांतराल ले आसुन,
0: दाएं पैर को दाएं तरफ, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए,
1: डान पैर पाता डान दे के घुड़िए दिन,
0: और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते शरीर के डान दे के झुकिए दिन।
0: राइट हैंड दायरे पैर पे पीछे की तरफ या टखनों पे स्थापित करें,
1: अपना डान हाथ पायर का स्थापित करो,
0: और सिर को ऊपर के आसमान की तरफ देखिए और थोड़ी देर इस अवस्था में रहिए,
1: विशाल का आकाश दिखे देखार चेष्टा करूं एवं ये अवस्थाएं बजाय थकून,
0: और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्थाएं फिर आसो,
0: राइट लेग को सीधा कीजिए। इस तरह दूसरे पैरों से भी अभ्यास करेंगे, लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ घुमाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड झुकाते जाइए, बाय लेफ्ट का बाय पैर पे रहना है और सिर को ऊपर की तरफ कीजिए, और इस अवस्था में सामान्य स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए श्वास प्रश्वास के साथ, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आइए, पैर को सीधा कीजिए और हाथों को नीचे लेके सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसन।
0: अब हम बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे,
1: एवर हमने बोसे कड़ा आसन को अभ्यास करबो,
0: धीरे धीरे से बैठ जाइए,
1: नीचे जाएगा बोसे पड़ून,
0: पैरों को सामने की तरफ सीधा कीजिए,
1: दुटो पाके सामने दिखे सोजा करून,
0: दोनों हाथों को नितंब के पास सहजता से रखिए,
1: दुटो हाथ के नितंबर पास रखून,
0: कमर गर्दन सीधा रखे,
1: कुमोर एवं घर सोजा रखून।
0: इसको हम दंडासन कहते हैं,
1: एक दंडासन बोला है।
0: अब दंडासन के पश्चात हम आगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास भद्रासन।
0: जिसको भी घुटने में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और दोनों तलवों को मिलाइए,
1: दोनों पैर पाता के एक संगे जोड़ो करून,
0: और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए,
1: পায়ের আঙুলগুলোকে হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করুন।
0: এড়িওকে ধীরে ধীরে শরীর কি তরফ খিচিয়ে
1: গোড়ালিকে নিজের নিতম্বের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন।
0: আর ঘুটনে কো জমিন পর স্থাপিত করনে কা প্রয়াস,
1: হাঁটু মেঝের দিকে,
0: সির গর্দন সিধা রাখে আর সামান্য শ্বাস প্রশ্বাস পর ইস অবস্থা মে থোড়ি দের বনে রহিয়ে। আর ধীরে ধীরে দোনো হাতো কো ছোড়িয়ে পেরো কো আগে কি তরফ ফেলাইয়ে আর দণ্ডাসন মে আইয়ে আর শীতল দণ্ডাসন মে বিশ্রাম কিজিয়ে। দোনো হাতো কো

0: धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन और छाती को, छाती के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ झुकाइए।
1: सांस नीते नीते शरीर के पीछे नदी के बाकान।
0: और इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए।
1: स्वाभाविक श्वास प्रश्वास बजाय रखन।
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए। पुनः वज्रासन में बैठ जाइए।
1: वज्रासन है बोसे पड़ून।
0: अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास शशकासन।
0: वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ कोलिए।
1: वज्रासन थे के दुटो हाटू के बाहर दिखे खुलून।
0: और दोनों हाथों को हथेलियों को धरती पर स्थापित करें।
1: दुटो हाथ के फ्लोर पे स्थापित करून।
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते दुटो हाथ के स्लाइड करते करते निये जान।
0: नितंब को एड़ियों पर टिकाने का प्रयास।
1: नितंब के गोड़ाले संगे रखार चेष्टा।
0: टोड़ी छाती को धरती पर स्थापित करे। और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए। और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें। अब हम यहीं से उत्तान मंडुकासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती आसन उत्तान मंडुकासन।
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए।
1: दोनों हाथ के साइड थे के ऊपर निये जान।
0: एक एक करके दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधों पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधों पर स्थापित करें।
1: डान हाथ के भाज करे बाम कांधे एवं बाम हाथ के भाज करे डान कांधे राखून।
0: सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे की तरफ लेके आइए। और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ कीजिए। और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए।
1: दुटो पाके बाहर दिखे छोड़िए। शीतल दंडासन में विश्राम करून।
0: अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास वक्रासन।
0: शीतल दंडासन से दंडासन में आइए और दोनों हाथों को नितंब के पास सिर गर्दन कमर सीधा रखें। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए। दाएं पैर के घुटने के पास रखें।
1: डान हाटू के भाज करून बाम पैर का छे।
0: दाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें।
1: डान हाथ के पीछे नदी के स्थापित करून।
0: बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखने का प्रयास या दाएं पंजों को पकड़ने का प्रयास।
1: बाम हाथ दिए उल्टपात धरार चेष्टा करून।
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते घर डान दिखे घोड़न।
0: और स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए।
1: स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ ये अवस्था बजाय थकून।
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैरों से भी हम करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास उल्टो पात है।
0: बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें। और बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए। और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए। और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पर, कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचावों को महसूस करने का प्रयास। और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे।
1: एवर हमरा पेटे रोपोर भर दिए आसन शुरू कर दो।
0: दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए।
1: दंडासन स्थिति थे के पेटे रोपोर सुए पड़ून।
0: सिर

0: आगे मंच की तरफ रहे,
1: माथा स्टेजर दिखे थकबे,
0: पैर पीछे की तरफ हो, दोनों पैरों के बीच में एक फुट का अंतर रखे,
1: दोनों पैर माझखाने एक फुट की दूरत्व बजाय रखूं,
0: दोनों एड़ियों को अंदर की ओर और पंजे बाहर की तरफ रहे, दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेलियों को बाएं हथेलियों पर स्थापित करें,
1: दान हाथ के बाम हाथों पर स्थापित करो,
0: बाएं या दाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करें,
1: दान एवं बाम गाल स्थापित करो हाथे ऊपर,
0: इसको हम मकरासन कहते हैं,
1: लेकिन मकरासन बोला है,
0: यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंग्जाइटी स्ट्रेस तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे,
1: परवर्ती अनुशीलन भुजंगासन,
0: मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए,
1: मकरासन थे के दुटो पाके एक संगे नियासन,
0: और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे खींचे,
1: सांस नीते नीते सामने के हाथ नियासन,
0: और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए,
1: दोनों हाथ के छाती सामने नियासन,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए,
1: सांस नीते नीते शरीर के बाकन और चेष्टा करो,
0: सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए,
1: ये अवस्था एक स्वाभाविक सांस प्रश्वास बजाय रखो,
0: यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी जुकाम दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए,
1: मकरासन विश्राम करूं।
0: अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे,
1: परवर्ती आसन शलभासन,
0: मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए,
1: मकरासन थे के दोनों पाके एक संगे नियासन,
0: दोनों हाथों को जांगों के पास लाइए,
1: दोनों हाथ के जांगेर पासे रखूं,
0: और दोनों हथेलियां जमीन पर जमीन की तरफ रखें, टोड़ी को जमीन से लगा कर रखे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए,
1: सांस नीते नीते दोनों पाके ऊपर तुलर चेष्टा करो,
0: प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का,
1: प्रयास करूं कि दोनों पा सोजा थाके,
0: और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए, पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए,
1: मकरासन में आराम करो।
0: अब हम सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे,
1: चीत होए करा आसन अभ्यास करबो,
0: बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए,
1: पीठे ऊपर सुए पड़ो,
0: पहला अभ्यास सेतु बंधासन ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है, दोनों पैरों को मिलाइए,
1: दोनों पाके एक संगे नियासन,
0: और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए,
1: दोनों पाके भांज करते करते नितंबेर काछे नियासन,
0: दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास,
1: दोनों हाथ दिए गोड़ाली धरार चेष्टा करो,
0: श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास,
1: सांस नीते नीते अपना शरीर दिए ब्रिजेर आकार दिन,
0: सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए और पीठ के बल विश्राम कीजिए, अगला अभ्यास उत्थान पादासन,
1: परवर्ती अभ्यास उत्थान पादासन,
0: दोनों पैरों को मिलाइए,
1: दोनों पाके एक संगे नियासन,
0: हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए, हथेलियों को जमीन पर रखे, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45 डिग्री कोण बनाइए, उठाकर कोण बनाइए,
1: सांस नीते नीते पायर द्वारा 45 डिग्री कौन दिन,
0: इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए,
1: स्वाभाविक श्वास प्रश्वास बजाय रखो
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। अगला अभ्यासन अर्ध हलासन,
1: परवर्ती अभ्यास अर्ध हलासन।
0: दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री का कोण बनाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री का कोण बनाइए।
1: सांस नीते नीते 90 डिग्री कोणे नियासुन।
0: प्रयास करिए घुटने सीधा रहे,
1: चेष्टा करुन अपना दुटो हाटो सोजा थाके
0: और सामान्य श्वास प्रश्वास और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम इसी अवस्था से पवन मुक्तासन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए, दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए, दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए।
1: दुटो हाथ के हमरा लॉक करबो दुटो पायर माझखाने।
0: श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने का प्रयास और टोड़ी को घुटने के बीच में रखने का प्रयास।
1: सांस छाड़ते छाड़ते चिबुक टिकाने की चेष्टा करबो
0: और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और हाथों को बगल में रखिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन यहाँ अजीर्ण कब्जी जैसे अवस्था को निवारण करता है और पीठ और पेट की चर्बी को भी घटाने में सक्षम है। अब हम पूरे विश्व का, सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला दूर रखिए, दोनों पैरों को दूर रखिए और हाथों को शरीर से बाहर रखिए।
1: दुटो पायर मध्य दूरत्व बजाय रखो एवं दुटो हाथेर मध्य दूरत्व बजाय रखो।
0: हथेलियों को आसमान की ओर खुले रखें,
1: हाथेर तालु आकाशेर दिखे
0: और आंखों को सहजता से बंद कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर ध्यान दीजिए, चंचल मन को निश्चल करने का प्रयास और पूरे शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखे, शरीर में उत्पन्न होने वाले सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन में उत्पन्न हुए चिंता को दूर करने का प्रयास। अपने आप को धरती को समर्पण करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। धीरे धीरे बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। धीरे धीरे दाएं या बाएं करवट लेते हुए मंच की तरफ देखते हुए बैठ जाइए। सिर और गर्दन को सीधा रखे, शवासन से उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास कपालभाति।
0: जिसे भी हाई बीपी है, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे अवस्था में सावधानी के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन जो आपको सुख का अनुभूति देता हो उस आसन में बैठ जाइए। सिर गर्दन सीधा रखें और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर स्थापित रखें।
1: जी कोनो ध्यान मुद्राएं बसुन, जमन सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन एवं वज्रासन एवं दुटो चोख के आलतो करे बंद करुन।
0: पहला चक्र 20 आवृत्ति के लिए हम शुरुआत करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए मांसपेशी को दबाते हुए श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए।

0: अपना श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालाभाति का दूसरा चक्र हम शुरू करेंगे 20 आवृत्ति के लिए। गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए। और श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास अनुलोम विलोम।
0: कमर गर्दन सीधा रखे, आंखें बंद रखे,
1: अपना कोमर एवं घाट सोजा रखो एवं चोख बंद रखो।
0: बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बनाकर बाएं पैर पे रखिए।
1: बाम हाथ दिए ज्ञान मुद्रा बनिए, बाम हाथों पर रखो
0: और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा करके
1: डान हाथ दिए प्राणायाम मुद्रा बनाने की चेष्टा करो।
0: धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लीजिए और धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से पुनः अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और राइट नासिका रंध्र से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए। और अब हम अगले अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास शीतली प्राणायाम।
0: दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें।
1: दोनों हाथ दिए ज्ञान मुद्रा बनिए, हाथों पर रखो।
0: जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार जीभ को बनाइए।
1: जीभ बाहरे बेर करे दो पास दिए पाखिर टूठेर मतो आकृति दिन।
0: और जीभ से गहरा श्वास अंदर खींचिए और धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास को अंदर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर की तरफ छोड़िए। यह अभ्यास मन में शांति को प्रदान करता है, चिंता तनाव अवसाद जैसे बीमारियों को नियंत्रित करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम।
0: षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, अंगूठे को कान को अंगूठे से कान को बंद कीजिए। सभी उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें।
1: वृद्धांगुली दिए कान एवं बाकी अंगुल दिए
0: नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए।

इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। श्वास नाक से लीजिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए।

एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न करते हुए बाहर की तरफ छोड़िए।

0: दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, आंखें बंद रखिए। इस भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास। यहां एक प्राणायाम चिंता अवसाद ऐसे अवस्था को नियंत्रित करता है, अनिद्रा जैसे शिकायतों को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, आंखें बंद कीजिए।
1: এখন আমরা ধ্যানের অভ্যাস করব, দুটো চোখ বন্ধ করুন,
0: कमर गर्दन सीधा रखे, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा का धारण कीजिए।
1: दोनों हाथ दिए ध्यान मुद्रा बनाने की चेष्टा करो।
0: कंधों को शिथिल कीजिए, अपने श्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमे और गहरा श्वास लीजिए और धीमा और गहरा श्वास छोड़िए। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, शरीर में उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन से तनाव को दूर करने का प्रयास। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए और निर्विचार होने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे ध्यान में लीन होने का प्रयास। मन ही मन में शांति का अनुभूति करने का प्रयास। अब हम अपने मन में मन संकल्प का धारण करेंगे। हमें अपने मन को प्रतिक्षण संतुलन रखने का प्रयास और संकल्प का धारण करने का प्रयास। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्वास के प्रति, शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। और धीरे धीरे दोनों हाथों को मिलाइए। अब हम शांति पाठ करके इस सत्र का समाप्त करेंगे। सिर गर्दन सीधा रखे, दोनों हाथों को मिलाइए, नमस्कार मुद्रा में।

0: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे आंखों को पलकों को झपकाते हुए कोमलता से आंखों को खोलिए और हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, सभी लोग बैठे रहना जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी।
1: तो ये पूरा एक सेशन हमने भी साथ दिया और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद थे जब इतने सारे लोग एक साथ सामूहिक तौर पर योगाभ्यास कर रहे थे और जो ऊर्जा थी वो हमने भी महसूस की स्टूडियो में। जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे लिया गया हम लोगों ने भी साथ दिया और प्रधानमंत्री मोदी के निगाहों के नीचे उनके निरीक्षण के तहत ही ये सारे योगाभ्यास वहाँ किए गए और योगासन करने से पहले उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित भी किया जिसमें उन्होंने बताया कि योग का महत्व क्या है और योग का महत्व सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, उन्होंने योग का महत्व उनके लिए जिनकी उम्र बढ़ रही है, आयु के साथ योग का क्या महत्व हो सकता है, स्वस्थ रहने के लिए योग का क्या महत्व हो सकता है, मानसिक संतुलन के लिए योग का क्या महत्व हो सकता है, इस सब के बारे में उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें जब वो खुद भी योगासन जो किए जा रहे थे उसमें शामिल हुए थे, शुरू के कुछ जो योगासन किए गए उसमें प्रधानमंत्री खुद भी मौजूद थे और उसके बाद वहां पर जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा वो वहां मौजूद लोगों के साथ रहे। तो एक बड़ा कार्यक्रम जो देश के कोने कोने से हमें देखने को मिल रहा है और योग हमारे लिए हमारी बढ़ती उम्र के साथ कितना अहम हो जाता है, यही इस बार का थीम था। लेकिन जो एक खास पेशकश आपने देखी थी इसमें जो सीधी तस्वीरें हम आपके लिए लेके आए थे वो कोलकाता से थी जहां पे प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद थे और इसके आगे का भी कार्यक्रम है उनका जो कोलकाता में रहेगा और जारी रहेगा और हम भी यहाँ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कुछ और जो योगासन है उनको जारी रखते हैं। तो आप अक्षय अगर कोई एकाद आसन है जो कि हमारे दर्शकों के लिए बता सके जो कि सेहत के लिए रोज किए जा सके।
2: देखिए मैं इसमें सबसे पहले आजकल की जो दिनचर्या है उसमें सब लोग ही काफी व्यस्त रहते हैं अपनी दिनचर्या में, तो मैं एक ऐसा आसन बताने जा रहा हूं जिसे हर कोई कर सकता है
1: जी।
2: बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है। आप बेड पे बैठे रहे, आप टीवी देख रहे हैं या आप फोन चला रहे हैं, आप दोनों पैरों को ऐसे पहले सीधा कीजिए, थोड़ा सा शेक कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए दोनों पंजों को ग्रिप करने की कोशिश कीजिए। इसे कहते हैं हम पश्चिमोत्तानासन। ये आपकी बैक को स्ट्रेच करता है। जो लोग बैठे रहते हैं जिनकी कमर हमेशा बेंड रहती है उसे सीधा करता है। फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और धीरे से हाथ को नीचे लेके आएंगे, फिर से पैरों को ग्रिप करने की कोशिश करेंगे, यहां पे होल्ड करेंगे जितना हो सकता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, जितना हो सकता है बैक को स्ट्रेट रखिए, चेस्ट को वाइड कीजिए, आगे जाने की कोशिश कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सांस को भरिए और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके आएंगे। ये आसन उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा माना गया है जो लोग ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, जिनका सिटिंग पोस्चर है। अब तो ज्यादातर लोग बैठने का ही काम ज्यादा कर रहे हैं ऑफिस में, तो उनकी बैक में लोअर बैक में पेन रहता है काफी, क्योंकि वो इस पोस्चर में बैठे रहते हैं, अकड़े रहते हैं बेसिकली। तो जितना आप सीधा होकर बैठने की कोशिश करेंगे इस आसन में आपकी चेस्ट को एक लेंथ मिलती है आगे जाने के लिए, जो आपकी अगड़न जो आपकी L3 L4 है उन्हें स्ट्रेच करके नॉर्मल जो स्पाइन का आकार है उसमें ले आता है। तो इस वजह से ये आसन हर कोई कर सकता है, बड़ा सिंपल सा है
1: जी,
2: सबके लिए बहुत ही बढ़िया।
1: तो ये एक बढ़िया आसन आपने बताया जो कि रोज किया जा सकता
2: रोज है किया
1: और इसमें कोई किन्हीं कुछ खास लोग हों जिनके लिए आप कहेंगे कि सचेत रहें ना किया जाए।
2: जी जी जी, देखिए मैं उन लोगों को इसमें सचेत रहूंगा जिन्हें लोअर बैक की इंजरी है ज्यादा, जिन्हें स्लिप डिस्क की समस्या है, जो ज्यादा जिनकी बैक में कोई चोट लगी है या कोई मतलब किसी भी तरह का कोई भी दिक्कतें हैं जिनकी लोअर बैक में, स्पेशली जो L3 से नीचे का सैक्रम और कॉकिक्स वाला पोर्शन होता है उसमें, क्योंकि जब आप इसमें स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं आगे की तरफ तो आपकी कमर खिंचती है उसमें दर्द बढ़ने का चांस बन जाता है नर्व्स में। तो मैं उन लोगों को एक विशेष
1: बिल्कुल, और इस बात से मैं इस बात को मैं समझ भी सकती हूँ क्योंकि मुझे भी ये दिक्कत हुई थी स्लिप डिस्क की, तो आगे झुकना एक मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें और ज्यादा अपने आप को
2: पुश
1: ना करें।
2: चलिए
1: हमारा तो योग चल रहा है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, in association with
4: Bharat ki apni electric sawari.
5: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
6: Sokudo.
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: Lion O's family, super action family.
9: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
10: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: In association with
4: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
13: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
3: Hint, बड़े आराम से। Vimal, बोलो जुबां केसरी।
14: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
15: जमीन हिलती है, लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता।
16: आग जलाए या तूफान झिंझोड़े,
17: मौसम बदले,
18: फिर भी हर सपना खड़ा रहे।
19: क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो,
20: आपका घर कभी नहीं हिलता।
21: रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स,
22: आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
23: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
24: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
25: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
26: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
25: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: समाजवादी पार्टी में झूठ की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही है।
1: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
0: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
1: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
0: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
2: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता।
3: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
0: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने 35,000 लोगों के साथ मनाया योग उत्सव। कहा, संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। योग दिवस पर अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने किया योग। राज्यों में मुख्यमंत्रियों का भी कार्यक्रम। बर्फीले पहाड़ों पर जवानों का योग। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। 5,000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा। लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरे से नजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा। चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। लगातार 7 दिन से जांच और पूछताछ। और अमेरिका ईरान डील पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हुए राष्ट्रपति जेडी वैंस। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पहुंच चुकी है ईरान की टीम। परमाणु कार्यक्रम से लेकर लेबनान संकट पर होगी बैठक।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज और इस मौके पर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। और आज का दिन था जब प्रधानमंत्री पहुंचे कोलकाता और वहां पर उन्होंने शिरकत की एक खास कार्यक्रम में, जिसमें करीब 35,000 लोगों ने एक साथ सामूहिक योग किया। इसके अलावा देश भर से कई जगहों से ये तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी केंद्रीय नेता, सभी केंद्रीय मंत्री आज अलग अलग जगहों पर पहुंचे और उन्होंने योग कार्यक्रमों में शिरकत की। इस बार का थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, यानी कि स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए योग। और इसी थीम के साथ आज सभी नेता आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर योग करते हैं। नेता ही नहीं, अभिनेता भी जुड़े कुछ कार्यक्रमों में। और इसके साथ ही देश भर में आज एक ऊर्जा देखी गई, एक सामूहिक ऊर्जा, जो देश के कोने कोने में योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
1: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए, सांस लेते लेते स्वाभाविक अवस्था फिर आ।
0: हमारे साथ हमारे कई सहयोगी भी जुड़ेंगे अलग अलग इलाकों से, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहां किस तरीके से लोगों ने योगासन आज किए, इसके बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल महसूस करने तस्वीरें आप देख रहे हैं।
1: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
2: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
1: अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट एंड।
0: तो कोलकाता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वो वहां पर जो उनका स्वागत हुआ स्वच्छता से, उससे बेहद खुश रहे। साथ ही जो कार्यक्रम वहां आयोजित हुआ उसमें भी उन्होंने शिरकत की। उससे पहले एक संबोधन दिया, आइए सुनते हैं।
3: योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है।
0: तो योग दिवस के मौके पर हमारे सहयोगी देश के अलग अलग कोनों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तपस सेन गुप्ता, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, दिल्ली से आशुतोष मिश्र और विजयवाड़ा जहां योग गुरु रामदेव थे वहां से पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं. तो अलग अलग इलाके लेकिन आज तक के रिपोर्टर्स हर जगह मौजूद. शुरुआत करते हैं कोलकाता से क्योंकि रेड रोड का कार्यक्रम अभी अभी संपन्न हुआ है. तपस आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा कार्यक्रम और वहां से निकलते हुए लोग क्या कह रहे हैं.
4: जी देखिए कार्यक्रम काफी सफल रहा है क्योंकि हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे. रेड रोड जो ऐतिहासिक रेड रोड है पूरी तरीके से खचाखच भर चुका था और यहाँ काफी सारे लोग अब खत्म होने के बाद वापस लौट रहे हैं. उनसे ही बात करते हैं कैसा रहा आज.
5: सर आज का दिन बंगाल के लिए एकदम नया सूरज लेके आया है. कल और आज पहला बार कल बंगाल में बंगाल दिवस मनाया गया और आज योगा दिवस 12 साल से लास्ट विगत 12 सालों से जगह जगह मनाया जा रहा था लेकिन बंगाल में नहीं हो रहा था. लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन वो हर चीज में परिवर्तन लाया है. ठीक है मैं एक स्कूल टीचर हूँ, स्कूल में हेड टीचर हूँ. स्कूल में भी अभी जाके योगा कराना है. वहाँ 9 बजे हम बच्चों को बुलाए हैं और इससे मैंने हेल्थ और माइंड दोनों फ्रेश रहता है और मैं अपने स्कूल में डेली ये चीज हम लोग का होता है.
4: ये बताइए प्रधानमंत्री का मौजूदगी आज कोलकाता के रेड रोड पे क्या अलग ऊर्जा पैदा करेगा.
6: बहुत ही गरिमामय उपस्थिति थी और प्रधानमंत्री जी के चलते ही पूरे विश्व में योग को स्थापित किया गया है और पूरा विश्व उन्हीं के चलते योग को जान पाया है.
4: इतने दिनों से हमने देखा योगा दिवस पालन होते हुए.
0: तपस वक्त हमारे पास थोड़ा कम है अब अमन आपके पास आते हैं. चंडीगढ़ में कैसा माहौल रहा.
7: देखिए सफल रहा अंजलि और क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार बड़े स्केल पर योग दिवस मनाया गया और राज्यपाल पंजाब के और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया और सैकड़ों की तादाद में यहां पर बच्चे बुजुर्ग शहरवासी अधिकारी यहां पर मौजूद थे. और हल्की सी एक फीडबैक जो यहां पर आए क्योंकि आप हॉकी अकेडमी रन करते हैं, फिटनेस में आप जुड़े हुए हैं, क्या इम्पैक्ट आपको लगता है क्योंकि पिछली बार तो नहीं था इस स्केल पर.
8: पिछली बार थोड़ा कम था लेकिन इस बार बहुत ज्यादा है और बड़ी तादाद में बच्चे भी आए हैं और बुजुर्ग भी आए हैं क्योंकि ये एक योगा जो है अगर रूटीन में किया जाए और जिम जाने से पहले ये लोग जिम जाते हैं या दवाई खाते हैं वहाँ वो मसल्स बनाते हैं या फिटनेस करते हैं. योग जो बहुत अच्छा है अगर रूटीन में योग किया जाए तो एक आयुर्वेद की दवाई की तरह.
7: जी किस तरीके का कार्यक्रम था.
8: इसके गवर्नर साहब आए थे और बहुत बढ़िया कार्यक्रम था.
7: तो आप देखिए और यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ था और इसके अलावा भी पूरे पंजाब में हरियाणा में पार्क से लेकर बड़े स्टेडियम्स तक हर कहीं इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया और लोगों ने एक साथ साथ जो एक इंस्पिरेशन उनकी है उस पर इंस्पिरेशन भी ली है अपने आप को फिट रखने की, अपने आप को डिसिप्लिन रखने की और अपने उद्धान की और ऐतिहासिक तौर पर जिस तरीके से भारत की संस्कृति से योग जुड़ा हुआ है तो उसको भी लोग याद करके छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग.
0: जी बिल्कुल अमन. और सीधा रुख करते हैं पूजा का जो विजयवाड़ा में मौजूद है. पूजा बहुत ही भव्य कार्यक्रम था वहां और खुद योग गुरु रामदेव मौजूद थे वहां. क्या हुआ आज.
9: देखिए अब तो कार्यक्रम संपन्न हो गया है अंजलि लेकिन काफी भव्य कार्यक्रम था आंध्र प्रदेश के विजयवाड़े पे जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन था और उसका आयोजन काफी ज्यादा अच्छे से किया गया था. बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया, 1000 से भी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे. योग गुरु स्वामी रामदेव और साथ ही उनके साथ बालकृष्ण आचार्य थे और चंद्रबाबू नायडू भी खुद इस आयोजन में पहुंचे थे. उन्होंने भी योगासन किया. स्वामी रामदेव ने सभी को अच्छे से योग यहां पर कराया. लंबी आयु के लिए योग जो हमारा इस बार का थीम है और उसी के थ्रू उन्होंने उसी जैसे योग कराए ताकि जब लंबी उम्र से पहले आप योग करें. तो देखिए अंजलि मैं आपको ये बता दूं कि एक दिशा के रूप में भी इस योग को प्रस्तुत किया गया जिसमें योगासन थे, प्राणायाम था, मलखम लगा हुआ था और इस आयोजन में पारंपरिक कुश्ती भी हुई थी, योग चिकित्सा, पंचकर्म, षष्ठकर्म, एक्यूप्रेशर तक करवाया गया था ताकि लोग घर बैठे आसानी से उस योग को कर सके। एक्यूप्रेशर का महत्व भी स्वामी रामदेव ने बताया, स्वस्थ कैसे रहा जाए, अपने जीवन में योग को कैसे उतारा जाए ये स्वामी रामदेव ने बताया था कि व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी और साथ ही ड्रोन की व्यवस्था भी वहां पर थी, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था वहां पे की गई थी। तो अब फिलहाल आयोजन संपन्न हो गया। अंजलि
0: जी बिल्कुल, और अब सीधा रुक करते हैं दिल्ली का जहां आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष, वहां पे भी कई जानी मानी हस्तियां आई थी आज।
10: और देखिए, संदेश देना बहुत बड़ी बात होती है ना सेलिब्रिटी, और जब बड़े लोग होते हैं ना तो एक मैसेज ऐड कर देता है। मेरे साथ देखिए मोना सिंह है। मोना सिंह ने कोविड के टाइम में, वैसे फिटनेस एंथुसियास्ट हम सब जिम में जाते रहते हैं, लेकिन मुझ में और मोना में एक चीज कॉमन है कि जब कोविड का समय आया तो हम लोग योगा की तरफ गए कि आप अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। मोना, कितना फर्क पड़ा? सबसे ज्यादा क्या होता है ना, जैसे हमारे कई सारे कलीग्स हैं वो ऑफिस में बैठते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब यहां पर हम एक सिंबल तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन कोई एक टिप अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा कुछ बताएं कि अगर हम दफ्तर में बैठे हों, सर्वाइकल की समस्या, बैठे बैठे दर्द होती है, क्या ऐसा कोशिश करें कि जिससे वो चीजें बदल जाए?
11: बेसिकली तो हर पोज में हमारी स्पाइन इंक्लूड होती है, तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखने के लिए हम थोड़ी सी स्पाइनल ट्विस्ट कर सकते हैं चेयर पे, ठीक है। हमारे शोल्डर बहुत फ्रोजन हो जाते हैं क्योंकि एज इट इज पोजिशन में बैठ के हमें काम करना होता है या फोन कॉल्स लेनी होती है, तो उसके लिए हम अपने हैंड्स पीछे से पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हर कोई ऑल्दो नहीं पकड़ सकता, तो हम किसी भी चीज की हेल्प ले सकते हैं, कोई भी हैंड टॉवल या कोई रिमोट हो या,
10: और उतनी चीजें आसपास जरूर होती है। और देखिए अंजलि, सही बात है कि हमारे जो अपने साथी हैं जो न्यूज रूम में बैठे हैं या दूसरे जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो कॉर्पोरेट कल्चर है कि बैठे बैठे आप काम तो कर रहे हैं तो आप अपना हाथ खुद से होल्ड कर सकते हैं या फिर दूसरे, और अगर कहीं पर जब जगह मिलती है, अब जैसे थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आगे पर जाएं तो मलासन हो गया या दूसरे कई सारे ऐसे आसन हैं, और देखिए धीरे धीरे सीखने को मिलता है ना, बहुत मजा आता है। शुरू में ऐसा लगता है कि जिम में ही सब कुछ है, लेकिन आप जब जैसे जैसे समय जाते हैं आपको लगता है कि देखिए कि आप एक 70-75 किलो की बॉडी को आप अपने दोनों हाथों पर उठा सकते हैं, और इस तरह का सुख जब मिलता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ वाकई कुछ अचीव किया, दिल को खुशी होती है, मजा आता है। उसके बाद आपकी वर्कआउट या स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो इस बार का थीम है कि हम आखिर इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि ट्राइपॉड्स लगा सकते हैं, आप हेड स्टैंड कर सकते हैं, और ये सारी चीजें शुरू में लगता है अच्छा बहुत मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 1-1.5-2 महीना थोड़ा सा संतुलन रखिए, और कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन रही है कि कोविड के टाइम में आप वर्कआउट नहीं कर पाते हो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितने योगा क्लासेस होते हैं ना, मैंने कम से कम पर्सनली देखा है कि उसमें लोगों की संख्या बढ़ी है। तो मोना जैसे एंथुजियास्ट हों, हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की कि यह थोड़ा सा संतुलन जीवन में स्वास्थ्य को भी जो है प्राथमिकता दी जाए, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि इस तरह के मौके में एक रिपोर्टर के तौर पर आप शामिल होना, रिपोर्ट करना अलग है, लेकिन इनके बीच रह के एक योगा एंथुजियास्ट की तरह प्रैक्टिस करना अपने आप को उनके बीच, ये भी अपने आप में बड़ा, अब कहते ना कि सुबह सुबह बहुत अलग अनुभव होता है। अंजलि
0: बिल्कुल, और आप सुबह से तैनात थे और ये देखकर अच्छा लगा कि आप खुद भी वहां पर योगासन कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बल्कि आशुतोष आपने जो अलग अलग आसन करके दिखाए। लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं कोलकाता का, क्योंकि आज वहां अहम दिन रहा, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे, उनका दौरा चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे तपस, आज का कार्यक्रम लंबा है और व्यस्त है प्रधानमंत्री का। तपस, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। खैर, आप सबका शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, योग गुरु हैं मानसी हैं और साथ में अक्षय राठी हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि योग इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आपको बताने की कोशिश करें कि जो थीम है हेल्दी एजिंग को लेकर, उसे किस तरीके से आप भी अपना सकते हैं। तो अक्षय, हम कोशिश कर रहे थे यह जानने की कि जो लोग इस वक्त उतने स्वस्थ नहीं है, उम्र हमारी बढ़ रही है, उनके लिए कौन से ऐसे आसन हो सकते हैं जिससे उनकी मोबिलिटी, उनका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी वो बनी रहे, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप हिलते डुलते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं।
12: जी बिल्कुल, देखिए मैं इसमें सबसे पहले कहना चाहूंगा सभी लोगों के, जो जितने भी लोगों के, मतलब जो एज ब्रैकेट में जो लोग आते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, सबको अपना फिटनेस का ध्यान रखना ही चाहिए बेसिकली, और योग उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मैं एक ऐसा आसन बताना चाहूंगा जो हर उम्र के लोग कर सकते हैं और जो बहुत सारी बीमारियों में लाभकारी है, जैसे शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, हम कर रहे हैं गोमुखासन का अभ्यास। पहले दोनों पैरों को ऐसे ओवरलैप करेंगे, कोशिश करेंगे दोनों घुटने एक लाइन में आए। जब दोनों घुटने एक लाइन में आ जाएंगे, कमर को सीधा करेंगे, फिर जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर उठाएंगे और पीछे वाले दूसरे वाले हाथ को पीछे लेके जाएंगे और पीछे ग्रिप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका ग्रिप नहीं हो रहा है तो आप किसी चुन्नी का या किसी घर में कोई भी रस्सी या कोई बेल्ट हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ये जो आसन है ये बेसिकली आपकी पैनक्रियाज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है और आपका इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे शुगर में, मधुमेह में और फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए बड़ा ही लाभकारी है। जिन लोगों का कंधा का पोस्चर बिगड़ा रहता है, पोस्चर सुधारता है, फिर हाथ को ऊपर उठाते हैं और धीरे से वापस लेके आते हैं। अब इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पैर से करते हैं, पैर को चेंज करते हैं, दोनों घुटनों को ओवरलैप करते हैं। कोशिश कीजिए कि दोनों घुटने एक लाइन में रहें और दोनों हील्स आपकी हिप जॉइंट को छुए, फिर जो पैर ऊपर है वाला हाथ अप एंड ट्राई फॉर द ग्रिप बैक। कोशिश कीजिए जितना हो सकता है ग्रिप करने की कोशिश कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, जितना आपसे हो पा रहा है उसमें होल्ड कीजिए, समय लीजिए, श्वास और प्रश्वास की गति को सामान्य बनाए रखिए और जितना समय आप आसन में रुकेंगे उतना ही वो आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आसन का मतलब है आराम से किया गया पोस्चर। आराम से जितना समय देंगे किसी भी चीज को और श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाए रखेंगे उतना ही लाभकारी होगा। धीरे से वापस आएंगे और बैठेंगे सामान्य स्थिति में।
0: बिल्कुल, और शायद सबसे अहम यही हो जाता है कि आप सांस जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से योग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है वो आपको बताएं, लेकिन एक और चीज बेहद फायदेमंद होती है वो होता है खेलकूद। और अब बात करते हैं हम क्रिकेट की। भारतीय टीम ने तीसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त दे दी है और इसके साथ ही भारत ने 3-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया है। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी और रोहित यशस्वी की तूफानी बल्लेबाजी के आगे अफगानिस्तान की टीम टिक न सकी।
13: धूम धड़ाके से वनडे सीरीज जीता हिंदुस्तान, तीसरा वनडे भी हार गया अफगानिस्तान। वैसे भी कोई मुकाबला था ही नहीं दोनों टीमों के बीच, ये शनिवार को एक बार फिर साबित हो गया। चेन्नई में हुए आखिर वनडे में टीम इंडिया की सलामी जोड़ी छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो टेंशन जीतने की नहीं, टशन से जीतने की थी। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत भी आतिशी अंदाज में की, दोनों ने मिलकर खूब चौके छक्के उड़ाए। इस जोड़ी की साझेदारी खत्म करने की तमाम कोशिशें नाकाम होती चली गई। आखिरकार ये जोड़ी टूटी 170 रन के स्कोर पर, वो भी तब जब रोहित 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 79 रन बना चुके थे। दूसरे छोर पर यशस्वी जमे रहे, पहले उन्होंने अपना शतक जमाया। फिर श्रेयस के साथ मिलकर जीत पर मुहर लगा दी, वो भी शानदार छक्के के साथ। अभी भी 128 गेंद बाकी बची हुई थी। इससे पहले अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी का फैसला तो कर लिया था, लेकिन जल्दी ही प्रसिद्ध कृष्णा ने इसे गलत साबित कर दिया। उनकी गेंदें गदर ढा रही थी और रोहित शर्मा थे कि कैच पर कैच पकड़े जा रहे थे। हालात इतने बदतर थे कि 36 रन पर 4 विकेट खो चुका था अफगानिस्तान। पहले अस्मतुल्ला ने 50 रन बनाकर टीम को मुश्किलों से निकाला। फिर जाबाज कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी ने शानदार शतक जमाकर टीम की साख बचाने की हिम्मत भरी कोशिश की। उन्होंने 102 रन की पारी खेली। आज तक ब्यूरो
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
16: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
10: हाँ सर, बहुत खुशी, बहुत खुश है सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स, हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा, और हम लोग बहुत खुश है सर, इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

0: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
1: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
2: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
3: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
2: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: 3.8 बिलियन डॉलर की निश्चित सैन्य मदद देता है, जिसमें से 500 मिलियन डॉलर सिर्फ मिसाइल डिफेंस के लिए होते हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई लाइन का है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस जिन अत्याधुनिक F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स के दम पर ईरान और लेबनान में तबाही मचाता है, वो सब 100% अमेरिकी है। इसराइल के कुल हथियार आयात का 69% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। इस 3 महीने की लंबी जंग में जब इसराइल के तोप के गोले और गाइडेड बम खत्म होने की कगार पर पहुंचे, तो अमेरिका ने आपातकालीन एयरलिफ्ट के जरिए हजारों टन गोला बारूद यरूशलम पहुंचाया। लेकिन इसराइल के लिए अमेरिका सिर्फ बारूद का सौदागर नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा ग्लोबल डिप्लोमेटिक बॉडीगार्ड भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में जब भी पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाती है, अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलग थलग होने से बचा लेता है। इतिहास में अमेरिका ने 45 से ज्यादा बार इसराइल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसराइल अमेरिका पर इतना निर्भर है तो नेतन्याहू ट्रंप की बात क्यों नहीं मान रहे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसराइल के पास कुछ महीनों की जंग, अकेले लड़ने का हथियारों का बफर स्टॉक और खुद की मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री जैसे एल्बिट सिस्टम्स जरूर है, लेकिन अगर ईरान के साथ लंबी खींचने वाली जंग होती है तो अमेरिका के बिना इसराइल की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसों की बदौलत इसराइल सुरक्षित है, इसलिए उसे वॉशिंगटन के शांति रोड मैप का सम्मान करना ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। नेतन्याहू जानते हैं कि अमेरिकी मदद के बिना ईरान से लंबा युद्ध लड़ पाना उसके लिए संभव नहीं है, इसीलिए वो ट्रंप की लाइन को पूरी तरह काटे बिना आखिरी क्षण तक अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय का खेल खेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

ये इसराइल का अजेय सुरक्षा कवच आयरन डोम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कवच की असली चाबी वॉशिंगटन के पास है। आंकड़ों की बात करें तो साल 1948 में इसराइल के जन्म के बाद से अब तक अमेरिका उसे $158 बिलियन यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी सैन्य मदद दे चुका है। मौजूदा 10 वर्षीय समझौते के तहत अमेरिका हर साल इसराइल को

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने 35,000 लोगों के साथ मनाया योग उत्सव। कहा, संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। योग दिवस पर अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने किया योग। राज्यों में मुख्यमंत्रियों का भी कार्यक्रम, बर्फीले पहाड़ों पर जवानों का भी योग। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। 5,000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा। लीक प्रूफ टेस्ट के लिए 1,38,000 कैमरों से नजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। सूत्रों से बड़ा खुलासा। चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। और अमेरिका ईरान डील पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हुए उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। पहुंच चुकी है ईरान की टीम। परमाणु कार्यक्रम से लेकर लेबनान संकट पर होगी बात।

देशभर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन। कोलकाता के रेड रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने 35,000 लोगों के साथ मनाया योग उत्सव। कोलकाता से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, योग रखता है स्वस्थ, दुनिया को भी जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी बोले, योग स्वास्थ्य और एकता का सशक्त माध्यम, योग से स्वस्थ शरीर एकजुट विश्व का निर्माण संभव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश, योग का वैश्विक महत्व, योग सबको जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नौसेना के जवानों ने अपनाई थीम, किया योगाभ्यास, जवानों ने दिखाया फिटनेस का जज्बा। पेंगोंग झील के किनारे जवानों ने किया योग, ऊंचे पहाड़ों से दिया फिटनेस का संदेश। योग दिवस पर देशभर में दिखा योग उत्साह, बड़े नेताओं ने किया योगाभ्यास। गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया योग। जालंधर में योग दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया योगाभ्यास। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी लिया हिस्सा। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह बने कार्यक्रम का हिस्सा और किया योगाभ्यास। शिलोंग में मनाया जा रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने किया योगाभ्यास। मुंबई में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उत्तराखंड की चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शामिल होकर किया योगाभ्यास। ओडिशा के भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें संस्करण का आयोजन, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कार्यक्रम में हुए शामिल। मुंबई में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी में शामिल हुए राहुल गांधी। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी धीरज देशमुख से हुई और उसकी साझा तस्वीरें की गई और शादी में साथ दिखे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जितेंद्र आवार ने शेयर किया वीडियो। रेवती सुले की शादी में ढोल की थाप पर झूमे अनिल अंबानी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। रेवती सुले और सारंग की वरमाला सेरेमनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एंकर और वेडिंग प्लानर्स ने साझा की छलक।

अमेरिका ईरान शांति वार्ता को लेकर स्थिति साफ नहीं। ट्रंप बोले, मध्य पूर्व की सुरक्षा में अमेरिका की अहम भूमिका रही है। अमेरिका ईरान के बीच पूरी तरह से युद्ध विराम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा। हॉर्मुज स्ट्रेट में 60 दिन तक कोई टोल नहीं। हॉर्मुज पर सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों का ईरान ने किया खंडन। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का किया दावा। ईरान के दावों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नकारा। अमेरिका का दावा, हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी खुला है। हॉर्मुज की स्थिति पर अमेरिकी सेना ने बनाए रखी है नजर। ईरानी जहाजों को हॉर्मुज के पास नहीं आने की चेतावनी दी। पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस पर पीएम मोदी बोले, लग रहा है बंगाल बेड़ियों से हो गया आजाद, टीएमसी के गड्ढे भरने का काम शुरू। बंगाल में घुसपैठियों पर टीएमसी को पीएम मोदी ने घेरा, बोले संसाधनों पर घुसपैठिए थे हावी, अब सीमा पर फेंसिंग का काम जारी, पहले राज्य सरकार नहीं दे रही थी जमीन। मयूरभंज में पीएम मोदी ने ओडिशा में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बोला, डबल इंजन की सरकार में ओडिशा का विकास, लोकतंत्र के विकास का चल रहा है उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गृह जिला मयूरभंज में आयोजित किया गया विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने आदिवासियों के विकास पर दिया जोर, कहा जनजातीय विकास हमारी प्राथमिकता। मालदा के सुखदेवपुर इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे लोगों को रोका गया, बीएसएफ ने बांग्लादेशियों को घुसपैठ से रोका, बौखलाया बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। आज देश भर में नीट रीटेस्ट, 22 लाख से ज्यादा छात्रों के शामिल होने की उम्मीद। नीट यूजी के लिए एनटीए पूरी तरह तैयार, 1,38,000 सीसीटीवी कैमरों और 51,000 जैमर्स के साथ होगी परीक्षा। देश में 551 शहरों में 5,440 परीक्षा केंद्रों तथा विदेशों के 14 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा, अंग्रेजी समेत 12 भारतीय भाषाओं में एग्जाम। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस, अर्धसैनिक बल और वायुसेना भी शामिल, परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को भी सौंपी गई जिम्मेदारी। नीट की परीक्षा से पहले राहुल गांधी बोले, उम्मीद है किसी बच्चे की न टूटे उम्मीद। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट, सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई नहीं रिकॉर्ड। चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी एसआईटी कर रही है चरण पादुका बहुमूल्य हार की तलाश, सूत्रों के मुताबिक बड़ा खुलासा, चरण पादुका बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटें और शिलाएं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। राम मंदिर में दान राशि और चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप पर बीजेपी नेता विनय कटियार ने चंपत राय को बताया जिम्मेदार, कहा चंपत राय को पद से बर्खास्त करना ही पड़ेगा। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में माफिया की टूटी कमर, मिट्टी में मिल चुके हैं माफिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का बुंदेलखंड के ललितपुर जिले का दौरा, 1766 करोड़ की दी सौगात। गोरखपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, शिवसेना का कोई गुट नहीं, महाराष्ट्र में सिर्फ एक शिवसेना। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दी चेतावनी, मामला और अनागरमाए, महायुति गठबंधन अटूट। उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसदों के बागी होने पर राज ठाकरे ने नैतिकता का उठाया सवाल, नेताओं के बार बार दल बदलने की आलोचना की। पूर्व कांग्रेस नेता पवन राजे निंबालकर मर्डर केस में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के भाई पद्म सिंह पाटिल समेत 8 आरोपी बरी। 2006 में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पवन राजे और उनके ड्राइवर की गोली मारकर हुई थी हत्या। महाराष्ट्र के परभणी में मारुति मंदिर में हादसा, छत गिरने से 6 लोगों की मौत, कई घायल, प्रधानमंत्री ने जताया दुख। अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, अरदास में हुए शाम।
आज जेडीयू नेशनल काउंसिल की बैठक, बिहार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद जेडीयू की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे नीतीश कुमार। बिहार के आरा एनकाउंटर पर सियासी बवाल के बाद सम्राट सरकार का फैसला, न्यायिक जांच के आदेश जारी, एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया, कई बार जाति देखकर एनकाउंटर। बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी, 2027 अभ्यर्थी हुए पास, यूपी की श्रद्धा पांडे ने किया टॉप। किसानों को मोदी सरकार की सौगात, पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान की 23वीं किश्त, 9,44,00,000 किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर। INS दुनागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक होंगे नौसेना में शामिल, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 3 युद्धपोतों का कमिश्निंग। शिलोंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के जवानों से की मुलाकात, राजनाथ सिंह ने वायु सैनिकों के साथ स्नैक्स शेयर किए। जमुई में 581 बेटियां बनी बिहार पुलिस की सिपाही, पासिंग आउट परेड में दिखा बिहार की नवनियुक्त महिला पुलिस के जवानों का जोश। मुंबई में सांसद सुप्रिया सूले की बेटी की शादी में जुटे खास मेहमान, रेवती सूले के विवाह समारोह में दिखी शानदार। बिहार के आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में सड़कों पर उतरे युवा, कैंडल मार्च निकाल, पुलिस पर हत्या का केस दर्ज कराने की उठाई मांग। मऊ में सड़क हादसे के बाद बवाल, ग्रामीणों और पुलिस के बीच पथराव, थानाध्यक्ष घायल। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत से भड़का आक्रोश, पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। एमपी के श्योपुर में शमशान भूमि पर कब्जे से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर रखा शव, 4 घंटे तक लगाया जाम। हैदराबाद के उपल इलाके में दिन दहाड़े लूट की घटना, कॉस्मेटिक दुकान के अंदर महिला दुकानदार से हुई चेन स्नैचिंग। राजस्थान के नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार में बीच सड़क पर बाइक सवार 5 युवकों ने एक युवक को घेर कर पीटा, आरोपियों ने डंडे से पीड़ित के सिर पर हमला किया और ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाए। अकोला की कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने घंटों बाद पाया काबू। उत्तराखंड पुलिस के जवान की जिम में एक्सरसाइज के दौरान मौत, मौत की वजहों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं। एमपी के श्योपुर में शमशान भूमि पर कब्जे से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर रखा शव, 4 घंटे तक सड़क पर लगाया जाम। धौलपुर में 2 नाबालिग जुड़वा बहनों की मौत मामले में पुलिस की जांच तेज, चंबल नदी में भी चलाया सर्च ऑपरेशन। लोहरदगा में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी सवार 2 सगी बहनों और भाई की मौत। पारा हाईवे 4 लेन पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराई कार, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। इंदौर में सोशल मीडिया पर चाकू लहराने वाला बदमाश गिरफ्तार, वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई। जामनगर में फिर जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, औद्योगिक क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। ग्रेटर नोएडा में 2 दिन पहले ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर डंपर से तांडव मचाने वाला चालक गिरफ्तार, वीडियो हुआ था वायरल। पटना के बेउर जिले में जेल में छापेमारी, जेल में अचानक छापेमारी से मचा हड़कंप। जोधपुर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, 6 की तलाश जारी। रेवाड़ी में युवकों ने महिला को सम्मोहित कर निकलवाए कुंडल, वारदात सीसीटीवी में कैद। फरीदकोट में अर्श डल्ला गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार, 2 विदेशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद। हैदराबाद में व्यक्ति को कोबरा सांप के साथ खिलवाड़ करना पड़ा भारी, रेस्क्यू के दौरान सांप ने काटा, अस्पताल में हुई मौत। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 10 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध हथियार कारतूस बरामद।
चेन्नई वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा। पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 218 रन पर सिमटी। भारत ने 28.4 ओवर में ही 1 विकेट पर 224 रन बनाकर हासिल की जीत। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बनाया नाबाद 102 रन। रोहित शर्मा ने खेली 79 रन की ताबड़तोड़ पारी। भारत के प्रसिद्ध कृष्णा ने 23 रन देकर किए 5 शिकार, बने मैन ऑफ द मैच। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी की 102 रन की पारी हुई बेकार, कप्तान ने खेली 50 रन की पारी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि आपके पिता के साथ सूर्य का क्या संबंध है, सूर्य की उपासना से पिता और पिता के आशीर्वाद से सूर्य कैसे प्रबल होता है, पिता का सूर्य के साथ क्या संबंध है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं

2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 3:20 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 9:31 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 3:40 तक। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पिता का सूर्य के साथ क्या संबंध है। देखिए, सूर्य इस जगत के प्राण और पालन पोषण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य से ही इस जगत के अंदर जीवन और प्राण का संचार होता है। हमारे पिता भी हमारे प्राण और जीवन के केंद्र हैं। इस आधार पर पिता का संबंध सूर्य से माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य की स्थिति से पिता की स्थिति को समझा जाता है। इसी तरीके से पिता की स्थिति के आधार पर सूर्य को भी समझा जा सकता है। यानी आपकी कुंडली में जिस प्रकार का सूर्य है, उसी प्रकार की स्थिति आपके पिता की होगी, और जो स्थिति आपके पिता की आपके जीवन में है, वही स्थिति आपके कुंडली के सूर्य की होगी। पिता और सूर्य पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग बने हुए हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ संबंध ठीक नहीं रखते, तो इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? अगर आप अपने पिता का सम्मान ना करें, जीवन में उनके साथ संबंध ठीक ना रखें, तो जीवन में सूर्य की शुभ शक्तियां घटती जाएंगी। मान सम्मान और यश आपका घटेगा, अपयश की स्थिति जीवन में बन जाएगी। पिता का सम्मान न करने से सूर्य खराब होगा, आपको हड्डियों की समस्या होगी, हृदय रोग की संभावना भी जीवन में बन सकती है। और पिता के साथ अगर संबंध बेहतर नहीं होंगे तो आप अपने ऑफिस में देखेंगे कि आपके संबंध उच्चाधिकारियों के साथ अच्छे नहीं होंगे और बार बार आपके रोजगार में समस्याएं पैदा होंगी। तो कुल मिलाकर अगर आप अपना संबंध अपने पिता के साथ बेहतर नहीं रखते हैं तो जीवन में सूर्य की शुभता नहीं रहेगी, अपयश के शिकार होंगे और जीवन में तालमेल बैठाने में मुश्किल पैदा होगी। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का,
अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अभिलाषा जी ने हमें लिखा है और अभिलाषा जी बेंगलोर से हमें मेल लिखती हैं। 6 मार्च 1981 का जन्म है, जन्म का समय है सुबह के 10:45 और जन्म का स्थान है इंदौर। मेल लिखती हैं बेंगलोर से। अभिलाषा कह रही हैं कि नौकरी में दिक्कतें बहुत आ रही हैं और मैं नौकरी बदलना चाहती हूं लेकिन उचित मौका नहीं मिल पा रहा है, तो नौकरी कब तक बदलेगी और करियर कैसा रहेगा? अभिलाषा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है और अगर आप प्रयास करें तो साल 2026 के अंत तक जाते जाते आपकी नौकरी बदलेगी और नौकरी का बदलना इस समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा, सही रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा इस साल में सावधानी रखिएगा, आंखों की या डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे सकती है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक मोती, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें तो आपको लाभ होगा। अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके साथ संबंध ठीक रखते हैं तो परिणाम क्या होंगे? अगर पिता का सम्मान करेंगे तो आपकी कुंडली में बिगड़ा हुआ सूर्य, खराब सूर्य मजबूत होगा, मान सम्मान जीवन में बढ़ेगा, नाम और यश मिलेगा, नाम यश की कमी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी। जो लोग अपने पिता का सम्मान करते हैं उनको सूर्य का वरदान मिलता है, प्रशासन और राजनीति में बड़ी सफलता मिलती है और ऐसे लोग जीवन में छोटा काम भी करें तो उनका मान सम्मान और उनका नाम यश बढ़ जाता है। चर्चा हमारी जारी है लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ होगा, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक चिंता समाप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

लोग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, तो पिता के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसे रहें कि आपकी कुंडली का सूर्य प्रबल हो? देखिए, रोज सुबह और शाम दोनों समय अपने पिता के चरण स्पर्श करिएगा। पिता के अन्न वस्त्र और चिकित्सा में उनकी देखभाल में कमी ना आने दें। संभव हो तो पिता के साथ रहिए। आपके कमरे के साथ ही पिता का कमरा हो, पिता का कक्ष हो तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी रविवार के दिन पिता के हाथ से तांबे या सोने की कोई वस्तु ले लीजिए और इसको हमेशा अपने पास रखिए, इसको हमेशा प्रयोग करिएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके संबंध पिता के साथ बेहतर ना हो, पिता का आशीर्वाद जीवन में कम हो, तो पिता के साथ संबंध ठीक रखने के लिए सूर्य की उपासना कैसे करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। जल अर्पित करने के बाद पूजा स्थान पर बैठकर या सूर्य देव के सामने बैठकर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा या गाय को गुड़ खिलाइएगा। रविवार को नमक, अदरक और सरसों के तेल का सेवन करना बंद कर दीजिएगा। अगर आप सूर्य की विधिवत आराधना करेंगे तो आपके संबंध आपके पिता के साथ बेहतर होंगे और सूर्य की आराधना करने से पिता का स्वास्थ्य और पिता का जीवन भी अच्छा होगा। देखिए, आज फादर्स डे है और दुनिया भर में लोग आज अपने पिता को याद कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। हालांकि भारतीय परंपरा में पिता का रोज सम्मान होता है और माता पिता को ईश्वर से ऊपर का दर्जा भी दिया गया है। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, आपके ग्रह कितने भी बेहतर हो, अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी किस्मत खराब होती चली जाएगी और जीवन में आपको भाग्य की कमी होगी और आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, कुंडली कितनी भी खराब हो, कितनी भी गड़बड़ हो, माता पिता के आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि,
व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

होता जाएगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, पारिवारिक समस्या हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रीन।

की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, आर्थिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम बाधाओं का, तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि अगर सूर्य दिखाई न दे तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ा देना चाहिए। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, सूर्य को जो आप जल चढ़ाते हैं उसका फायदा तब मिलता है जब सूर्य की किरणें जल के माध्यम से होकर आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। अगर सूर्य के दर्शन नहीं होंगे तो उसकी किरणों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, और अगर किरणों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा तो जल चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अगर घर के सामने बिल्डिंग है या किसी भी कारण से सुबह सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते तो ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके सूर्य के 21 नाम पढ़ने चाहिए। ऐसा करने से भी लाभ होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर

होंगे। नंबर चार, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर पांच, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर छह, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर सात, वाहन सावधानी से चलाइएगा। नंबर आठ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर नौ, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।

मिनट तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना

अगला प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है और विकास जी हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 11 दिसंबर 1998। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म का स्थान है सिरसा हरियाणा। मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। ये कह रहे हैं कि मैं अभी चंडीगढ़ में एक सामान्य सी नौकरी कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आगे चल करके अपना व्यापार करूं, तो क्या मेरे लिए अपना व्यापार करना बेहतर होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप भविष्य में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर का, ऑटोमोबाइल का, ये सब में से कोई व्यापार करते हैं, टेक्नोलॉजी का व्यापार करते हैं, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। और आपकी कुंडली के हिसाब से आपको व्यापार करना चाहिए जून 2027 के बाद। आपका करियर ठीक हो, आप व्यापार में सफल हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा।

सिंह राशि के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि के लोगों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज सप्तमी तिथि है, इसके स्वामी हैं सूर्य, तो आज सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाइए और जब भी मौका मिले आज जल और गुड़ का अगर दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
0: भारत की अपनी
2: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two, headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: सवारी सोकुडो
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबा केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर,

0: तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 समिट के दौरान शांति समझौते के MOU पर साइन किए। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने पीस डील के MOU पर दस्तखत किए, लेकिन जिस वक्त MOU पर साइन हुए उस वक्त ईरानी राष्ट्रपति अकेले थे। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। डील पर दस्तखत हो गए, लेकिन अब शांति समझौते के MOU पर ईरान क्यों और कैसे राजी हुआ, इसका खुलासा ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई ने किया। पीस डील पर पहली बार मुज्तबा खामिनई ने बयान दिया है। ईरान अमेरिका शांति समझौते को लेकर मुज्तबा खामिनई ने 5 बड़ी बातें कही। नंबर 1, ईरान बात करेगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। नंबर 2, शांति समझौते के मसौदे से सहमत नहीं था। नंबर 3, ईरानी राष्ट्रपति के कहने पर मंजूरी दी। नंबर 4, ट्रंप शांति समझौते के लिए बहुत बेचैन थे। नंबर 5, अंतिम समझौता भी ईरान की शर्तों पर होगा। दरअसल शांति समझौते को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई के इस बयान के 3 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, अमेरिका के साथ पीस डील को लेकर ईरान में विरोध की आवाज को शांत करना। दूसरा, अमेरिका के साथ आगे की बातचीत के लिए जमीन तैयार करना। तीसरा, अगर अमेरिका के साथ हुआ शांति समझौता रद्द होता है तो ठीकरा ईरान के राष्ट्रपति के सिर फोड़ना, क्योंकि ईरानी सेना और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति और नियत पर भरोसा नहीं है। मुज्तबा का बयान उस वक्त आया है जब शांति समझौते के बाद भी ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। मतलब यही है कि ट्रंप दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि डील अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की मजबूरी थी।
1: If they don't, then that's, you know, that's okay. We'll have to start the process again. And we don't lose. We have the greatest military in the world. We have the greatest blockade. The naval blockade was 100% effective.

भारत में दवाओं की दुनिया में एक बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। वजन कम करने की दवा जो कभी अमीरों की पहुंच तक सीमित थी, अब आम लोगों के लिए सस्ती होती दिख रही है। डायबिटीज और मोटापे से परेशान करोड़ों लोगों के लिए तो ये खबर बहुत बड़ी राहत लेकर आई। दरअसल नोवो नॉर्डिस्क की चर्चित दवाओं ओजेम्पिक और विगोवे में इस्तेमाल होने वाला एक्टिव केमिकल सेमाग्लूटाइड का पेटेंट भारत में खत्म हो गया है। इसके बाद देसी कंपनियों ने बाजार में सस्ती दवाएं उतारनी शुरू कर दी है। इससे इलाज की लागत में करीब 70% तक कमी आने की संभावना है। अनुमान है कि आने वाले समय में 40 से ज्यादा कंपनियां 50 से ज्यादा वेरिएंट्स ला सकती हैं। इसका सीधा असर आम मरीज की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि उनको कम कीमत में मोटापे की दवा मिल सकती है। भारत की बड़ी फार्मा कंपनियां इस मौके

0: को तेजी से बना रही हैं और ग्लोबल मार्केट पर नजरें टिकाए हुए हैं।
1: एंड एज यू वुड नो दैट दिस इज वन ऑफ दी लार्ज मार्केट्स दैट हैव ओपनड अप फर्स्ट व्हिच इज इंडिया एंड वी आर हैप्पी दैट वी आर एबल टू डू अ डे वन लॉन्च फॉर दिस प्रोडक्ट। वी एक्सपेक्ट सेवरल ऑफ दी इमर्जिंग मार्केट्स एंड ऑफ कोर्स कनाडा ऑल्सो टू ओपन अप ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स।
0: कंपनियों की सोड़ का फायदा अगर मरीजों को मिलेगा तो इससे मोटापे का इलाज करने वाले बाजार का आकार भी बढ़ेगा जो आने वाले वर्षों में करीब $100 अरब तक पहुंच सकता है। कंपनियों की कनाडा, ब्राजील, लैटिन अमेरिका और तुर्की जैसे बाजारों पर नजर है और भारत सस्ती दवाओं के जरिए ग्लोबल प्लेयर बनने की तैयारी में जुट गया है। अगर अलग अलग कंपनियों के ऑफर्स की बात की जाए तो सन फार्मा से महीने भर के इलाज का खर्च 3,000 से 8,000 रुपए, डॉक्टर रेडीज से 4,200 रुपए, जॉयडस से औसतन 2,200 रुपए, टोरेंट की शुरुआती कीमत करीब 3,999 रुपए, ग्लेनमार्क की 1,300 से 1,760 रुपए, अल्केम की कीमत 1,800 रुपए, एरिस लाइफ साइंसेज से इलाज का खर्च करीब 1,290 रुपए महीने होगा। यानी पहले जो दवाएं $1,000 में मिलती थी वही अब भारत में ₹1,000 में उपलब्ध हो रही हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो डायबिटीज और मोटापे से जूझ रहे हैं और महंगे इलाज की वजह से दवा नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही ये भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है क्योंकि सस्ती दवाओं के दम पर दुनिया के फार्मा मार्केट में भारत अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। दवा सस्ती होने से इलाज आसान होगा और यही बदलाव आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है। आज तक ब्यूरो
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: और अब बात नीट यूजी परीक्षा की। आज नीट की दोबारा परीक्षा होगी। नीट को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। नीट को लीक प्रूफ बनाने के लिए एक दिन पहले मॉक ड्रिल भी की गई थी और आज परीक्षा का दिन है। 22 लाख से ज्यादा बच्चे, 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस बार कोई चूक की गुंजाइश है कि नहीं, सभी बच्चे एकदम निश्चिंत होकर परीक्षा में बैठे। दोपहर 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी।
5: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
4: और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, राम मंदिर चढ़ावा कांड से जुड़ी हुई खबर। SIT लखनऊ वापस लौट गई है। सूत्रों की माने तो आज ही SIT अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। बड़ी खबर आ रही है कि शुरुआती जांच के लिए सरकार ने एक हफ्ते का समय रखा था और आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन बीती रात ही SIT अपनी जांच पूरी करके लखनऊ लौट चुकी है। कुछ नाम सामने आए हैं, उसमें मुख्य रूप से लवकुश मिश्र, अनुकल्प मिश्र, मनीष यादव, रामशंकर और राजेश पाठक, इन सब से SIT ने गहन पूछताछ की। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। 5,000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एनटीए पर भरोसा रहे, जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंट और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया योग उत्सव। कहा, संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। मंत्रियों मुख्यमंत्रियों का भी योग। योग दिवस पर अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने किया योग। राज्यों में मुख्यमंत्रियों का भी कार्यक्रम। बर्फीले पहाड़ों पर जवानों का भी जोश। और अमेरिका ईरान डील पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हुए उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। पहुंच चुकी है ईरान की टीम। परमाणु कार्यक्रम से लेकर लेबनान संकट पर होगी बैठक। अब देखते हैं 100 शहर 100 खबर।

देश भर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन। कोलकाता के रेड रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने 35,000 लोगों के साथ मनाया योग उत्सव। कोलकाता से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, योग रखता है स्वस्थ, दुनिया को भी जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, योग स्वास्थ्य और एकता का सशक्त माध्यम, योग से स्वस्थ शरीर एकजुट विश्व का निर्माण संभव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश, योग का वैश्विक महत्व, योग सबको जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नौसेना के जवानों ने अपनाई थीम, किया योगाभ्यास, जवानों ने दिखाया फिटनेस का जज्बा। पेंगोंग झील के किनारे जवानों ने किया योग, ऊंचे पहाड़ों से दिया फिटनेस का संदेश। योग दिवस पर देश भर में दिखा योग उत्साह, बड़े नेताओं ने किया योगाभ्यास। गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया योग। जलंधर में योग दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया योगाभ्यास। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिया हिस्सा। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह बने कार्यक्रम का हिस्सा और किया योगाभ्यास। शिलांग में मनाया जा रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने किया योगाभ्यास। मुंबई में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उत्तराखंड की चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शामिल होकर किया योगाभ्यास। ओडिशा के भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें संस्करण का आयोजन, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कार्यक्रम में हुए शामिल। मुंबई में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी में शामिल हुए राहुल गांधी। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी धीरज देशमुख ने साझा की खास तस्वीरें, शादी में साथ दिखे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जितेंद्र आवाड़ ने शेयर किया उनका वीडियो। रेवती सुले की शादी में ढोल की थाप पर झूमे अनिल अंबानी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। रेवती सुले और सारंग की वरमाला सेरेमनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एंकर और वेडिंग प्लानर्स ने साझा की झलक। अमेरिका ईरान शांति वार्ता को लेकर स्थिति साफ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बोले, मध्य पूर्व की सुरक्षा में अमेरिका की अहम भूमिका रही है। अमेरिका ईरान के बीच पूरी तरह से युद्ध विराम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, और हॉर्मुज स्ट्रेट में 60 दिन तक कोई टोल नहीं। हॉर्मुज पर सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों का ईरान ने किया खंडन, ईरान ने हॉर्मुज बंद करने का किया दावा। ईरान के दावों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नकारा, अमेरिका का दावा हॉर्मुज अभी भी खुला है। हॉर्मुज की स्थिति पर अमेरिकी सेना ने बनाई रखी है नजर, ईरानी जहाजों को हॉर्मुज के पास नहीं आने की चेतावनी दी। आज देश भर में नीट रीटेस्ट, 22 लाख से ज्यादा छात्रों के शामिल होने की उम्मीद। नीट यूजी के लिए एनटीए पूरी तरह से तैयार, 1,38,000 सीसीटीवी कैमरों और 51,000 जैमर्स के साथ होगी ये परीक्षा। देश में 551 शहरों में 5,440 परीक्षा केंद्रों तथा विदेशों में 14 केंद्रों पर आयोजित होगी ये परीक्षा, अंग्रेजी समेत 12 भारतीय भाषाओं में एग्जाम। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस, अर्धसैनिक बल और वायुसेना भी शामिल, परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन को भी सौंपी गई जिम्मेदारियां। नीट की परीक्षा के पहले राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा उम्मीद है कि किसी बच्चे की न टूटे उम्मीद। नीट यूजी री एग्जाम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को बिना डर के परीक्षा देने की अपील की,
एनटीए और सभी प्रशासन पर जताया पूरा भरोसा। नीट यूजी री एग्जाम में करीब 22 लाख छात्र परीक्षा में होंगे शामिल। शिक्षा मंत्री ने कहा बच्चों के भविष्य से छेड़छाड़ न हो, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। शिक्षा मंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर बोला हमला, कहा अगर आप जिम्मेदार हैं और भारत के सच्चे नागरिक हैं तो बच्चों को परेशानी में न डालें, उनकी तकलीफ न बढ़ाएं। सीबीएसई के बाकी नतीजों को शिक्षा मंत्री ने जल्द जारी करने का किया है दावा। 17 लाख में से 15.5 लाख छात्रों के रिजल्ट हो चुके हैं जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा री इवैल्यूएशन, री असेसमेंट और री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लगभग हो चुकी है पूरी। पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस पर पीएम मोदी बोले लग रहा है बंगाल बेड़ियों से हो गया है आजाद, टीएमसी के गड्ढे भरने का काम शुरू। बंगाल में घुसपैठियों पर टीएमसी को पीएम मोदी ने घेरा, बोले संसाधनों पर घुसपैठिए थे हावी, अब सीमा पर फेंसिंग का काम जारी, पहले राज्य सरकार ने नहीं दी जमीन। मयूरभंज में पीएम मोदी ने ओडिशा में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कहा डबल इंजन की सरकार में ओडिशा का विकास, लोकतंत्र के विकास का चल रहा है उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गृह जिला मयूरभंज में आयोजित किया गया विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने आदिवासियों के विकास पर दिया जोर, कहा जनजातीय विकास हमारी प्राथमिकता। मालदा के सुखदेवपुर इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे लोगों को रोका गया, बीएसएफ ने बांग्लादेशियों को घुसपैठ से रोका, बौखलाया बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट, सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका बहुमूल्य हार और चांदी की ईंट और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी एसआईटी कर रही है चरण पादुका बहुमूल्य हार की तलाश, सूत्रों के मुताबिक चरण पादुका और इस हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। राम मंदिर में दान राशि और चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप पर बीजेपी नेता विनय कटियार ने चंपत राय को बताया जिम्मेदार, कहा चंपत राय को पद से बर्खास्त करना पड़ेगा। झांसी में मुख्यमंत्री योगी बोले यूपी में माफिया की टूटी कमर, मिट्टी में मिल चुके हैं माफिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुंदेलखंड के ललितपुर जिले का दौरा, 1766 करोड़ की दी सौगात। कोल्हापुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह अब शिवसेना का कोई गुट नहीं, महाराष्ट्र में सिर्फ एक शिवसेना। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को दी चेतावनी, कहा मामला और नगरमाए, महायुति गठबंधन टूट। उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसदों के बागी होने पर राज ठाकरे ने नैतिकता का उठाए सवाल, नेताओं के बार बार दल बदलने की आलोचना की। पूर्व कांग्रेस नेता पवन राजे निंबालकर मर्डर केस में डिप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार के भाई पद्म सिंह पाटिल समेत 8 आरोपी बरी, 2006 में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पवन राजे और उनके ड्राइवर की गोली मारकर हुई थी हत्या। महाराष्ट्र के परभणी के मारुति मंदिर में हादसा, छत गिरने से 6 लोगों की मौत, कई घायल, प्रधानमंत्री ने जताया दुख।

0: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
1: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
0: Smartless.
2: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
0: Marketplace.
3: Big three on the program today, or, you know, the big three of
0: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी. आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है. यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता. उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा. वो कपड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे. किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की. जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी. विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा. लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
5: जी,
4: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है. कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है. और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने, मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था. जो ट्रस्ट का SBI से एग्रीमेंट है, SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया. आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु, अंगूठी, कड़ा,
5: चेन,
4: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक वो जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे. भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है. यह है उसका विश्वास. अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं. मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थी और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था. और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए. ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई. ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी. तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है.
6: एक वक्त था जब योग, पार्क, आश्रम और घर के किसी शांत कोने तक सीमित नजर आता था. फिर 2015 में दुनिया ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और इसके बाद योग की पहुंच लगातार बढ़ती चली गई.
5: ये सीधी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कोलकाता से, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी 3 युद्ध पोतों की कमिश्निंग में शामिल हो रहे हैं। ये 3 युद्ध पोत भारतीय नौसेना को नया बल देंगे। ये भारत में ही बने हैं, मेड इन इंडिया का प्रतीक है। और इस वक्त तस्वीरें हैं सीधी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये युद्ध पोत आप इस वक्त देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जिन्हें कमीशन करेंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी। तो आज योग दिवस के कार्यक्रम के बाद सीधा उन्होंने रुख किया इस पोर्ट का, जहां के 3 युद्ध पोत भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले हैं। ये तीनों अलग अलग प्रकार के युद्ध पोत हैं, अलग अलग क्षमता रखते हैं।
7: प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया सभा को संबोधित करें।
8: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री आर एन रवि जी, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवेंदु अधिकारी जी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल संजय भल्ला, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गार्डन ब्रिज शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स दूनागिरी संशोधक एवं आग्रह, सम्मानित वेटरन्स, जीआरएसी की कर्मचारी एवं कार्मिक गण, देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना के लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि आज के इस स्ट्राइक कमीशनिंग समारोह में, जहां 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स दूनागिरी संशोधक और आग्रह नौसेना में शामिल हो रहे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आज इस समारोह में आपका आना हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है और भारत के समुद्री विकास तथा उसकी बढ़ती शक्ति की प्रति आपके सहयोग और दूरदर्शिता का प्रमाण है। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। इस अवसर पर हमारे बीच पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं, ये हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। मैं रक्षा मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और योगदान से यह 3 जहाज कल्पना से लेकर कमिश्निंग तक पहुंचे हैं। हमारे बीच उपस्थित वेटरन्स का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनमें से कई भूतपूर्व दूनागिरी और आग्रह पर सेवा कर चुके हैं। देश के सामुद्रिक सुरक्षा को साकार करने में जीआरएसी एक लंबे समय से भारतीय नौसेना का विश्वसनीय साझेदार रहा है। आज इस स्ट्राइक कमीशनिंग की उपलब्धि के अवसर पर मैं जीआरएसी की समर्पित टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स और एमएसएमईज को भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से यह सफलता प्राप्त हो चुकी है। नेवल हेडक्वार्टर्स, कमांड हेडक्वार्टर्स, वॉरशिप ओवरसीइंग टीम्स और ट्रायल एजेंसीज भी बधाई के पात्र हैं, जो इन तीनों जहाजों के निर्माण में शुरू से ही मेहनत और लगन के साथ जुड़े रहे हैं।
5: तो कार्यक्रम जारी है, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
12: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
13: Oh, ouch.
12: However you make money work, we can work with that.
14: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
15: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
16: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
15: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
17: बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा, क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
18: जो राजभर जी हैं, उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
17: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं, तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
19: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता।
20: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
17: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है, या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
21: राम मंदिर के दान को कितनों ने लूटा? राम भक्तों का दान किसने लूटने दिया? कितने किरदार और कितने राजदार? क्या गुनहगारों के चेहरे होंगे बेनकाब? हे राम, चोरी किसका काम? आरोप यही है कि आस्था के जिस मंदिर में राम भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया, उसी राम मंदिर में बीते 8 महीनों से दान पेटियों से चढ़ावे की रकम को चोर हजम कर रहे थे। चोर दान पेटियों को खाली करते रहे और जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे रहे। अब चढ़ावा चोरी के इन्हीं सनसनीखेज आरोपों की जांच एसआईटी कर रही है। शुरुआती जांच में एसआईटी को शक है कि सुनियोजित साजिश के तहत सिंडिकेट बनाकर राम मंदिर के चढ़ावे की राशि और जेवरात पर हाथ साफ किए गए। यही वजह है कि राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े जिम्मेदारों की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन राम मंदिर में पलीता कौन लगा रहा है? किसने राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया है? कौन है वो चढ़ावा चोर जिसने राम मंदिर की दान पेटियों को भी नहीं छोड़ा? ये तब है जब राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण ने भारतीय जनता पार्टी के चमत्कारी उत्थान की पटकथा लिखी। तो क्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी कांड ने विपक्ष को बैठे बिठाए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा थमा दिया? आरोप प्रत्यारोप को सियासी चश्मे से देखा जा सकता है, लेकिन राम मंदिर के दान से हुए खिलवाड़ का मामला जितना संगीन है, उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज है। क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोपों की आंच राम मंदिर की देखरेख करने वाले जिम्मेदारों तक पहुंच रही है। सबसे पहले आरोपों के कटघरे में खड़े किरदारों के बारे में आपको बताते हैं। किरदार नंबर एक, नाम चंपत राय, आरोप चढ़ावे की चोरी में शामिल। किरदार नंबर दो, नाम टिन्नू यादव आरोप चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड। किरदार नंबर तीन नाम गोपाल राव आरोप राम भक्तों के दान को लूटा। किरदार नंबर चार नाम अनिल मिश्रा आरोप चढ़ावा चोरी में कमीशन खाया। राम मंदिर की दान पेटियों से चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी ने संदिग्धों से पूछताछ की। एसआईटी चढ़ावा चोरी के पूरे खेल का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाने में जुटी है। इसी कड़ी में राम मंदिर के जिम्मेदारों से एसआईटी टीम पूछताछ कर चुकी है। राम मंदिर की दौलत लूटने वाले गुनहगारों के चेहरों को बेनकाब करने के लिए एसआईटी कई एंगल से जांच कर रही है। एसआईटी ने राम मंदिर में राम भक्तों की तरफ से चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए जाने वाले जेवरात का पूरा सिस्टम समझा, मतलब दान में आने वाले जेवरों का हिसाब किताब कैसे किया जा रहा है और खुलासे से पहले जेवरों पर हाथ कैसे साफ किया गया। आरोपों की जांच करते हुए एसआईटी ने राम मंदिर की दान पेटियों का साइज चेक किया ताकि पता चल सके कि दान पेटियों में कितना चढ़ावा आ सकता है। जांच टीम ने सीसीटीवी और दूसरे निगरानी इंतजामों की जांच भी की। बड़ी बात यह है कि एसआईटी ने बीते कुछ सालों में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीनों की डिटेल को खंगाला, क्योंकि आरोप ये भी है कि कौड़ियों के भाव की जमीन मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदारों ने ऊंचे ऊंचे दामों पर खरीदी।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। 5000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले एनटीए पर भरोसा रहे, जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी निभाएं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों की शिलाएं का कोई रिकॉर्ड नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाया योग उत्सव। कहा, संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग, मंत्रियों मुख्यमंत्रियों का भी योग। भारतीय नौसेना को मिले समंदर के 3 धुरंधर। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में निर्मित 3 स्वदेशी प्लेटफॉर्म दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और अमेरिका ईरान डील पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड में सजा मंच। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे अमेरिकी टीम की अगुवाई। टीम ईरान में अराक्ची और गालिबाफ परमाणु कार्यक्रम से लेकर लेबनान संकट पर बैठक।

0: जब अमेरिकी ताकत और उसके प्रभाव का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ईरान का जिक्र जरूर होगा। एक ऐसा देश जिस पर दशकों तक प्रतिबंध लगाए गए, जिसे आर्थिक तौर पर तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन युद्ध के मैदान से लेकर बातचीत की मेज तक ईरान ने दिखा दिया कि प्रतिबंध किसी देश की इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ते, बल्कि वो उसको एक हथियार बना देते हैं। ईरान के केस में वो रेजिस्टेंस है। करीब 4 महीने तक चले संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू साइन हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि जिन शर्तों को कभी अफवाह, कभी फेक न्यूज बताकर ट्रंप खारिज कर रहे थे, आज वही समझौते का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और वॉर रूम में आपका स्वागत है। एक ऐसा वॉर रूम जहां पर शांति की बात है, लेकिन शांति कहीं खत्म ना हो जाए इसका डर भी है। पश्चिम एशिया की इस बड़ी डील के 14 अहम बिंदु सामने आए हैं। सवाल यह है कि इस समझौते में किसे क्या मिला, किसने क्या खोया, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस जंग का कोई विजेता भी है। अमेरिका और ईरान तुरंत और हमेशा के लिए अपनी सभी सैन्य कार्रवाइयां रोकेंगे। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दोनों देशों ने अगले 60 दिन के भीतर फाइनल डील पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाएगा, इसके बदले ईरान हॉर्मूज जलमार्ग फिर से खोलेगा, जो शुरुआती 60 दिनों तक बिल्कुल मुफ्त रहेगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की आर्थिक योजना पर काम करेंगे। ईरान के तेल निर्यात, बैंकिंग, बीमा और ट्रांसपोर्ट पर लगी पाबंदियों में अमेरिकी ट्रेजरी की तरफ से छूट दी जाएगी। साथ ही ईरान की फ्रीज की गई विदेशी संपत्ति भी चरणबद्ध तरीके से जारी होगी। ईरान ने दोहराया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यूरेनियम का निपटारा IAEA की निगरानी में होगा। जब तक अंतिम समझौता नहीं हो जाता, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएगा और अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इस अंतिम डील को कानूनी और अंतरराष्ट्रीय वैधता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का इस्तेमाल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस मेमोरेंडम को बारीकी से देखें तो तत्काल और ठोस फायदे ईरान के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। ईरान को मिला आर्थिक सहारा। पिछले कुछ समय से ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत खराब दौर से गुजर रही है। ईरानी रियाल कमजोर से भी कमतर होता जा रहा था, महंगाई आसमान पर थी। ये डील ईरान की अर्थव्यवस्था में जान फूंक सकती है। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटने और तेल निर्यात पर छूट मिलने से ईरान की अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो सकेगी। इसका फायदा IRGC और उसकी प्रॉक्सीज को होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
1: अमेरिका ने खुद खड्डा खोदा है अपने लिए। और ओबामा की जो डील की बात करते हैं, भी बात हो रही थी, ओबामा डील में था ये केवल यूरेनियम का मुद्दा था, उसमें मिसाइल्स का मुद्दा नहीं था और हूती प्रॉक्सीज का नहीं था। तभी नेतन्याहू कहते थे नहीं तो बड़ी खराब डील है, और नेतन्याहू अमेरिका में जाके लॉबी करेगी डील को कैंसिल, ट्रंप ने करी। अब आज जो डील आ रही है, इस डील में बैलिस्टिक मिसाइल का कोई मेंशन नहीं है,
2: प्रॉक्सी का कोई जिक्र नहीं,
1: का कोई मेंशन, बल्कि रिवर्स हो गया है।
2: बिल्कुल,
1: कि भाई लेबनान को तो प्रोटेक्ट किया जाएगा, राइट? तो अमेरिका ने अपने लिए खड्डा खोदा है, नो डाउट।
0: ईरान के तेल से बैन हटने और फ्रीज संपत्ति वापस मिलने से भी ईरान फायदे में ही नजर आ रहा है, जबकि इसके बदले में उसने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई बहुत सख्त या स्थायी कदम अभी तक नहीं उठाया है। परमाणु मुद्दे के सबसे पेचीदा फैसलों को अगले 60 दिनों के लिए टाल दिया गया है, जो कि ईरान के लिए राहत की बात है। यही वजह है कि अमेरिका के भीतर ही इस डील की आलोचना शुरू हो गई। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो रही है कि वित्तीय प्रतिबंधों में ढील देना ईरान पर से सबसे बड़ा दबाव हटा लेने जैसा है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील का पुरजोर बचाव किया है। ट्रंप का कहना है कि जो लोग इस डील का विरोध कर रहे हैं वो गलत हैं।
3: A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man.
2: Who said that?
3: Donald Trump.
2: Oh, that's what I thought you were going
3: to
2: say.
3: So how do you go back to the United States and convince a skeptical American public that this deal
2: well,
3: is a win?
2: Well, look, here they lost militarily, okay? It's very tough because I know that no matter what, if I would go, by the way, if I'd go another 3 or 4 weeks, those same people that are critical would say, he went too long, he should have done, you know, no matter what. If they raised the white flag of surrender, and if they said, praise be to Allah, Donald Trump is the greatest president ever. We totally concede. We totally give up. This war is over. We have failed. The New York Times and CNN and a couple of others are not all that dishonest. They'd say Iran had a great victory. Okay.
0: Deal ke hote hi antarrashtriya bazaar mein Brent crude ke dam girkar $77 prati barrel par aa gaye hain. और अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें महीनों बाद $4 प्रति गैलन से नीचे आ गई है, जो अमेरिकी जनता के लिए राहत है। कूटनीति के समर्थकों का भी मानना है कि यह दशकों पुरानी टकराव की नीति को बदलने का एक अच्छा मौका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार फिलहाल ये डील ईरान के पक्ष में ज्यादा दिख रही है, उसे तुरंत आर्थिक राहत और सैन्य दबाव से छुटकारा मिला है। वहीं अमेरिका को तेल की कीमतों में गिरावट और युद्ध थमने से घरेलू राहत मिली, लेकिन उसके पर्पस ऑफ वॉर अभी पूरा होता दिख नहीं रहा। अब असली परीक्षा अगले 60 दिनों की बातचीत में होगी, जहां परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम जैसे मुश्किल मुद्दों पर फैसला होना है। अगर सहमति नहीं बनी तो टकराव का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान से जुड़ी हुई। ईरानी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने इसके लिए अमेरिका और इसराइल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है, यानी कि जिस तरह की अटकलें और जिस तरह की आशंकाएं सबके मन में थी, एक एक करके वो सारी चीजें सामने आ रही है। कितने दिन टिक सकती है ये शांति? आप कहेंगे ये शांति अभी ठीक से आई भी नहीं है और हम ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, एक एक करके मैं परिचय उनका करवा दूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त पूर्व डीजी इन्फेंट्री भारतीय सेना के। हमारे साथ है मार्शल संजीव कपूर, जुड़ रहे हैं सेवानिवृत्त पूर्व डीजी इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी इंडियन एयरफोर्स के रहे हैं, और साथ में हमारे कैप्टन डीके शर्मा हैं पूर्व स्पोक्स पर्सन भारतीय नेवी और कंसल्टेंट भारत शक्ति के। तो हम चूंकि इस पूरे युद्ध में आपने हर पहलू देख लिया है, और इसीलिए जरूरी है ये समझना कि खासकर ये जो 14 पॉइंट जनरल प्रसाद जो हमारे सामने इस पूरे डील के एमओयू के जो सामने हैं, वो इशारा क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये देखकर तो ये लग रहा है कि अमेरिका जीता तो नहीं है, ज्यादा तो ईरान के टर्म्स में हमें यह दिखता है। तो इस केस में हम समझ सकते हैं कि शांति अभी कम से कम 2 महीने तो रहेगी।
4: जी, उम्मीद सभी करते हैं कि शांति रहे और शांति बनी रहे। ये डील किसके बीच में हुई है? ये डील बीच में हुई है अमेरिका के और ईरान के। अब ये समझना जरूरी है कि इस डील में कौन कौन इन्वॉल्व है, हु आर द विच आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस डील। एक तो अमेरिका है, एक ईरान है, आपने बता दिया। हमने ये नहीं बताया कि इसमें IRGC कहाँ है।
5: जी,
4: IRGC आप सबको मालूम है कि IRGC इज बाई यूनिट बाई इटसेल्फ, वो अपने सरकार के नीचे काम नहीं करती है ईरान के अंदर।
5: मतलब आपको लग रहा है पेजेशकियन के दस्तखत है, उसके बावजूद IRGC की सहमति हो सकता है ना हो?
4: कागज पर तो नहीं आई है ना।
5: हाँ।
4: ना कोई इसका बयान आया है। सो दैट इज अनदर प्लेयर इन द गेम। इसमें इसराइल का साइन तो नहीं है, हालांकि लोग कहते हैं कि वो मान चुके हैं। इसमें हिजबुल्ला का साइन तो है नहीं, जिस वो मान चुके कि नहीं मान चुके। हमास कहाँ है, हूती कहाँ है, यमन कहाँ है? तो इस गेम में खिलाड़ी बहुत हैं। अभी दो खिलाड़ियों में तो बातचीत हो चुकी, मान गए, क्योंकि दोनों इस लड़ाई से निकलना चाह रहे थे।
5: हम अगर 1% ये मान लें कि IRGC की भी हामी है इस चीज को, तो केवल ईरान से ये होगा या फिर इसराइल आपको लगता है हाथ खींचेगा लेबनन को लेकर?
6: हुआ यूं है कि 40 दिन का युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध विराम हुआ, 100 से ऊपर दिन हो गए हैं, अभी 60 दिन का फिर हुआ है, इक्का दुक्की स्कर्मिश चलती रही है। बस पूरे उसमें इसराइल मेरी समझ से वीक हुआ है। वीक इसलिए हुआ है कि अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में कम होती जा रही है। अमेरिका ने जो गल्फ कंट्रीज के ऊपर प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला दिया था वो एक्सपोज हो गया इस युद्ध में। जो साउथ ईस्ट एशिया में, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, उधर से इन्होंने अपने असेट्स खींच के मिडल ईस्ट में लेके आए, तो वो देश बोले कि इस वक्त अभी हमारे पे चीन अगर अटैक करते तो हमारे पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। बोला नहीं, मुझे चाहिए। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं रियलाइज किया कि हम अमेरिका को अपना गारंटर मानते हैं, बट जब चिप्स डाउन होंगे तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे साथ में खड़ा होगा। इसराइल जो कि अमेरिका के बल पे अटैक करने गया है, उसका जो मेन टारगेट था कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज किया जाए, वो नहीं हुआ। उनका नेक्स्ट मकसद था हिजबुल्ला को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, वो नहीं हुआ। एंड जो यमन और इराक में जो इनके सेल्स हैं ऑफ हूतीस एंड इराकी, वो भी पनप रहे हैं। तो ये अगर युद्ध विराम हुआ तो ये जो 60 दिन का समय है वो उनको रीग्रुप के लिए मिलेगा।
5: कैप्टन शर्मा, पहले मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना क्रूशल रहेगा इस लास्टिंग पीस के लिए। भले ही ये कहा जा रहा है कि जिस दिन ये डील साइन हुई उस दिन से वहां से अमेरिकी जो नौसेना है उसके हटने का क्रम शुरू हो जाएगा, ओमान से अभी बात आगे होगी बारीकियों को लेकर कि कैसे निकले, लेकिन आपका जजमेंट क्या कहता है?
7: ओके श्वेता, तीन चार बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, एंड श्वेता दिस कंडीशन ऑफ मेकिंग द शिप्स कम आउट और गो इनसाइड एंड पिक अप द एनर्जी एंड कम आउट, दिस फ्री बिजनेस विल बी फॉर 60 डेज। एक तो ब्लॉकेट बाहर लगा हुआ है, वो ब्लॉकेट हटा नहीं है अभी हटा नहीं है, बोला गया है कि हट रहा है, और ये इन्होंने बोला है एज पर द MOU दैट इट विल बी कंप्लीटली लिफ्टेड इन 30 डेज। दे आर स्टिल लुकिंग एट इट के वेदर इट इज हैपनिंग, ये हो जाएगा कि नहीं हो गया, सब कंडीशनल है। आप बात कर रहे थे डिस्ट्रक्शन की, डिस्ट्रक्शन इज द फंड विच दे हैव टू नाउ केटर फॉर इज 300 बिलियन, 24 लाख करोड़। कहना आसान है, 24 लाख करोड़ का फंड इज रिक्वायर्ड, एंड हु इज गोइंग टू फंड दैट? द यूएस एलाइज इन द गल्फ विद ईरान एंड इमीडिएट रिलीज ऑफ द सैंक्शनड अमाउंट। ये जो आप बोल रहे हैं कि ये पीस अकॉर्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, इतनी कंडीशन है श्वेता इस पे, अगर आप इसको देखना शुरू करें एक एक करके।
5: सही बात।
7: एंड IRGC जो सर ने पॉइंट उठाया, दे आर अगेन अ वेरी वेरी टफ कस्टमर, वेरी टफ कस्टमर। दे विल, यू सी राइट नाउ आफ्टर दिस मच ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, व्हाट दे वांट राइट नाउ, इमीडिएट हॉस्पिटल्स शुड बी बैक, लॉजिस्टिक्स लाइन्स शुड बी बैक, यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, स्कूल्स। अभी ये फोकस यहां रहेगा 2-3-4 महीने, उसके बाद आप देखना रेड फ्लैग आएगा IRGC से दैट यू नो यू हैव डिस्ट्रॉयड सो मच ऑफ थिंग्स फॉर अस, तो इनका कैसे वापस आएगा? तो ये जो पॉइंट्स आए हैं, जो आपने 14 पॉइंट्स बताए
5: जी,
7: ये इस वक्त यस वेरी गुड, बिकॉज द होल वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे जा रही थी, जो प्रेशर था US के ऊपर टू सॉर्ट इट आउट, इंक्लूडिंग टेकिंग अ लाइन ऑन दैट देयर विल बी नो अटैक ऑन लेबनान।
5: अमेरिका को जिस दिन कमिट करने की जरूरत पड़ गई कि उसे ग्राउंड फोर्स भेजना पड़ सकता है और वहां पर वो खत्म हो जाता पूरी तरीके से, वहां उसको समझ में आया कि अब धीरे धीरे कदम अपने उल्टे ले लो।
8: बिल्कुल सही कह रही हैं आपने जो लास्ट वर्ड के कदम उल्टे ले लो इज द प्राइम इश्यू विद अमेरिकन प्रेसिडेंट। वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से मैं निकलूं, लेकिन इसमें बड़ी जरूरी बात यह, देखिए आपने एक बीच में पूछा शुरू कहां से हुई, ये शुरू हुई जो कि तीन प्रॉक्सीज हैं ईरान के, हमास, हिजबुल्ला और हूती, ये पिछले 40 साल से परेशान कर रहे हैं इसराइल को। 7 अक्टूबर का इंसिडेंट हम सब ने देखा है, समझ रहे हैं, आप तो वहाँ होके भी आई उस समय। हफ्ता भर पहले या 10 दिन पहले आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, अब्राहिम अकॉर्ड
5: जी।
8: अब्राहिम अकॉर्ड में ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान एंड पाकिस्तान हु हैव नॉट साइन, जिन्होंने साइन नहीं किया है उसको साइन कर दें। मैं समझता हूं ये कि अगर किसी प्रकार से डिप्लोमेटिकली कोअर्सिवली किसी प्रकार से इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन हो जाए ईरान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, तो ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें तो ये सबूत सामने आ गया वर्ल्ड के कि क्योंकि ईरान इतना पीछे पड़ा हुआ है हिजबुल्ला को सपोर्ट करने के लिए, इतना पीछे पड़ा हुआ है लेबनान। एक बात आपको शायद मालूम होगी, आप तो वहां रह के आई हैं, कि जो लेबनीज गवर्नमेंट है दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल हिजबुल्ला, हिजबुल्ला उनकी नहीं मानता है, ये तो पता ही आपको,
5: ये बात वो कहते भी हैं,
8: कहते भी हैं
5: जी।
8: तो लेबनान अब जो साइन होगा, जो किसी तरह से अगर उनसे बातचीत हो भी गई, तो वो कौन एग्री कर रहा है, लेबनान की सरकार कर रही है कि हिजबुल्ला कर रहा है?
5: सरकार
8: कर रही है ना, तो हिजबुल्ला देख रहा है तमाशा। और यहां से ईरान ने एक दफा नहीं कहा कि हम इनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे।
5: डी माइनिंग कितना समय लगेगा?
9: डी माइनिंग, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एज पर द अनक्लॉस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ सी, जिस भी कंट्री ने माइनिंग किया होता है ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आफ्टर सीज फायर और आफ्टर द सेसेशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज, आपको जाके क्लियर करना है। अगर देखो, जब इन्होंने बोला दैट वी हैव एनिलिएटेड द इरानियन नेवी, वी हैव एनिलिएटेड मतलब बर्बाद कर दी हमने आपकी एयरफोर्स, तो आपका बचा ही क्या है? नाउ इट इज योर चांस, अब आपके पास माइंस हैं, आपने माइंस लगा दी, इन्यूमरेबल, यू डोंट इवन नो कितनी माइंस लगाई।
8: बड़ी बात यह है, आप शजीसी को इलेबोरेट कर रहे हैं कि माइंस कहीं भी लगाते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, इनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है,
9: रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि आपने तो मेरी पूरी नेवी बर्बाद कर दी।
5: कि अगर ये लास्टिंग पीस होनी है तो आपके हिसाब से क्या एक या दो या तीन फैक्टर्स जिनका ख्याल रखने की जरूरत होगी दुनिया को?
8: मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले ईरान ये एक्सेप्ट कर ले कि इसराइल हैज गॉट अ रीजन टू सर्वाइव। इसराइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इज फाइटिंग फॉर इट एग्जिस्टेंस, तो ईरान ईरान कह दे कि हम इसराइल के बरखिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, एकदम ये भी कह दे और कह दे हम इसराइल को अब रिकग्नाइज करते हैं,
5: ठीक
8: है। मेरे ख्याल से काफी हद तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
6: मेरा टेक जो इब्राहिम अकॉर्ड्स का है वो बिल्कुल उल्टा है। जब तक युद्ध शुरू हो रहा था और शुरू शुरू में जब ट्रंप ने कहा कि ये जो देशों ने इब्राहिम अकॉर्ड साइन किए उनको नहीं किए उनको करना चाहिए, इस युद्ध और सीज फायर के बाद जिन्होंने साइन किया वो भी मना कर देंगे।
5: सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे?
8: मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक सवाल का जवाब सब दे दें, क्या इसराइल को अपनी रहने की इज्जत है? इज इसराइल अलाउड टू लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ कंट्री? कौन कहता है कि इसराइल का एक बर्बाद करके खत्म कर दीजिए, कहाँ जाएंगे वो? सो प्लीज अंडरस्टैंड, इब्राहिम अकॉर्ड ओनली सेज कि प्लीज रिकग्नाइज इसराइल एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट।
5: कैप्टन ठीक है, आपके हिसाब से?
9: मेरे हिसाब से यू सी व्हाट जनरल सर इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यू हैव टू, इफ यू हैव टू कम ऑन द टेबल, कम विद जस्ट थिंग्स, मतलब आपने इतनी बड़ी डिमांड कर लिया कि मेरे को रिकंस्ट्रक्ट करिए, मेरे को ये करिए, मेरे सैंक्शंस यू नो सारे के सारे, आई शुड बी पेड बैक वट एवर यू नो वॉज हेल्ड बैक बाई यूएस, बट देन दे ऑल्सो हैव टू कम ऑन बोर्ड, उनको भी आना पड़ेगा टेबल,
5: ईरान की भी जिम्मेदारी रहेगी,
9: ईरान शुड कम एंड यू नो वट जनरल प्रसाद इज सेइंग,
6: दी विजिट बाई ट्रंप टू चाइना इन माई ओपिनियन लेफ्ट हिम मोर वीकर देन एनीथिंग एल्स,
8: अनडाउटेडली
6: had he not gone he still would have been in a better bargaining position, he exposed himself to a level where even the Chinese have understood ke he is not left with much power. So that is
5: ladai idhar hui lekin sabse bada fayda china kar raha hai isme, behrhal is sab ke beech pakistan bhi bahut sari ummeedein laga raha hoga lekin duniya ko is samay ek hi cheez chahiye।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: ये इसराइल का अजेय सुरक्षा कवच आयरन डोम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कवच की असली चाबी वॉशिंगटन के पास है। आंकड़ों की बात करें तो साल 1948 में इसराइल के जन्म के बाद से अब तक अमेरिका उसे $158 बिलियन यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी सैन्य मदद दे चुका है। मौजूदा 10 वर्षीय समझौते के तहत अमेरिका हर साल इसराइल को $3.8 बिलियन की निश्चित सैन्य मदद देता है, जिसमें से $500 मिलियन सिर्फ मिसाइल डिफेंस के लिए होते हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई लाइन का है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस जिन अत्याधुनिक F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स के दम पर ईरान और लेबनान में तबाही मचाता है, वो सब 100% अमेरिकी है। इसराइल के कुल हथियार आयात का 69% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। इस 3 महीने की लंबी जंग में जब इसराइल के तोप के गोले और गाइडेड बम खत्म होने की कगार पर पहुंचे तो अमेरिका ने आपातकालीन एयरलिफ्ट के जरिए हजारों टन गोला बारूद यरूशलम पहुंचाया। लेकिन इसराइल के लिए अमेरिका सिर्फ बारूद का सौदागर नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा ग्लोबल डिप्लोमेटिक बॉडीगार्ड भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में जब भी पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाती है, अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलग थलग होने से बचा लेता है। इतिहास में अमेरिका ने 45 से ज्यादा बार इसराइल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसराइल अमेरिका पर इतना निर्भर है तो नेतन्याहू ट्रंप की बात क्यों नहीं मान रहे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसराइल के पास कुछ महीनों की जंग, अकेले लड़ने का हथियारों का बफर स्टॉक और खुद की मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री जैसे एल्बिट सिस्टम्स जरूर है, लेकिन अगर ईरान के साथ लंबी खींचने वाली जंग होती है तो अमेरिका के बिना इसराइल की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसों की बदौलत इसराइल सुरक्षित है, इसलिए उसे वॉशिंगटन के शांति रोड मैप का सम्मान करना ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। नेतन्याहू जानते हैं कि अमेरिकी मदद के बिना ईरान से लंबा युद्ध लड़ पाना उसके लिए संभव नहीं है, इसीलिए वो ट्रंप की लाइन को पूरी तरह काटे बिना आखिरी क्षण तक अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय का खेल खेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर जबरदस्त सुरक्षा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले एनटीए पर भरोसा रहे, जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी निभाएं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाया योग उत्सव। कहा, संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, दूनागिरी, संशोधक और अग्रय। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। और अमेरिका ईरान डील पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड में सजा मंच। अमेरिकी टीम में जेडी वेंस, विटकॉफ, ईरानी दल में अराक्ची और गालिवाफ। परमाणु कार्यक्रम पर बैठक।

इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, इसराइल हिजबुल्ला तनाव से जुड़ी हुई है। सीज फायर के बावजूद हिजबुल्ला की तरफ से 50 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स इसराइल की तरफ दागे गए हैं। ये दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला की तरफ से ये प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए हैं। सीधी सी बात है, इस बड़ी खबर के साथ अब शांति को लेकर एक नया संशय पैदा हो रहा है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनन में इसके जवाब में कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। क्या सीज फायर टूटने की कगार पर है? देखिए ये रिपोर्ट। वॉर जोन में शांति रहेगी या नहीं रहेगी, ये इस बात पर निर्भर है कि इसराइल और लेबनन के बीच क्या होता है। अब लेबनन फ्रंट पर भड़की भीषण हिंसा में इजरायली सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। दक्षिण लेबनन के कफर तेबनीत गांव में हिजबुल्ला ने एक इजरायली टैंक को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में इजरायली सेना के टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। हिजबुल्ला न रुक रहा है, न पीछे हटने के लिए तैयार है। इजरायल हिजबुल्ला को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वहीं ईरान अपने प्रॉक्सी का इस्तेमाल जिस तरह से कर रहा है, उसने इस पीस प्रोसेस पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं।

हिजबुल्लाह के हमलों में 4 इजरायली सैनिक मारे गए। इस बड़े सैन्य नुकसान के बाद इसराइल ने भी दक्षिण लेबनान के नबातिये इलाके में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 16 लोगों के मारे जाने की खबर है।

0: लेबनान में 24 घंटे तक चली भीषण हिंसा और गोलाबारी के बाद अब इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर फिर से पटरी पर लौटता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशों को भी नई रफ्तार मिली है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची स्विट्जरलैंड में मुलाकात हुई, जहां दोनों पक्षों के बीच डील पर अहम चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने पर स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत खटाई में पड़ गई थी।
1: President has grown frustrated sometimes is that we seem to be right on the cusp of a major breakthrough in the agreement, and then all of a sudden there's a major explosion that goes off in a civilian population center in Beirut, and a lot of people who have nothing to do with Hezbollah lose their lives. That's not acceptable. That's the sort of thing that we've asked for closer coordination so that we ensure it doesn't happen.
0: इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद साफ कर दिया है कि जब तक इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक इजरायली सेना दक्षिण लेबनान से बाहर नहीं निकलेगी।
2: אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו, כשם שהחזרנו, את הביטחון והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כי הרצועה הזאת מפרידה בין מחבלי חיזבאללה לאזרחינו ויישובינו.
0: दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ईरान पहले ही इस एमओयू पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जारी तनाव के बीच इस डील की सफलता को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। अमेरिका के भीतर भी ईरान से हुई डील को लेकर घमासान मचा है। रिपब्लिक और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टियों के कई नेता इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस डील का विरोध कर रहे इजराइल की बड़े ही कड़े शब्दों में आलोचना की है।
1: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: लेकिन इस पूरी डील पर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पोम्पियो ने सोशल मीडिया पर लिखा,
3: अमेरिका और इसराइल के बीच मतभेद की खबरें इसराइल विरोधी ताकतों के लिए किसी संगीत की तरह है, जबकि इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए सिर्फ एक ही देश जिम्मेदार है और वो है ईरान।
0: रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस एमओयू के मसौदे में कहीं भी ये शर्त नहीं है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को वित्तीय मदद देना बंद करेगा, जिसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।
4: इसराइल के कुछ कंसर्न्स तो जेन्युइन है, दूसरे जो कंट्रीज है उनका बहुत ज्यादा रोल, उनको पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा कि ये जो मतलब जैसे एक टाइम पे जो इजिप्ट ने डील करी थी इसराइल के साथ, सो उस किस्म का कुछ यू नो वी कैन वी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर।
5: लेकिन क्या इसराइल मानेगा मैम, क्योंकि इसराइल तो कहता है कि हिजबुल्लाह का खात्मा ही, संपूर्ण खात्मा ही।
4: पर वो तो सबको यू नो बहुत मुश्किल है, पर जो दूसरे हैं अब जो हिजबुल्लाह वगैरह उनके साथ कौन बातचीत करेगा, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया है। और जब भी देखो वो वेस्ट बैंक एंड ये और वो, इसमें जो है मतलब सारे जो प्लेयर्स हैं हर एक का कुछ ना कुछ योगदान रहा है टू डिस्टेबलाइज द रीजन।
0: एक तरफ कागजों पर अमेरिका और ईरान स्थायी समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेबनान में मौतों का आंकड़ा इस बात की गवाही दे रहा है कि पश्चिमी एशिया की ये जंग इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। बड़ी खबर ईरान की तरफ से एक और चेतावनी के रूप में। आपको बता दें, ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मूज जलमार्ग को बंद करना सिर्फ पहला कदम है। तेहरान का कहना है कि इजरायल की लेबनान पर कार्रवाई अमेरिका के साथ हुए समझौते का उल्लंघन है। ये एमओयू के अलग अलग जो पॉइंट्स थे उसमें शामिल था। अब अगर ये कार्रवाई जारी रही तो और कड़े फैसले ईरान की तरफ से लिए जाएंगे। 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग 2026 तक पहुंच गई, लेकिन तबाही का सिलसिला रुक नहीं रहा। रूस के हर वार पर उससे बड़ा पलटवार कर रहा है यूक्रेन। जंग लगातार और खतरनाक होती जा रही है।

0: बाद बदले की आग। ये जवाब है उस हमले का जो रूस ने यूक्रेन पर इस हफ्ते की शुरुआत में किया था। ये तस्दीक है उस भरोसे की जो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की फ्रांस में ट्रंप से मुलाकात के बाद लेकर आए। रूस यूक्रेन जंग को 4 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन तबाही की आग ठंडी होने के बजाय और भड़क उठी है। जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां हर दिन के साथ वार और पलटवार का लेवल बढ़ता जा रहा है। रूस पर यूक्रेन ने इस साल का दूसरा सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस ने 555 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के इन हमलों में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर हुए प्रहार से तेल टैंकों में आग लग गई और चारों तरफ धुआं फैल गया। लगातार बढ़ते हमले बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग अभी थमने वाली नहीं है। यूक्रेन की रणनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है और उसके निशाने पर सीधा रूस के शहरी इलाके हैं। रूसी समाचार एजेंसी TASS के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जून का महीना रूस के लिए कितना भारी रहा है। रूसी समाचार एजेंसी TASS के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जून का महीना रूस के लिए कितना भारी रहा। यूक्रेन के 555 ड्रोन्स को रूस के मार गिराने से पहले इसी महीने की 6 तारीख को 376 ड्रोन्स का हमला नाकाम किया गया था। वहीं जून की शुरुआत में यानी 3 जून को 354, 10 जून को 326 और 11 जून को 330 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए थे। इससे पहले 17 मई को रिकॉर्ड तोड़ 556 ड्रोन से हमला हुआ था। इन हमलों ने रूस यूक्रेन युद्ध को एक चरण आगे पहुंचा दिया है। इस जंग में इंसानों के साथ साथ आस्था पर भी चोट किया जा रहा है। इस जंग में 11वीं सदी के पवित्र लावरा मठ को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसको ईसाइयत के खिलाफ रूस का अब तक का सबसे बड़ा पाप कहा है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने तो इसे नोटरडेम पर बमबारी जैसा बता दिया, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने सिर्फ हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को उड़ाया है और इस पवित्र जगह पर जो मिसाइल गिरी वो यूक्रेन की ही अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल थी जो पुरानी होने के कारण रास्ता भटक गई थी। अब सवाल यह है कि 4 साल की इस खूनी खींचतान के बाद आज दोनों देश जमीन पर कहां खड़े हैं, किसने किसकी जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। जमीन पर कब्जे की जंग देखें तो रूस यूक्रेन सीमा के काफी अंदर तक घुस चुका है। 2014 से क्रीमिया उसके कब्जे में है, लुहांस्क पर उसका पूरा कंट्रोल है और डोनेट्स्क के बड़े हिस्से समेत प्रोकोव्स्क शहर पर भी रूसी फौज का कब्जा है। यही नहीं, दक्षिण में खेरसोन और ज़ापोरिज़िया के बड़े इलाकों पर भी रूस का ही राज चल रहा है। लेकिन यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजधानी कीव, ओडेसा, लवीव और निप्रो जैसे बड़े शहर आज भी पूरी तरह यूक्रेन के पास सुरक्षित हैं। उत्तर में साल भर चले रूसी हमले को नाकाम करके यूक्रेन की सेना ने कुपियांस्क मोर्चे को मजबूती से थाम रखा है, जबकि डोनेट्स्क के क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क शहरों में यूक्रेन की ऐसी तगड़ी किलेबंदी है जिसे तोड़ना रूसी सेना के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर नहीं हो रही, यूक्रेन ने पासा पलटते हुए रूस के अपने इलाके यानी कुर्स्क में घुसकर उसके सीने पर अपनी चौकियां बना रखी हैं। सुमी और खारकीव के बॉर्डर पर आज भी ऐसी भीषण आमने सामने की जंग चल रही है जहां दोनों ओर से हर मिनट तोपें गरज रही हैं। लेकिन इस पूरी खूनी बिसात पर सबसे बड़ा खेल खेल रहा है वॉशिंगटन। ट्रंप जो कभी यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर सवाल उठाते थे, आज उनका रुख बदला हुआ दिख रहा है।
1: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फ्रांस के G7 समिट में साफ साफ कह दिया कि इस जंग को लेकर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया अब पूरी तरह बदल चुका है। ट्रंप अब जमीन की हकीकत को समझ रहे हैं और वॉशिंगटन इस लड़ाई को रोकने के लिए पर्दे के पीछे से भारी डिप्लोमेटिक प्रेशर बना रहा है।
2: And at this point, do you feel that Vladimir Putin is more responsible for the ongoing conflict in Ukraine?
3: Well, I don't want to comment on that because I'm trying to get it settled, and that doesn't make it easy.
1: अब देखना है कि ट्रंप सिर्फ हमदर्दी जताते हैं या रूस पर दबाव बनाने के लिए ठोस कदम भी उठाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या पुतिन इस दबाव में आएंगे? 4 साल की जंग के बाद यूक्रेन को नेटो के सपने की हकीकत भी समझ आ चुकी है।

0: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह, राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है। साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए, दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा, इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
1: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र, आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है, और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन।
0: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा, शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 2 बार रद्द हुई। 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ, रिजल्ट दोबारा जारी हुआ, नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
2: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं, तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाए।
0: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
3: होना नहीं चाहिए, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है, ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है, और उस पर कंट्रोल उस सेटर का होता है, और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है, तो ये बात पीड़ादायक भी है। मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह मैं हल नहीं कर पाया।
0: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

खुलासा नंबर एक, दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती का जिम्मा संभालने वाले दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि चढ़ावे में चोरी गिनती करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। खुलासा नंबर दो, राम मंदिर के आरएमओ यानी रेडियो मॉनिटर ऑफिसर की भूमिका कटघरे में है। आरएमओ के कंधों पर ही सीसीटीवी से निगरानी का काम था। आरोप है चोरी के वक्त सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता था। बड़ी बात यह है कि 17 सालों से आरएमओ सीसीटीवी निगरानी का काम देख रहे थे और सीधे चंपत राय को रिपोर्ट करते थे। खुलासा नंबर तीन, गेट पास बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले सोमेश आनंद एसआईटी के रडार पर हैं, क्योंकि बिना गेट पास के चढ़ावे की रकम या फिर चढ़ावे के जेवरात राम मंदिर से बाहर नहीं जा सकते थे। आरोप यही है कि सोमेश आनंद ने बिना चेकिंग के चढ़ावे की गाड़ी को मंदिर परिसर से बाहर जाने दिया। सवाल यही है, ऐसा क्यों किया गया। खुलासा नंबर चार, राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी को चढ़ावे की चोरी के पूरे खेल के बारे में पता था, बावजूद इसके थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की जांच में थाना प्रभारी की भूमिका भी शक के घेरे में है। तफ्तीश के बाद ही चढ़ावा चोरी कांड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, लेकिन आरोपों में घिरे जिम्मेदार खुद को बेदाग बता रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कांड का खुलासा होने के बाद मंदिर में दान करने वाले राम भक्तों ने जिम्मेदारों पर सीधे सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा भी घट गया है। जांच के बीच अब मंदिर आने वाले राम भक्तों की संख्या और चढ़ावे में कमी आई है। पिछले कई महीनों से हर महीने औसतन 7 करोड़ रुपए के आसपास दान राशि मिल रही थी। पिछले एक पखवाड़े में ये आंकड़ा घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं कर्नाटक की एक श्रद्धालु का आरोप है कि राम मंदिर में कीमती हार दान किया था, लेकिन आज तक उसकी रसीद नहीं मिल पाई है। पता नहीं राम मंदिर में चढ़ाए हार का क्या हुआ। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार यही दावा कर रहा है कि दान में मिली राशि और उसकी गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद के चलते राम भक्तों के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं उस चढ़ावे को लेकर जो वो राम मंदिर में आस्था के नाम पर दान करते थे। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

दक्षिण लेबनन का कफर तेबनीत इलाका और मलबे में तब्दील इसराइल का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला मरकावा टैंक। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में इसराइल सेना के लिए ये सबसे काला दिन साबित हुआ है। हिजबुल्ला ने घात लगाकर इसराइल के 52वें बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल डोर गेडालिया बेन शिमोन समेत 4 जाबाज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने गाइडेड मिसाइलों से इसराइल के 3 टैंक उड़ा दिए। हैरानी की बात यह है कि ये भीषण हमला उस समझौते के ठीक एक दिन बाद हुआ जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ साइन किया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का लक्ष्य साफ था। अमेरिका ने फरवरी 2026 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था ताकि ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को तबाह कर हुर्मुज को खोला जा सके, तेल की कीमतें घटाई जा सके और नवंबर में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनावों में जीत हासिल की जा सके। ट्रंप के लिए ये मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गेम प्लान बिल्कुल अलग है। इसराइल ने इस युद्ध को ऑपरेशन रोरिंग लायन का नाम दिया था जिसका मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन और हिजबुल्ला का समूल नाश था। सैनिकों की मौत से भड़के नेतन्याहू ने लेबनन पर अब तक का सबसे भीषण हमला बोल दिया है जिसमें शुक्रवार को ही 18 लोग मारे गए। नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया है कि इसराइल लेबनन के सिक्योरिटी जोन से अपनी सेना कभी नहीं हटाएगा क्योंकि इसराइल इस अमेरिकी समझौते का हिस्सा नहीं था। इस जिद की वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की तकरार अब सरेआम हो चुकी है। डिप्लोमेटिक गलियारों से आ रही खबरें बेहद चौंकाने वाली हैं। लेबनन पर अंधाधुंध हमलों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को बुरी तरह फटकारा और अब शब्दों तक का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा था, बीबी यानी नेतन्याहू, तुम पूरी दुनिया से अकेले नहीं लड़ सकते। यहां तक कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी बैंस ने भी इजरायली मंत्रियों को जमीनी हकीकत समझने की नसीहत दे डाली है। नेतन्याहू की इस आक्रामकता का असर यह हुआ कि ईरान ने इजरायली हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए स्विट्जरलैंड में होने वाली महावार्ता को सस्पेंड कर दिया है। ट्रंप इस बात से बेहद नाराज हैं और वो नेतन्याहू को क्रेजी और मुश्किल इंसान तक कह चुके हैं। भले ही अमेरिका आज भी परमाणु खतरे के वक्त इसराइल के साथ खड़े होने का दावा करता हो, लेकिन इस समय दोनों देशों के रास्ते पूरी तरह जुदा हैं। ट्रंप डील मेकर बनकर दुनिया में शांति का सेहरा अपने सिर बांधना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू मैक्सिमम प्रेशर की नीति से लेबनन की जमीन पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि महाशक्ति अमेरिका की चलती है या इसराइल की जिद इस ऐतिहासिक शांति समझौते को बारूद के ढेर में तब्दील कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni.
3: आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा. 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर जबरदस्त सुरक्षा. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले हैं एनडीए पर भरोसा रहे, जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी निभाएं. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट. सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाया योग उत्सव का. संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग. नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, दूनागिरी, संशोधक और अग्रय. प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया, कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं आत्मनिर्भर बनेगा भारत. और अमेरिका ईरान डील पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड में सजा मंच. अमेरिकी टीम में जीडी वेंस, विटकॉफ, ईरानी दल में अराक्ची और गैलिबाफ. परमाणु कार्यक्रम पर भी बैठक.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सबसे पहले आपको दिखाएंगे शतक आज तक। नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, दूनागिरी संशोधक और अग्रह, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया का रक्षा क्षेत्र में खरीदा नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। INS दूनागिरी, INS अग्रह और INS संशोधक हुए नौसेना में शामिल, तीनों युद्धपोतों को प्रधानमंत्री ने किया नौसेना में शामिल। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, INS दूनागिरी बनेगी नेवी की नई स्टील ताकत, INS अग्रह से पनडुब्बी रोधी क्षमता मजबूत होगी। INS संशोधक करेगा समुद्री सर्वेक्षण और मैपिंग, भारत की समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाई तक तीनों ही युद्धपोत पहुंचाएंगे। हिंद महासागर में भारत की पकड़ होगी मजबूत, GRSE ने INS दूनागिरी और INS अग्रह और INS संशोधक का निर्माण किया है। आज देशभर में नीट रीटेस्ट, 22 लाख से ज्यादा छात्रों के शामिल होने की उम्मीद। नीट यूजी के लिए NTA पूरी तरह से तैयार है, 1,38,000 CCTV कैमरों और 51,000 जैमर के साथ हो रही है परीक्षा। देश के 551 शहरों में 5,440 परीक्षा केंद्रों तथा विदेशों के 14 केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा, अंग्रेजी समेत 12 भारतीय भाषाओं में एग्जाम। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस, अर्धसैनिक बल और वायुसेना भी शामिल है, परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को भी सौंपी गई है जिम्मेदारी। नीट की परीक्षा से पहले राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा उम्मीद है कि किसी बच्चे की ना टूटे उम्मीद। नीट यूजी री एग्जाम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से बिना डर के परीक्षा देने की अपील की, NTA और सभी प्रशासन पर जताया है पूरा भरोसा। नीट यूजी री एग्जाम में करीब 22 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, शिक्षा मंत्री ने कहा बच्चों के भविष्य से छेड़छाड़ न हो, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। शिक्षा मंत्री से बिना नाम लिए विपक्ष पर बोला हमला, कहा अगर आप जिम्मेदार हैं तो भारत के सच्चे नागरिक हैं और बच्चों को परेशानी में न डालें, उनकी तकलीफ को न बढ़ाएं। CBSE के बाकी के नतीजों को शिक्षा मंत्री ने जल्द ही जारी करने का भी दावा किया, 17 लाख में से 15.5 यानी लगभग 15.5 लाख छात्रों के रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा री एवेल्युएशन, री असेसमेंट और री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। प्रदेश JDU कार्यालय में आज चलेगा महत्वपूर्ण बैठकों का दौर, प्रदेश कार्यालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। JDU राज्य परिषद की बैठक होगी, JDU के राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होनी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार के निर्वाचन पर मोहर लगेगी, नीतीश कुमार समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। शिवसेना UBT में टूट का दावा, आज 6 बागी सांसद कर सकते हैं सार्वजनिक ऐलान, बागी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट, सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी है SIT, कर रही है चरण पादुका, बहुमूल्य हार की तलाश, सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। राम मंदिर में दान राशि और चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों के बीच बीजेपी नेता विनय कटियार ने चंपत राय को जिम्मेदार बताया, कहा चंपत राय को पद से बर्खास्त करना ही पड़ेगा। झांसी में सीएम योगी बोले यूपी में माफिया की टूटी है कमर, मिट्टी में मिल चुके हैं माफिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का बुंदेलखंड के ललितपुर जिले का दौरा, 1766 करोड़ की सौगात दी। देशभर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन, कोलकाता के रेड रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने 35,000 लोगों के साथ मनाया योग उत्सव। कोलकाता से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, योग रखता है स्वस्थ, दुनिया को भी जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी बोले योग स्वस्थ और एकता का सशक्त माध्यम है, योग से स्वस्थ शरीर एकजुट विश्व का निर्माण संभव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश, योग का वैश्विक महत्व, योग सबको जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नौसेना के जवानों ने अपनाई थी थीम, किया योगाभ्यास, जवानों ने दिखाया फिटनेस का जज्बा। पेंगोंग झील किनारे जवानों ने किया योग, ऊंचे पहाड़ों से दिया फिटनेस का संदेश। योग दिवस पर देशभर में दिखाई दिया योग उत्साह, बड़े नेताओं ने किया योगाभ्यास। गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निर्मला सीतारमण और सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने किया योग। जलंधर में योग दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया योगाभ्यास। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिस्सा लिया। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह बने कार्यक्रम का हिस्सा और किया योगाभ्यास। शिलांग में मनाया जा रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री संगमा ने भी योगाभ्यास किया। मुंबई में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने योग करके स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उत्तराखंड के चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शामिल होकर किया योगाभ्यास। ओडिशा के भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें संस्करण का आयोजन, सीएम मोहन चरण मांझी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुंबई में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की बेटी रेवती को शादी में शामिल हुए राहुल गांधी। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी धीरज देशमुख ने तस्वीरों को साझा किया है। शादी में साथ नजर आए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितेंद्र अवार ने शेयर किया है वीडियो। रेवती सुले की शादी में ढोल की थाप पर झूमी अनिल अंबानी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो। रेवती सुले और सारंग की वरमाला सेरेमनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एंकर और वेडिंग प्लानर्स ने साझा की है झलक। पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, लग रहा है बंगाल बेड़ियों से हो गया है आजाद, टीएमसी के गड्ढे भरने का काम शुरू। बंगाल में घुसपैठियों पर टीएमसी को प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा, बोले संसाधनों पर घुसपैठी हावी थे, अब सीमा पर फेंसिंग का काम जारी, पहले राज्य सरकार ने नहीं दी थी जमीन। मयूरभंज में पीएम मोदी ने ओडिशा में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बोले, डबल इंजन की सरकार में ओडिशा का विकास, लोकतंत्र के विकास का चल रहा है उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह जिला मयूरभंज में आयोजित किया गया विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों के विकास पर दिया जोर, कहा जनजातीय विकास हमारी प्राथमिकता है। मालदा के सुखदेवपुर इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे लोगों को रोका गया, बीएसएफ ने बांग्लादेशियों को घुसपैठ से रोका, बौखलाया बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। गुरुग्राम में रोड रेज का मामला सामने आया, साइड न देने पर स्कॉर्पियो सवारों ने कार पर किया था हमला, शीशे भी तोड़ डाले। राजीव चौक पर हंगामा, स्कॉर्पियो सवारों ने विंडसर कार चालक को पीटा भी, पुलिस ने गिरफ्तार किया।
1: नहीं दी उसने, मैं राजीव चौक पे आ रहा था, मैंने गाड़ी जिगजैग करके स्कॉर्पियो डाल दी, उसको साइड नहीं दी उसने मेरी पहले गाड़ी ये देखी पीछे से तोड़ी डंडा मार के, उसके बाद पूरा मोटी लट और मैं अंदर बैठा था।
0: गुरुग्राम में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला गुरुग्राम का मेगा पीजी ध्वस्त, डीटीपी की टीम ने सील किया है मेगा पीजी। डीटीसीपी की रेड में बड़ा खुलासा, एक घर में बना डाले 45 कमरे, हाई पावर इंफ्रा पर भारी लूट का खुलासा। बिहार के आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर से विरोध में सड़कों पर उतरा युवा, कैंडल मार्च निकाला, पुलिस पर हत्या के केस दर्ज की मांग भी उठाई। मऊ में सड़क हादसे के बाद हंगामा, ग्रामीणों और पुलिस के बीच पथराव हुआ, थानाध्यक्ष घायल हुआ। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत के बाद भड़का आक्रोश, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के श्योपुर में शमशान भूमि पर कब्जे से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर रखा शव, 4 घंटे तक जाम लगाया। हैदराबाद के उपल इलाके में दिन दहाड़े लूट की घटना, कॉस्मेटिक दुकान के अंदर महिला दुकानदार से हुई चेन स्नैचिंग। राजस्थान के नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, डिवाइडर से टकरा गई थी तेज रफ्तार कार, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हरिद्वार में भी सड़क पर बाइक सवार 5 युवकों ने एक युवक को घेर कर पीट डाला, आरोपियों ने डंडों से पीड़ित के सिर पर हमला बोला और ताबड़तोड़ थप्पड़ भी बरसाए। अकोला के कबाड़ी दुकान में लगी थी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने घंटों के बाद काबू पाया। उत्तराखंड पुलिस के जवान की जिम एक्सरसाइज के दौरान मौत हुई, मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं। जोधपुर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, 6 की तलाश जारी। रेवाड़ी में युवकों ने महिला को सम्मोहित करके निकलवाए कुंडल वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद। फरीदकोट में आर्श डल्ला गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार, 2 विदेशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद। हैदराबाद में व्यक्ति को कोबरा सांप के साथ खिलवाड़ करना भारी पड़ गया, रेस्क्यू के दौरान सांप ने काटा, अस्पताल में मौत हुई। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 10 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए, कारतूस भी बरामद। चेन्नई वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज पर 3-0 से जमाया गया कब्जा। पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 218 रन पर सिमट गई। भारत ने 28.4 ओवर में ही एक विकेट 224 रन बनाकर हासिल की थी जीत। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बनाए नाबाद 102 रन। रोहित शर्मा ने खेली 89 रनों की ताबड़तोड़ पारी। भारत के प्रसिद्ध कृष्णा ने 23 रन देकर 5 शिकार लिए, मैन ऑफ द मैच बने। अफगानिस्तान के कप्तान हाशमतुल्लाह शाहिदी की 102 रन की पारी बेकार हुई। अजमतुल्लाह उमर जई ने खेली 50 रन की पारी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कॉकटेल 2 की शानदार कमाई, फिल्म ने 2 दिन में कमा डाले 30 करोड़ रुपए। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर ने कॉकटेल 2 का रिव्यू किया, फिल्म से इंप्रेस दिखी मीरा राजपूत, फिल्म में पति शाहिद ने मुख्य भूमिका निभाई है। अमेरिका ईरान शांति वार्ता को लेकर स्थिति साफ नहीं है, ट्रंप बोले मध्य पूर्व की सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका अहम। अमेरिका ईरान के बीच पूरी तरह से युद्ध विराम, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, हॉर्मुज स्ट्रेट में 60 दिन तक कोई टोल नहीं। हॉर्मुज पर सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावों ने ईरान का ने इसका खंडन किया, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का दावा किया। ईरान के दावों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नकारा, अमेरिका का दावा हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी खुला हुआ है। हॉर्मुज की स्थिति पर अमेरिकी सेना ने नजर बनाई हुई है, ईरानी जहाजों को हॉर्मुज के पास नहीं जाने की चेतावनी।

0: भारतीय नौसेना को आज 3 स्वदेशी पोत मिल गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता से इन जहाजों को नौसेना को समर्पित किया है। INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना को सौंपा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और अब सिर्फ रक्षा खरीदार के तौर पर नहीं रहना चाहते हम। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पहचान डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर हो रही है।
1: महाबली युद्धपोत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वागत कीजिए INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रय।
2: साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने INS विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था।
0: और ये बड़ी और अहम खबर है लेबनान से, जहां इज़राइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है और युद्ध विराम लागू होने के ठीक एक दिन बाद लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 20 लोगों की जान चली गई है। जी हां, बड़ा हमला किया गया एक बार फिर से लेबनान के ऊपर और आपको बता दें कि 20 लोगों की जान जाने की खबर है। कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में इजरायली वायुसेना और ड्रोन्स ने दक्षिणी लेबनान और साथी बेका घाटी को निशाना बनाया है। हिजबुल्ला का दावा यह है कि इजरायल ने सैकड़ों बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। वहीं इजरायली सेना का कहना यह है कि उसने ये कार्रवाई रक्षात्मक रूप से की है। पिछले 48 घंटे में 5 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। शांति की कोशिशों के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच चुका है। तो जिस तरीके से युद्ध विराम का ऐलान किया गया था, अमेरिका की तरफ से कंफर्म किया गया था कि इजरायल और हिजबुल्ला इस बात के लिए सहमत हैं कि लेबनान पर अब अटैक नहीं किया जाएगा। इसराइल की तरफ से सीज फायर पर लेबनान और साथी इसराइल ने सहमति जताई है, लेकिन 48 घंटे के भीतर ही एक बार फिर से जबरदस्त हमला किया गया है दक्षिणी लेबनान पर इसराइल की तरफ से, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई है, कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। और हिजबुल्ला की तरफ से कहा गया है कि यह कोई पहली बार नहीं है, सीज फायर के ऐलान के बाद कई बार इसराइल की तरफ से यही कार्रवाई की गई है। और इसी बीच बड़ी और अहम खबर तेहरान से भी, जहां लेबनान पर इजरायली हमलों से भड़का है ईरान। ईरान ने कहा है कि संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है लगातार, इसीलिए हम फिर से हॉर्मुज बंद कर रहे हैं। ईरान की सेना ने कहा है कि लेबनान पर हमले का मतलब है सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन। एक तरफ तो बातचीत और समझौते का दावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ हमले। ईरान ने कहा है कि ये नहीं चलेगा। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से बहुत ही तल्ख लहजे में इसराइल को चेतावनी दी थी, युद्ध विराम की बात कही गई थी, क्योंकि बार बार बीच बचाव की कोशिशों के बीच भी इसराइल की तरफ से लेबनान पर हमले जारी थे। और तेहरान ने एक बार फिर से इस हमले की निंदा करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया है, जिसके बारे में अमेरिका लगातार कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है। तो तनाव की स्थिति लगातार एक बार फिर से बनी हुई है। स्थितियां फिर से चरम पर पहुंच चुकी हैं। उधर ईरान और अमेरिका के बीच आज स्विट्जरलैंड में बड़ी बैठक होने जा रही है। ईरान का जो डेलीगेशन है वो पहुंच चुका है वहां पर, और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी पहुंच गए हैं जो अमेरिका की अगुवाई कर रहे हैं। शुरुआती शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए स्विट्जरलैंड में अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। वेंस आज ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बगेर कालिबाफ, साथ ही विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ वार्ता करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और उधर जिस तरीके से लेबनान पर एक बार फिर से हमला हुआ है और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की बात ईरान की तरफ से कही गई है, तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
9: MTV Bar, Nirman ka real hero.
10: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
11: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,

पैसा, रुतबा और आलीशान जिंदगी, दुनिया के रईसों के पास वो सब कुछ है जिसकी एक आम इंसान केवल कल्पना कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये दौलतमंद लोग अपना घर बार और देश छोड़कर भाग रहे हैं। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक इस साल अमीरों के पलायन ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस साल रिकॉर्ड 1,65,000 करोड़पति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट होने वाले हैं। पिछले साल 1,42,000 और साल 2024 में 1,34,000 अमीरों ने अपना देश छोड़ा था। साल 2013 के मुकाबले ये आंकड़ा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जब महज 51,000 अमीर माइग्रेट हुए थे। करोड़पतियों के इस बड़े पलायन की वजह भी काफी बदल चुकी है। अमीर परिवार टैक्स छूट के अलावा स्थिरता, सुरक्षा और बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। इस लिस्ट में कुछ देश वेल्थ हब बनकर उभरे हैं, जिनमें शामिल हैं यूएई, जो कि 85.3 के सबसे ऊंचे स्कोर के साथ दुनिया भर के अमीरों की पहली पसंद बना हुआ है। वहीं इस लिस्ट में अमेरिका का वेल्थ मोबिलिटी स्कोर 62.3 है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग दूसरी नागरिकता मांग रहे हैं। अमेरिका से होने वाले आवेदनों में आधे यूरोप के लिए और 1/4 लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देशों के लिए हैं। रईसों के देश छोड़ने के इस ट्रेंड में महाशक्तियां कहे जाने वाले देशों को बड़ा झटका लगा है। खासकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ब्रिटेन इस वक्त अमीरों के पलायन के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोर्स मार्केट बन गया है और ब्रिटेन से बाहर जाने के लिए होने वाले आवेदनों में करीब आधी हिस्सेदारी खुद ब्रिटिश नागरिकों की है। वहीं भारत का वेल्थ मोबिलिटी स्कोर 56.5 है, जो इसे ढांचागत चुनौतियों वाली कैटेगरी में खड़ा करता है। पूंजी पर चुनिंदा लोगों का कंट्रोल और टैक्स के पेचीदा नियम भारतीय अमीरों के पलायन की मुख्य वजह है। भारतीय अमीर परिवारों के लिए दूसरा घर या नागरिकता लेना एस्टेट प्लानिंग और टैक्स स्ट्रक्चरिंग का हिस्सा बन चुका है। इसके जरिए वो बच्चों की शिक्षा, बिजनेस का विस्तार और सक्सेशन प्लानिंग को आसान बना रहा है। दूसरी तरफ कुछ देश इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं। प्रवासी कारोबारी यूएई को एक बड़े प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करके दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। वहीं अमीरों के निवेश और नागरिकता के करीब आधे आवेदन पुर्तगाल,

इटली और नीदरलैंड्स जैसे यूरोपीय देशों के लिए है, और स्पेन का गोल्डन वीजा बंद होने और पुर्तगाल में सख्ती के चलते ग्रीस को सीधा फायदा मिल रहा है। दुनिया भर के वेल्थ मार्केट में मची इस हलचल से साफ है कि अमीर वहीं रुकना चाहता है जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे और उन्हें बेहतर लाइफस्टाइल मिले। ग्लोबल लेवल पर वेल्थ मोबिलिटी के बदलते समीकरणों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में दुनिया का नक्शा और इकोनॉमी दोनों बदलने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Factors.
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह के 11:30 के बुलेटिन में चार बड़ी अहम खबरों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहली जो खबर है वो है नीट री एग्जाम से जुड़ी हुई। आज दोपहर 2 बजे नीट की दोबारा से परीक्षा होनी है, जिसके लिए देश भर के सेंटर्स पर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। उधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज SIT अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। और इसके साथ ही बात करेंगे, पार्टी में बगावत के बाद ममता बनर्जी के सामने आई है नई चुनौती। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे और इस दौरान 3 युद्धपोत नौसेना में शामिल होने की भी चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण खबर, देश भर में आज नीट UG की परीक्षा दोबारा से होनी है और जिसमें 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। पेपर लीक के बाद 3 मई को हुई नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ दोबारा से परीक्षा करा रही है। पिछला पेपर लीक होने के बाद इस बार बिना गड़बड़ी परीक्षा कराना NTA के सामने बड़ी चुनौती है और इसीलिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कल मॉकड्रिल किया गया था, चाहे वो CCTV कैमरों की बात हो, पहले तमाम किस सिस्टम से लेकर लाइट से लेकर बैकअप से लेकर तमाम चीजें चेक की गई हैं कि किसी भी तरह की कोई भी कोताही कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो पेपर लीक के बाद वैसे भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए हैं, बहुत फजीहत NTA और सरकार की हो चुकी है, इसीलिए सबकी नजरें टिकी हुई हैं आज होने वाली इस परीक्षा पर।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है, मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: तो नीट री एग्जाम की तैयारियों के बीच उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा दें जब भोपाल के स्ट्रांग रूम में एग्जाम पेपर निकाले गए और फिर CRPF जवानों ने इसे सुरक्षा घेरे में ले लिया। तो इसी को लेकर बवाल हुआ था ना कि किस तरीके से पेपर लीक हो गया, इसीलिए तमाम इंतजाम किए गए और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें हैं, भोपाल के स्ट्रांग रूम में देखिए जरा, एग्जाम पेपर जब निकाले गए तो कैसे कुछ ही सेकेंड्स के भीतर पूरा का पूरा सुरक्षा घेरा बना लिया गया CRPF के जवानों की तरफ से।
3: नीट परीक्षा से पहले कड़ी सुरक्षा में जो पेपर्स हैं उन्हें अब परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए सामने CRPF के जवान आपको दिख जाएंगे और कड़ी सुरक्षा घेरे में नीट के जो पेपर्स हैं उन्हें स्ट्रांग रूम से निकाल करके अब परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं। और आप देखिए किस कड़ी सुरक्षा के साथ फिलहाल ये पेपर्स जो हैं ये रखे गए थे। एयरफोर्स के विशेष विमान से पहले भोपाल पहुंचे और फिर भोपाल में कड़ी सुरक्षा के बीच इन पेपर्स को गुप्त जगह पर रखा गया था, क्योंकि किसी भी चीज़ की जानकारी जो है वो यहाँ दी नहीं गई थी पहले कि पेपर्स कहाँ रखे गए हैं। आमतौर पर जो कमिश्नर कार्यालय होता है वहीं पर ये पेपर्स रखे जाते थे, लेकिन इस बार सुरक्षा इतनी कड़ी रखी गई थी, गोपनीयता इतनी ज़्यादा रखी गई थी कि पेपर्स के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी कि इन पेपर्स को कहाँ रखा गया है। और अब आपको दिखाएं कि जैसे ही परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है तो परीक्षा केंद्रों की तरफ कड़ी सुरक्षा में CRPF जवानों की इन पेपर्स को रवाना किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं जहाँ तकरीबन 13,000 से ज़्यादा छात्र आज रीनीट परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और परीक्षा इस बार लीक प्रूफ हो इसकी पूरी तैयारी रखी जा रही है। और ये देखिए जो स्ट्रांग रूम बनाया गया था वहाँ पे आप देख सकते हैं जो सरकारी गाड़ियाँ हैं जिनमें इन पेपर्स को ले जाया जा रहा है वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं सुबह ही, और ये भारत सरकार की गाड़ी भी आपको यहाँ दिख जाएगी। और क्योंकि ये पूरा जो परीक्षा होने वाली है उसमें इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई लीकेज ना हो, इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्थानीय प्रशासन और साथ ही में CRPF के जवान, आप देखिए जिस गाड़ी में ये पेपर जा रहे हैं उसमें भी बाकायदा CRPF के जवान आपको दिख जाएंगे। उस गाड़ी में भी CRPF के जवान हैं जिस गाड़ी में ये क्वेश्चन पेपर पहुंच रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर बता रही है कि इस बार की परीक्षा में कितना ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है सुरक्षा का, क्योंकि बार बार जिस तरीके से परीक्षा सवालों के घेरे में आ रही थी इस बार ऐसा कोई गड़बड़ी ना हो इसको देखते हुए खास ध्यान रखा गया है और गोपनीय तरीके से इन जगहों पर रखा गया था पेपर्स को। और अब देखिए किस तरीके से सुरक्षा घेरे में, मतलब क्वेश्चन पेपर भी सीआरपीएफ जवानों के घेरे में रवाना हो रहे हैं परीक्षा केंद्रों के लिए, और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से इस बार न हो और खास तौर से इस बार की नीट परीक्षा पूरी तरीके से लीक प्रूफ हो। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
1: अब एक और बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के 6 जो बागी सांसद हैं आज पार्टी से अलग होने की घोषणा करने वाले हैं। आज इन सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है जिसमें वो उद्धव की पार्टी से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान सांसद स्पीकर से अपनी मुलाकात का वीडियो, फोटोज और स्पीकर का सौंपा गया पत्र भी जारी करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर किन किन परिस्थितियों में उन्होंने शिवसेना यूबीटी को छोड़ने का फैसला किया है। आज दो बागी सांसद चेन्नई और दो कोलकाता से मुंबई पहुंचने वाले हैं। एक सांसद पहले से ही पुणे में हैं, जबकि एक और सांसद हैं जो मुंबई में ही मौजूद हैं। कुल 6 सांसदों के पार्टी छोड़ने की घोषणा आज की जा सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इसके बाद सभी 6 बागी सांसद उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे से भी मिल सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि अगर जरूरी हुआ तो ये सांसद फिर से लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, कितने बजे है प्रेस कॉन्फ्रेंस?
0: देखिए दोपहर बाद जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बागी सांसद कर सकते हैं। चेन्नई और कलकत्ता से जैसे ही सांसद पहुंचेंगे, एक सांसद जो दीना भाई पाटिल है वो इस वक्त मुंबई में है, और ओम राजे निम्बालकर वो पुणे है, पुणे से बॉम्बे आएंगे और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बताएंगे कि उन्होंने स्पीकर को जो पत्र सौंपा है उसमें क्या लिखा है, कि उनका ये कहना है कि पार्टी जो है अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। उसके साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो है वो यूबीटी का जो विलय है वो कांग्रेस में कराना चाहते हैं, इसीलिए वो जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप की जो शिवसेना है उसमें शामिल हो रहे हैं। उसके साथ साथ
1: जो है स्पीकर तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही है, और कल जो अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया कि पहले महाराष्ट्र में दो नाम हुआ करते थे, आप सिर्फ एक ही शिवसेना की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म पिच तैयार की जा चुकी है पहले ही।
0: देखिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म पिच जो है वो तैयार की जा चुकी है, और इसीलिए 6 सांसद जो हैं 9 में से टूट कर आए, 2/3 का आंकड़ा चाहिए था वो है। अब देखना यह है कि ये 6 सांसद आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या घोषणा करेंगे, लेकिन जो हमको सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है वो एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है शिवसेना का उसमें वो शामिल होंगे, और उसके साथ साथ वो स्पीकर से जो उन्होंने मुलाकात करके पत्र दिया था उसके फोटो और वीडियो वो जारी किए जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ये सांसद जो है आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर जो है स्पीकर से मुलाकात करेंगे, क्योंकि यूबीटी ग्रुप के जो सांसद हैं 3 सांसद थे अनिल देसाई, अरविंद सावंत और संजय राउत, इन्होंने मुलाकात की थी स्पीकर से और उन्होंने कहा था कि अगर हमारा कोई गुट के हमारे सांसद अलग गुट की मांग करते हैं तो आपको हमसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी का जो विलय है वो नहीं हो सकता शेड्यूल 10 के अकॉर्डिंगली। और जो संजय देसाई वर्सेस जो है सुभाष देसाई वर्सेज मुंबई के गवर्नर का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें पार्टी का विलय और कोई अलग गुट को मान्यता नहीं मिल सकती है, तो इसीलिए आपको बुलाकर हमारे पक्ष को जानना होगा पहले जो है। अब ये 3 जो यूबीटी के सांसद है इनका पक्ष जानने के बाद ही जो है स्पीकर कोई फैसला लेंगे, लेकिन इतना जरूर है अगर जरूरत पड़ी तो इन 6 सांसदों को दोबारा बुलाकर जो है मुलाकात करेंगे, क्योंकि पहले जब स्पीकर से मुलाकात हुई थी अतुल निम्बालकर ने जो है ओम राजे निम्बालकर ने जो है वो स्पीकर से अलग मुलाकात की थी, बाकी 5 सांसदों ने जो है वो अलग मुलाकात की।
1: सबकी निगाहें आज टिकी रहेंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर महाराष्ट्र में होने जा रही बगावत को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी को देने के लिए। आपको यह भी बता दें कि उधर टीएमसी में भी बगावत का दौर लगातार जारी है। इसके बाद अब पार्टी फंड की परेशानी सामने आई है, बड़ी चुनौती सामने आई है, क्योंकि बागी गुट के 10 विधायकों की शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिस पर नया सियासी हंगामा शुरू हो चुका है।

0: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची। लेकिन क्या अब टीएमसी की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है।
1: लॉज्ड एन कंप्लेंट, ये कंप्लेंट इसलिए लॉज किया गया है क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कटमनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंड्स का पैसा है, ये सब प्रूव होना चाहिए। हम लोग तो प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो ये हम लोग इसलिए FIR किए हैं। तो FIR से गवर्नमेंट अगर प्रूव करेगा मालूम होगा, और खास करके ये पैसा इस्तेमाल भी ना हो, जो चार्टर्ड फ्लाइट में दिल्ली जा रहा है 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपया आने जाने में, तो ये पार्टी का कॉमन आदमी जो केस लड़ रहा है उसके लिए पैसा नहीं है। MLA लोग अपने गोल्ड गिरवी रख रहे हैं, और ये तो हम लोग ये FIR में लिखे हैं कि प्रूफ भी होना चाहिए और ट्रांजैक्शन तुरंत बंद कर देना चाहिए।
0: इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच टीएमसी की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
2: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके ये फंड पार्टी का जो है, तो दूसरे बड़ा बड़ा फंड वाला पार्टी जो है, तो जो दिल्ली में सत्ता में है, जो स्टेट में सत्ता में था, तो उनके देखिए ना, तो क्या है तृणमूल कांग्रेस का, तो हमारा ऑफिशियल आपका पार्टी के तरफ से ऑफिशियल यही आपका रिएक्शन है, जो लोग मेलाइन करने के लिए ये बोल रहा है, हम अभी ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, पार्टी का लीगल ऑफिशियल ऑडिटेड फंड है, बाकी ये पार्टी कंसर्न जो लीडरशिप है वो देख रहे हैं।
3: दिस इज आवर मनी, दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी, एंड मिस्टर अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी, टीएमसी पार्टी मेंबर्स, वेदर यू आर विद अ न्यू पार्टी और विद वेदर यू आर विद टीएमसी, यू ऑल हैव चीटेड the people of Bengal, and this is the reason for your downfall. Using our money, you all have traveled in chartered flights, big convoys in front of your house, huge police battalion standing, and people were facing difficulty to cross the road. These are the reasons. Realize it. This is the reason for your downfall.
0: टीएमसी में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: तो एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी हुगली जिले के पश्चिम बंगाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, और इस दौरान प्रधानमंत्री ने टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों को आड़े हाथों लिया, कहा कि बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हुआ है।
5: बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है, यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
4: तो हुगली की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि देश की आजादी के समय बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश भी की गई थी। उस कठिन समय में कांग्रेस ने मजबूती से खड़े होने के बजाय घुटने टेक दिए थे।
5: बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए।
4: राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी के बीच सूत्रों से बड़ी और अहम खबर आ रही है कि एसआईटी आज अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। शुरुआती जांच के लिए सरकार ने एसआईटी को एक हफ्ते का समय दिया था। सूत्रों की अगर माने तो प्रारंभिक रिपोर्ट है 150 पन्नों से ज्यादा की, तो कई खुलासे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी निकाला गया है, जो शिलाएं थी, चांदी की चीजें थी, कुछ आभूषण थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। कुल मिलाकर सिर्फ ये दान से रिलेटेड घपले का मामला नहीं है। अब जो चढ़ावा सोने चांदी या फिर जो महंगी ज्वेलरी चढ़ाई गई है, वहां तक बात बढ़ती हुई नजर आ रही, जिनके पेपर्स नहीं पाए गए हैं। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे।
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
7: Bharat Ki Apni Electric Sawari.
8: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
9: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
10: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
13: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
12: Smartless.
14: Hey, guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of...
12: Marketplace.
15: Big three on the program today, or, you know, the big three of...
12: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
16: Sokudo.
5: योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: a burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One-hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
9: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के कोने कोने में योगा अभ्यास की धूम है। जमीन से लेकर जल तक, पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक, योगासन की ये तस्वीरें लोगों में योग की गौरवशाली प्राचीन भारतीय परंपरा के प्रति असीम उत्साह की झलक दिखला रही है। सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि विदेशों के नागरिकों में भी योग की उत्सुकता साफ साफ नजर आ रही है। हर कोई 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि योग के महत्व और इसके फायदों को अब दुनिया समझने लगी है। यही कारण है कि जगह जगह जोर शोर से योग दिवस मनाने की शानदार तैयारियां नजर आईं। यह तो सभी जानते हैं कि योग तन की अच्छी सेहत और मानसिक शांति का आधार है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि आखिर योग का आधार क्या है, योग साधना का विकास कैसे हुआ और आखिर किस प्रकार इसका विस्तार हुआ है। इसके बारे में जानकारी भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलती है। हमारे वेद पुराणों, उपनिषदों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय सनातन परंपरा में परम आराध्य महादेव से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक के जीवन और कर्मों से योग का संदेश मिलता है। हम आपको आज योग की महिमा बताएंगे और इसके दर्शन के बारे में समझाएंगे। मानवीय चेतना के उत्थान और लक्ष्यों की प्राप्ति में योग किस तरह मददगार है, यह भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
10: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही हैं।
11: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं। उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
10: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
11: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
10: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं, तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
4: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता।
5: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
10: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है, या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni electric.
3: आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा. 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर जबरदस्त सुरक्षा. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एनटीए पर भरोसा रहे, जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी निभाएं.
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट. सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं.
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया योग उत्सव. कहा, संतुलित जीवन ही कला सिखाता है कि कला सिखाता है योग.
4: भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत. दूनागिरी संशोधक और अग्रय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया. कहा, रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत.
3: और अमेरिका ईरान डील पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड में सजा मंच. अमेरिकी टीम में जेडी वेंस, विटकॉफ, ईरानी दल में अराक्ची और गलिबाफ.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। आज नीट की परीक्षा है और आपको बता दें कि डॉक्टर बनने के सपनों के साथ देश भर के करीब 22 लाख बच्चे फिर से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि बच्चों के लिए ये जो स्पेशल टेस्ट है बहुत ही इम्तिहान है बड़ा, तो टेस्ट लेने वाले सिस्टम के लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
1: नमस्कार, मैं हूं आशुतोष मिश्रा। बस 2 घंटे बाद नीट रीटेस्ट शुरू होने वाला है। सेंटर पर बच्चे पहुंच रहे हैं, ताले खुल चुके हैं, दरवाजे खुल चुके हैं, बच्चे परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा में पेपर बैंक से सेंटर तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस बार शहर शहर पेपर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पहुंचाए गए। वहीं बैंक से सेंटर तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों के जवानों ने निभाई है। तो दोपहर 2 बजे से नीट की ये परीक्षा शुरू होगी। ये बच्चों का इम्तिहान नहीं, उनके अभिभावकों का इम्तिहान नहीं, बल्कि नीट सरकार के तौर पर पूरे संस्था का इम्तिहान है,
0: पूरे सिस्टम का इम्तिहान है, सरकार का इम्तिहान है। और जिस तरीके से नीट लीक को लेकर जबरदस्त फजीहत हुई है, चाहे वो एनटीए की बात करें या सरकार की बात करें, उसके लिए तमाम फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त हैं। चाहे सीआरपीएफ की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, तमाम पूरी तैयारियां की गई हैं। और कल प्रॉपर मॉक ड्रिल के जरिए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। तो लीक प्रूफ परीक्षा के लिए सरकार ने कमर कसी हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रीटेस्ट से पहले क्या कहा, देखिए।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे।
1: तो 100% शुद्ध परीक्षा के लिए सरकार ने गारंटी दी है, आखिर इसकी नौबत क्यों आई? लेकिन इस पूरी खबर पर चप्पे चप्पे पर आज तक की टीम तैनात है। हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग शहरों में जहां नीट के परीक्षा केंद्र हैं वहां पर तैयार हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस बार कैसे अभूतपूर्व तैयारियां हैं, पिछली बार की गई गलतियों से सबक लिया गया और सबक सीखते हुए दिल्ली से हमारे सहयोगी अनमोल बाली हमारे साथ दिख रहे हैं, लखनऊ से कुमार अभिषेक, पटना से शशि भूषण और रांची से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तपसेन गुप्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अनमोल, तैयारियां हमने देखी, अर्धसैनिक बलों की तैनाती हमने देखी, हेलीकॉप्टर से परीक्षा पेपर ले जाते हुए हमने देखे, ये संभवतः किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। लेकिन अब क्योंकि बच्चों के, छात्रों के भी, अभिभावकों के लिए भी एक बड़ा दिन है, एक परीक्षा दे चुके, अब निश्चिंत होने की बारी थी, लेकिन आप दोबारा परीक्षा में बैठ रहे हैं। जरा दिखाइए तस्वीरें, माहौल क्या है?
3: आशुतोष, इस समय मैं ईस्ट दिल्ली के सर्वोदया कन्या बाल विद्यालय मयूर विहार फेस 2 में खड़ा हूं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो छात्र हैं अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिल होना शुरू कर गए हैं। अगर पीछे आप तस्वीरों में देखें तो एक एक छात्र को चेक किया जा रहा है और साफ तौर पर बाहर लिखा है कि आप क्या क्या अंदर नहीं लेके जा सकते। तो ये आप देख सकते हैं, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती भी है। अगर मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीरों में दिखाऊं कि दिल्ली पुलिस के जवान आपको बाहर बैठे दिखेंगे, हर तरफ आपको दिल्ली पुलिस के यहां पर जवान दिखेंगे और साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कूलिंग जोन भी बना रखे हैं स्पेशल विद्यार्थियों के लिए, जो नीट एस्पिरेंट हैं उनके मां बाप के लिए, क्योंकि जब देखा जाएगा कि बच्चे अंदर चले जाएंगे भीषण गर्मी के बीच, जो उनके मां बाप हैं वो वहां यहां बैठकर इंतजार करेंगे। पानी की भी यहां पर व्यवस्था की गई। और अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करूं तो 97 ऐसे नीट के एग्जामिनेशन सेंटर हैं पूरे दिल्ली भर में, जहां देखा जाएगा कि 58,000 के आसपास जो विद्यार्थी हैं दिल्ली में आज री नीट के लिए अपीयर करेंगे। और साथ ही सीसीटीवी एआई के जरिए भी जो है नजर रखी जा रही है, बायोमेट्रिक के जरिए भी अटेंडेंस होगी विद्यार्थियों की और साफ तौर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। बैरिकेडिंग भी देखने को मिल रही है, भारी सुरक्षा बल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार के लिए आशुतोष बड़ी अग्नि परीक्षा है। पहला जो नीट का एग्जाम था वो लीक हो जाता है, मामला सीबीआई को दे दिया जाता है, उसके बाद राजनीति पर, इसी राजनीति के बीच एक तरफ तो बच्चों का नीट का एग्जामिनेशन और दूसरी तरफ नेशनल टेस्ट एजेंसी के लिए भी एक बड़ा एग्जाम।
0: बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। और इसके लिए मॉक ड्रिल पूरी तरह से कल हमने देखा, उसके बाद तैयारियां लगातार दर्शकों को हम आज तक पर दिखा रहे हैं। लखनऊ का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, तस्वीरें दिखाइए, तैयारियां बताइए, साथ ही साथ पेरेंट्स से आपकी बात हुई, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? हालांकि कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से कि इतनी भरी गर्मी में उनके लिए भी खास इंतजाम हो और उनको भी काफी कंसोल किया गया है।
4: बिल्कुल शशि, मैं तस्वीरें दिखाता हूं, लेकिन जैसा आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि परीक्षार्थियों का तो एग्जाम है ही है, ये सरकार और सिस्टम का भी एग्जाम है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूं पीजीआई, लखनऊ पीजीआई का जो केंद्रीय विद्यालय है उसके बाहर, जहां पर आप देखें किस तरीके से अब बच्चे जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी चेकिंग बहुत कई लेयर्स पर ये चेकिंग है। किसी को भी चप्पल पहन करके ही जाना है, स्लीपर्स में ही जाना है। आप देखें तो जूते चप्पल सब उतरवाए जा रहे हैं और तीन तीन जो सुरक्षा चक्र हैं उससे गुजरना होता है। अगर कई लोग अगर दूसरे तरह के चप्पल पहन के आए हैं तो उन्हें खाली नंगे पांव ही यहां से जाना अंदर होगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा की परीक्षा की तैयारियां हैं। आगे देखेंगे अगर आप तो कई सुरक्षा लेयर बनाए गए हैं, जहां पर एक जगह फिजिकल फ्रिस्किंग हो रही है, चेकिंग हो रही है, आगे फोटोग्राफी हो रही है एक एक जो नीट के परीक्षार्थी हैं उनकी, और कई जगहों पर ये चेकिंग हो रही है। तो अगर आप देखें तो इस बार बेहद कड़े इंतजाम, और जैसा कि सरकार का भी दावा है कि इस बार बहुत बृहद और बहुत बड़े इंतजाम है। तो तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से बच्चों का की फ्रिस्किंग और उनकी उनको चेक किया जा रहा है, लेकिन सरकार के लिए कहीं ज्यादा बड़ा ये एग्जाम है, सिस्टम के लिए बड़ा एग्जाम है, इसलिए क्योंकि ये दूसरी बार रीनीट की परीक्षा। और दूसरी तरफ आपको दिखाएं बहुत सारे गार्जियंस हैं जो कि अपने बच्चों को जो लेकर के आए हैं वो बाहर उनको चेक किया जा रहा है, लेकिन सरकार के लिए कहीं ज्यादा बड़ा ये एग्जाम है, सिस्टम के लिए बड़ा एग्जाम है, इसलिए क्योंकि ये दूसरी बार रीनीट की परीक्षा। और दूसरी तरफ आपको दिखाएं बहुत सारे गार्जियंस हैं जो कि अपने बच्चों को जो लेकर के आए हैं वो बाहर उनको चेक किया जा रहा है, लेकिन सरकार के लिए कहीं ज्यादा बड़ा ये एग्जाम है, सिस्टम के लिए बड़ा एग्जाम है, इसलिए क्योंकि ये दूसरी बार रीनीट की परीक्षा। और दूसरी तरफ आपको दिखाएं बहुत सारे गार्जियंस हैं जो कि अपने बच्चों को जो लेकर के आए हैं वो बाहर हैं, हालांकि ये दूसरी बार दे रहे हैं। गार्जियंस को भी बहुत परेशानी जरूर हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार जो सरकार का दावा है कि क्या ये इस बार भली भांति होता है या फिर कहीं कोई सवाल खड़े होते हैं।
1: दरअसल अभिषेक, मौसम इस तरह की बाधा नहीं डाल सकता, मौसम अभिभावक तो उनके लिए भी तैयार होते, लेकिन शेष मैं आपको बताऊं कि जब हमने कभी भी महाराष्ट्र में सीईटी होता था, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, जब आप एक बार तैयारी करते हैं, बोर्ड इम्तिहान दे देते हैं, अचानक आपको पता चलता है कि दोबारा परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। हाँ। बच्चों की तैयारी कराना, अभिभावक के तौर पर तैयारी कराना, वो सबसे बड़ा हेडेक। और आप उस तनाव से निकल चुके हैं कि अब तो बस नतीजे आएंगे, हमारा मेरिट में होगा, एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको पता चलता नहीं दोबारा परीक्षा देने, वो क्यों, क्योंकि
0: आप उसी फेज में चले जाते हैं।
1: और उस फेज में जाने के बाद आज हमने जो तस्वीरें देखी है वो अभूतपूर्व है। आप सोचिए कि कैसे पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सिक्योरिटी में ले जाया जाए। एक बार पटना का रुख कर लेते हैं, शशिभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। शशिभूषण, वहां भी बच्चों के लिए और पटना में तो जो कोचिंग के लिए इतनी बड़ी संख्या में हजारों बच्चों तैयारी करते हैं, एक तैयारी करके वो बहुत रिलैक्स हुए होंगे कि अब तो बस रिजल्ट की बारी है, आज फिर दोबारा परीक्षा के लिए आए हैं। इस परीक्षा में पटना कितना इम्तिहान दे रहा है?
5: देखिए वो दौर निकल गया आशुतोष, हालांकि बच्चे कंफर्ट जोन में चले गए थे एग्जाम देने के बाद जब नीट की पहली दफे परीक्षा हुई थी, लेकिन फिर वो दौर आया जब रीनीट का ऐलान हुआ, और अब देखिए आज वो तारीख है जब कुछ देर के बाद परीक्षा शुरू भी हो जाएगी। इस वक्त मैं पटना के AN कॉलेज सेंटर पे हूँ, और यहाँ पे देखिए आपको तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ भी लगभग उसी तरह के इंतजाम है जैसे इंतजाम बाकी दूसरे शहरों में NTA ने करे हैं। तीन स्तर की यहाँ भी चेकिंग है, यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं बजाबता उनका मेटल डिटेक्टर और बाकी तरह से, और जो कान होता है ना, मतलब उसमें कहीं कोई ब्लूटूथ तो नहीं है, कहीं कोई सेंसिटिव इक्विपमेंट तो नहीं है, इसकी भी बजाबता चेकिंग हो रही है। और जब यहां से एक बार पहले स्तर पर देखिए मेन गेट है, हमारे सहयोगी दीपक दिखा रहे हैं मेन गेट पर पहले स्तर की चेकिंग, उसके बाद जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं यहां दूसरे स्तर पर चेकिंग हो रही है, और यहां जब आगे बढ़ते हैं हम अपने पीछे तरफ थोड़ा पीछे आकर के दिखाएं तो यहां जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर जो छात्राएं हैं, परीक्षार्थी हैं, उनकी अब यहां पर चेकिंग हो रही है, और चेकिंग के बाद अंदर जो एक कॉट बनाया गया है जहां पर उनको अंदर देखा जाएगा, चेकिंग की जाएगी, इसको बजाबता एक कह सकते हैं कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से यहां चेकिंग हो रही है। और कई ब्लॉक्स में यहाँ एग्जाम है। अगर पटना की बात करें तो 94 सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पे, और जिसमें 46,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आज नीट की परीक्षा देंगे। बिहार में 156,000 की संख्या है, 35 शहरों में सेंटर हैं पटना के अलावा, 34 जिले हैं जहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं। तो फुल प्रूफ इंतजाम है, मॉनिटरिंग बहुत सख्त है, और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसी गड़बड़ी पिछली दफे हुई या जो पेपर लीक और बाकी सिस्टम सामने आया, गलत तरीका सामने आया परीक्षा को प्रभावित करने का, वो चीज़ें आज ना हो। गर्मी बहुत है, 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर बच्चों के लिए भी चुनौती है। एक तो साइकोलॉजिकल दबाव उनके ऊपर रहा,
0: और ऊपर से मौसम की मार।
5: 2 बजे परीक्षा शुरू होगी, तो एक एडवांटेज उनके लिए यह है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा उनको मिल रहा है।
0: बिल्कुल, आप बने रहे शशिभूषण हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता लगातार बने हुए हैं। तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है और कहीं बारिश की शुरुआत हुई है, वो खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, किस तरह की तस्वीर है और वहां मौसम कैसा है?
6: देखिए, भगवान मेहरबान है छात्रों पर, मौसम तो थोड़ा सुहाना है, जितनी भीषण गर्मी पड़ रही थी उतनी नहीं पड़ रही है। मगर देखिए किस तरह से सुरक्षा का इंतजाम आपको दिखाऊं, पुलिस पूरा चाक चौबंद है, क्योंकि यही वो इलाका है, यहाँ बगल में जमुआ रामगढ़ है जहाँ पर 3 लोग अरेस्ट हुए थे नीट पेपर लीक पर, और जयपुर ही एपी सेंटर था। लिहाजा कल भी काफ़ी मॉक ड्रिल कराया गया है, और ये आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर 3 लेयर के सुरक्षा है। आसपास जो भीड़ है वो बाहर रखी गई है, अंदर छाया की भी व्यवस्था की गई है, मेटल डिटेक्टर लिए हुए नीचे अंदर भी आपको नजर आ जाएंगे, पुलिसकर्मी बाहर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए, दोबारा परीक्षा देना आसान नहीं होता, हमने देखा सीकर में किस तरह से कोई जालोर और बाड़मेर से सब बच्चे सामान लेकर वापस आ रहे थे हॉस्टल में, और फिर उन्होंने 1 महीने की पढ़ाई की है। ये माता पिता के लिए भी भारी संकट का सामना करना पड़ा कि किस तरह से बच्चे एग्जाम देकर गए।
1: आप ही का इंतजार हो रहा था ये जानने के लिए, और बच्चे राजस्थान ही वो एपी सेंटर था, ये जो दोबारा परीक्षा होनी पड़ी है, इन सब की शुरुआत हुई राजस्थान से, वहीं से चीजें हमने देखी हैं। अभिभावकों के मन में क्या चिंता, भय, इस तरह तनाव की स्थिति आज भी दिखाई दे रही है?
7: दूर से आए, फिर बच्चों को ले गए हॉस्टल में डाला, फिर वापस गए, फिर वापस सामान लेके, फिर आज फिर वापस टोंक से आना पड़ा एग्जाम दिलाने के लिए।
6: वापस आना पड़ा। तो आप देखिए किस तरह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है कि दोबारा परीक्षा देकर, आप सभी लोग इस स्थिति से।
8: बिल्कुल सर, सही है, बहुत परेशानी है। गए बच्चे, फिर वापस आना पड़े उनको, फिर पीजी लेनी पड़ी बच्चों को, तो डबल खर्चा हुआ है पेरेंट्स का, ये मानो।
6: और बच्चे ही सवाल बड़े आसान आए थे।
8: बिल्कुल, पिछली बार नॉर्मल पेपर था, इतना हार्ड भी नहीं था। सर,
6: आप कहाँ से आए?
9: सर, मैं जयपुर से आया हूँ, मैं आर्मी हूँ, और पिछली बार भी 2 बच्चों ने एग्जाम दिया था तो छुट्टी लेनी पड़ी उस टाइम भी, और आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट से मेरी और सारे पेरेंट्स की मेरे हिसाब से यही आस्था होगी कि बार बार एग्जाम, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, पेपर आउट, पेपर दोबारा हो रहा, ये बहुत समस्या है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों का भविष्य, कई बच्चे मैं न्यूज में भी देखा है कि दिल्ली में कम से कम तो 10 से 11 बच्चे जो सुसाइड कर लिया।
6: ये समस्या है, माओं की भी बड़ी समस्या होती है,
1: ज्यादा चिंता में है, क्योंकि सबसे ज्यादा
0: मेरा सवाल
1: एक्शन वहां से हुआ।
0: मैं तो ये सारी तैयारियां देखने के बाद मेरे मन में सवाल ये आशुतोष कि ये जो पेपर लीक हुआ था एग्जामिनेशन सेंटर से लीक थोड़ी हुआ था, उससे पहले लीक हो चुका था,
1: इसीलिए इस बार टेलीग्राम बंद कर दिया है कि इस तरह ना हो। कम से कम ठीक है, सरकार अगर सचेत, अब उम्मीद। अच्छा, अभिभावकों के मन में एक चीज जरूर दिखाई दे रहा है,
0: बहुत बड़ी बात है कि लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि ये ठीक से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और एक एग्जाम नहीं है जो लीक हुआ है, कई एग्जाम्स हैं जो लीक हुए हैं, जिसे लेकर पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। रांची का हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। सत्यजीत, किस तरह की तस्वीरें, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि देखिए 12:12-13 हो चुके हैं, 14 मिनट हो गए, बहुत कम समय बचा है एग्जाम शुरू होने में।
10: देखिये, बिल्कुल, इस वक्त हम ये HEC केंद्रीय विद्यालय है, और यहाँ पे विद्यार्थियों को आप अंदर जाते देख सकते हैं, और जो प्रोटोकॉल है उसके तहत चेकिंग किया जा रहा है। झारखंड में 67 सेंटर हैं, 30,000 विद्यार्थी जो है वो इम्तिहान दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अभी हम लोग जयपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको 2024 में लेके चले, हजारीबाग था एपी सेंटर जहां से पेपर लीक हुआ था, और हजारीबाग में जबरदस्त तैयारियां की गई है सुरक्षा को लेकर, CRPF लगाया गया है, अंदर जितने सेंटर्स हैं वो CCTV से लैस हैं, सर्विलांस हो रहा है CCTV से, और आपको ये बता दे कि अंदर जैमर भी ऑन किया जाएगा ताकि किसी तरह का सिग्नल जो है वो जा ना सके। कोई मतलब ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट ना हो, ऐसा कोई व्हीकल ना हो जिसके थ्रू विद्यार्थियों को जो है मदद पहुंचाया जा सके। तो ये बिल्कुल जो है तैयारी की गई है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, सेंटर के आसपास आप नहीं रह सकते हैं। और पेरेंट्स जो हैं उनके चेहरे पे आज भी तनाव देखा जा रहा है कि इस बार तो इम्तिहान सही से हो जाए। अगर किसी विद्यार्थी का इम्तिहान पिछले बार बहुत अच्छा गया था और वो एश्योर्ड था कि इस बार वो क्रैक कर लेगा, तो उससे उसके सपने से पेरेंट्स की सपने भी जुड़े रहते हैं। उन्हें लगने लगता है कि आप अगर एंट्रेंस में एक बार हो गया सरकारी कॉलेज में, अगर मेडिकल कॉलेज में बच्चा चला गया तो डॉक्टर बन के निकलेगा। लेकिन जब वो कैंसिल हो जाता तो इस बार क्या गारंटी है कि उसके वो उस वक्त जो उसका किस्मत था अच्छे क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन भिड़ जाए, उतना ही बढ़िया इम्तिहान जाए। इसको लेकर गार्जियंस जो है,
1: एक चीज हम ये भी मानते हैं सत्यजीत कि कई भी माँ बाप को अपने सपनों का बोझ बच्चों के कंधों पर नहीं डालना चाहिए। आप हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहे, इस पूरी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं क्योंकि सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि नीट का इम्तिहान है, सरकार का इम्तिहान है। एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
14: What you got for me, Jack?
13: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
15: Har pal manao केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी।
16: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
17: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिंझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
18: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
19: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
20: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
18: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
21: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
19: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
18: जहां खबर वहां खबरदार,
22: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
23: क्या कहती है आपकी राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन, किस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर, देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
24: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
25: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
26: प्लीज बजी पर प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
27: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
26: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ, आई चैलेंज यू बजी पर। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।

ये इसराइल का अजेय सुरक्षा कवच आयरन डोम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कवच की असली चाबी वॉशिंगटन के पास है। आंकड़ों की बात करें तो साल 1948 में इसराइल के जन्म के बाद से अब तक अमेरिका उसे $158 बिलियन यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी सैन्य मदद दे चुका है। मौजूदा 10 वर्षीय समझौते के तहत अमेरिका हर साल इसराइल को $3.8 बिलियन की निश्चित सैन्य मदद देता है, जिसमें से $500 मिलियन सिर्फ मिसाइल डिफेंस के लिए होते हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई लाइन का है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस जिन अत्याधुनिक F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स के दम पर ईरान और लेबनान में तबाही मचाता है, वो सब 100% अमेरिकी है। इसराइल के कुल हथियार आयात का 69% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। इस 3 महीने की लंबी जंग में जब इसराइल के तोप के गोले और गाइडेड बम खत्म होने की कगार पर पहुंचे, तो अमेरिका ने आपातकालीन एयरलिफ्ट के जरिए हजारों टन गोला बारूद यरूशलम पहुंचाया। लेकिन इसराइल के लिए अमेरिका सिर्फ बारूद का सौदागर नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा ग्लोबल डिप्लोमेटिक बॉडीगार्ड भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में जब भी पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाती है, अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलग थलग होने से बचा लेता है। इतिहास में अमेरिका ने 45 से ज्यादा बार इसराइल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसराइल अमेरिका पर इतना निर्भर है तो नेतन्याहू ट्रंप की बात क्यों नहीं मान रहे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसराइल के पास कुछ महीनों की जंग, अकेले लड़ने का हथियारों का बफर स्टॉक और खुद की मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री जैसे एल्बिट सिस्टम्स जरूर है, लेकिन अगर ईरान के साथ लंबी खींचने वाली जंग होती है तो अमेरिका के बिना इसराइल की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसों की बदौलत इसराइल सुरक्षित है, इसलिए उसे वॉशिंगटन के शांति रोड मैप का सम्मान करना ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। नेतन्याहू जानते हैं कि अमेरिकी मदद के बिना ईरान से लंबा युद्ध लड़ पाना उसके लिए संभव नहीं है, इसीलिए वो ट्रंप की लाइन को पूरी तरह काटे बिना आखिरी क्षण तक अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय का खेल खेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर जबरदस्त सुरक्षा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एनटीए पर भरोसा रहे, जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी निभाएं।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया योग उत्सव। कहा, संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग।
1: भारतीय नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, दूनागिरी, संशोधक और अग्रय। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत।
0: और अमेरिका ईरान डील पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड में सजा मंच। अमेरिकी टीम में जेडी वेंस विटकॉफ, ईरानी दल में अराक्ची और गालिबाफ। परमाणु कार्यक्रम पर बैठक।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा।
1: आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। आज नीट की परीक्षा है, 22 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है।
0: और आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा, खासतौर से लीक के बाद जिस तरीके से सवाल उठाए गए थे। तो सिर्फ ये बच्चों की परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा है सिस्टम की, सरकार की, एनटीए की। और आपको ये भी बता दें कि दोपहर 2 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा नीट का। तमाम तैयारियां जबरदस्त तरीके से की गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, देश भर के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, स्टूडेंट्स का पहुंचना लगातार जारी है क्योंकि एग्जाम शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी है।

0: मेडिकल की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा जिसका पेपर लीक हुआ तो लाखों छात्रों का भरोसा टूट गया। अब उसी भरोसे को बहाल करने की कोशिशों के बीच आज नीट यूजी का री एग्जाम है और उसके लिए पूरे देश के हर सेंटर पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम है। परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार ने इस बार फुल प्रूफ एग्जाम के लिए किस तरह की तैयारी की है। सेंटर्स पर जवान तैनात है, पूरी व्यवस्था की बार बार निगरानी हो रही है ताकि बिना किसी गड़बड़ी के नीट की परीक्षा कराई जा सके और इस बार छात्रों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
1: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: पिछली बार पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी, लिहाजा इसे लेकर खासी तैयारी की गई है। पुलिस की साइबर सेल इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जा रही है, जिससे छात्रों का भी भरोसा बढ़ा है।
2: हमसे ज्यादा ध्यान देने पे अगर तुम अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करोगे पेपर के एरिए में, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम चाहते हैं कि पेपर प्रॉपर तरीके से हो, हम उसे फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम अपना बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पेपर अच्छे से आए, हम उसे अच्छे से दें।
3: वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं और मतलब तैयारी तो पूरी है। जिस हिसाब से इस बार पेपर लीक हुआ था तो उन्होंने मतलब पहले भी बोला था कि थोड़ा टफ आएगा, लेकिन पिछली बार उतना मुझे लगा नहीं कि टफ था, लेकिन फिर भी वही टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: आज जब छात्र दोबारा नीट परीक्षा की तैयारी में हैं, तब इस मुद्दे पर सियासत का असर भी साफ दिख रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने परीक्षा से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर बिना गड़बड़ी नीट परीक्षा की उम्मीद जताई।
4: टू एवरीबॉडी टेकिंग द री नीट एग्जाम, होप यू हैव अ रियली वंडरफुल एक्सीलेंट एग्जाम एंड यू ऑल डू रियली रियली वेल। रिमेंबर वी आर विद यू। To the Prime Minister and to the government, I'd like to say, please, please, please ensure that there are no glitches this time. The students have been through enough stress and they really cannot afford to go through it again.
0: तो इसके बाद शिक्षा मंत्री ने छात्रों से पहले राहुल के इस बयान का जवाब दिया।
1: निवेदन करता हूँ, कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए, हम ऐसा भी कुछ ना काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। कुछ घंटों के बाद बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं इस बात को इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, काल भी भारत की तथाकथित कुछ जिम्मेवार लोग इस प्रकार के व्यवहार किए, इस प्रकार की गलत उद्देश्य से, इल इंटेंशन से कुछ व्यवहार बच्चों के साथ ऐसा किए, मैं उनको करवर्द प्रार्थना करता हूं। कम से कम अगर आप जिम्मेवार हो, अगर आप खुद को भारत की सही नागरिक मानते हो, अगर आप भारत की व्यक्तियों का नुमाइंदगी करते हो, कृपा करके आप दायित्व लो।
0: नीट की परीक्षा फिर से हो रही है और एक बार फिर पूरी व्यवस्था पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सवाल बना हुआ है कि क्या परीक्षा प्रणाली की खामियां वास्तव में दूर कर दी गई हैं? क्या इस बार लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा को लेकर हर इंतजाम पुख्ता है? आज तक ब्यूरो।
5: चुनौतियों से आखिर सरकार की तैयारी कितनी है? लगातार आज तक पर बड़ी कवरेज जारी है। देश के अलग अलग कोने से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से अभिषेक, पटना से शशिभूषण, चंडीगढ़ से अमन, तपस सेन गुप्ता, कोलकाता से आपको कोलकाता लिए चलते हैं। तपस, थोड़ी देर पहले वहां इंद्र देवता मेहरबान हो गए, बेमौसम बरसात हो गई, इसकी तैयारियां हैं? अभिभावक अपने बच्चों को वहां पर छोड़ने आए हैं और ऊपर से मौसम अब जो है खराब हो गया है।
6: जी देखिए, यहाँ मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया, पिछले एक घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है। हम आपको दिखाते हैं, हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं। जब हम यहाँ पहुंचे थे सुबह 10:30 बजे, तब हमने देखा था कि यहाँ पे गेट खोला गया था, फ्रिस्किंग करके अंदर दाखिल होने दिया जा रहा था। अभी भी वो प्रोसेस बकायदा जारी है। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मीडिया कर्मियों को भी दूसरे छोर पर खड़ा किया गया है, लेकिन यहाँ खासा परेशानी लोगों को हो रहा है। सड़कों पे पानी का जल जमाव देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जो विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं अपने इम्तिहान देने, उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक फोरकास्ट था कि आज भारी बारिश हो सकती है, अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन आज सुबह भी काफी ज्यादा धूप थी और सुबह से काफी उमस भी था, एक अंदेशा था कि कहीं ना कहीं बारिश हो सकता है, लेकिन तकरीबन 11 बजे के बाद से लगातार ये बारिश शुरू हुई है और बारिश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस वजह से काफी तेज बारिश हुई है यहाँ पे। लेकिन जो एग्जामिनीज हैं वो यहाँ पर आ पहुंच रहे हैं और यही बारिश के बावजूद वो अंदर दाखिल हो रहे हैं, अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन करते हुए कुछ बच्चे दिखे थे लेकिन बारिश के आने की वजह से उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल होना पड़ा है। और यहाँ जो है फ्रिस्किंग भी किया जा रहा है, वाटर बॉटल तक जो है वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो तभी वो वाटर बॉटल्स बच्चों को कैरी करने के लिए दिया जा रहा है, उन्हें अलाउ किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो दूर दराज के इलाकों से यहाँ आ पहुंच रहे थे उन्हें काफी खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना पड़ रहा है तो सड़कें भी जाम है अलग अलग जगहों पर। कोलकाता पुलिस की तरफ से कुछ जगहों पर ग्रीन चैनल बनाने का बंदोबस्त किया गया है ताकि जो आवाजाही है ट्रैफिक का वो ज्यादा इफेक्ट ना हो, लेकिन भारी बारिश अभी भी कई समय तक चलने का आसार है तो ऐसे में जो विद्यार्थी है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद उस परेशानी के इस नीट एग्जामिनेशन में वो अपेयर करने के लिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पहुंच रहे हैं और ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर का मंजर हम आपको भी दिखा रहे हैं
7: क्योंकि पहले ही ये बताया गया था कि बारिश हो सकती है तो तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। और रुक कर लेते हैं हम जयपुर का, शरद लगातार हमारे साथ बने हुए। शरद, जैसा कि पहले कहा कि मुख्य केंद्र रहा है ये इलाका राजस्थान, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति है, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं? और हम सुन रहे थे उन पेरेंट्स को भी कि कैसे दोबारा से उन्हें पीजी में वापस आना पड़ा, ज्यादा पैसे खर्च हुए, पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं जहां सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी एनर्जी वो बच्चों पर लगाते हैं। शरद, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
8: हेलो,
7: लगता है शरद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। शरद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। हम रुक कर लेते हैं कुमार अभिषेक का, लखनऊ का हम रुक करेंगे। अभिषेक, अगर हम मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाइए, और क्योंकि अब तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आई एम श्योर कि तमाम बाकी के स्टूडेंट्स का पहुंचना भी वहां और ज्यादा बढ़ चुका होगा। और मौसम कैसा है यहाँ पे, क्योंकि कहीं बादल छाए हुए हैं,
8: समस्या पता है क्या हो सकती है? ये संपर्क जो इसलिए कट रहा है, कई परीक्षा केंद्रों के बाहर जैमर भी लगाए गए हैं ये देखते हुए कि, और जब जैमर होता है तो फोन लाइन कटने की पूरी संभावना, संभवतः शरद जुड़ गए। अगर शरद एक बार आप दोबारा ले सके, शरद, अच्छा मुस्तफा मुंबई से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, अगर आप सुन पा रहे हो तो जरा बताएं मुंबई का मौसम कैसा और मुंबई की तैयारियां नीट के इस दोबारा परीक्षा के लिए कितनी है, कैसी है? सारे छात्र अंदर जा चुके हैं या अभी भी इंतजार कर रहे हैं?
9: जी बिल्कुल, इस वक्त परेल मुंबई इलाके में हम मौजूद हैं। एमडी कॉलेज इस एग्जाम सेंटर का नाम है जहां पर री एग्जामिनेशन के लिए आए हुए हैं। आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स अभी भी हैं जो एंटर करना बाकी हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी तकरीबन 12:30 बजे तक का टाइम यहां पर दिया गया था, लेकिन टाइम बचा हुआ है इसलिए छात्र हैं। लेकिन जो बच्चा पेरेंट्स आप देखेंगे जो जिन्होंने बच्चों को सेंटर के अंदर भेज दिया है वो अभी भी सेंटर के बाहर ही खड़े हुए हैं। और पिछली बार जो हुआ उसके चलते जो रूल्स है वो रूल्स बढ़ गए हैं, ईयरिंग्स निकालना पड़ रहा है, स्लीपर्स तो पहनने आने के आदेश दिए गए हैं, प्लास्टिक बैग अलाउड है नहीं है, ये सारी चीजें डूज एंड डोंट्स में जो है इसमें पेरेंट्स जो है वो काफी कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते आप कह सकते हैं कि जिनके बच्चे चले भी गए हैं वो सभी पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर खड़े हुए। सर कहाँ से आए आप?
10: मैं बांद्रा से आया।
9: बांद्रा से आए तो अभी अंदर चले गए आपके?
10: हम बच्चे गए अंदर, गए
9: कुछ आज ज्यादा सिक्योरिटी चेक्स है ऐसा?
10: थोड़ा थोड़ा बहुत है, इतना तो रहना चाहिए। गुड,
9: बिल्कुल। तो फिर से एग्जामिनेशन की जब तैयारी करनी पड़ी तो क्या महसूस किया उसने?
10: काफी लड़के सफर किए, हार्ड हुआ उनको, जिनका अच्छा पेपर था उनके लिए तो
9: अच्छा पेपर गया
10: था, जिनका अच्छा था उनके लिए दोबारा एग्जाम होना अच्छी बात नहीं है, जिनका खराब था ठीक है उनके लिए तो गुड, एक एक चांस मिला उनको।
9: बिल्कुल, तो ये आप कह सकते हैं कि कई पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चे स्टूडेंट्स अंदर जा चुके हैं, उसके बाद इंतजार कर रहे हैं किसी तरह की कमी होगी तो उनकी मदद कर सके इसके।
7: बिल्कुल, पेरेंट्स वैसे भी बेसब्री के साथ बाहर बैठकर ही इंतजार करते हैं, हर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ढेर सारे माता पिता आपको बैठकर इंतजार करते हुए नजर आएंगे। अब हम रुक कर लेते हैं अमन भारद्वाज का, किस तरह की तस्वीर है अमन ये भी हमें बताइए, और क्या यहां पर भी पेरेंट्स के मन में वही दुविधा वही सवाल है जो ज्यादातर जगहों पर नजर आ रही है कि जिन बच्चों के एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए थे उनके मन में थोड़ी धकधक है, थोड़ा डर है, थोड़ी बहुत सारे सवाल भी हैं कि इस बार भी बहुत अच्छा एग्जाम चला जाए?
11: देखिए इनसिक्योरिटी जरूर है क्योंकि पिछली बार जो एक्सपीरियंस किया पेरेंट्स ने उसमें पेरेंट्स का भी काफी एक तरीके से प्रिपरेशन में क्योंकि कंट्रीब्यूशन रहती है तो वही तैयारी पेरेंट्स को भी दोबारा साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली करनी पड़ी। और आप देखिए पेरेंट्स यहां पर भी आए, काफी उनके हाव भाव जो नजर आ रहे हैं नर्वस हैं। सेक्टर 18 का चंडीगढ़ का ये 7 में से एक सेंटर है, क्योंकि 7 सेंटर है, 3800 कुल कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपेयर कर आए हैं आज अपीयर होने के लिए और इनको जो डूज एंड डोंट्स है वो यहां पर लिखे हुए हैं और एक एक सेंटर में 480 बच्चे हैं और पेरेंट्स भी को भी अलग अलग समय पर यहां पर अनाउंसमेंट कर 100 मीटर दूर रहने के लिए कहा गया है और 1:30 बजे का आखिरी समय है, एंट्रेंस का आखिरी 50 मिनट बचे हैं और प्रिपरेशन की गई है, चाहे वो अंदर सीसीटीवी हो, मेटल डिटेक्टर हो, उसके अलावा जैमर्स हो, 2 से 3 लेयर की सिक्योरिटी हो, लगाए गए जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो हो, तो हर तरीके की सुरक्षा हो, प्रिपरेशन हो और खासकर जो अंदर नर्वसनेस है वो भी देखने को यहां पर मिल रही है। लिस्ट हर कोई चेक कर रहा है। आप क्या कहेंगे किस तरीके की प्रिपरेशन है क्योंकि बार बार दूसरी बार एग्जाम हो रहा है?
12: हाँ जी थोड़ा प्रेशर बहुत है। हाँ जी अब पता नहीं क्या होगा।
11: पिछली बार से कंपेरेटिव आपको लग रहा है कि एग्जाम अच्छा होगा या पिछली बार अच्छा हुआ था इस बार नर्वस हो?
12: इस बार ज्यादा नर्वस है।
11: और जो सिक्योरिटी इंतजाम है
12: वो कुछ ज्यादा ही है, उसको देख के और थोड़ा डर लग रहा है। हाँ जी हाँ जी।
11: तो आप देखिए कि बच्चे नर्वस जरूर हैं जो कैंडिडेट्स आए हैं एग्जाम के लिए और साथ साथ पेरेंट्स भी, लेकिन साथ आपको चांदी वो भी दिखाएंगे कि कैसे
8: ये जो नर्वसनेस है ना शशि, इसको इसलिए समझा जा सकता है कि अपने अनुभव से कहते ना, हमने भी तो पढ़ाई की, अपने अनुभव से जाते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं और पता चला कि फिर एग्जाम आने वाली तो पेरेंट्स कहेंगे टीवी बंद रखो, आवाज ज्यादा बाहर ना जाए, बच्चे जो है फिर दोबारा पढ़ सके, सबकी दिनचर्या जो है डिस्टर्ब होती है।
7: और अब क्योंकि स्टूडेंट्स सब बड़े हैं बहुत प्रेशर रहता है
8: वो बता रहे हो, जिस बच्चे ने कहा कि देखिए तनाव, आप सोचिए कि अब सेलुलर फोन अलाउड नहीं, ईयरफोन, टेक पेन, पेन ड्राइव, ई टेबल्स, ये सब उनको ज्वेलरी तक नहीं ले जा सकते।
7: वही सवाल पूछूंगी कि ये इस वजह से तो पेपर लीक हुआ ही नहीं था, पेपर लीक तो आप पहले करवा चुके थे
8: और उसके बाद पेपर पहुंचा आपने टेलीग्राम सब बंद कर दिया। कई बार सुरक्षा व्यवस्था होती अच्छे के लिए लेकिन आप देख करके क्या होता, मन में थोड़ा डर आ जाता, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं है। लेकिन कोलकाता लिए चलते हैं, इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्रजीत, कोलकाता में एक तो मौसम खराब हो गया है, परीक्षा के लिए तैयारियां, उनके साथ जो अभिभावक आए हैं क्योंकि अभिभावकों का भी इम्तिहान है, उन्होंने भी एक महीना अपने बच्चों को तैयारियों में लगाया, खुद को तैयार किया है, मनोभाव से भी मन से तैयार करना, खुद को तैयार करना, तो आज का दिन उनके लिए कैसा है?
13: बिल्कुल आशुतोष, सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं, उनके माता पिताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा परीक्षा का दिन आप मान सकते हैं और देख सकते हैं। वेदर बहुत खराब है, मूसलाधार बारिश हो रही है। दूसरी तरफ उधर केंद्रीय विद्यालय कोलकाता, वहां पे इस वक्त नीट की जो एस्पिरेंट्स है वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं और हम लोग इस वक्त एक मेट्रो जो लाइन है कोलकाता में सॉल्ट लेक इलाके में, उसके नीचे आप देखिए किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो शेल्टर लिए हुए यहाँ पे, उत्सुक पेरेंट्स वो शेल्टर लिए हुए यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब वो एग्जाम शुरू हो जाए। अंदर बच्चे चले गए हैं, वो लोग काफी सारे पेरेंट्स भीग गए, भीगते हुए यहाँ पे बाहर इंतजार में है। 3 घंटे की इंतजार उन लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि अभी 1:15 बजे है, 1:30 बजे तक अंदर घुसने दिया जाएगा। मैं एक बार चित्र फिर से कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कहता हूं और पूरा जो रास्ता है केंद्रीय विद्यालय यहां पे सॉल्ट लेक में KP1 पानी जब भर चुका है तो इसी पानी के गुजर के इस वक्त स्टूडेंट्स को वहां पे जानी पड़ रही है अंदर और उसके बाद अंदर जाके वो दाखिल हो सकेंगे एग्जाम सेंटर में। और बाहर पेरेंट्स काफी टेंस लग रहे हैं बहुत सारे। सुबह जब बात हो रही थी तो वो लोग ये कह रहे थे कि जो कैंसिलेशन हुआ था उससे बहुत सदमे में चले गए थे स्टूडेंट्स, स्ट्रेस में चले गए थे।
7: इंद्रजीत, हम समझ सकते हैं मनोस्थिति पेरेंट्स की क्या रही होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहे आप हमारे साथ। लेकिन बारिश ने मुश्किलों को थोड़ा बढ़ा दिया है, मौसम बेशक थोड़ा अच्छा हुआ है। लगातार इस खबर पर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: अ बर्स्ट पाइप, अ डेड वाटर हीटर, द एसी कॉलिंग इट क्विट्स, हु डू यू कॉल? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price, void in Florida.
17: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
19: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
20: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
21: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
8: तो थोड़ी देर में नीट की परीक्षा है, लेकिन सिस्टम की अग्नि परीक्षा है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रीटेस्ट से पहले परीक्षा लेने वाली संस्था एनटीए पर पूरा भरोसा है। ये भी कहा कि जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। बच्चों से अपील की है कि तनाव मुक्त होकर के परीक्षा केंद्रों पर जाए।
7: तो निश्चिंत रहें और अपना एग्जाम दें। कोई भी गलती, कोई भी चूक नहीं होगी। सिस्टम पूरी तरह से लगा हुआ है और आपको बता दें कि 22 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, जो आज एग्जाम देने जा रहे हैं। 2 बजे ये परीक्षा शुरू होगी। आज तक पर लगातार अलग अलग जगहों से तमाम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहां पर।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
21: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
22: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
23: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
21: Sanitary solutions.

0: खुलासा नंबर एक, दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती का जिम्मा संभालने वाले दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि चढ़ावे में चोरी गिनती करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। खुलासा नंबर दो, राम मंदिर के आरएमओ यानी रेडियो मॉनिटर ऑफिसर की भूमिका कटघरे में है। आरएमओ के कंधों पर ही सीसीटीवी से निगरानी का काम था। आरोप है चोरी के वक्त सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता था। बड़ी बात यह है कि 17 सालों से आरएमओ सीसीटीवी निगरानी का काम देख रहे थे और सीधे चंपत राय को रिपोर्ट करते थे। खुलासा नंबर तीन, गेट पास बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले सोमेश आनंद एसआईटी के रडार पर हैं, क्योंकि बिना गेट पास के चढ़ावे की रकम या फिर चढ़ावे के जेवरात राम मंदिर से बाहर नहीं जा सकते थे। आरोप यही है कि सोमेश आनंद ने बिना चेकिंग के चढ़ावे की गाड़ी को मंदिर परिसर से बाहर जाने दिया। सवाल यही है, ऐसा क्यों किया गया। खुलासा नंबर चार, राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी को चढ़ावे की चोरी के पूरे खेल के बारे में पता था, बावजूद इसके थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की जांच में थाना प्रभारी की भूमिका भी शक के घेरे में है। तफ्तीश के बाद ही चढ़ावा चोरी कांड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, लेकिन आरोपों में घिरे जिम्मेदार खुद को बेदाग बता रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कांड का खुलासा होने के बाद मंदिर में दान करने वाले राम भक्तों ने जिम्मेदारों पर सीधे सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा भी घट गया है। जांच के बीच अब मंदिर आने वाले राम भक्तों की संख्या और चढ़ावे में कमी आई है। पिछले कई महीनों से हर महीने औसतन 7 करोड़ रुपए के आसपास दान राशि मिल रही थी। पिछले एक पखवाड़े में ये आंकड़ा घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं कर्नाटक की एक श्रद्धालु का आरोप है कि राम मंदिर में कीमती हार दान किया था, लेकिन आज तक उसकी रसीद नहीं मिल पाई है। पता नहीं राम मंदिर में चढ़ाए हार का क्या हुआ। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार यही दावा कर रहा है कि दान में मिली राशि और उसकी गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद के चलते राम भक्तों के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं उस चढ़ावे को लेकर जो वो राम मंदिर में आस्था के नाम पर दान करते थे। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: Tune in's how to, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.

0: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची। लेकिन क्या अब टीएमसी की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है। इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच टीएमसी की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
1: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके ये फंड पार्टी का जो है, तो दूसरे बड़ा बड़ा फंड वाला पार्टी जो है, तो जो दिल्ली में सत्ता में है, जो स्टेट में सत्ता में था, तो उनके देखिए ना, तो क्या है तृणमूल कांग्रेस का, तो हमारा ऑफिशियल आपका पार्टी के तरफ से ऑफिशियल यही आपका रिएक्शन है, जो जो लोग मैलाइन करने के लिए ये बोल रहा है, हम अभी ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, पार्टी का लीगल ऑफिशियल ऑडिटेड फंड है, बाकी ये पार्टी कंसर्न जो लीडरशिप है वो देख रहे हैं।
2: दिस इज आवर मनी, दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी, एंड मिस्टर अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी, टीएमसी पार्टी मेंबर्स, वेदर यू आर विद अ न्यू पार्टी और विद वेदर यू आर विद टीएमसी, यू ऑल हैव चीटेड द पीपल ऑफ बंगाल, एंड दिस इज द रीजन फॉर योर डाउनफॉल। Using our money, you all have traveled in chartered flights, big convoys, in front of your house, huge police battalion standing and people were facing difficulty to cross the road. These are the reasons. Realize it. This is the reason for your downfall.
0: TMC में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: बस एक घंटे बाद नीट की दोबारा परीक्षा, कड़ी सुरक्षा चेकिंग के बीच सेंटर पहुंचे छात्र, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले एनटीए पर भरोसा, जिम्मेदार लो निभाएं जिम्मेदारी।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं।
1: नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, टूनागिरी, संशोधक और अग्रय, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया, कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं आत्मनिर्भर बनेगा भारत।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया योग उत्सव, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग।
1: और वनडे में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी, श्रीलंका ए के खिलाफ ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल में सिर्फ 11 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, श्रीलंका के विराट ने का रिकॉर्ड तोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा।
2: नीट एग्जाम पर हमारी महाकवरेज जारी है, मैं हूं आशुतोष मिश्रा।
1: इस बार परीक्षा सिर्फ छात्रों की नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि परीक्षा है सिस्टम की, सरकार की, एनटीए की, और आपको बता दें कि असली परीक्षा सबकी है। नीट को क्लीन रखने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, सुबह से हम तमाम तैयारियां आपको दिखा रहे हैं। मॉकड्रिल किस तरीके से कल किया गया वो हमने आपको दिखाया। परीक्षा केंद्रों पर भारी भीड़ है, ठीक आधे घंटे के बाद गेट बंद हो जाएंगे, यानी कि 1:30 बजे के बाद किसी सेंटर पर कोई भी एंट्री नहीं होगी।
2: तो जो छात्र लाइन में हैं उन्हें अंदर ले लिया गया है, लेकिन उसके बाद नो एंट्री होगी। 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी, 1 परीक्षा, 5,000 से ज्यादा केंद्र, 1,38,000 सीसीटीवी, पुलिस, अर्धसैनिक बलों की तैनाती, ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए कि परीक्षा की शुचिता बनी रहे, इस बार पेपर लीक ना हो, क्योंकि पिछली घटना से सबक लेते हुए इस बार की तैयारियां ऐतिहासिक थी। ये कोशिश की गई कि 22 लाख बच्चे बिना किसी तनाव के परीक्षा की शुचिता बनाते हुए वो अपना पेपर दे सकें, ये नीट की अग्नि परीक्षा है। तो सीधे चलते हैं अपने तमाम सहयोगियों के साथ जो देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, और इसी के साथ साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, भोपाल में तैयारियां कितनी है, एक तो मौसम की मार, तापमान भी बहुत ज्यादा है, अभिभावकों की भी परीक्षा है, उनके लिए क्या व्यवस्था है, सारे छात्र अंदर जा चुके हैं या अभी भी उनका आना जारी है?
3: सभी पेरेंट्स दूर चले,
4: देखिए अभी करीब आधा घंटे।
1: रवीश, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आशुतोष जो आप कह रहे थे ना कि जैमर्स की बड़ी परेशानी है, बीच बीच में बार बार फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है, हम अनमोल बाली का रुख कर लेते हैं। कुछ और भी हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनमोल, जरा तस्वीरें हमें दिखाइए क्योंकि आधे घंटे के बाद गेट बंद हो जाएंगे, अभी किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और मौसम बाहर थोड़ा सुहावना हुआ है क्या?
2: आज तो उमस भी है दिल्ली में,
1: गर्मी है।
4: शशि, इस समय मैं आपको तस्वीरें अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि मैं ईस्ट विनोद नगर मयूर विहार फेस 2 के सर्वोदया कन्या विद्यालय के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि अब विद्यार्थियों की जो है नीट एस्पिरेंट्स की जो भीड़ है यहां पर जुटनी शुरू हो गई है, लंबी लाइन लग चुकी है। पर जो सुरक्षा के प्रबंध है मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं, जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है ताकि जो विद्यार्थियों के लिए खुली जगह बनाई जा सके ताकि वो अंदर दाखिल हो। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे भारी सुरक्षा में जो विद्यार्थी यहां पर दाखिल हो रहे हैं, हर विद्यार्थी की 3 लेयर यहां पर सुरक्षा जो है लगाई गई है, हर विद्यार्थी की चेकिंग की जा रही है, फिर उन विद्यार्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है क्योंकि बच्चों का ही इम्तिहान नहीं, नेशनल टेस्ट एजेंसी का भी ये बड़ा इम्तिहान है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरी तरफ कूलिंग जोन है जहां बहुत से जो मां बाप हैं बच्चों का इंतजार करेंगे, तकरीबन 3 घंटे 15 मिनट का देखा जाएगा एग्जामिनेशन रहेगा। ऐसे एक मां बाप हमारे साथ जुड़े हैं। सर, कहां से आए आप?
5: मैं बुराड़ी विधानसभा, बुराड़ी से आया हूं।
4: बुराड़ी से आए हैं सर, तो नीट का पेपर देखा जाता है सर कैंसिल हो जाता है, फिर पेपर अब लिया जा रहा है, क्या कैसे उम्मीद जता रहे हैं?
6: देखिए क्या होता है कि जब पेपर लीक होता है तो किसी न किसी बच्चों को जो है थोड़ा सा जो प्रैक्टिस करा होता है उन्हें थोड़ा सा डिस्कार्ड तो होते हैं, पर कोई बात नहीं, और जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए करता है। कुछ उनकी कमियां थी जो उनको टाइम मिल गया और उस टाइम मिलने से ये फायदा लगा, तो ये 15 जो 21 दिन एक महीने का टाइम मिला तो उस कमियों को सुधारेंगे और हो सकता है पहले से बेस्ट करेंगे बच्चे सारे।
4: तो जी कहीं ना कहीं माँ बाप जो है अपना भरोसा प्रशासन की ओर दिखा रहे हैं, क्योंकि आज देखा गया कि शिक्षा मंत्री
1: बिल्कुल बिल्कुल
4: धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस पर बात रखी, उन्होंने विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक भी कहा।
1: हमारे साथ बिल्कुल अनमोल, और उन्होंने कहा कि चिंता की बात नहीं, निश्चिंत होकर आप एग्जाम दीजिए। और हमारे साथ हमारे बाकी के संवाददाता भी जुड़े हुए, रवीश पाल का रुख कर लेते हैं। रवीश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शरद का रुख कर लेते हैं। शरद, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हम बात कर रहे थे कि कैसे राजस्थान मुख्य केंद्र रहा पेपर लीक मामले में। अब सवाल यह है कि आधा घंटा बचा हुआ है तो दो चीजें हमें बताइए कि कितने स्टूडेंट सेंटर पर हैं, और साथ ही साथ लोगों के मन में, पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में अभी भी बहुत संशय है क्या, या निश्चिंत हैं वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं?
7: देखिए, इस बार तो निश्चिंत है शशि, ये कहना पड़ेगा। हम एक बार दृश्य भी दिखाते रहेंगे कि आखिरी आधे घंटे हैं और इस तरह से सुरक्षा का जांच चल रहा है। अंदर जो लड़कियां हैं और जो बाल बांध के आई हैं उनके सबके बाल खोले जा रहे हैं, और इस तरह से कलवा जो बांध कर आए हैं उन्हें भी ये भी खोला जा रहा है। हाथ में जो फुल बाह के कपड़े पहन के आ रहे हैं उनका काटा जा रहा है, कैंची लेकर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए, आपको दिखाई देंगे हम क्लोज करके, किस तरह से कैंची से काटा जा रहा है उस जेब को, जो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जेब में कुछ हो सकता है। तो सुरक्षा के काफी यहाँ पर कड़े उपाय किए गए हैं, लेकिन जो सवाल आप पूछ रही थी शशि कि उनके लोगों के मन में क्या चल रहा है वो बात करते हैं। क्या पिछली बार भी आए होंगे आप?
8: हाँ, पिछली बार भी आया ना।
7: इस बार कुछ निश्चिंता है?
8: आपकी बार निश्चिंता है, लेकिन कोई पता नहीं,
7: कोई पता नहीं,
8: कोई पता नहीं।
7: देखिए, मैं बता रहा था आपको शशि कि जमवा रामगढ़ बगल से यही कनौता के पास में ही है जहां पर ये पेपर लीक हुआ था, जहां के 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। और अभी भी मुझे याद है किस तरह से 10 मई को जब हम आज तक पर ये खुलासा कर रहे थे तो पूरे राजस्थान में ये बात चल रही थी कि नहीं नहीं, ये पेपर लीक नहीं है। ऊपर से नीचे तक पुलिस वाले कह रहे थे कि नहीं, ये पेपर लीक नहीं है। आशुतोष हमारे साथ थे 11 मई को लाइव में, जो बैठे हैं स्टूडियो में, वो कह रहे थे कि अगर जयपुर पुलिस को लगता है, एनटीए कह रहा है, तो क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर ले रही है। लेकिन मुकदमा पुलिस दर्ज नहीं कर पा रही थी, और वो काफी कहानी है लंबी चौड़ी। लेकिन हम कुछ और पेरेंट्स से बात करते हैं। माओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, माँ तपस्या करती है।
9: जी हाँ, हम बहुत परेशान हो रहे थे, बच्चा भी बहुत परेशान हो रहा था। अब सुरक्षा व्यवस्था वगैरह सब सही होनी चाहिए, पेपर अब लीक ना हो, बस हम तो यही प्रे कर रहे हैं। गवर्नमेंट से भी यही प्रे कर रहे हैं कि हमारा बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो और वो अच्छी तरह से पेपर हो जाए और लीक ना हो। आगे हमको 2 दिन बाद ये न्यूज़ ना मिले कि पेपर लीक हो गया है, अब दोबारा देना पड़ेगा। बच्चों के 4-4 साल खराब हो रहे हैं,
10: बच्चों की मेहनत होती है।
7: बिल्कुल समझ सकते हैं शरद की माता पिता की चिंता क्यों है कि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि माँ बाप की तैयारियां, महीनों की मेहनत, एक पूरे साल की तैयारी, और एक बार जिस तनाव से आप निकलते हैं वो तनाव दोबारा ना हो। लखनऊ में चलते हैं, अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, माता पिता की उम्मीदें सबसे ज्यादा बच्चों से, उन्होंने तैयारियां की हैं, रात उन्होंने भी जागी हैं, बच्चों को हर वो सुविधा दी है कि वो परीक्षा के लिए तैयार हो पाए। आज उन अभिभावकों पर क्या बीत रही है?
11: निश्चित तौर पर आज जो मुझे लगता है, परीक्षा तो आज एनटीए की है, परीक्षा तो सरकार की है, लेकिन इस दौर से अपने बच्चों को लेकर माता पिता भी गुजरे हैं, दूसरी बार री एग्जाम करा रहे हैं। और आप देखिए, मैं जहां पे खड़ा हूं इस वक्त, पीजीआई का जो केंद्रीय विद्यालय है उसके सेंटर के बाहर आप तमाम इस वक्त गार्जियंस, माता पिता, अभिभावकों को देख सकते हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइए, दूसरी बार आपके बच्चे को एग्जाम देना पड़ रहा है, किस तरीके से आप गुजरी?
12: भाई, प्रेशर तो रहा है बहुत ज्यादा, बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी बहुत प्रेशर रहता है। तो ऑब्वियसली अब बच्चे भाई घर से दूर रह करके हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो अपना भी किस तरह से मैनेज करते हैं क्या है। और सरकार को तो कोई वो नहीं है भाई, अपने तो प्रधानमंत्री जी बाहर खाली टहलने का वो करते हैं, उनको कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, राइट?
11: आप क्या कह रही थी? आप कुछ
13: मतलब कि कोई गारंटी है कि इस बार लीक होगा कि नहीं होगा?
12: सुन रहे, लीक होगा
13: हाँ, ये बताइए बच्चे कैसे, मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, सोचिए कैसे गया है।
11: तो गार्जियन के परेशानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग हैं और लोग से ही पूछ रहे हैं। आपके बच्चे आए हैं परीक्षा देने, दूसरी बार परीक्षा देने देते वक्त अब माता पिता की मनस्थिति क्या है?
14: नहीं, मनस्थिति तो ठीक ही है, पर यह है कि भाई परेशानी तो है ही है, क्योंकि एक बार बच्चा प्रिपरेशन करता है, फिर उसके बाद फिर जो है सेकेंड टाइम प्रिपरेशन करता है, तो उसमें दिक्कत तो होती है बच्चों को, तो ऐसा होना चाहिए कि बार बार ऐसा ना हो।
1: और वही अश्योर करने की कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से अभिषेक कि दोबारा ना हो, इसीलिए कल हमने मॉक ड्रिल देखी, आज सुबह से तमाम इंतजाम हम देख रहे हैं। रवीश पाल का हम रुख करेंगे, भोपाल से जुड़ गए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश। हमने आपकी वो रिपोर्ट भी देखी कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच में एग्जाम पेपर को ले जाया जा रहा है, फिलहाल आप कहां खड़े हुए, किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि सिर्फ लगभग 25 मिनट बचे हुए हैं जब गेट बंद कर दिए जाएंगे।
3: और कोई कैंडिडेट ही बाहर रह गया तो जल्दी से अंदर आ जाए।
1: देखिए अनाउंसमेंट भी हम सुन पा रहे हैं।
10: इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के केंद्रीय विद्यालय में, ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आखिरी के चंद मिनट कुछ बचे हुए हैं और इसलिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जो छात्र हैं यहाँ पे, ये जो गेट है यहाँ पे आप देखिए कि बहुत कोशिश यही प्रशासन की कि 1:30 बजे से पहले पहले सभी बच्चे अंदर पहुंच जाएं। और ये जो तस्वीर है, ये इसके अलावा हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कि दरअसल परीक्षा सिर्फ इन परीक्षार्थियों इन बच्चों की नहीं है, परीक्षा इनके अभिभावकों की भी है, परीक्षा प्रशासन की भी है। प्रशासन की तैयारी हमने सुबह आपको दिखाई थी, लेकिन जो अभिभावक यहाँ खड़े उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या लगता है। मैम आपके यहाँ से कौन आया पेपर देने?
15: My son is appearing.
10: अच्छा, पिछली बार जो हुआ था इस बार आपको लगता है कि पूरी तरीके से नीट रहने वाली है?
15: कोशिश तो लग रही है, उम्मीद तो है, बट ये कि डर भी लगा हुआ है, क्योंकि एक जो होता है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे ने जो प्रिपरेशन करी थी, तो नेचुरली अभी हम भी बहुत डरे हुए हैं कि लाइक पता नहीं क्या पेपर में होने वाला है, और अगर इतनी मेहनत करने के बाद अगर दोबारा कुछ लीकेज हो गया, मतलब डर तो है, बट फिर भी प्रे कर सकते हैं और बेस्ट विशेस दे सकते हैं सारे स्टूडेंट्स को।
10: आपको क्या लगता है क्या कहेंगे जो पिछली बार लीक हुई थी, और आपकी तैयारियों को देख करके भरोसा इस बार सब ठीक रहेगा? और बच्चे ने इन दिनों में क्या कुछ भुगता, तनाव में था क्या?
16: तनाव में तो था, उसको उम्मीद भी नहीं थी कि अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी उसने मोटिवेशन किया और पूरी तैयारी करके आया है, उम्मीद है अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार भी।
10: आप क्या कहेंगे सर नीट को लेकर?
17: सर मैं तो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, एक महीने और टाइम मिल गया था, ऑल दो जो हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था, बट सेम टाइम हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं, बट इस बार काफी अच्छा व्यवस्था दिख रही है।
10: यही मोटिवेशन आपने अपने बच्चों को भी
17: 100% सर, इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर देम, दे हैव 1.5 मंथ।
18: मतलब सोचिए अगर सारे अभिभावक ये सोचने लगे,
10: बहुत अच्छा एक संदेश,
18: बिल्कुल रवीश, और सारे अभिभावक अगर ये सोचे कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हालांकि उन बच्चों जिन्होंने सोचा होगा कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया,
1: उनको तो लग रहा होगा
18: कि आखिर क्या होगा, मतलब मैं बोर्ड परीक्षा देके आओ निकलूं और लगे कि नहीं दोबारा देनी है, नहीं इतनी हिम्मत, इतनी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। लेकिन माँ बाप की ये जिम्मेदारी थी कि बच्चों को हिम्मत दें, हौसला दें, एक बार और तैयारी की जा सकती है। इंद्रजीत कुंडू के पास लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल में। इंद्रजीत, बाहर भी अच्छा, हमें भी सुबह लग रहा था योगा दिवस है कि दिल्ली में बारिश हो जाएगी, आप देख रहे हैं कि कोलकाता में तो लग रहा है कि मानसून दस्तक देने ही वाला है, तो अभिभावकों के लिए किसी तरह की तैयारियां है क्या, क्योंकि 3-3.5 घंटा उन्हें भी इंतजार करना पड़ेगा। इंद्रजीत,
19: आशुतोष, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि अभिभावकों के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, आप देखिए दूसरी तरफ, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा किस तरह से वो लंबी कतार यहाँ पे देख रही है पेरेंट्स का, वो छतरी लेके यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सिर्फ महज 20 मिनट बज गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा भागते हुए वहां पे वो जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके अंदर जा रहे हैं, और देखिए किस तरह से पानी जम गया है, बिल्कुल जो सेंटर है केंद्रीय विद्यालय उसके सामने पानी पानी हो चुका है, इसी से पैदल इस तरह से जाना पड़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भागते वो लोग आ रहे हैं, करीब 100 मीटर दूर गाड़ी उनकी रोकी जा रही है, उसके बाद वहां से पैदल उनको एग्जामिनेशन सेंटर में आना पड़ रहा है, तो काफी मशक्कत करके स्टूडेंट्स को अंदर जाने की कोशिश उनको करनी पड़ रही है। पिछले 3 घंटे से मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स सुबह से यहां पे खड़े थे, सुबह धूप थी, वेदर भी ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, अब पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई छाव भी नहीं है, और काफी पेरेंट्स से मेरी बात हुई, वो लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे सुविधाएं कुछ बढ़ानी चाहिए थी, अगर गाड़ी बिल्कुल गेट तक आती तो शायद जो स्टूडेंट्स है वो ऐसे भीगते हुए अंदर नहीं जाते, और उसके साथ साथ अभी ट्रैफिक जाम भी लग चुका है पूरे शहर में, और समय भी ज्यादा बचा नहीं है, 1:30 बजे तक गेट खुला रहेगा, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा, तो इन सब चैलेंजेस के साथ
1: ये और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है। इंद्रजीत के सोचिए लगातार हो रही बारिश में भीगते हुए तमाम पेरेंट्स बाहर खड़े होकर इंतजार करेंगे,
18: बच्चा भीगा होगा तो 3 घंटा क्लासरूम में बैठना, ऊपर से फैन चल रहा होगा,
1: एग्जाम
18: हो सकती है,
1: और सोचिए कि ट्रैफिक जाम्स के बीच में वाटर लॉगिंग हो चुकी होगी जब इतनी मूसलाधार बारिश
18: का तनाव, ऊपर से अब शारीरिक तनाव भी,
1: कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम ब्रिजेश दोषी का रुख कर लेते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि अभी तो बस कुछ ही मिनट्स बचे हुए हैं, साथ ही साथ मौसम कैसा है वहां पर?
20: देखिए मौसम में बिल्कुल राहत नहीं है। हम लोग गांधीनगर में है, गांधीनगर का ये केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पे आज जो गर्मी का पारा है करीबन 40 से 42 डिग्री के आसपास है। अभी थोड़ी छांव हुई है वरना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस भी है। और अभिभावकों की स्थिति देखिए आप, किस तरह से अभिभावक जो है वो बाहर खड़े हैं और 20 मिनट का टाइम अभी भी बचा हुआ है। छात्रों को जो है वो परमिशन दिया गया है, छात्र अभी भी यहाँ से जा रहे हैं अंदर, तो पूरी तैयारी व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। पर अभिभावकों के लिए दिन काफी मुश्किल रहेगा क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो उनको बाहर रहना है, यहाँ पे गर्मी है। हमारे साथ कुछ अभिभावक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे आए हैं, आपका लड़का या लड़की एग्जाम है, आपका बेटा है, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? और अभी गर्मी भी ज्यादा है, पेरेंट्स के लिए बाहर खड़ा रहना 3 घंटे आपको यहीं पे रहना पड़ेगा,
21: लेकिन सब करना पड़ेगा ना बच्चे के लिए। और सेकेंड टाइम री नीट है इसलिए थोड़ी वो होता है कि टेंशन भी रहता है कि भाई अभी इसके बाद कैसा पेपर निकलेगा, लेकिन ठीक है, बच्चे ने वो मोरल अभी नहीं डाउन हुआ है इसलिए कर लेगा, देखते हैं।
20: जब अनाउंसमेंट हुआ था, रीनीट घोषित हुआ था, बच्चे के मानसिक स्थिति कैसी थी? क्या वो एक्सेप्ट कर पाए थे, दोबारा एग्जाम देने के लिए तैयार थे?
21: नहीं, कैसे हो गए, ऑफकोर्स नहीं थे, लेकिन वो होता है ना कि फिर अभी थोड़े ही दिन हुए थे तो फिर वो कर लिया कि चलो अभी देना ही है, कर लेंगे, देखते हैं।
20: देखिए अभिभावक जो है यहाँ पे, सारे अभिभावक अभी भी इंतजार में हैं, उनके बच्चे की एग्जाम शुरू हो जाए उसके लिए यहाँ पे खड़े हैं। और
18: एक बार वो अंदर चले गए तो उसके बाद 3-3.5 घंटे और भी इंतजार करना पड़ेगा। हम साथ साथ वो जानकारियां भी अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर नीट में पहली बार क्या क्या हुआ, किन तैयारियां। शशि आपको बताऊं, जब सुबह मैं निकला तो देखा कि कनॉट प्लेस में केनरा बैंक था। बैंक में क्या रखा जाता है? कैश, गहने, वहां से पेपर निकलता है, ट्रंक,
22: वो भी सीआईएसएफ और बाकी के, वहां
18: बीएसएफ खड़ी थी, पैरामिलिट्री खड़ी थी। मुझे लगा इतनी सारी सिक्योरिटी क्यों है, वहां बीएसएफ खड़ी है, पुलिस, दिल्ली पुलिस खड़ी है, निकाला जा रहा है। उसके बाद जिस कैश वैन में जाते हैं पेपर, उस पैसे जाते हैं, उसमें बाकायदा उस ट्रंक को रखा गया, सिक्योरिटी एक आगे, जैसे लग रहा है कोई जीवीआईपी जा रहा, आगे पुलिस प्रोटोकॉल, आगे दूसरा प्रोटोकॉल। आप हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग शहरों से सूरत हाल दिखा रहे हैं, नीट की तैयारियां कैसी हैं, सुरक्षा की तैयारियां कैसी हैं और खासकर अभिभावकों की तैयारियां कैसी हैं। रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, खबर जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
24: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
25: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
26: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
27: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
0: सवारी सोकुडो।
28: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
5: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
6: जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
7: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
8: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
9: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
8: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
3: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
2: Smartless.
4: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
2: Marketplace.
5: Big three on the program today, or, you know, the big three of the
2: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
6: In association with
7: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
8: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
6: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
8: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
9: Yog Divas ke avsar par, aaj Bengal mein hona बहुत ही विशेष है. बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है. इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है. यही जुड़ाव योग का मूल भाव है. महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो. योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है. आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा. ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत. स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है.
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए

नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: बस आधे घंटे बाद नीट की दोबारा परीक्षा। कड़ी सुरक्षा चेकिंग के बीच सेंटर पहुंचे छात्र। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एनटीए पर भरोसा, जिम्मेदार लोग निभाएं जिम्मेदारी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं।
0: नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, टूनागिरी, संशोधक और अग्रय। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किए, कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया योग उत्सव, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग।
0: वनडे में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी। श्रीलंका ए के खिलाफ ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल में सिर्फ 11 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, श्रीलंका की विराटने का रिकॉर्ड तोड़ा।

0: तो बस कुछ ही समय बाकी है नीट एग्जाम शुरू होने में और अब बस आधे घंटे से भी कम समय बचा हुआ है, डेढ़ बज चुका है, गेट बंद हो चुके हैं, परीक्षा केंद्रों पर एंट्री नहीं होगी अब और सुरक्षा जांच के बाद छात्रों को एंट्री अब दी जा रही है। जो लाइन में लगे हुए छात्र थे उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। एनटीए के नियमों के मुताबिक अब कोई एंट्री इसके बाद नहीं की जाएगी क्योंकि काउंट डाउन शुरू हो चुका है।
1: तो डेढ़ बजे का समय था, 100% शुद्ध परीक्षा के लिए सरकार ने गारंटी दी है। इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा में नीट की परीक्षा होने जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पेपर आए, सीआरपीएफ जवानों का पहरा है, सेंटर पर कैमरे की नजर है, जैमर है, तैयारी ऐसी है मानो कोई युद्ध हो। और अब डेढ़ बजे के साथ ही परीक्षा प्रवेश केंद्रों पर अब छात्रों का प्रवेश पूरा हो चुका है, इसके बाद अब प्रवेश बंद और इसी के साथ अब से थोड़ी देर में शुरू होगी नीट की अग्नि परीक्षा।

0: मेडिकल की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा जिसका पेपर लीक हुआ तो लाखों छात्रों का भरोसा टूट गया। अब उसी भरोसे को बहाल करने की कोशिशों के बीच आज नीट यूजी का री एग्जाम है और उसके लिए पूरे देश के हर सेंटर पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम है। परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार ने इस बार फुल प्रूफ एग्जाम के लिए किस तरह की तैयारी की है। सेंटर्स पर जवान तैनात है, पूरी व्यवस्था की बार बार निगरानी हो रही है ताकि बिना किसी गड़बड़ी के नीट की परीक्षा कराई जा सके और इस बार छात्रों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
1: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: पिछली बार पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी, लिहाजा इसे लेकर खासी तैयारी की गई है। पुलिस की साइबर सेल इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जा रही है, जिससे छात्रों का भी भरोसा बढ़ा है।
2: हमसे ज्यादा ध्यान देने पे अगर तुम अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करोगे पेपर के एरिए में, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम चाहते हैं कि पेपर प्रॉपर तरीके से हो, हम उसे फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम अपना बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पेपर अच्छे से आए, हम उसे अच्छे से दें।
3: वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं और मतलब तैयारी तो पूरी है। जिस हिसाब से इस बार पेपर लीक हुआ था तो उन्होंने मतलब पहले भी बोला था कि थोड़ा टफ आएगा, लेकिन पिछली बार उतना मुझे लगा नहीं कि टफ था, लेकिन फिर भी वही टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: आज जब छात्र दोबारा नीट परीक्षा की तैयारी में हैं, तब इस मुद्दे पर सियासत का असर भी साफ दिख रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने परीक्षा से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर बिना गड़बड़ी नीट परीक्षा की उम्मीद जताई।
4: टू एवरीबॉडी टेकिंग द री नीट एग्जाम, होप यू हैव अ रियली वंडरफुल एक्सीलेंट एग्जाम एंड यू ऑल डू रियली रियली वेल। रिमेंबर वी आर विद यू। To the Prime Minister and to the government, I'd like to say, please, please, please ensure that there are no glitches this time. The students have been through enough stress and they really cannot afford to go through it again.
0: तो इसके बाद शिक्षा मंत्री ने छात्रों से पहले राहुल के इस बयान का जवाब दिया।
1: निवेदन करता हूँ, कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए, हम ऐसा भी कुछ ना काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। कुछ घंटों के बाद बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं इस बात को इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, काल भी भारत की तथाकथित कुछ जिम्मेवार लोग इस प्रकार के व्यवहार किए, इस प्रकार की गलत उद्देश्य से, इल इंटेंशन से कुछ व्यवहार बच्चों के साथ ऐसा किए, मैं उनको करवर्द प्रार्थना करता हूं। कम से कम अगर आप जिम्मेवार हो, अगर आप खुद को भारत की सही नागरिक मानते हो, अगर आप भारत की व्यक्तियों का नुमाइंदगी करते हो, कृपा करके आप दायित्व लो।
0: नीट की परीक्षा फिर से हो रही है और एक बार फिर पूरी व्यवस्था पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सवाल बना हुआ है कि क्या परीक्षा प्रणाली की खामियां वास्तव में दूर कर दी गई हैं? क्या इस बार लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा को लेकर हर इंतजाम पुख्ता है? आज तक ब्यूरो।
5: तो पुख्ता इंतजामों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं। भोपाल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच कैनरा बैंक के लॉकर से प्रश्न पत्र निकाला गया था। हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए।
6: नीट परीक्षा से पहले कड़ी सुरक्षा में जो पेपर्स हैं उन्हें अब परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए सामने सीआरपीएफ के जवान आपको दिख जाएंगे और कड़ी सुरक्षा घेरे में नीट के जो पेपर्स हैं उन्हें स्ट्रांग रूम से निकाल करके अब परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं। और आप देखिए किस कड़ी सुरक्षा के साथ फिलहाल ये पेपर्स जो हैं ये रखे गए थे। एयरफोर्स के विशेष विमान से पहले भोपाल पहुंचे और फिर भोपाल में कड़ी सुरक्षा के बीच इन पेपर्स को गुप्त जगह पर रखा गया था, क्योंकि किसी भी चीज की जानकारी जो है वो यहां दी नहीं गई थी पहले कि पेपर्स कहां रखे गए हैं। आमतौर पर जो कमिश्नर कार्यालय होता है वहीं पर ये पेपर्स रखे जाते थे, लेकिन इस बार सुरक्षा इतनी कड़ी रखी गई थी, गोपनीयता इतनी ज्यादा रखी गई थी कि पेपर्स के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी कि उन पेपर्स को कहाँ रखा गया है। और अब आपको दिखाएं कि जैसे ही परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही है तो परीक्षा केंद्रों की तरफ कड़ी सुरक्षा में सीआरपीएफ जवानों की इन पेपर्स को रवाना किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं जहाँ तकरीबन 13,000 से ज्यादा छात्र आज रीनीट परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और परीक्षा इस बार लीक प्रूफ हो इसकी पूरी तैयारी रखी जा रही है। और ये देखिए जो स्ट्रांग रूम बनाया गया था वहां पे आप देख सकते हैं जो सरकारी गाड़ियां हैं जिनमें इन पेपर्स को ले जाया जा रहा है वो यहां पे पहुंच चुकी हैं सुबह ही।
7: स्ट्रांग रूम, तगड़ी सुरक्षा, किसने सोचा था शशि कि देश में एक दिन ऐसा भी आएगा जब परीक्षा की तैयारियां देखकर ऐसा लगेगा कि मानो युद्ध की तैयारियां हैं। लेकिन यही व्यवस्था देश के अलग अलग शहरों में थी। आपको लखनऊ के सेंटर्स का हॉल दिखाते हैं जहां पर एग्जाम से पहले पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
8: आज देश भर में रीनीट की परीक्षा हो रही है, जिस परीक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए कि उस परीक्षा को कराना मुश्किल हो रहा है। पेपर लीक कराने वाले गैंग हो या फिर सॉल्वर गैंग, आज उस परीक्षा की फिर से तैयारी है पूरे देश में। आज रीनीट हो रहा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैं लखनऊ के एक परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूं। जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर इंटरनल और आउटर सिक्योरिटी के साथ साथ दो टीमें बनाई गई हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और दूसरी चेकिंग और फ्रिस्किंग के लिए। लखनऊ में करीब 35,000 से अधिक परीक्षार्थी एग्जाम देंगे और जिसके लिए पुलिस की दो टीमें जो बाहर, जिसे ये पुलिस की टीम है, जो कॉलेज के लोग हैं वो लगाए गए हैं और उसके साथ ही अंदर जो लॉ एंड फ्रिस्किंग के अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बाहर की टीमें भी हैं। एग्जाम का जो टाइमिंग है वो 2 बजे से 5 बजे तक था लेकिन अब 15 मिनट बढ़ा दिया गया है, 5:15 बजे तक ये एग्जाम होगा। बाकायदा परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश दिए गए। अब ये एकेडमिक ब्लॉक, किस ब्लॉक में किसका एग्जाम है ये लिखा गया है एकेडमिक ब्लॉक, और टाइमिंग भी स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि टाइम 2 से 5:15 बजे तक, ये 15 मिनट का टाइम बढ़ा दिया गया है। किसी भी रूम में जो भी परीक्षार्थी है उस पर निगरानी रखने के लिए इन्विजिलेटर के तौर पर 2 से 3 जो इन्विजिलेटर है वो लगाए गए हैं। पुलिस की तरफ से एसीपी रैंक के अधिकारी को सेक्टर प्रभारी बनाया गया है और इसके अलावा जो जोन लेवल पर है वो डीसीपी रैंक के अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट तैयार है, LIU नजर रख रही है। यूपी की बात करें तो UPSCF को इसकी विशेष जिम्मेदारी दी गई है सॉल्वर गैंग और पेपर लीक कराने वाले गैंग्स पर।
5: और अब आपको राजस्थान के कोटा भी लिए चलते हैं, वहां नीट के अभ्यर्थियों से हमारे सहयोगी मौसमी सिंह ने बात की है। मौसमी से क्या कहा इन एस्पिरेंट्स ने, सुनिए।
9: अभी पांव के छाले ना देख, अभी तो सफर की इब्तिदा है। छात्रों के मन में तमाम सवाल हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अग्नि परीक्षा है जो उनको दोबारा देनी पड़ रही है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो बिल्डिंगे हैं, ये तमाम वो हॉस्टल हैं जिनमें घंटों, दिन ब दिन और कई सालों तक कई छात्र अपनी तैयारी करते हैं, पढ़ाई की तैयारी करते हैं। और ऐसे ही छात्र हमारे साथ हैं जो नीट का एग्जाम दोबारा देने जा रहे हैं। जाहिर तौर पे उनका हर एक वक्त कीमती है, हर एक मिनट कीमती है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे छात्रों से ही बात करते हैं। कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, अलग अलग भारत के अलग अलग कोनों से, एक तरीके से मिनी भारत इन छात्रों में ही समाया है। और ये सब लोग वापस आए हैं, तो आखिर क्यों वापस आए और क्या तैयारी है ये जानने के लिए बात ही कर लेते हैं। हौसला बुलंद है
10: जी? जी,
9: मुश्किल घड़ी है आप लोग के लिए, पर ये भी एक टेस्ट है एक तरीके से।
10: घड़ी तो कह सकते हैं इसमें, लाइक स्टूडेंट्स की तो कोई गलती नहीं है, अगर हम ब्लेम भी करना चाहे तो सिस्टम को ही करना चाहे, बट क्या कर सकते हैं। लाइक ठीक है, सहना, अगर सफर करने की बात है, सफरिंग्स तो स्टूडेंट ही कर रहे हैं हर बात पर।
9: अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नर्वस मोमेंट्स हैं इन सब छात्रों के लिए और कितनी मुश्किल घड़ी है। मैं खुद आवाज से, इनके हाव भाव से अंदाजा लगा सकती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो ज्यादा मायूस नहीं होना चाहिए।
11: नो मैम, मेरा नाम अदिति है और मैं कटिहार बिहार से हूँ। एंड मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने नीट के लिए प्रेप की थी, विद 12th मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, तो पेपर इजी टू मॉडरेट था और सिलेक्शन के रेंज में थी मैं.
12: अच्छा.
11: कि मतलब नॉट कट ऑफ बट लग रहा था कि ठीक है. लेकिन फिर पता चला कि रीनीट होगा तो इस चीज से काफी ज्यादा मन हर्ट हो जाता है. यही सारी चीज है.
9: अब देखिए ना, मतलब अगर उस पूरी जो वो जो इन पर बीती है, अपनी आप बीती सुनाते वक्त भी छात्र जो है थोड़ा सा असहज हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं. और देखिए जैसे ये छात्र हैं, अभी हम इनसे बात कर रहे थे. कहाँ से भैया?
13: राजस्थान से.
9: राजस्थान से ये कह रहे कि मैंने जब दिया तो मैं काफी आश्वस्त था. पिछली बार दो रैंक से आप रह गए थे और इस बारी आपने दिया तो लगा कि शायद अब कन्फर्म था.
13: मैं मतलब इस साल मतलब मैं पेपर देके गया था. मेरा नाम चंद्रेश धाकड़ है, मैं राजस्थान से हूँ, प्रॉपर भरतपुर से हूँ. मैं इस साल दिया मैंने एग्जाम तो मतलब मैं एग्जाम सेंटर से निकला, मैं कन्फर्म था कि हो जाएगा. मतलब ऐसा नहीं था, मैंने रूम पे पहुंचा, आंसर की वगैरह से मैंने मार्क्स वगैरह मिलाए तो मेरे 680 के समथिंग मार्क्स बैठ रहे थे. तो मैंने सोचा 10 नंबर ऊपर या 10 नंबर नीचे उससे कोई दिक्कत नहीं थी. यदि होगा 100% होगा, मतलब मैं एकदम श्योर था कि हो जाएगा. क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं 2 नंबर से रह गया था. इस साल मैंने सेल्फ स्टडी किया, मेरे नंबर 680 बैठे थे. एकदम श्योर था, एकदम घर जाके आराम से एकदम मैं यहाँ से सब कुछ मेरा पूरा
9: के सारा लेके चले गए.
13: पूरा सामान बेच के चला गया मैं, पूरा जितनी भी मेरे पास मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल वगैरह जितने भी मेरे नोट्स वगैरह थे सब कुछ टोटल मैं सब कुछ बेच के चला गया था घर पे. जब जिस दिन एग्जाम कैंसिल हुआ था उस दिन भी मैं सो रहा था. मेरे को पापा की कॉल आई, दो बार तो मैंने उठाया ही नहीं. मम्मी ने उठाया, मम्मी बोली पापा की कॉल आ रही उनसे बात कर लो. पापा ने बोला, पापा बोल रहे थे देख देख क्या न्यूज आ रही है कि कैंसिल हो गया. मैंने बोला पापा ये क्या बोल रहे हो. जब मैंने चेक किया जब कैंसिल हो गया तो मतलब मेरे को दुख तो बहुत हुआ, पर फिर कर भी क्या सकते थे. फिर मैं नेक्स्ट डे ही तुरंत ही कोटा गया.
7: जब मेहनत पर पानी फिर जाता है ना तो वैसे ही भाव निकलते हैं शशि, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि देखिए अचानक से परीक्षा रद्द हो गई, माँ बाप को चिंता, बच्चों को चिंता. लेकिन देश के अलग अलग शहरों में जिस तरह की तैयारियां हैं, चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी असीम बस्सी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं परीक्षा केंद्रों पर, वहां क्या तैयारी है.
14: आज देश भर में नीट एग्जाम होने वाला है और चंडीगढ़ में 7 सेंटर बनाए गए हैं. हम चंडीगढ़ के एक सेंटर स्कूल है. हालांकि एग्जाम जो है वो 2 बजे शुरू होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस ने किस तरह की तैयारियां की हैं. मेटल डिटेक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, कांस्टेबल्स बिल्कुल तैयार हैं. बेसिकली जो भी कैंडिडेट यहां से अंदर जाएंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उन सभी को फ्रिस्क किया जाएगा, पूरी उसकी तलाशी ली जाएगी ताकि किसी तरह का कोई उस तरह का सब्सटेंस अंदर ना जाए. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी जो है गेट के ऊपर सीसीटीवी कैमराज लगा दिए गए हैं. इसके अंदर स्कूल के अंदर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स जो हैं वो लगाए गए हैं. और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस भी जारी किया था जहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स, ऑब्जर्वर्स और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लोग हैं वो भी इस सब में इन्वॉल्व हैं. सो पिछली बार काफी एम्बैरेसमेंट हुई थी जब पेपर लीक हो गया था. लाखों स्टूडेंट्स जो थे अपीयर हुए थे, लेकिन उनके लिए बहुत शॉकिंग था. और यहाँ डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं स्कूल के बाहर, जहां एग्जाम जो है 2 बजे शुरू होगा. सो एक बड़ा सवाल है कि पिछली बार पेपर लीक हो गया था, लेकिन इस बार जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, पूरे पुख्ता इंतजाम जो है उन्होंने किए हुए हैं ताकि किसी तरह का कोई अनटॉवर्ड इंसिडेंट जो है वो ना हो. चंडीगढ़
5: तो अलग अलग जगहों पर किस तरह के इंतजाम है ये हमने आपको दिखाया. साथ ही इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भी हम आपको बता दें, मुंबई से आ रही है, जहां जानकारी है कि 3 मिनट देरी से पहुंचने के बाद एक छात्रा को एंट्री नहीं दी गई है नीट की परीक्षा में. जी हां, 1:30 बजे तमाम स्टूडेंट्स को अंदर पहुंचना था और कहा जा रहा है कि 1:27 पर यह स्टूडेंट पहुंची है और उसे अंदर एंटर नहीं करने दिया गया है. मुंबई से बड़ी और अहम खबर, 1:00 ये आधे घंटे पहले पहुंचने की अगर बात है
7: पहले, और देखिए मैं बताऊं कि
5: मतलब 2 बजे शुरू होगा तो आधे घंटे 1:30 बजे तक पहुंच सकती है.
7: 1:30 बजे तक पहुंचना था और विंडो इसीलिए दिया जाता कि आप समय पर पहुंचे. कई सारे बच्चे तो 1 घंटे पहले पहुंच गए और कई बार ऐसे में अभिभावक ये देखते हैं घर से निकल रहे, अब अपना समय कैलकुलेट कर रहे. देखिए 1:27 पर पहुंची छात्रा को एंट्री नहीं दी गई, जबकि समय 1:30 पर था. हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहां प्रशासन
5: मेरा एक और सवाल, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्स पर आप कई बार रहे होंगे तो क्या थोड़ा सा जेनरस होकर 1-2 मिनट 4 मिनट का थोड़ा विंडो और नहीं दिया जा सकता?
7: 1-2 मिनट
5: लाइन में है, दौड़ कर आ रहा है बच्चा. अब देखिए कोलकाता में जबरदस्त बारिश है तो कहीं वाटर लॉगिंग होगी, कहीं ज्यादा ट्रैफिक जाम हो सकता है, 100 चीजें हो सकती है.
7: अनाउंसमेंट भी की जाती है कि बच्चों अब समय हो रहा है, जल्दी अंदर आ जाइए. और सामान्य तौर पर बच्चे पहुंच जाते 3 मिनट पहले अगर रोका गया. ये परेल का इलाका है, मुंबई परेल के अंदर पर नीट की छात्रा को एंट्री नहीं दी गई है और उम्मीद हम कर सकते हैं कि किसी छात्र की मेहनत बर्बाद ना हो. रुक रहे
5: और ये री एग्जामिनेशन है, वैसे भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं. 3 मिनट पहले पहुंच गई थी समय से वो, तभी भी उसको एंटर नहीं करने दिया गया, उसको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सोकुडो
16: 50 स्टेट्स, 1 नेशनल मॉल, 2 वीक्स ऑफ फ्रीडम। The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
17: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Que Buena.
18: La Que Buena.
17: ESPN Radio.
19: We know LeBron has to be the best player on the planet to
17: get The Daily.
20: From The New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
17: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
21: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
22: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
23: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
4: दशकों की दुश्मनी मिसाइलों की गूंज और जंग के मैदान में आमने सामने खड़े दो देश जब अचानक हाथ मिला लें तो दुनिया हैरान रह जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता कुछ ऐसा ही है जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया है। दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए हैं जिसने सीमा पर चल रही जंग पर तुरंत विराम लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक इस शांति समझौते के बड़े मायने हैं। समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देश बातचीत के जरिए फाइनल डील तैयार करेंगे। इस करार को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देश इसे अपनी अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के लिए इस डील के मायने अलग हो सकते हैं। समझौते के तहत कुछ बेहद ही अहम शर्तें रखी गई हैं, जिनमें शामिल है अमेरिका की तरफ से 30 दिनों में ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह खत्म करना, ईरान की तरफ से फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित और फ्री रास्ता देना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी रखना और वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इस बीच समझौते के आर्थिक पहलुओं को लेकर भी बड़ी बातें सामने आई हैं। प्रतिबंधों के हटने से ईरान की अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन मिल सकता है। डील के मुताबिक अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। साथ ही प्रतिबंधों को हटाने को लेकर भी सहमति बनी है। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर का एक बड़ा प्लान तैयार किया जाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए वेवर जारी करेगा। ईरान के फ्रीज किए गए पैसों और संपत्तियों को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए जारी किया जाएगा। इस भारी भरकम राहत के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को एक नई चिंता भी सताने लगी है। उनका मानना है कि इस फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों में भी हो सकता है। वहीं ईरान इस समझौते को अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इस डील से हिजबुल्ला और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका दबदबा बना रहेगा। वहीं आशंका ये भी है कि प्रतिबंधों में ढील मिलने से ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत कर सकता है। ईरान ने हिजबुल्ला को भरोसा दिया है कि फंड रिलीज होने के बाद उसकी फंडिंग बढ़ा दी जाएगी। यानी एक तरफ जहां शांति की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बने हुए हैं। उधर अमेरिका इराक सरकार पर भी दबाव बना रहा है कि वो ईरान समर्थित मिलिशिया पर लगाम लगाए। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है, ये तो आने वाले 60 दिनों की बातचीत तय करेगी। लेकिन इस समझौते ने फिलहाल दुनिया को बड़ी राहत जरूर दी है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste complete.
1: देश भर में शुरू हुई नीट की दोबारा परीक्षा, कड़ी सुरक्षा चेकिंग के बीच सेंटर पहुंचे छात्र। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एनटीए पर भरोसा, जिम्मेदार लोग निभाएं जिम्मेदारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, दूनागिरी, संशोधक और आग्रह। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किए, कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया योग उत्सव, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। और वनडे में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी। श्रीलंका ए के खिलाफ ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल में सिर्फ 11 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, श्रीलंका के विराट ने का रिकॉर्ड तोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ इस बुलेटिन की। देश भर में नीट की परीक्षा शुरू हो चुकी है और इसी बीच मुंबई से बड़ी और अहम खबर आ रही है कि एक छात्रा को परीक्षा केंद्र में नहीं घुसने दिया गया, एंट्री नहीं दी गई। गेट बंद होने का टाइम था 1:30, मतलब आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन शुरू होने से गेट को बंद किया जाना था, लेकिन छात्रा वहां पहुंच गई थी 1:27 पर और उसे एंट्री नहीं दी गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, तमाम एस्पिरेंट स्टूडेंट्स दोबारा एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं नीट लीक होने के बाद। अब कहा यह जा रहा है कि 1:27 पर यह छात्रा यहां पहुंच गई थी लेकिन इसको एंट्री नहीं दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी मुस्तफा जुड़ गए। मुस्तफा, क्या जानकारी है, स्टूडेंट को मिल पाई क्या एंट्री?
2: जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं वो जो छात्राएं अभी भी खड़ी है एमडी कॉलेज के बाहर, और तकरीबन 1:27 को गेट्स जो है बंद किए गए हैं। 1:31 का वो टाइम बताया जा रहा है जब ये छात्रा जो यहाँ पर पहुंची है। मुंबई के कुर्ला इलाके से आई है, उनका कहना है कि आज ट्रेन का मेगा ब्लॉक, लोकल ट्रेन का मेगा ब्लॉक और बीएसटी बस की स्ट्राइक होने की वजह से उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाया और इसीलिए वो समय पर नहीं पहुंच पाई। एक दूसरे स्टूडेंट जो ओम करके है वो भी देखे, वो रेड टी शर्ट में जो खड़ा है लड़का, वो डोंबिवली से आया हुआ स्टूडेंट, उसको टैक्सी से आने में लेट हुआ इसलिए वो भी आप कह सकते हैं परीक्षा में नहीं बैठ पाया। लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स मौजूद थे उन लोगों ने कॉलेज प्रशासन से यही कहा कि 1 या 2 की देरी हुई है, इन सभी लोगों ने पहले नीट का एग्जाम दिया है फिर से किसी कारणवश देना पड़ रहा है, अगर इन लोगों को अंदर लिया जा सके तो इनका करियर जो है वो बच सकता है, ऐसी गुहार जो है पेरेंट्स ने लगाई थी। आप थे यहाँ पर, क्या हो गया था बताइए?
3: अभी क्या बोल के मतलब है, आप उन गलती करेगा तो अपने ऊपर सब है, ये गलती करेगा तो इनके ऊपर कुछ नहीं है। सर
2: आ गई थी 1:30 तक,
3: वो आ गई थी
2: अंदर नहीं लिया नहीं। क्या बोल रहा प्रशासन?
3: वो प्रशासन बोला गेट बंद हो गया, अभी बात खत्म।
2: तो पुलिस की तरफ से या कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं क्योंकि अगर गेट बंद हो चुका है, जो रूल है वो रूल है और इस वजह से इनको जो है ये एंट्री नहीं दी गई है। पुलिस का प्रेजेंस यहाँ पर आप कह सकते हैं काफी है, लेकिन मैनेजमेंट ने किया है वो बोला आधे घंटे से बोल रहे हैं आधे घंटे पहले आई थी, काम होके आज एग्जाम दे सकती थी।
4: कर रहे बट ये लोग पेपर के लिए नहीं लेके।
2: तो अभी एक आप कह सकते हैं कि जो वेरिफिकेशन है वो पूरी हो चुकी होती और आप कह सकते हैं कि इनको एग्जाम दिया जा सकता था, लेकिन वो एग्जाम आप कह सकते हैं आज ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि अब पेपर शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कुछ बच्चे और मुंबई में बीएसटी बस की स्ट्राइक चल रही है, ये बात सही है।
1: हार्बर लाइन पर ट्रेन की तैयारी हो रही थी, कई राज्य सरकारें बच्चों को खुद मुफ्त में सरकारी वाहनों के जरिए एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने की बात कर रही थी। यहाँ आप कह रहे हैं कि स्ट्राइक चल रही है और 1:30 की जगह 1:27 पर स्टूडेंट पहुंच रही है, बावजूद इसके उनको एंटर नहीं करने दिया गया है। वो जो आपने रेड टी शर्ट में वो एक और स्टूडेंट दिखाया, बहुत ही मायूस फेस देखकर अंदाजा लगा सकते हो। सबसे बड़ा सवाल जो पेरेंट्स को अब सुना हमने कि जब सिस्टम गलती करे तो ठीक है, लाखों लाख छात्र प्रभावित हो जाएं और यहां 3 पहले पहुंचने पर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं।
2: जी बिल्कुल, पेरेंट्स का वही कहना था और यहाँ पे अभी तो भीड़ कम हो गई है, लेकिन जब वो आए, स्टूडेंट्स आए थे तब कहीं ना कहीं एक बत्तीस तक पहुंच गई थी। सब पेरेंट्स इधर जमा हो गए थे, सबने प्रशासन को
5: लाइव थे हम लोग यहाँ पे
2: रिक्वेस्ट किया
5: कम से कम हम लोग 7-8 मिनट तक उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब तक हो जाता था, लड़की अंदर जाती थी पूरा। अभी लड़की और जो लड़का उसको अभी नहीं लिया, क्यों आया वापस एग्जाम देने के लिए? लास्ट टाइम के एग्जाम उनका ये हो गया, सब पेपर लीक हो गया, इसलिए बच्चा है ना, और प्रेशर नहीं था बच्चा, कुछ भी तुम लोग कंसिडर करो ना, पूरे बच्चे रात पढ़ते ये करते, ऐसा ना होना चाहिए सिस्टम।
2: तो कहीं ना कहीं 15 मिनट का एक्सटेंशन एग्जाम देने के लिए दिया जा रहा है, तो वो 2 मिनट का एक्सटेंशन अंदर एंट्री के लिए भी दिया जा सकता है।
5: दिया वो उधर कंसिडर करो ना टाइम, ऑलरेडी आप लोगों ने 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया है ना पेपर के लिए, तो उधर कंसिडर करो ना। ऐसा बच्चा देखो अभी वो क्या उसका ये हो जाएगा बोलने से, पेरेंट्स इतने रिक्वेस्ट कर रहे, पब्लिक पूरी रिक्वेस्ट कर रहे, यहाँ पे एक टीवी
1: बाकी में मुस्तफा, ये बहुत बड़ा मौजूद सवाल है कि सिस्टम गलती करे तो कई लाख छात्र प्रभावित हों, और यहाँ 3 मिनट पहले स्टूडेंट पहुंच गया बावजूद इसके उसे नहीं एंट्री दी गई है। क्या कहा है इस स्टूडेंट ने, इस छात्र ने, जरा सुनिए।
2: तो मुंबई में हम MD कॉलेज परेल जो है उसके नीट सेंटर पर खड़े हैं, गेट एग्जामिनेशन सेंटर का बंद हो चुका है लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी आना शुरू है। मैडम आप कुर्ला से आई है, आने में लेट हो गया, कम में आपको बस या टैक्सी नहीं मिली?
4: बेसिकली बस और ट्रेन के वजह से बहुत इशू हुआ था आने के लिए, संडे तो मेगा ब्लॉक है और बस का स्ट्राइक भी और टैक्सीज भी नहीं मिल रहा था, और फोन एंड ऑल अलाउड नहीं था, तो जितना चेंज था उतना ही लेके आए थे मीन्स।
2: हाँ, तो अभी भी आपका क्या कहना है, कितने बजे आप गेट पे आए? 2 मिनट लेट हो गए, क्या आप जो चाह रही हैं कि ओपन हो जाए गेट?
4: जी हाँ।
1: तो इन दोनों ही स्टूडेंट्स को नहीं घुसने दिया गया है, एग्जाम ये नहीं दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी और अहम खबर आपको राम मंदिर से जुड़ी हुई बता दें, चढ़ावे में गड़बड़ी के बीच सूत्रों से खबर ये मिल रही है कि SIT आज अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। शुरुआती जांच के लिए सरकार ने SIT को एक हफ्ते का समय दिया था। सूत्रों की अगर माने तो प्रारंभिक रिपोर्ट 150 पन्नों से ज्यादा की हो सकती है। कई खुलासे इसमें हुए हैं, CCTV फुटेज खंगाली गई है, ज्यादा पुरानी फुटेज को रिकवर करने की भी कोशिश लगातार जारी है, और ये सिर्फ चढ़ावा ही नहीं, जो तमाम ज्वेलरी, महंगे रत्न जो चढ़ाए गए थे, चांदी की जो चीजें चढ़ाई गई थी, जो ठोस ईंटों की बात सामने आ रही है, उनके भी गायब होने की खबर है, उनके साथ भी घपला किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं। कुमार, क्या ये कंफर्म किया गया है कि आज इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा प्रशासन को?
6: नहीं, देखिए इसका कंफर्म

0: टीम अयोध्या से वापिस आ गई है ऐसा बताया गया है।
1: पूरे देश की नजरें हैं, आस्था एंड भाव का मसला है पूरा का पूरा ही। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि ये सिर्फ चढ़ावे के अलावा जो भावगत तमाम चीजें भगवान को चढ़ाई गई थी, चाहे वो सोने चांदी या फिर जो बहुत ही बहुमूल्य रत्न है, उनके भी गायब होने की खबर है। अभिषेक हम रुक करेंगे, उससे पहले अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी हुई। एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों और साथ ही साथ कर्मचारियों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की है। एसआईटी ने दस्तावेजों की पड़ताल की है ताकि राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों को पता लगाया जा सके, उन पर कार्रवाई की जा सके। जांच के बीच लगातार ऐसे भी पहलू सामने आ रहे हैं जो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इस गड़बड़ी में सीधे सीधे उसकी भूमिका का पता चल रहा है जिन पर व्यवस्था और चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और अब उन पर कार्रवाई की भी तैयारियां हैं।

0: चार चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही। चार चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई। चार राम मंदिर में गड़बड़ी का ये मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है, क्या दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। टिन्नू यादव एसआईटी के रडार पर है। नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के बीच आभूषण के गायब होने का भी दावा किया गया है।
1: है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
2: जी, ये पहले दी थी 34.6 किलो 644 ग्राम और ये 4.25 किलो बाद में दी थी।
1: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
2: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
0: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी के शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर न्यू में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
2: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
1: दीपक आपने दिया था?
2: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
1: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
2: अब मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
0: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के चार पुजारियों से पूछताछ की गई। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। एसआईटी जांच के एक अहम बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी है। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस कैमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हैं, और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं। तो ये कैसे संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी अब सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है ताकि तय 15 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी एसआईटी जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। जांच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और इस वक्त बड़ी और अहम खबर, बिहार से। राजधानी पटना के कर्पूरी सभागार में जेडीयू राज्य परिषद की बैठक जारी है। बड़ी बात अभी है कि सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में ये पहली बड़ी बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की संगठन में भूमिका तय की जा सकती है, जिसके चलते इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़ गए हैं पटना से। शशि भूषण, बैठक कितनी देर पहले शुरू हुई है और काफी महत्वपूर्ण इसीलिए कि संगठन में क्या भूमिका हो निशांत कुमार की वो तय किया जाएगा।
4: शशि, पहली बात ये कि जो पहली बैठक मतलब राज्य परिषद की जो बैठक है वो अभी अभी खत्म हुई है। 11 बजे से बैठक का वक्त तय किया गया था लेकिन थोड़ी देरी से बैठक शुरू हुई। हालांकि नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन 3 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होगी। मतलब ये कि एक जो औपचारिकता होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, जो आंतरिक सांगठनिक चुनाव होते हैं उसके बाद जो JDU का संविधान कहता है उसके मुताबिक राज्य परिषद की बैठक जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होती है उस पे, और राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होती है निर्वाचन प्रक्रिया के बाद पार्टी के अंदर, उस पर मुहर लगाती है। तो एक औपचारिकता पूरी करने के लिए बैठक बुलाई गई है। हालांकि ये सवाल हुआ JDU के नेताओं से कि निशांत जो हैं अगर वो पार्टी के अंदर अब सक्रिय हैं और सरकार में भी वो स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से काम कर रहे हैं तो आगे उनके लिए क्या कुछ बैठक में कोई मंथन होगा। सभी नेताओं ने विजय कुमार चौधरी जो डिप्टी CM है सरकार के अंदर वो हों या फिर जो दूसरे मंत्री हैं श्रवण कुमार अशोक चौधरी, सबने एक सुर में कहा है कि निशांत अब भविष्य है पार्टी का। लेकिन इस बात की उम्मीद बहुत कम दिखती है कि निशांत को कोई एकदम से बड़ी भूमिका पार्टी के अंदर दे दी जाएगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक 3 बजे शुरू होगी, उसमें क्या कुछ प्रस्ताव आता है उस पर नजर होगी, लेकिन मुख्य जो एजेंडा है राजनीतिक सांगठनिक प्रस्तावों के अलावा वो है नीतीश कुमार, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे पिछले दिनों पार्टी के एक बार फिर से, तो उनके निर्वाचन और उनका जो चयन हुआ उस पर राष्ट्रीय परिषद अपनी मुहर लगाएगा। 3 बजे से बैठक शुरू होगी।
3: बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शशि भूषण आपका। अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर पर जबरदस्त हंगामा जारी है, सूबे की सियासत गर्मा चुकी है। विपक्ष फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाकर सरकार पर हमलावर है। अब बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विवाद को बढ़ता हुआ देखकर सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। उधर इस मामले में पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई तेज की है। पुलिस ने अब इस केस में 3 FIR दर्ज किए हैं जिनमें मृतक भरत तिवारी, उसके पिता और भाई को भी नामजद किया गया है। साथ ही साथ एनकाउंटर के विरोध में सड़कों पर उतरने वाले लोगों के ऊपर भी मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ जो भरत के परिजन हैं पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाते हुए दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
5: इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया गया। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई।
6: यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।
3: वहीं बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के 6 बागी जो सांसद हैं आज पार्टी से अलग होने के बारे में घोषणा करने वाले हैं। आज इन सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है जिसमें वो उद्धव की पार्टी से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान सांसद स्पीकर से अपनी मुलाकात का वीडियो, फोटो और स्पीकर का सौंपा गया पत्र भी जारी करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने शिवसेना UBT छोड़ने का फैसला किया। आज 2 बागी सांसद चेन्नई से और 2 बागी सांसद कोलकाता से मुंबई पहुंच जाएंगे। 1 सांसद पुणे में ही है जबकि 1 और सांसद हैं जो मुंबई में ही मौजूद हैं। इसके बाद सभी 6 बागी सांसद उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे से भी मिल सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अगर जरूरी हुआ तो ये सांसद फिर से लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। और एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, क्रिकेट से जुड़ी हुई। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला है उन्होंने। वैभव ने श्रीलंका ए के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। अपनी पारी में वैभव ने 29 बॉल पर 94 रन बनाए। वैभव से पहले इस फॉर्मेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी श्रीलंका के कौशल वीरातनी ने बनाई थी और अब यह रिकॉर्ड तोड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने। इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर।
8: In association with
9: भारत। July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
10: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
11: Oh, ouch.
10: However you make money work, we can work with that.
12: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
4: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTA को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
12: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
13: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
14: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
13: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
3: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
7: इन एसोसिएशन विद
8: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: ये इसराइल का अजेय सुरक्षा कवच आयरन डोम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कवच की असली चाबी वॉशिंगटन के पास है। आंकड़ों की बात करें तो साल 1948 में इसराइल के जन्म के बाद से अब तक अमेरिका उसे $158 बिलियन यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी सैन्य मदद दे चुका है। मौजूदा 10 वर्षीय समझौते के तहत अमेरिका हर साल इसराइल को $3.8 बिलियन की निश्चित सैन्य मदद देता है, जिसमें से $500 मिलियन सिर्फ मिसाइल डिफेंस के लिए होते हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई लाइन का है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस जिन अत्याधुनिक F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स के दम पर ईरान और लेबनान में तबाही मचाता है, वो सब 100% अमेरिकी है। इसराइल के कुल हथियार आयात का 69% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। इस 3 महीने की लंबी जंग में जब इसराइल के तोप के गोले और गाइडेड बम खत्म होने की कगार पर पहुंचे तो अमेरिका ने आपातकालीन एयरलिफ्ट के जरिए हजारों टन गोला बारूद यरूशलम पहुंचाया। लेकिन इसराइल के लिए अमेरिका सिर्फ बारूद का सौदागर नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा ग्लोबल डिप्लोमेटिक बॉडीगार्ड भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में जब भी पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाती है, अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलग थलग होने से बचा लेता है। इतिहास में अमेरिका ने 45 से ज्यादा बार इसराइल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसराइल अमेरिका पर इतना निर्भर है तो नेतन्याहू ट्रंप की बात क्यों नहीं मान रहे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसराइल के पास कुछ महीनों की जंग, अकेले लड़ने का हथियारों का बफर स्टॉक और खुद की मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री जैसे एल्बिट सिस्टम्स जरूर है, लेकिन अगर ईरान के साथ लंबी खींचने वाली जंग होती है तो अमेरिका के बिना इसराइल की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसों की बदौलत इसराइल सुरक्षित है, इसलिए उसे वॉशिंगटन के शांति रोड मैप का सम्मान करना ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। नेतन्याहू जानते हैं कि अमेरिकी मदद के बिना ईरान से लंबा युद्ध लड़ पाना उसके लिए संभव नहीं है, इसीलिए वो ट्रंप की लाइन को पूरी तरह काटे बिना आखिरी क्षण तक अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय का खेल खेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

दोबारा परीक्षा, कड़ी सुरक्षा चेकिंग के बीच सेंटर पहुंचे छात्र। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एनटीए पर भरोसा, जिम्मेदार लोग निभाएं जिम्मेदारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, टूनागिरी, संशोधक और अग्रह, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया योग उत्सव। कहा, संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। और इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली फिट होने की शर्त पर शामिल, बुमराह की 2.5 साल बाद वापसी, यशस्वी को मौका नहीं।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें दिल्ली से है, जहां नीट परीक्षा की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी काफी देर तक रुके रहे। कलकत्ता से प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंचे थे, दोपहर लगभग 1:15 पर उनका विमान दिल्ली में लैंड कर गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तुरंत ही एयरपोर्ट से नहीं बाहर निकले क्योंकि नीट परीक्षार्थी सेंटर्स पर जा रहे थे और ऐसे में पीएम अगर बाहर निकलते तो प्रोटोकॉल लागू हो जाता, छात्रों को परेशानियां होती और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर ही काफी देर तक इंतजार किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, कितनी देर तक इंतजार किया? और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि वहां पर एक एक मिनट मायने रखती है स्टूडेंट्स के लिए। मुंबई में 3 मिनट पहले पहुंचने के बावजूद उस स्टूडेंट को घुसने नहीं दिया गया।
1: देखिए बिल्कुल, इस चीज को प्रधानमंत्री भी भली भांति जानते हैं और इसलिए 1:15 जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे कोलकाता से, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि वो 45 मिनट जो है वो वेट करेंगे, क्योंकि जिस रूट से उनको एयरपोर्ट से अपने सरकारी प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग जाना है, उस रूट पे अगर कोई नीट सेंटर है और उनके रूट के कारण यातायात को रोक दिया जाता और ऐसे में किसी स्टूडेंट को नीट सेंटर पे जो परीक्षा सेंटर है उस पर जाने में लेट हो जाए और उसकी परीक्षा छूट जाए, जिसका एग्जाम्पल अभी आपने भी दिया उदाहरण के तौर पर कि मुंबई में 3 मिनट पहले पहुंचने में भी उनको सेंटर में एंट्री नहीं देनी दी गई, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1:15 वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और 2 बजे जब नीट की परीक्षा शुरू हो गई उसके बाद ही वो एयरपोर्ट से बाहर आए और एयरपोर्ट के लाउंज में ही वो जो है 45 मिनट बैठे रहे और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जब नीट पेपर शुरू हो जाएगा उसके बाद ही जो है वो प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास की तरफ जाएंगे लोक कल्याण मार्ग, तो 2 बजे के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो एयरपोर्ट से उनके सरकारी आवास की तरफ बढ़ा। यानी नीट की परीक्षा में किसी भी जो अभ्यर्थी है उसको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उनके रूट के कारण यातायात जाम ना हो और यातायात जाम के कारण किसी जो स्टूडेंट है उसको सेंटर में पहुंचने में देरी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया था और 45 मिनट एयरपोर्ट पे वो वेट करा और उसके बाद ही जो है वो जब एयरपोर्ट से घर की तरफ निकले जब नीट की परीक्षा शुरू हो गई।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश, आओ योग करें।

0: और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। कोलकाता में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। कोलकाता का ऐतिहासिक रेड रोड ये आयोजन जहां किया गया, 35,000 से ज्यादा लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ योग किया।
1: अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का।
0: तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया भर से तस्वीरें देखने को मिली हैं योग की, और साथ ही साथ अलग अलग तस्वीरों में कैसे लोगों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से इसे घोषित किया गया है दुनिया भर से तस्वीरें आती हैं, और आज देश के कोने कोने से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें नजर आई जहां लोग बड़े बूढ़े बच्चे सबने इसमें हिस्सा लिया। तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योगासन के योग की महत्ता बताई और इसे बेहतर भविष्य का मार्ग बताया। देखिए यह खास रिपोर्ट।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिस्सा लिया और हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ताड़ासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन सहित कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत अलग अलग योगासन किए। योग कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने आसपास मौजूद लोगों को योग की बारीकियां समझाते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने योग को दुनिया के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग बताया।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को भी याद किया और उनकी विचारधारा का उल्लेख किया।
3: इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है।
2: वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत की सीमाओं से लेकर दुनिया के कई देशों तक योग दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। आज तक ब्यूरो।
0: तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योग की धूम देखने को मिली। हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, ओडिशा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योगाभ्यास किया, लोगों को स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखें।

0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी योग अभ्यास किया। योग दिवस के मौके पर हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया। वहीं उत्तराखंड के बनवासा में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया है। योग को शारीरिक और मानसिक संतुलन का माध्यम बताया है।
1: गठिया की समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें, लेकिन जिनको घुटने में थोड़ा सा दर्द है उनके लिए उत्कटासन लाभदायक होता है। उनकी तरफ से उठाते हुए
0: इस बीच झांसी में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग अभ्यास किया और योग को भारत की पहचान बताया।
1: सांस को भीतर करते हुए अपनी एड़ियों आपकी दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर हो।
0: वहीं पटना में योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों के साथ योग किया और स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने की अपील की। योग दिवस के मौके पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों के साथ योग किया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। भुवनेश्वर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने योग किया और कहा कि योग संतुलित जीवन का आधार है। देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित इन कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लिया है। योग के जरिए स्वास्थ्य संतुलन और फिटनेस का संदेश दिया है।
2: और कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ किस तरीके से अलग अलग जगहों से योगाभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। अहमदाबाद से दिल्ली तक आयोजित कार्यक्रमों में योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या में अपनाने का संदेश दिया गया।

0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में केंद्रीय मंत्रियों और शीर्ष नेताओं ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस बीच अहमदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। वहीं दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी योगाभ्यास किया और योग के महत्व पर प्रकाश डाला। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने योग किया। इस दौरान अभिनेता अक्षय कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस बीच दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित योग दिवस पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने योगाभ्यास किया। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योग किया। डिप्टी सीएम ने लोगों से योग को जीवन के सभी कार्यों की तरह अपनाने की सलाह दी। पूरे देश में योग दिवस पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़े केंद्रीय नेताओं और नागरिकों ने मिलकर योग कर स्वास्थ्य का संदेश दिया। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: खुलासा नंबर एक, दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती का जिम्मा संभालने वाले दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि चढ़ावे में चोरी गिनती करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। खुलासा नंबर दो, राम मंदिर के आरएमओ यानी रेडियो मॉनिटर ऑफिसर की भूमिका कटघरे में है। आरएमओ के कंधों पर ही सीसीटीवी से निगरानी का काम था। आरोप है चोरी के वक्त सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता था। बड़ी बात यह है कि 17 सालों से आरएमओ सीसीटीवी निगरानी का काम देख रहे थे और सीधे चंपत राय को रिपोर्ट करते थे। खुलासा नंबर तीन, गेट पास बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले सोमेश आनंद एसआईटी के रडार पर हैं, क्योंकि बिना गेट पास के चढ़ावे की रकम या फिर चढ़ावे के जेवरात राम मंदिर से बाहर नहीं जा सकते थे। आरोप यही है कि सोमेश आनंद ने बिना चेकिंग के चढ़ावे की गाड़ी को मंदिर परिसर से बाहर जाने दिया। सवाल यही है ऐसा क्यों किया गया। खुलासा नंबर चार, राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी को चढ़ावे की चोरी के पूरे खेल के बारे में पता था, बावजूद इसके थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की जांच में थाना प्रभारी की भूमिका भी शक के घेरे में है। तफ्तीश के बाद ही चढ़ावा चोरी कांड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, लेकिन आरोपों में घिरे जिम्मेदार खुद को बेदाग बता रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कांड का खुलासा होने के बाद मंदिर में दान करने वाले राम भक्तों ने जिम्मेदारों पर सीधे सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा भी घट गया है। जांच के बीच अब मंदिर आने वाले राम भक्तों की संख्या और चढ़ावे में कमी आई है। पिछले कई महीनों से हर महीने औसतन 7 करोड़ रुपए के आसपास दान राशि मिल रही थी। पिछले एक पखवाड़े में ये आंकड़ा घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं कर्नाटक की एक श्रद्धालु का आरोप है कि राम मंदिर में कीमती हार दान किया था, लेकिन आज तक उसकी रसीद नहीं मिल पाई है। पता नहीं राम मंदिर में चढ़ाए हार का क्या हुआ। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार यही दावा कर रहा है कि दान में मिली राशि और उसकी गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद के चलते राम भक्तों के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं उस चढ़ावे को लेकर जो वो राम मंदिर में आस्था के नाम पर दान करते थे। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Order for Jennifer C.
4: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
3: Yeah. Can you handle that much caffeine?
4: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
3: Oh, really? That's great.
4: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
3: Yeah, you just said that.
4: Did you say I just said that?
3: Yeah, I'm cutting you off.
4: I can't have any more? Why not?
5: You earn, we match. Discover Cashback Match. See terms at discover.com/creditcard.
6: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

दक्षिण लेबनन का कफर तेबनीत इलाका और मलबे में तब्दील इसराइल का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला मरकावा टैंक। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले तीन महीनों में इसराइल सेना के लिए ये सबसे काला दिन साबित हुआ है। हिजबुल्ला ने घात लगाकर इसराइल के 52वें बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल डोर गेडालिया बेन शिमोन समेत चार जाबाज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने गाइडेड मिसाइलों से इसराइल के तीन टैंक उड़ा दिए। हैरानी की बात यह है कि ये भीषण हमला उस समझौते के ठीक एक दिन बाद हुआ जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ साइन किया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का लक्ष्य साफ था। अमेरिका ने फरवरी 2026 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था ताकि ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को तबाह कर हुर्मुज को खोला जा सके, तेल की कीमतें घटाई जा सकें और नवंबर में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनावों में जीत हासिल की जा सके। ट्रंप के लिए ये मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गेम प्लान बिल्कुल अलग है। इसराइल ने इस युद्ध को ऑपरेशन रोरिंग लायन का नाम दिया था जिसका मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन और हिजबुल्ला का समूल नाश था। सैनिकों की मौत से भड़के नेतन्याहू ने लेबनन पर अब तक का सबसे भीषण हमला बोल दिया है जिसमें शुक्रवार को ही 18 लोग मारे गए। नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि इसराइल लेबनन के सिक्योरिटी जोन से अपनी सेना कभी नहीं हटाएगा क्योंकि इसराइल इस अमेरिकी समझौते का हिस्सा नहीं था। इस जिद की वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की तकरार अब सरेआम हो चुकी है। डिप्लोमेटिक गलियारों से आ रही खबरें बेहद चौंकाने वाली हैं। लेबनन पर अंधाधुंध हमलों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को बुरी तरह फटकारा और अब शब्दों तक का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा था, बीबी यानी नेतन्याहू, तुम पूरी दुनिया से अकेले नहीं लड़ सकते। यहां तक कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी बेंस ने भी इजरायली मंत्रियों को जमीनी हकीकत समझने की नसीहत दे डाली है। नेतन्याहू की इस आक्रामकता का असर यह हुआ कि ईरान ने इजरायली हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए स्विट्जरलैंड में होने वाली महावार्ता को सस्पेंड कर दिया है। ट्रंप इस बात से बेहद नाराज हैं और वो नेतन्याहू को क्रेजी और मुश्किल इंसान तक कह चुके हैं। भले ही अमेरिका आज भी परमाणु खतरे के वक्त इसराइल के साथ खड़े होने का दावा करता हो, लेकिन इस समय दोनों देशों के रास्ते पूरी तरह जुदा हैं। ट्रंप डील मेकर बनकर दुनिया में शांति का सेहरा अपने सिर बांधना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू मैक्सिमम प्रेशर की नीति से लेबनन की जमीन पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि महाशक्ति अमेरिका की चलती है या इसराइल की जिद इस ऐतिहासिक शांति समझौते को बारूद के ढेर में तब्दील कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: देश भर में नीट की दोबारा परीक्षा खड़ी, सुरक्षा चेकिंग के बीच सेंटर्स में पहुंचे छात्र। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एनटीए पर भरोसा, जिम्मेदार लोग निभाएं जिम्मेदारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, दूनागिरी, संशोधक और अग्रय। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किया समर्पित, कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया योग उत्सव, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। और इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, विराट कोहली फिट होने की शर्त पर शामिल। बुमराह की 2.5 साल के बाद वापसी, यशस्वी को नहीं मिला मौका।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: नमस्कार, मैं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। भारतीय राजनीति में सत्ता की लड़ाई सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि कई बार सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर ही शुरू हो जाता है। जब महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं, नेतृत्व पर सवाल उठ जाते हैं और भरोसे की दीवारें दरकने लगती हैं, तब राजनीतिक दलों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। कुछ फैसले नेताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं तो कुछ राजनीतिक परिदृश्य को बदल देते हैं। आज कहानी दल बदलू राजनीति की, जिससे सिर्फ पार्टियों का भविष्य नहीं बदला बल्कि देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित किया।
4: 1969 में जब कांग्रेस के सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी को ही निष्कासित कर दिया था कांग्रेस से, तो कांग्रेस ओ बनी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल और कांग्रेस आर बनी।
5: उन क्षत्रपों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने उस पार्टी को तोड़ा।
4: वर्चस्व की लड़ाई सामने आती है, उसमें फिर क्षेत्रीय जो राजनीति है वो सामने आती है। 1998 में ममता बनर्जी को कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाते हुए देखा और दूसरी ओर पीए संगमा और शरद पवार को एनसीपी का गठन करते हुए देखा।
5: हमारा जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य जो है, वो कहीं का नहीं रहेगा, तो उन्होंने अपने अपने रास्ते अपना लिए।
6: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है।
7: थाली में खाया उसमें छेद किया,
8: थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए।
3: आम आदमी पार्टी में उठे सवाल अभी थमे भी नहीं थे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस से बगावत के दावों ने सियासी पारा चढ़ा दिया और अब महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए नई चिंता खड़ी कर दी है। सवाल सिर्फ इन पार्टियों का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक प्रवृत्ति का है जो बार बार भारतीय राजनीति का चेहरा ही बदल देती है।
9: टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।
10: ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा आप लगने लगा है।
11: सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
12: ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है।
13: ह्यूमिलिटी, यू नो ही नेवर टच।
14: तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की, इलेक्शन के पहले करना चाहिए था।
15: ये पार्टी टूट रही है, उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी।
16: विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया, इतना क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे में अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया।
17: तो पूरा बेईमानी सिर्फ ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ये पूरा बेईमानी एक एक वोटर के साथ भी है।
18: कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी।
19: उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है।
20: मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूँ।
21: आपको गाली इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने अपनी पार्टी के साथ, जिसने आपको सब कुछ दिया, आज आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना, वो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप एक राज्यसभा मेंबर थे, वरना कोई नहीं पूछता आपको।
22: बस यूं समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति में तूफान आया है, तूफान, और वो भी बिना लहर के। और इस तूफान में नेता सियासत के सूखे हुए पत्ते की तरह उड़ रहे हैं। कौन कब किस पेड़ से टूटकर किस शाख पर जाकर फिट हो जाएगा, विधाता भी नहीं जानते। पहले आम आदमी पार्टी में कूद, फिर तृणमूल कांग्रेस में बगावत, और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर संकट के बादल।
23: संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है। दो दो बार, तीन तीन बार एंट्री बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी।
24: हाँ, वी वांट टू सी इंदिरा गांधी के टाइम से ज्योति बोसु तक, ममता बनर्जी तक, जो आवाज उठाया था, दिल्ली नहीं देता है, सेंट्रल नहीं देता है, गरीब को कुछ पैसा नहीं मिलता है, 50 साल एक करके निकाल दिया।
22: भारतीय राजनीति में एक बार फिर दलों के भीतर उठती बगावतें सुर्खियों में। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों और विधायकों के अलग रास्ता पकड़ने के दावों के बीच महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल तेज हो गई है।
25: देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता।
26: विकास साहब, हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं अभी, तो कानून नंबर सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में, हमने आपने देखा कि हमारी वहां भी एक सुप्रीम कोर्ट पे केस जारी है, तो विशिष्ट गुट को किसी को मान्यता नहीं दी।
27: उद्धव जी ने कहा है कि जिसको जाना है वो तो चले ही जाएंगे, मैं कितना भी प्यार लुटाऊं, कितना भी उनको अपना तन मन धन दे दूं, वो चले ही जाएंगे। एकनाथ शिंदे भी चले गए, लेकिन हाँ, समय बदलता है, वक्त आने पर दुनिया हर चीज फिर से घुमा देती है, तो आज आपका वक्त है, कल हमारा भी वक्त हो सकता है।
22: लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि जब भी किसी पार्टी के भीतर नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और सत्ता को लेकर संघर्ष बढ़ा है, तब तब बड़ी राजनीतिक पार्टियां टूटती रही। सबसे ज्यादा टूट का इतिहास कांग्रेस के नाम दर्ज है। 1969 में इंदिरा गांधी और संगठन के नेताओं के बीच संघर्ष ने कांग्रेस को दो हिस्सों में बांट दिया। 1977 में इमरजेंसी के बाद फिर पार्टी में बगावत हुई। आगे चलकर कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP, YSR कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दल निकले, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में बड़ी राजनीतिक ताकत हासिल की।
28: जब कांग्रेस की टूट हुई और इंदिरा गांधी जी ने अलग से बना ली पार्टी, तो उस समय तो वो खुद ही सत्ता का केंद्र थी, और उनके समय जो सिंडिकेट थी वो बड़े दिग्गज नेता थे सेंट्रल लीडरशिप की, उनके खिलाफ उन्होंने बगावत की, लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस को तब भी पता था कि गांधी परिवार ही ध्रुव तारा है इस पार्टी का, तो इंदिरा गांधी के साथ जुड़ गए।
22: जनता दल का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। एक समय केंद्र की सत्ता पर काबिज जनता दल कुछ सालों में कई हिस्सों में बंट गया। इसी बिखराव से समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेकुलर जैसी पार्टियों का जन्म हुआ। आज कहानी में जानेंगे कि आखिर भारत की कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा टूट फूट देखी है। कांग्रेस से लेकर शिवसेना, NCP और अब TMC तक, आखिर पार्टियों के बिखरने की सबसे बड़ी वजह क्या रही है? क्या भारतीय राजनीति में अब बगावतें अपवाद नहीं, बल्कि नया राजनीतिक कल्चर बनती जा रही है?

0: भारतीय राजनीति में कई बार विपक्ष से ज्यादा चुनौती अपने ही घर से आई है, और जब बगावत पार्टी के भीतर से उठती है तो उसका असर सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सरकारें गिरती हैं, चुनाव चिन्ह बदलते हैं और पूरी की पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल जाती है।
1: शिवसेना एक ऐसी पार्टी जिसकी पहचान बाला साहब ठाकरे और ठाकरे परिवार से जुड़ी रही, लेकिन विडंबना यह है कि इस पार्टी को सबसे बड़े झटके उसके विरोधियों ने नहीं बल्कि उसके अपने नेताओं ने दिए। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? छगन भुजबल से लेकर नारायण राणे, राज ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे तक क्यों पार्टी छोड़कर और तोड़कर चले गए? हर बगावत ने शिवसेना का चेहरा बदला और महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा दी। आज जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में फिर नाराजगी और टूट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो सवाल उठ रहा है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है?

0: जिस पार्टी की पहचान बाला साहेब ठाकरे थे, जिस पार्टी का चेहरा ठाकरे परिवार था।
1: This is my Mumbai and we will try our little bit to keep it clean, that's all.
0: जिस पार्टी में कभी बाला साहेब का एक इशारा ही अंतिम आदेश माना जाता था।
1: इंग्लिश, मराठी, तमिल, पंजाबी, भांगड़ा खेल सकता हूँ लेकिन बात नहीं कर सकता हूँ।
0: उसी शिवसेना का इतिहास बगावतों, विद्रोहों और टूट की कहानियों से भरा पड़ा है। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी एक बार फिर संकट में दिखाई दे रही है। कुछ सांसद बैठक से गायब हैं, कुछ नेताओं की शिंदे खेमे से नजदीकियों की चर्चा है और सवाल उठ रहा है, क्या शिवसेना में एक और बगावत होने वाली है?
2: संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है, हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, नेचुरल लोग है, 70-70 साल के लोग है, दो दो बार, तीन तीन बार एंट्री बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा।
0: लेकिन ये पहली बार नहीं है। शिवसेना की राजनीति में बगावत कोई नई बात नहीं है। पिछले 3 दशकों में पार्टी कई बार टूटी, कई बड़े नेताओं ने विद्रोह किया और हर बार पार्टी का चेहरा बदल गया।

0: कहानी शुरू होती है 1991 से। बाला साहब ठाकरे का दौर था। मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र तक शिवसेना का दबदबा पड़ रहा था, लेकिन इसी दौरान पार्टी के बड़े चेहरे छगन भुजबल ने बगावत कर दी। ये बाला साहब ठाकरे के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती थी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। नारायण राणे शिवसेना के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन जैसे जैसे उद्धव ठाकरे का कद बढ़ने लगा, राणे और नेतृत्व के बीच दूरियां भी बढ़ती गईं। राणे खुलकर नाराजगी जताने लगे, आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ लोगों का दबदबा बढ़ गया है। आखिरकार उन्होंने शिवसेना छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए।
1: शिवसेना में इतने साल आपने गुजारे, शिवसेना से आपको मुख्यमंत्री पद मिला, कांग्रेस में आपको लगा कि आपको मुख्यमंत्री पद मिलेगा, आपको वादा भी किया गया था, मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया। शिवसेना और कांग्रेस में आपको क्या फर्क लगता है?
2: फर्क तो काफी है, आइडियोलॉजी में है,
1: वादा पालने में है,
2: सब में काफी फर्क है, मगर दोनों में आइडियोलॉजी फर्क है तो बाकी सब में तो फर्क आ ही जाएगा। और शिवसेना खाली महाराष्ट्र के लिए छोटी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, 129 साल पुरानी पार्टी है, तो दोनों के बारे में तजुर्बे जो अलग अलग हैं।
0: ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, बल्कि शिवसेना की ताकत में बड़ी सेंध थी। लेकिन 2006 में जो हुआ उसने महाराष्ट्र की राजनीति ही बदल दी। ये बगावत किसी बाहरी नेता ने नहीं, बल्कि ठाकरे परिवार के भीतर से हुई। बाला साहब ठाकरे के भतीजे तेज तर्रार वक्ता, आक्रामक शैली और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता। एक समय राज ठाकरे को बाला साहब का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन जब पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में जाने लगी तो राज ठाकरे खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। नाराजगी बढ़ी और आखिरकार राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का जन्म हुआ।
3: सरळ प्रश्न आहे की राज ठाकरेने घेतलेला निर्णय योग्य होता का अयोग्य होता हे फक्त बाळासाहेबांनी सांगा। अयोग्य होता तर तो माणूस अजून तिकडे का, आणि योग्य होता तर मग माझे दुसरे निर्णय कसे काय चुकले?
4: शिवसैनिकों को अपने धंधे, अपने बिजनेस, अपने कॉरपोरेशंस के लिए एक ताकत की जरूरत थी, सत्ता की शक्ति की जरूरत थी, तो वहां पर टूटी। पहले एकनाथ शिंदे साहब ने टूटा, आदित्य ठाकरे की वजह से वहां पर परिवारवाद महत्वपूर्ण रहा।
0: ये शिवसेना के इतिहास की सबसे चर्चित और सबसे भावनात्मक बगावत थी, क्योंकि पहली बार ठाकरे परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। बाला साहब के रहते हुए पार्टी हर संकट से निकलती रही, लेकिन 2012 में उनके निधन के बाद हालात बदल गए। उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली, शिवसेना सत्ता में भी पहुंची, लेकिन अंदरूनी मतभेद लगातार बढ़ते रहे। और फिर आया 2022, वो साल जिसने शिवसेना की पहचान ही बदल दी।
5: हम लोगों ने कौन सा दूसरा रास्ता अपनाया है? हम लोगों ने वही रास्ता अपनाया है जो पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति थी, अलायंस था। हम लोग चुनाव लड़े अलायंस में, और आज हमारा जो शिवसेना गठ है, जो 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग हमारे साथ है, विधिमंडल में लेजिस्लेटर पार्टी शिवसेना है, और निश्चित रूप से हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक मजबूत सरकार यहां पर बना रहे, हम लोगों ने ऐसा कोई भी दूसरा गलत कदम नहीं उठाया है।
6: शिवसेना नाव चोरलं तरी ठाकरे नाव नाही चोरू शकत, त्याच्यामुळे एका गोष्टीत तर मी नक्कीच भाग्यवान आहे की मी बाळासाहेबांच्या आणि माच्या पोटी जन्माला आलो। ते भाग्य काही त्यांना मिळालेलं नाही, आणि ते भाग्य त्यांना दिल्लीवाले काही देऊ शकत नाही।
0: 2019 में बीजेपी से अलग होकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी, लेकिन पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग इस फैसले से खुश नहीं था। इस नाराजगी का चेहरा बने एकनाथ शिंदे। जून 2022 में शिंदे ने बगावत का झंडा उठा लिया।
4: शिवसेना को तोड़ा एकनाथ शिंदे ने और सरकार बनाने के लिए, क्योंकि उस समय वो सरकार चल रही थी, उस सरकार को गिराया। यूबीटी जो उद्धव ठाकरे साहब है उनकी और कांग्रेस की जो सरकार चल रही थी उसको गिराया शरद पवार की पार्टी के साथ, और एकनाथ शिंदे ने अपना गुट बनाकर नई सरकार बना ली। लेकिन अब उसके बाद से कांग्रेस को ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ाई नहीं लड़ पाई, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी नहीं लड़ पाए, और लगातार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी बहुत अच्छे तरह से प्रदर्शन नहीं हुआ, और लोगों को लग रहा था कि उद्धव ठाकरे का जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो कमजोर होती जा रही है, और आदित्य ठाकरे भी उस तरह से नहीं संभाल पा रहे जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया, तो वो एक बड़ी वजह रही। और अब जब ये मौका आया कि जिस तरह से टूट हुई है, तो उनको लग रहा था कि अब उनका भविष्य किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है।
0: एक एक कर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ते गए, देखते ही देखते शिवसेना के ज्यादातर विधायक शिंदे के साथ चले गए, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, इसके बाद शुरू हुई असली लड़ाई। कौन असली शिवसेना, किसके पास है बाला साहेब की विरासत, मामला चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आखिरकार चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना और पार्टी का पारंपरिक चुनाव चिन्ह दे दिया। उद्धव ठाकरे को नई पहचान के साथ शिवसेना यूबीटी बनानी पड़ी।
7: केशव ठाकरे,
0: यानी जिस पार्टी को बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था वो आधिकारिक तौर पर दो हिस्सों में बट चुकी थी। लेकिन अब 2026 में एक बार फिर सियासी हलचल तेज है। शिवसेना का इतिहास बताता है कि इस पार्टी को सबसे ज्यादा चुनौती विपक्ष ने नहीं दी है, सबसे बड़े झटके पार्टी को उसके अपने नेताओं ने दिए हैं, और हर बगावत ने शिवसेना को बदला है। ये एक ऐसी कहानी है जो बार बार दोहराई जाती रही है।
8: वक्त है छोटे से ब्रेक का, उजला ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कांग्रेस में दल बदलू राजनीति की क्या है कहानी। देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
12: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
13: I have no idea how this election is going to play out,
12: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
14: Sokudo.
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार। देश के हीरो की पहली पसंद।
6: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिंझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे। क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मैक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
7: इन एसोसिएशन विद
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
7: हिंट बड़े आराम से। विमल बोलो जुबा केसरी।
10: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
11: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
12: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
13: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन बुक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
14: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
13: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।
15: कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई।
16: यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिस कर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: TuneIn's How-To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक योगासन की ये तस्वीरें लोगों में योग की गौरवशाली प्राचीन भारतीय परंपरा के प्रति असीम उत्साह की झलक दिखला रही है। सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि विदेशों के नागरिकों में भी योग की उत्सुकता साफ साफ नजर आ रही है। हर कोई 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि योग के महत्व और इसके फायदों को अब दुनिया समझने लगी है। यही कारण है कि जगह जगह जोर शोर से योग दिवस मनाने की शानदार तैयारियां नजर आई। यह तो सभी जानते हैं कि योग तन की अच्छी सेहत और मानसिक शांति का आधार है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि आखिर योग का आधार क्या है, योग साधना का विकास कैसे हुआ और आखिर किस प्रकार इसका विस्तार हुआ है। इसके बारे में जानकारी भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलती है। हमारे वेद पुराणों, उपनिषदों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय सनातन परंपरा में परम आराध्य महादेव से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक के जीवन और कर्मों से योग का संदेश मिलता है। हम आपको आज योग की महिमा बताएंगे और इसके दर्शन के बारे में समझाएंगे। मानवीय चेतना के उत्थान और लक्ष्यों की प्राप्ति में योग किस तरह मददगार है, यह भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 समिट के दौरान शांति समझौते के MOU पर साइन किए। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने पीस डील के MOU पर दस्तखत किए, लेकिन जिस वक्त MOU पर साइन हुए उस वक्त ईरानी राष्ट्रपति अकेले थे। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। डील पर दस्तखत हो गए, लेकिन अब शांति समझौते के MOU पर ईरान क्यों और कैसे राजी हुआ, इसका खुलासा ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई ने किया। पीस डील पर पहली बार मुज्तबा खामिनई ने बयान दिया है। ईरान अमेरिका शांति समझौते को लेकर मुज्तबा खामिनई ने 5 बड़ी बातें कही। नंबर 1, ईरान बात करेगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। नंबर 2, शांति समझौते के मसौदे से सहमत नहीं था। नंबर 3, ईरानी राष्ट्रपति के कहने पर मंजूरी दी। नंबर 4, ट्रंप शांति समझौते के लिए बहुत बेचैन थे। नंबर 5, अंतिम समझौता भी ईरान की शर्तों पर होगा। दरअसल शांति समझौते को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई के इस बयान के 3 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, अमेरिका के साथ पीस डील को लेकर ईरान में विरोध की आवाज को शांत करना। दूसरा, अमेरिका के साथ आगे की बातचीत के लिए जमीन तैयार करना। तीसरा, अगर अमेरिका के साथ हुआ शांति समझौता रद्द होता है तो ठीकरा ईरान के राष्ट्रपति के सिर फोड़ना, क्योंकि ईरानी सेना और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति और नियत पर भरोसा नहीं है। मुज्तबा का बयान उस वक्त आया है जब शांति समझौते के बाद भी ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। मतलब यही है कि ट्रंप दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि डील अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की मजबूरी थी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
4: कभी वामपंथ के मजबूत गढ़ को ढाकर सत्ता तक पहुंचने वाली तृणमूल कांग्रेस आज अपने घर में सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। चुनावी हार के बाद से शुरू हुआ असंतोष खुली बगावत में बदल गया है। पार्टी के कई सांसद और विधायकों ने नेतृत्व पर सवाल उठाए और वरिष्ठ नेता भी बागी खेमे के साथ खड़े हो गए।

0: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे।
1: हम लोगों का जो सोच है, पार्टी का चलने का जो सोच है और जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का बनाया हुआ है उसके अंदर आके जाकर काम करेंगे तो जरूर मार्च होंगे।
2: भी हमको मदद मांगेगा, हम देगा मदद, वो हमको उसको मदद जरूर पर हम लेगा, एक साथ करेगा।
3: इनका यह अस्तित्व तो बन चुका है, इनकी हालत खराब हो चुकी है, इनको टीएमसी के घर से तो निकाल लिया बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी के दरवाजे में घुसने नहीं दिया।
4: जिस तृणमूल कांग्रेस ने कभी वामपंथ के 34 साल पुराने किले को ढहा दिया था, आज उसी पार्टी के भीतर बगावत की गूंज सुनाई दे रही है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या टीएमसी में ममता बनर्जी अब सिर्फ सलाहकार की भूमिका में होंगी? क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकलने वाली है?
5: इस तरह से आप अलग जुट लोकसभा के अंदर नहीं बना सकते, ये गैर संवैधानिक है।
6: थाली में खाया उसमें छेद किया।
4: पहले 19 सांसदों की चिट्ठी सामने आई और अब दावा किया जा रहा है कि 22 तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद और दिल्ली में टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा सुदीप बंदोपाध्याय भी अब बागी खेमे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। टीएमसी के भीतर शुरू हुई नाराजगी अब खुली लड़ाई में बदलती दिख रही है। बागी गुट अब संसद में अलग पहचान की मांग करने की तैयारी में है।
7: सात आठ दिन में ये पूरा दल जो है उसका हाथ से निकल ही गया और पूरा की पूरा निकल जाएगा। उसका प्रतीक चिन्ह जो है, ये चुनाव सिंबल, वो भी निकल जाएगा।
4: सबसे दिलचस्प बात यह है कि बागी नेता सीधे सीधे ममता बनर्जी को हटाने की बात नहीं कर रहे। बागी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी पार्टी की मार्गदर्शक बनी रहे, लेकिन संगठन और संसदीय दल की कमान नए नेतृत्व को सौंप दी जाए। यानी लड़ाई नेतृत्व की भूमिका और पार्टी के नियंत्रण को लेकर है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद से ही पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ने लगा है। पहले कुछ विधायकों ने नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला, फिर विधानसभा में अलग शक्ति केंद्र बनने की कोशिश शुरू हुई और अब सांसदों का बड़ा तबका भी खुलकर सामने आ गया है।
8: चिट्ठी दे के आ गया, वो एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है।
2: नया जो खेला शुरू हुआ है, हम ज्वाइंट गवर्नमेंट मीन्स हमारा डबल इंजन का सरकार एक साथ मिलके कांधा में कांधा मिला के काम करने चाहते हैं।
9: मिलकर डेवलपमेंट के साथ ही रहेंगे तो बंगाल के कलकत्ता की उन्नति जरूर होगी।
10: यहाँ का जो माहौल था उसके खिलाफ जो शिकायत लेके हम लोग जा रहे हैं, हमारा डिमांड क्या होगा? डिमांड देश का अच्छा करना, देश के लिए काम करना।
4: सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि टीएमसी में बगावत हुई है या नहीं, सवाल ये है क्या ममता बनर्जी इस संकट से उबर पाएंगी? क्या पार्टी फिर एकजुट होगी या फिर शिवसेना और एनसीपी की तरह तृणमूल कांग्रेस भी एक बड़े विभाजन की कहानी लिखने जा रही है?

कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसने दशकों तक देश पर शासन किया, लेकिन सबसे ज्यादा बगावतें और टूट भी यही देखी गई। 140 साल के इतिहास में कांग्रेस सिर्फ चुनावी जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि विद्रोह, असहमति और नए राजनीतिक दलों के जन्म की कहानी है।

देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी और भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा टूट, बगावत और विद्रोह झेलने वाली पार्टी कांग्रेस। आज जब तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी या दूसरी पार्टियों में टूट की चर्चा होती है तो उसकी जड़ें कहीं न कहीं कांग्रेस के इतिहास में दिखाई देती है।

0: भारतीय राजनीति में अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा बगावतें देखी हैं, तो वो है कांग्रेस। 1885 से लेकर 2025 तक कांग्रेस का इतिहास सिर्फ चुनावी जीत हार का इतिहास नहीं है, बल्कि बगावत, विद्रोह, टूट और नई राजनीतिक ताकतों के जन्म की कहानी भी है। कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1885 से, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1907 में पहली बार पार्टी के भीतर बड़ा वैचारिक संघर्ष सामने आया।
1: 1907 में नरम दल के नेता और गरम दल के नेताओं के बीच में विचारधारा को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें जो गरम दल के नेता थे जैसे लोकमान्य तिलक, वे उग्र तरीकों से भारत को स्वतंत्रता दिलवाना चाहते थे, लेकिन जो नरम दल के नेता थे जैसे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी बहुत शांतिपूर्ण और अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन तब विचारधारा के संघर्ष के आगे वर्चस्व की लड़ाई टिक नहीं पाती थी, तो होता यह था कि ये लोग लड़ते थे, लेकिन 1907 में भी जैसे विभाजन हुआ कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में, तो वो लखनऊ अधिवेशन में जाकर के एक हो गए।
0: 1939 में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी और संगठन के साथ उनका टकराव बढ़ता गया। आखिरकार बोस ने इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया। ये कांग्रेस के इतिहास की सबसे चर्चित वैचारिक बगावतों में से एक थी।
1: साबित करने के लिए मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया था। और यह हमने कांग्रेस के इतिहास में देखा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत ज्यादा तरजीह दी नहीं जाती। तो हुआ क्या कि इसके बाद गांधी जी नाराज हो गए, उन्होंने इसे अपना अपमान बताया, और इसके बाद जो कांग्रेस के बाकी के नेता थे उन्होंने कन्विंस किया सुभाष चंद्र बोस को, और फिर पंत जी को, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया।
0: आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन अंदरूनी असंतोष भी बढ़ रहा था। 1951 में आचार्य जेबी कृपलानी ने कांग्रेस छोड़कर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। 1950 से 1960 के दशक में कई राज्यों में कांग्रेस से असंतुष्ट नेताओं ने अलग अलग राजनीतिक दल बनाए। केरल कांग्रेस, ओडिशा जन कांग्रेस और भारतीय क्रांति दल जैसी पार्टियां इसी दौर में पैदा हुई। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक टूट 1969 में हुई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस संगठन आमने सामने आ गए। इंदिरा गांधी ने पार्टी लाइन से अलग जाकर वीवी गिरी का समर्थन किया, जबकि संगठन ने नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था। विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और दूसरी तरफ कामराज, मुरारजी देसाई और एस निजलिंगप्पा जैसे नेताओं की कांग्रेस को। यह सिर्फ संगठनात्मक विभाजन नहीं था, बल्कि कांग्रेस के भीतर सत्ता बनाम संगठन की लड़ाई थी। इंदिरा गांधी का कद सिर्फ जनता के बीच ही ज्यादा लोकप्रिय नहीं था, संगठन के बीच भी था, लिहाजा कांग्रेस आर मुख्य कांग्रेस बन गई।
1: 1969 में जब इंदिरा गांधी जी को निष्कासित कर दिया गया, इसके बाद कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी। 1977 में फिर लोकसभा चुनाव जब हुए तो इसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1978 में जो कांग्रेस आर थी उसको इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाया, यानी कि कांग्रेस इंदिरा। और इसके बाद से लगातार हमने देखा कि जिन प्रारंभिक मूल्यों पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिन वैचारिक मूल्यों पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे एक शिफ्ट लेते हुए इस पार्टी में फिर हमने एक परिवार को केंद्र में आते हुए देखा।
0: 1977 में इमरजेंसी की हार के बाद कांग्रेस में फिर भूचाल आया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का विरोध किया। जवाब में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई, और यही कांग्रेस आई बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में स्थापित हुई। इस दौर में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी बदलकर पंजा हो गया। 1980 का दशक कांग्रेस के भीतर लगातार असंतोष का दशक रहा। 1990 का दशक कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। यही वो दौर था जब कांग्रेस से निकलने वाली पार्टियां आगे चलकर क्षेत्रीय राजनीति की बड़ी ताकत बन गईं।
1: अब जब हम इन क्षेत्रीय पार्टियों को देखते हैं तो एक तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ना होना, सभी नेताओं की बराबर स्तर पर बात को ना सुना जाना, ये कांग्रेस पार्टी में हम अमूमन देखते हैं। इसके अलावा उनके जो अपने रीजनल इंटरेस्ट्स थे, जब उनकी अनदेखी की गई, जैसे कि बंगाल में, जैसे कि महाराष्ट्र में, जैसे कि हम जाकर के तेलंगाना या आंध्रा में देखते हैं, तो फिर इन नेताओं को लगा कि हमारा एक बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट में बिठाए रखने का है या चुनाव जितवाने में है, तो फिर हम अपनी पार्टी क्यों ना बना लें। तो फिर एक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं वैचारिक संघर्ष का, वीजावी एक वर्चस्व की लड़ाई का, और अपनी अपने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको एक मुख्य पटल पर लाने का। तो यही कारण है कि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं ये कांग्रेस से अलग हुए।
0: 1996 में माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई। 1997-98 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। बंगाल में कांग्रेस की कमजोर रणनीति और वामपंथियों के खिलाफ आक्रामक लड़ाई की जरूरत को ममता बनर्जी अलग पार्टी बनाने की वजह बता रही थी, लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद खुद संकट में है। फिर आया 1999, ये कांग्रेस के इतिहास की सबसे चर्चित बगावतों में से एक थी। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर ने खुलकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता माना और तीनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का जन्म हुआ और महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी कांग्रेस की बराबरी की ताकत नहीं, एक बड़ी ताकत बन गई। लेकिन कांग्रेस में बगावत हमेशा बरकरार रही। 2011 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़कर वाईएसआर कांग्रेस बनाई। उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन उनके मौत के बाद नेतृत्व को लेकर विवाद बढ़ गया। जगनमोहन रेड्डी ने अलग पार्टी बनाई और कुछ ही सालों में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का लगभग सफाया कर दिया। 2014 में नल्लारी किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ी। 2016 में अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनाई। 2021 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस बनाई। उनका आरोप था कि पार्टी नेतृत्व राज्य की राजनीति को समझने में विफल रहा है। 2022 में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा जब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी। आजाद ने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए और बाद में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का गठन किया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस से निकलने वाली कई पार्टियां बाद में कांग्रेस के लिए ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस की जगह ले ली। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस ने कांग्रेस का जनाधार खत्म कर दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस की बराबरी की शक्ति बन गई। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कई राज्यों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस के वोट बैंक पर खड़े हुए। यानी कांग्रेस का इतिहास सिर्फ एक राजनीतिक दल का इतिहास नहीं है, ये महत्वाकांक्षाओं, वैचारिक संघर्षों, नेतृत्व की लड़ाइयों और सत्ता के समीकरणों का इतिहास है। 140 साल की यात्रा में कांग्रेस जितनी बार टूटी उतनी बार भारतीय राजनीति का नक्शा भी बदला। और यही वजह है कि जब भी देश में किसी पार्टी में बगावत की चर्चा होती है तो सबसे पहले कांग्रेस का इतिहास याद आता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में टूट की सबसे लंबी कहानी अगर किसी पार्टी ने लिखी है तो वो कांग्रेस ही है।
2: एक दौर था जब जनता दल कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक विकल्प बनकर उभरा था। वीपी सिंह की अगुवाई में यह पार्टी केंद्र की सत्ता तक पहुंची, लेकिन सत्ता के शिखर पर पहुंचते ही भीतर की खींचतान शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि जनता दल का कुनबा लगातार बिखरता चला गया। कोई नेतृत्व से नाराज होकर अलग हो गया तो किसी ने क्षेत्रीय राजनीति की नई जमीन तलाश ली। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और जेडीएस जैसी कई बड़ी पार्टियां इसी बिखराव की कहानी से निकली।
0: भारतीय राजनीति में अगर किसी पार्टी के टूटने से सबसे ज्यादा नई पार्टियां पैदा हुई तो वो जनता दल था। एक समय देश की सत्ता पर काबिज जनता दल कुछ ही सालों में इतने हिस्सों में बट गया कि उससे निकली पार्टियों ने अलग अलग राज्यों की राजनीति का नक्शा बदल दिया। कहानी शुरू होती है 1988 से, जब पुरानी जनता पार्टी के अलग अलग धड़े लोकदल, कांग्रेस एस और लोक मोर्चा एक साथ आए और जनता दल का गठन हुआ। लक्ष्य था कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत राष्ट्रीय विकल्प खड़ा करना।
3: जनता दल की कहानी अलग ही है। जनता दल कौन है? जनता दल को समझना चाहिए, जब से जनता दल बना वो समाजवादियों का गुट है। हिंदुस्तान में दो तरह की विचारधारा रही, एक कांग्रेस की विचारधारा है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणपंथी विचारधारा, और इन दोनों के बीच में जो लोग हैं वो हैं समाजवादी लोग। समाजवादी लोग एक तो बड़ा कन्फ्यूज रहा है, शुरुआती दौर में वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए वो उन्होंने मजबूती की, लेकिन जब कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे तब उनको बाद में समझ में आया कि कांग्रेस ही सबसे मजबूत है।
0: 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने शानदार प्रदर्शन किया और विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने।
4: विश्वनाथ प्रताप सिंह, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
5: सच्ची श्रद्धा और इच्छा रखूंगा।
0: लेकिन सत्ता मिलने के साथ ही पार्टी के भीतर नेतृत्व की लड़ाई भी शुरू हो गई। वीपी सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल जैसे दिग्गज नेताओं के बीच मतभेद लगातार बढ़ते रहे। आखिरकार 1990 में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसी उथल पुथल के बीच चंद्रशेखर लगभग 60 सांसदों को साथ लेकर अलग हो गए और समाजवादी जनता पार्टी का गठन कर दिया। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जनता दल का बिखराव थमने के बजाय और तेज हो गया। 1992 में चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पार्टी आगे चलकर एक बड़ी ताकत बन गई। 1994 में बिहार की राजनीति में भी विद्रोह हुआ। नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस समेत कई नेताओं ने लालू प्रसाद के नेतृत्व का विरोध करते हुए समता पार्टी का गठन कर दिया। फिर 1997 में चारा घोटाले के दबाव के बीच लालू प्रसाद यादव ने जनता दल छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD बना ली। 1999 में जनता दल को दो और बड़े झटके लगे। HD देवगौड़ा ने जनता दल सेकुलर यानी JDS बनाई, जबकि शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड यानी JDU अस्तित्व में आया।
3: वहाँ बड़े बड़े लीडर थे, लालू यादव थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मधुलिमिए थे, शरद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे। उनकी सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और उन महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ वो शत्रप भी थे अपने अपने इलाकों में। जैसे लालू यादव बिहार में थे, शरद यादव बिहार में मजबूत नेता थे, नीतीश कुमार जी वहां पर उनके साथ थे, और इधर मुलायम सिंह यादव थे। तो उन छत्रपों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने उस पार्टी को तोड़ा। विचारधारा के तौर पर देखें तो वो आज भी समाजवादी हैं, विचारधारा में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन उनको लगा कि जहां जहां पर वो सत्ता में हिस्सेदार हो सकते हैं, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, जिस कांग्रेस से लड़ाई लड़ी वहां लालू यादव भी कांग्रेस के साथ हुए, मुलायम सिंह जी भी कांग्रेस के साथ हुए, और नीतीश कुमार जी भी कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन अब उनको लगा कि कांग्रेस के साथ नहीं चल सकते, तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। लेकिन समाजवादी पार्टी और RJD वो अब भी कांग्रेस के साथ इस सत्ता की लड़ाई को लड़ रहे। विचारधारा वैसे भी जनता दल का कोई मूल या कोर विषय नहीं रहा।
0: 2003 में समता पार्टी का JDU में विलय हो गया और नीतीश कुमार इस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। यानी जनता दल सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, बल्कि कई राजनीतिक दलों की जननी बन गई। समाजवादी पार्टी, RJD, JDU और JDS जैसी पार्टियां आज भी भारतीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं। लेकिन इन सब की जड़ें उसी जनता दल में हैं, जो कभी देश की सत्ता का केंद्र था और फिर लगातार बगावतों का शिकार होकर इतिहास का हिस्सा बन गया।
2: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
3: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams so Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
4: Bengal ki hawa mein ab ek nayi taajgi hai. यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है. ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है. साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है. बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं. रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है.
5: समाजवादी पार्टी में झूठ की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है. पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही हैं.
6: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं. उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी.
5: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं. पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है. पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा. बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है. दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे.
6: जो राजभर जी है उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, न मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है. एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता.
5: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं.
7: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता.
8: कोई सीरियस नहीं लेता है. पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है. वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
5: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है, या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

देश भर में नीट की दोबारा परीक्षा जारी। कड़ी सुरक्षा चेकिंग के बीच सेंटर में पहुंचे छात्र। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एनटीए पर है भरोसा, जिम्मेदार लोग निभाएंगे जिम्मेदारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एसआईटी आज सौंप सकती है अपनी शुरुआती रिपोर्ट। सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार, चांदी की ईंटें और शिलाएं का कोई रिकॉर्ड नहीं है। भारतीय नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, दूनागिरी, संशोधक और अग्रह। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किए समर्पित, कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा भारत।

उत्सव का संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, विराट कोहली फिट होने की शर्त पर शामिल, बुमराह की 2.5 साल बाद हुई वापसी, यशस्वी मौका नहीं मिला।

0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्य चौधरी। इस समय पूरी दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड पर है, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर आज बड़ी बैठक होनी है। माना जा रहा है कि कई मुद्दों पर सहमति के बाद भी अविश्वास पैदा हुआ हुआ है। आज दोनों मुल्क उन मुद्दों को हल निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच इस डील के टूटने को लेकर भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इसराइल का ना रुकना और लगातार लेबनान पर हमले करते रहना। दोनों देश मिलकर अब इस बात को लेकर ऐलान कर चुके हैं कि अगर बातचीत निर्णायक मोड पर नहीं पहुंची, अगर कोई नतीजा नहीं निकला, तो फिर एक बार फिर से भीषण युद्ध की तैयारी दोनों देश कर बैठे। आज रणभूमि में बात करेंगे इसी मीटिंग में मचे खमासान को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार आज रणभूमि स्पेशल में आपके लिए क्या खास है। आज हम अमेरिका ईरान के साथ शांति वार्ता से लेकर भीषण होते हुए रूस यूक्रेन युद्ध की भी पूरी खबरें आपको दिखाएंगे। रणभूमि स्पेशल में पहली खबर हम आपको दिखाएंगे स्विट्जरलैंड में, जहां पर चलने वाली इस वक्त एक बड़ी बैठक अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है। आमने सामने की शांति वार्ता को लेकर दोनों ही मीटिंग कर रहे हैं। इसमें अमेरिका की अगुवाई जेडी वेंस कर रहे हैं और ईरान का दल का नेतृत्व स्पीकर गालिबाफ कर रहे हैं। रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि हॉर्मुज को लेकर डील पर फिर से खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर का रुख करेंगे इजराइल की ओर, जहां उसने एक बार फिर से सीज फायर के बावजूद लेबनान पर एक बार फिर से बड़े हमले किए। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर हम आपको दिखाएंगे कि यूक्रेन के कीव में, जहां पर रूस ने भीषण जवाबी कार्रवाई की है और वहां की तस्वीरें भी बहुत ज्यादा चिंता करने वाली है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को फिर से निशाना बनाया है। रणभूमि स्पेशल में पांचवी बड़ी खबर हम आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां पर आज भारतीय नौसेना को 3 नए धुरंधर मिले, जिसमें INS आग्रह, INS दूरागिरी और INS संशोधक है, और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसको नौसेना को समर्पित भी कर दिया। रणभूमि स्पेशल में आज हमारे साथ दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KJ सिंह सर होंगे और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवास सर हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का रणभूमि स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान को लेकर। दरअसल आज अमेरिका और ईरान की शांति की खबरों के बीच इस वक्त स्विट्जरलैंड में एक बड़ी बैठक हो रही है और डील पर जो हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि डील के बाद भी कई संभावना ऐसी थी जिनको लेकर दोनों के बीच में कोई बड़ा आप कह सकते हैं संशय या फिर कई ऐसे मिस्ट्रस हैं जिसको लेकर आज दोनों ही देश आज आमने सामने बैठेंगे। हालांकि जिस तरीके से ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का दावा किया है, दूसरी तरफ इसराइल ने लगातार लेबनान पर हमले जारी रखे हैं, उससे इस डील के पर खतरा लगातार मंडराने लगा है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे US ईरान। ईरान ने कर दिया हॉर्मुज बंद करने का ऐलान। होगा युद्ध विराम या फिर मचेगा घमासान? नहीं मान रहा इसराइल, बमों की बरसात से दहला लेबनान। एक तरफ स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम की बिसात बिछ रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंच चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर तक पहुंच चुके हैं। तो दूसरी तरफ लेबनान में इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों ने ट्रंप के पीस प्लान पर सवालिया निशान लगा दिया है। पिछले 24 घंटों की ईरान की कूटनीति और इसराइल की आक्रामक सैन्य नीति से यह आशंका बढ़ गई है कि कहीं डील में फिर कोई अड़चन तो नहीं आएगी। इसराइल ने पिछले दो दिनों में लेबनान में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक की है, जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली फौज का आरोप है कि हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में उसे ये कार्रवाई करनी पड़ी है और आतंकियों के खिलाफ इस तरह के हमले जारी रहेंगे। खुद नेतन्याहू कई बार इसराइल का रुख साफ कर चुके हैं। इस जिद की वजह से हाल ही में ट्रंप को कई तल्ख बयान भी देने पड़े हैं, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि लेबनान में हिजबुल्ला की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
2: כשם שהחזרנו את הביטחון והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת. כי הרצועה הזאת מפרידה בין מחבלי חיזבאללה לאזרחינו ויישובינו.
1: इजराइल के सैन्य अभियान को देखते हुए ईरान बिफर पड़ा है। ईरान ने शनिवार को इस सीज फायर टूटने का आरोप लगाकर हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। उधर हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी हलचलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने लिखा, युद्ध विराम के 60 दिन की अवधि के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी जहाज से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 60 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी कोई टोल नहीं लिया जाएगा, लेकिन यदि व्यापक समझौता नहीं होता है तो अमेरिका मध्य पूर्वी देशों के लिए गार्जियन एंजल की भूमिका निभाने के बदले और अतीत, वर्तमान और भविष्य के खर्च की वसूली के लिए टोल वसूल सकता है। एक तरफ इसराइल ट्रंप के पीस प्लान की मुश्किलें बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ हॉर्मुज का हाहाकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सवाल उठा रहा है। ऐसे हालात में जेडी वेंस ने इसराइल को दो टूक चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि जो लोग इस डील का विरोध कर रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत समझनी चाहिए।
3: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. Some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
1: अब देखना यह है कि ईरान और लेबनान की रणभूमि से हजारों मील दूर स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम पर अंतिम मुहर लगती है या फिर इजराइल की जिद ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फेरती है। आज तक ब्यूरो
0: और बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन इस बीच आपको एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं कि स्विट्जरलैंड में जहां पर बर्गनस्टॉक के अंदर शहर के अंदर अमेरिका और ईरान के वार्ताकार पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त शांति वार्ता शुरू हो सकती है। इसमें अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस वहां पहुंच चुके हैं जबकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ वहां मौजूद है और ईरान की तरफ से गालिबाफ और वहां के विदेश मंत्री अराग्ची भी इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पणे उपाध्याय भी जुड़े हैं। पणे उपाध्याय का रुख करते हैं। पणे, कब तक ये मीटिंग की जा सकती है और क्या खासतौर पर यह कहा जा रहा था कि ईरान का प्रतिनिधि मंडल ज्यादा नहीं रुकने वाला है, वो आज ही इस मीटिंग को पूरा कर वापस जाने की कोशिश में है?
4: देखिए, संकेत इसी तरीके के मिल रहे हैं सुमित, और उम्मीद की जा रही है कि ये मीटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है बर्गनस्टॉक के उस रिसॉर्ट के अंदर जहां पर ईरान का प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वहां पर पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान और कतर के भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री के साथ ईरान के विदेश मंत्री की अब से कुछ ही देर पहले मीटिंग हुई है और अब बताया जा रहा है कि मीटिंग जो औपचारिक स्तर की है, लेकिन अभी यह देखना है कि क्या अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं या पिछले दौर की तरह ही जो इनडायरेक्ट टॉक्स हैं वो होंगी। साथ ही ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो ये बातचीत केवल ये बताने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, अमेरिका को याद दिलाने के लिए पहुंचे हैं कि इस जो एमओयू हुआ है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पजश्कियान के बीच, जिस पर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत हुए थे, उसके दायरे के अंदर लेबनान भी आता है और अगर लेबनान के अंदर इसे लागू नहीं किया गया तो फिर ये मान लिया जाए कि ये समझौता न के बराबर लागू होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरीके से बंद रहेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो टेक्निकल लेवल पे जो सहमति बनी है 60 दिन की, तो ये इसमें सबसे बड़ा जो पेंच है आप शुरू से देख रहे हैं सुमित इस चीज को कि 7 अप्रैल 2026 को जब पहली बार सीज फायर का ऐलान हुआ था तब से लेकर आज तक एक ही फैक्टर है और वो है इसराइल फैक्टर, लेबनान फैक्टर, क्योंकि इसराइल इस पूरे घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इस बातचीत की मेज पर इसराइल मौजूद नहीं है। तो अब अमेरिका पर जिम्मेदारी है कि वो इस डील को इजराइल से कैसे लागू करवाता है और लेबनान के अंदर इजराइल की फोर्सेस की जो कार्रवाई चल रही है उसे किस तरीके से रुकवा पाता है, क्योंकि ईरान का कहना है कि इससे कम पर तो बात संभव नहीं होगी।
0: बिल्कुल, और प्रणय देखिए यही बात की जा रही है कि देखिए आखिरकार इजराइल रुकेगा कैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी। देखिए हमें बता रहे थे कि अभी भी जो सबसे कमजोर इस पूरी बातचीत के अंदर पेच है या जो कड़ी है वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल यहां पर किसी की सुनना नहीं चाहता। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर ईरान ने दावा किया है कि उसने कल हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा के बाद वहां की व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। ईरान की तरफ से बार बार किया कहा जा रहा है कि जब तक इसराइल को लेकर रोका नहीं जाता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। उसने एक तस्वीर भी जारी की है जिसमें हॉर्मुज की ताजा हालात दिखाए गए। दरअसल आपको बता दें कि वहां के सरकारी मीडिया हाउसेस के अंदर ये तस्वीरें साझा की गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि वहां पर जो टैंकर्स है वो अभी भी वहां पर ऐसे ही मौजूद है और ये वही टैंकर्स है जो या तो ईरान के है या फिर ईरान की सहमति से उस इलाके में बने हुए हैं। इसके अलावा किसी भी टैंकर को वहां से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान IRGC और ईरान की तरफ से स्पष्ट रूप से कर दिया गया था। और देखिए ईरान की तरफ से एक और तस्वीर साझा की गई है जिसे हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ईरान क्यों दावा कर रहा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया। दरअसल ये कल के ग्राफिक्स आप समझ सकते हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं और ये इसलिए दिखाई गई है क्योंकि कल पूरे दिन के अंदर आवाजाही कैसी रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यह दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए ये इलाका अगर आप देखें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है जहां पर ये जो डेटा रिलीज किया गया उसके मुताबिक जहाजों की आवाजाही बहुत कम के बराबर है। दोनों जहाज दोनों तरफ से बंद कर दिए गए हैं रास्ते और ईरान ये कहता है कि सिर्फ वही जहाज यहां से गुजरे हैं या तो वो ईरान के थे या फिर ईरान की सहमति से कुछ दो चार जो शिप्स हैं या फिर टैंकर्स हैं उनको गुजरने की इजाजत दी गई है। ईरान ये बात दावा लगातार इसलिए कहता है क्योंकि एक तरफ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगातार 55 से ज्यादा टैंकर्स को निकलने की इजाजत मिली है, वहां से निकल चुके हैं कई टैंकर्स लगातार वहां से निकल रहे हैं। वहीं IRGC की तरफ से दावा किया गया कि नहीं, हमारी तरफ से कोई भी ऐसे जहाज नहीं निकलने दिए जा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद। और देखिए जब बैठक चल रही है उसी बीच ईरान की तरफ से यह दावा एक बार फिर से किया गया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। लेकिन आप मान के चलिए कि इसराइल के आप कह सकते हैं जो रिएक्शन है यह ईरान इसराइल को मनाना ही सबसे बड़ी चुनौती इस समय अमेरिका के सामने बनी हुई है। अमेरिका कोशिश जरूर कर रहा है लेकिन इसराइल साफ तौर पर कह चुका है कि वो जब तक अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर लेता जब तक वो पीछे नहीं हटेगा। अब बात इसराइल जो लगातार जो अमेरिका की मर्जी के बिना उसकी बात माने बिना लेबनन पर जंग के अंदर आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसराइल अमेरिकी मदद के बिना मिडिल ईस्ट में अकेला जंग लड़ सकता है? क्या इसराइल में इतनी ताकत है कि वो अमेरिका की मदद के बिना ही ईरान और उसके खतरनाक आतंकी गुट यानी प्रॉक्सी यानी हिजबुल्ला और हूती का सामना कर सकता है? अमेरिका इसराइल की रणनीतिक रिश्ते पर हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके बाद हमारे दोनों खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे।

0: ये इसराइल का अजेय सुरक्षा कवच आयरन डोम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कवच की असली चाबी वॉशिंगटन के पास है। आंकड़ों की बात करें तो साल 1948 में इसराइल के जन्म के बाद से अब तक अमेरिका उसे $158 बिलियन यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी सैन्य मदद दे चुका है। मौजूदा 10 वर्षीय समझौते के तहत अमेरिका हर साल इसराइल को $3.8 बिलियन की निश्चित सैन्य मदद देता है, जिसमें से $500 मिलियन सिर्फ मिसाइल डिफेंस के लिए होते हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई लाइन का है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस जिन अत्याधुनिक F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स के दम पर ईरान और लेबनान में तबाही मचाता है, वो सब 100% अमेरिकी है। इसराइल के कुल हथियार आयात का 69% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। इस 3 महीने की लंबी जंग में जब इसराइल के तोप के गोले और गाइडेड बम खत्म होने की कगार पर पहुंचे तो अमेरिका ने आपातकालीन एयरलिफ्ट के जरिए हजारों टन गोला बारूद यरूशलम पहुंचाया। लेकिन इसराइल के लिए अमेरिका सिर्फ बारूद का सौदागर नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा ग्लोबल डिप्लोमेटिक बॉडीगार्ड भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में जब भी पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाती है, अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलग थलग होने से बचा लेता है। इतिहास में अमेरिका ने 45 से ज्यादा बार इसराइल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसराइल अमेरिका पर इतना निर्भर है तो नेतन्याहू ट्रंप की बात क्यों नहीं मान रहे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसराइल के पास कुछ महीनों की जंग, अकेले लड़ने का हथियारों का बफर स्टॉक और खुद की मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री जैसे एल्बिट सिस्टम्स जरूर है, लेकिन अगर ईरान के साथ लंबी खींचने वाली जंग होती है तो अमेरिका के बिना इसराइल की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसों की बदौलत इसराइल सुरक्षित है, इसलिए उसे वॉशिंगटन के शांति रोड मैप का सम्मान करना ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। नेतन्याहू जानते हैं कि अमेरिकी मदद के बिना ईरान से लंबा युद्ध लड़ पाना उसके लिए संभव नहीं है, इसीलिए वो ट्रंप की लाइन को पूरी तरह काटे बिना आखिरी क्षण तक अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय का खेल खेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: वैसे तो ये दुनिया जानती है कि ईरान के लिए अगर उसके प्रॉक्सी हूती, हिजबुल्ला और हमास हैं या उनकी शक्ति ईरान की असली शक्ति वो है, तो मिडल ईस्ट में अमेरिका की असली शक्ति इसराइल है। और शायद इसी वजह से, लेकिन जिस तरीके से जो विश्वास की अविश्वास की खाई पैदा हो रही है, ये एक बड़ा कंसर्न है अमेरिका और इसराइल के लिए। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हैं। केजे सिंह सर, जब हम बात करते हैं इसराइल की, ये हम सब जानते हैं कि इसराइल को इतना ताकतवर, इतना ज्यादा मजबूत बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हाथ है, लेकिन नेतन्याहू के जो तेवर हैं वो ये दिखाते हैं कि उन्हें मतलब ही नहीं, वो परवाह ही नहीं करते अमेरिका के किसी डिसीजन की, वो अपने लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या ये अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, खासतौर पर उसकी सुरक्षा को लेकर, उसके उस वजूद को लेकर जो उसने मिडिल ईस्ट में अपना बनाया?
2: सुमित, जय हिंद। मैं आपके श्रोताओं का भी अभिवादन करता हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और भारत के लिए तो इसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर। जब उम्मीद बंधी है कि ये लड़ाई जो पहले कह रहे थे बहुत लंबा खिंचेगी, इसमें एक विराम आया है, तो अच्छा तो ये होगा कि एक स्थायित्व लाया जाए और इस शांति को पूरी तरीके से स्थापित किया जाए। अब जो आपका सवाल है इसराइल के बारे में, आपने भी सुना होगा कि जेडी वांस ने बहुत मजबूत शब्दों में इसराइल को चेतावनी दी और बताया कि आपके 2/3 जो डिफेंसिव वेपन्स हैं वो अमरीकी टैक्स पेयर के पैसे से और अमरीकी हाथों से बने हैं, तो आप जो ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और आपको लेबनन की लड़ाई को रोकना पड़ेगा। हमारे श्रोताओं को याद होगा कि पहले भी एक युद्ध विराम इसराइल और लेबनन के बीच हुआ था, जो कि इस लड़ाई का एक साइड शो है जो साथ चल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
2: तो
1: बिल्कुल।
2: अभी यह जरूरी होगा कि किसी तरीके से इसराइल को, देखिए इसराइल में भी चैलेंज बहुत है नेतन्याहू के लिए। उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस तरह की है कि उसमें लड़ाई का चलना ही उनके लिए जरूरी है उनके अपने सर्वाइवल के लिए।
1: बिल्कुल सर, अब वक्त की कमी है क्योंकि हमारे साथ जनरल सिवाज भी है। जनरल सिवाज, जिस तरीके से केजी सिंह सर बता रहे थे कि इसराइल के लिए जरूरी है लड़ाई का चलना उनके सर्वाइवल के लिए, लेकिन पूरी दुनिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी है लड़ाई रुके, क्या इसराइल इन सारी चीजों को दरकिनार करके लड़ाई आगे चलता रहने देगा?
3: मुझे लगता नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सुबह थी, ये सच्चाई है। ये नेतन्याहू की पॉलिटिक्स जो है उनके सर्वाइवल का क्वेश्चन है, कि उनको पता है कि अगर लड़ाई बंद हो जाती है, सितंबर में इलेक्शंस हैं, तो उस समय जो हार्ड कोर है वो दिखाएगा कि भाई नेतन्याहू लड़ नहीं पाए, क्योंकि उनका सर्वाइवल का है। क्योंकि जो हिजबुल्ला है वो जो सदन लबनान से हमला करता है इसराइल पे, इसमें कोई शक नहीं, मगर हमें अभी लार्जर पिक्चर देखनी है। और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है दोबारा लड़ना, और वो प्रेशर डालेगा इसराइल पे, और नेतन्याहू को ये मानना पड़ेगा, चाहे वो
1: बिल्कुल
3: जबरदस्ती मानना पड़े, क्योंकि उसकी वजह है वो
1: बिल्कुल
3: सच्चाई है कि बार बार इसराइल इस चीज को कह रहा है कि हम तो रिस्पोंड कर रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्ला हमले कर रहा है हमारे नदन इसराइल में,
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: मगर
1: सर, माफ
3: सच्चाई
1: कीजिएगा
3: है।
1: आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन अपने दर्शकों को एक चीज और दिखाना बेहद जरूरी है। आपको बताते हैं कि आखिरकार कब कब अमेरिका और इसराइल के बीच में जो तल्ख रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं उसमें ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में वार पलटवार कैसे किया गया, कैसे लगातार अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू को लेकर सख्त चेतावनी या फिर उनको कई स्टेटमेंट दिए गए। 9 अप्रैल की बात करें, नेतन्याहू अब लेबनन में सैन्य अभियानों को कम करे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। 17 अप्रैल को क्या कहा, इसराइल अब लेबनन पर हवाई हमले नहीं करेगा, इसराइल अब भी नहीं रुका। देखिए 17 अप्रैल, 9 अप्रैल से लगातार ये चीजें जारी है, अमेरिका के कहने के बावजूद भी इसराइल नहीं रुक रहा। लेबनन में इसराइल अपने सैन्य अभियानों को सर्जिकल स्ट्राइक तक ही सीमित रखे, यानी पिन पॉइंटेड लोकेशन पर अटैक करें हिजबुल्ला के खिलाफ, लेकिन बड़ी कार्रवाई ना करें। 1 जून को क्या कहा गया, इसराइल अब लेबनन पर हमले नहीं करेगा, लेकिन हुआ क्या, इसराइल नहीं रुका। 1 जून को नेतन्याहू पूरी तरीके से क्रेजी यानी पागल हो गए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था। इसके बाद 14 जून को नेतन्याहू एक बड़े मुश्किल इंसान है, उन्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, ये अमेरिका इसलिए कह रहा है क्योंकि जितने हथियार ईरान को मिलते हैं इसराइल को मिलते हैं वो अमेरिका के होते हैं, अमेरिका के बिना इसराइल कुछ भी नहीं है, ये एक बार फिर से 17 जून को कहा गया। और ये लगातार इसलिए कहा गया है क्योंकि अमेरिका दिखाना चाह रहा था इसराइल को कि देखिए हमारे बिना आप कुछ भी नहीं, अगर आप नहीं रुके तो फिर हम अपने आप को पीछे खींच लेंगे। वहीं अब अगले एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आप बात करेंगे रूस ने यूक्रेन में मचा दिया है कैसे कोहराम और कैसे ट्रंप और मेलोनी में मचा है घमासान, ये सारी चीजें बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन आप देखते रहिए रणभूमि स्पेशल।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: दिस इज द साउंड ऑफ जैक buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
7: Oh, ouch.
6: However you make money work, we can work with that.
8: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
9: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
10: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी। From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
8: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
9: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
10: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
11: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
10: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: ये इसराइल का अजेय सुरक्षा कवच आयरन डोम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कवच की असली चाबी वॉशिंगटन के पास है। आंकड़ों की बात करें तो साल 1948 में इसराइल के जन्म के बाद से अब तक अमेरिका उसे $158 बिलियन यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी सैन्य मदद दे चुका है। मौजूदा 10 वर्षीय समझौते के तहत अमेरिका हर साल इसराइल को $3.8 बिलियन की निश्चित सैन्य मदद देता है, जिसमें से $500 मिलियन सिर्फ मिसाइल डिफेंस के लिए होते हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई लाइन का है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस जिन अत्याधुनिक F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स के दम पर ईरान और लेबनान में तबाही मचाता है, वो सब 100% अमेरिकी है। इसराइल के कुल हथियार आयात का 69% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। इस 3 महीने की लंबी जंग में जब इसराइल के तोप के गोले और गाइडेड बम खत्म होने की कगार पर पहुंचे तो अमेरिका ने आपातकालीन एयरलिफ्ट के जरिए हजारों टन गोला बारूद यरूशलम पहुंचाया। लेकिन इसराइल के लिए अमेरिका सिर्फ बारूद का सौदागर नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा ग्लोबल डिप्लोमेटिक बॉडीगार्ड भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में जब भी पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाती है, अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलग थलग होने से बचा लेता है। इतिहास में अमेरिका ने 45 से ज्यादा बार इसराइल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसराइल अमेरिका पर इतना निर्भर है तो नेतन्याहू ट्रंप की बात क्यों नहीं मान रहे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसराइल के पास कुछ महीनों की जंग, अकेले लड़ने का हथियारों का बफर स्टॉक और खुद की मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री जैसे एल्बिट सिस्टम्स जरूर है, लेकिन अगर ईरान के साथ लंबी खींचने वाली जंग होती है तो अमेरिका के बिना इसराइल की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसों की बदौलत इसराइल सुरक्षित है, इसलिए उसे वॉशिंगटन के शांति रोड मैप का सम्मान करना ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। नेतन्याहू जानते हैं कि अमेरिकी मदद के बिना ईरान से लंबा युद्ध लड़ पाना उसके लिए संभव नहीं है, इसीलिए वो ट्रंप की लाइन को पूरी तरह काटे बिना आखिरी क्षण तक अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय का खेल खेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
0: भारत की अप।
2: रणभूमि स्पेशल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं युद्ध के एक और ऐसे मोर्चे की जहां पर रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर बड़े और घमासान हमले कर रहे हैं। पिछले 48 घंटों में रूस ने कीव पर समेत यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी की और उसे नुकसान भी पहुंचा है। ये तमाम हमले यूक्रेन की उस एयर स्ट्राइक्स के बाद रूस ने किए हैं जिसकी वजह से मॉस्को तक उसके ऑयल डिपो को तबाह कर दिया गया था। सबसे पहले आपको इस युद्ध क्षेत्र की एक बड़ी अपडेट के साथ एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
3: रूस का पलटवार, मॉस्को हमले के जवाब में विनाशकारी प्रहार, यूक्रेन पर कहर बरपाया, सुरक्षित ठिकानों को बम से उड़ाया। रूस यूक्रेन में बढ़ा घमासान, एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान। विनाशकारी हमलों से अभी तक मचा है मॉस्को में कोहराम। रूस और यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। रूस की एयर स्ट्राइक ने तो जैसे यूक्रेन में जलजला हिला दिया है। रूस का यह हमला इतना ताकतवर था कि पल भर में ही आग के शोले आसमान छू रहे थे। विस्फोट से उठे आग और धुएं के गुबार के सामने हाई राइज बिल्डिंग भी बौनी लग रही थी। एक के बाद एक तेज धमाके हो रहे थे। धमाके से उठी चिंगारियां कई सौ मीटर दूर तक फैल गई। लोगों की चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थी। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यह स्ट्राइक यूक्रेन के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने पर की और उसे तबाह कर डाला। कीव और लविव इलाकों में भी रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से बमों की बरसात की है। इधर यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया और क्रासनोदर में कई ड्रोन अटैक किए। ये हमले एक ऑयल डिपो को निशाना बनाकर किए गए थे। ताबड़तोड़ हमलों की वजह से तेल डिपो में भारी नुकसान हुआ है, जबकि पूरे इलाके से तेल की सप्लाई और जहाजों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। रूस 3 दिन पहले हुए मॉस्को हमले से पूरी तरह बौखलाया हुआ है। मॉस्को में उसकी ऑयल रिफाइनरी पर हुए इस विनाशकारी हमले से मचा कोहराम अभी तक थमा नहीं है। एयर स्पेस में आई दिक्कतों से तो मॉस्को उबर गया है, लेकिन अरबों के नुकसान और तेल सप्लाई की मुश्किलों से उबरने में वक्त लगेगा। वैसे रूसी सेना का दावा है कि मॉस्को हमले के जवाब में उसने यूक्रेन में इतने बम बरसाए हैं कि वो याद रखेगा। उसके कई ड्रोन सेंटरों को तबाह कर दिया गया है और 20 से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटरों को जान गंवानी पड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार अपनी सेना की मदद के लिए यूरोप के बाकी देशों से गुहार लगा रहे हैं ताकि रूस की आक्रामकता से बचा जा सके।
4: The existence of such an army should help prevent any future aggressive moves by Putin. That is why we need to start thinking now about how to provide the funding the Ukrainian army will need in the years.
3: करीब 4.5 सालों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध ने पिछले 4 दिन में विनाशकारी रूप धारण कर लिया है। दोनों देशों के कई लोगों की मौत हो गई है, सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं और तेल डिपो बर्बाद हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो।
2: अभी आपने रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर हमारी रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आपको एडी स्क्रीन पर और आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको 5 बड़े अपडेट इस वॉर को लेकर दिखाते हैं कि आखिरकार 24 से 48 घंटे में क्या कुछ दोनों देशों के बीच में युद्ध क्षेत्र में हुआ। रूस का ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर भीषण हमले किए गए हैं। लगातार अब रूस जवाबी कार्रवाई कर रहा है जिसमें वो नुकसान पहुंचा रहा है। कीव, लवीव और रूस को निशाना बनाया गया, यानी राजधानी के साथ साथ उसके आसपास के लवीव के जो इलाके हैं वहां पर आप कह रहे हैं कि लगा उनके जो डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसेज हैं, उनके मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अब रूस टारगेट कर रहा है। फिर 24 घंटे में रूसी हमले में यूक्रेन के 11 लोगों की मौत भी हो गई है। ये खबरें भी लगातार यूक्रेन के हवाले से खबरें मिल रही हैं कि 11 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या, सुमी, खार्की पर भी हमले किए गए। ज़ापोरिज़्या का इलाका पहले से ही रूस के कब्जे में है और रूस अब सुमी और खार्की पर भी ज्यादा हमले कर रहा है क्योंकि उसकी फोर्सेज एडवांसली आगे बढ़ सके। अब 5वां अपडेट, गुरुवार को यूक्रेन ने मॉस्को पर गिराया था सबसे घातक वार और उसने भी मिसाइलों और ड्रोन से बड़े अटैक किए, तो शायद इसी वजह से अब रूस बदले की कार्रवाई में यूक्रेन के महत्वपूर्ण इलाकों में, खास तौर पर उसकी राजधानी के साथ साथ उसके महत्वपूर्ण जो शहर है उन पर अटैक करा। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। केजे सिंह सर, ये युद्ध हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं, हर बार भीषण होता है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, कहा बार बार जाता है कि देखिए इस साल के अंत तक ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसी हमले जैसी जवाबी कार्रवाई की जा रही है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो यूक्रेन का ही होगा, क्योंकि यूक्रेन के पास कुछ बचेगा ही नहीं आखिरकार अगर वो नहीं रुका तो।
1: देखिए सुमित जी, हर बार जब लगता है कि ये लड़ाई अब समाप्ति की तरफ अग्रसर है तो कुछ वेंटिलेटर पर जैसे होता है कुछ उसको सप्लाई दे दी जाती है और चीजें आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन एक बात तो हमको ये भी माननी पड़ेगी कि यूक्रेन के अंदर एक ऐसी ईरान की तरह एक ऐसा फर्वर है, एक ऐसा उन्माद है कि वो लड़ाई में हार मानने को तैयार नहीं है। उनका जो असला है काफी खत्म हो चुका है, लेकिन वो नई नई चीजें ईजाद कर नई नई ड्रोन बनाकर, और अब तो वो जो रूस की ऑयल रिफाइनरीज है उनको भी टारगेट कर रहे हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो अब बात यह है कि अमेरिका ने नेटो की लीडरशिप का जो मॉरल राइट है वो खो दिया है, वो ठीक तरीके से उस लीडरशिप के दायित्व को निभा नहीं पाया है, और इस लड़ाई में नेटो एक बहुत बड़ा
2: फैक्टर
1: है, एक्टर है। तो कैसे रूस को अब कन्विंस किया जाए? बहुत बार ऐसी उम्मीद जगी है और होना भी चाहिए, और कुछ तरह की पहलू मान लिए भी गए हैं कि रूस को डॉनबास और इन इलाकों का कब्जा
2: दे दिया जाए
1: और किसी तरीके से यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज बिल्ड कर लिए जाए, उनको नेटो में नहीं तो यूरोपियन सिक्योरिटी में शामिल कर लिया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक ऐसे दौर पर खड़े हैं जहां पर जो राजनयिक डिप्लोमेसी है वो बहुत कमजोर हो गई।
2: बिल्कुल। और सर अब और ऐसा लगता है कि एक दूसरे से बातचीत करने का देशों के बीच में एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव ही रह गया। जनरल सी बात, क्योंकि जैसा केजे सिंह सर भी बता रहे थे कि देखिए डिप्लोमेसी कमजोर होती जा रही है, हमने देखा कि इस पूरे युद्ध के अंदर आग में घी का काम या तो नेटो ने किया या अमेरिका ने किया, लगातार रिफ्यूल कर यूक्रेन को ड्रोन देकर मिसाइलें देकर, लेकिन ईरान और इसराइल के युद्ध में बहुत हद तक अमेरिका को भी आर्थिक रूप से ज्यादा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान पहुंचा, उसकी ताकत कम हो गई, नेटो देश तो लगातार अपने आप को पीछे ही खींचते नजर आए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में जब रूस मजबूत हुआ है, खासतौर पर एक अलायंस मजबूत हुआ है रूस का, चीन का और कह सकते हैं कि आप ईरान का, ऐसे में नेटो देशों की इतनी हिम्मत होगी, इतनी ताकत होगी कि वो इस जंग को आगे बढ़ा सके?
5: देखो सुमित, इसमें थोड़ा सा और हमने देखना पड़ेगा, ये 4 साल से ज्यादा लंबा युद्ध चल पड़ा है, मगर आप यूक्रेन को दाग देनी पड़ेगी कि हाँ ये सच्चाई है, उसको हथियार मिलने हैं एक प्रकार नेटो कंट्री से, अमेरिका की तरफ से भी, और मगर वो भी हमले कर रहा है, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उसका जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जो ड्रोन उसने खुद बनाए, और वो ड्रोन अब जा रहे हैं 300 से 1200 किलोमीटर डीप इनसाइड जो रूस के, और वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप देखें मॉस्को के अंदर भी जो ऑयल की कमी पड़ गई, कहने का मतलब ये है अभी तक जो लड़ाई थी वो या तो यूक्रेन में थी या बॉर्डर एरिया में थी, मगर जब से रूस के अंदर लड़ाई चली गई तो लोग भी जो हैं रूस के वो भी अगेंस्ट हो जाएंगे। दो बातें हो रहे, मुझे लगता है इस लड़ाई का अंत तभी हो सकता है अगर अमेरिका इसके अंदर दाखिल हो, इसके अंदर मेडिएशन में, और ये बताइए गिव एंड टेक है, ऐसा नहीं हो सकता कि नेटो जो चाहता वो हो या वो हो जो कि रूस चाहता है। हाँ मैं ये मानता हूं एक सलूशन है कि जो डोनबस का इलाका ले लिया है रूस ने वो रूस का हो जाए और कहीं ना कहीं गारंटी दे जाए कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, मगर यूक्रेन को भी तो सिक्योरिटी गारंटी की बहुत जरूरत है, यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्शन की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि इस लड़ाई अगर ये लंबी चली तो ये लड़ाई रूस के लिए भी अच्छी नहीं, वो इकोनॉमिकली ड्रेन आउट हो रहा है, उसका डिपेंडेंस चीन पे बढ़ता जाएगा, और जब से उसका एनर्जी सेक्टर बर्बाद होने लगा है उसको भी थोड़ी सी घबराहट है, और जो बॉर्डर्स हैं जो फ्रंट लाइन है वो फ्रोजन होगी, वहां पर कोई
2: सर
5: खास
2: बिल्कुल
5: इफेक्ट नहीं हो
2: बिल्कुल। और
5: रहा।
2: सर देखिए अब तक ये लड़ाई, क्योंकि जब तक कहा जा रहा था कि देखिए रुस्तोव तक सीमित है, डोनबास तक सीमित है, बेलग्रेड तक सीमित है, तब तक रूस लगातार लड़ता जाता है, लेकिन अब ये मॉस्को तक पहुंच गई है, तो शायद मुझे लगता है कि रूस के लिए भी चिंता का विषय बन गया। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अब रणभूमि स्पेशल में आगे का रुख करते हैं और एक और बड़ी खास खबर का रुख करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे, जिसमें दो राष्ट्राध्यक्षों में मचे घमासान को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल दो देशों के रिश्तों पर इसका असर पड़ने लग गया। चंद दिनों पहले ही आपको याद होगा कि G7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें सामने आई थी। तब किसी को पता नहीं था कि इन तस्वीरों के पीछे बड़ी ही करवाहट भी महसूस की जाएगी और कुछ ही दिनों में इन तस्वीरों को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया जाएगा। हालातों को समझाने के लिए सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं।
6: कहने को कह दिया जाता है कि बड़े लोग बड़ी बातें, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सोशल मीडिया लड़ाई छोटी बातों से शुरू होकर ऐसी उलझी है कि फोटो सेशन से शुरू हुआ बवाल अब राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच गया है। मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल ट्रंप बार बार G7 में मेलोनी के व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। अब शनिवार को उन्होंने लिखा, फ्रांस में G7 मीटिंग के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बार बार मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश की। इटली में उनकी लोकप्रियता का स्तर गिर रहा है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि अब ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की बात आई तो उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था। मेलोनी ने हमें इटली के लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवे का इस्तेमाल नहीं करने दिया, जिससे बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल दिक्कत हुई। ये तब हुआ जब अमेरिका इटली और दूसरे नेटो सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। अमेरिका ने अब ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है, तो मेलोनी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से दोस्ती करना चाहती हैं, लेकिन नहीं, शुक्रिया। मेलोनी ने इसके जवाब में लिखा, ये लगातार और बिना किसी उकसावे के किए जा रहे हमले बिल्कुल बेमतलब है। जहाँ तक मेरी लोकप्रियता की बात है तो आपका दोस्त होने से इसमें कोई मदद नहीं मिली है और न ही ये आपके साथ मेरे रिश्तों पर निर्भर करती है। मेरी लोकप्रियता इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की मेरी काबिलियत पर निर्भर करती है और मैंने हमेशा यही किया है। इटली में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के मामले में भी हमने समझौता का सम्मान किया है। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मेलोनी इससे पहले भी ट्रंप का साफ शब्दों में जवाब दे चुकी हैं।
7: कुछ बातों का तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। दुख की बात है कि वे अमेरिका के दुश्मनों के साथ वैसी सख्ती नहीं दिखाते, बल्कि उनके प्रति वे कहीं ज्यादा नरम रुख अपनाते हैं। लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, मैं और इटली कभी भी गिड़गिड़ाते नहीं हैं।
6: यूरोपीय देशों के साथ ट्रंप की कई मुद्दों पर नहीं बनती, लेकिन इस बार इटली के पीएम के साथ ये तल्खी मिसाइलों के वार से कम नहीं है। आज तक
2: चलिए रणभूमि स्पेशल में अब आखिरी खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, जहां पर भारतीय नौसेना को 3 स्वदेशी युद्धपोत मिल गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में इन जहाजों को नौसेना को समर्पित किया। इसमें INS अग्रे, INS दूनागिरी और INS संशोधक मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना को इन्हें सौंप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और अब सिर्फ रक्षा खरीदार के तौर पर ही भारत की पहचान नहीं बची है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की पहचान डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर हो रही है। और चलिए रणभूमि स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिस्सा लिया और हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ताड़ासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन सहित कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत अलग अलग योगासन किए। योग कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने आसपास मौजूद लोगों को योग की बारीकियां समझाते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने योग को दुनिया के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग बताया।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी याद किया और उनकी विचारधारा का उल्लेख किया।
1: इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है।
0: वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में केंद्रीय मंत्रियों और शीर्ष नेताओं ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस बीच अहमदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। वहीं दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी योगाभ्यास किया और योग के महत्व पर प्रकाश डाला। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने योग किया। इस दौरान अभिनेता अक्षय कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस बीच दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित योग दिवस पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने योगाभ्यास किया। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योग किया। डिप्टी सीएम ने लोगों से योग को जीवन के सभी कार्यों की तरह अपनाने की सलाह दी। पूरे देश में योग दिवस पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़े केंद्रीय नेताओं और नागरिकों ने मिलकर योग कर स्वास्थ्य का संदेश दिया। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni elect.
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में खुल सकता है साजिश, एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर भी हाथ किया गया हाथ, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बिहार भारत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी पुलिस पर उठाए सवाल, वीडियो से भी मचा बवाल। नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, ऊनागिरी संशोधक और अग्रह, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किया समर्पित, कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया योग उत्सव, कहा कि संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और कालीबाफ की अगुवाई में चर्चा, होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती का।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। किसी भी लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब एक ही घटना के कई सच सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ वायरल वीडियो है, दूसरी तरफ एक युवक की मौत है। एक तरफ पुलिस की कहानी है, दूसरी तरफ परिवार के आरोप। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री का शुरुआती बयान है, दूसरी तरफ न्यायिक जांच का आदेश। और इन सब के बीच में आरा की सड़कों पर जलती मोमबत्तियां हैं, गुस्सा है और जवाब तलाशती आंखें हैं। भरत भूषण तिवारी कौन था? एक अपराधी, एक आरोपी या एक ऐसा युवक जिसकी अंतिम कहानी अभी लिखी जानी बाकी है? हैरान करने वाली बात यह है कि भरत भूषण तिवारी के पिता भाई समेत मुखिया पर भी केस दर्ज किया गया। आज सवाल सिर्फ एक एनकाउंटर का नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जो पहले निष्कर्ष सुनाती है और बाद में जांच बिठाती है। सवाल बिहार के सम्राट सरकार का है जो पुलिस के दावों पर भरोसा भी करती है और उसी मामले में न्यायिक जांच भी कराती है। आज बिहार के सामने सिर्फ एक मृत शरीर नहीं बल्कि कई जीवित सवाल खड़े हैं। सवाल पुलिस से भी है, सरकार से भी है और राजनीति से भी है, क्योंकि जब एक मौत पर सत्ता, विपक्ष और सत्ता के खुद अपने लोग अलग अलग बातें करने लगे तब बहस सिर्फ एनकाउंटर तक की नहीं रहती, बहस सच की हो जाती है। फिलहाल तो न्यायिक जांच के बाद ही सच सामने आ सकेगा, लेकिन बिहार की सियासत में जो बवंडर उठा है आज उन्हीं पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
1: एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे कई वीडियो की भरमार है। हाथ में हथियार लिए एक युवक, कुछ दावे, कुछ आरोप, फिर गोलियों की आवाज और उसके बाद आई एनकाउंटर की खबर, जिसके बाद बिहार का आरा धधक उठा। आरा के बिलौटी गांव का भरत भूषण तिवारी अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो बिहार की राजनीति, पुलिस की कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही के बीच खड़ा एक सवाल बन चुका है। विपक्ष इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है।
2: इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा की।
1: बिहार पुलिस का दावा है कि भरत ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार की कहानी बिल्कुल अलग है। माँ कहती है कि बेटा सरेंडर कर चुका था। यहीं से ये मामला एक पुलिस कार्रवाई से निकलकर पूरे बिहार की राजनीति का विषय बन जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुरुआती बयान में कहा था कि उन्हें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक भरत भूषण तिवारी ने पुलिस पर फायरिंग की थी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन बाद में उसी मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। इस पूरे मामले ने बिहार सरकार को भी असहज कर दिया है, क्योंकि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के बयान भी पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
3: सरकार की जिम्मेदारी है, जनता के जनादेश का आदेश है, सरकार सजगता के साथ इस ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन कोई निर्दोष या किसी को बदले की भाव या नकारात्मक मानसिकता से परेशान नहीं होगा। सरकार की हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी के निर्वहन में जो लापरवाही बरतेंगे वो बचेंगे नहीं।
4: ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस बच्चे ने जिसका इनकाउंटर हुआ है उसने भी जो व्यवहार सोशल मीडिया पर दिखाया वो अच्छा नहीं था, लेकिन पुलिस को उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था। और हाफ इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए।
1: बिहार में जब इनकाउंटर के मुद्दे पर सियासत की रोटी पक रही है तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पुराने बयान भी वायरल होने लगते हैं, जिनमें अपराधियों को बिहार छोड़ने या शमशान जाने की चेतावनी दी गई थी।
5: अपराध करने वाला बचेगा नहीं, या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा, दूसरा कोई स्थान नहीं।
1: कभी कभी किसी की मौत की सबसे बड़ी गूंज शमशान में नहीं सवालों में सुनाई देती है। गोली की आवाज कुछ सेकंड रहती है लेकिन न्याय की तलाश कई साल चलती है। राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूक नहीं, उसकी विश्वसनीयता होती है। अब बीजेपी के शासन की उसी विश्वसनीयता को अपने लोगों ने ही चैलेंज किया है।
6: बहुत बिना भगवान से प्रार्थना है कि यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।
7: भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना, भरत भूषण तिवारी जी की मृत्यु जितनी दुखद है उतनी ही चिंताजनक भी है। किसी भी सभ्य समाज में जितना आवश्यक कानून व्यवस्था का होना होता है उतना ही आवश्यक ये होता है कि रक्षक भक्षक कभी ना बने।
1: भरत भूषण तिवारी अपराधी था या नहीं इसका फैसला अदालत और जांच करेगी। पुलिस सही थी या परिवार इसका जवाब जांच के बाद मिलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार को बाद में अपनी ही जानकारी पर पुनर्विचार करना पड़े तो जवाबदेही किसकी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में गोली का जवाब गोली नहीं सच देता है और सच तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ निष्पक्ष जांच से होकर जाता है और पूरा बिहार उसी सच का इंतजार कर रहा है। आरा से सोनू सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और जल्दी से हम आपको दंगल के सवाल भी दिखा देते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी यह चर्चा केंद्रित रहेगी। सवाल नंबर एक, क्या बिहार पुलिस ने अपनी छवि को सख्त दिखाने के लिए भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया? सवाल नंबर दो, मुख्यमंत्री के पहले के बयान और मुख्यमंत्री के बाद के बयानों में अंतर क्यों है? सवाल नंबर तीन, क्या बिहार में एनकाउंटर को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाएगा? विपक्ष लगातार आवाज उठा भी रहा है। इस विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुरुप्रकाश पासवान जुड़े हैं, हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया हैं, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी हमारे साथ हैं, एलजेपीआर से प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक रोहित कुमार सिंह हमारे साथ हैं। लेकिन गुरुप्रकाश पासवान जी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि अपराधियों का पिंडदान बिहार में शुरू हो चुका है। बीजेपी की सरकार बनी है, पहली बार आप जीते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिहार में अपराधियों का तो पता नहीं, कानून का पिंडदान जरूर शुरू हो गया है।
8: नहीं देखिए रोहित जी, मैं आपकी रिपोर्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुन रहा था और आपकी रिपोर्ट में लगभग सारी बातें आ गई हैं। हाँ, क्षमा चाहता हूँ। देखिए राजीव जी, आपकी रिपोर्ट को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उसमें सभी बातें आ गई हैं। पहला तो 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाना, 72 घंटे के अंदर पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच का आदेश देना, यह दिखाता है कि सरकार सेंसिटिव है, सरकार संवेदनशील है, सरकार कहीं से भी कवर अप नहीं करना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ट्रायल बाय मीडिया, मीडिया ट्रायल करने का अधिकार किसने दिया है भाई? आप किस आधार पे तय करते हैं?
0: सवाल ना पूछे मीडिया से। अगर मीडिया वहां फर्जी एनकाउंटर होता है, वीडियो सबूत सामने आ जाते हैं तो वो मीडिया ट्रायल हो गया। मतलब आप चाहते हैं कि बस आपकी हर तरफ प्रशंसा ही हो, आपकी प्रशंसा में गीत गाए जाएं, तब कुछ तब कोई दिक्कत नहीं है आपको, तब तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। लेकिन एक व्यक्ति मारा गया है तब आपसे सवाल पूछने आ जाए तो मीडिया ट्रायल?
8: नहीं नहीं राजीव जी, एक शब्द को उठा करके आप मेरे पूरे के पूरे जवाब को, मेरे पूरे के पूरे रिस्पांस को कलर नहीं कर सकते हैं। मैं यहां पूरी बात अपनी कर लूं, उसके बाद आप कहिएगा आपको जो कहना है। एक 72 घंटे के अंदर, लेस देन 72 आवर्स में यदि पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच के आदेश देते हैं तो ये सरकार का कमिटमेंट दिखाता है कि नहीं दिखाता है? ये सरकार की सेंसिटिविटी दिखाता है कि नहीं दिखाता है? पारदर्शिता के साथ इंक्वायरी हो, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, विटनेसेस को बिठाइए, कॉल डिटेल को
0: दीजिए, रक्षा में पुलिस गोली चला दे, एक व्यक्ति को मार दे, तो क्या ये सरकार का फेल्योर नहीं दिखाता
8: चाहिए?
0: क्या ये सरकार का फेल्योर नहीं दिखाता?
8: अब देखिए, अब यहां पे आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। यहाँ आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, आपको
0: आपने पांच पुलिसकर्मियों को क्यों सस्पेंड किया है?
8: नहीं देखिए, इनिशियल रिपोर्ट्स के आधार पे सरकार को कुछ करना था, सरकार ने किया है। पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमिटी बनी है,
0: आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपने ऐसे ही सस्पेंड कर दिया,
8: पक्षों को सुना,
0: ऐसे ही सस्पेंड कर दिया।
8: देखिए ऐसा है रोहित जी, आप देखिए न्यायिक जांच होता है, न्यायिक जांच में एक सीडीआर के डिटेल्स आते हैं, वीडियो के डिटेल्स आते हैं, चश्मदीदों के गवाह को लिया जाता है, पुलिस जो भी संबंधित पुलिस अधिकारी उनकी बातों को सुना जाता है, और उसके बाद सरकार अपने कमिटमेंट के साथ इसको पूरा कर रही है, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? अब आप कहिएगा सरकार के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, सरकार के अंदर भी समीक्षा हो, सरकार के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र हो, तो सरकार के लोग तो बोलेंगे ही ना, और ये हमारा कमिटमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर 2005 के बाद के बिहार में रोहित जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर पे हम पे एक सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। 2005 का पहले का बिहार हम लोग बड़े हुए उसमें, नरसंहार का बिहार, हत्या का बिहार, लूटपाट का बिहार, मैं वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन आज के तारीख में
0: अभी मैं आपको इतिहास में जाने भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको इस घटना पर ही केंद्रित करूंगा। वापस इधर आइए, भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर जो हुआ है, जब वो सरेंडर कर रहा था, उसने हथियार फेंक दिया था, पुलिस ने क्यों गोली चलाई, बताइए।
8: नहीं नहीं देखिए, ये अभी बोल देना, कोई भी मैटर यदि सब जुडिस होता है तो रोहित जी आप सब जुडिस मैटर पे पहले टिप्पणी नहीं कर देते हैं नेशनल टेलीविजन पे। हम भी इतने सेंसिटिव हैं, आप भी इतने सेंसिटिव हैं, सॉरी क्षमा चाहता हूं, हम लोग इतने सेंसिटिव होते हैं राजीव जी कि हम लोग पूरे के पूरे मामलों को निष्पक्षता के साथ देखते हैं, मामले की इंक्वायरी होती है और उसके बाद उस पर टिप्पणी करने का अधिकार होता है। वीडियो की क्या सार्थकता है, वीडियो की क्या तथ्य है, वीडियो में क्या हो रहा है, वीडियो में क्या नहीं हो रहा है, एफएसएल जांच होने दीजिए।
0: प्रोफेसर सुबोध मेहता,
8: एक जांच हो रहा है,
0: बीजेपी कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो रही है, हमने जांच इस पर बिठा दी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर कार्रवाई भी होगी और उनसे सवाल भी पूछा जाए तो फिर वो मीडिया ट्रायल हो जाता है, लेकिन वो कह रहे कि इसमें भी प्रशंसा होनी चाहिए, 72 घंटों के भीतर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया हमने, न्यायिक जांच बिठा दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है।
9: देखिए राजीव जी, अभी गुरु भाई ने कहा कि सरकार सेंसिटिव है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सेंसिटिव होती तो जब पहला दिन जब उनके घर पे गया था पुलिस वाले, जब गए थे वहां पे भरत भूषण जी के घर पे, तो वो रिवॉल्वर निकाले हुए थे, अगर सरकार सेंसिटिव होती तो रिवॉल्वर को सीज कर लेती, सीज कर एफआईआर कर दी होती पहले दिन ही, या फिर अगर वो मेंटली फिट नहीं था जैसा कि पुलिस कह रहा है तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने का व्यवस्था किया जाता, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार जो है उत्तर प्रदेश के आधार पे चलना चाहती है, वहां ऑपरेशन लंगरा था और इनकाउंटर का वहां पे मसीहा बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से पिछले 6 महीने में 22 इनकाउंटर हुआ है, और ये जो स्वर्गीय भरत भूषण जी थे ये करना क्या चाह रहे थे, ये रेड टिपिज्म के खिलाफ, भाई भतीजा के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ ये मुहिम छेड़ा हुआ था, इसको दाबने के लिए ही अब इस तरीके का हत्या उन्होंने उनका करवा दिया है। तो हम तो ये साफ ये कह रहे हैं कि जब हत्या हो जाता है तो सम्राट चौधरी क्या जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, गुरु प्रकाश जानते होंगे कि भाई कम से कम मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होना चाहिए वहां पे, या फिर जो है मानवाधिकार को बताना पड़ता है सरकार को। तो ये सरकार जो है एकदम कुशासन नीति के आधार पे चल रही है, और ये जो सारी जो बात है परसेप्शन बना कर ये सरकार काम करना चाहती है, इसलिए एनकाउंटर को अपने जो है कुशासन नीति को छुपाने के लिए ही इस तरीके का इनकाउंटर करवा रही है, और गरीब और मासूम लोगों को ये हत्या है सरकार के द्वारा, ब्यूरोक्रेसी पूरी कमिटेड है, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं, नहीं एक मिनट, और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि इनको नेपाल जाना पड़ेगा, आप ये खुद बताइए, ये बिहार के लोगों को नेपाल भेज रहे हैं, न्याय प्रक्रिया पर इनको कोई विश्वास नहीं है, पुलिस सिस्टम को ये कमिटेड सिस्टम बना देना चाहते हैं, न्यूट्रल सिस्टम नहीं रखना चाहते हैं, तो पुलिस महकमा पूरा जो है सम्राट चौधरी के कहने पे खुला जो है ये गोली चला रहा है इस तरीके से। सम्राट चौधरी के को भी मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि सम्राट चौधरी जो जी को भी अपनी जो गवर्नेंस मॉडल है उसके ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए कि किस तरीके का वो गवर्नेंस मॉडल ला रहा है, वो सम्राट अशोक की धरती है और जो चक्र में जो 24 तीलियां हैं उसमें जो मूल्य दिए हैं उसी के आधार पर सरकार चलती है। ये संविधान का प्रतीक है और जिस तरीके के संविधान के प्रतीक को मिटाना चाहते हैं।
0: गुरु प्रकाश, इस पर आप जवाब दीजिए कि ये कौन सा मॉडल आप बिहार में नया लेकर आए हैं, मतलब कि केसेस न्यायपालिका तक जाए नहीं, वहां पर सुनवाई वो ना तय करे कि कौन अपराधी है कौन नहीं है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए, पुलिस ही पहले सारा काम कर दे। और क्या मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि आरोपियों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो बिहार छोड़े या शमशान जाए?
8: देखिए ऐसा है राजीव जी, अभी मैं सुन रहा था राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता की बातों को और बड़ा ही हास्यास्पद है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून प्रशासन की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको आत्मचिंतन और आत्मंथन करने की आवश्यकता है, पहला। दूसरा, मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, मामला मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सुबोध जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, डिबेट डीरेल करना है तो आप बोलिए, मैं डिबेट डीरेल कर देता हूं। ये एक अति संवेदनशील विषय है, ये अब या तो आप करिए विषय अंतर। देखिए ऐसा, अब मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था राजीव जी, और आपने उनको नहीं टोका और ये लगातार टोकाटाकी कर रहे हैं। मामला संवेदनशील है, मामला सेंसिटिव है। हम ये कहना चाहते हैं कि मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला लोगों की कानून व्यवस्था पे आस्था का है। लोगों की आस्था कानून व्यवस्था पे बनी रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि यहां पे पॉलिटिसाइजेशन किया जाए, हर विषय का राजनीतिकरण किया जाए। सम्राट चौधरी जी ने तब क्या कहा था, अरे भाई 72 घंटे से कम समय में जो संबंधित पुलिसकर्मी है आप उनको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप ही कोर्ट हो गए हैं क्या? आप ही न्यायाधीश हो गए हैं क्या? एक बकायदा एक सिस्टम है, इंक्वायरी हो रही है, पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके नेतृत्व में कमिटी बनाया गया है। आपके समय में कितनी कमिटी बनी थी? आप कहेंगे आप पुनः वापस जा रहे हैं, हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। सरकार की सेंसिटिविटी है, सरकार की प्रायोरिटी है, सरकार की प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर, कानून की सर्वोच्चता, रूल ऑफ लॉ,
0: प्रायोरिटी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिव है। ये बातें आप फिर से दोहरा रहे हैं, लेकिन असित नाथ तिवारी जी, सरकार ने जो जांच बिठाई है आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि न्याय मिलेगा, न्याय होगा?
10: राजीव जी, मैं आज उस गांव गया था और उनकी माताजी से मुलाकात हुई है, पिताजी से मुलाकात हुई है, छोटा भाई है वो भी मिला है, बहनें आई हुई हैं, बहनोई है, परिवार के तमाम लोग आए हुए हैं और गांव के लोगों से भी मेरी लंबी बातचीत हुई। गुरु प्रकाश जी यहाँ बैठे हुए मेरे छोटे भाई की तरह है, कभी इनके पिताजी बड़े राजनेता हुआ करते थे और वो मेरे साथ डिबेट शो में बैठा करते थे। गुरु प्रकाश जी, गांव के लोगों से भी बात हुई है। चार पांच दिन पहले लोकल एसडीएम से इनकी कुछ लड़ाई हुई है, जवैनिया गांव के लोगों को जो पुनर्वासित किया गया है, इनका कहना था कि उन्हें गड्ढे में आप बसा रहे हैं, बरसात आएगी तो वो लोग फिर डूबेंगे, उन्हें अच्छी जगह पे बसाइए। इस बात को लेके लंबे अरसे तक कभी बीडीओ, कभी एसडीएम, कभी डीएम सबके यहाँ आवेदन देते रहे हैं और जवैनिया गांव के लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। चार पांच दिन पहले एसडीएम कार्यालय में बकझक हुई है और एसडीएम ने इन्हें मां बहन की गालियां दी, ऐसा गांव वाले बता रहे हैं, और अपने कार्यालय से धक्के मार के बाहर निकाला इनको। ये बहुत तनाव में थे, फ्रस्ट्रेशन में थे। इस बीच कभी इन्होंने हथियार खरीदा, क्या किया गांव के लोगों को बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है। इनके पिताजी ने पुलिस को सूचना दी कि भाई बेटे के हाथ में हथियार है और वो पता नहीं क्या करने वाला है, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो कोई एक आर्म्स लेके घर में आया। पुलिस आई तो उसके बाद का पूरा वीडियो पब्लिक डोमेन में है, अगले दिन फिर एसटीएफ वाले आते हैं, एसटीएफ वाले जब आते हैं तब का वीडियो भी सबके पास है। ये लड़का उसके बाद इन्होंने अपना हथियार फेंक दिया पुलिस वालों के सामने और इन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार अगर भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करती है, सरकार इन गरीबों के लिए काम करती है, तो चलिए मैं सरेंडर करता हूं। लड़का सरेंडर कर देता है, लड़के को पुलिस जीप में बिठा के कुछ दूर आगे ले जाया गया है और पुलिस जीप से उतार के उनको 3 गोलियां मारी गई हैं भरत भूषण तिवारी को, बाकी 2 गोलियां आगे कहीं रास्ते में मारी गई हैं। ग्रामीणों ने गोली मारते देखा है, फिर ग्रामीण दौड़े हैं पुलिस गाड़ी के पीछे और फिर इनके बॉडी को पुलिस वाले गाड़ी में लाते हैं, आगे कहीं ले जाते हैं और आगे 2 गोलियां मारी गई हैं। मतलब ये कि इस मर्डर केस में एसडीएम कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं लोकल एसडीएम, और लोकल एसडीएम तो आदेश दे नहीं सकते एसपी को, तो एसपी को आदेश देते हैं, एसटीएफ को, एसटीएफ को आदेश देते हैं एसपी। मतलब एसपी और एसडीएम की मिलीभगत से उस आदमी की हत्या हुई है, ऐसा ग्रामीणों का।
0: ये तो बीजेपी के नेता खुद कहने लगे हैं, वो तो बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीके से मार दिया गया। मैं आता हूं सर आपके पास, अनुप्रिया को चर्चा में लाते हुए, अनुप्रिया आप तो सरकार के साथ में हैं, जो काम करने का तरीका है सरकार का लगता है काफी बदल गया है। मतलब एक नीतीश कुमार करते जिनका बयान अब बहुत वायरल हो रहा है, जो उन्होंने 17 अप्रैल 2023 को दिया था कि भाई कोई सरेंडर करेगा तो गोली मार दोगे, सजा तो न्यायपालिका देगी, लेकिन यहां तो पुलिस ही सजा दे दे रही है ऑन द स्पॉट फैसला।
11: राजीव जी, आपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जो बयानों की चर्चा की है, निश्चित तौर पर दो दशक तक बिहार में इसी मॉडल पे काम किया गया था और इसी मॉडल के आधार पर बिहार की जनता ने भी भरोसा जताया था कि बिहार सुरक्षित है। और नीतीश कुमार जी ने लगातार कहा है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम कभी समझौता नहीं करते, और उसी के तहत, लेकिन वैसा उस समय भी ऐसा था कि जो अगर अपराधी है तो अपराधी की जाति और धर्म और पार्टी हम नहीं देखते थे, अपराधी कोई भी हो कार्रवाई होती थी। असित नाथ तिवारी जी कह रहे थे, बातों को जिक्र कर रहे थे, वो तो पुराने पत्रकार रहे हैं, उनको पता है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कोई भी अपराधी अपराध करने के लिए हिम्मत नहीं जुटाता था। लेकिन जो घटनाएं सामने आई है, वो जो भरत तिवारी की घटना है, निश्चित तौर पर राजीव जी ये दुखद है और मेरी संवेदना उस परिवार के साथ में, और हम चाहते भी कि उस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि जो चीजें बाहर निकल के आ रही है उसी आधार पर वर्तमान में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने जो बताया गया कि हाईकोर्ट के
0: अनुप्रिया जब आप ये कहते हैं कि परिवार को न्याय मिले या भरत तिवारी को न्याय मिले, तो आपको लगता है ना कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इस ये एनकाउंटर संदेहास्पद है?
11: निश्चित तौर पर राजीव जी, मैं मानती हूँ यह घटना गलत है, और तभी तो सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया है। हमें आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के लिए हमने छोड़ के नहीं रखा था कि वो जाएंगे मिलेंगे तब हम न्याय की बात करेंगे। हमने स्वतः अपनी पुलिस पे कार्रवाई की है, हमने खुद की अपनी टीम स्थापित की और कहा है कि वो परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो घटना जिस वीडियो के तहत हमें जानकारी मिल रही है, निश्चित तौर पर उसकी उनके भरत तिवारी की कोई मांग थी, कोई बातें थी, लेकिन 3 दिन यह पूरा मामला चला है। और लेकिन एक बात यह भी है कि अब तो जवाब तो प्रशासन को देनी है कि घटना क्यों हो पाई, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई में भी यह दिख के नजर आ रही है, जो अभी मेहता जी कह रहे थे कि उनके आर्म्स को छीन लिया जाता, 3 दिन तक पुलिस और परिवार समझाते रहा कि आप नहीं कीजिए, और प्रशासन की मंशा भी नहीं थी कि हत्या करने की, क्योंकि आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि अगर कोई भी अपराधी इस तरह का अपराध करेगा तो हम 48 घंटे के अंदर में या तो उसको सलाखों के पीछे होंगे या तो उसकी हत्या।
0: मतलब कहने का अर्थ यह है, कर रहे हैं एक तरफ आप ऐसा लगता है कि प्रशासन को क्लीन चिट भी दे रही है, दूसरी तरफ आप सवाल भी पूछ रहे हैं, आपका भी एक स्टैंड नहीं लग रहा है।
11: मेरा एक स्टैंड, सिर्फ एक स्टैंड, मुझसे स्टैंड पूछेगा तो स्टैंड यह है कि प्रशासन ने गलत कार्रवाई की और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और वर्तमान की सरकार भी नीतीश कुमार जी की जिस तरह सरकार चलती थी जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स,
0: आप किसी ये, ये, ये बड़ा अच्छा कि आप क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं, स्पष्ट आपने कह दिया है कि हाँ प्रशासन ने गलत किया है। धीरेन्द्र कुमार, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ। धीरेन्द्र कुमार,
11: खत्म करूंगी, मुझे एक सेकंड दीजिए,
0: ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करें।
11: मैं ही नहीं, यहाँ हमारे सहयोगी दल जो आप देख रहे होंगे, भाजपा के तमाम नेता हैं, मिथिलेश तिवारी जी हो गए, विजय सिन्हा जी, आपने स्टेटमेंट भी चलाया, अश्विनी चौबे जी हैं, सभी कह रहे हैं यह दल की राजनीति की बात ही नहीं हो, और यह घटना कभी राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। आप ये समझिए हमारे लिए कितना दुखद है कि युवा हमारा जो किसी मांग को लेकर के चल रहा है, उसकी हत्या हो गई पुलिस के प्रशासन के गलती के कारण, तो उस पे हमारा दुख है।
0: लेकिन आपका ये कहना गलत है कि राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि एनकाउंटर पर तो राजनीति हो रही है, उस राजनीति से कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कितना शानदार हो गया है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हमने भी मुख्यमंत्री की सुनाई भी, और ये हर स्टेट में लगभग होने लगा है, मतलब हर जगह से जो इसको राजनीति का विषय बनाया जाता है, इसको अपने राज्य लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का प्रशंसा करने के लिए इसको जो बड़ा चढ़ा का दिखाया जाता है कि एनकाउंटर होते हैं हमारे।
11: राजीव जी, प्रशंसा किसी भी प्रशासन को तब मिल सकती है जब बाबा भीमराव अंबेडकर के न्याय के संबंध वो चलेंगे, क्योंकि इस देश में संविधान ही चलेगा, और किसी भी जाति धर्म, मैं फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इस मंशा के साथ में कार्रवाई कभी नहीं हो सकती है, और इस कार्रवाई के साथ में अगर सरकार कोई भी प्रशासन चलेगी तो यह इसमें लॉ एंड ऑर्डर विफल होगा और लोग के बीच असमंजस की स्थिति होगी। इसलिए
0: धीरेन्द्र जी, आप भी सरकार के साथ हैं, सहयोगी हैं, अनुप्रिया ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि यहां प्रशासन गलत है, दिख रहा है, विनय कानून का गलत है, आपका स्टैंड क्या है इस पर?
12: मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस पर पहले ही 2 दिन पहले ही एक्स पे लिखा है कि ये जो घटना है कई सवालों को जन्म दे रहा है और बिहार के लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा। जो सवाल उठ रहे हैं कहीं ना कहीं संदेह में हमारे लोग भी हैं, तो जिस तरह से कानून व्यवस्था के लिए यह सरकार जानी जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई युवाओं को सोच समझ करके गोली मार दी जाए। बिल्कुल परिवार के साथ में पार्टी खड़ी है, और मैं तो कहता हूं कि भाई ठीक है ना, कोई अगर अपराधी है भी तो मुझे लगता है कि उसको न्याय देने के लिए न्यायपालिका है ना, हम उसको थोड़े ही दे सकते हैं। नीतीश कुमार जी का जो वीडियो वायरल है, मैं उससे सहमत हूं। हम उसको मौत की सजा देने के लिए थोड़ी ना हकदार है। लेकिन आत्मरक्षा में अगर किसकी आत्मरक्षा की बात हुई थी, ये सब सामने आना चाहिए। सरकार संवेदनशीलता के साथ में अगर सस्पेंड करके न्यायिक जांच बैठाई है तो कहीं ना कहीं ये भरोसा जरूर बिहार के लोगों को होना चाहिए कि दोषी किसी भी भेष में हो, अपराधी किसी भी भेष में हो, वो अपराध करने वाला बचेगा नहीं, चाहे वो वर्दी वाला हो, बिना वर्दी वाला हो, या कोई नेता हो। यहाँ पर कानून सबके लिए समान रूप से है और ये परिवार को जानकारी तो चाहिए ही न्याय मिलने की। मुझे लगता है कि बिहार के 14 करोड़ लोगों को भी सरकार संतुष्ट करने का प्रयास करेगी और पुलिस को तो करना ही करना पड़ेगा। मेरी पार्टी का स्टैंड ये है।
13: गुरु प्रकाश, इस पर मैं चाहता हूं कि जो आपके सहयोगियों के भी सवाल हैं, क्योंकि वो इस कदम को सीधा सीधा गलत बता रहे हैं और कोई लाग लपेट के साथ भी नहीं कह रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे, सीधा कह रहे हैं, उनका ही जवाब दे दीजिए आप।
8: नहीं देखिए, जवाब तो हम दे ही रहे हैं, जवाब हम पहले भी दे रहे, तो जवाब आज भी दे रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है, ये आपके स्टूडियो में या किसी भी स्टूडियो में बैठ के तय थोड़ी होगा, निर्धारित थोड़ी होगा। हम आज भी कह रहे हैं कि मामले की त्वरित जांच हो, मामले की जांच के बाद कार्रवाई हो और कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। यदि पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, यदि प्रशासन के लोग इन्वॉल्व हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, यदि वो इन्वॉल्व नहीं है तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। हम पहले पूर्व निर्धारित कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले कम से कम जांच तो होने दे, हम बस इतना कह रहे हैं। अब FIR हुआ है, FIR कोई दोष पत्र तो नहीं,
13: इसलिए हो रहा है मतलब जांच होगा, जो पुलिस बड़े बड़े अधिकारी आप कह रहे हैं कि जो भी इन्वॉल्व है सब सब सब लपेटे में आएंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या उनको फ्री हैंड, क्या उनको पूरी की पूरी ताकत खुद आपकी सरकार ने नहीं दी? क्या मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट इस ओर इशारा नहीं करते हैं? 48 घंटे के भीतर पुलिस जवाब देगी, अपराधियों का पिंडदान, अपराधी सुधर जाएं या फिर राज्य छोड़ दें, बिहार छोड़ें, शमशान जाएं, क्या ये मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट नहीं है? क्या आप लोगों ने खुली छूट नहीं दे दी अधिकारियों की, बाकी देख लेंगे आप, करिए जो करना है अपराधियों के साथ?
8: बहुत ही उम्दा सवाल है राजीव भाई, और बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि फ्री हैंड है क्राइम रोकने के लिए, फ्री हैंड है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, फ्री हैंड है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए, फ्री हैंड है कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का कमिटमेंट है, बगल का उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो,
13: तो करिए, क्या आप स्वीकार करेंगे कि आपका जो कमिटमेंट था वो एक तरफ नहीं, और पुलिस वालों का जो वर्दी का रौब है वो दूसरी तरफ?
8: राजीव जी, नहीं नहीं, देखिए इस किसी प्रकार की जल्दबाजी में हम लोग नहीं हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ लेस देन 48 आवर्स, मैं तीसरी बार आपके शो पे कह रहा हूं कि 48 घंटे के भीतर न्यायिक जांच करना है। 15 साल पहले 2005 के पहले न्यायिक जांच कब होता था? अपराधियों को संरक्षण कब मिलता था? तब अपराधियों के संरक्षण में सरकार चलती थी, लेकिन आज की तारीख में मैं दावे और आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कार्रवाई होती है।
13: जहां होती है, आप दावे के साथ जब कह रहे हैं, पुलिस तो आप आज तक के प्लेटफॉर्म पर हैं, आज तक के प्लेटफॉर्म पर कहा गया एक एक शब्द हर भारतीय के कान तक पहुंचता है और वो याद भी रखता है। आप बताइए, डीएम पर कार्रवाई

0: तिवारी जी की मृत्यु से वो मर्माहत हैं, वो आहत हैं, वो ट्वीट और फेसबुक के पोस्ट तक सीमित नहीं हैं। लीडर ऑपोजिशन एक्सीडेंटल बिहार विधानसभा राज्य की राजनीति के राजकुमार श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इतनी चिंता ही अगर है, मैं जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ बोल रहा हूँ, मैं बिहार का एक नागरिक हूँ और आम नौजवान हूँ, तो लीडर ऑपोजिशन की हैसियत से पटना और भोजपुर के बीच में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार ने इतना बढ़िया सड़क बना दिया है, 50 मिनट में वो बिलौती पहुंच सकते थे, क्यों नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव अभी तक? सिर्फ ट्वीट करके राज्य के अंदर एक मानस बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? आई वॉश न करें, याद रखें लीडर ऑपोजिशन एक्सीडेंटल राजकुमार तेजस्वी यादव बिहार में वर्तमान समय में बिहार के भूमि पुत्र और बिहार के जन जन के चहेते सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार
1: विशेषणों का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन इस एनकाउंटर पर भी तो बता दीजिए,
0: राजीव धोंडियाल साहब
1: आपकी नजर में सही था या गलत था? सरेंडर करने के लिए बंदूक व्यक्ति नीचे फेंक देता है और उसके बाद आत्मरक्षा में गोली चल जाती है।
0: राजीव जी उस पर भी तो राजनीति करने से बचिए, राजीव जी राजनीति करने से बचिए, सुनिए जिम्मेवारी से पहले।
1: मैं तो सवाल पूछ रहा हूं,
0: आपको और मुझे सुन रहा है।
1: आपने प्रशंसा में इतनी बातें कर दी हैं तो थोड़ा ये भी बता दीजिए एनकाउंटर कैसा था आपके हिसाब से, सही था या गलत था?
0: आत्मा पर हमला मत कीजिए, सुनिए एक नौजवान की मृत्यु हुई है, उस मृत्यु पर बात करना होगा।
1: मृत्यु है या हत्या है वही सीधा सवाल है आपसे, मृत्यु है या हत्या है
0: आप उस पर सुनिए, इसकी जांच हो रही है। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, सुनिए 30 सेकंड और आपने सबको सुना है, आप इसको देवियत मत कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के जो राजकुमार हैं, 4 सीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव जिनके नेतृत्व में जिनकी पार्टी की सरकार में पूर्व में बिहार में एनआरकी स्टैब्लिश हुआ, अगर उनकी सरकार में इस प्रकार की अप्रिय और दुखद घटना घटित हुई होती तो कोई जांच नहीं हुआ रहता, आज तक तेजस्वी यादव वहीं नहीं पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता वहां पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कोई दोषी नहीं बचेगा।
1: आप इस जांच को ही उपलब्धि के तौर पर प्रदर्शित कर रहे हैं, ये जांच होना उपलब्धि नहीं है, ये जांच होना सवाल है, ये जांच होना अपने आप में सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े करता है कि ये घटना हुई ही क्यों, ये घटना होना आपका जांच बिठाना उपलब्धि नहीं हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर सुबोध मेहता आप इस पर जवाब भी दें, वो ये कह रहे हैं कि कुछ गलत होगा, आप इस पर राजनीति ना करें, आप राजनीति कर रहे हैं, आपके समय न जाने क्या क्या हुआ है, आप लोग तो जांच भी नहीं करते थे, हम तो कम से कम जांच तो कर रहे हैं, सामने आकर बोल तो रहे हैं।
2: देखिए दो तीन में जवाब देना चाहता हूं, ये अभी आपने जवाब मांगा हत्या पे, ये एलओपी पे चले गए, तो इनके पास कोई तर्क नहीं है पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि बिहार के आत्मा के साथ खिलवाड़ मत करो, इनको पता ही नहीं है कि बिहार के आत्मा क्या है। बिहार के आत्मा सम्राट अशोक के चक्र में अंकित है जो संविधान का प्रतीक है, संविधान के मूल्यों पर अगर आप चलते रोहित जी तो आज बिहार में ये हत्या इस तरीके का नहीं होता। और जहां तक बात रही कि भाई ये दोनों जो है ये नीतीश कुमार के राज्य को और जो है अभी के चीफ मिनिस्टर के राज्य को, ये दोनों को अलग बता रहे हैं, आप खुद ही समझिए ये अलग है, ये सही कह रहे हैं। 35 साल तक बिहार बिहार के आत्मा के द्वारा संविधान के द्वारा चला और पिछले छह महीने में 22 इनकाउंटर हुआ, ये लंगरा से आगे और नागपुर के मुद्दों के ऊपर ये बिहार सरकार चल रही है। रोहित जी इस तरह से चिल्लाने से आपका बात नहीं चलेगा, आप एक्सीडेंटल आदमी खुद ही हो, आप एक्सीडेंटल हो, एलओपी को एक्सीडेंट, राजनीति का मतलब आपको समझ में आता है पहले भाई? वो जो बिहार के जनमानस है, जनमानस और जो आत्मा है उससे चुने हुए वो एलओपी है और आपके मुख्यमंत्री हैं, आप उसको एक्सीडेंटल कह रहे हैं? रोहित जी इस तरीके का तर्क जो है, हत्या हुई है किसी को, उस हत्या को आप एलओपी के ऊपर आप डालना चाहते हैं, ये इनकाउंटर नहीं ये हत्या है, इसका जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके के परसेप्शन से राजनीति नहीं चलेगा, ये ये ये जो है आंख दिखाकर राजनीति यहाँ नहीं होगी। और जहां तक बात रही अभी ये कह रहे थे कि पिछले 25 सालों में क्या हुआ, और गुरु प्रकाश कह रहे थे अरे भैया पिछले 20 सालों में 70,000 हत्याएं हुई, 35,000 बलात्कार हुआ, उन केसेस का क्या हुआ? और जहां तक मुठभेड़ की बात की, यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं किया है सम्राट चौधरी ने, आप जानते हैं कि जब भी इनकाउंटर होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको जो है उस केस को दिया जाता है, मानव अधिकार को बताया जाता है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वफादारी नहीं किया है सम्राट चौधरी ने। ये न्याय के साथ ये चलना नहीं चाहते हैं, ये जो है रॉन्ग कंफ्यूजन फैलाकर इनकाउंटर कर बिहार के जो कुव्यवस्था है उसको छुपाना चाहते हैं।
1: तो मैं सबके पास एक-एक करके जाना चाहूंगा, लेकिन गुरु प्रकाश आप इस पर जवाब दें, साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप जो माता पिता हैं भरत भूषण तिवारी के, उनको आप कैसे अश्योर करेंगे, क्योंकि आपने तो उन पर खुद भी उन पर भी एफआईआर कर दी है,

0: नहीं, देखिए, इस कठिन समय में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और इसमें कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। पूरी सहानुभूति, पूरी संवेदनशीलता और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन जिस प्रकार से आपके नेशनल टेलीविजन के शो पे अभी बेबुनियाद निराधार बातें बोली गई, 70,000 हत्या, 35,000 बलात्कार, मतलब कहाँ से ये आंकड़े
1: एनपीआर
0: लेकर
1: की
0: के
1: क्या
0: आते
1: रिपोर्ट?
0: हैं?
1: अदिल ऑफ
0: राष्ट्रीय
1: बिहार
0: जनता दल
1: पुलिस
0: के
1: का रिपोर्ट
0: आदरणीय
1: देखिए।
0: प्रवक्ता प्रोफेसर, मैं भाई साहब, मेरा ये स्वभाव नहीं है, मेरा ये स्वभाव नहीं है राजीव जी। मैं क्रॉस चेक आपको करना चाहता हूँ। आप इस प्लेटफॉर्म पे अब आपको
1: समय
0: आपको
1: बहुत कम
0: करना
1: है,
0: है
1: मैं चाहता
0: क्या?
1: हूँ कि 30-30 सेकंड में प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर दें और कोई किसी के बीच में बोले ना। गुरुप्रकाश,
0: नहीं, देखिए देखिए देखिए, हाँ धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से यही एक्सपेक्टेड होता है। 70,000 हत्या, 35,000 बलात्कार, मतलब कुछ तो संवेदनशीलता का परिचय देंगे ना आप।
1: अरे आप
0: राष्ट्रीय
1: देख
0: मंच पे
1: लीजिए
0: आकर
1: ना,
0: के,
1: मैं तो
0: राष्ट्रीय
1: यही कह रहा
0: प्लेटफॉर्म पे आकर के ऐसा गैर जिम्मेदाराना बात कहना ठीक नहीं है। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखिए, फिर राजीव जी बोलेंगे मैं इतिहास में जा रहा हूं। नरसंहार का इतिहास, शंकर बीघा बथानी टोला से नारी में से कर दलित अति पिछड़े बच्चों की हत्या, महिलाओं की हत्या, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में कोई
1: ठीक है।
0: भी एक भी हत्या हो, वो सभी हत्या को उतनी ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के साथ हम देखते हैं। लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था पे
1: ठीक
0: बना
1: है
0: रहे,
1: आसिफ नाथ
0: लोगों
1: तिवारी
0: की
1: जी, क्या
0: निष्ठा
1: आपको
0: कानून
1: लगता है कि
0: व्यवस्था पे बनी
1: प्राथमिकता
0: रहे,
1: के साथ
0: ये ज्यादा
1: सरकार
0: इंपॉर्टेंट है।
1: एक्शन ले रही है?
0: पॉलिटिसाइजेशन राजनीतिकरण के विरोध में है।
1: राजीव जी देखिए, पूरी घटना में एक बात बहुत साफ है कि पुलिस ने रूल ऑफ लॉ के लिए काम नहीं किया है, पुलिस ने रूल ऑफ रूलर के लिए काम किया है। अभी तक किसी पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उल्टा जिसका बेटा मारा गया है उस पर शांति भंग का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सरकारी काम में बाधा डालने का, उसमें तत्काल गिरफ्तारी का राइट पुलिस को मिल जाता है, और अब उनके परिजनों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि चुप हो जाओ नहीं तो किसी भी वक्त तुमको उठा ले जाएंगे। कई लोगों पर ये सरकारी काम में बाधा का मुकदमा ब्लैकमेल करने के लिए कर दिया गया। तो पुलिस रूल ऑफ रूलर के लिए काम कर रही है, पहली बात ये कर रहा हूं। दूसरी बात, जो गुरुप्रकाश यहाँ बैठे हुए हैं, आप जांच करवा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। एक मांग हमारी, मान लीजिए विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी से इसकी जांच कर रही है, हम बस एक मांग कर रहे हैं, विधानसभा की एक सर्वदलीय कमेटी बनाइए। भाई उसमें आपके भी विधायक होंगे, हमारे भी विधायक होंगे, ठीक है, और सर्वदलीय कमेटी से इसकी जरा आप जांच करवा लीजिए। सर्वदलीय
0: अगर
1: कमेटी बने
0: सरकार
1: जो इस
0: इसमें
1: समय का,
0: पांच
1: मैं
0: साल
1: सब
0: बाद
1: 30-30 सेकंड सबसे सबका रिएक्शन ले लेता हूँ। अनुप्रिया, 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड प्लीज।
2: नहीं, राजीव जी, आसिफ जी ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुझे लगता है कि आपने अपने शो में भी बताया और हम लोग भी जानते हैं कि 5 लोगों को सस्पेंड किया गया, 5 पुलिसकर्मी को, और
1: एफआईआर
2: जांच
1: नंबर,
2: के लिए हमने जो कमिटी बनाई गई है, तो ये हमारा दिखता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हो, और यहाँ लॉ जो है किसी आम खास और आम के लिए अलग नहीं है, ये सबके लिए बराबर है। निश्चित तौर पे आपने जो सवाल उठाया था कि कोई भी अगर इसके पीछे में कितनी भी बड़ी शख्सियत होगी और कितने भी बड़े पद के बैठे हुए ओहदे के लोग होंगे, अगर उस जांच में उनके ऊपर भी उंगली उठेगी और वो दोषी पाए
1: ठीक
2: जाएंगे
1: है,
2: तो उस पर
1: लास्ट
2: भी
1: थर्टी
2: कार्रवाई
1: सेकंड
2: की
1: ठीक है,
2: जाएगी। वन और टाइम
1: धीरेन्द्र
2: रहे
1: जी,
2: ये हमारी
1: लास्ट
2: मंशा
1: थर्टी
2: रहती है
1: सेकंड
2: निश्चित तौर पर।
1: देखिए, मैं वही कहता हूँ राजीव जी कि बिल्कुल संवेदनशील सरकार है, और सम्राट जी ने जो उनका बाइट चला रहे हैं ना, कि उन्होंने कहा कि 48 घंटे में अपराधी बिहार छोड़ दे, अपराध में ही उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया था कि आम अपराधी के लिए, अपराध अगर किसी वर्दी वाला ने भी किया होगा तो उसके साथ भी बिल्कुल वही बर्ताव होगा, न्याय उसको भी वैसे ही कानून के रूप में दिया जाएगा, वो भी अगर होगा तो उनके ऊपर में भी FIR करके और बिल्कुल उनके नौकरी से डिसमिस किया जाएगा।
0: ठीक है,
1: लेकिन एक बार इंतजार करिए कि न्यायिक प्रक्रिया में, जांच में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो आएगा वही ये सरकार करेगी।
0: इंतजार
1: नीतीश
0: करने
1: कुमार
0: के
1: जी
0: अलावा
1: का
0: कोई
1: वही
0: और
1: मूल
0: विकल्प
1: मंत्र
0: बचा भी नहीं है,
1: पुणे।
0: सब इंतजार ही कर रहे हैं, परिवार भी इंतजार ही कर रहा है न्याय का। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब शायद समय आ गया है कि जब हर पुलिस वाले की वर्दी के साथ एक कैमरा अनिवार्य कर दिया जाए, एक बॉडी कैम होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, ताकि उनकी हर गतिविधि सिर्फ देखी ना जा सके, सुनी भी जा सके कि हो क्या रहा है। इससे क्राइम भी रुकेगा, फर्जी एनकाउंटर्स भी रुकेंगे, घूस की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी रुकेंगी। मतलब एक बॉडी कैमरा से बहुत फायदा हो सकता है। इस पर गंभीरता से सिर्फ विचार नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए और उनकी वर्दी के साथ एक कैमरा जरूर लगना चाहिए। दंगल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबा केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
6: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
7: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
8: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
7: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? I challenge you, Bajipa. अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। Wait. Come.
9: कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया है। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई।
10: यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिस कर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।
11: कहने को कह दिया जाता है कि बड़े लोग बड़ी बातें, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सोशल मीडिया लड़ाई छोटी बातों से शुरू होकर ऐसी उलझी है कि फोटो सेशन से शुरू हुआ बवाल अब राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच गया है। मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल ट्रंप बार बार G7 में मेलोनी के व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। अब शनिवार को उन्होंने लिखा, फ्रांस में G7 मीटिंग के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बार बार मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश की। इटली में उनकी लोकप्रियता का स्तर गिर रहा है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि अब ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की बात आई तो उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था। मेलोनी ने हमें इटली के लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवे का इस्तेमाल नहीं करने दिया, जिससे बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल दिक्कत हुई। ये तब हुआ जब अमेरिका इटली और दूसरे नेटो सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। अमेरिका ने अब ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है, तो मेलोनी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से दोस्ती करना चाहती हैं, लेकिन नहीं, शुक्रिया। मेलोनी ने इसके जवाब में लिखा, ये लगातार और बिना किसी उकसावे के किए जा रहे हमले बिल्कुल बेमतलब है। जहाँ तक मेरी लोकप्रियता की बात है तो आपका दोस्त होने से इसमें कोई मदद नहीं मिली है और न ही ये आपके साथ मेरे रिश्तों पर निर्भर करती है। मेरी लोकप्रियता इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की मेरी काबिलियत पर निर्भर करती है और मैंने हमेशा यही किया है। इटली में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के मामले में भी हमने समझौता का सम्मान किया है। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मेलोनी इससे पहले भी ट्रंप का साफ शब्दों में जवाब दे चुकी हैं।
12: तो कुछ अर्थकों से मेरी तरह रिस्पॉन्स।
13: कुछ बातों का तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। दुख की बात है कि वे अमेरिका के दुश्मनों के साथ वैसी सख्ती नहीं दिखाते, बल्कि उनके प्रति वे कहीं ज्यादा नरम रुख अपनाते हैं। लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, मैं और इटली कभी भी गिड़गिड़ाते नहीं है।
14: यूरोपीय देशों के साथ ट्रंप की कई मुद्दों पर नहीं बनती, लेकिन इस बार इटली की पीएम के साथ ये तलखी मिसाइलों के वार से कम नहीं है। आज तक यूरोप।

0: एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे कई वीडियो की भरमार है। हाथ में हथियार लिए एक युवक, कुछ दावे, कुछ आरोप, फिर गोलियों की आवाज और उसके बाद आई एनकाउंटर की खबर, जिसके बाद बिहार का आरा धधक उठा। आरा के बिलौटी गांव का भरत भूषण तिवारी अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो बिहार की राजनीति, पुलिस की कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही के बीच खड़ा एक सवाल बन चुका है। विपक्ष इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है। बिहार पुलिस का दावा है कि भरत ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार की कहानी बिल्कुल अलग है। माँ कहती है कि बेटा सरेंडर कर चुका था। यहीं से ये मामला एक पुलिस कार्रवाई से निकलकर पूरे बिहार की राजनीति का विषय बन जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुरुआती बयान में कहा था कि उन्हें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक भरत भूषण तिवारी ने पुलिस पर फायरिंग की थी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन बाद में उसी मामले में न्यायिक जाँच के आदेश दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जाँच सुनिश्चित करना है। इस पूरे मामले ने बिहार सरकार को भी असहज कर दिया है, क्योंकि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के बयान भी पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में जब एनकाउंटर के मुद्दे पर सियासत की रोटी पक रही है तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पुराने बयान भी वायरल होने लगते हैं, जिनमें अपराधियों को बिहार छोड़ने या शमशान जाने की चेतावनी दी गई थी।
1: अपराध करने वाला बचेगा नहीं, या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा, दूसरा कोई स्थान नहीं।
0: कभी कभी किसी की मौत की सबसे बड़ी गूंज शमशान में नहीं सवालों में सुनाई देती है। गोली की आवाज कुछ सेकंड रहती है, लेकिन न्याय की तलाश कई साल चलती है। राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूक नहीं, उसकी विश्वसनीयता होती है। अब बीजेपी के शासन की उसी विश्वसनीयता को अपने लोगों ने ही चैलेंज किया है।
2: बहुत शुक्रिया, भगवान से प्रार्थना है कि यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।
3: भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना, भरत भूषण तिवारी जी की मृत्यु जितनी दुखद है उतनी ही चिंताजनक भी है। किसी भी सभ्य समाज में जितना आवश्यक कानून व्यवस्था का होना होता है उतना ही आवश्यक ये होता है कि रक्षक भक्षक कभी ना बने।
0: भरत भूषण तिवारी अपराधी था या नहीं, इसका फैसला अदालत और जांच करेगी। पुलिस सही थी या परिवार, इसका जवाब जांच के बाद मिलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार को बाद में अपनी ही जानकारी पर पुनर्विचार करना पड़े तो जवाबदेही किसकी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में गोली का जवाब गोली नहीं सच देता है और सच तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ निष्पक्ष जांच से होकर जाता है और पूरा बिहार उसी सच का इंतजार कर रहा है। आरा से सोनू सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है, यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
5: रूस का पलटवार, मॉस्को हमले के जवाब में विनाशकारी प्रहार। यूक्रेन पर कहर बरपाया, सुरक्षित ठिकानों को बम से उड़ाया। रूस यूक्रेन में बढ़ा घमासान, एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान। विनाशकारी हमलों से अभी तक मचा है मॉस्को में कोहराम। रूस और यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों ने एक बार फिर तबाही मचा दी है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। रूस की एयर स्ट्राइक ने तो जैसे यूक्रेन में जलजला हिला दिया है। रूस का यह हमला इतना ताकतवर था कि पल भर में ही आग के शोले आसमान छू रहे थे। विस्फोट से उठे आग और धुएं के गुबार के सामने हाई राइज बिल्डिंग भी पौनी लग रही थी। एक के बाद एक तेज धमाके हो रहे थे। धमाके से उठी चिंगारियां कई सौ मीटर दूर तक फैल गई। लोगों की चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थी। दावा किया जा रहा है कि रूस ने ये एयर स्ट्राइक यूक्रेन के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने पर की और उसे तबाह कर डाला। कीव और लविव इलाकों में भी रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से बमों की बरसात की है। इधर यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया और क्रासनोदर में कई ड्रोन अटैक किए। ये हमले एक ऑयल डिपो को निशाना बनाकर किए गए थे। ताबड़तोड़ हमलों की वजह से तेल डिपो में भारी नुकसान हुआ है, जबकि पूरे इलाके से तेल की सप्लाई और जहाजों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। रूस तीन दिन पहले हुए मॉस्को हमले से पूरी तरह बौखलाया हुआ है। मॉस्को में उसकी ऑयल रिफाइनरी पर हुए इस विनाशकारी हमले से मचा कोहराम अभी तक थमा नहीं है। एयर स्पेस में आई दिक्कतों से तो मॉस्को उबर गया है, लेकिन अरबों के नुकसान और तेल सप्लाई की मुश्किलों से उबरने में वक्त लगेगा। वैसे रूसी सेना का दावा है कि मॉस्को हमले के जवाब में उसने यूक्रेन में इतने बम बरसाए हैं कि वो याद रखेगा। उसके कई ड्रोन सेंटरों को तबाह कर दिया गया है और 20 से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटरों को जान गंवानी पड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार अपनी सेना की मदद के लिए यूरोप के बाकी देशों से गुहार लगा रहे हैं ताकि रूस की आक्रामकता से बचा जा सके।
6: The existence of such an army should help prevent any future aggressive moves by Putin. That is why we need to start thinking now about how to provide the funding the Ukrainian army will need in the years.
5: करीब 4.5 सालों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध ने पिछले 4 दिन में विनाशकारी रूप धारण कर लिया है। दोनों देशों के कई लोगों की मौत हो गई है, सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं और तेल डिपो बर्बाद हो चुके हैं। आज तक बेरोज़

0: एनकाउंटर पर सियासत आपने देखा, दंगल अब आगे देखिए, बहस बाजीगर अंजना ओम कश्यप के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में साजिश पर हो सकता है खुलासा, एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर भी किया गया हादसा, विपक्ष ने उठाए सवाल। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने पुलिस पर उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, दूनागिरी संशोधक और अग्रय, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किया समर्पित, कहा रक्षा के क्षेत्र में खरीददार नहीं आत्मनिर्भर बनेगा भारत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: नमस्कार, बहस बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और बहस बाजीगर के इस एपिसोड में मुद्दा जितना दिलचस्प है उससे ज्यादा दिलचस्प आज की ऑडियंस है। तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार दिखा दीजिए सारे बच्चों को। अब इतने दिनों से आप लोग ये शो देख रहे हैं तो समझ ही गए होंगे कि नीला, सफेद और लाल गमछे के पीछे एक पूरी कहानी है। तो वो कहानी क्या है आपको दिखा देते हैं। बीते कुछ दिनों में देश की राजनीति में बगावत का एक मौसम आया हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कई क्षेत्रीय दलों में टूट एक के बाद एक हो रही है। खास तौर पर बंगाल में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद टीएमसी के सांसद मानो अचानक से जाग गए। विधायक तो टूट ही गए उनके साथ और उन्होंने कहा कि भाई हमें अभिषेक बैनर्जी जो भतीजा है ममता बैनर्जी का, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ममता बैनर्जी को हम नेता मानते हैं, वो अगर हमारे साथ आना चाहती है तो आ जाए। लेकिन ममता दी ने ऐसा नहीं किया और ऋतव्रत बैनर्जी ने 60 विधायकों के साथ विपक्ष का नेता चुन लिया। अब अगली कहानी आई सांसदों की, तो टीएमसी के सांसद यहां दिल्ली में टूट गए। ऐसे ऐसे सांसद जो कि ममता बैनर्जी के नाम के कस्मे खा रहे थे, वो सब भी इधर से उधर चले गए। मतलब अलग पार्टी बनाकर एनडीए का साथ देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सायोनी घोष, आप में से कितने लोगों ने सायोनी घोष को फॉलो किया था इलेक्शंस में? सुना था? किसने सुना था? अच्छा ठीक है, दो चार ही लोग हैं। अब देखते हैं कि कितनी पॉलिटिकल रुचि है आप लोगों की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि वो भी मतलब एक तरह से एनडीए के समर्थन में आ गई है, अगर अलग गुट बनाकर। और काकुली दस्तेदार कह रही है कि भाई हम तो एनडीए का साथ देने वाले हैं। फिर बगावत शुरू हुई उद्धव ठाकरे की पार्टी में। पहले ही शिंदे साहब सारे विधायकों को लेकर जा चुके थे, सरकार में शामिल हो चुके थे, सीएम बने, इस बार डेप्यूटी सीएम बने। लेकिन अब सांसदों ने भी बागी तेवर अपना लिए हैं और 9 में से 6 सांसद लगातार बागी दिख रहे हैं, जिनमें ये माना जा रहा है कि वो भी बड़ा खेल करने वाले हैं। तो एक तरफ दल बदल कानून है इस देश में, एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो इस वक्त कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें सरकार को इन सांसदों की जरूरत है। टीडीपी और जेडीयू के सहयोग से सरकार चल रही है। लेकिन क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है? आपने सुना होगा यही आरोप बार बार विपक्षी दल लगाते हैं कि हमारे सांसदों को डरा कर वो ले जा रहे हैं। भाई उनको डर क्या होता है? वो कहते हैं भ्रष्टाचार के मामले उन पर गढ़ दिए जाते हैं, वैसे ही सांसदों के साथ हो रहा है। तो इस आरोप में कितना दम है, यही जानने के लिए हमने सोचा कि आज का मोशन रखा जाए। क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है? तो ये हिस्सा मानता है कि सत्ता का डर है। आप लोग मानते हैं कि सत्ता का डर है, इसी डर की वजह से वो जा रहे हैं? आप लोग क्या मानते हैं? सफेद गमछे वाले विचार करेंगे, सुनेंगे सबको, फिर करेंगे मन की, अंदर में बटन जो मन आएगा वो दबा देंगे। और ये लाल वाले हिस्से जो ये मानते हैं कि सत्ता का डर नहीं है, वो अपनी वजह से जा रहे हैं, यही मानते हैं। तो ताली बजा लीजिए अपने लिए। इसी के साथ तो ये 3 हिस्से हैं, आप समझ गए हैं। हालांकि आप लोगों को ये भी बता दें कि अगर आप जो प्रतियोगी यहां आते हैं, भाई 6-6 लोग बोलने वाले हैं, तो अगर आप उनकी बात से प्रभावित होते हैं तो आप अपना गमछा बदल भी सकते हैं। नीले गमछे वाले सफेद या लाल ले सकते हैं। सफेद वालों के तरफ पास दोनों तरफ का ऑप्शन खुला हुआ है, लाल या नीला, और लाल गमछे वाले सफेद या नीले। और आप कोशिश कीजिए कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। आप भी कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग आए। लेकिन अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं अपने 3 जजेस। तालियों के साथ स्वागत कीजिए विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और 3 ताल के ताऊ। तालियों के साथ स्वागत कीजिए कमलेश किशोर जी का। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। अब तो जितना शो ये पुराना हो गया, उतने पुराने आप भी इस शो पर हो गए हैं ताऊ जी। चलिए, लेकिन बातें इतनी दिलचस्प करते हैं कि युवा पीढ़ी भी सुनिए कितना इनको सुनती है। अलग ही तालियां बजती हैं ताऊ के लिए। चलिए अब अपने पहले 2 प्रतियोगियों को यहाँ बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉली शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, और प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दोनों अपनी अपनी पार्टी के धुरंधर सिपाही हैं, जबरदस्त अंदाज में बोलते हैं और कई बार दोनों जीत भी चुके हैं, क्योंकि आज बहस बाजीगर भी तय होगा। इन 6 लोगों में से कोई एक बहस बाजीगर बनेगा जो सबसे अच्छे तरीके से दलील को सामने रखेगा। अब आइए अपने अगले 2 वक्ताओं को बुलाते। स्वागत कीजिए, आइए तिवारी जी, आइए किशोर तिवारी जी और गुलाब चंद दुबे प्रवक्ता एकनाथ शिंदे जी के पीछे पीछे और उद्धव जी के आगे आगे चले आ रहे हैं। देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। सांसद और विधायक तो लग रहा है छिटके जा रहे हैं। हाँ तिवारी जी स्वागत है, आइए बैठिए बैठिए। जख्मों को ना कुरेदे, आइए इधर आइए, जख्मों को कुरेदने की इजाजत नहीं। बैठिए तिवारी जी बैठिए। और चलिए दोनों टीमों की तरफ से आखिरी दो वक्ताओं को बुलाते हैं। मलुक नागर जी जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के और अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी धीरे धीरे चल रहे कि थोड़ा ताली और देर तक बजाओ, हमारी शान में कुछ तालियां और बजाई जाएं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो चलिए आज का विषय एक बार फिर से, जब छह वक्ता यहाँ पर आ चुके हैं उनको भी बता दें, क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है।
1: आज की बहस का मकसद और आधार बनी है देश की सियासत में चल रही बगावत। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो देश में मॉनसून आने वाला है, लेकिन सियासत में इस वक्त पतझड़ चल रहा है। एक तरफ वफादारियां बदल रही हैं, तो दूसरी तरफ बरसों पुरानी पार्टियां ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। बंगाल में कल तक जो विधायक और सांसद ममता बनर्जी की कसम खाते नहीं थकते थे, आज उन्होंने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बगावत का सुर छेड़ दिया है। अभी दीदी इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाला किला एक बार फिर दरक गया। और अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खेमे में भीतर ही भीतर दरार की चिंगारी सुलगने के दावे किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि नेताओं का ये हृदय परिवर्तन अचानक सोते जागते खुद ब खुद हो रहा है, या फिर इसके पीछे सत्ता के जादूगरों का कोई नया पावर गेम चल रहा है। लोकतंत्र में नेताओं की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए दल बदल कानून की भारी भरकम ढाल तो बनाई गई है, लेकिन जब रातों रात दो तिहाई कुनबा ही बदल जाए तो क्या कहा जाए। तो क्या विपक्ष में मची इस भगदड़ की असली वजह सत्ता का रसूख है, या फिर किसी खास डर का असर।
0: आरोप विपक्षी लगाता है कि भाई हमारे नेताओं को वो डरा कर ले जाते हैं, उन पर केसेस कर देते हैं ईडी के और अन्य केसेस, तो क्या इस आरोप में दम है। इसके मोशन के खिलाफ बोलने के लिए प्रदीप भंडारी जी आएंगे और मोशन के पक्ष में बोलने के लिए आज डॉली शर्मा आएंगी। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डेढ़ मिनट का टाइम मिलेगा और आप लोगों को यहाँ की एनर्जी का एहसास हो रहा होगा, तो उम्मीद है कि आप इनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और अपनी बात को उतने ही बलवान और शक्तिशाली तरीके से बोलेंगे। क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है, इस मोशन के खिलाफ बोलने का आपका डेढ़ मिनट का समय प्रदीप भंडारी शुरू होता है अब।
2: देखिए, परिवारवादियों को सत्ता जाने का डर था और इस डर में उन्होंने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया और इन सभी परिवारवादी दलों में लोकतांत्रिक आवाज उठ रही है और ये लोकतांत्रिक आवाज को आप अलग अलग दलों में देख रहे हैं। ये फोटो याद करिए, पूरी की पूरी शिवसेना बनी थी सोनिया गांधी के खिलाफ। उद्धव ठाकरे को अपने बेटे को सत्ता में लाना था, बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को नकार दिया। एक जमीनी कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे ने हर शिव सैनिक की आवाज को आगे उठाया और पूरी की पूरी शिवसेना जनता के मैदान में महाराष्ट्र में गई। जनता ने भी उस मैंडेट पर अपना मुहर लगाया और ये परिवारवादी दल वापस से दूर चले गए। तृणमूल कांग्रेस में बॉबी हकीम ने पूरा का पूरा अपना जीवन ममता बनर्जी के पक्ष में दिया, परंतु ममता बनर्जी ने सत्ता के मोह में अभिषेक बनर्जी को चुना और आज बॉबी हकीम भी ममता बनर्जी के साथ में नहीं है। किरदार गमांग भारतीय जनता पार्टी के एक सीट से हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को यहां पे बुलाया और कांग्रेस पार्टी ने एनडीए की सरकार गिरा दी, उसको कहते हैं सत्ता का डर। आज सच्चाई की बात यह है कि लोकतंत्र में हर परिवारवादी दल को यह समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र ऊपर होता है, ना कि परिवारवाद ऊपर होता है। सपा और बसपा साथ में आ गए क्योंकि सत्ता का घमंड था और फिर भी हार गए, तो जनता ने अपना मोहर हमारे पक्ष में सुनाया, इस मोशन के खिलाफ सुनाया।
0: समय समाप्त हुआ भाई, ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से जबरदस्त बल्लेबाजी की है और अब इस तरफ से इस मोशन के पक्ष में बोलने के लिए डॉली शर्मा जी, आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब।
3: देखिए, विपक्ष की ताकत सिर्फ संख्या बल से नहीं होती, विपक्ष की ताकत होती है जनता की आवाज को उठाना। जैसे किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, जैसे आज नीट, CBSE, CUET, भर्ती घोटाले, ये जो लगातार जिनसे जनता, आम नागरिक, युवा इस देश का दुखी है, वो विपक्ष की ताकत होता है। और वही संख्या बल लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोगों को जब आप सत्ता का बल दिखा के ईडी, CBI, ना जाने क्या क्या दिखाकर, डराकर, धमकाकर, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, कहीं ईवीएम में आग लग जाती है, जब शिक्षा मंत्री के ऊपर दबाव आता है तो उनके दफ्तर में आग लग जाती है, कहीं अंकिता भंडारी के जब सबूतों की बात आती है तो फार्म हाउस में आग लग जाती है। लगातार हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उतारने का काम और उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है। ये जो सांसद इधर से उधर जा रहे हैं ना, कोई पहले सस्ते समोसे की बात करता था ना, जनता का सस्ता समोसा, जनता के लिए इतना महंगा चाय, इतना महंगा ना जाने क्या क्या, आज मलाई चाटने उधर पहुंच गए, जनता जाए भाड़ में। एक शब्द किसी ने नहीं सुना उनके मुंह से, नीट के बच्चों के लिए, उन आत्महत्या करते बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए। 22 लाख, 18 लाख बच्चे नहीं, करोड़ों परिवार है जो आज देश में सफर कर रहे हैं।
0: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त भाई, दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने जो आज पारी खेली है। चलिए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, कुछ सवाल पूछना है क्या? आइए आइए, आ गया आ गया आ गया, मन में सवाल आ गया है ताऊ के, ताऊ के सवाल मन में आ गया, आ जाइए जल्दी, आ
4: जाइए। आप लोग मुद्दे पे ही रहें, पर हाँ। क्या है कि लोकतंत्र का पूरा मजाक बना दिया है।
0: हाँ।
4: मेरा दोनों तरफ से सवाल है।
0: हाँ।
4: कि ये अद्भुत चीज नहीं है जो हो रहा है, कुछ जो कुछ भी IPL में भी प्लेयर ट्रांसफर होता है, पर हमको मालूम होता है कितने में हुआ। यहाँ पे जो है, मैं मानता हूँ कि ये सब अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही गए हैं, मैं ये मानता हूँ अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही गए होंगे लोग, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 15, कुछ लोग कहते हैं 50, तो जनता को सिर्फ ये जानने का अधिकार है कि रेट क्या है, GST कितना है, फ्लाइट के जो चार्टर्ड प्लेन है वो किसके बिल में जाएगा, क्रेता के कि विक्रेता के, इस तरह की जो सूचना है। पारदर्शिता जो है वो डेमोक्रेसी का एसेंस है, हमको पारदर्शिता के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े वो हमें लड़नी ही चाहिए। क्या होता है कि ये लोग, जैसे देखिए, लाड़की बहन, लाड़ली बहना, लाड़का, जो भी है, तरह तरह की योजना है, साइकिल, TV, 2 बोतल दारू इत्यादि इत्यादि,
0: फ्रिज,
4: हमको पता है कि किस चुनाव में क्या रेट चल रहा था वोटर के वोट का। अब उन करोड़ों वोटों की कीमत कितने करोड़ लगती है, ये अगर वो जानेंगे तो फिर अगली बार वोट डिमांड करने में आसानी होगी कि उनको, कि एक साड़ी से नहीं चलेगा। इसलिए जो है पारदर्शिता के लिए प्रयास मैं चाहता हूं कि आप दोनों पार्टियां करें, क्योंकि एक क्रेता की तरफ,
0: मतलब आप कह रहे हैं कि एंड यूजर जो है, जो वोटर है, उसके हकों की रक्षा की जाए,
4: RTI इस पे लागू हो,
0: तो ये पूरी तरह से अब आपके खेमे में आ चुका है। माइक उठाकर इसका आप जवाब दें।
2: देखिए, संजय राउत कह रहे हैं भाई 10 करोड़ दिए तो क्या वो वोटों की मशीन गिन रहे थे, या उनके पास पैसे का कुछ दूरबीन है तो वही दिखा दे। ये कह रहे हैं कि भाई ईडी CBI की वजह से हुआ तो जरा वो वीडियो फिल्म दिखा दे कि भाई ईडी CBI के कोई वॉइस कॉन्वर्जेशन हुआ। आपने तथ्यों की बात करी, तो आज मैं तथ्य आपके सामने रखता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पब्लिक डोमेन में क्या लिखा है। अभी झारखंड चुनाव के अंदर राज्यसभा चुनाव हुए, जहां इनके पार्टी का कैंडिडेट हारा, और हमने वोट इनके खिलाफ ही नहीं किया, इनके खुद के लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया। और सुनिए CPM वाले क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं हमें पीड़ा होती है कि कांग्रेस वाले हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं किया, कांग्रेस के किन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, ये कांग्रेस को जांच करनी चाहिए।
3: देश का बच्चा आज आत्महत्या कर रहा है, वहां ये पार्टियां तोड़ने में लगे और संख्या बनाने में लगे ताकि देश तोड़ सके। आपके मुद्दे आज इनके लिए पीछे हैं, लेकिन संख्या बनानी बहुत जरूरी है। आज आप मुझे बता दीजिए, जितने लोग ऑडियंस में बैठे हैं, क्या मरते हुए बच्चे इस देश का मुद्दा है या सांसद तोड़ना? सबसे पहली बात आप मुझे बताइए,
2: मरते
3: हुए बच्चे मुद्दा है?
2: बीएसपी के एमएलए को सपा ने जोड़ा, कांग्रेस पार्टी ने एनडीए की एक वोट से सरकार गिराई,
3: मरते हुए बच्चे मुद्दा है?
2: बात करते हैं।
0: दुबे जी और तिवारी जी आइए, किशोर तिवारी जी आइए, आइए बहुत सा गुलाब चंद दुबे जी और किशोर तिवारी जी, ये एकनाथ शिंदे जी का पक्ष रखेंगे और ये उद्धव ठाकरे जी का पक्ष रखेंगे इस मोशन पर कि क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है, इसके खिलाफ बोलने का।
5: एक मिनट, मैं ओरिजिनल सेना का, शिवसेना जो ओरिजिनल है उसका पक्ष रखूंगा, और डुप्लीकेट शिवसेना जो इलेक्शन कमीशन ने बनाई है उसका समर्थन वो करेंगे।
0: हो गया, जनता ने किसको चुना? चलिए चलिए, गुलाब जी आपका इस विषय पर, इस विषय के खिलाफ बोलने का, क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है? डेढ़ मिनट का समय, माइक उठा लीजिए सर, माइक, डेढ़ मिनट का समय शुरू होता है अब।
6: हमारे भाई किशोर जी ये कह रहे हैं कि सच्चा और झूठा, असली और नकली, संपूर्ण देश को पता चल चुका है कि असली नकली क्या। आज इनके पास जला हुआ मसाल था, वो भी मसाल बुझ गया। इनके बात नहीं समझ में आ रही, इनके सांसद 9 थे उसमें से 6 हमारे खेमे में आ गए, रस्सी जल गई, ऐठन अभी नहीं गई है, अभी भी इस झूठे और सच्चे और असली नकली के बीच में पड़े हुए हैं। अरे नकली घी देसी घी के कहाँ चक्कर पड़े हैं तिवारी जी आप? हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से जो प्रेरित होकर के बगावत हुई थी शिवसेना में, 1991 में छगन भुजबल 17 विधायकों को लेकर के निकल गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि वह हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे का विचार कायम था। फिर उसके बाद 1993 में एक बगावत हुई, बगावत होने के बाद उस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उद्धव ठाकरे को, वहां से कहीं ना कहीं सुबह टूटी। फिर उसके बाद वहां से 2006 में नारायण राणे बगावत किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2006 में राज ठाकरे साहब बगावत किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2022 में एक ऐसा बगावत हुआ, वहां पर असल और नकल का बगावत हुआ। उसके लिए इतना ही मैंने कहना चाहूंगा कि किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है तिवारी जी, किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है, तो समझ लेना हम सब बागी हैं, बगावत काम है मेरा, मर मिटेंगे निज हक के लिए, यही पैगाम है मेरा। अब असली नकली की
0: समय समाप्त, अब पूरा शेरो शायरी आई है इधर से, मिडिल ऑर्डर ने अच्छी बल्लेबाजी कर ली है, तो आप इधर से पिच संभाल लें, बैट आपके हाथ में है।
5: बागी बागी बोलना, ये बिकाऊ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपमान है, हाँ, क्योंकि वो स्वतंत्र संग्राम में जो लड़े थे उनको बागी बोलती थी, हाँ, ये तो ऐसे संग्राम में लड़ रहे हैं, हाँ। अब ये बात कर रहे थे कौन, प्रदीप भंडारी, कि इन्होंने मोटर लगा के क्या, मशीन लगा के पैसे मुझे क्या। मैं बताता हूँ, मैं यवतमाल से आता हूँ, 2 सांसद चुन के आए शिवसेना के वहां से, हाँ, ओरिजिनल जो अभी 6 महीने पहले चुन के आए हैं, हाँ, तो ये ओरिजिनल हरदम ही कायम रहेगा, क्योंकि ना हमारे वोट कम हुए ना हमारे, अब ये सांसद चुराने की आदत पुरानी है, लेकिन इसका एपिडेमिक अभी अभी आया है, और अभी देख रहे हैं आपकी सत्ता लोलुप्त लोगों को आप राजनीतिक पक्ष टिकट क्यों देते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते, तो ऐसी बिकाऊ माल बाजार में आ गया और बिकाऊ माल अभी खरीदा जा रहा है, लेकिन जो पार्टी निष्ठा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र निर्माणताऊ और संस्कार इसके लिए राजनीति में आई थी वो कहती है, अच्छा। और वो कहते कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अपने दिल से आत्मा की आवाज से जा रहे हैं।
0: अच्छा समय समाप्त हुआ, चलिए तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों का। अपनी अपनी जगह पर जाइए, अपनी अपनी जगह पर जाइए। सवाल है तो त्रिवेदी जी पूछिए।
7: नहीं देखिए अंजना जी, ताऊ ने जो सवाल किया था वो सवाल बिल्कुल ताजा था, मुझे लगा ये दोनों लोग तो उसका जवाब दे ही सकते।
0: इन दोनों को तो बिल्कुल, और आपने भी जो पूछा विनोद जी ने,
7: जो सवाल पूछा था उसका जवाब दोनों लोग दे सकते थे, दुबे जी भी और तिवारी जी, क्योंकि दोनों के पास डिमांड सप्लाई जो भी वाटेवर कहा। और फिर लेकिन तिवारी जी को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए, उन्होंने कहा कि भाई वो लोग चले जाते हैं जिनको टिकट देते सब खरीदा गया था, बेचा गया था, या जिनकी निष्ठा नहीं थी।
0: अच्छा एक सवाल मेरा ये है कि टिकट का रेट आजकल क्या चल रहा है, ये रेट भी पता चल रहा है?
5: टिकट का रेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से चलता है और
0: कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से,
5: और ऑक्शन भी होती है। और लेकिन इसमें इसमें बीजेपी भी अचूती नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन लेकिन रीजनल पार्टियों में दलबद्ध लोगों को टिकट देने से उनको यह दिक्कत हो रही है।
0: माइक पे बोल रहे हैं आप, मैं याद दिला दे रही हूँ, बस माइक पे बोल रहे हैं, टीवी पे बोल रहे हैं।
5: अरे भाई
0: रेट,
5: मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर टिकट बेचोगे तो सांसद बिकेंगे।
7: ये जवाब है,
5: मैं बता रहा हूं राजनीति के जिस प्रिंसिपल के लिए बीजेपी आई थी उस सब प्रिंसिपलों को तिलांजलि देकर या 362 के लिए ये एक्सरसाइज किया जा रहा है।
0: और उनके सांसद तो जा नहीं रहे, जा आपके रहे हैं।
5: अरे चलती गाड़ी में से कोई उतरता नहीं है।
0: सही कहा,
5: तो भी बात कर
0: सही कहा है। अरे बोलते हैं धीरे लेकिन घाव करे गंभीर, हैं? घाव करे गंभीर भाई।
5: नहीं नहीं,
0: अब आप माइक उठाए।
5: नहीं नहीं,
0: थोड़ा सा थोड़ा बचा है, थोड़ा सा बचा है।
5: एकनाथ शिंदे ये बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ता है। एकनाथ शिंदे ये परिवारवाद में क्या होता है कि बहुत लोग सक्रिय हो जाते, तो एकनाथ शिंदे को मार्जिनाइज कर रखा गया, एकनाथ शिंदे पे अन्याय हुआ, ये बात मैं कबूल करता हूं। और एकनाथ शिंदे के मेरिट पर यह काम नहीं हुआ, एकनाथ शिंदे को अमित शाह जी ने आदेश दिया था और वो सेवक बोलकर उन्होंने काम किया है। तो बीजेपी जो राज्य में है उनकी किरकिरी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इज अ सीएम इन क्यू।
0: चलिए दुबे जी आप उनकी बात का जवाब दीजिए जो विनोद जी ने पूछा।
8: मैंने जो कहा था कि आखिर क्या वजह है कि कार्यकर्ता जो है छोड़ के जाते हैं, क्या नेतृत्व तो उनके दुख सुख का ख्याल नहीं रखता? और जो उसमें और जोड़ देता हूँ कि अंतरात्मा अचानक क्यों जागती है, खास करके जब रिजल्ट आ जाते हैं तब।
0: और ये रनिंग रेट भी बता दीजिए तो अच्छा रहेगा।
9: जी विनोद जी, इसका रनिंग रेट तो संजय राउत ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ उन्होंने बयाना दिया, यानी टोकन में नहीं दिया, और बाकी शेष बाकी है। 2022 में जो
5: अपमान हो रहा है उनका,
9: बगावत हुई किशोर जी,
5: जब तो करोड़ की बात हुई है,
9: 50 खोखे की बात की, ओके की बात आपने की,
5: और समेट रहे
9: दार की बात आपने की,
5: उनका अपमान कर रहे हैं।
9: आपने तमाम आरोप लगाए,
5: आपने अपमान किया है
9: आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में।
5: हमारे मित्र लोग हैं उनका अपमान हो रहा है।
9: 2024 का हमारा स्टैग रेट था 47.38 लोकसभा में, फिर उसके बाद विधानसभा 80 में से 60 हम जीते, फिर उसके बाद महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, तमाम ऐसे चुनाव में हम 70% हमारा स्ट्राइक रेट रहा। तो गद्दार आप हुए कि गद्दार हम हुए, ये समाज और ये सदन इसका निर्णय देगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब इस विषय पर ये दोनों बोलने वाले हैं, तो आपका मलुक नागर जी, मोशन के खिलाफ बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है।
10: कोई भी इस देश में बता दो जो चुनाव हारता हो या उसके विधायक या सांसद छोड़ के जाते हो, जो ये कहता हो कि उनकी लीडरशिप नाकाबिल है, उनकी पार्टी बेकार हो चुकी है, सब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे ही, उसी क्रम में ये कह रहे हैं। और मैं जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इनका अगर इतिहास में जाए पीछे, गहलोत की सरकार जहां पे चल रही थी कुमारी बहन मायावती जी की, बीएसपी पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही थी बगैर शर्त के, बगैर सरकार में साझी हुए। वो 6 विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए, छीन के ले गए महाराष्ट्र, इसके मध्य प्रदेश से 7 विधायक उनके तोड़ के ले गए, छीन के ले गए, उत्तराखंड से 3 विधायक मायावती जी के तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए। और तो और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी, 2004 से 2014 तक बगैर शर्त के सपोर्ट कर रहे थे। और पिछड़ों के कद्दावर नेता माननीय मुलायम सिंह जी और दलितों की और सर्व समाज की कद्दावर नेता मायावती जी को आय से अधिक संपत्ति के केस में डाल के जेल भेज रहे थे, क्योंकि उनके वो सांसद तोड़ना चाहते थे। खुद करें तो ठीक और दूसरे करें तो हिपोक्रेसी।
0: बहुत अच्छा, समय समाप्त हुआ। इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी तो एक एक सवाल बच्चों से भी लेंगे आप दोनों से, जल्दी से। हाँ। अनुराग जी, आपका इस विषय पर बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब।
11: देखिए, सवाल ये नहीं है कि विपक्ष के नेता क्यों तोड़े जा रहे हैं, सवाल ये है क्या आज की राजनीति में असहमति की राजनीति खत्म हो गई है क्या? क्या आज की राजनीति में विरोध की राजनीति खत्म हो गई है क्या? क्या आज की राजनीति में जनता की समस्या की बात उठाना ये गुनाह हो गया है क्या? आज की राजनीति में अगर किसी भी प्रॉब्लम जो समाज के अंदर घटित होती है उस पर अगर विपक्ष आवाज उठाता है मजबूती से, तो क्या सत्ता उसको सुनना नहीं चाहती क्या? क्या सत्ता ये नहीं चाहती कि लोकतंत्र मजबूत हो? लोकतंत्र मजबूत सिर्फ सत्ता मजबूत होने से नहीं होता है, लोकतंत्र मजबूत विपक्ष के मजबूत होने से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर विपक्ष को कमजोर करके आप संविधान और लोकतंत्र पे को आप कमजोर करना चाहते हैं क्या? और विपक्ष में जो लोग नेता जो टूट के जा रहे हैं, या तो उनको सत्ता का लालच है या उनकी कोई विचारधारा नहीं है। और जो विचारधारा के लोग नहीं होते हैं, जो राजनीति में चले आते हैं, वो सिर्फ सत्ता के लालच में आते हैं, सत्ता का सुख भोगने आते हैं। उन्हें कोई विचारधारा से मतलब नहीं, उन्हें कोई जनता से मतलब नहीं है, उन्हें कोई सरोकार नहीं अपनी लोकसभा से। उन्हें मतलब है तो कैसे उनको चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के बाद कैसे उनको अपनी सुविधाओं का भुक्तभोगन करना है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। और ऐसे नेताओं की जगह इस देश में होनी नहीं चाहिए जो नेता अपना दल बदल के दूसरे दल में जाते हो, आप विचारधारा के बदल देते हो, आप जीते हो किसी के चिन्ह पे। अगर टीएमसी के नेता टीएमसी के चिन्ह पे जीते, शिवसेना का नेता शिवसेना के चिन्ह पे जीते, उनकी विचारधारा पे जीते, और आपने चुनाव जीतने के बाद अपनी विचारधारा बदल दी, आप बिक गए, दूसरी तरफ चले गए, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को 240 में कितने समेटा था? जनता ने समेटा था। तो जनता ने जब 240 में समेटा था, जिनको जिताया था, अगर वो दोबारा उसमें शामिल हो जा रहे हैं तो जनता के साथ धोखा हो रहा है कि जनता जिनको चुनती है वो सत्ता के साथ चले जा रहे हैं। लास्ट लाइन है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, याद होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, हम सब उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा था अगर तोड़ के एमपी को खरीद के अगर मुझे सत्ता बनानी पड़ेगी, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी थे।
0: इनकी बात से एक सवाल क्लियर
10: हो गया, ये अपनी पार्टी को कोस रहे हैं, इनकी पार्टी के जो सांसद छोड़ छोड़ के तो खुद ही अपने आप को कोस रहे हैं, इस देश के नेशनल टेलीविजन पर खड़े हो गए ये लोग।
12: रिस्पेक्ट पूरे पैनल को, पहली बात तो बिकॉज मैं एक यंग वोटर हूँ, यहाँ पे बात हो रही है कि टिकट प्राइस और वोटिंग लाइक उसको क्वांटिफाई करा जा रहा है, तो मेरे लिए एक बहुत डिस्ग्रेसफुल बात है कि मेरे वोटिंग राइट को ऐसा मेरे को दिख रहा है कि वो बिक रहा है। वी वोट ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर पॉलिसीज लाइक जिनसे मैं एज अ वोटर अलाइन करता हूँ। अब जब इसके बाद एमपीज अपने अलाइज ऑफ फैक्शंस चेंज कर लेते हैं तो इजंट इट द नलिफिकेशन ऑफ माई वोटिंग राइट, माई वोटिंग वेट, इजंट इट इनजस्टिस टू अ वोटर?
0: ठीक है,
13: ये कौन सी आप एक नेता को खिलौना समझ रहे हैं क्या? लोगों ने उनको वोट दिया है, उन्होंने नेता चुना है और आप उनको बोल रहे हैं कि वो बिकाऊ हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो लीडरशिप है वो आप दिन पर दिन बदतर होते जा रही है कि आपके 9 में से 6 नेता वहां से बागी होते जा रहे हैं?
0: ठीक,
14: जब आपके नेता राघव चड्ढा जी की आइडियोलॉजी पार्लियामेंट में नहीं मानी गई थी, ये बोला आप, राघव चड्ढा जी ने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि आपकी उनके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बात कर रही है, तो अगर

0: का एक इम्तिहान है, हर तख्त का इम्तिहान है। ये बच्चे जो आज लाल से नीले गमछे में परिवर्तित हुए हैं ना, ये सीख जाइए यहां से कि इनके मुद्दे देश में अहम है। और वो नेता भी सीख जाएं जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा उड़ा कर अपने फायदों के लिए पार्टियां इधर से उधर कर रहे, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, उन पर भी कानून लागू हो जाए कि वो ना बदल पाए और इस देश के मुद्दे सबसे ऊंचे हो जाए।
1: चलिए अब आपका समय शुरू होता है, एक मिनट का रिबटल टाइम, मिस्टर भंडारी। अब
2: देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लोकतंत्र की आवाज नहीं दबानी चाहिए और जो जिस विचार में उसी विचार में रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध लड़ा। अलायंस किसके साथ किया? कांग्रेस पार्टी के साथ किया। कांग्रेस पार्टी एक बैकस्टैबर पार्टी है, पीठ में छुरा घोपने वाली पार्टी है। प्रदीप भंडारी नहीं कह रहा है, डीएमके कह रही, जिसने सालों साल कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया। तृणमूल कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा अस्तित्व कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया और आज टीएमसी और कांग्रेस साथ में आ रहे हैं। उद्धव सेना ने पूरा का पूरा अपना अस्तित्व जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया और कांग्रेस पार्टी के साथ विलय कर लिया। समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा जीवन बसपा के खिलाफ लड़ा, बसपा के साथ अलायंस किया, 6 बीएसपी के एमएलए को समाजवादी पार्टी के अंदर जोड़ लिया, कांग्रेस के सांसद को समाजवादी पार्टी के अंदर जोड़ लिया, ये सब ठीक हो गया। ये सब परिवारवादी दल, इनके चाचा नाना नानी काउ सब इनके राजनीति के अंदर। और यह लोकतंत्र की बात करें, आप सब युवा हैं। आज एक युवा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता से शीर्ष पद पर पहुंच सकता है, ये आप सब भी जानते हैं। हम वापस से कहेंगे, रेट ये कोट करते हैं, भ्रष्टाचारी ये है, हमारे साथ जो भी आता है सिर्फ विकास के लिए आता है।
1: समय समाप्त।
2: तो केरला में भी है कोई बीजेपी का व्यक्ति टूटा, हम तो तमिलनाडु में भी है, कुछ हुआ आंध्र में भी है, पंजाब में भी है, हम जहाँ सत्ता में भी नहीं रहते तब भी हमारे लोग हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि विचार मतलब भारतीय जनता।
1: समय समाप्त। चलिए जल्दी से
3: प्रदीप जी से
1: एक सवाल।
3: प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से बात को रखा है, लेकिन अभी अभी तो चुनाव लड़ा आपने ममता बनर्जी के खिलाफ, वो सारे एमपी आपके साथ आ गए, शायद उनके खिलाफ ही लड़ा होगा, शिवसेना के खिलाफ भी लड़ा होगा। और प्रदीप जी बात कर रहे हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी में, वो तो ठीक है, लेकिन कमरा तो उतना ही बड़ा है, ये सारे लोगों को बैठा लेंगे तो प्रदीप भंडारी जैसे कार्यकर्ताओं को जगह कम मिलेगी वहां पर, ये इसको देखिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि डॉली जी और अनुराग जी बहुत खुश हो रहे हैं कि लोग जो है जनता इधर से उधर चली गई, आप मत परेशान होइए, आपको तो एमपी चाहिए ना।
4: अनुराग जी मेरा सवाल भी जोड़ लीजिए उसके बाद। प्रदीप जी ने कहा कि सपा और बसपा एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन मायावती को चीफ मिनिस्टर तो 3 बार आपने बनाया उत्तर प्रदेश में, सपा ने तो नहीं बनाया, तो आप भी तो बसपा के साथ जो है 3 बार गए और 3 बार अलग हुए।
2: हम किसी के साथ भी अलायंस करते हैं, हम हमारे विचार के हिसाब से अलायंस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर राम मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर आर्टिकल 370 हटा, हम यूसीसी पे कानून कायम है, हमारे साथ इतने घटक दल आए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना विचार कब चेंज किया? क्या कोई आया उसकी वजह से हमने हमारे आउटकम्स चेंज किए? नहीं चेंज किए। एज एनडीए हम जो चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है वही करते हैं। और ये हमारे विचार का दायित्व है कि अगर हमारे विचार में ज्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या? हम 22% की वोट शेयर पार्टी थी, 38% की वोट शेयर पार्टी है, कल हम चाहेंगे 50% की वोट शेयर पार्टी हो। जो बीजेपी में आता है, जो एनडीए में आता है, वो एनडीए के हिसाब से चलता है, एनडीए किसी को लेती है उसके हिसाब से नहीं चलती। इनमें और हमें ये फर्क
1: ठीक है। चलिए अब मुझे लगता है आपसे कोई सवाल नहीं, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी जगह आइए आइए आइए। तिवारी जी, दुबे जी, जल्दी जल्दी आइए, एक एक मिनट का, मैंने कहा था ना आपको सेकंड राउंड मिलेगा सर,
4: कार्यक्रम
1: मुंबई से बुलाया हमने,
4: कार्यक्रम की सबसे शानदार जोड़ी,
1: सबसे शानदार,
5: ये नागपुर से है, मुंबई से।
1: अच्छा, मुंबई से आप आए हैं, ये नागपुर से आए हैं, अब नागपुर में हेडक्वार्टर तो संघ का है लेकिन आप नागपुर से आए। दादा अभी एक मिनट, आपका एक मिनट का समय शुरू होता है अब दुबे जी।
6: जैसे कि लोकतंत्र की गवाही और दुहाई देने वाले यहाँ के कुछ हमारे नेतागण जिस तरह से कह रहे हैं कि संस्कार और लोकतंत्र की मर्यादा में रह करके पार्टी गतिविधि की बात करते हैं, हमारे भदौरिया साहब जिस ढंग से कह रहे थे कि किसी पार्टी में फला फुला कोई व्यक्ति सांसद हो या विधायक हो, चाहे जिस पद पे पदासीन होने के बाद उस दल से निकलने का मतलब कि जनता को धोखा देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव के ही शरीर से पैदा हुए आपके नेता, उन्होंने भरे मंच पर जिस तरह से अपमान किया, चाहे शिवपाल यादव जी का, चाहे स्वयं अपने पिताजी का, यह राजनीतिक लुलपता रही। बात लोकतंत्र की मर्यादा न सिखाएं, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करा। अभी परसों बीता हुआ, कल इस दल बदल सांसदों 6 सांसदों को लेकर के जो महाराष्ट्र से एक आवाज एक सुर निकली, संजय राउत जी जिस ढंग से मर्यादा को उन्होंने रोध करके

0: गाली गलौज पुता रहा है उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति ने इस पे कोई चर्चा नहीं की।
1: ठीक,
0: अब मेरे ही नहीं समझ में आ रहा है कि मर्यादा और लोकतंत्र की कहां किस मर्यादा किस तरह।
1: बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, चलिए आपका तिवारी जी अब एक मिनट का समय, थोड़ा तेज तेज बोलना होगा सर, एक मिनट की टाइम।
2: नहीं, मैं बात कर रहा हूँ,
1: घड़ी स्लो चलाइएगा
2: थोड़ा। हाँ,
1: बोलिए।
2: तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि मुझे सवाल आया था, उसके जवाब भी देना पड़ेगा।
1: हाँ बोलिए बोलिए।
2: वो उन्होंने सवाल बोला कि कमियां अगर हम में थी, हाँ कुछ तो कमियां रही होगी, नहीं तो इतने तो बेवफा नहीं होते। लेकिन लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर दल बदलू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए तो मैं चाहता हूं, और विनोद जी ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले जो है और बीजेपी में जो है वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो कुछ तो कमियां हैं ये पॉलिटिकल सिस्टम में, और डिग्रेडेशन पॉलिटिशियन का बहुत ज्यादा हुआ है।
1: समय समाप्त हो गया, मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया।
3: कांग्रेस में जो है उसको हार पहना दो।
0: अंजना जी,
2: नहीं ये बात पे मुझे बोलना पड़ेगा।
0: अंजना जी, ये और नकली लोग हैं, ये नकली लोग हैं कि ये लोग जमी पर रह के कलमों में कायम करते हैं, कटा के उंगली शहीदों में नाम करते हैं।
2: उसमें देखिए, जितने भी भट्टाचारी बीजेपी में गए आज वो सबसे ज्यादा राष्ट्र संपन्न चारित्र संपन्न हो चुके हैं। हाँ, मैं नाम किसी के लूंगा नहीं क्योंकि सारे के ही नाम लेना पड़ेगा।
1: एक सिंपल सा सवाल है, बाला साहब की आइडियोलॉजी क्या थी? बाला साहब कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे या नहीं लड़ रहे थे?
2: देखिए, बाला साहब ठाकरे यह एक ऐतिहासिक पुरुष थे, वो कांग्रेस के साथ ही रहे बहुत दिन तक, कांग्रेस के साथ
0: एकदम।
2: अरे मेरे को
0: झूठ झूठ
2: बोलने दो, मुझे
0: झूठ।
2: राजनीतिक समझौता हर पार्टी से करती है। बीजेपी ने बीएसपी से किया था, बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से किया था, बीजेपी ने कम्युनिस्टों से भी किया था, बीजेपी ने मुस्लिम लीग से किया था। अरे यार, ये बच्चा पार्टी, ये कॉकरोच पार्टी, ये कॉकरोच जनता पार्टी से आए, ये कॉकरोच जनता पार्टी से
0: इसी दिल्ली के।
1: चलिए, एक मिनट का रिबटल टाइम आपका शुरू होता है अब।
4: किसी भी राजनीतिक परिवेश को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक व्यवहारिक और एक संवैधानिक। व्यावहारिक में जाए, पश्चिम बंगाल में जाए, उन्होंने पहले कांग्रेस को लंबे समय तक प्यार दिया, फिर वामपंथियों को लंबे समय तक प्यार दिया, ममता जी को 15 साल लंबे समय तक प्यार दिया, और अब एनडीए और बीजेपी को जो प्यार दिया वहां की जनता ने, तो वहां के नेताओं ने सोचा लंबा चलेगा, और इसलिए अगर वो गए तो व्यावहारिकता में ठीक, और अगर महाराष्ट्र में जाए तो बाला साहब ठाकरे साहब की जो विचारधारा थी उसके खिलाफ जाके कांग्रेस में समझौता करा तो व्यावहारिकता के हिसाब से उन लोगों को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो गए। अब आती है संवैधानिक। संविधान की क्लॉज 10 के पैरा 4 के अनुसार 2/3 अगर इकट्ठे होकर चले जाएं तो संवैधानिक तरीके से वो ठीक है, तो संविधान के हिसाब से भी ठीक और व्यावहारिकता के हिसाब से भी ठीक। अरे कांग्रेसी और उनके साथी पार्टी रोते रह जाओ क्योंकि इनके खुद के बस की कुछ है ही नहीं।
1: समय समाप्त। अनुराग जी, आपका समय शुरू होता है।
5: भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कह रहे हैं कि जनता का प्यार मिला, जनता का प्यार मिला नहीं,
0: मैं बोलता तो
5: जनता का प्यार लूटा, लूटा एसआईआर के माध्यम से। ये वो लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। कौन डर से झुक गया, कौन लालच में बिखर गया, ये वक्त की किताब है, हर पन्ना खुल कर कहेगा। सब खुल के कह गया है कि कौन बिका है, कौन डर से है, कौन क्यों गया है। ये विचारधारा की बात कर रहे हैं। पीडीपी के साथ, पीडीपी को कहते हैं कि पीडीपी का सरकार नहीं बनाएंगे, लड़ते थे पीडीपी के साथ, इन्होंने मलाई मारने के लिए सरकार बना ली थी कश्मीर में। सोचो आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ भी सरकार बना ली थी, और आपको बातें करेंगे, नफरत की बात करेंगे ना, जब सत्ता पानी होती है तो पीडीपी के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, बीएसपी के साथ, शिवसेना के साथ, किसके साथ इन्होंने सरकार नहीं बनाई है? जहां जहां इन्हें मौका मिला सरकार बनाने का, मलाई खाने का, वहां बीजेपी ने सरकार बनाई नहीं, कोई विचारधारा नहीं है।
1: यही
5: विचारधारा है सत्ता।
1: अब वक्त है जब आप वोट करेंगे। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं, आप भी क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय डाल सकते हैं। आज का प्रश्न साफ है, अब जितने ऑडियंस यहां पर है, क्यूआर कोड स्कैन करके वोटिंग शुरू होने वाली है। विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है, अगर आप मानते हैं हाँ तो आप वोट करेंगे टीम डॉली शर्मा के लिए, तो आपको टीम डॉली शर्मा के लिए हाँ पर वोट डालना है। अगर विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है ऐसा आप नहीं मानते हैं तो आप प्रदीप भंडारी के लिए करेंगे नहीं पर। आप वोटिंग शुरू कीजिए, आपको 60 सेकंड का वक्त मिलेगा जिसमें आपको अपना वोट डालना है और देखते हैं वोटिंग किस तरफ जाती है। विपक्ष में टूट के पीछे क्या सत्ता का डर है? हाँ कहने वाले आज 66% है, 65%, 69%, 70%, 34% नहीं कह रहे हैं, कह नहीं सकते वाले 7% है। और इसी के साथ 70% टीम डॉली शर्मा जीत गई है जिसमें विपक्ष के टूट के पीछे सत्ता का डर है। 70% लोग कह रहे हैं हाँ, नहीं वाले 25% है, कह नहीं सकते वाले 5% है। और अब बारी है जब आपको बहस बाजीगर बताना है, जल्दी से बता दीजिए आज का बैठ जाइए।
6: अपना इनाम तो सुन लो।
7: आज का जो बहस है वो बहुत मजेदार रहा, आनंददायक रहा। दो सेनापतियों ने इसे दो सेना की लड़ाई बना दिया था।
1: हाँ।
7: लेकिन दोनों बहुत मनोरंजक थे।
1: हाँ।
7: पर बाजीगर तो एक ही होता
1: है। आप कह रहे हैं कि कॉमेडी ज्यादा थी।
7: हाँ, आज कॉमेडी का जो है अंश ज्यादा था पर अच्छा आज था। लेकिन बाजीगर तो एक ही हो सकता है।
1: हाँ।
7: तो आज के बहस बाजीगर हैं टीम डॉली शर्मा के श्री अनुराग भदौरिया।
1: भदौरिया जी, ओ वाह वाह, ओ हो, ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियों के साथ आज के बहस बाजीगर अनुराग भदौरिया के लिए ताली बजाइए। आपको विश्वास हो रहा है ना? इसी के साथ बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे। क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
11: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
12: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
13: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
14: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
15: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
14: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिस्सा लिया और हजारों लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ताड़ासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन सहित कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत अलग अलग योगासन किए। योग कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने आसपास मौजूद लोगों को योग की बारीकियां समझाते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने योग को दुनिया के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग बताया।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी याद किया और उनकी विचारधारा का उल्लेख किया।
1: इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है।
0: वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर
5: अ बर्स्ट पाइप अ डेड वाटर हीटर द एसी कॉलिंग इट क्विट्स Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price void in Florida.
6: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
7: This is the sound of Jack. Buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
8: Oh, ouch.
7: However you make money work, we can work with that.
9: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

0: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची। लेकिन क्या अब टीएमसी की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है। इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच टीएमसी की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
1: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके ये फंड पार्टी का जो है, तो दूसरे बड़ा बड़ा फंड वाला पार्टी जो है, तो जो दिल्ली में सत्ता में है, जो स्टेट में सत्ता में था, तो उनके देखिए ना, तो क्या है तृणमूल कांग्रेस का, तो हमारा ऑफिशियल आपका पार्टी के तरफ से ऑफिशियल यही आपका रिएक्शन है, जो लोग मेलाइन करने के लिए ये बोल रहा है, हम अभी ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, पार्टी का लीगल ऑफिशियल ऑडिटेड फंड है, बाकी ये पार्टी कंसर्न जो लीडरशिप है वो देख रहा है।
2: दिस इज आवर मनी, दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी, एंड मिस्टर अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी, टीएमसी पार्टी मेंबर्स, वेदर यू आर विद अ न्यू पार्टी और वेदर यू आर विद टीएमसी, यू ऑल हैव चीटेड द पीपल ऑफ बंगाल, एंड दिस इज द रीजन फॉर योर डाउनफॉल। यूजिंग आवर मनी यू ऑल हैव ट्रेवल्ड इन चार्टर्ड फ्लाइट्स, बिग कॉन्वॉयज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, ह्यूज पुलिस बटालियन स्टैंडिंग एंड पीपल वर फेसिंग डिफिकल्टी टू क्रॉस द रोड, दीज आर द रीजंस, रियलाइज इट, दिस इज द रीजन फॉर योर डाउनफॉल।
0: टीएमसी में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है, यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में केंद्रीय मंत्रियों और शीर्ष नेताओं ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस बीच अहमदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। वहीं दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी योगाभ्यास किया और योग के महत्व पर प्रकाश डाला। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने योग किया। इस दौरान अभिनेता अक्षय कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस बीच दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित योग दिवस पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने योगाभ्यास किया। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योग किया। डिप्टी सीएम ने लोगों से योग को जीवन के सभी कार्यों की तरह अपनाने की सलाह दी। पूरे देश में योग दिवस पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़े केंद्रीय नेताओं और नागरिकों ने मिलकर योग कर स्वास्थ्य का संदेश दिया। आज तक ब्यूरो।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक इस खास शो में। अगले आधे घंटे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में हो सकता है खुलासा, एसआईटी आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर भी हाथ किया गया साफ, विपक्ष ने फिर उठाई सवाल। बिहार में भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा। बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने पुलिस पर उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्ध पोत, दूनागिरी संशोधक और अग्रय। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किया समर्पित, कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और कालीबाफ की अगुवाई में चर्चा। होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती। शो की शुरुआत बिहार में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर से करते हैं। अब भरत तिवारी का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एनकाउंटर से पहले का है जिसमें भरत अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। इस वीडियो में भरत अपने अंगदान की बात कर रहा है, साथ ही बता रहा है कि उसके मोबाइल फोन में व्यवस्था के खिलाफ बनाए गए वीडियोज हैं।
1: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
2: ये भरत तिवारी का आखिरी वीडियो था। जैसे भरत को इल्म हो गया था कि आज नहीं तो कल वो जीवित नहीं रहेंगे। अपने इस वीडियो में भरत कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनका मोबाइल किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए।
1: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
2: अब सवाल ये है कि आखिर भरत तिवारी के फोन में ऐसा क्या था जो वो दुनिया के सामने लाने वाले थे। इसके साथ ही भरत अपने अंगदान की बात भी कर रहे हैं।
1: मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए, इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं।
2: भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जब भरत ने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, तो उसे 4 गोलियां क्यों मारी गईं? भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है।
3: हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सजा दिलाया जाए।
2: सजा तो बहुत दूर की बात है। भरत तिवारी की मां ने पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उस आवेदन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अलबत्ता पुलिस ने खुद 3 FIR दर्ज की हैं, जिसमें भरत तिवारी के साथ उनके भाई और पिता को आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जवाब के नाम पर सन्नाटा है। सोनू सिंह, आरा आज तक।
0: बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर पर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाकर सरकार पर हमलावर है। अब बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विवाद को बढ़ता देख सरकार ने मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। उधर इस मामले में पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने अब इस केस में 3 FIR दर्ज किए हैं, जिसमें मृतक भरत तिवारी, उसके पिता और भाई को भी नामजद किया है। साथ ही एनकाउंटर के विरोध में सड़क जाम करने वाले लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ भरत के परिजन पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
4: इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है। ये तय, और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया है। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई।
5: यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिस कर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।
0: अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं, राम मंदिर में चोरी के मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आपको देते हैं। एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी को 7 दिन में अपने रिपोर्ट भी सौंपनी थी, जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी, और वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा खबर मामला, चोरी का मामला, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। इस मामले में जो प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी की है, एसआईटी ने इस पूरी प्रक्रिया को देखा, इस प्रक्रिया में जो एक एक व्यक्ति शामिल था उसे पूछताछ की है। हमारे संवाददाता संतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक रिपोर्ट क्या बताया गया है, एसआईटी ने मुख्यमंत्री को क्या बताया, क्या है इस रिपोर्ट में?
6: देखिए, ये एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट है और ये एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट एक तरीके से मुख्यमंत्री को पूरा घटनाक्रम बताया गया कि कैसे राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी और कैसे वहां पर जो दान पात्र में जो चोरी की जो रकम की बात आ रही थी वो कितनी रकम थी,
0: चोरी किसने की, संतोष क्या उसका नाम है,
6: ये अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के जो खामियां हैं वो बताई गई हैं और तमाम अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको की प्रारंभिक रिपोर्ट अभी ये सौंपी गई है। जो विस्तृत रिपोर्ट है वो 15 दिन का चूंकि टाइम दिया गया था, मुख्यमंत्री ने जब एसआईटी गठित की गई थी तो शुरुआत में कहा गया था कि 4 दिन में एसआईटी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देनी होगी और उसी के बाद ये प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है और अब विस्तृत जब रिपोर्ट होगी तो उसमें जिम्मेदार जो भी लोग होंगे उनके नाम और उनकी भूमिका के साथ ये पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि एसआईटी की टीम मेंबर्स ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद एक प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है और इसके बाद आगे की कार्रवाई।
0: बिल्कुल संतोष, और जो विस्तृत रिपोर्ट देनी भी है उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जनता दल यूनाइटेड की आज पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है और इस बैठक में नेतृत्व, भविष्य की रणनीति और संगठन की मजबूती जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर मोहर लगी। निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य भी साथ साथ बता दिया गया।
2: बिहार के सीएम पद से हटने के बाद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ये पहली बैठक थी। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एक बार फिर नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया।
7: श्री नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे निर्विरोध, जिसका राष्ट्रीय परिषद ने अनुमोदन किया।
2: नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, 2025 का जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला है। वो राज्यसभा भले चले गए हैं लेकिन बिहार के विकास के लिए अपना मार्गदर्शन जारी रखेंगे। बिहार में जेडीयू 2025 के चुनाव से भी बढ़िया प्रदर्शन करे, इसे सुनिश्चित करना है। बिहार के बाहर भी जेडीयू को मजबूत करना है, जरूरत पड़ी तो बिहार के बाहर भी पार्टी के लिए जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मौजूदा सम्राट सरकार और केंद्र सरकार की भी सराहना की।
8: जो मौका मिला 2005 से तो बहुत सारा काम हुआ और अभी जो एनडीए सरकार चल रही है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और केंद्र से भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
2: बैठक में निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य बताया गया। बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो सुनिए क्या बोले।
9: हमारी सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है, इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम सबको मिलकर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है।
2: इस बैठक से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार सरकार से दूर जरूर हुए हैं मगर पार्टी पर अब भी उनका जबरदस्त कंट्रोल है। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई खबर है कि शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद नागेश पाटिल ने दावा किया है कि वो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। नागेश पाटिल ने कहा है कि वो और अन्य सदस्य 18 जून तक कहीं नहीं गए थे लेकिन उनके खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गई और उसके बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया, जाने का मन बना लिया। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट भी किया है, एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया गया और उसमें अष्टिकर ने कहा है कि उन्होंने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया, बस एक शिवसेना से दूसरे शिवसेना में चले गए। बता दें कि खबर थी कि आज शिवसेना यूबीटी के बागी 6 सांसद यूबीटी से अलग होने का ऐलान भी करने वाले हैं। बाकी के 5 सांसदों ने अब तक ऐलान नहीं किया है मगर एक सांसद अब खुलकर सामने आ गए। टीएमसी में बगावत वाली जंग अब पार्टी फ्रंट तक पहुंच गई है। बागी गुट के 10 विधायकों की शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने का दावा किया गया है, जिस पर नया सियासी बवाल छिड़ गया है।
2: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची, लेकिन क्या अब टीएमसी की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जाँच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है।
10: ये कम्प्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहां से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंस का पैसा है, ये सब प्रूव होना चाहिए। हम लोग तो प्रूव नहीं कर पाएंगे।
2: इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच टीएमसी की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
11: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके,
12: दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी। एंड मिस्टर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, टीएमसी पार्टी मेंबर्स, वेदर यू आर विद अ न्यू पार्टी और वेदर यू आर विद टीएमसी, यू ऑल हैव चीटेड।
2: टीएमसी में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब एक दिन पहले पीएम मोदी हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि बंगाल अब बीड़ियों से आजाद हो गया है।
13: बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है।
0: हुगली की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। पीएम ने आरोप लगाया कि देश की आजादी के समय बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की गई थी, उस कठिन समय में कांग्रेस ने मजबूती के साथ खड़े होने के बजाय घुटने टेक दिए थे।
13: बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया।
0: 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का नीट यूजी 2026 री एग्जाम बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो गया है। शाम 5:15 के बाद उम्मीदवार एग्जाम सेंटर से बाहर निकले। हालांकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो चंद मिनट की देरी के चलते परीक्षा नहीं दे पाए। परीक्षा देकर छात्र बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
14: पेपर तो था वो तो टफ ही था पिछली बार से। फिजिक्स और लेंथी आया था, केमिस्ट्री और बायो ज्यादा इजी था। फिजिक्स में ग्राफ्स बहुत ज़्यादा आए थे और थोड़ा लेंथ ही था। फिजिक्स थोड़ा कंसेप्चुअल आया था, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स वाइज आया था, लेकिन था बहुत पिछली बार से टफ था।
15: फिजिक्स टफ था, केमिस्ट्री मॉडरेट था और बायो थोड़ा इजी था।
16: बायो आसान था लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट था।
0: नीट पेपर लीक के बाद 21 जून यानी कि आज दोबारा नीट की परीक्षा हुई। 22 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया और इसी बीच में एक ऐसी छात्रा की कहानी सामने आई जिसने भीषण एक्सीडेंट के बाद भी हार नहीं मानी और नीट की परीक्षा देने के लिए पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस छात्रा की अपील को स्वीकार किया और उसके लिए एग्जाम सेंटर पर अलग कमरे की व्यवस्था करवाई। एक्सीडेंट में 9 पसलियां टूटने के बाद भी सृष्टि दुबे ने परीक्षा देने का फैसला किया और इसमें प्रशासन ने उनका पूरा साथ दिया। छात्रा के लिए अलग कमरे की व्यवस्था करवाई गई जहां पर आवश्यक चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई, साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक एम्बुलेंस और मेडिकल टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया।
17: दुबे जी
18: नमस्कार सर,
17: कैसे हैं आप?
18: सर आप लोग के आशीर्वाद से ठीक है, मेरी बच्ची एग्जाम दे पा रही है। ये मतलब बहुत मतलब मेरे मन में विश्वास नहीं किया था कि मेरी बच्ची एग्जाम दे पाएगी लेकिन दे पा रही है आप लोग के सहयोग से। सर
17: आप खुश हो?
18: हाँ हाँ सर बहुत खुश है सर।
17: दुबे जी
18: नमस्कार सर,
17: कैसे हैं आप?
18: सर आप लोग के आशीर्वाद से ठीक है, मेरी बच्ची एग्जाम दे पा रही है। ये मतलब बहुत मतलब
17: आप खुश हो?
0: अब आपको देश की राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप सहम जाएंगे और सवाल करेंगे कि अगर राजधानी का यह हाल है तो बाकी शहरों का क्या होगा।
2: यह तस्वीरें दहला देने वाली है, सिहरन पैदा करती हैं ये तस्वीरें। एक बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है क्योंकि इस बच्चे पर इस गाय ने हमला कर दिया है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के गली नंबर 10 की है। देखिए बच्चा गाय से बचने के लिए भागता है मगर गाय उसे सींग मार रही है। बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है, गाय उस पर हमला जारी रखती है। बच्चा दहाड़े मारकर चिल्लाता है, वो गाय से बचने का बार बार प्रयास कर रहा है। बच्चे की पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं मगर सिर्फ देखते रहते हैं। फिर ये आदमी हिम्मत दिखाता है, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है। किसी तरह से ये बच्चे को गाय से अलग करता है मगर ये बच्चे को संभालता है, इसके पहले ही गाय ने दोबारा अटैक कर दिया। बच्चे को लेकर ये भागता है मगर गाय सींग मारती है और ये गिर पड़ता है। तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं और गाय को यहाँ से भगाते हैं। तस्वीरें 19 जून की बताई जा रही हैं। सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में आवारा पशुओं का आतंक कब तक रहेगा? आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
0: यह है देश की राजधानी दिल्ली और ये तस्वीरें भी आपने देख ली। अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर दबंग युवकों ने सरेरा दो युवकों की जमकर पिटाई की, दबंगई दिखाई और इन लोगों ने सबके सामने दोनों युवकों को लाठी डंडों और बेल्ट से पीटा।
2: बीच सड़क पर कुछ दबंग इन दो युवकों को पीट रहे हैं, कभी इन पर बेल्ट बरसाई जा रही है कभी इनकी पीठ पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन दोनों युवकों को ये दबंग मार डालने पर उतारू हैं, बेरहमी से ये इन दोनों युवकों को पीट रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि बीच सड़क पर ये दबंगई दिखा रहे हैं और कोई इन्हें रोक नहीं रहा। अलबत्ता लोग तमाशबीन बने इन्हें देख रहे हैं मगर इन युवकों की कोई मदद नहीं कर रहा है। तस्वीरें लखनऊ की हैं जहां केजीएमयू के सामने इन दोनों युवकों की पिटाई हो रही है। देखिए इस नीली टी शर्ट वाले लड़के को किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब पिटाई का ये वीडियो वायरल है, पुलिस जांच कर रही है कि सरेराह गुंडागर्दी करने वाले ये दबंग कौन है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस के मौके पर देश भर के कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बार योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी कि स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग है। इस थीम का उद्देश्य ये बताना है कि योग सिर्फ फिटनेस का जरिया नहीं बल्कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर मन और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का भी एक तरीका है। थोड़ी देर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कोलकाता के रेड रोड पर योग किया। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी योग किया।
19: सांस छाड़ते छाड़ते सामान्य अवस्था ही फिर सुन धीरे।
0: स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है, दोनों ही देश मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। लेकिन उधर इसराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। सवाल यह है कि युद्ध विराम होगा या फिर आगे बढ़ेगा संग्राम।

0: एक बार फिर इसराइल ने लेबनान को बनाया है निशाना। एक बार फिर इसराइल के हमले से धुआं धुआं हुआ है लेबनान। एक बार फिर शांति समझौते पर मली गई है बारूद। जी हाँ, इसराइल ने पिछले दो दिन में लेबनान में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए हैं, जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली फौज का आरोप है कि हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में उसे ये कार्रवाई करनी पड़ी है और आतंकियों के खिलाफ इस तरह के हमले जारी रहेंगे। खुद नेतन्याहू कई बार इजरायल का रुख साफ कर चुके हैं। इस जिद की वजह से हाल ही में ट्रंप को कई तल्ख बयान भी देने पड़े हैं, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि लेबनान में हिजबुल्ला की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
1: נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו, כשם שהחזרנו.
0: इजराइल के सैन्य अभियान को देखते हुए ईरान बिफर पड़ा है। ईरान ने शनिवार को ही सीज फायर टूटने के आरोप लगाकर होर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। अब एक तरफ इजराइल ट्रंप के पीस प्लान की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ होर्मुज का हाहाकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान और लेबनान की रणभूमि से हजारों मील दूर स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम पर अंतिम मुहर लगती है या फिर इजराइल की जिद ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फिरती है। आज तक ब्यूरो।
2: अब तो चला छोटे से ब्रेक है, कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस,
4: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: 50 स्टेट्स, 1 नेशनल मॉल, 2 वीक्स ऑफ फ्रीडम। The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
6: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
7: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
8: Oh, ouch.
7: However you make money work, we can work with that.
9: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
11: सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है? कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से, जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव जिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
12: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
13: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
14: प्लीज बज्जी पर, प्लीज डू ललन टॉक शो।
4: It's a request. And please to speak truth.
8: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
4: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? I challenge you बजीबा। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। I wanna ring you. Wait. Come.

0: कहने को कह दिया जाता है कि बड़े लोग बड़ी बातें, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सोशल मीडिया लड़ाई छोटी बातों से शुरू होकर ऐसी उलझी है कि फोटो सेशन से शुरू हुआ बवाल अब राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच गया है। मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल ट्रंप बार बार G7 में मेलोनी के व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। अब शनिवार को उन्होंने लिखा, फ्रांस में G7 मीटिंग के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बार बार मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश की। इटली में उनकी लोकप्रियता का स्तर गिर रहा है, ऐसा शायद इसलिए क्योंकि अब ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की बात आई तो उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था। मेलोनी ने हमें इटली के लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवे का इस्तेमाल नहीं करने दिया, जिससे बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल दिक्कत हुई। ये तब हुआ जब अमेरिका इटली और दूसरे नेटो सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। अमेरिका ने अब ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है, तो मेलोनी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से दोस्ती करना चाहती हैं, लेकिन नहीं, शुक्रिया। मेलोनी ने इसके जवाब में लिखा, ये लगातार और बिना किसी उकसावे के किए जा रहे हमले बिल्कुल बेमतलब हैं। जहाँ तक मेरी लोकप्रियता की बात है तो आपका दोस्त होने से इसमें कोई मदद नहीं मिली है और न ही ये आपके साथ मेरे रिश्तों पर निर्भर करती है। मेरी लोकप्रियता इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की मेरी काबिलियत पर निर्भर करती है और मैंने हमेशा यही किया है। इटली में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के मामले में भी हमने समझौता का सम्मान किया है। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मेलोनी इससे पहले भी ट्रंप का साफ शब्दों में जवाब दे चुकी हैं।
1: कुछ बातों का तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। दुख की बात है कि वे अमेरिका के दुश्मनों के साथ वैसी सख्ती नहीं दिखाते, बल्कि उनके प्रति वे कहीं ज्यादा नरम रुख अपनाते हैं। लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, मैं और इटली कभी भी गिड़गिड़ाते नहीं हैं।
0: यूरोपीय देशों के साथ ट्रंप की कई मुद्दों पर नहीं बनती, लेकिन इस बार इटली की पीएम के साथ ये तलखी मिसाइलों के वार से कम नहीं है। आज तक यूरोप।

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se paro.
2: In association with
3: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
4: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
5: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढांडियाल। अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच चल रही है। खबर है कि एसआईटी इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द ही सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारियां कर ली गई हैं।
6: क्या चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही? क्या चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई? क्या राम मंदिर में गड़बड़ी का ये मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। टिन्नू यादव एसआईटी के रडार पर हैं। नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के बीच आभूषण के गायब होने का दावा भी किया गया है।
7: है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
8: जी, ये पहले दी थी 34.6 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
7: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
8: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए। लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
6: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए शिलाएं दी थी।
8: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
7: दीपक आपने दिया था?
8: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
7: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
8: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
6: मामले में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई है। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई है, लेकिन ना ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और ना ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। एसआईटी जांच के अहम बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी हैं। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी अब सीसीटीवी की फोरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है, ताकि तय 45 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी एसआईटी जांच के दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। जांच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: इससे पहले एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ भी की थी, दस्तावेजों की पड़ताल की, ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई की जा सके। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी पाई गई तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

0: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: क्या 15 दिन में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों का पता चल जाएगा? क्या दान चोरी में शामिल बड़े से बड़े नाम को पकड़ लिया जाएगा? योगी ने दिया आश्वासन, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन सूबे के मुखिया ने भी 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये 19 जून की तस्वीरें हैं, जब योगी अयोध्या पहुंचे। योगी जब राम मंदिर दर्शन के लिए आए तो चंपत राय साथ में नहीं थे। योगी आए, रामलला के दर्शन किए, पूजा की, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दान पत्र में दान भी डाला। यही वो दान पत्र है जिनसे चोरी करने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह हर रोज लाखों राम भक्त इन दान पत्रों में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं और आरोप है कि इसी चढ़ावे की चोरी हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन आज योगी ने साफ कर दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
0: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
1: योगी के आश्वासन का मतलब ये तो नहीं है कि सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि कोई भी शामिल हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वो जनता को भरोसा देने में कामयाब रहे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि अगर लोगों के पास सबूत हैं तो वो एसआईटी को सौंपे। योगी ने लोगों से सिर्फ 15 दिन और इंतजार करने को कहा, क्योंकि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, और ये भी कहा कि अपराधी कोई भी हो वो बचेगा नहीं।
0: एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: चढ़ावा चोरी को सबसे ज्यादा तूल समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो पिछले 12 दिनों से लगातार इस केस को उठा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ चंदा चोर का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब इसे अलग मोड़ दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, तो योगी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो उपदेश न दे। अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। योगी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में कतई न आए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मंदिर जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनको फंसा न दिया जाए। योगी कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अखिलेश इसे महाघोटाला बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सनातन विरोधी गिरोह की गहरी पड़ताल होनी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम और उसका सम्मान हो, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं।
0: और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे।
1: सवाल है कि योगी की कही बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी की खबरें मिली तो वो बेहद आहत हुए हैं। लेकिन अब जब प्रदेश के मुखिया ने 15 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है तो क्या लोग संतुष्ट हैं?
2: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आज तक आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, तो उसमें अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं।
3: जिस तरीके से योगी जी ने कहा है, तो अभी भी आप लोगों को पूरी तरीके से अब विश्वास है या जिस तरीके की ये घटना निकल करके आ रही है ये भी आप लोगों को व्यथित कर रहा है?
4: जी नहीं, विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र, अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा?
5: और विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: Fifty states, one national mall. 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
7: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
8: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
9: Oh, ouch.
8: However you make money work, we can work with that.
10: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: To thrive in today's tech world, you need more than coding tutorials. That's why WGU's computer science degree teaches you the building blocks behind AI and automation, like algorithms, data structures, architecture, and more. You'll earn multiple industry certifications, gain real experience, and graduate with a degree employers trust. Plus, it's flexible, affordable, and online. Move your tech career forward at wgu.edu.
9: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.

0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में केंद्रीय मंत्रियों और शीर्ष नेताओं ने योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस बीच अहमदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। वहीं दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी योगाभ्यास किया और योग के महत्व पर प्रकाश डाला। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने योग किया। इस दौरान अभिनेता अक्षय कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस बीच दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित योग दिवस पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने योगाभ्यास किया। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योग किया। डिप्टी सीएम ने लोगों से योग को जीवन के सभी कार्यों की तरह अपनाने की सलाह दी। पूरे देश में योग दिवस पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़े केंद्रीय नेताओं और नागरिकों ने मिलकर योग कर स्वास्थ्य का संदेश दिया। आज तक ब्यूरो।
1: एक वक्त था जब योग पार्क आश्रम और घर के किसी शांत कोने तक सीमित नजर आता था। फिर 2015 में दुनिया ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और इसके बाद योग की पहुंच लगातार बढ़ती चली गई। देखते ही देखते सदियों पुरानी भारतीय परंपरा ने ग्लोबल वेलनेस इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बना ली। दिलचस्प बात है कि इस सफर में योग केवल सेहत का मंत्र नहीं रहा, ये एक बड़े कारोबार का रूप भी लेने लगा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का योग मार्केट 2025 में 5.06 अरब डॉलर का रहा, जबकि 2026 में इसके 5.56 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं 2033 तक ये बाजार 11 अरब डॉलर का हो सकता है और इसकी औसत सालाना ग्रोथ 10.2% रहने का अनुमान है। योग की इस बढ़ती ताकत का असर दुनिया भर में नजर आ रहा है। फिटनेस, मेंटल हेल्थ और वेलनेस को लेकर बढ़ी जागरूकता ने इसकी मांग को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ग्लोबल योग मार्केट 2025 में 127 अरब डॉलर का था और 2026 में ये करीब 139 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वहीं 2033 तक 269 अरब डॉलर का बाजार बनने की संभावना है और ग्लोबल स्तर पर 9.9% सालाना ग्रोथ का अनुमान है। योग की कहानी केवल मैट बिछाकर आसन करने तक सीमित नहीं है। इसके साथ स्टूडियो, ट्रेनिंग सेंटर, मोबाइल ऐप, कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम और वेलनेस टूरिज्म जैसे कई सेक्टर जुड़ चुके हैं। भारत में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ऑफलाइन क्लासेस और ट्रेनिंग सेंटर्स की है। हालांकि नई पीढ़ी तेजी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी बढ़ रही है। योग मार्केट में ऑफलाइन कोर्सेज की हिस्सेदारी 73% से ज्यादा है, वहीं महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 65% है, जबकि 30 से 50 साल के लोग सबसे बड़े ग्राहक वर्ग हैं और 18 से 29 साल का वर्ग सबसे तेज रफ्तार से जुड़ रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि योग बुजुर्गों या फिटनेस प्रेमियों तक सीमित नहीं रह गया है। नौकरी पेशा लोगों से लेकर कॉलेज जाने वाली पीढ़ी तक हर वर्ग इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है।
2: स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। उम्र का बढ़ना तय है लेकिन बीमारियों का नहीं। योगा से शरीर मजबूत, दिमाग शांत और आत्मा युवा रहती है। इंटरनेशनल योगा डे न केवल भारत को विश्व गुरु की भूमिका की तरफ ले जाने में मदद कर रहा है, अपितु योगा से जुड़े छोटे बड़े कई कारोबारों को स्थापित कर आत्मनिर्भर भारत में भी मदद कर रहा है।
1: 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के बाद भारत ने योग को दुनिया के सामने एक सांस्कृतिक ताकत के तौर पर पेश किया था। एक दशक बाद तस्वीर काफी बदल चुकी है। योग स्वास्थ्य के साथ रोजगार, उद्यमिता और वेलनेस कारोबार का भी बड़ा हिस्सा बन गया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
2: Oh, ouch.
1: However you make money work, we can work with that.
3: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
5: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
4: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
6: कई वीडियो की भरमार है। हाथ में हथियार लिए एक युवक कुछ दावे कुछ आरोप फिर गोलियों की आवाज और उसके बाद आई एनकाउंटर की खबर जिसके बाद बिहार का आरा धधक उठा। आरा के बिलौटी गांव का भरत भूषण तिवारी अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो बिहार की राजनीति, पुलिस की कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही के बीच खड़ा एक सवाल बन चुका है। विपक्ष इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है। बिहार पुलिस का दावा है कि भरत ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार की कहानी बिल्कुल अलग है। माँ कहती है कि बेटा सरेंडर कर चुका था। यहीं से ये मामला एक पुलिस कार्रवाई से निकलकर पूरे बिहार की राजनीति का विषय बन जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुरुआती बयान में कहा था कि उन्हें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक भरत भूषण तिवारी ने पुलिस पर फायरिंग की थी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन बाद में उसी मामले में न्यायिक जाँच के आदेश दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जाँच सुनिश्चित करना है। इस पूरे मामले ने बिहार सरकार को भी असहज कर दिया है, क्योंकि सिर्फ विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के बयान भी पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में जब एनकाउंटर के मुद्दे पर सियासत की रोटी पक रही है तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पुराने बयान भी वायरल होने लगते हैं, जिनमें अपराधियों को बिहार छोड़ने या शमशान जाने की चेतावनी दी गई थी।
7: अपराध करने वाला बचेगा नहीं, या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा, दूसरा कोई स्थान नहीं।
6: कभी कभी किसी की मौत की सबसे बड़ी गूंज शमशान में नहीं सवालों में सुनाई देती है। गोली की आवाज कुछ सेकंड रहती है, लेकिन न्याय की तलाश कई साल चलती है। राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूक नहीं, उसकी विश्वसनीयता होती है। अब बीजेपी के शासन की उसी विश्वसनीयता को अपने लोगों ने ही चैलेंज किया है।
8: बहुत शुक्रिया, भगवान से प्रार्थना है कि यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।
9: भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना, भरत भूषण तिवारी जी की मृत्यु जितनी दुखद है उतनी ही चिंताजनक भी है। किसी भी सभ्य समाज में जितना आवश्यक कानून व्यवस्था का होना होता है उतना ही आवश्यक ये होता है कि रक्षक भक्षक कभी ना बने।
6: भरत भूषण तिवारी अपराधी था या नहीं इसका फैसला अदालत और जांच करेगी। पुलिस सही थी या परिवार इसका जवाब जांच के बाद मिलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार को बाद में अपनी ही जानकारी पर पुनर्विचार करना पड़े तो जवाबदेही किसकी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में गोली का जवाब गोली नहीं सच देता है और सच तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ निष्पक्ष जांच से होकर जाता है और पूरा बिहार उसी सच का इंतजार कर रहा है। आरा से सोनू सिंह, और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई।
10: यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिस कर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में हो सकता है खुलासा, एसआईटी जल्द सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर भी किया गया हाथ साफ, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बिहार भारत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी पुलिस पर उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्ध पोत, दूनागिरी संशोधक और अग्रय, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किया समर्पित, कहा रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने मनाया योग उत्सव, कहा संतुलित जीवन के लिए योग जरूरी। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और खालिबाब के बीच अगुवाई में चर्चा, होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती।

0: सिर्फ वक्त का इंतजार है।
1: उन्होंने अपना जमीर, अपना सम्मान और अपना ईमान बेचा है। बंगाल की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे।
2: तो आप बीजेपी के साथ खुल्लम खुल्ला काम कीजिए ना, कौन रोका है आपको?
0: कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए।
1: किसी को ईडी से बचना है, किसी को सीबीआई से बचना है, किसी को पैसा मिल रहा है।
3: 15-15 करोड़ इन एडवांस, 50-60 करोड़ का डील है।
4: अब कोई घूट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
5: बाय हुक और बाय क्रूक हम 362 का आंकड़ा पाएं और डिलिमिटेशन का बिल पास कराएं।
6: जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा।
7: बिल पास कराने के लिए पार्टियों को तोड़ा जा रहा है।
0: जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है।
8: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आज तक में आपका स्वागत है। यूं तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग जिसका शाब्दिक अर्थ जोड़ना या मिलना है, शरीर मन आत्मा को संतुलित करने की वो प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति जिसको पूरी दुनिया आज फॉलो करती है। लेकिन इसी योग दिवस पर एक सियासी संयोग भी समझना जरूरी है। योग का अर्थ जोड़ना है और इस वक्त बागियों के जोड़ से एनडीए धीरे धीरे संसद में 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से ही हुई। वो बंगाल जहां योग दिवस पर प्रधानमंत्री पहुंचे, वो बंगाल जहां पहले जनता ने ममता बनर्जी की पार्टी को हराकर शीर्षासन कर दिया और फिर टीएमसी के 20 सांसदों ने विरोधासन करते हुए अपने समर्थन से एनडीए का सांसद योग बढ़ा दिया।

0: 21 जून यानी वो तारीख जब कहते हैं दिन सबसे बड़ा होता है, तब नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बड़े दिन पर पश्चिम बंगाल में मौजूद होते हैं। जिस बंगाल ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सियासी योग और संयोग बनाया, क्योंकि बंगाल में पहली बार सत्ता बीजेपी पाती है तो टीएमसी के बागियों के समर्थन से एनडीए 300 पार दिल्ली में हो जाती है। क्या ये गजब का संयोग नहीं है?
1: हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है।
0: पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठे बगावत के मानसून से इस वक्त ऐसा योग दिल्ली तक बन चुका है, जहां भले प्राकृतिक मानसूनी बारिश न पहुंच पाई लेकिन बगावती बादलों से देश की सत्ता में एनडीए को मजबूत करने वाले सांसद जरूर बरसे हैं। और तब गौर करिए, कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर पीएम केवल ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन ही नहीं करते बल्कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 12 वर्ष का रिकॉर्ड योग बना चुके नरेंद्र मोदी लोगों की योग मुद्राओं को सुधारते भी रेड रोड पर नजर आते हैं। जब योग दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, ऊर्जावान सक्रिय रह सकते हैं, तब इस योग का सियासी संयोग 360 समझिए। तीसरी बार सरकार बनाने पर जब बीजेपी खुद 2024 में बहुमत से दूर हुई और एनडीए 300 से नीचे रहा, यानी सत्ता में उम्र बढ़ी, ताकत नंबर में जब घटी, तो अब वापस विधानसभा चुनावों को लगातार जीतते हुए और क्षेत्रीय दलों में नेतृत्व से नाराज बागियों के समर्थन वाले योग से वापस एनडीए ऊर्जावान होने लगा है।
1: योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30।
0: 17 अप्रैल को लोकसभा में जब संविधान का 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद गिरा, तब बिल के पक्ष में 298 वोट मिले जबकि विरोध में 230 वोट पड़े थे। नरेंद्र मोदी सरकार को तब वहां उपस्थित 528 सांसदों में 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था, जो विपक्षी एकता के चलते नहीं मिल पाया। लेकिन तब 298 सांसदों का साथ लोकसभा में एनडीए के साथ रहा। अब आज के सियासी माहौल में इसी नंबर को आधार बनाकर चले तो 540 सांसदों की लोकसभा में जहां दो तिहाई बहुमत 360 होगा, वहां अप्रैल तक एनडीए 298 सांसदों तक पहुंचा हुआ है। और तब क्या मानसून सत्र जब एक महीने के भीतर शुरू होना है तो संसद के भीतर नरेंद्र मोदी के समर्थन में अब तक रहे 298 सांसदों के साथ 48 सांसदों का अतिरिक्त योग जुड़ चुका है। आप कहेंगे कैसे? 20 सांसद टीएमसी के जो बगावत करके एनसीपीआई नाम की पार्टी में खुद का विलय करा के दावा कर चुके हैं, इनके अलग बैठने और एनसीपीआई सदस्य के तौर पर मान्यता देने की याचिका पर स्पीकर मानसून सत्र से पहले फैसला लेंगे। स्पीकर पहले ही इंडिया ब्लॉक से अलग बैठने की डीएमके की याचिका पर फैसला कर चुके हैं। डीएमके के 22 सांसद अब मानसून सत्र में इंडिया गठबंधन के साथ सदन में बैठे नहीं दिखने वाले। तीसरा फैसला उद्धव गुट के बागी 6 सांसदों को लेकर है, जो स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं, अपने को शिंदे गुट में शामिल कर देने की चिट्ठी भी दे चुके हैं। इसी को अब 48 सांसदों का योग फिलहाल माना जा रहा है, अगर डीएमके का समर्थन नरेंद्र मोदी के मुद्दों पर भी रहता है।
2: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई घूट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
3: सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही। तुमच्यापैकी एक शिवसैनिक येऊ द्या, तो शिवसेना पक्षप्रमुख बनेल, मला त्याचं सुद्धा कौतुक वाटेल। मला नेतृत्वाची सोच नाही, मला नेतृत्वाची हाव नाहीये, मी आता हे पद सोडायला तयार आहे।
4: बाळासाहेबांचे विचार, धर्मवीरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
5: भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक हम 362 का आंकड़ा पाएं और डिलिमिटेशन का बिल पास कराएं। इसके बाद सुना है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन होगा।
0: उद्धव के सांसद टूटे तो भी दो तिहाई बहुमत से नरेंद्र मोदी लोकसभा में दूर दिखते हैं, और तब दावा है कि तमिलनाडु में जो राहुल गांधी ने डीएमके को छोड़कर टीवीके से हाथ मिलाया, वहां डीएमके दो दो हाथ इंडिया गठबंधन से अब कर लेना चाहती है। लेकिन क्या मोदी को लेकर स्टालिन मानेंगे, जिन्हें बीजेपी ये बताना चाहेगी कि देखो अगर आबादी के आधार पर परिसीमन होता है तो आबादी कंट्रोल करने वाले राज्य के तौर पर तमिलनाडु का नुकसान होगा, लेकिन 50% सीट बढ़ाने वाले फॉर्मूले से तमिलनाडु का ही फायदा है। और तब क्या टीएमसी के बागी 20, उद्धव के 6 बागी और डीएमके के 22 भी अगर साथ आ गए तो ये नंबर 346 तक भी पहुंच सकता है। फिर भी 540 की लोकसभा में दो तिहाई नंबर 360 से 14 कम होगा। और दावा इसके बाद ये भी है कि जेएमएम के 3 समेत कुछ अन्य छोटे दल के सांसद या तो समर्थन दे सकते हैं या वोटिंग में गैर हाजिरी की रणनीति से एनडीए को दो तिहाई वाले नंबर तक पहुंचा सकते हैं।
6: भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह 2/3 मेजोरिटी बनाई जाए, और उसके लिए वो टीएमसी को भी और उधर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को भी, और भी कोई भी अगर क्षेत्रीय पार्टी इस तरह की है तो उसको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: हमारा आत्मबल अजय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे।
7: पूरा विपक्ष जो 2024 में बीजेपी को 240 पर रोककर उत्साहित हुआ कि बस अब तो मोदी राज ढलने लगा है, उसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद एक झटका लगा ही था कि विपक्षी खेमे में बगावत के दौर ने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ विपक्ष के नेताओं पर बंगाल में नाराज लोग अंडा फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी के मिशन 360 को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाले ममता के बागियों ने ऐसा रास्ता चुना जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।
0: तस्वीर 15 जून की है, कोलकाता के कालीघाट में ममता बनर्जी का घर, हॉर्न बजाते तेजी से आती काले रंग की गाड़ी, मीडिया के तमाम कैमरों के बावजूद गाड़ी से उतरने वाले नेता का चेहरा नहीं दिखा। दो कार्यकर्ता कहें या सहयोगी कहें, काले छाते की ओट में अभिषेक बनर्जी का यहां बचाव करते दिखे। काले छाते की ओट में अभिषेक बनर्जी को बचाकर छाते की ढाल के बीच से ले जाते हैं। छाते की आड़ अभिषेक बनर्जी को इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि इन्हीं अभिषेक बनर्जी पर पहले अंडे से लेकर पत्थर तक फेंका गया। वो अभिषेक पिछले हफ्ते ममता बनर्जी के घर पहुंचते हैं तो छाते वाली ढाल ले लेते हैं। वही अभिषेक 19 जून को जब संसद पहुंचते हैं स्पीकर के पास अपने दल के बागी सांसदों की शिकायत करने, तो निकलते हुए चैलेंज अपने बागी सांसदों को देते हैं।
8: कई लोगों को अभी सेंट्रल सिक्योरिटी मिला है, जरा बोलिए आप सेंट्रल सिक्योरिटी लेके अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए, कोई आदमी नहीं मिलेगा जो इनके साथ खड़े हैं।
0: असल में अभिषेक बनर्जी अपने उन 20 पुराने साथी सांसदों को ये चैलेंज दे रहे हैं जो 14 जून को स्पीकर से मिल चुके हैं, जो कह चुके हैं कि हम लोग अब टीएमसी में नहीं, जो स्पीकर को बता चुके हैं कि हमने अब एनसीपीआई नाम की पार्टी में विलय करा लिया और एनडीए का समर्थन कर दिया है।
9: हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेंगे।
10: सांसद है हम 20, अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में याद रखा जाएगा। इसी घर पर NCPI यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष तक को हवा नहीं थी कि उनकी पार्टी जिसका कभी पार्षद तक नहीं जीता वो एक झटके में देश की संसद में NDA को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी पार्टी होने जा रही है।
11: ये खुद ही बोला है कि हम क्या नेशनल क्या पार्टी है, जो पार्टी का नाम ही नहीं जानता है, उस NCP पार्टी के साथ हम जुड़ेंगे। तो अब मर्जर तो आप लेजिस्लेटिव पार्टी कर ही नहीं सकते, तो आप पॉलिटिकल पार्टी तो हुआ नहीं है मर्जर हमारा, तो ये दोनों में इनका जाता है। अभी क्या कर सकता है, अभी हमने स्पीकर को दिया है।
8: यहाँ पे साफ लिखा हुआ है मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, नॉट जस्ट द लेजिस्लेटिव पार्टी। इसका मतलब अगर दल पार्टी ममता बनर्जी पार्टी के जितने भी कमिटी मेंबर्स है उसका 2/3 इंक्लूडिंग द नेशनल वर्किंग कमिटी, द स्टेट कमिटी, द फ्रंटल कमिटी, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है।
0: तो अब सवाल है कि क्या 20 सांसद जो ममता बनर्जी से बगावत करके NDA को समर्थन कर चुके हैं क्या वो अपनी सदस्यता बचा लेंगे? क्या ये संभव है कि NCPI नाम की जिस पार्टी में 2/3 सांसद के तौर पर वेला है ममता के बागियों ने दिखाया है और काकोली घोष जिस पार्टी के अध्यक्ष बन गई वो पार्टी संसद में बैठी हुई दिखेगी वो भी NDA के साथ?
12: We'll work together with the NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Home Minister Amit Shah ji. They are looking into the affair of this merger. How to use the schemes that were not implemented in West Bengal in the last 10 years.
8: आप छोड़ दीजिए, चुनाव होगा, आप बीजेपी का टिकट में, NCPI का टिकट में, कांग्रेस का टिकट में, तृणमूल का टिकट में या CPM का टिकट में लड़ा जाएगा। सब पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, जनता फैसला लेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप वैकेट कर दीजिए अपना सीट। ये सब के साथ ये 20 लोग जिस तरीके से बेईमानी करके इस संविधान को एकदम डिसोबे करके उन्होंने अपना जमीर, अपना सम्मान और अपना ईमान बेचा है, बंगाल के जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगे।
13: घोषणा मिली चो अधिकांश सांसद अधिकांश विधायक सकल उद्योग जो दल चलू ममता बनर्जी प्रधान उपदेष्टा हक दल नेत्री मतन एक भूमिका नहीं थकुक हमारे कथाओ आवेदन तक स्पर्श कर सिद्धांत निल
11: तो आप बीजेपी के साथ खुल्लम खुल्ला काम कीजिए ना, कौन रोका है आपको? आप रिजाइन कीजिए, बीजेपी से टिकट लीजिए, जीत के आइए हुगली से, किसने रोका है? मुर्शिदाबाद में खलीलुल साहब को हम कहते हैं आप जाइए बीजेपी में, जीत के आइए। आबू ताहिर साहब से कहते हैं कि आप खुल्लम खुल्ला कीजिए। हम तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं भैया, खुल्लम खुल्लम करते हैं, मरते दम तक करेंगे। कोई रहे कोई ना रहे हम करेंगे, जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है भाड़ में जाओ।
0: बगावत की इस कहानी में संघर्ष सड़क तक दिख रही है, जहां शुक्रवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर बीजेपी और TMC कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो जाती है, चारों तरफ अफरा तफरी बच जाती है। ये सब तब होता है जब एयरपोर्ट पर TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचने वाले अंडे वाली ट्रे फेंकी जाती दिखती है। दावा हुआ कि यहां अंडा फेंका जाना था। ये तस्वीर बताती है कि अभी बंगाल से दिल्ली तक संघर्ष लंबा चलने वाला है
11: और जनता हमें अंडे फेंकने नहीं आ रही है। बीजेपी के चार बदमाश आ रहे हैं, ये कितना दिन इनका दम है हम भी देखेंगे। देखिए, बीजेपी ने साफ कर दिया हमको तृणमूलीकरण नहीं करना है। बीजेपी जिस MLAs को, जिस जिला परिषद को, जिस पंचायत को इतना दिन चोर चोर चोर चोर बोला, अगर आज तो उनके साथ ही वो घर में बैठ रहे, उनके साथ ही एक थाली में खा रहे, तो कल अगर रचना बनर्जी को ले, शताब्दी राय को ले, काकोली को ले, तो उनके अगेंस्ट में जो बीजेपी खड़ा हुआ था उसको तो टिकट डिनाई करके इनको टिकट देना पड़ेगा, तो अपना संगठन कैसे चलाएगा?
14: एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है।
9: नया जो खेला शुरू हुआ है जो हम ज्वाइंट गवर्नमेंट मीन्स हमारा डबल इंजन का सरकार एक साथ मिलके कंधा में कंधा मिला के काम करने।
0: बागियों को भरोसा है कि जो पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ एक बार हो चुका है उसी नियम से इस बार बंगाल में भी बागी अलग दल के तौर पर मान्यता पा लेंगे और राजनीति चलती रहेगी। इसीलिए आज हमने पूछा है कि क्या बंगाल से ही नरेंद्र मोदी को दो तिहाई ताकत तक पहुंचा देने वाला योग सबसे पहले बनना शुरू हुआ है।
15: अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखन इतिहास गोरबे, एखन काट माने शेष।
7: मॉनसून सत्र से पहले इस वक्त एनडीए के पाले में ऐसा चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है कि धीरे धीरे बागी जुड़ते जा रहे हैं। पहले पंजाब जहां बीजेपी के विधायक केवल दो हैं, लेकिन वहां शासन करने वाली आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, फिर टीएमसी, और इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी को चार साल में दूसरी बार झटका लगा जब उनके छह सांसद पार्टी की तरफ से जारी व्हिप को ठेंगा दिखाकर चार्टर्ड फ्लाइट से उड़े और सीधे दिल्ली पहुंचकर स्पीकर को अपने दिल और दल में बदलाव की कहानी सुना दी।

0: एक पार्टी जिसमें बाला साहब ठाकरे की कही गई बात पत्थर की लकीर होती थी।
1: दिस इज माय मुंबई एंड वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू कीप इट क्लीन, दैट्स ऑल।
0: बाल ठाकरे के हाथों 60 साल पहले बनाई गई वो शिवसेना जहां खुद बाल ठाकरे कहते थे बागियों के साथ क्या करना है।
2: शिवसेनेच्या तिकडावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात मग त्याला काय ओवाडू। आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा।
0: लेकिन इस तरह के वीडियो को जारी करके भी उद्धव ठाकरे की पार्टी खुद के सांसदों की बगावत रोक नहीं पाई।
3: उद्धव साहब आगे बढ़ो, अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
0: राजनीति का इसे भी अजब संयोग ही कहिए, जहां शेर आया के नारे के बीच उद्धव ठाकरे 4 साल में दूसरी बार टूटती पार्टी का स्थापना दिवस मना चुके हैं। वहां उनके बुलाने पर भी दिल्ली में उन्हीं के सांसद बैठक करने नहीं पहुंचे। टूट की अटकलों के बीच पुरानी संसद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने संसदीय दल की बैठक बुलाई जिसमें जाते हुए संजय राउत के इस बयान और उनके हाव भाव ने जो कुछ बताया उस पर तस्वीर ने मुहर लगा दी। नौ लोकसभा में एक राज्यसभा में कुल 10 सांसद वाली उद्धव की पार्टी के जब केवल 3 सांसद बैठक करते 18 तारीख को दिखे तो साफ हो गया 60 साल पुरानी शिवसेना बगावत के नए तीर से जख्मी हो चुकी है। जहां की बगावत की मशाल संजय पाटिल, संजय देशमुख, नागेश अष्टिकर, ओम राजे निम्बालकर, भाऊ साहब वाकचौरे और संजय जाधव के हाथ में है।
4: जो सदस्य यहां नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं कि पार्टी हित का उल्लंघन है, पार्टी का आदेश नहीं माना है, तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द।
0: 4 साल बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक बार फिर टूट हुई जहां उद्धव ठाकरे को खुद पार्टी प्रमुख पद छोड़ने तक का दांव चलना पड़ता है ताकि नाराजगी को बढ़ने से रोका जा सके।
5: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही। तुमच्यापैकी एक शिवसैनिक येऊ द्या, तो शिवसेना पक्षप्रमुख बनेल, मला त्याची त्याचं सुद्धा कौतुक वाटेल। मला नेतृत्वाची सोच नाही, मला नेतृत्वाची हाव नाही आहे, मी आत्ता हे पद सोडायला तयार आहे।
0: मानो महाराष्ट्र में कहकर सांसद तोड़ने वाली राजनीति चली जहां पोस्टर ऑपरेशन टाइगर के लगाए गए। जवाब में उद्धव के सिपा सालार संजय राउत ने ऑपरेशन वुल्फ चलाने की बात तो कही लेकिन ऑपरेशन शिंदे ही कर पाए।
6: अरे तो कंपाउंडर है ना, कंपाउंडर कसा ऑपरेशन करणार, इथे श्रीकांत शिंदे खरा डॉक्टर है, पण मी डॉक्टर नसलो तरी अजूनही ऑपरेशन करतो।
0: उद्धव के बागी शिंदे के साथ जाते हैं तो ताकत सीधे संसद में नरेंद्र मोदी की बढ़ती, जहां ऑपरेशन टाइगर को अंजाम देने का काम 16 जून से शुरू होता है, जब बागी नागेश पाटिल आधी रात 1:30 बजे प्राइवेट जेट से नांदेड़ से दिल्ली आते हैं। इसी दिन नांदेड़ से संजय देशमुख और संजय जाधव भी अलग निजी विमान से दिल्ली पहुँचते हैं। तब भाऊसाहब वाघचूरे हैदराबाद से दिल्ली पहुंचे। जानकारी के मुताबिक संजय पाटिल और विधायक प्रताप सरनायक भी 16 जून की रात को दिल्ली आए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई से 17 जून की सुबह करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचे। सूत्र कहते हैं कि ओमराजे निंबालकर और श्रीकांत शिंदे भी पुणे से दिल्ली पहुंचे और सुबह 4:30 बजे राजधानी में मौजूद थे। दिल्ली पहुंचने के बाद बागी सांसदों को नोएडा के एक होटल में ठहराया गया। 17 जून की सुबह घटनाक्रम ने तेजी पकड़ी। सूत्रों के मुताबिक 17 जून की सुबह 7 बजे श्रीकांत शिंदे और ओमराजे निंबालकर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इसके बाद सुबह 10:20 पर ओमराजे निंबालकर समेत दूसरे सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात करके एक चिट्ठी दी।
7: सूत्रों के अनुसार यूबीटी के 6 सांसदों ने हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा है। इस प्रस्ताव में इन बागी सांसदों ने ये कहा है कि पार्टी मूल विचारधारा से भटक गई है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यूबीटी का विलय कांग्रेस में कराना चाहते हैं, इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ पार्टी में शामिल होना चाहते हैं।
0: स्पीकर से मुलाकात के बाद सांसद अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो गए। सूत्र कहते हैं कि नागेश अष्टीकर चेन्नई होते हुए तिरुपति दर्शन के लिए गए। भाऊ साहब वाघचूरे वाराणसी रवाना हुए। संजय देशमुख और संजय जाधव अयोध्या पहुंचे, जबकि संजय दीना पाटिल मुंबई और ओम राजे निंबालकर पुणे चले गए।
8: शिवसेना 60 साल की हो चुकी है, लेकिन आपका सवाल होगा कौन सी शिवसेना, क्योंकि जो असली शिवसेना है उसकी पहचान नाम सब बगावत करके एकनाथ शिंदे पहले ही हासिल कर चुके हैं। विधायकों के बाद अब सांसद भी बगावत के रास्ते पर निकल पड़े हैं। उद्धव ठाकरे इस्तीफे का ऑफर देकर इमोशनल दांव चल रहे हैं ताकि जैसे तैसे बची खुची पार्टी बच जाए, लेकिन बागी याद दिला रहे कि अगर बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से समझौता नहीं किया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ब्रांड ठाकरे के सामने अस्तित्व का संकट पैदा नहीं होता।
9: पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए।
0: कहा जाता है कि बिना मांगे दी गई सलाह अक्सर उल्टी पड़ जाती है। संजय राउत के साथ भी क्या यही हो रहा है, जिनके इस बयान को शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों ने बगावत की दलील बना दी।
10: सभी सांसद विधायकों को ये लगाऊंगा कि भाई संजय राउत, उद्धव जी, हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष है।
0: तो क्या इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों की आधिकारिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए जो अलग से हाजिरी रजिस्टर तैयार किया गया उसमें सिर्फ 3 ही सांसदों की उपस्थिति दर्ज हो पाई?
11: पहले लोकसभा का प्रोसेस पूरा होने दो, बाद में आप जाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये लड़ाई आप संसद में भी चलेगी, कोर्ट में भी चलेगी और सड़क पर भी चलेगी, और सड़क पर की लड़ाई शुरू हो गई है। मुंबई महाराष्ट्र में आप देखिए तो सभी जो ये गद्दार लोग है भाई वहाँ, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, पूरा तामझाम। आप भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए, यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए।
0: शिवसेना यूबीटी में बगावत से संजय राउत आग बबूला है और लगातार बागी सांसदों पर तीखे हमले करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए खुलेआम धमकी दे रहे हैं।
12: उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, जाए वो, अगर वो जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा।
13: इस बार

0: टूट गया। उधर एकनाथ शिंदे की बगावत के 4 साल भी पूरे नहीं हुए, अब उद्धव की पार्टी के 2/3 सांसद अलग हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे की कांग्रेस से नजदीकी को कई रणनीतिक विशेषज्ञ उनके पार्टी के पतन और पार्टी में टूट का बड़ा कारण मानते हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद पार्टी क्या आत्ममंथन करती दिखती है?
1: सर कोर्ट का भी रुख करेंगे,
2: देखेंगे। कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं आती।
3: सर जिस दिन
2: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग।
0: बाला साहब ठाकरे की बनाई शिवसेना की पहचान कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही, लेकिन बीजेपी से मतभेद के बाद उद्धव ने कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिला लिया। उद्धव मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन शिवसेना के पार्टी नेताओं ने सरकार में कांग्रेस और एनसीपी को ज्यादा महत्व मिलने की शिकायत रखी। जानकार कहते हैं कि यहीं से पार्टी में असंतोष के बीज फूटने शुरू हुए और अब नौबत विधायकों के बाद सांसद टूटने तक आ पहुंची है। इसी
4: बीजेपी 2/3 बहुमत को जुटाने में आखिर क्यों लगी है? इसकी वजह परिसीमन बिल है, जो 2029 को लेकर मोदी सरकार के बड़े सियासी एजेंडे की तरफ पहला बड़ा कदम है। सवाल यह है कि जिस परिसीमन का मतलब आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को दोबारा तय करना है, जिससे लोकसभा की कुल सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से 850 हो जाएगी, ऐसा करके आखिर पीएम मोदी 2029 को लेकर क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं?
5: यू आर टेलिंग द साउथ इंडियन स्टेट्स, यू आर टेलिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यू आर टेलिंग स्मॉल स्टेट्स इन इंडिया दैट इन ऑर्डर फॉर द बीजेपी टू रिमेन इन पावर वी आर गोइंग टू टेक अवे रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यू। दिस इज नथिंग शॉर्ट of an anti-national act. This is what you are doing.
0: जिस परिसीमन बिल को देश विरोधी बताते हुए विपक्ष ने पास नहीं होने दिया कि सरकार ने उसे पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत जुटा लिए।
5: So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state.
0: बड़ी बात है कि असम में बीजेपी की प्रचंड जीत में परिसीमन एक अप्रत्याशित फैक्टर साबित हुआ, जिसने असम में बीजेपी के दोनों विरोधियों कांग्रेस और AIUDF के सामने अस्तित्व का संकट लाकर खड़ा कर दिया। सवाल है कि संसद में परिसीमन बिल पास होने से क्या विपक्ष के सामने ऐसा ही संकट पैदा हो सकता है? इसीलिए वो किसी भी कीमत पर इसे पास नहीं होने देना चाहते।
5: व्हाट यू आर अटेम्प्टिंग इज टेकिंग अवे द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट and snatching that from the people of India. We are not going to allow you. You will see we will defeat this bill right here.
0: अप्रैल में विपक्ष ने परिसीमन बिल को पास नहीं होने दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणाम ने देश की राजनीतिक तस्वीर बदल दी। मौजूदा माहौल में परिसीमन विधेयक को फिर से संसद में लाकर पास करवाए जाने की चर्चा हो रही है।
6: कर्नाटक को नहीं, निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकार रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूँ, वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूँ, क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी।
0: इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक सुझाव भी आया, जिसने भविष्य में लोकसभा सीटों के विस्तार का एक खाका खींच दिया है। इसमें लोकसभा की सीटें 824 करने के लिए सिर्फ 170 बड़े लोकसभा क्षेत्र में से 59 को दो भागों में और बाकी 111 को 3-3 लोकसभा क्षेत्रों में बांटने का सुझाव शामिल है। बीजेपी को नए सिरे से परिसीमन विधेयक लाने का हौसला पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मिला। यहाँ के सत्ताधारी रहे दोनों दलों ने अप्रैल में लोकसभा में विधेयक पास नहीं होने देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन टीएमसी टूट गई है, वहीं डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। इसी बात से बीजेपी के हौसले बुलंद है, क्योंकि वो पहले से ही परिसीमन को लेकर डीएमके जैसे दलों की मांग को स्वीकार करने को तैयार रही है।

0: बाईपास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
1: ये झूठ फैलाया गया कि डीलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा।
2: अब सवाल है कि परिसीमन को लेकर बीजेपी इतनी उतावली क्यों है? क्या इससे कोई राजनीतिक फायदा हो सकता है? इसे समझने के लिए ताजा उदाहरण असम का है। परिसीमन के कारण मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या घटकर 35 से 22 हो गई। हालांकि विधानसभा सीटों की संख्या 126 ही रही, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, मगर परिसीमन ने प्रतिनिधित्व के समीकरण को बदल दिया, जिसमें मुस्लिम विधायकों की संख्या 25 से कम रही, जबकि असम के मूल निवासी 90 सीटों के मुकाबले 103 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने लगे। 2023 के परिसीमन से न केवल उन निर्वाचन क्षेत्रों का महत्व कम हुआ जहां बंगाली मूल के मुस्लिम मतदाताओं का लंबे समय से दबदबा रहा था, वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 16 से बढ़कर 19 हो जाती है, अनुसूचित जाति की सीटें 1 से बढ़कर 9 हो गई
3: की बात की गई है। जिस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन ने असम में और जम्मू एंड कश्मीर में अपना काम किया है, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि डीलिमिटेशन कमीशन बीजेपी के हाथ में एक हथियार है बहुमत पाने के लिए।
2: इस तरह असम की नई चुनावी भौगोलिक परिस्थिति ने चुनाव से पहले ही विपक्ष के संतुलन को बिगाड़ दिया और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की।
4: तो अभिषेक जी को, अमित शाह जी को चैलेंज देने का दरकार नहीं है। 7 तारीख रिजल्ट होगा, 6 तारीख अभिषेक जी दुबई चला जाएगा।
2: परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को प्रभावी ढंग से लोकसभा और विधानसभाओं में लागू किया जाना है। परिसीमन को वन नेशन वन इलेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि 2029 में देश भर में एक साथ चुनाव कराया जा सके। इस तरह परिसीमन बिल नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े एजेंडे की पहली सीढ़ी है, जिसे लेकर मोदी पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। बड़ी बात यह कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तय की गई सीमाओं और सीटों को संसद या राज्य विधानसभा बदल नहीं सकती, वो केवल इन्हें स्वीकार करती है। साउथ इंडियन स्टेट जनगणना की प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी, जिसके परिणाम प्रकाशित होने के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने में 3 साल तक का समय लग सकता है, यानी सरकार की तैयारी 2029 को लेकर साफ मानी जाती है।
5: राजनीति का एक मशहूर जुमला है, अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति में एक सप्ताह बहुत लंबा समय होता है। आज भले ही मोदी सरकार विपक्ष पर भारी दिख रही हो, लेकिन याद कीजिए 2 साल पहले जब 4 जून को नतीजे आए थे, तब इंडिया गठबंधन के तेवर विजेता वाले थे। तब पीएम मोदी ने कहा था कि हम न तो हारे थे और न ही हारे हैं। आगे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में होनी है, जहां चुनाव से 8 महीने पहले समाजवादी पार्टी के खेमे में बगावत का दावा किया जाने लगा।
2: उत्तर प्रदेश की इन 2 खबरों में क्या एक रिश्ता हो सकता है? जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में घेरती है, पूछती है कि राम का पैसा भी जो नहीं छोड़ रहे वो जनता को क्या छोड़ेंगे, वहीं बीजेपी की तरफ से तब समाजवादी पार्टी में बगावत की बू वाले दावे किए जाने लगते हैं।
6: समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव दे चुकी है।
7: पूरी उम्मीद रखिए, जो हस्त टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है, उससे बुरा हस्त समाजवादी पार्टी का 2027 में चुनाव में चारों खाने जब जीत होंगे तो ये सैफई में नजर आएंगे।
8: राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी समाजवादी पार्टी या यूं कहें अखिलेश यादव के साथ एक सियासी माइंड गेम खेल रही है। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के टूटने के बाद अब बीजेपी की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को भी कमजोर और असहाय दिखाया जाए, और अगर पार्टी सचमुच कमजोर हुई या उसका मनोबल ऐसे प्रयासों से टूटा तो बीजेपी के लिए 27 आसान हो जाएगा। लेकिन क्या ये होगा, ये बड़ा सवाल है।
2: इस माइंड गेम को आज आप समझ लें, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बगावत वाली खबर फैलाने के पीछे माइंड गेम नंबर 1, समाजवादी पार्टी की पिछड़े और दलित की ताकत में टूट का दावा करना। बगावत की इस पूरी खबर में ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले तीन जिन नेताओं ने समाजवादी पार्टी में टूट का दावा करना शुरू किया है वो तीनों ओबीसी समाज से आते हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और अब संजय निषाद।
9: उनकी बात पहुंचाते हैं,
10: सांसदों की बात
9: भाई, उनकी बात पहुंचा दी भाई। अब वो
10: पहुंचा दी,
9: अभी दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बात पहुंचा दी कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
10: आप कितने लोग हैं
9: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
10: समाजवादी पार्टी के।
9: हाँ, उनके लोग
10: विधायक भी हैं, केवल सांसद
9: के, कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, क्योंकि भाई आगे चुनाव।
2: तो क्या अखिलेश यादव के पिछड़े दलित वोट, पिछड़े दलित नेता वाली 2024 की ताकत को बीजेपी और उससे जुड़े सहयोगी दल कमजोर करना चाहते हैं? जहां 37 में 19 सांसद ओबीसी समाजवादी पार्टी के जीते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में अगर कुल 17 दलित आरक्षित सीट हैं, तो 8 दलित सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हैं। क्या इसीलिए पिछड़े वर्ग के नेता ज्यादातर अखिलेश की पार्टी में टूटने का दावा करने लगे हैं?
11: जितने भी दलित पिछड़े हैं सब यादव से दुखी हैं, ये पीडीए की बात करते हैं और पिछड़ों को अपमानित करते हैं, ये दलित की बात करते हैं, दलित सांसदों को सम्मान नहीं देते हैं। तो ये नौजवान हैं और ये अपने सम्मान के भूखे लोग हैं कि हम सांसद बने तो हमें सांसद का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनको सांसद का सम्मान नहीं मिल रहा है। इस नाते पूर्वांचल के कई सांसद, दलित सांसद, पिछड़े सांसद ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए।
5: 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए और तब विपक्षी दलों में हाल के दल बदल बगावत वाली खबरों के बीच सवाल यह आता है कि 12 साल पहले कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ शुरू हुई बीजेपी की राजनीतिक यात्रा क्या ऐसे मोड़ तक पहुंच गई है जहां क्षेत्रीय दलों का महत्व सिमटता जा रहा है?
2: नब्बे के दशक से क्षेत्रीय दलों ने राज्यों से लेकर देश की सियासत तक में जो मजबूती हासिल की, क्या उस राजनीति का संक्रमण काल शुरू हो चुका है? देश के नक्शे पर इसे देखिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 15 साल शासन किया, मजबूत क्षेत्रीय दल रहे। अब टीएमसी टूट चुकी है, 20 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 64 विधायक बागी हो चुके हैं, पार्टी पहचान सिंबल तक पर बागी आगे दावा करने वाले। उत्तर प्रदेश चलिए, जहां कांग्रेस की ताकत कम होने के साथ 1990 से क्षेत्रीय दल की पहचान मजबूत होने लगी। पहले मुलायम सिंह की अगुवाई में समाजवादी पार्टी, फिर मायावती के नेतृत्व में बीएसपी, फिर अखिलेश यादव के साथ एसपी की सरकार बनी, लेकिन अब बीएसपी का एक भी सांसद नहीं, केवल एक विधायक यूपी में। समाजवादी पार्टी लोकसभा में ताकतवर बनी, लेकिन 9 साल पहले पारिवारिक झंझावात झेल चुकी पार्टी में दावा फिर से नाराजगी हो सकती है, ऐसी अटकलें चली। महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, जहां क्षेत्रीय ताकत के रूप में शिवसेना और एनसीपी सत्ता में ताकतवर साझेदार रहे। शिवसेना 4 साल पहले टूटी, टूटकर शिंदे की शिवसेना अब सपोर्टिंग सियासत में आ चुकी है। उद्धव की बची हुई शिवसेना फिर टूट रही। महाराष्ट्र में एनसीपी टूटी तो 2 गुट बने, अजित पवार की पार्टी एनडीए के साथ। अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सत्ता में साझेदार, शरद पवार की पार्टी का दायरा सीमित हुआ है। बिहार में जेडीयू अब छोटा भाई बन चुकी है, मुख्यमंत्री बीजेपी के हो चुके हैं। आरजेडी की सियासी ताकत संख्या बल में सिमट चुकी है। एलजेपी हो, मांझी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सब सत्ता के साथ है तो चल रही है। पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अकाली दल सिमट रही है। ओडिशा में बीजू जनता दल चुनावी पराजय और नवीन पटनायक की स्वास्थ्य स्थिति कमजोर होने के बाद बहुत ताकतवर हालत में है नहीं। तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, हालांकि अभी विधानसभा में विपक्ष की पार्टी वही है।
12: डरी हुई है, 2029 तक को किसी रीजनल पार्टीज को कांग्रेस के साथ जो काम कर रहे हैं उनको नहीं रखना चाहती। दूसरी बात, ये 850 वाला लोकसभा का आंकड़ा लेकर संविधान में बदल करेंगे, संविधान बदलने के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म करेंगे और इस देश में वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं, हुकुमशाही, तानाशाही, इसलिए सब चल रहा है, लेकिन हमें होने नहीं दे।
2: एक सच ये भी है कि तमिलनाडु, जहां डीएमके और एआईडीएमके के सामने टीवीके के उदय के साथ नई क्षेत्रीय ताकत मजबूत हुई, ऐसे में ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि क्षेत्रीय दलों की सियासत अभी संक्रमण काल से गुजर रही है। व्यक्तिवाद, वंशवाद पर आधारित दलों के लिए चुनौती है, विचार पर जो चलेगा वही टिकेगा।
5: संसद का मानसून सत्र अगले महीने से शुरू होना है। 360 का दो तिहाई वाला आंकड़ा फिलहाल थोड़ा दूर है, लेकिन क्या मानसून जब तक दिल्ली पहुंचेगा उससे पहले बगावत की नई बारिश कहीं और हो सकती है? हर खबर पर आज तक की नजर रहेगी। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
13: States, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
14: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
15: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
16: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
17: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
19: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
20: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
21: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
20: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
22: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
23: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
4: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
3: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
5: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
9: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता।
10: आग जलाए या तूफान झिंझोड़े,
11: मौसम बदले फिर भी हर सपना खड़ा रहे,
12: क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो
13: आपका घर कभी नहीं हिलता।
14: रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
15: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
16: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
17: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
18: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTA को पता नहीं।
16: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
19: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
17: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
16: जहां खबर वहां खबरदार।
20: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
22: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
21: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
22: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। वेट कम।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री राम सिर्फ नाम नहीं, भगवान श्री राम आस्था है। राम इस देश का विश्वास है, सदियों की प्रतीक्षा, पीढ़ियों का बलिदान और न जाने कितनी आंखों के आंसुओं से सींच कर भव्य मंदिर की चौखट खड़ी हुई। इस देश में सुबह की पहली किरण राम राम से फूटती है और जीवन का अंतिम सफर भी इसी नाम के सहारे पूरा होता है। राम नाम सत्य है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक क्षण में राजपाट को तिनके की तरह छोड़ दिया, त्याग की उस पराकाष्ठा के घर में कुछ धूर्त, दरिद्र और महापापियों ने डकैती डाल दी। सोचिए, जिस मंदिर निर्माण के लिए एक भिखारी तक ने अपनी दिन भर की भिक्षा सौंप दी थी, कचरा बिनने वाली मां ने अपनी सीने से लगाकर रखे चंद सिक्के प्रभु के चरणों में रख दिए थे, ये सोचकर कि ये राम काज है। श्री राम की भक्ति में लीन भक्त धन नहीं, अपने भाव दान पात्र में समर्पित करते हैं, इस भरोसे के साथ कि वो अपने आराध्य, अपने प्रभु के लिए कुछ समर्पण कर रहे हैं। लेकिन चंद रुपयों के भूखे अंतरात्मा से कंगालों ने करोड़ों राम भक्तों के भरोसे पर डाका डाल दिया है। अभी तो SIT की जांच आनी बाकी है, लेकिन कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और ऐसे लोग लगा रहे हैं जो इस मंदिर से जुड़े रहे हैं, उसके निर्माण से जुड़े रहे हैं, उसमें काम करते रहे हैं। ये सिर्फ धन की हेराफेरी नहीं है, ये सनातन की आत्मा पर आघात है। ये सिर्फ भक्तों के साथ छल नहीं, साक्षात नारायण से दगाबाजी है। राम के घर से चोरी करने वालों, तुम इतिहास के सबसे बड़े कपटी और दरिद्र माने जाओगे। तुम कैसे इस महापाप का प्रायश्चित कर पाओगे? आज हर राम भक्त आहत है, उसके हृदय में वेदना है। रामद्रोहियों को न्याय के कटघरे में खड़ा देखने का इंतजार है और आक्रोश भी। प्रभु राम के दोषियों को ना ये समाज क्षमा करेगा और ना वो कालचक्र जिसके नियंता खुद राघव है। आरोप है कि अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर में जो चंदा श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया, उस चढ़ावे के पैसों में से लगभग 200 करोड़ रुपए चोरी हो गए। ये आरोप है। ये दावा है कि जिन लोगों ने ये चोरी की, उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए हैं, अलग अलग जगहों पर जमीन खरीदी है, दुकानें खरीद ली हैं, नई नई जमीनें वो खरीद रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। इस देश के ना जाने कितनी पीढ़ियां हैं जिन्होंने अयोध्या की राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने का सपना देखा, इसके लिए संघर्ष किया, गोलियां तक खाई, तब जाकर लगभग 500 सालों के बाद भगवान श्री राम की प्रतिमा उनकी इस जन्मभूमि पर स्थापित हुई। ये तस्वीरें आज भी आप लोग भूले नहीं होंगे। 22 जनवरी 2024 को जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया, तब पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव मना, हर घर में दिए जले। भगवान श्री राम का उनकी जन्मभूमि पर लौटने का अद्भुत अकल्पनीय दृश्य भी इस देश में देखा गया। लेकिन आज इसी देश के लोगों को ये सुनना पड़ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्रों से 200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हो गया, जिसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 सदस्यों की एक SIT भी बना दी। तो हमने सोचा कि आज इसके लिए, चूंकि अब तो SIT की टीम भी बन गई है जांच करने के लिए,

0: जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया तो पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव मना। हर घर में दिए जले, भगवान श्री राम का उनकी जन्मभूमि पर लौटने का अद्भुत अकल्पनीय दृश्य भी इस देश में देखा गया। लेकिन आज इसी देश के लोगों को यह सुनना पड़ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्रों से 200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हो गया, जिसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 सदस्यों की एक SIT भी बना दी। तो हमने सोचा कि आज इसके लिए, चूंकि अब तो SIT की टीम भी बन गई है जांच करने के लिए, तो सवाल यह है कि जो तथ्य अभी तक जानकारी में है वो हम आपके सामने उसी तरीके से रखें ताकि आप भी समझ जाएं कि आखिर कि भाई ऐसी क्या बातें हैं जो शक पैदा कर रही है। असल में भगवान राम के मंदिर और उनके पूरे परिसर में कुल 40 दान पेटियां लगाई गई हैं, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंदिर आने वाले लोग अपनी श्रद्धा से दान देते हैं। अब आरोप यह है कि दान पेटियों में हर रोज जो पैसा आता है उसमें से कुछ चंदे को गिनती से पहले या गिनती के दौरान चुरा लिया जाता है। यह भी तब होता था जब चंदे की गिनती के लिए एक व्यवस्था यहां पर बनाई गई थी। ये AI वीडियो है जिससे हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऐसे दान पत्र हैं, 40 दान पत्र, और फिर कैसी व्यवस्था की गई है वहां पर काउंटिंग के लिए। आरोप है कि काउंटिंग से पहले या काउंटिंग के दौरान निकाल लिया जाता है पैसा। अब ये पूरा जो काउंटिंग का काम है ये CCTV कैमरों की निगरानी में होता था। सबसे गंभीर आरोप यह है कि चंदे का सबसे बड़ा हिस्सा महाकुंभ के दौरान चुराया गया। महाकुंभ के वक्त बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के बाद भगवान राम के मंदिर आ रहे थे। भाई प्रयागराज तक तो जो पहुंचे हैं कुंभ के लिए, तो वहां से इतना करीब, वहां तक आने के बाद भगवान राम के मंदिर में जरूर जाएं, जिससे मंदिर प्रशासन को काफी दान मिला। और आरोप है कि उन्हीं दिनों में महाकुंभ के दौरान हर दिन दान पेटियों से 10 लाख 15 लाख ऐसे चोरी हुई। जिन लोगों द्वारा ये चोरी की गई उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन इन लोगों ने ही चोरी की है इसके अभी प्रमाण नहीं आए हैं, लेकिन इन पर आरोप है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें मुख्य रूप से अभी 6 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, KD तिवारी और मनीष यादव शामिल है। ये सारे वो लोग हैं जो चंदे की गिनती या मंदिर प्रशासन के कामकाज से जुड़े हुए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें भी लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस को 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। पुलिस ने अब तक ये नहीं बताया है कि इस पैसे का संबंध राम मंदिर से चोरी हुए चंदे से है या फिर नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि इतना कैश इस व्यक्ति के घर में कैसे आया। कैश का मतलब है नकद से, और आप सब जानते हैं कि दान पेटियों में जो चंदा लोग देते हैं वो जाहिर तौर पर नकद में ही देते हैं। दूसरे मुख्य आरोपी का नाम है रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव। उन्हें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का सबसे करीबी माना जाता है। एक जमाने में टिन्नू यादव ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे, बाद में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े, धीरे धीरे चंपत राय के खास बन गए। हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है जिससे ये पता चलता है कि टिन्नू यादव को राम मंदिर में VVIP गेट से एंट्री मिलती थी। मंदिर में चंदे की गिनती का जो काम होता था उसमें भी इस व्यक्ति की भूमिका थी। और ये भी आरोप लग रहा है कि एक बार चंदे में गड़बड़ी के आरोप लगने पर 2021 में टिन्नू यादव ने 8 महीने की CCTV फुटेज डिलीट करवा दी थी। आरोप बहुत गंभीर है, यानी यह व्यक्ति बहुत ताकतवर था। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दावा है कि टिन्नू यादव की संपत्ति पिछले 4 से 5 सालों में तेजी से बढ़ी है। इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने कई जमीनें खरीदी, एक नई बिल्डिंग बनाकर उसे किराए पर चढ़ा दिया। और इस पर मंदिर प्रशासन से जुड़े रहे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो ऑटो ड्राइवर कुछ सालों पहले तक सामान्य जीवन जीता था वो राम मंदिर की दान पेटियों के नजदीक आते ही अमीर कैसे हुआ। इन आरोपों को लेकर हमने टिन्नू यादव से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी कहानियां पूरी तरह मनगढ़ंत है और मंदिर की दान पेटियों से चुराया पैसा चुराया ही नहीं जा सकता। सुनिए।
1: आप पूरा अंदर मंदिर का ट्रस्ट, जो भी पैसा आता था आप ही की देखरेख में आता था, आप ही के जरिए ही वहां पर दर्शनार्थी भी जाते थे।
2: ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ईर्ष्या बस लोग बता रहे हैं ऐसा। और राम जी के दर्शन करने के लिए सारे लोग आते हैं, सबका होता है दर्शन।
1: इस मामले में आपका जैसे नाम आ रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद आपकी संपत्ति बढ़ गई और करोड़पति हो गए, सच्चाई क्या है?
2: ये सब ईर्ष्या बस बता रहे हैं लोग।

0: ईर्ष्यावश बता रहे हैं लोग, संपत्ति हमारी बढ़ गई, उसकी जांच कर लें।
1: टिनू यादव इसे साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जांच के लिए सामने हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी संपत्ति वाकई बढ़ गई है तो उसकी जांच करा ली जाए। अब ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती के लिए बहुत सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। इतनी सख्त प्रक्रिया कि ये चोरी तब तक संभव नहीं है जब तक कि कई स्तर पर मिली भगत ना हो। सर एक सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मंदिर में कुछ जैसा कि हमने आपको बताया कुल 40 दान पेटियां लगाई गई हैं जिन्हें हर रोज मंदिर बंद होने के बाद खोला जाता है। ये भी नियम है कि ये दान पेटियां एक निर्धारित कमरे में ही खोली जा सकती हैं जहां सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। अब दान पेटियों में जो पैसा आता है उसे गिनने का काम ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसका ठेका वाराणसी की एक प्राइवेट कंपनी को दिया है। अब होता यह है कि दान पेटियों को कुल 50 लोगों की निगरानी में खोला जाता है। लगभग 50 लोग, 24 लोग उस कंपनी के कर्मचारी होते हैं जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ठेका दिया है, प्राइवेट कंपनी। इसके बाद इन 24 लोगों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 12 कर्मचारी होते हैं, यानी चंदा गिनने वाले हर दो कर्मचारी पर ट्रस्ट का एक कर्मचारी खड़ा होता है। इसके बाद जब चंदे को गिन लिया जाता है तो 14 लोग इसकी पुष्टि करते हैं। 14 लोगों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के तकनीकी कर्मचारी होते हैं, TCS के। जब ये टीम अपनी तसल्ली कर लेती है तब दान में मिले पैसों के बंडल बनाकर उन्हें बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया जाता है और ये प्रक्रिया हर रोज अपनाई जाती है। अब इस प्रक्रिया से ये समझ आता है कि अगर मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई तो ये बिना कई लोगों की मिली भगत के संभव नहीं है, खासकर उन लोगों की जो चंदे की गिनती में शामिल है, मंदिर परिसर से बाहर निकलने की आसान प्रक्रिया से जुड़े हों। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि SIT ने जब पहले दिन इन दान पेटियों की जांच की तो उसमें ये पता चला कि इन दान पेटियों को खोले बिना इनमें जमा पैसे चुराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये माना गया कि अगर गिनती से पहले ये पैसे निकाले जाते हैं तो हो सकता है उस ताले के अलावा भी कोई तरीका हो इसको खोलने का। इसलिए यहां ये भी संदेह है कि अगर ये चोरी हुई है तो फिर गिनती के दौरान या उसके बाद कोई खेल हुआ हो। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था में मंदिर के चंदे से 200 करोड़ रुपए का चंदा चुराना मुमकिन है। साल 2024-25 में भगवान राम के मंदिर में जो कुल दान हुआ, कुल आय है एक तरह से समझिए, वो 327 करोड़ रुपए थी, 327 करोड़। इनमें 153 करोड़ रुपए सिर्फ चंदे दान पेटियों में मिले दान से आए। 153 करोड़ का मतलब यह हुआ कि भगवान श्री राम के मंदिर को हर महीने 12,75,00,000 मिले। हर दिन कितना हो गया? 42,00,000। अब अगर हम ये मान लें कि पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए निकाले गए हैं तो इसका मतलब है कि हर दिन मंदिर के चंदे से 27,00,000 रुपए चुराए गए, तभी जाकर ये 200 करोड़ का हो सकता है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि भाई अलग अलग किसी दिन नहीं किया गया, किसी दिन ज्यादा अमाउंट निकाला गया, कई सारे तरीके से ये पैसा चुराया जा सकता है। लेकिन 42,00,000 रोज पहुंच रहा है, उसमें से 27,00,000 क्या चोरी हो रहे थे? यानी अगर ये चोरी हुई है तो आरोपियों ने बहुत बड़े स्तर पर राम मंदिर के चढ़ावे को निशाना बनाया और कोई इसे रोक नहीं पाया। अगर इस आरोप में दम है और वाकई चोरी का यह आंकड़ा 200 करोड़ है, जब यह मामला 7 जून को पहली बार सामने आया तब 5 से 7.5 करोड़ का चंदा चुराने का आरोप था। लेकिन अभी अगर आप देखिए सोशल मीडिया पर यह नंबर 200 करोड़ का चल रहा है और खूब चर्चा भी बटोर रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते। हम आपको इतना बता सकते हैं कि मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा है, सरकार इसकी जांच करा रही है और कुछ लोग इसमें संदिग्ध माने जा रहे हैं, लेकिन बाकी दावे अभी बिना पुष्टि के चलाए जा रहे हैं। यह भी दावा है कि सोना चांदी हीरे माणिक्य जो मणि है अष्ट धातु की, जो 1,250 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी, वो अब गायब हो चुकी है। तो ये दावा राम मंदिर से जुड़े रहे धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने लगाया है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये शिलाएं साल 2000 में ही गायब हो गई थी। हालांकि मंदिर ट्रस्ट इन आरोपों को सही नहीं मानता। सुनिए,
2: जो 1,250 राम शिलाएं, प्राण प्रतिष्ठित राम शिलाएं पूजित होकर आई थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणि माणिक्यों की, 1,25,000,000 तो आई थी ईंटों की, मिट्टी की पकाई हुई ईंटें, और बाकी सोने चांदी हीरे जवाहरात मणि माणिक्यों की थी, वो सब इसी ने चोरी करके बेच लिया सन 2002 में। तो ये तो पुराना चोर है, कौन नहीं जानता इसको।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है।
1: ये मामला फिलहाल इतना बड़ा हो गया है कि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री दफ्तर तक पहुंची और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो SIR बनाई है उसे माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो इस मामले की जांच के लिए SIT गठित की है उसे 7 दिन में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देनी होगी, 7 दिन के अंदर, और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की जांच पर भरोसा नहीं, इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। 7 जून को जब पहली बार यह आरोप लगा कि राम मंदिर की दान पेटियों से पैसा चुराया जा रहा है, तब किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि इस चोरी का दायरा कितना बड़ा होगा, इसमें कौन कौन शामिल होगा। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह पहला ऐसा मामला हो सकता है जिसमें हर व्यक्ति शक के घेरे में है। आप गिनते जाइए, हम आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले जो कर्मचारी चढ़ावे का पैसा गिनते थे, शक उन पर है। फिर जो इन कर्मचारियों की निगरानी करते थे, शक उन पर है। जो कर्मचारी चढ़ावे का पैसा बैंक में जमा करने के लिए ले जाते थे, शक उन पर भी है। जो बैंक कर्मी हर दिन मिले दान का हिसाब रखते थे, रजिस्टर में उसकी एंट्री करते थे, शक उन पर भी है। जो कर्मचारी दान पेटियों को उठाकर CCTV वाले कमरे में लेकर जाते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी CCTV कैमरों का संचालन देखते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी CCTV फुटेज को सुरक्षित रखते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी गेट चेकिंग पर खड़े होते थे, जिनको फ्रिस्किंग करनी थी आते जाते लोगों की, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी मंदिर से बाहर जाने वाले कर्मचारियों की तलाशी लेते थे, उन पर भी शक है। फिर जो कर्मचारी मंदिर का प्रबंधन देखते थे, उन पर भी शक है। इसके बाद जो कर्मचारी VVIP पास जारी करते थे, उन पर भी शक है। जबकि चढ़ावे को गिनने से लेकर उसे जमा कराने तक में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी ये शक के दायरे में है। इसके बाद जो कर्मचारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नजदीकी थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी मंदिर के बड़े पदाधिकारियों की गाड़ी चलाते थे, शक उन पर भी है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। हमारा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। कुल 200 कर्मचारी SIT के शक के घेरे में है, जिनमें से 125 कर्मचारी और पदाधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। अब सोचिए, अभी तो ये चोरी साबित नहीं हुई है, लेकिन 29 जून को SIT ने अगर इसे स्वीकार कर लिया और इसमें इतनी बड़ी मिलीभगत साबित हो गई, तो फिर ये चोरी कहां रहेगी? ये लूट होगी। ऐसी लूट जिसमें इन लोगों ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने उनके इस पवित्र मंदिर को भी नहीं छोड़ा। ये मामला कितना गंभीर और कितना संजीदा है, इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे, तो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनके साथ नहीं थे। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि को भेजा गया था। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों ने मंदिर बनने के लिए 500 सालों का इंतजार किया, लेकिन अब उन्हें सिर्फ 15 दिन का इंतजार और करना है, और 29 जून को इस चोरी का पूरा सच देश के सामने होगा। सुनिए।
4: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
1: अब तक ये चोरी साबित नहीं हुई है, सच है, लेकिन सोचिए अगर ये चोरी साबित हो जाती है तो ये चोरी किसके पैसों की होगी। हकीकत तो ये है कि मंदिर की दान पेटियों में गिरने वाला पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, इसे श्रद्धा कह सकते हैं, इसे प्रार्थना कह सकते हैं, इसे उम्मीद कह सकते हैं। भगवान पर विश्वास का सबसे बड़ा आधार होता है। लेकिन मेहनत से कमाई अपनी जमा पूंजी को मंदिर में दान करते हैं लोग, क्योंकि वो भगवान के प्रति आभार जताना चाहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहते हैं। लेकिन सोचिए अगर इस पैसे को चोरी कर लिया जाए तो ये भगवान के साथ, भगवान पर लोगों के विश्वास की कितनी बड़ी चोरी है। कोई महिला अपने गले का हार ऐसे ही निकाल कर चढ़ावे में भगवान के सामने भाव विभोर होकर दान कर देती है, कोई अंगूठी उतार कर डाल देता है, कोई पैसा, कोई कमाई, सब कुछ भगवान पर लुटाता है। यहां ये भी सोचिए कि इस घटना के बाद जब अगली बार कोई भी व्यक्ति मंदिर जाएगा, मंदिर में दान करेगा, तो उसके मन में कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह आएगा, सवाल आएगा कि ये जो मैं पैसा दे रहा हूं ये वाकई भगवान की सेवा में खर्च होगा या कोई अपनी जेब भरेगा। और इस सवाल से जो अविश्वास पैदा होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। साल 2025 में भारत की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने इस मुद्दे पर रिसर्च की थी और यह बताया था कि भारत में कुल 68% लोग दान करते हैं, जिनमें 46% दान धार्मिक कारणों से किया जाता है। अगर आंकड़ों में देखें तो साल 2025 में भारत के लोगों ने मंदिर, मस्जिदों, दरगाहों, गुरुद्वारों, चर्चेज में 54,000 करोड़ रुपए का दान दिया, 54,000 crores। और ये माना कि वो जो दान कर रहे हैं वो सुरक्षित ही रहेगा, वो उनके आराध्य की सेवा में खर्च होगा। लेकिन सोचिए इस घटना के बाद इस देश के लोगों की आस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी। कहते हैं कि किसी दुकान में चोरी हो जाए तो व्यापारी का नुकसान होता है, किसी घर में चोरी हो जाए तो परिवार का नुकसान होता है, लेकिन जब मंदिर की दान पेटी में चोरी होती है तो ये चोरी करोड़ों लोगों की श्रद्धा की चोरी होती है। और इस चोरी से चोट उस सामूहिक आस्था को लगती है जिसे लाखों करोड़ों लोगों ने मिलकर सजोया है, क्योंकि दान पेटी में रखा धन किसी एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, वो समाज की श्रद्धा का धन है। शायद यही वजह है कि ऐसे अपराध लोगों को भीतर तक विचलित कर देते हैं, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ कानून का नहीं होता, सवाल नैतिकता का होता है। आखिर कोई व्यक्ति उस स्थान को कैसे निशाना बना सकता है जहां लोग अपने सबसे पवित्र भाव को लेकर आते हैं। आज सोचिए लोग अपने परिवार पर किस पे कितना खर्च करना है इस पे दो बार सोच लेते हैं, लेकिन भगवान के सामने दान करते समय कृतज्ञ होकर कुछ भी डालने को तैयार हो जाते हैं। उस विश्वास को तोड़ना, आज आप खुद सोचिए कि राम मंदिर का ये प्रांगण, ये परिसर, ये बड़े बड़े कक्ष, ये सीढ़ियां, ये कमरे किस लिए बने थे। ये निर्माण इसलिए हुआ था ना ताकि देश का कण कण अपने आराध्य भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि पर स्थापित होते देख सके, राम दरबार में भगवान राम और मां सीता के दर्शन कर सके, उनके दर्शन के लिए वहां जा सके, उनसे अपने मन की बात कह सके। लेकिन सिर्फ इस घटना के कारण इस प्रांगण में, इसी परिसर में, इन्हीं बड़े बड़े कक्षों में, इन्हीं विशाल कमरों में एसआईटी की जांच टीम घूम रही है और ये पता लगा रही है कि राम मंदिर की दान पेटियों से पैसा चुराया गया या नहीं चुराया गया। सबसे बड़ा आरोप तो ये लग रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी चढ़ावे में मिले जेवरातों, आभूषणों का सही हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। इससे आशंका बढ़ गई है कि इस मामले में सिर्फ नकद चढ़ावे की चोरी नहीं हुई बल्कि दान किए गए सोना, चांदी, हीरे के जेवरातों की भी हेराफेरी हुई है। कल एसआईटी ने केरल से वापस लौटे मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी अनिल मिश्रा, गोपाल राव और महासचिव चंपत राय से पूछताछ की और उनसे ये पूछा कि नकदी रिकॉर्ड में जो खामियां हैं उन्हें इनके द्वारा कभी नोट क्यों नहीं किया गया। और सूत्रों के मुताबिक इस सवाल का एसआईटी को कोई भी सही जवाब नहीं मिला है। इससे भी बड़ी बात यह सामने आई है कि राम मंदिर में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके पास महंगे आईफोन्स, 20 से 40 लाख रुपए की लग्जरी कार्स, महंगी गाड़ियां, और कहां से यह सब आया, किसी ने यह देखा क्यों नहीं। इन कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह 20,000 रुपए के आसपास है, इतने पैसों में कैसा वो कैसे ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे थे। और ये एक रेड फ्लैग था जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को खुद पकड़ना चाहिए था। लेकिन बात बढ़ती गई, आरोप है कि कई आम परिवारों से आने वाले कर्मचारी बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियों, महंगे फोन्स रखने लगे। यही नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ कि कई अधिकारियों की तैनाती को छुआ तक नहीं गया। मतलब जैसे राम मंदिर के जो रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी आरएमओ है, उनका 17 सालों में एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ। आरएमओ का काम होता है सीसीटीवी कैमरों का संचालन देखना, उसकी फुटेज को सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना कि निगरानी का काम सही से होता रहे। यह आरोप यही लग रहे हैं कि जिस कमरे में चढ़ावे का पैसा गिना जाता था, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ की गई, और इस छेड़छाड़ के लिए जिन आरएमओ को शक के घेरे में माना जा रहा है वो तो यहीं पर टिके हुए थे, कभी बाहर ट्रांसफर नहीं हुआ। जब मंदिर नहीं बना था तब भी वो यहीं थे, तभी इतने लंबे समय से यहां पर है, जब मंदिर बना तब भी वो यहीं रहे, और सबसे बड़ी बात, जिस रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव की भूमिका अभी संदिग्ध मानी जा रही है, वो इस आरएमओ का एकदम खास था, जबकि महासचिव चंपत राय टिन्नू यादव को अपना खास मानते थे। इसके अलावा जो राम मंदिर चौकी इंचार्ज थे, उनकी 5 साल से तैनाती नहीं बदली है। अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे से आज मैंने बात की। उन्होंने हमें यह बताया कि जो महिपाल सिंह पहले राम मंदिर के चढ़ावे की निगरानी करते थे, उन्होंने इस चोरी की शिकायत की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि जितना चढ़ावा आता है उसका बहुत कम हिस्सा रजिस्टर में दर्ज होता है, लेकिन यह बात बड़े पदाधिकारियों ने नजरअंदाज कर दी। महिपाल सिंह को पद से हटा दिया गया। सुनिए पवन जी, इस पूरे मुद्दे को आपने जोर शोर से उठाया, और मुझे लगता है जो शुरुआत में जो लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उसमें सबसे प्रखर आप थे। पवन जी, ये जानकारी आप तक कैसे आई कि चढ़ावे में चोरी का संदेह पैदा हो रहा है? किसने आपको जानकारी दी और किस तरीके से इसको किया जा रहा था, इस बारे में आप क्या बताएंगे? आपका आरोप क्या क्या है?
5: सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एक ट्रस्ट बना और 140 करोड़ भारतीयों को इस ट्रस्ट को सौंपा गया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन सब के विश्वास से ट्रस्ट बना। लेकिन 2021 से लगातार कभी जमीन का घोटाला, 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में, नजूल की ढेर सारी जमीनें, जिन जमीनों की कीमत 1 करोड़ 2 करोड़, उन जमीनों को लिया गया 40 करोड़ 50 करोड़ में। और सबसे बड़ी बात कि जो जमीन नजूल की थी उसका न क्रय हो सकता है न विक्रय हो सकता है जब तक सरकार फ्री होल्ड न करे। तो इस तरह का काम ट्रस्ट द्वारा किया गया, एक तरह से रुपए की बंडर बांट की गई। और इधर कुछ वर्षों से ट्रस्ट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनमें ये आपस में विवाद चल रहा था कि तू बड़ा चोर कि मैं बड़ा चोर, कौन बड़ा हाथ मार के अंदर से बाहर गया। और जब चोरी का एक कंपटीशन आपस में बढ़ गया चढ़ावा चोरों के बीच में, तो ये बात मंदिर परिसर के बाहर आने लगी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो गणना के प्रभारी थे महिपाल सिंह, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोला कि जो बक्से जाते थे रुपए गिनकर बैंक, लिखा पढ़ी में रहता था 15 लाख, बक्से के अंदर रहता था 25 लाख, बक्से में लिखा जाता लिखा पढ़ी में रहता था 20 लाख, बक्से में रहता था 35 लाख। और जब उन्हें शक हुआ और शक के बाद उन्होंने जब एक दिन बक्सा रीओपन करवाया तो रजिस्टर में दर्ज था 20 लाख, निकला 35 लाख। और जब उन्होंने इसकी सूचना श्री चंपत राय जी, श्री अनिल सिंह मिश्रा जी, गोपाल राव जी, इन सारे लोगों को दी, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद महिपाल सिंह की ही विदाई कर दी गई। और अब सामने जो तथ्य सामने आ रहे हैं, आप सोचिए कि गोबर के ढेर में रुपया बरामद हो रहा है।
1: राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती का एक वीडियो भी आया है जिसमें कुछ संदिग्ध तो नहीं दिखता, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसको चढ़ावे की गिनती का काम सौंपा गया था SBI को, उसमें कई खामियां थी। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन और पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि महासचिव चंपत राय का दुरुपयोग हुआ, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी तो हुई है। सुनिए, आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं।
6: प्रबंधन को अनुभवी हाथों में देना होगा, यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ। गंभीर कमियां थी, कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी।
1: आइए आइए सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। नृपेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज थोड़ी संकट की घड़ी है क्योंकि आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं। जब आज ये खबर आती है तो आपको कितनी पीड़ा होती है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं?
6: ये जो घटना है, श्रद्धालुओं के विश्वास पर तो चुनौती है ही, लेकिन इसी के साथ पूरे प्रबंधन पर चुनौती है।
1: पॉलिटिकल लड़ाई ना बने इसलिए प्रबंधन में क्या बदलाव की जरूरत है आपकी नजर में?
6: फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, बाकायदा वेतन हो, नियम हो, मैनुअल बने और उसके माध्यम से कार्य करें, ऐसा मेरा सुझाव है। और यदि उन्हें किसी अनुभवी अधिकारी की उच्च स्तर पर आवश्यकता है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
1: नितिन जी, सबसे उसके लिए तो सही कैंडिडेट आप ही होंगे।
6: आपने कृपा की जो मुझे इस योग्य समझा है, मैं सचमुच आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं समझता हूं इसके लिए किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो अभी तत्काल सेवानिवृत्त हुए हों।
1: बताया तो ये गया कि 3 लेयर्स की सिक्योरिटी वहां पर होती है और कुछ प्राइवेट फर्म के लोग भी, SBI को दिया गया है, SBI ने एक प्राइवेट फर्म को दिया है, वो प्राइवेट फर्म इंश्योर करती है कि सबके सामने काउंटिंग हो।
6: कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया।
1: ऐसा नहीं है कि मंदिरों के चढ़ावे में पहली बार हेराफेरी और गबन के आरोप लग रहे हैं। जनवरी 2025 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में एक संविदा कर्मचारी को सोना चुराते हुए पकड़ा गया। वो 2 साल से दान पेटी में जमा राशि की गिनती और छटाई कर रहा था, लेकिन इसके बाद एक दिन वो रंगे हाथ भंडार गृह से 100 ग्राम सोने के बिस्कुट चुराते हुए पकड़ा गया। दिसंबर 2025 में तिरुपति मंदिर की दान पेटियों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी और घोटाले के आरोप लगे, जिसे इस मंदिर के इतिहास की सबसे बड़ी लूट बताया जा रहा है। इसी तरह जून 2025 में शिरडी साईं बाबा मंदिर में 30 साल से कार्यरत स्थायी कर्मी बाला साहब नारायण गोंदकर ने हुंडी के चढ़ावे में कि उसकी गिनती के दौरान लाखों रुपए चुराए और इस दौरान उसकी ये चोरी CCTV कैमरों में पकड़ी गई। साल 2019 में केरल के सबरीमाला मंदिर में मूर्तियों पर जो सोने की परत चढ़ाई गई थी, उस सोने की भी चोरी के आरोप लगे, जिसकी आज तक जांच चल रही है। और इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था अपनाने की सख्त जरूरत है जिससे मंदिरों में चोरियों को रोका जा सके। कई मंदिर जैसे माता वैष्णो देवी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जगन्नाथ पुरी मंदिर, अच्छी व्यवस्था बनाई गई है जिसे बाकी मंदिर भी सीख सकते हैं। ये तस्वीरें लेबनान, गाजा या फिर ईरान की नहीं है, जिस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों पर है, तब देखिए रशिया और यूक्रेन युद्ध की आग ने भयानक रूप ले लिया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन जलेगा तो फिर मॉस्को भी जलेगा। ये सारी तस्वीरें रशिया की राजधानी मॉस्को से आ रही हैं, जहां यूक्रेन ने इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। CNN तो अपनी रिपोर्ट में यह भी लिख रहा है कि यूक्रेन ने जितना बड़ा हमला रशिया पर किया है, उतना बड़ा हमला इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस हमले की संजीदगी को इसी बात से समझा जा सकता है कि मॉस्को में जो 4 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उन सभी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इनमें शेरेमेत्योवे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी शामिल है, जो मॉस्को ही नहीं बल्कि पूरे रशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। रशिया के मुताबिक यूक्रेन ने पूरे देश पर 1000 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन्स, कुल 4 क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया है। 7 लोग घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर के मुताबिक रशिया की राजधानी में एंटी एयर डिफेंस सिस्टम अब तक कुल 194 ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर चुका है। और यह सब होने के बाद यूक्रेन मॉस्को की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर बारूद बरसाने में कामयाब हो गया है। इसे कापोतनिया तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है, जो क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर है। और क्रेमलिन वही जगह है जहां से राष्ट्रपति पुतिन रशिया की सरकार चलाते हैं। क्रेमलिन वही जगह है जहां पर हमने जाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू किया था। वहां से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर आज ये सब हो रहा है। देखिए,

इसके ऊपर एक ऑयल टैंक का ढक्कन हवा में उड़ गया। तो मॉस्को में दहशत फैल गई। काले धुएं का गुबार और जलते हुए तेल के कण और काली हवा में घुलने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इसके बाद जब हल्की बारिश शुरू हुई तो तेल के यही कण बारिश के साथ नीचे गिरने लगे, जिसे स्थानीय लोगों ने ब्लैक रेन बताया है। हालांकि रशिया की सरकार ने ब्लैक रेन होने की बात को खारिज किया है। यह कहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। देखिए,

ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसके मुताबिक अमेरिका के बाद रशिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि यूक्रेन की सेना इस सूची में 20वें स्थान पर आती है। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने जिस तरह से मॉस्को और रशिया के दूसरे शहरों पर हमले किए हैं वो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यूक्रेन से मॉस्को की दूरी 500 किलोमीटर है और इस दौरान बीच में रशिया ने कई एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन रशिया के रक्षा कवच को भेदने में ना सिर्फ कामयाब हो रहा है बल्कि रशिया से ऐसी तस्वीरें बाहर आ रही हैं जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। देखिए,

यूक्रेन के हमलों के बाद रशिया ने भी पलटवार करते हुए 239 आत्मघाती ड्रोन्स, 7 क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन पर दागी, जिनमें यूक्रेन को दूसरी तरफ भारी नुकसान हुआ है। अब यूक्रेन की हालत देखिए।

0: Salimos así en el feral.
1: अब ये समझिए कि ये युद्ध अचानक से क्यों भड़का, इसका ईरान युद्ध से आखिर कनेक्शन क्या है। असल में यहां भी भारी लड़ाई तेल की है। ईरान युद्ध के कारण रशिया के कच्चे तेल की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। जो रशिया पहले प्रतिबंधों के कारण अपना कच्चा तेल सिर्फ कुछ देशों को बेच रहा था, वो अब कई देशों को तेल की आपूर्ति कर रहा है। भाई खाड़ी देशों में ऐसी हालत है, मिडिल ईस्ट से तेल जा नहीं रहा था, ऐसे में रशिया के लिए कमाई का मौका आया। इसके कारण कच्चे तेल के निर्यात में अमेरिका के बाद रशिया दूसरे स्थान पर आ गया और स्थिति यह है कि सऊदी अरब से ज्यादा तेल रशिया का बिक रहा है। और यही बात यूक्रेन को परेशान कर रही है। यूक्रेन को लगता है कि अगर रशिया तेल बेचकर ज्यादा पैसा कमाएगा तो वो ये पैसा युद्ध पर खर्च करेगा, युद्ध पर यह पैसा खर्च होगा तो रशिया को यूक्रेन पर एडवांटेज मिल जाएगा। और यही वजह है कि यूक्रेन लगातार रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। रशिया में कुल 33 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिनमें से 24 पर यूक्रेन ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है और इसकी वजह से रशिया के कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अब ये मई महीने में देखिए 89,50,000 बैरल था, जून आते आते 87,00,000 बैरल हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा। अब क्योंकि यूक्रेन रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है, इसीलिए ये युद्ध अचानक से और भड़कने लगी है। और ये युद्ध भड़क रहा है, इस दौरान रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत इस वक्त अपना जो

0: कच्चा तेल है। जानते हैं रशिया से हम कितना ले रहे हैं? 35 से 40% कच्चा तेल रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब हम ये उम्मीद में थे कि अब ईरान युद्ध खत्म होने से कच्चा तेल सस्ता हो सकता है, तब रशिया यूक्रेन युद्ध ने हमारी चिंता फिर से बढ़ा दी है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि जब ईरान युद्ध 3 महीने के बाद, अमेरिका ईरान युद्ध 3 महीने के बाद खत्म हो गया, तो यूक्रेन युद्ध 4 साल से अभी तक जारी क्यों है? इसके पीछे बड़ी वजह है इलाकों की लड़ाई। राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं? कि रशिया ने यूक्रेन के जिस 20% भूभाग पर कब्जा किया उसे यूक्रेन छोड़ दे, ये इलाके रशिया को मिले। और दूसरी मांग है यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। तीसरी मांग है कि यूक्रेन की सेना पर कुछ सीमाएं लगे, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें ये तीनों मांगे मंजूर नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये युद्ध कभी तभी खत्म होगा जब रशिया उसके इलाकों को वापस करेगा, यूक्रेन की संप्रभुता सीमाओं को बहाल किया जाएगा और भविष्य में रशिया दोबारा ऐसे हमले ना करने की गारंटी देगा, सुरक्षा गारंटी। इन्हीं सारी बातों पर यह युद्ध अब भी फंसा हुआ है और अब इसने एक नया रूप ले लिया। पूरी दुनिया में ये चिंता की बात पड़ रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज राष्ट्रपति ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि इसराइल ने बड़ा दुख दीना। जिस मेज को राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के लिए सजाया था, उस मेज को इसराइल ने अब जंग के मैदान में बदल कर रख दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू होने के बाद सिर्फ 14 घंटे बीते और 14 घंटे बाद ईरान ने अपने प्रतिनिधिमंडल को स्विट्जरलैंड भेजने से ही इनकार कर दिया है। यह वही स्विट्जरलैंड है जहां अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील के लिए 60 दिनों की बातचीत होनी है। आपको याद होगा हमने एमओयू आपको दिखाया था, इस एमओयू में लिखा था कि 60 दिन तक बातचीत करके एमओयू पर जो भी फैसला है उसको फाइनल किया जाएगा और एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद यह बातचीत पूरी तरह फिक्स थी। लेकिन अमेरिका का आरोप है कि इसराइल उसकी बात नहीं मान रहा, इसराइल इस एमओयू को और पीस डील को खराब कर रहा है। इसराइल ने पिछले 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान पर इतना बारूद बरसाया कि यह बारूद बातचीत को बर्बाद कर रहा है। ईरान का सीधा आरोप है कि उसने जिस एमओयू पर हस्ताक्षर किए उसकी पहली शर्त यही थी कि लेबनान में भी सैन्य संघर्ष को खत्म किया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और इसराइल ने लेबनान में 20 से ज्यादा बड़े हमले किए तो ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए नो कह दिया। और अब स्थिति यह है कि ना तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वैंस स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और ना ही ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए भेज रहा है। सुनिए।
1: निश्चित रूप से अगर इसराइल लेबनन पर कोई सैन्य हमला करता है या लेबनन की जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखता है तो हम इसे समझौते का उल्लंघन मानेंगे।
0: ईरान ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इसराइल लेबनान में अपनी जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल के इजरायली हवाई हमलों और गोलीबारी में कम से कम 16 लोग मारे गए जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये लेबनान में इसराइल की बमबारी है। अब हालात ये है कि लेबनान के लोग इसराइल के हमलों के कारण पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए,
2: I'm in the center of Kfart Bnit right now. The entrance of Kfart Bnit from this side, an artillery strike just targeted the area behind me. As you can see, there is heavy drone activity in the vicinity. Of course, the destruction, the amount of destruction is very strong. The Israelis did try to destroy the entire area. Destroy the entire area.

0: लेबनान से पलायन करते लोग आपने देखे। इसराइल पर आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर अमेरिका और ईरान की डील तोड़वाने के लिए ऐसा कर रहा है, और अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई नेतन्याहू इस डील को तोड़वा देंगे। उसका कारण यही है कि इस डील से ईरान को ज्यादा फायदा हो रहा है। ईरान के तेल निर्यात से प्रतिबंध हट रहे हैं, उसे उसका जब्त किया हुआ पैसा वापस लौटाया जा रहा है, पुनर्निर्माण के लिए 300 बिलियन डॉलर की योजना बनाई जा रही है, अमेरिकी ब्लॉकेड हटाया जा रहा है। अमेरिका ने यह वादा भी कर दिया है कि वो फिलहाल ईरान को उसके प्रॉक्सी संगठनों की मदद बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेगा। अब ईरान इसराइल का कट्टर दुश्मन माना जाता है, और कई विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि अपने कट्टर दुश्मन को बातचीत में जीतता हुआ देखकर इसराइल इस डील को तोड़वाना चाहता है, और इसीलिए उसने लेबनान पर हमले जारी रखे हैं। हालांकि इसराइल इन आरोपों से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि हिजबुल्ला ने उसकी सेना पर हमले किए जिसमें उसके 4 सैनिक मारे गए, और इन्हीं हमलों के बाद इसराइल हिजबुल्ला को अपना जवाब दे रहा है।
1: हम उत्तरी इलाकों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए दक्षिणी लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना जरूरी है। जब तक इसराइल को अपनी सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता महसूस होगी, हम वहां तब तक मौजूद रहने वाले हैं।
0: तो इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेनगवीर ने भी सोशल मीडिया पर यह लिखा कि हर इजरायली मां के एक आंसू के बदले 1000 लेबनानी माताएं रोनी चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन इजरायल को दुनिया को यह दिखाना होगा कि उसके बेटों का खून, उसके नागरिकों की सुरक्षा किसी कीमत पर नहीं छोड़ी जा सकती। और सीधा मतलब यह है कि इजरायल तो अब किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। चाहे ये डील टूटे या ना टूटे, वो लेबनान में अपनी जंग को जारी रखेगा, और ये बात इसराइल के रक्षा मंत्री ने भी कही है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अब भी यही कह रहे हैं कि वो इसराइल को लेबनान पर हमले करने से रोक सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा है कि क्या वो लेबनान को लेकर थोड़ा नरम रवैया नहीं अपना सकते। ट्रंप की ताजा बाइट सुनिए।
2: You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
0: तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि बीबी, बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी कहते हैं, बीबी मान जाओ, और बीबी यानी प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं तो युद्ध नहीं रोकूंगा। तो ये चल रहा है मामला। मामला है बारूद बनाम बातचीत का, जिसमें इसराइल बारूद बरसाने की जिद पर अड़ा है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं। यहां आप यह भी देखिए कि कई बार वक्त चीजों को कितनी तेजी से बदल देता है। इस युद्ध की शुरुआत में अमेरिका इसराइल साथ हुआ करते थे, जिसे पश्चिमी मीडिया AI फ्रेंडशिप कहता है। अमेरिका, ए का मतलब अमेरिका और आई का मतलब इसराइल। अब इन्हीं दोनों देशों ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे, ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म किया। लेकिन आज स्थिति यह है कि अमेरिका ईरान के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए इसराइल को किनारे कर रहा है, बातचीत कर रहा है, बातचीत के लिए आतुर दिख रहा है। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप इन आरोपों से मुक्त होना चाहते हैं कि वो इसराइल के लिए काम करते हैं। तो अब तक उन पर यही आरोप लगा कि वो अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि इसराइल फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं, जिससे उनके अपने समर्थक नाराज हो गए। लेकिन अब इसी दाग को धोने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि वो इसराइल को भी सबक सिखा सकते हैं, और इसराइल उनके बिना कुछ नहीं है। यहां आप यह भी समझिए कि इसराइल का असली निशाना हिजबुल्ला नहीं है, उसका असली निशाना अमेरिका और ईरान की पीस डील है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसराइल हिजबुल्ला से कई लड़ाइयां लड़कर देख चुका है, और इनमें किसी भी लड़ाई में वो हिजबुल्ला को आज तक खत्म नहीं कर पाया। इनमें भी साल 2006 का जुलाई युद्ध बहुत बड़ा था। उस वक्त हिजबुल्ला ने इसराइल के 3 सैनिकों को मार दिया था और 2 सैनिकों को बंदी बना लिया था। इसके बाद 34 दिनों तक चले भीषण युद्ध में लेबनान के लगभग 1200 लोग मारे गए थे, करीब 4400 लोग घायल हुए थे। इसराइल के भी 158 लोगों की मौत हुई, जिनमें कई सैनिक थे। उस भीषण युद्ध में हिजबुल्ला खत्म नहीं हुआ, आखिरकार इसराइल को यह युद्ध रोकना पड़ा था, और यहां भी इसराइल ऐसा कर सकता था। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप खुद को ईरान युद्ध से बाहर निकालने के लिए पीस डील कर लेते हैं, एक MOU साइन कर लेते हैं, वो इसराइल के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। इसराइल नहीं चाहता कि ईरान को किसी भी तरह का कोई एडवांटेज मिले, और इसी वजह से वो इस डील के खिलाफ है। और अब कहा जा रहा है कि इसराइल इस डील को तुड़वा भी सकता है। यहां आप ये भी देखिए कि अब तक दुनिया में अमेरिका ही अकेला ऐसा देश था जो ये कहता था कि उसके सहयोगियों पर हमला हुआ तो इन हमलों का जवाब वो खुद देगा। नेटो भी तो इसी तर्ज पर बना था, लेकिन अब यही चीज पहली बार ईरान कर रहा है। ईरान कह रहा है कि आप अगर हिजबुल्ला को मारोगे या यमन में हूती को मारोगे या इराक में सबसे बड़े मिलिशिया ग्रुप को मारोगे तो वो इन हमलों को खुद पर हुआ हमला मानेगा। और वो कह नहीं रहा है, वो सीधा वापस ही हमला कर रहा है और इनका जवाब अपनी मिसाइलों से देगा। तो ये सारी चीजें इस युद्ध से बदली हैं और इससे दुनिया पर अस्थिरता का एक नया खतरा भी मंडराने लगा है। खैर, इन सबके बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना एक और दुश्मन बढ़ा लिया और वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी हेकड़ी निकाल दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इटली के एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए ये कहा कि फ्रांस में G7 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे, पर बाद में उन्हें उन पर तरस आ गया और उन्होंने प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ फोटो खिंचवा ली। इसका ये वीडियो भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मेलोनी का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने इटली का अपमान किया है। सुनिए।
3: कुछ बातों का तुरंत जवाब देना जरूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। सच कहूं तो मैं हैरान हूं। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगी देशों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, और ये पहली बार नहीं है। मैं केवल इतना कह सकती हूं कि ये निराशाजनक है कि वो पश्चिमी देशों और अमेरिका के दुश्मनों के प्रति वही सख्ती नहीं दिखाते, बल्कि उनके नेताओं के साथ कहीं अधिक नरमी से पेश आते हैं। उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि ना मैं और ना ही इटली कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बर्ताव सबके याद है मुझे, मुस्कुरा कर मिलने को माफी मत समझना।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
7: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
3: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
4: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
5: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
4: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
6: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
7: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
8: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
6: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
9: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
10: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
9: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
11: इन एसोसिएशन विद
12: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
13: कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
11: हिंट बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
14: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
15: कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया है। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई।
16: यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिस कर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
6: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
7: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
8: La Que Buena.
7: ESPN Radio.
9: We know LeBron has to be the best player on the planet to
7: get The Daily.
10: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
7: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे कई वीडियो की भरमार है। हाथ में हथियार लिए एक युवक, कुछ दावे, कुछ आरोप, फिर गोलियों की आवाज और उसके बाद आई एनकाउंटर की खबर, जिसके बाद बिहार का आरा धधक उठा। आरा के बिलौटी गांव का भरत भूषण तिवारी अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो बिहार की राजनीति, पुलिस की कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही के बीच खड़ा एक सवाल बन चुका है। विपक्ष इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है। बिहार पुलिस का दावा है कि भरत ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार की कहानी बिल्कुल अलग है। माँ कहती है कि बेटा सरेंडर कर चुका था। यहीं से ये मामला एक पुलिस कार्रवाई से निकलकर पूरे बिहार की राजनीति का विषय बन जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुरुआती बयान में कहा था कि उन्हें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक भरत भूषण तिवारी ने पुलिस पर फायरिंग की थी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन बाद में उसी मामले में न्यायिक जाँच के आदेश दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जाँच सुनिश्चित करना है। इस पूरे मामले ने बिहार सरकार को भी असहज कर दिया है, क्योंकि सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के बयान भी पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में जब एनकाउंटर के मुद्दे पर सियासत की रोटी पक रही है तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पुराने बयान भी वायरल होने लगते हैं, जिनमें अपराधियों को बिहार छोड़ने या शमशान जाने की चेतावनी दी गई थी।
2: अपराध करने वाला बचेगा नहीं, या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा, दूसरा कोई स्थान नहीं।
1: कभी कभी किसी की मौत की सबसे बड़ी गूंज शमशान में नहीं सवालों में सुनाई देती है। गोली की आवाज कुछ सेकंड रहती है, लेकिन न्याय की तलाश कई साल चलती है। राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूक नहीं, उसकी विश्वसनीयता होती है। अब बीजेपी के शासन की उसी विश्वसनीयता को अपने लोगों ने ही चैलेंज किया है।
3: बहुत बिना भगवान से प्रार्थना है कि यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।
4: भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना, भरत भूषण तिवारी जी की मृत्यु जितनी दुखद है उतनी ही चिंताजनक भी है। किसी भी सभ्य समाज में जितना आवश्यक कानून व्यवस्था का होना होता है उतना ही आवश्यक ये होता है कि रक्षक भक्षक कभी ना बने।
1: भरत भूषण तिवारी अपराधी था या नहीं, इसका फैसला अदालत और जांच करेगी। पुलिस सही थी या परिवार, इसका जवाब जांच के बाद मिलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार को बाद में अपनी ही जानकारी पर पुनर्विचार करना पड़े तो जवाबदेही किसकी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में गोली का जवाब गोली नहीं सच देता है, और सच तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ निष्पक्ष जांच से होकर जाता है, और पूरा बिहार उसी सच का इंतजार कर रहा है। आरा से सोनू सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में हो सकता है खुलासा, एसआईटी जल्द सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर भी किया गया हाथ साफ, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे, कहा कि जब उन्हें कोई नहीं पूछता था तब हमने दिया था उनका साथ, यह हमें कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, मैं मतदाताओं से माफी मांगता हूं। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी उठाए सवाल, वीडियो से बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। और ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और खालिबाफ की अगुवाई में चर्चा, होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश में मॉनसून ने दस्तक तो 4 जून को दे दी थी, लेकिन उसके बाद जैसे कहीं भटक गया। देश के कई हिस्सों में बादल आ रहे हैं, गरज रहे हैं, लेकिन बरस नहीं रहे। दूसरी तरफ देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां बाढ़ और बारिश के साथ ओले भी बरस रहे। जून के तीसरे सप्ताह के खत्म होते होते मॉनसून एक पहेली बन चुका है।
1: ओला की बारिश हो रही है, देखो फतेहपुर शेखावाटी का मायना ओला वर्षी।
2: गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हम लोग निकल ही नहीं रहे थे, लेकिन बारिश जो हो गई ना, मौसम इतना बेहतरीन हो गया कि हम लोग सिर्फ बारिश की वजह से निकल कर अभी आ रहे हैं।
3: कुछ दिन पहले तक बिल्कुल शरीर जल रहा था हमारा धूप में निकलने की वजह से, पर अभी ये जो बारिश हुई है इसकी वजह से काफी राहत है। मतलब मन एकदम प्रसन्न सा हो गया इसके बाद।
4: गर्मी बहुत, थोड़ा भी मन नहीं करता घर से बाहर निकलने का। अब थोड़ा मौसम ठंडा हो गया बारिश होने की वजह से, अब अच्छा लग रहा है।
5: देश में मॉनसून के दिन हैं, लेकिन मॉनसून का कैलेंडर कहीं बारिश तो कहीं बारिश के इंतजार की तारीखें दिखा रहा है। कहीं बारिश है तो इतनी की जिंदगी सैलाब में बही जाती है, कहीं धरती सूखी है तो इतनी की बारिश के इंतजार में हर दिन मुश्किल से कट रहा है। मॉनसून बस तारीख पर तारीख दे रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग अलग है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं तो सैलाब तबाही ला रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है तो रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं, कहीं पुल पानी में बह जा रहे हैं तो कहीं नदियां प्रचंड उफान पर हैं।
6: नेचुरल क्लाइमेटिक जो डैमेज है, ये बारिश होना, ये होना, अब ये तो नेचुरली हो जाता है, लेकिन थोड़ा बारिश में ही ये ब्रिज डिसमेंटल हो गया, कोलैप्स हो गया है, तो ये नहीं होना चाहिए था।
5: कई राज्यों में लगातार बरसते पानी ने सड़कों और तालाबों के बीच का अंतर मिटा दिया है, तो कहीं तेज हवाएं छत को तिनके सा उड़ाए ले जा रही
7: है।
5: गुजरात ने लंबे अरसे तक इंतजार के बाद बारिश से थोड़ी राहत की सांस ली है। मॉनसून की पहली बारिश के लिए दिल्ली का इंतजार लंबा होता जा रहा है। यूरोप के हाल लंबे वक्त से बेहाल बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मॉनसून आया तो सही वक्त पर था, लेकिन फिर कहीं भटक गया। हवाओं ने रुख बदल लिया जिससे मौसम गड़बड़ा गया है। कुछ विशेषज्ञों का आकलन है कि देश इस बार कम बारिश की मुश्किलों का सामना कर सकता है, तो कुछ का मानना है कि मॉनसून जाते जाते सौगात दे जाएगा।
8: इस बार मॉनसून के दौरान सामान्य से कम बारिश पूरे देश भर में होने की संभावना है, और उसी के मुताबिक भी अब तक यदि देखें तो सामान्य से कम बारिश इंडिया भर में भी रिपोर्ट हुई है, और मॉनसून फ्लो जो है वो सामान्य से यूं कह सकते हैं कि वीक मॉनसून फ्लो है।
5: फिलहाल अभी मॉनसून की चाल टेढ़ी है और रफ्तार थोड़ी अप्रत्याशित, लेकिन आने वाले दिन मॉनसून के मिजाज की तस्वीरें और साफ करेंगे।
0: देश में प्री मॉनसून एक्टिव होने के बावजूद महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित करीब 8 राज्यों में सूखे जैसी स्थिति दिखती है। इन राज्यों के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, लेकिन कई मैदानी राज्य ऐसे हैं जहां थोड़ी सी ही बारिश से नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है। सड़कें, तालाब और गलियां नदियों जैसी नजर आ रही है।
9: अभी तो लगातार ब्रह्मपुत्र का पानी बारिश हो रहा है, इसीलिए अभी 5-6 दिन से बढ़ रहा है।
10: इस बार 2026 का मानसून कुछ अनियमित सा दिखाई दे रहा है।
11: पानी बढ़ेगा, अभी पूरा पानी पूरा फिर बढ़ेगा पानी।
12: एल निनो और मानसून करंट वीक होने के कारण
7: कहीं कहीं पे ड्राउट लाइक कंडीशन है, क्योंकि सामान्य से कम मानसून की वर्षा हो रही है।
12: एक तरफ मानसून की दस्तक हो चुकी है तो कई राज्यों में अब भी बारिश का इंतजार है। देश का मौसम दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है, एक तरफ सैलाब, दूसरी तरफ मानसून का इंतजार।
10: मैदानी भागों में काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग वेदर चल रहा है। कहीं पर सूखे जैसे हालात हैं, अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, इन इलाकों में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, जबकि राजस्थान के कई इलाकों में हमने देखा कि फ्लडिंग रेन हो रही है। तो ये क्या हो रहा है कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाते हैं, और चूंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहे हैं वो पाकिस्तान पर बन रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं पहाड़ों पर, हालांकि कमजोर है, और साउथ वेस्टर्ली विंड जो है जो अरब सागर से वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में नमी बढ़ा रही है। तो इन इलाकों में कभी कभी क्या होता है कि गरजने वाले बादल काफी ज्यादा बड़े बन जाते हैं और वो फ्लडिंग रेन देते हैं।
12: देश के कई हिस्सों में थोड़ी सी बारिश ने ही जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं नदी किनारे बसे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई शहरों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और गलियां किसी बहती हुई नदी जैसी नजर आ रही हैं।
9: अभी तो लगातार ब्रह्मपुत्र का पानी बारिश हो रहा है, इसीलिए अभी 5-6 दिन से बढ़ रहा है। अब ब्रह्मपुत्र का पानी बढ़ने से लिए हम लोग के यहाँ पर जो भू कटआउट मैंने ज्यादा होता है, बहुत आखिरी हो गया है। मौसम तो देख के ऐसा लगता है जो बारिश होने से तो पानी तो बढ़ेगा ही, बढ़ने से थोड़ा दिक्कत होता है।
13: गड़ाखनी बेसी चल रहा है, अभी गड़ाखनी चल रहा है, आदमी के धान सान नहीं होता है, इसलिए गड़ाखनी हो रहा है। आदमी का खाना पीना बाड़ी साड़ी करता है, उसको बाड़ी नहीं होता है। पानी अभी हो गया 6 दिन से बेसी हो गया है, 10 दिन में पानी हो गया है। पब्लिक लोग हम लोग को कुछ नहीं देता है, क्या करेगा हम लोग। पानी बढ़ेगा अभी पूरा पानी पूरा फीस बढ़ेगा पानी।
12: असम में मानसून की बारिश अब राहत नहीं बल्कि आफत की कहानी लिख रही है। डिब्रूगढ़ के इथान इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी का रौद्र रूप लोगों को सतर्क रहने की हिदायतें जारी कर रहा है। उफनती नदी लगातार किनारों को काट रही है और हर गुजरते घंटे के साथ जमीन का एक और टुकड़ा पानी में समाता जा रहा है। नदी किनारे बसे गांवों में डर और खौफ है। अरुणाचल प्रदेश और ऊपरी असम में लगातार हो रही भारी बारिश का पूरा असर अब ब्रह्मपुत्र पर दिखाई दे रहा है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कटाव की रफ्तार भी खतरनाक होती जा रही है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। हावड़ा की तस्वीर है, शहर की सड़कों से लेकर स्कूल तक में पानी भर गया है। क्लासरूम, टीचर रूम और मिड डे मील के किचन तक पानी पहुंच गया है। लगातार बारिश की वजह से टिकियापाड़ा, सालकिया, घुसुड़ी, बिलगाछिया और शिवपुर जैसे कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कहीं टखनों तक तो कहीं घुटनों तक पानी भर गया। दफ्तर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम ठप हो गया है, जिसकी वजह से हावड़ा के लोगों के लिए बारिश राहत नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त करने वाली मुसीबत बन गई है। कोलकाता में भी मॉनसून की बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़कों पर पानी ही पानी है, यात्रियों को गुजरना मुश्किल हो गया है। बारिश की वजह से कोलकाता के कई निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। बीते शुक्रवार कोलकाता एयरपोर्ट पर अगरतला जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट पर बिजली गिर गई। फ्लाइट में सवार 147 पैसेंजर्स को दूसरी उड़ान से भेजा गया। कोलकाता और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोलकाता से सटे हर इलाके में यही हाल है। बारिश ने सिर्फ सड़कों को ही नहीं डुबोया बल्कि अब पुलिस थाने भी पानी पानी हो गए हैं। उत्तर 24 परगना का हाल देखिए, बारिश के बाद थाना पूरी तरह जलमग्न हो गया है। हालात ऐसे हैं कि लॉकअप से लेकर थानेदार के कमरे तक हर जगह पानी भर गया, कोना कोना डूब गया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश का कहर अब प्रशासनिक व्यवस्था तक को चुनौती देने लगा है। गुजरात के खेड़ा में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। कई दिनों की भीषण गर्मी और उमस के बाद हुई झमाझम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बारिश के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। खेड़ा के अलग अलग हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। खासतौर पर कटलाल और महुआ तालुका के ग्रामीण इलाकों में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। पिछले कुछ हफ्तों से लोग गर्मी से बेहाल थे, ऐसे में मानसून की पहली बारिश किसी राहत भरे तोहफे से कम नहीं रही। गुजरात के जामनगर में मानसून की पहली ही बारिश ने जैसे हालात बना दिए, वो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। हर साल मानसून से पहले नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर लाखों रुपए खर्च किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सफाई और रखरखाव सही तरीके से हुआ होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। मौसम विभाग ने आगे और बारिश की संभावना जताई है, ऐसे में लोगों को डर है कि अगर अभी से ऐसे हालात हैं तो भारी बारिश के दौरान मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राजस्थान के जैसलमेर में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए रेगिस्तान को बारिश और तूफान की चपेट में ले लिया है। तेज आंधी, कड़कड़ाहट और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे रामगढ़, मोहनगढ़ और सादा नहर इलाके में तेज रेतीले तूफान के साथ जबरदस्त बारिश हुई। पूरे इलाके में दिन में ही अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के कारण कई कच्चे मकानों और ढाणियों के टीन शेड उड़ गए। नहरों से पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। तमिलनाडु के मदुरै में तेज बारिश ने भीषण गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन शहर की रफ्तार रुक गई। कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लंबे समय से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई है। फिलहाल लोग बारिश का आनंद भी ले रहे हैं और आगे के मौसम पर नजर भी बनाए हुए हैं। देश के कुछ इलाकों में भले ही बारिश हो रही है, लेकिन मध्य भारत में मानसून का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। 16 जून तक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा तक मानसून दस्तक दे चुका है। फिलहाल मौसम तेलंगाना के भद्राचलम में एक सप्ताह से अधिक समय से अटका हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में हालात बदल सकते हैं और फिर 20 जून के आसपास महाराष्ट्र में मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है।
14: हमने देखा कि केरल में भी 4 जून को 4 दिन की देरी से इसने ऑनसेट किया और उसके बाद 8 जून से वो लगातार महाराष्ट्र के हरदई से आगे नहीं बढ़ पाया है। कम से कम 12 दिन हो चुके हैं और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो वहां पर भी मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसका कारण यही है कि कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम यानी लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में नहीं बन रहा जो इसको पुल या पुश दे सके और ये मानसून आगे बढ़ पाए।
12: आमतौर पर 11 जून तक मुंबई में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से ऐसा नहीं हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि सूखी पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से बारिश में देरी हो रही है। साथ ही अल नीनो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी मानसून की चाल पर पड़ा है।
0: पूरे देश का मौसम एक तरफ, दिल्ली एनसीआर का मौसम एक तरफ। यहां मौसम दिनों नहीं घंटों और मिनटों के हिसाब से बदलता है, कभी पारा 40 पार, कभी बारिश की बौछार। दिल्ली तक मॉनसून पहुंचेगा कब? मौसम विशेषज्ञों के अनुमान के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में मॉनसून की एंट्री थोड़ी लेट हो सकती है।
12: थोड़ा है लेकिन ज्यादा की जरूरत है। मॉनसून के इंतजार में दिल्ली की यही कहानी है। थोड़े बादल आते हैं, थोड़ी बारिश होती है, थोड़ी हवाएं तेज चलती हैं, थोड़ा मौसम ठंडा होता है, लेकिन फिर वही चिलचिलाती गर्मी, फिर वही उमस से पसीजते शरीर। मॉनसून कब दिल्ली में दस्तक देगा? कब मॉनसून की मौसमी बारिश होगी? कब मॉनसूनी ठंडक दिल्ली का सुकून लौटाएगी? इन सवालों के जवाब दिल्ली और एनसीआर दोनों को है। बंगाल की खाड़ी में मौसम के अनुकूल हालात ना बनने की स्थिति में मौसम वैज्ञानिक भी दिल्ली में मॉनसून की तारीख कब घोषित करें, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति में है। दिल्ली में आमतौर पर 27 जून तक मॉनसून आता है, लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में मॉनसून पूरे जून में नहीं आएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई से पहले सप्ताह तक शायद मॉनसून राजधानी और राजधानी क्षेत्र को हिट कर जाए।
14: इस बार हो सकता है कि जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली पहुंच पाए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है और ये मानसून कम से कम 7-8 दिन पीछे चल रहा है। तो उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो मानसून दिल्ली में जुलाई के फर्स्ट वीक में पहुंचेगा। वैसे 8 जुलाई को मानसून यूजुअली पूरे भारत को पश्चिमी राजस्थान तक को कवर कर लेता है, और इस बार क्योंकि मानसून देर कर रहा है, कोई सर्ज नहीं हो रही, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मानसून जुलाई में पहुंच पाएगा दिल्ली और एनसीआर के आसपास।
15: दिल्ली और राजधानी क्षेत्र में मानसून की देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि सामान्य तौर पर बंगाल की खाड़ी में 18 से 19 जून के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनता है। ये सिस्टम पूर्वी हवाओं के सहारे अरब सागर की नमी को समेटते हुए ओडिशा, बिहार और पूर्वी यूपी से होते हुए दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंचता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार ये जरूरी सिस्टम नहीं बन पाया जो बारिश लाने वाली हवाओं को आगे बढ़ाता है, इसलिए 27 जून तक मानसून का दिल्ली पहुंचना संभव नहीं है।
14: दिल्ली में मानसून थोड़ा सा लेट हो सकता है, 27 जून उसकी डेट होती है, और क्योंकि पूर्वी भारत में ही ये बिहार से आगे नहीं बढ़ पाया है और अभी तक इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 25-26 तारीख के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बनेगा जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जिसके प्रभाव से अरब सागर से भी हवाएं खींचेंगी, जिससे कि पश्चिमी तट पर बारिश बढ़ेगी, और साथ ही साथ ये लो प्रेशर एरिया जब उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा कि जो मानसून का सर्ज है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक आएगा और दिल्ली की तरफ धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ेगा।
15: मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली में हो रही बारिश और गरज चमक, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस और उत्तर भारत में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हो रही है, जिसका मानसून से कोई वास्ता नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जब तक मानसून पूरी तरह दिल्ली में प्रवेश नहीं कर जाता तब तक प्री मानसून बारिश होती रहेगी, और इसके साथ ही आंधी और तेज हवाओं का सिलसिला भी अक्सर जारी रह सकता है। ये गतिविधियां कम समय के लिए होंगी, लेकिन इनसे दिल्ली का तापमान कंट्रोल में रहेगा, यानी कभी गर्मी तो कभी ठंडक, कभी बारिश की बौछारें तो कभी रिश्ते पसीने की बौछारें।
0: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी मौसम का ये हाल जारी रहेगा, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
17: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
18: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
19: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
20: Savari, Sokudo.
21: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
22: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
23: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
24: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTA को पता नहीं।
22: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
25: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
23: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
22: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
26: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
27: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
28: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
29: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं।
1: रूंटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
4: प्लीज बज्जीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
5: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
4: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बज्जीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: क्या चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही? क्या चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई? क्या राम मंदिर में गड़बड़ी का ये मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है? क्या दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। टिन्नू यादव एसआईटी के रडार पर है। नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के बीच आभूषण के गायब होने का भी दावा किया गया है।
1: यह चांदी ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
2: जी, ये पहले दी थी 34.644 किलो और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
1: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
2: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
0: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी के शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर न्यू में डालने के लिए ये शिलाएं दी थीं। मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला की चार पुजारियों से पूछताछ की गई। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। एसआईटी जांच के एक अहम बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी है। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस कैमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 307 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हैं। और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी अब सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है ताकि तय 15 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी एसआईटी जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। जांच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है।

0: लेकिन कश्मीर का ही एक दूसरा हिस्सा है डोडा, यहाँ बर्फ की बारिश हो रही है। डोडा में तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया। ठंड किस कदर प्रचंड है कि उसका अंदाजा आप पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। दार्जिलिंग के दुधिया इलाके में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बलासन नदी पर बना अस्थायी ह्यूम पाइप पुल तेज बहाव में पूरी तरह बह गया है, जिससे सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच संपर्क लगभग टूट गया है। पिछले 72 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है। शुक्रवार को करीब 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद बलासन नदी उफान पर आ गई। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पुल पूरी तरह पानी में समा गया।
1: अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक नेचुरल क्लाइमेटिक जो डैमेज है, ये बारिश होना, ये होना, अब ये तो नेचुरली हो जाता है। लेकिन जो ब्रिज जो था, ब्रिज का जो कंडीशन था वो ठीक नहीं बनाया था, जो ये टेम्प्रेरी जो था बहुत ही कमजोर, मैंने थोड़ा बारिश में ही ये ब्रिज डिसमेंटल हो गया, कोलैप्स हो गया है, तो ये नहीं होना चाहिए था। ये इस तरह का जो काम जो अगला जितना भी ये कंट्रैक्टर हो, ये सरकार ने किया था, ये अच्छा नहीं किया, ये जनता के लिए एक मैंने ये पनिश है।
0: दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला NH 110 भी लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। टॉय ट्रेन सेवाएं भी फिलहाल रोक दी गई हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों मुश्किल में हैं। मॉनसून की शुरुआत में ही जिस तरह का नुकसान सामने आया है, उसने आने वाले दिनों की चिंता बढ़ा दी है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश अब पर्यटन और जनजीवन दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर जमीन पर आ गिरा। धूल का गुबार उठा, चट्टानें सड़क पर बिखर गई और शिमला का एक हाईवे अचानक बंद हो गया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली धई बाईपास की है, जहां भयंकर लैंडस्लाइड ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। बताया जा रहा है कि जगह एक मकान के लिए पहाड़ की कटिंग की जा रही थी। बारिश हुई तो नींव कमजोर हो गई, जिसकी वजह से पहाड़ का हिस्सा अचानक ढह गया। प्रशासन इसकी जांच कर रहा है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से हिमाचल में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये घटना एक बार फिर पहाड़ों पर मंडरा रहे खतरे की चेतावनी बनकर सामने आई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 4200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी बनी हुई है। IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। खराब मौसम के दौरान टूरिस्टों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि 23 जून से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर पड़ने की संभावना है। इसके बाद अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ होने के आसार हैं।
2: तो कुछ एक स्थानों पे थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज और जो हल्के स्तर की बारिश जो है, जैसे कि हमारा कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और साथ ही शिमला जिले के भी कुछ एक स्थानों पे हमें देखने को मिल सकती है। बहुत ही सिग्निफिकेंट वेदर, बहुत ही एक्सट्रीम वेदर होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। हल्के स्तर तक की बारिश और थंडर सावर्स यानी कि थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज और उसके साथ ही हल्की स्तर की बारिश जो है वो हमें निचले मैदानी इलाकों में भी एक आध जिलों में और साथ ही मुख्य रूप से मध्यवर्ती इलाकों में हमें लगातार देखने को मिल सकती है।
0: मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 तारीख के बाद पहाड़ों पर बारिश का दौर नई मुश्किलें लेकर आ सकता है। ऐसे में जरूरी है सतर्क रहने की, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कब करवट बदल ले और कोई बड़ा हादसा हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
3: एल नीनो की भयंकर चेतावनियों के बीच देश के मॉनसून का सूचकांक जेट स्ट्रीम यानी उन हवाओं पर टिका है जो पृथ्वी से 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तेजी से बहती है। ये हवाएं पूरे सीजन में होने वाली बारिश का पैटर्न बदल सकती है, जिसका असर सीधे तौर पर देश के तमाम राज्यों पर पड़ेगा।

0: कहीं जबरदस्त बारिश तो कहीं सूखी पड़ी धरती। आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान और भीषण गर्मी से बेहाल लोग। मॉनसून पहुंच तो गया है लेकिन बरस नहीं रहा। देश के कई राज्यों में बारिश का इंतजार अब बेचैनी में बदलने लगा है। हालात ऐसे हैं कि 1 जून से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 40% से भी कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे खराब स्थिति गुजरात और महाराष्ट्र की है। गुजरात में सामान्य से 79% और महाराष्ट्र में 78% कम बारिश हुई है। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। लिहाजा इन राज्यों के कई इलाकों में तापमान अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मॉनसून आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे एक नहीं बल्कि 5 बड़े कारण हैं। अरब सागर से नमी लेकर आने वाली हवाएं कमजोर पड़ गई हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाओं की ताकत भी कम हुई है। भूमध्य रेखा पार करने वाली नम हवाओं का असर घटा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत लो प्रेशर सिस्टम नहीं बन रहा और MGO यानी मेडेन जूलियन ऑसिलेशन भी कमजोर पड़ा हुआ है। यानी मॉनसून की रफ्तार बढ़ाने वाले 5 बड़े सिस्टम इस वक्त धीमे पड़ गए हैं। यही वजह है कि मॉनसून की गाड़ी तेलंगाना के आसपास अटक गई है और देश का बड़ा हिस्सा अब भी बारिश का इंतजार कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मॉनसून की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाले सिस्टम सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाइयों में भी मौजूद हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस वक्त जेट स्ट्रीम की चाल पर खास नजर रखी जा रही है।
1: जी, जेट स्ट्रीम 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल मतलब ईस्टर्ली जेट होता है जो कि जनरली सदर्न लैटिट्यूड पे होता है, तो ये एक ट्रिगर होता है कि जो मानसून को बढ़ावा देता है फर्दर प्रोग्रेस होने में। और इसके साथ ही जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है उसमें भी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स होते हैं और जिसमें भी कभी वो सब साउथ पोजीशन में आते हैं, तो जैसे वहां पे जो ऊपरी सतह में डाइवर्जेंस होता है तो वो लोअर एटमॉस्फेयर में कन्वर्जेंस फेवर करता है और उसके चलते मानसून का जो करंट है वो अपने ओर आकृष्ट करता है और वो मानसून को फर्दर प्रोग्रेस होने में सहायक होता है।
0: आसमान में बहुत ऊंचाई पर तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये धरती से करीब 8 से 15 किलोमीटर ऊपर बहती हैं और इनकी रफ्तार 100 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इन्हें मौसम का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है क्योंकि ये तय करती हैं कि बादल किस दिशा में जाएंगे और बारिश कहाँ होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आसमान में बहने वाली ये तेज हवाएं हमारे मौसम को कैसे प्रभावित करती हैं? जेट स्ट्रीम की दिशा और रफ्तार में थोड़ा सा बदलाव भी बारिश के पूरे खेल को कैसे बदल देता है, क्योंकि आसमान में इसकी चाल बदलते ही जमीन पर बारिश का पूरा हिसाब किताब बदल सकता है।
2: जेट स्ट्रीम है, सोमालिया जेट स्ट्रीम काफी कमजोर है, तो सोमालिया जेट स्ट्रीम का भी मानसून के ऊपर काफी असर पड़ता है। ये क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा के नीचे से ये पूर्वी दिशा से आगे बढ़ती है और मेडागास्कर से टर्न लेती है और सोमालिया कोस्ट से फिर से ये पश्चिम दिशा में से होती हुई और ये पूर्व दिशा में आगे आती है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तट पर काफी तेजी से पहुंचती हैं। सोमालिया जेट स्ट्रीम जब स्ट्रांग होती है, लेकिन ये जेट स्ट्रीम भी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कमजोर बनी हुई है जिससे मानसून को पश्चिमी तट पर पुश नहीं दे पा रही है।
0: जेट स्ट्रीम का असर सिर्फ मॉनसून पर ही नहीं पड़ता। अगर ये उत्तर की ओर खिसकती है तो ज्यादा बारिश हो सकती है और अगर दक्षिण की ओर जाती है तो बारिश कम हो सकती है। यानी आसमान में बहने वाली ये तेज हवाएं ही काफी हद तक तय करती हैं कि आपके शहर में बारिश होगी या नहीं। अगर जेट स्ट्रीम की रफ्तार तेज होती है तो बारिश का पैटर्न भी बदल सकता है। नीचे जमीन पर कई मौसम के सिस्टम कमजोर हैं, तो ऊपर आसमान में जेट स्ट्रीम की चाल भी मौसम का पूरा खेल प्रभावित कर रही है। यही वजह है कि कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कहीं किसान बारिश की एक एक बूंद का इंतजार कर रहे हैं। अब सबकी नजर अगले कुछ दिनों पर है, क्योंकि अगर मौसमी सिस्टम और जेट स्ट्रीम का मिजाज बदला तो मानसून भी रफ्तार पकड़ लेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बारिश का इंतजार और लंबा हो सकता है।
3: भारत का मौसम अगर बदलते पैटर्न्स के कारण चुनौती बन रहा है, तो चीन और यूरोप का मौसम दुनिया को चौंका रहा है। यूरोप के कई देशों में भीषण हीट वेव के कारण तापमान पिछले एक महीने से लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार तक चला जा रहा है, जिससे जंगलों में आग लग रही है, बिजली की मांग बढ़ रही है। दूसरी तरफ चीन भारी बारिश, बाढ़ और इसके उलट रेगिस्तान में गर्मी के कारण अचानक आई बाढ़ का सामना कर रहा है।

0: पूरी दुनिया में ही तापमान का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है, जिसने पूरी दुनिया के मौसम वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। आखिर क्यों यूरोप लगातार भीषण गर्मी का शिकार होता जा रहा है? ये तस्वीरें जर्मनी की हैं, जहां लोगों पर गर्मी का असर नजर आ रहा है। म्यूनिख के प्रसिद्ध इंग्लिश गार्डन पार्क की आइसबाख नदी में सर्फर गर्मी से राहत पाने के लिए लहरों पर सवारी करते नजर आए। नदी का पानी इन लोगों के लिए ठंडक की तलाश में यहां तक खींच लाया है। फ्रैंकफर्ट में भी तेज धूप और गर्मी की स्थिति है। प्रशासन ने आधिकारिक रूप से हीट वार्निंग जारी की है। शहर में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जर्मन मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है कि आने वाले समय में उत्तरी जर्मनी का तापमान और भी अधिक बढ़ सकता है।
1: Wenn wir aber auf den Klimawandel schauen und wir leben eben in einem sich erwärmenden Klimasystem, dann müssen wir damit rechnen, dass die Rekordwerte in Zukunft eben ansteigen, beziehungsweise die Temperaturen ansteigen und wir immer neue Rekordwerte sehen.
0: जलवायु परिवर्तन के कारण जर्मनी धीरे धीरे गर्मी की ओर बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में जर्मनी का तापमान और भी अधिक मुश्किल हालात बना सकता है। इटली की राजधानी रोम में भी भीषण गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। पिछले दो सप्ताह से तापमान की स्थिति यही बनी हुई है, जिससे बचने के लिए पर्यटक तरह तरह से खुद को ठंडा रखने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इटली के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। मिलान, बोलोगना और फ्लोरेंस में गर्मी और भी अधिक परेशान कर सकती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस भी लगातार गर्मी से तप रही है। पिछले कई दिनों से यहाँ बढ़ा हुआ तापमान लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। एफिल टावर और ट्रोकाडेरो क्षेत्र के आसपास पर्यटक और स्थानीय लोग धूप से बचने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि शहर में लगे थर्मामीटर 36.1 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान दिखा रहे हैं। ये इस वर्ष फ्रांस में आने वाली दूसरी हीट वेव है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण आने वाले वर्षों में हीट वेव की घटनाएं अधिक बार और समय से पहले आने लगेंगी। लेकिन स्पेन में मौसम का अलग ही खेल चल रहा है। स्पेन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र गैलिसिया में तेज तूफान और अचानक आई बाढ़ ने कई गांवों को भारी नुकसान पहुंचाया। वियाना दो बोलो इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ और कीचड़ ने घरों, खेतों और सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी इतनी तेजी से आया कि उन्हें अपने पशुओं को बचाने तक का मौका नहीं मिला। बाढ़ के बाद कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, वाहन नष्ट हो गए और भूस्खलन ने गांवों को बाकी इलाकों से काट दिया। स्थानीय प्रशासन ने हालात को बेहद भयावह बताया है। चीन में लगातार बारिश की वजह से भारी सावधानी का अलर्ट जारी किया जा रहा है। हांगकांग में भारी बारिश के कारण प्रशासन को सबसे ऊंचे स्तर का ब्लैक रेनस्टॉर्म सिग्नल दो बार जारी करना पड़ा। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कई व्यवसायों ने अपना कामकाज रोक दिया है। लोगों को घरों के अंदर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी चीन में सक्रिय मानसूनी प्रणाली और कम दबाव का क्षेत्र लगातार भारी वर्षा करा रहा है। चीन के ग्वांगडांग क्षेत्र की ये तस्वीरें देखिए, कैसे हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। बचाव दल लोगों की जान बचाने में जुटा है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बारिश अभी और रौद्र रूप धारण करेगी, जिससे मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। अमेरिका के टेक्सास तट पर भी तूफान की आशंकाओं के चलते चेतावनियां जारी की जा रही हैं। गैल्वेस्टन शहर में कम समय में हुई तेज बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क है।
2: हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
5: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची। लेकिन क्या अब टीएमसी की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है। इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच टीएमसी की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
1: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके ये फंड पार्टी का जो है, तो दूसरे बड़ा बड़ा फंड वाला पार्टी जो है, तो जो दिल्ली में सत्ता में है, जो स्टेट में सत्ता में था, तो उनके देखिए ना, तो क्या है तृणमूल कांग्रेस का, तो हमारा ऑफिशियल आपका पार्टी के तरफ से ऑफिशियल यही आपका रिएक्शन है, जो लोग मेलाइन करने के लिए ये बोल रहा है, हम अभी ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, पार्टी का लीगल ऑफिशियल ऑडिटेड फंड है, बाकी ये पार्टी कंसर्न जो लीडरशिप है वो देख रहे हैं।
2: दिस इज आवर मनी, दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी, एंड मिस्टर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, टीएमसी पार्टी मेंबर्स, वेदर यू आर विथ अ न्यू पार्टी और वेदर यू आर विथ टीएमसी, यू ऑल हैव चीटेड द पीपल ऑफ बंगाल, एंड दिस इज द रीजन फॉर योर डाउनफॉल। Using our money, you all have traveled in chartered flights, big convoys, in front of your house, huge police battalion standing and people were facing difficulty to cross the road. These are the reasons, realize it, this is the reason for your downfall.
0: TMC में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है, यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।

खुलासा नंबर एक, दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती का जिम्मा संभालने वाले दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि चढ़ावे में चोरी गिनती करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। खुलासा नंबर दो, राम मंदिर के आरएमओ यानी रेडियो मॉनिटर ऑफिसर की भूमिका कटघरे में है। आरएमओ के कंधों पर ही सीसीटीवी से निगरानी का काम था। आरोप है चोरी के वक्त सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता था। बड़ी बात यह है कि 17 सालों से आरएमओ सीसीटीवी निगरानी का काम देख रहे थे और सीधे चंपत राय को रिपोर्ट करते थे। खुलासा नंबर तीन, गेट पास बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले सोमेश आनंद एसआईटी के रडार पर हैं, क्योंकि बिना गेट पास के चढ़ावे की रकम या फिर चढ़ावे के जेवरात राम मंदिर से बाहर नहीं जा सकते थे। आरोप यही है कि सोमेश आनंद ने बिना चेकिंग के चढ़ावे की गाड़ी को मंदिर परिसर से बाहर जाने दिया। सवाल यही है, ऐसा क्यों किया गया। खुलासा नंबर चार, राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी को चढ़ावे की चोरी के पूरे खेल के बारे में पता था, बावजूद इसके थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की जांच में थाना प्रभारी की भूमिका भी शक के घेरे में है। तफ्तीश के बाद ही चढ़ावा चोरी कांड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, लेकिन आरोपों में घिरे जिम्मेदार खुद को बेदाग बता रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कांड का खुलासा होने के बाद मंदिर में दान करने वाले राम भक्तों ने जिम्मेदारों पर सीधे सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा भी घट गया है। जांच के बीच अब मंदिर आने वाले राम भक्तों की संख्या और चढ़ावे में कमी आई है। पिछले कई महीनों से हर महीने औसतन 7 करोड़ रुपए के आसपास दान राशि मिल रही थी। पिछले एक पखवाड़े में ये आंकड़ा घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं कर्नाटक की एक श्रद्धालु का आरोप है कि राम मंदिर में कीमती हार दान किया था, लेकिन आज तक उसकी रसीद नहीं मिल पाई है। पता नहीं राम मंदिर में चढ़ाए हार का क्या हुआ। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार यही दावा कर रहा है कि दान में मिली राशि और उसकी गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद के चलते राम भक्तों के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं उस चढ़ावे को लेकर जो वो राम मंदिर में आस्था के नाम पर दान करते थे। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी में हो सकता है खुलासा, एसआईटी जल्द सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर भी किया गया हाथ साफ, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे, कहा कि जब उन्हें कोई नहीं पूछता था तब हमने दिया था उनका साथ, यह हमें कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, मैं मतदाताओं से माफी मांगता हूं। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी उठाए सवाल, वीडियो से बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। और ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और खालिबाफ की अगुवाई में चर्चा, होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। आज पूरे 20 दिन हो गए एमबीए की स्टूडेंट बबीता पांडे की गुमशुदगी को, जो 29 मई को उत्तराखंड में ट्रैकिंग के दौरान अपने दो दोस्तों से बिछड़ गई, उसके बाद गायब हो गई। उसे लेकर हाल के वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में मेरी कई पुलिस अफसरों से बात हुई उत्तराखंड की, जिस पुलिस स्टेशन में बबीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, जो वहां के इंचार्ज हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। लेकिन इस कहानी को अब एक और रुख देने की कोशिश की जा रही, हालांकि बहुत से सारे लोगों की मान्यता है और मान्यताओं के बारे में क्या बोलूं, लेकिन आम लोगों तक बात होती है, आम लोगों तक अफवाहें होती है, आम लोगों तक पुरानी प्राचीन कहानियों का हवाला दिया जाता तो समझ में आता है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको एक बोर्ड दिखाना चाहता हूं। ये बोर्ड देखिए, इस बोर्ड पर लिखा है परियों का देश। अब यह बोर्ड कोई भी लिख सकता है। इस बोर्ड पर एक और बोर्ड है बहुत पुराना सा, उसमें भी लिखा हुआ है परियों के देश के कैंट पर्वत पर आपका स्वागत है। इन दोनों बोर्ड की एक खासियत, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें बाकायदा जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल की तरफ से यह बोर्ड लगाया गया है, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल। अब जिला पंचायत एक सरकार का हिस्सा है, गवर्नमेंट के सिस्टम में आता है, और मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया और कुछ उत्तराखंड के लोगों से बात भी की। खुद उत्तराखंड सरकार इस बात को मानती है कि इसी उत्तराखंड में एक खास पहाड़ी पर परियों का एक देश। आप में से बहुत लोग इसको सुनकर हंसेंगे, लेकिन मैं कागजी बात कर रहा हूं जो रिटर्न में है, लिखित में है, और उसी का एक जीता जागता सबूत ये साइन बोर्ड है जिस पर बाकायदा लिखा हुआ है परियों का देश और जिस पर जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल ये भी लिखा हुआ है। तो मतलब ये सिर्फ लोगों की धारणाएं नहीं है, लोगों की गलतफहमी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसे मान्यता देती है कि उनके राज्य में एक इलाका ऐसा है जहां परियां रहती हैं और इसीलिए उसे परियों का देश कहा गया। लेकिन इन परियों का बबीता पांडे की गुमशुदगी से क्या लेना देना? तो आज मेरी बबीता के भाई हर्षित से भी बात हुई फोन पर, वो शायद इस वक्त रामनगर में है। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही थी, तो मैंने कहा कि 20 दिन हो गए, क्या कुछ हुआ? तो जो कुछ उन्होंने बताया, जो मेरी पुलिस से बात हुई वो सारी, पर पहले एक अहम सवाल और उसका जवाब आपको बताता हूं। तो अर्शद से पूछा कि कई जगह ये खबरें आ रही हैं कि बबीता को परियां ले गई, उन्हीं परियों के देश वाली, और वो परियों का देश क्यों कहा जाता वो भी आपको कहानी सुनाऊंगा। तो अर्शद ने कहा कि हाँ, कुछ लोगों ने हमें सलाह दी, तो हम अपने जो लोक देवता पहाड़ों में ऐसे होते हैं, जो बहुत जगह पे हम उन्हें पंडित और बाकी चीजें कहते हैं, तो कुल गुरु या इस तरह की चीजें आप माने, तो उनके पास गए थे, क्योंकि परेशान है, 20 दिन से बहन का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, पुलिस कोशिश कर रही है, तमाम टीमें लगी हैं। तो हमने जानने की कोशिश की कि आखिर हमारी बहन कहाँ है, सही सलामत है, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इन्हीं सवालों के साथ हम अपने कुलगुरु के पास पहुंचे और उनसे सवाल पूछा कि बबीता कहाँ है। हर्षित ने बताया कि उन कुल देवता ने जो जवाब दिया वो ये था कि तुम्हारी बहन को परियां ले गई। अब परियों का मतलब उत्तराखंड में रहने वाले ज्यादातर लोग जानते हैं, परियां ले गई, और उन्होंने फिर यह भी कहा कि परियों को शोर शराबा पसंद नहीं है, हंगामा पसंद नहीं है, और यही वजह कि तुम्हारी बहन को परियां ले गई। अब यह हर्षित का कहना। इसके अलावा जिस जगह से बबीता गायब हुई 29 मई को, उस पूरे आसपास में 3 गांव हैं। असल में तो देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी, यहां से कुल 144 किलोमीटर दूर है वो ट्रैकिंग का एरिया जो बहुत मशहूर है ट्रैकिंग के दीवानों के लिए, दयारा बुग्याल। तो दयारा बुग्याल जो पॉइंट है वो देहरादून से 144 किलोमीटर दूर है, ये आपको नक्शे के जरिए भी दिखा रहा हूं। और उसी दयारा बुग्याल से ट्रैकिंग शुरू होती है, वहां से अलग अलग कैंप होते हैं। दयारा बुग्याल तक जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं जाती, आप सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं उस पॉइंट तक। तो दयारा बुग्याल पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं, सिर्फ 3, और ये तीनों रास्ते 3 गांव से होकर जाते हैं, और ये 3 बड़े गांव हैं। ये 3 गांव हैं बरसू, रैथल और नटीन। बरसू, रैथल और नटीन, ये 3 गांव हैं जिससे आप दयारा बुग्याल तक पहुंच सकते हैं। बबीता और उसके दोनों दोस्त हरमनप्रीत और हरमनपाल 29 मई को रैथल गांव के रास्ते इस बुग्याल तक पहुंचे थे। इन 3 गांव के लोगों का भी यह कहना है कि शायद बबीता को परियां ले गई। अब जिस जगह की बात हो रही है, परियां ले गई, परियां ले गई, और जो परियों का देश है जो आपको बोर्ड दिखाया है, हालांकि वो जगह उसका नाम है खैंट पर्वत, खैंट पर्वत या खैंट पर्वत बोल लीजिए। तो खैंट पर्वत से ये बुग्यारा जो है, जहां पे इन्होंने कैंप लगाया था, जहां से बबीता गायब हुई, उसकी दूरी 167 किलोमीटर। तो सवाल ये है कि क्या परियां अपना देश छोड़कर इस जगह तक पहुंचाएंगी जहां पर बबीता गायब हुई थी, यानी कि दयारा बुग्याल तक। लेकिन गांव वालों का यही कहना है कि बबीता को परियां ले गई। अब क्यों वो कह रहे हैं, और हर्षित के भी कुलदेवता ने ऐसा क्यों कहा, और ये परियां ले गए इसका मतलब क्या है? तो पहले परियों की दास्तान और फिर धीरे धीरे एक एक सवाल के आपके जवाब देंगे। असल में एक प्राचीन लोक कथा है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में लोग परियों के बारे में बहुत बात करते हैं, ये मैं जानता हूं। मैं कहानी शुरू आगे बढ़ाऊं, हम लोग अभी हमारी पूरी टीम क्राइम तक की, आपको याद है लास्ट ईयर हम टिहरी गढ़वा टिहरी गए थे, टिहरी डैम के पास। तो जिस जगह हम रुके थे ऊंचाई पर, उसके ठीक सामने कुछ पहाड़ थे, तो वहां के लोकल लोगों ने हमें बताया कि उनमें से एक पहाड़ जो है वहां पर यह रहती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर वहां से, रात को हम लोग हमेशा दिन और रात को घर पे फोन करते हैं, तो मैंने अपनी वाइफ को फोन किया, उसने पूछा कि सब ठीक है। फिर मैंने कहा यार एक सामने कह रहा था कि पहाड़ पे परियां रहती हैं, तो ये क्या होता है? उधर से जानते हैं जवाब क्या आया, चूंकि मेरी वाइफ उत्तराखंड की है, उसने कहा कि खबरदार उस पहाड़ की तरफ मत जाना, और अपनी पूरी टीम को भी बोल देना और कोई नहीं जाएगा उधर। तो मैंने कहा ऐसा क्या? बोली बस जितना कह रहे उतना सुन, तो मत जाना, खतरा है। वो चीज़ आज भी मुझे याद है, इसीलिए जब ये परियों की बात आई तो मैं उससे उसको रिलेट कर रहा था। तो पुरानी कथाओं और मान्यताओं के हिसाब से उत्तराखंड में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था आशा रावत। आशा रावत की 9 बेटियां हुई, बेटा एक भी नहीं हुआ, और कहते हैं कि इन 9 की 9 बेटियां बहुत खूबसूरत थीं और इनमें कुछ दैवीय शक्ति भी थी। कहानी के हिसाब से एक रोज जब 12 साल की उम्र थी इन 9 बेटियों के आसपास, 12, 13, 14, तो एक सुबह उन्होंने देखा कि जिस पहाड़ और जिस जगह पे राजा का पूरी रियासत थी चारों तरफ अंधेरा है सुबह, लेकिन देखा एक दूर एक पहाड़ पर बहुत रोशनी है, रोशनी की किरणें दिखाई दे रही हैं। उन रोशनी की किरणों ने इन 9 बहनों को बड़ा आकर्षित किया, और ये 9 बहनें चुपचाप अपने घर में कुछ बताए उस पहाड़ की तरफ चल दी, उसके बाद कभी लौट कर अपने घर नहीं आई। और कहते हैं कि उसी पहाड़ पर पहुंचकर ये 9 की 9 बहनें परियां बन गई, दैवी शक्ति थी लोक कथाओं के हिसाब से। और अब तक ये माना जा रहा है कि ये जो 9 बहनें हैं इसी कैथ पर्वत के 9 अलग अलग पहाड़ों की चोटियों पर रहती हैं, और इन 9 पहाड़ों के इर्द गिर्द जितनी भी बस्तियां हैं उन बस्तियों में रहने वाले लोगों की हिफाजत करती हैं, सुरक्षा करती हैं। ये मान्यता है कि जो कैथ पर्वत के इर्द गिर्द नौ पहाड़ हैं उन पर ये नौ बहनें नौ परियां रहती हैं और आसपास के लोगों की हिफाजत करती हैं। अब यहीं पर इसी इलाके में एक मंदिर भी है और हर महीने हर साल जून में इस मंदिर में बाकायदा पूजा होती है, मेला लगता है। पूजा तो अमूमन होती रहती है लेकिन खैट खाल मंदिर है इस मंदिर का नाम। और कहते हैं कि इस मंदिर में भी बहुत सारी रहस्यमय शक्तियां और दूर दूर से लोग जून के महीने में जब यहाँ मेला लगता है इन्हीं नौपरियों के लिए तो बहुत लोग मान्यता लेकर आते हैं और इस मंदिर में कुछ अजीब शक्तियां हैं। इसके अलावा इसी को लेकर एक और कहानी है कि ये जो खैत पर्वत है इस पर बड़ी अजीब अजीब रहस्यमय चीज़ें हैं। एक अजीब रहस्यमय गुफा है जिसका और छोर पता नहीं चलता। ये भी कहा जाता है कि यहाँ अखरोट और कुछ और फल बिना किसी की मेहनत के अपने आप उगते हैं और ये भी कहा जाता है कि यहाँ बड़े खूबसूरत फूल हैं लेकिन अगर कोई पौधा उखाड़ने की कोशिश करे तो वो फौरन मुरझा जाते हैं। और इन सबसे बड़ी बात एक मान्यता ये भी है कि इस खैत पर्वत के नौ पहाड़ों के इर्द गिर्द और उनकी बस्तियों के आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए एक नियम है जिसका वहां के लोग पालन करते हैं। एक, अंधेरा होने के बाद कोई उधर जाता नहीं। नंबर दो, उनका कहना है कि रात के वक्त, रात से सुबह तक शोर शराबा, तेज संगीत, चीखना चिल्लाना, फूहड़ता या उस इलाके को गंदा करना ये उन परियों को पसंद नहीं और वो उसे उठा कर ले जाते हैं। इस पूरे इलाके में एक कहानी बहुत ही मशहूर है और वह है एक जीतू नाम के किसान की। कहते हैं कि जीतू बहुत ही मधुर बांसुरी बजाया करता था और उसकी बांसुरी की धुन दूर दूर तक लोग उसकी तारीफ करते थे और वो पहाड़ों पर बैठकर अपना बांसुरी बजाता। अलग ही इमेजिन करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कहते हैं कि उसकी बांसुरी की आवाज इतनी मधुर थी, इतनी खूबसूरत थी कि उन परियों को बहुत पसंद आया और वो एक दिन उसी जीतू को उठाकर ले गए और ये उस पूरे इलाके में कहानी प्रचलित है और जीतू फिर कभी लौट कर नहीं आया। तो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं या तो जो परियों को पसंद आते हैं उठा लेते हैं या फिर जो परियों के नियम को तोड़ते हैं उनको उठाकर ले जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है उत्तराखंड की इन परियों की और इस कैट पर्वत पर जिस पे बाकायदा बोर्ड है, वहाँ एक मंदिर है जहाँ हर साल मेला लगता है, लोग दूर दूर से आते हैं। तो मतलब ये सब हवा हवाई नहीं है, सारे डॉक्यूमेंटेड है और उत्तराखंड सरकार इस पर मुहर लगाती है क्योंकि साइन बोर्ड से लेकर बाकी चीज़ें उत्तराखंड सरकार की तरफ से हैं कि परियों के शहर में आपका स्वागत है। अब सवाल ये है कि इन परियों के साथ बबीता पांडे को क्यों जोड़ा गया। तो जिस इलाके से, जिस दयारा बुग्याल से गायब हुई बबीता, वहां के लोगों का कहना है कि जो अब तक की कहानी सामने आई वो ये कि बबीता अपने कैंप से 11 बजे निकली, दोनों साथी उसके कैंप में ही थे और वो अपना मोबाइल लेकर बाहर निकली और बाहर एक दूसरा कैंप था जिसमें कुछ स्कूल के टीचर थे, बच्चे थे और वो उन्हीं के कैंप के सामने बैठकर मोबाइल पे गाने सुनने लगी जिसका आवाज बहुत तेज, मतलब साउंड ज्यादा था। एक टीचर ने टोका भी कि इतनी रात को इतनी तेज आवाज में आप गाना मत सुनिए और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सो जाइए, मैं आपको टेंट तक छोड़ दूँ। उसने कहा नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तब गांव वालों का कहना है कि तेज आवाज में संगीत मतलब परियों के नियम को तोड़ना, चटकीले रंग के कपड़े पहनना भी परियों को गवारा नहीं है, इस पूरे इलाके में यह मान्यता है, गंदगी फैलाना भी नहीं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि रात और दूसरा कोई अकेला हो तो, अब वो अकेली थी पेड़ के नीचे, तो इन्हीं सारी चीज़ों से अब ये बात फैलती चली गई। बाकी रही सही कुसर ये हो गई कि जब हर्षित यानी बबीता का भाई अपने कुल देवता के पास गया और पूछा कि उसकी बहन कहाँ है, मिलने की उम्मीद है कि नहीं है, तब उन्होंने कहा कि उसे परियां ले गई। अब ये सारी चीज़ें हो गई। फिर मैंने उस इलाके के जहाँ पर ये केस दर्ज है गुमशुदगी का, उनके जो थाने इंचार्ज हैं दीपक नौटियाल, बहुत ही अच्छे होनहार और सज्जन इंसान है, उनसे मैंने पूछताछ की और वो पहाड़ी है। तो मैंने कहा क्या आप परियों पे भरोसा करते हैं, तो उनका जवाब वही था जो मुझे उम्मीद थी। उन्होंने कहा कानून में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं। तो मैंने पूछा कि अच्छा, जब आप पुलिस में नहीं आए थे, जवान थे, पढ़ते थे, बच्चे थे, तब तो आपके इलाके में ये सारी बातें होती होंगी। तब वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ होती थी, लेकिन कम से कम बबीता केस को हम परियों के एंगल से जांच नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक बेसिक मिसिंग केस के तौर पर ले रहे हैं और उसी हिसाब से अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 20 दिन हो गए अब 20 दिन में कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर बबीता गायब हो गई तो उसके गुम होने का 20 दिन के बाद भी कोई सुराग या सबूत क्यों नहीं मिला? अगर बबीता को किडनैप किया गया तो किडनैपिंग के सबूत या किडनैपर का कोई सुराग क्यों नहीं? अब तक तो रैनसम के कॉल आ जाने चाहिए, क्योंकि किडनैपिंग के केस में 20 दिन को इंतजार नहीं करता। अगर कोई किडनैप हुआ तो उसे बहुत जल्द से जल्द अपना पीछा छुड़ाना होता है, पर ऐसा कोई कॉल उनके घर तक नहीं गया, बबीता के घर तक। अगर बबीता को जानवर उठा ले गया, एक एंगल ये भी है कि आसपास पूरा जंगल और पहाड़ी है, तो कोई निशानी तो मिलती, उसके कपड़े, उसके मोबाइल, उसके चप्पल, खून के निशान, पर कुछ नहीं मिले। अगर बबीता का कत्ल हो गया तो कत्ल के कोई सबूत मिलते, वो भी नहीं मिला है। तो फिर बबीता गई कहां, क्योंकि कोई सबूत, कोई सुराग नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या मतलब बबीता को पहाड़ ने निगल लिया या फिर जंगल खा गई? तो जो पुलिस है, वहां की जो पुलिस है, जैसे वहीं के इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, दीपक नौटियाल, तो उनका कहना था कि अब हमने एक नया काम किया है कि हम अलग अलग अब नई टीमों को उन इलाकों में भेज रहे हैं, और खासतौर पर ये तीन गांव उनके निशाने पर हैं, बरसू, रैथल और नटीन गांव, क्योंकि यही तीन रास्ते हैं जहां तक आप दयारा बुग्याल तक पहुंचते हैं। उनकी भी मदद ली। तो कई बार होता है कि पुलिस वाले गए और पूरे इलाके को छान रहे हैं, पर हो सकता है कुछ चीजें सामने पड़ी हो, देख नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने एक नई कोशिश की। उन्होंने कहा अब उन जगहों पर जहां वो सब छान चुके हैं, सबकी जांच कर चुके हैं, अब वहां नई टीम को भेजते हैं, नए लोगों को भेजते हैं, हो सकता है वो अपनी नजरों से कुछ और देख लें। और ये अच्छी पहल है। कहा जाता है कि क्राइम में ये चीजें बड़ी कारगर साबित होती हैं। एक शख्स के देखने का जो नजर नजरिया कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और होता है। कई बार क्राइम सीन पे सामने सबूत है, किसी को दिखाई नहीं देता, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आता है, एक बार में पकड़ लेता है। तो ये काम इन लोगों ने किया है, लोकल पुलिस ने, कि अब वो हर दिन नई नई टीमों को भेज रहे हैं इन्हीं तीन गांवों के इर्द गिर्द 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में, इस पूरे दायरा बुग्याल के, कि शायद कुछ मिल जाए। तो हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। उसमें एक एंगल ये भी है कि क्या बबीता खुद से कहीं निकल गई? तो अगर निकली है तो जाहिर सी बात है कि हवा में तो गुम होगी नहीं। तो अगर वो इस ट्रैकिंग कैंप से निकलेगी तो रैथल तक जाएगी, और रैथल के बाद अगर वो हाईवे तक जाएगी, क्योंकि वापस निकलना है, तो किसी ना किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। जो बबीता के दोस्तों ने बताया था वो ये कि जब 29 मई को वहां पहुंचे थे तो रैथल गांव में उन्होंने अपनी कार खड़ी कर दी थी, और उस कार में ही लोगों के बड़े बड़े बैग और बाकी सामान था। छोटे बैग लेकर ये लोग ऊपर तक आए थे, तो कार वहीं खड़ी थी। जब बबीता गायब हुई अगले दिन, यानी 30 मई को ये लोग गए, कार वहीं थी, बबीता का बैग भी वहीं था, दस्खतस, यानी बबीता कार तक भी नहीं लौटी। लेकिन पुलिस अब ये कर रही है कि उस रैथल गांव से आसपास जितनी भी बस्तियां हैं, हाईवे हैं, बस स्टॉप है, टैक्सी स्टैंड है, कैब वाले हैं, उन सब से पूछ रहे हैं कि क्या कोई लड़की आई और इस तारीख में 29-30 या उसके बाद यहां से निकली है। इस चक्कर में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाल रहे कि शायद किसी में बबीता कैप्चर हो जाए अगर वो खुद से गई है। यहां तक कि बबीता नैनीताल में पढ़ी थी डीएवी स्कूल में, तो नैनीताल भी एक टीम भेजी गई। इसके बाद वो ऑनलाइन एमबीए का कोर्स कर रही थी, दिल्ली में कुछ दिनों तक जॉब किया, वहां भी टीम, रामनगर में उसके कई दोस्त रिश्तेदार रहते हैं, तो अब रामनगर भी एक टीम जा रही है। एक सबूत नहीं मिला। अब बबीता का मोबाइल भी गायब है। तब मोबाइल जब गायब हुआ तो उसी के एक दोस्त ने बताया था कि उस दिन जब हम लोग कैंप में जा रहे थे तो हमें ये पता था कि इसके बाद नेटवर्क होगा कि नहीं होगा। बबीता को पिक्चर लेने का बड़ा शौक था, फोटोग्राफी का, तो उसने अपना मोबाइल 100% चार्ज कर लिया था, और वो आई उसके कुछ घंटे बाद ही, शाम को ये लोग पहुंचे थे। तो जब वो 11 बजे के बाद निकली तो 11 बजे तक उन दोस्तों ने गवाही दी कि उसका मोबाइल में बैटरी 55% था, लेकिन एक के बाद मोबाइल स्विच ऑफ था। अब एक दो घंटे के अंदर पूरा मतलब पूरी तरह से बैटरी खत्म हो जाए, ये भी थोड़ा सा अजीब है। तब पुलिस ने, चूंकि वो एप्पल का फोन, उसके पास एप्पल का फोन था, आईफोन, तब एप्पल को कांटेक्ट किया कि आप उस आईफोन को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए कि उसका लास्ट लोकेशन कहाँ था उस कैम के अलावा। तो जहां लोकेशन मिलेगा मतलब इसका है कि वो नई जगह होगी जहां पर वो बबीता गई होगी। तो अब एप्पल वालों से मदद मांगी, अभी उनकी रिपोर्ट आई नहीं है, इंतजार कर रहे हैं वो लोग। उधर जब हमने हर्षित से बात की यानी बबीता के भाई से, तो उसने कहा कि हमें जो डाउट है, एक ये कि उसे किडनैप कर लिया गया, लेकिन उस वो बात गले के नीचे नहीं उतरती इसलिए कि 20 दिन तक कोई किडनैपर किसी लड़की को किडनैप करके नहीं रखेगा, और दूसरा फिरौती के लिए फोन भी नहीं किया तो इतने दिन इंतजार नहीं करेगा, तीसरा बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है बबीता के घर वाले, तो इसलिए कोई फिरौती के लिए किडनैप कर ले, ये भी पुलिस इसको रूल आउट कर रही है। उस कैंप में उस रात कुछ और लड़के थे, जितने भी कैंप में रजिस्टर थे और जो भी था, पुलिस ने उन सब की लिस्ट निकाली, कुंडली निकाली, उन सब से पूछताछ की, कोई सुराग नहीं मिला। जो दो लड़के थे उनसे पुलिस हर तरह से क्रॉस चेक कर चुकी, वेरीफाई कर चुकी, उनके स्टेटमेंट को कर चुकी। पुलिस का कहना है कि उन दोनों के बयान लगभग सभी सच साबित हो रहे हैं। तो उन दोनों को हालांकि पुलिस ने छोड़ा नहीं है, लेकिन गिरफ्तार भी नहीं किया। उधर हर्षित का कहना है कि उसके पास 30 मई की शाम ठीक 5 बजे इन दो दोस्तों में से एक हरमन पाल का फोन आया था, और उसने कहा कि बबीता हमारे साथ थी और रात गायब हो गई। ये फोन सुनने के बाद अगले दिन सुबह हर्षित और उसके घर वाले पहुंच गए थे इस दहरा बुग्याल में। वहां इन लोगों ने बात की, हर्षित ने उन दोनों दोस्तों से, तो उन्होंने जो कहानी सुनाई हर्षित को वो ये थी कि वो लोग रात 11 बजे कैंप के अंदर सोने जा रहे थे, तभी बबीता ने कहा कि मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रही हूँ, और वो अपना मोबाइल लेकर बाहर टहलने निकल गई और हम दोनों सो गए। सुबह उठे तो देखा वो गायब थी, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। यही कहानी उन्होंने पुलिस को बताई। उसके बाद उन्होंने पूरी जर्नी की, जब वो निकले रामनगर से और उस अपने घर से, फिर कैसे कहाँ किसने किसको पिक किया, उसके बाद वो कहाँ कहाँ रुके, वो सारी चीज़ों को पुलिस ने वेरीफाई किया, और उन दोनों के बयान हर जगह बिल्कुल सही साबित हो रहे थे। कई जगह के CCTV फुटेज भी मिले जिसमें उनके बयान को एक तरह से सच साबित कर दिया, और ऊपर से अब ये परियों वाली नई कहानी आ गई। हालांकि पुलिस जाहिर सी बात है कानून के दायरे में रहकर इन चीज़ों को तो मानेगी नहीं, लेकिन अगर आप लोकल लोगों से अभी भी जाकर बात करें, और जब से हर्षित के जो भी कुल देवता उन्होंने बता दिया है, तो अब ये बात तूल पकड़ गई है कि वाकई परियां ले गई हैं बबीता को। अब जब उत्तराखंड सरकार खुद परियों का देश घोषित कर दे, तो फिर इससे ज्यादा और क्या होगा आज के इस दौर में। लेकिन यही सच है, और ये बोर्ड उसका जीता जागता सबूत है। तो बस दुआ यही है कि बबीता जल्द से जल्द मिल जाए और सही सलामत हो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: कहने को कह दिया जाता है कि बड़े लोग बड़ी बातें, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सोशल मीडिया लड़ाई छोटी बातों से शुरू होकर ऐसी उलझी है कि फोटो सेशन से शुरू हुआ बवाल अब राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच गया है। मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल ट्रंप बार बार G7 में मेलोनी के व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। अब शनिवार को उन्होंने लिखा, फ्रांस में G7 मीटिंग के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बार बार मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश की। इटली में उनकी लोकप्रियता का स्तर गिर रहा है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि अब ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की बात आई तो उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था। मेलोनी ने हमें इटली के लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवे का इस्तेमाल नहीं करने दिया, जिससे बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल दिक्कत हुई। ये तब हुआ जब अमेरिका इटली और दूसरे नेटो सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। अमेरिका ने अब ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है, तो मेलोनी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से दोस्ती करना चाहती हैं, लेकिन नहीं, शुक्रिया। मेलोनी ने इसके जवाब में लिखा, ये लगातार और बिना किसी उकसावे के किए जा रहे हमले बिल्कुल बेमतलब है। जहाँ तक मेरी लोकप्रियता की बात है तो आपका दोस्त होने से इसमें कोई मदद नहीं मिली है और न ही ये आपके साथ मेरे रिश्तों पर निर्भर करती है। मेरी लोकप्रियता इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की मेरी काबिलियत पर निर्भर करती है और मैंने हमेशा यही किया है। इटली में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के मामले में भी हमने समझौता का सम्मान किया है। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मेलोनी इससे पहले भी ट्रंप का साफ शब्दों में जवाब दे चुकी हैं।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में हो सकता है खुलासा, एसआईटी जल्द सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर भी किया गया हाथ साफ, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे, कहा कि जब उन्हें कोई नहीं पूछता था तब हमने दिया था उनका साथ, यह हमें कमजोर करने की साजिश।

करना है, मैं मतदाताओं से माफी मांगता हूं। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी उठाए सवाल, वीडियो से बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग।

0: इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। टिन्नू यादव एसआईटी के रडार पर है। नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के बीच आभूषण के गायब होने का दावा भी किया गया है।
1: चांदी ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
2: जी, ये पहले दी थी 34.5 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
1: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
2: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
0: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए शिलाएं दी थी।
2: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
1: दीपक आपने दिया था?
2: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
1: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
2: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
0: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई है। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई है, लेकिन ना ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और ना ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। एसआईटी जांच के अहम बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी है। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी अब सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है, ताकि तय 45 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी एसआईटी जांच के दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। जांच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इससे पहले एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की थी, दस्तावेजों की पड़ताल की थी, ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों का पता लगाया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी पाई गई तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

0: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: क्या 15 दिन में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों का पता चल जाएगा? क्या दान चोरी में शामिल बड़े से बड़े नाम को पकड़ लिया जाएगा? योगी ने दिया आश्वासन, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन सूबे के मुखिया ने भी 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये 19 जून की तस्वीरें हैं, जब योगी अयोध्या पहुंचे। योगी जब राम मंदिर दर्शन के लिए आए तो चंपत राय साथ में नहीं थे। योगी आए, रामलला के दर्शन किए।

0: रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दान पत्र में दान भी डाला। यही वो दान पत्र है जिनसे चोरी करने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह हर रोज लाखों राम भक्त इन दान पत्रों में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं और आरोप है कि इसी चढ़ावे की चोरी हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन आज योगी ने साफ कर दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
1: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
0: योगी के आश्वासन का मतलब ये तो नहीं है कि सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि कोई भी शामिल हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वो जनता को भरोसा देने में कामयाब रहे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि अगर लोगों के पास सबूत हैं तो वो एसआईटी को सौंपें। योगी ने लोगों से सिर्फ 15 दिन और इंतजार करने को कहा, क्योंकि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। और ये भी कहा कि अपराधी कोई भी हो, वो बचेगा नहीं।
1: एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
0: चढ़ावा चोरी को सबसे ज्यादा तूल समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो पिछले 12 दिनों से लगातार इस केस को उठा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ चंदा चोर का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी से अलग मोड़ दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, तो योगी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो उपदेश न दे। अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। योगी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में कतई न आए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मंदिर जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनको फंसा न दिया जाए। योगी कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अखिलेश इसे महाघोटाला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन विरोधी गिरोह की गहरी पड़ताल होनी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम और उसका सम्मान हो, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं।
1: और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले राम जन्म भूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे।
0: सवाल है कि योगी की कई बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी की खबरें मिली तो वो बेहद आहत हुए हैं। लेकिन अब जब प्रदेश के मुखिया ने 15 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है तो क्या लोग संतुष्ट हैं?
2: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दूसरी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा तो उसमें अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं।
3: जिस तरीके से योगी जी ने कहा है तो अभी भी आप लोगों को पूरी तरीके से अब विश्वास है या जिस तरीके की ये घटना निकल करके आ रही है ये भी आप लोगों को व्यथित कर रहा है?
4: जी नहीं, विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र, अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि में चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा? ये दोहरा चरित्र योगी जी ने कहा, इससे सावधान रहे। योगी जी के ऊपर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
3: लोग व्यथित हैं सुन करके कि जो चीजें हुई हैं।
2: आत्मा में तो दुख हुआ एक बार कि पूरे विश्व की नजर हमारे भगवान प्रभु राम पे है, इतना सोना आया, इतना चांदी आया, इतने रुपये चढ़े, ये चढ़ावा क्या हो गया? एक बार तो कलंकित हुई, हम लोग झटका लगा, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लोगों से बताया कि इसकी बिल्कुल बारीकी से जांच की जाएगी, कोई भी दोषी व्यक्ति बचेगा नहीं, वो चाहे जितना अपना बड़े माफिया कहता हो, चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो, तो इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं और माननीय योगी जी ये कार्य करेंगे। ये इनकी छवि का मामला है, इनकी प्रतिष्ठा का मामला है, हम तो एक जनमानस हैं।
0: उम्मीद कीजिए कि SIT समय पर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपे और चढ़ावे की चोरी का खुलासा हो। कुमार अभिषेक के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
5: अब मंदिर के चढ़ावे की चोरी के आरोपों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम के नाम पर बीजेपी के लोगों ने लूट की है, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है।
0: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं बल्कि सियासी मुद्दा भी है। विपक्ष लगातार हमलावर है, केंद्र सरकार पर भी, योगी सरकार पर भी और राम मंदिर ट्रस्ट पर भी। अखिलेश यादव के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
6: अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो कैश ही चोरी हो गया और कई हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए और एक भी FIR नहीं हुई है। ना यूपी पुलिस ने कोई FIR की, ना ED ने कोई FIR की, ना CBI ने कोई FIR की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को?
0: उधर बीजेपी लगातार कह रही है कि SIT जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन विपक्ष को इतनी जल्दी क्यों है? विपक्ष जांच से पहले दुष्प्रचार क्यों कर रहा है?
7: उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी और मंदिर के प्रशासन ने भी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जो भी चीजें हैं, दूध का दूध पानी का पानी होने देना चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोग राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित इस मुद्दे पर जो है वो सियासी संक्रमण के जरिए जो है वो दुष्प्रचार और दुराग्रहपूर्ण जो है वो धुन में लगे हुए हैं, इससे बात आ रहा है।
0: इस पूरे प्रकरण में अब विश्व हिंदू परिषद का भी बयान सामने आया है। VHP कहती है कि चढ़ावे की चोरी का आरोप गंभीर है, इन आरोपों पर जांच चल रही है, जो कोई भी दोषी होगा उसे सख्त सजा मिलेगी।
8: हम चाहेंगे कि जांच पूरी हो, जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर ना हो, जिस किसी ने भी कुछ भी दोष किया है, चाहे वो दोष अमानत में ख्यानत का है और चाहे वह दोष असावधानी का है, दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए, कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए।
0: लेकिन वीएचपी की तरफ से एक बात और कही गई है। आरोप लगाए गए हैं कि विपक्ष इसलिए चढ़ावे की चोरी के मुद्दे को धार दे रहा है क्योंकि 27 का चुनाव है।
8: समाजवादी पार्टी, उसको राम जी से प्रेम नहीं है, कांग्रेस को राम जी से प्रेम नहीं है। हमने निमंत्रण लिया था उनको कि वो प्राण प्रतिष्ठा में आए, कांग्रेस तो एक प्रेस रिलीज के द्वारा ठुकरा दिया था। तैयारी हो रही है 2027 के चुनाव की। एक संत को लेके विधानसभा के अनुसार दौरे कराए जा रहे हैं गाय के नाम पर। ना इनको गाय प्रिय है ना राम जी प्रिय हैं। ये हमलावर इसलिए हो रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में इन मुद्दों को भुनाना चाहते हैं। जैसे राम जी के पैसे में जिसने गबन किया होगा उसको जनता माफ नहीं करेगी, वैसे ही राम जी के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनको भी जनता माफ नहीं करेगी।
0: सवाल 27 के चुनाव का नहीं है, सवाल चढ़ावे की चोरी का है। अगर ये सियासी मुद्दा बना है तो जरूर कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है, जिसका सच सामने आना बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
5: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
11: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
12: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
13: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Que Buena.
14: La Que Buena.
13: ESPN Radio.
15: We know LeBron has to be the best player on the planet to
13: have. The Daily.
16: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
13: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.

0: इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया है। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई।
1: यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हादसा, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे, कहा जब उन्हें कोई पूछता नहीं था तब हमने दिया था उनका साथ, यह हमें कमजोर करने के साजिश, में मतदाताओं से मांगता हूं माफी। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के भी नेताओं ने उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और खालिबाफ की अगुवाई में चर्चा, होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राम मंदिर में चढ़ावा मामले में एसआईटी जांच पूरी। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली। एसआईटी की जांच की जद में आए सभी लोगों को बिना बताए अयोध्या छोड़ने की मनाही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कई लोगों पर गिर सकती है कांच। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर अखिलेश का एसआईटी पर तंज कि कहीं रिपोर्ट चोरी ना हो जाए। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए फंड के गबन के आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि धर्म के नाम पर लूट। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार को घेरा, पूछा कि अभी तक क्यों नहीं हुई एफआईआर, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार गिर सकती। रीनीट परीक्षा पूरी, 20 लाख से ज्यादा छात्र हुए शामिल, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। नीट परीक्षा की वजह से पीएम मोदी ने 45 मिनट एयरपोर्ट पर किया इंतजार, छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई भी परेशानी न हो इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतजार। रीनीट परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, बोले कि यूपी में 4 लाख बच्चे प्रभावित, यानी कि 20 लाख लोग बीजेपी को हराने के लिए तैयार। कोलकाता में हादसे की खबर के बीच में नीट अभ्यर्थी को एक विशेष मेडिकल सुविधा मिली और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परिवार से बातचीत की, शिष्य दुबे के माता पिता ने आभार भी जताया। वाराणसी में संदिग्ध परीक्षार्थी चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जांच के दौरान अंडरगार्मेंट्स में मिले मोबाइल, ग्लू और पुराना प्रश्न पत्र। जयपुर में नीट री एग्जाम के दौरान परीक्षार्थी के पास मिला मोबाइल फोन, पुलिस कर रही जांच। बेंगलुरु में 3 छात्रों को परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री, देरी से पहुंचने पर रोका गया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने नीट वाले दिन कांग्रेस की रैली पर साधा निशाना, बोले कि कांग्रेस पार्टी पैलेस ग्राउंड में अपनी रैली के लिए कोई और भी दिन चुन सकती थी। हैदराबाद में नीट परीक्षा देने गलत सेंटर पर पहुंचा अभ्यर्थी, पुलिसकर्मी मददगार बना और समय रहते सेंटर तक पहुंचा दिया। एनटीए ने परीक्षा को लेकर बयान किया जारी, कहा कि टीम भारत के सामूहिक प्रयास से संपन्न हुई नीट पुनर्परीक्षा, निष्पक्ष अवसर, नई शुरुआत। दुनिया भर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्साह, कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया, 30,000 से ज्यादा लोग शामिल। दुनिया भर में 250 जगहों पर भारत ने योग कार्यक्रम आयोजित किया, हेल्दी एजिंग इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रही। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया योग, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पंजाब में किया योग, जालंधर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नेतृत्व किया, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक आंदोलन बना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने योग कार्यक्रम में भाग लिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों से मिलकर योगाभ्यास करने का आग्रह। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने योगासन का कहा कि बेहतर जीवन के लिए तो योग आवश्यक है। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कहा कि योग से उत्तम स्वास्थ्य रहता है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों से योग भी करने के लिए कहा और खुद भी योग किया। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अलग अलग देशों के लगभग 10,000 लोगों ने इसमें लिया भाग। मुंबई के भांडुप में बीजेपी के बागी सांसद संजय दीना पाटिल के गढ़ में रैली को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया, पार्टी में टूट पर बोले उद्धव ठाकरे, वोटर्स से माफी मांगता हूं और उम्मीदवार चुनने में मुझसे गलती हुई। बागी सांसद नागेश पाटिल ने बताया पार्टी छोड़ने की वजह उद्धव ठाकरे से नाराज नहीं बल्कि संजय राउत की टिप्पणियों के बाद ही फैसला लिया। धाराशिव के सांसद ओम राजे निंबालकर ने भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल होने का फैसला किया, कहा कि फंड की कमी के चलते कोई विकास का काम ही नहीं हो पाता। जेडीयू की कमान फिर से नीतीश कुमार के हाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय परिषद की मौत। बिहार के आरा में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल, मुठभेड़ की सीबीआई जांच करवाने की मांग। पंजाब में आप सरकार में पड़ के बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन कहा कि कुछ लोगों ने पंजाब का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए एटीएम की तरह किया, बीजेपी पाए पाए का हिसाब लेगी। आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिरोजाबाद में 658 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एक्शन में सीएम योगी, कैच द ब्रेन को जन आंदोलन बनाने का ऐलान। अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एक्शन, कानपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश से आरोपी को अरेस्ट किया। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने आरएसएस बीजेपी पर निशाना साधा, बोले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश का विरोध होना चाहिए। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस सग्रह और आईएनएस संशोधक नौसेना में शामिल, पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। पाकिस्तान की साजिश का खुलासा, जैसलमेर और बाड़मेर में रिश्तेदारों को जबरन डराकर जासूसी बनाने की तैयारियां और पूछताछ में पाकिस्तानी जासूस ने स्वीकारा। तुषार मेहता 2029 तक बने रहेंगे सॉलिसिटर जनरल, तीसरी बार एक्सटेंशन मिल गया है।
अकोला के कांग्रेस नेता हिदायत पटेल हत्याकांड में फरार आरोपी के घर में आधी रात आग लगी और पुलिस ने बयान दिया आगजनी और शॉर्ट सर्किट से ये आग लग सकती है। सीबीएसई ने 12वीं के पुनर्मूल्यांकन और अंक सत्यापन के नतीजे जारी कर दिए। कुल 87% विद्यार्थियों के परिणाम घोषित किए गए। यूपी के महोबा में सीएम योगी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, कई परियोजनाओं का शुभारंभ। अल्मोड़ा में श्रीमद भगवत कथा में शामिल हुए सीएम धामी, लोगों को सम्मान। प्ले में एलजी विनय कुमार सक्सेना कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते दिखे। जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण पर जयपुर से दरभंगा के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्वागत, रेल मंत्री ने दिखाया हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सराल बांध क्षेत्र में जंगलों में भीषण आग और तेज हवाओं के चलते मुश्किलें बढ़ी। फाइनल सीरीज में वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी से इंडिया ए चैंपियन बन गया, फाइनल में श्रीलंका को हराया। दामबुला में इंडिया ने श्रीलंका ए को जीत के लिए 378 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन श्रीलंका की टीम 47.1 ओवर में 311 रनों पर ऑल आउट। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल वनडे टीम के कप्तान बनाए गए। टीम में जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल का कमबैक है, यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज को टीम में जगह नहीं मिली। वुमेन्स नेशंस कप में भारत की बादशाहत, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कीवियों को 2-0 से हराया और इतिहास रचा। मुंबई के चेंबूर में फुटपाथ पर खड़े दो लोगों पर हमला, 6 आरोपी गिरफ्तार, हिरासत में नाबालिग। महाराष्ट्र के बदलापुर में बीएमडब्ल्यू कार हादसे का शिकार, 2 युवाओं की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बिहार के बेगूसराय में गैंगरेप के मामले में एक नामजद और एक अज्ञात आरोपी गिरफ्तार, शराब के नशे में बदमाशों ने घटना को दिया था अंजाम। मुजफ्फरपुर में 70 साल की महिला की गोली मारकर हत्या की, परिवार में 5 साल में तीसरा मर्डर। जलपाईगुड़ी में बारिश के बीच में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत। बांदा में मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या, मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान, जांच के लिए 4 टीमें बनाई। कौशाम्बी में 5 लाख रुपयों के लिए कलयुगी बेटे ने गोली मारकर पिता की हत्या की, 15,000 के इनामी आरोपी बेटा गिरफ्तार। जमशेदपुर में मां बेटे की गले से सोने की चेन छीनकर अपराधी फरार, सुबह वारदात को दिया अंजाम। बेतिया में मन चले कि ग्रामीणों ने की पिटाई, उठक बैठक करवाकर छोड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूरत एसबीआई बैंक में 50 लाख रुपए की लूट के मामले में 2 आरोपी और गिरफ्तार, लूटी गई पूरी रकम अब तक बरामद नहीं। गाजियाबाद के खोड़ा में बिल्डर पर जानलेवा फायरिंग हुई, घटना सीसीटीवी में कैद। तिरुवल्लूर में सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में अमोनिया गैस का रिसाव, 2 मजदूरों की मौत, 60 से ज्यादा की तबीयत खराब। पटना में शाहपुर में गंगा घाट पर हाथ से नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत। कानपुर में कपड़ा व्यापारी के सेल्समैन और उसके साथियों ने पीट पीट कर हत्या की, शराब दुकान पर विवाद के बाद वारदात। भोजपुर में शाहपुर में बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली, सड़क हादसे में घायल युवक का अस्पताल में इलाज तक नहीं हुआ, लापरवाही से मौत। पालघर में 4 कॉलेज छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई, लड़की के पैर छूने को किया गया मजबूर, वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल। मोगा में पति पत्नी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, माइकल पक्ष की गोलीबारी में 4 लोग घायल। गुजरात के पंचमहाल में कार में अचानक लगी आग, कोई जनहानि नहीं। जालौन में सर राघेरा बंदी कर युवक पर चलाई गई गोलियां, गला घोटने तक की प्रयास कोशिश हुई है, गंभीर रूप से घायल। लुधियाना अमृतसर नेशनल हाईवे पर चलती स्लीपर बस में अचानक लगी भीषण आग, समय रहते यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां, 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। अब श्रद्धालुओं का खाटूश्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर से सुंदरपुर में नया रेलवे स्टेशन बनेगा। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में पहुंचे एक्टर अनुपम खेर, साईं बाबा के दर्शन। पौड़ी शहर के आराध्य देव श्री कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन भंडारे का आयोजन हुआ। हैदराबाद की सड़कों पर फीफा का खुमार और गच्छी बोवली फ्लाईओवर अब ओपन एयर फुटबॉल गैलरी बना। फिर से दिखुरी धमकी, लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी को रोकने का ईरान को सीधी नसीहत, वरना तबाही मचा देंगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी डेलीगेशन बढ़कर स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में बातचीत वाली जगह से निकले। इसराइली रक्षा मंत्री गार्ड्स का बड़ा बयान, कहा कि लेबनान से सुरक्षा क्षेत्र से पीछे नहीं हटेगा इसराइल। रूस यूक्रेन जंग और खतरनाक, रूस के जवाबी हमलों से यूक्रेन दहल उठा। इटली में पड़ रही भीषण गर्मी के मार, कई शहरों में जारी हुआ रेड अलर्ट।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री राम सिर्फ नाम नहीं, भगवान श्री राम आस्था है। राम इस देश का विश्वास है, सदियों की प्रतीक्षा, पीढ़ियों का बलिदान और न जाने कितनी आंखों के आंसुओं से सींच कर भव्य मंदिर की चौखट खड़ी हुई। इस देश में सुबह की पहली किरण राम राम से फूटती है और जीवन का अंतिम सफर भी इसी नाम के सहारे पूरा होता है। राम नाम सत्य है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक क्षण में राजपाट को तिनके की तरह छोड़ दिया, त्याग की उस पराकाष्ठा के घर में कुछ धूर्त, दरिद्र और महापापियों ने डकैती डाल दी। सोचिए, जिस मंदिर निर्माण के लिए एक भिखारी तक ने अपनी दिन भर की भिक्षा सौंप दी थी, कचरा बिनने वाली मां ने अपनी सीने से लगाकर रखे चंद सिक्के प्रभु के चरणों में रख दिए थे, ये सोचकर कि ये राम काज है। श्री राम की भक्ति में लीन भक्त धन नहीं, अपने भाव दान पात्र में समर्पित करते हैं, इस भरोसे के साथ कि वो अपने आराध्य, अपने प्रभु के लिए कुछ समर्पण कर रहे हैं। लेकिन चंद रुपयों के भूखे अंतरात्मा से कंगालों ने करोड़ों राम भक्तों के भरोसे पर डाका डाल दिया है। अभी तो SIT की जांच आनी बाकी है, लेकिन कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और ऐसे लोग लगा रहे हैं जो इस मंदिर से जुड़े रहे हैं, उसके निर्माण से जुड़े रहे हैं, उसमें काम करते रहे हैं। ये सिर्फ धन की हेराफेरी नहीं है, ये सनातन की आत्मा पर आघात है। ये सिर्फ भक्तों के साथ छल नहीं, साक्षात नारायण से दगाबाजी है। राम के घर से चोरी करने वालों, तुम इतिहास के सबसे बड़े कपटी और दरिद्र माने जाओगे। तुम कैसे इस महापाप का प्रायश्चित कर पाओगे? आज हर राम भक्त आहत है, उसके हृदय में वेदना है। रामद्रोहियों को न्याय के कटघरे में खड़ा देखने का इंतजार है और आक्रोश भी। प्रभु राम के दोषियों को ना ये समाज क्षमा करेगा और ना वो कालचक्र जिसके नियंता खुद राघव है। आरोप है कि अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर में जो चंदा श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया, उस चढ़ावे के पैसों में से लगभग 200 करोड़ रुपए चोरी हो गए। ये आरोप है। ये दावा है कि जिन लोगों ने ये चोरी की, उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए हैं, अलग अलग जगहों पर जमीन खरीदी है, दुकानें खरीद ली हैं, नई नई जमीनें वो खरीद रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। इस देश के ना जाने कितनी पीढ़ियां हैं जिन्होंने अयोध्या की राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने का सपना देखा, इसके लिए संघर्ष किया, गोलियां तक खाई, तब जाकर लगभग 500 सालों के बाद भगवान श्री राम की प्रतिमा उनकी इस जन्मभूमि पर स्थापित हुई। ये तस्वीरें आज भी आप लोग भूले नहीं होंगे। 22 जनवरी 2024 को जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया, तो पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव मना। हर घर में दिए जले, भगवान श्री राम का उनकी जन्मभूमि पर लौटने का अद्भुत अकल्पनीय दृश्य भी इस देश में देखा गया। लेकिन आज इसी देश के लोगों को यह सुनना पड़ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्रों से 200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हो गया, जिसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 सदस्यों की एक SIT भी बना दी। तो हमने सोचा कि आज इसके लिए, चूंकि अब तो SIT की टीम भी बन गई है जांच करने के लिए, तो सवाल यह है कि जो तथ्य अभी तक जानकारी में है वो हम आपके सामने उसी तरीके से रखें ताकि आप भी समझ जाएं कि आखिर पूरी खबर है क्या। क्योंकि कई लोग ऐसे अवसर का इस्तेमाल करके अफवाह भी फैलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि जांच की जरूरत सामने आई, SIT की टीम गठित की गई है। आज भी इस SIT ने लगातार दूसरे दिन अपनी जांच को जारी रखा और अब इस मामले को लेकर ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो बहुत सीरियस है, काफी संगीन है। ये पूरा मामला पहली बार 7 जून को तब उठा जब समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने यह आरोप लगाया कि राम मंदिर की दान पेटियों से कम 5 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है। अब इसके बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, उत्तर प्रदेश के कुछ अखबारों में लिखा गया कि वो चंदा चुराया गया है, उसका CCTV फुटेज भी उपलब्ध हो सकता है। हालांकि ये CCTV फुटेज आज तक किसी ने देखा नहीं और इन आरोपों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी लगातार खारिज कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले की जांच करा रही है और जब सरकार द्वारा किसी मामले की जांच कराई जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि इस मामले में जरूर कुछ संदिग्ध है और वो संदिग्ध क्या है उसे ही आज हम आपको समझाना चाहते हैं कि भाई ऐसी क्या बातें हैं जो शक पैदा कर रही है। असल में भगवान राम के मंदिर और उनके पूरे परिसर में कुल 40 दान पेटियां लगाई गई हैं, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंदिर आने वाले लोग अपनी श्रद्धा से दान देते हैं। अब आरोप यह है कि दान पेटियों में हर रोज जो पैसा आता है उसमें से कुछ चंदे को गिनती से पहले या गिनती के दौरान चुरा लिया जाता है। ये भी तब होता था जब चंदे की गिनती के लिए एक व्यवस्था यहां पर बनाई गई थी। ये AI वीडियो है जिससे हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऐसे दान पत्र है, 40 दान पत्र, और फिर कैसी व्यवस्था की गई है वहां पर काउंटिंग के लिए। आरोप है कि काउंटिंग से पहले या काउंटिंग के दौरान निकाल लिया जाता है पैसा। अब ये पूरा जो काउंटिंग का काम है ये CCTV कैमरों की निगरानी में होता था। सबसे गंभीर आरोप यह है कि चंदे का सबसे बड़ा हिस्सा महाकुंभ के दौरान चुराया गया। महाकुंभ के वक्त बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के बाद भगवान राम के मंदिर आ रहे थे। भाई प्रयागराज तक तो जो पहुंचे हैं कुंभ के लिए, तो वहां से इतना करीब, वहां तक आने के बाद भगवान राम के मंदिर में जरूर जाएं, जिससे मंदिर प्रशासन को काफी दान मिला। और आरोप है कि उन्हीं दिनों में महाकुंभ के दौरान हर दिन दान पेटियों से 10 लाख 15 लाख ऐसे चोरी हुई। जिन लोगों द्वारा ये चोरी की गई उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन इन लोगों ने ही चोरी की है इसके अभी प्रमाण नहीं आए हैं, लेकिन इन पर आरोप है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें मुख्य रूप से अभी 6 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, KD तिवारी और मनीष यादव शामिल है। ये सारे वो लोग हैं जो चंदे की गिनती या मंदिर प्रशासन के कामकाज से जुड़े हुए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें भी लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस को 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। पुलिस ने अब तक ये नहीं बताया है कि इस पैसे का संबंध राम मंदिर से चोरी हुए चंदे से है या फिर नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि इतना कैश इस व्यक्ति के घर में कैसे आया। कैश का मतलब है नकद से, और आप सब जानते हैं कि दान पेटियों में जो चंदा लोग देते हैं वो जाहिर तौर पर नकद में ही देते हैं। दूसरे मुख्य आरोपी का नाम है रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव। उन्हें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का सबसे करीबी माना जाता है। एक जमाने में टिन्नू यादव ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे, बाद में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े, धीरे धीरे चंपत राय के खास बन गए। हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है जिससे ये पता चलता है कि टिन्नू यादव को राम मंदिर में VVIP गेट से एंट्री मिलती थी। मंदिर में चंदे की गिनती का जो काम होता था उसमें भी इस व्यक्ति की भूमिका थी। और ये भी आरोप लग रहा है कि एक बार चंदे में गड़बड़ी के आरोप लगने पर 2021 में टिन्नू यादव ने 8 महीने की CCTV फुटेज डिलीट करवा दी थी। आरोप बहुत गंभीर है, यानी यह व्यक्ति बहुत ताकतवर था। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दावा है कि टिन्नू यादव की संपत्ति पिछले 4 से 5 सालों में तेजी से बढ़ी है। इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने कई जमीनें खरीदी, एक नई बिल्डिंग बनाकर उसे किराए पर चढ़ा दिया। और इस पर मंदिर प्रशासन से जुड़े रहे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो ऑटो ड्राइवर कुछ सालों पहले तक सामान्य जीवन जीता था वो राम मंदिर की दान पेटियों के नजदीक आते ही अमीर कैसे हुआ। इन आरोपों को लेकर हमने टिन्नू यादव से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी कहानियां पूरी तरह मनगढ़ंत है और मंदिर की दान पेटियों से चुराया पैसा चुराया ही नहीं जा सकता। सुनिए।
1: आप पूरा अंदर मंदिर का ट्रस्ट, जो भी पैसा आता था आप ही की देखरेख में आता था, आप ही के जरिए ही वहां पर दर्शनार्थी भी जाते थे।
2: ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ईर्ष्या बस लोग बता रहे हैं ऐसा। और राम जी के दर्शन करने के लिए सारे लोग आते हैं, सबका होता है दर्शन।
1: इस मामले में आपका जैसे नाम आ रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद आपकी संपत्ति बढ़ गई और करोड़पति हो गए, सच्चाई क्या है?
2: ये सब ईर्ष्या बस बता रहे हैं लोग संपत्ति हमारी बढ़ गई, उसकी जांच कर लें।
0: टिन्नू यादव इसे साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जांच के लिए सामने हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी संपत्ति वाकई बढ़ गई है तो उसकी जांच करा ली जाए। अब ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती के लिए बहुत सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। इतनी सख्त प्रक्रिया कि ये चोरी तब तक संभव नहीं है जब तक कि कई स्तर पर मिली भगत ना हो। सर एक सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मंदिर में कुछ, जैसा कि हमने आपको बताया, कुल 40 दान पेटियां लगाई गई हैं जिन्हें हर रोज मंदिर बंद होने के बाद खोला जाता है। ये भी नियम है कि ये दान पेटियां एक निर्धारित कमरे में ही खोली जा सकती हैं जहां CCTV कैमरों को लगाया गया है। अब दान पेटियों में जो पैसा आता है उसे गिनने का काम ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसका ठेका वाराणसी की एक प्राइवेट कंपनी को दिया है। अब होता यह है कि दान पेटियों को कुल 50 लोगों की निगरानी में खोला जाता है, लगभग 50 लोग। 24 लोग उस कंपनी के कर्मचारी होते हैं जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ठेका दिया है, प्राइवेट कंपनी। इसके बाद इन 24 लोगों पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 12 कर्मचारी होते हैं, यानी चंदा गिनने वाले हर 2 कर्मचारी पर ट्रस्ट का 1 कर्मचारी खड़ा होता है। इसके बाद जब चंदे को गिन लिया जाता है तो 14 लोग इसकी पुष्टि करते हैं। 14 लोगों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के तकनीकी कर्मचारी होते हैं, TCS के। जब ये टीम अपनी तसल्ली कर लेती है तब दान में मिले पैसों के बंडल बनाकर उन्हें बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया जाता है और ये प्रक्रिया हर रोज अपनाई जाती है। अब इस प्रक्रिया से ये समझ आता है कि अगर मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई तो ये बिना कई लोगों की मिली भगत के संभव नहीं है, खासकर उन लोगों की जो चंदे की गिनती में शामिल है, मंदिर परिसर से बाहर निकलने की आसान प्रक्रिया से जुड़े हों। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि SIT ने जब पहले दिन इन दान पेटियों की जांच की तो उसमें ये पता चला कि इन दान पेटियों को खोले बिना इनमें जमा पैसे चुराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये माना गया कि अगर गिनती से पहले ये पैसे निकाले जाते हैं तो हो सकता है उस ताले के अलावा भी कोई तरीका हो उसको खोलने का। इसलिए यहाँ ये भी संदेह है कि अगर ये चोरी हुई है तो फिर गिनती के दौरान या उसके बाद कोई खेल हुआ हो। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था में मंदिर के चंदे से 200 करोड़ रुपए का चंदा चुराना मुमकिन है। साल 2024-25 में भगवान राम के मंदिर में जो कुल दान हुआ, कुल आय है एक तरह से समझिए, वो 327 करोड़ रुपए थी, 327 करोड़। इनमें 153 करोड़ रुपए सिर्फ चंदे दान पेटियों में मिले, दान से आए। 153 करोड़ का मतलब यह हुआ कि भगवान श्री राम के मंदिर को हर महीने 12 करोड़ 75 लाख मिले, हर दिन कितना हो गया 42 लाख। अब अगर हम ये मान लें कि पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए निकाले गए हैं तो इसका मतलब है कि हर दिन मंदिर के चंदे से 27 लाख रुपए चुराए गए, तभी जाकर ये 200 करोड़ का हो सकता है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि भाई अलग अलग किसी दिन नहीं किया गया, किसी दिन ज्यादा अमाउंट निकाला गया, कई सारे तरीके से ये पैसा चुराया जा सकता है। लेकिन 42 लाख रोज पहुंच रहा है, उसमें से 27 लाख क्या चोरी हो रहे थे? यानी अगर ये चोरी हुई है तो आरोपियों ने बहुत बड़े स्तर पर राम मंदिर के चढ़ावे को निशाना बनाया और कोई इसे रोक नहीं पाया। अगर इस आरोप में दम है और वाकई चोरी का यह आंकड़ा 200 करोड़ है, जब यह मामला 7 जून को पहली बार सामने आया तब 5 से 7.5 करोड़ का चंदा चुराने का आरोप था। लेकिन अभी अगर आप देखें सोशल मीडिया पर यह नंबर 200 करोड़ का चल रहा है और खूब चर्चा भी बटोर रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते। हम आपको इतना बता सकते हैं कि मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा है, सरकार इसकी जांच करा रही है और कुछ लोग इसमें संदिग्ध माने जा रहे हैं, लेकिन बाकी दावे अभी बिना पुष्टि के चलाए जा रहे हैं। यह भी दावा है कि सोना चांदी हीरे माणिक्य जो मणि है अष्ट धातु की, जो 1,250 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी, वो अब गायब हो चुकी है। तो यह दावा राम मंदिर से जुड़े रहे धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने लगाया है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये शिलाएं साल 2000 में ही गायब हो गई थी। हालांकि मंदिर ट्रस्ट इन आरोपों को सही नहीं मानता। सुनिए,
3: जो 1,250 राम शिलाएं, प्राण प्रतिष्ठित राम शिलाएं पूजित होकर आई थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणि माणिक्यों की, 1.25 करोड़ तो आई थी ईंटों की, मिट्टी की पकाई हुई ईंटें, और बाकी सोने चांदी हीरे जवाहरात मणि माणिक्यों की थी, वो सब इसी ने चोरी करके बेच लिया सन 2002 में। तो ये तो पुराना चोर है, कौन नहीं जानता इसको।
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है।
0: ये मामला फिलहाल इतना बड़ा हो गया है कि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री दफ्तर तक पहुंची और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो SIR बनाई है उसे माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो इस मामले की जांच के लिए SIT गठित की है उसे 7 दिन में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देनी होगी, 7 दिन के अंदर, और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की जांच पर भरोसा नहीं, इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। 7 जून को जब पहली बार यह आरोप लगा कि राम मंदिर की दान पेटियों से पैसा चुराया जा रहा है, तब किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि इस चोरी का दायरा कितना बड़ा होगा, इसमें कौन कौन शामिल होगा। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह पहला ऐसा मामला हो सकता है जिसमें हर व्यक्ति शक के घेरे में है। आप गिनते जाइए, हम आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले जो कर्मचारी चढ़ावे का पैसा गिनते थे, शक उन पर है। फिर जो इन कर्मचारियों की निगरानी करते थे, शक उन पर है। जो कर्मचारी चढ़ावे का पैसा बैंक में जमा करने के लिए ले जाते थे, शक उन पर भी है। जो बैंक कर्मी हर दिन मिले दान का हिसाब रखते थे, रजिस्टर में उसकी एंट्री करते थे, शक उन पर भी है। जो कर्मचारी दान पेटियों को उठाकर सीसीटीवी वाले कमरे में लेकर जाते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों का संचालन देखते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखते थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी गेट चेकिंग पर खड़े होते थे, जिनको फ्रिस्किंग करनी थी आते जाते लोगों की, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी मंदिर से बाहर जाने वाले कर्मचारियों की तलाशी लेते थे, उन पर भी शक है। फिर जो कर्मचारी मंदिर का प्रबंधन देखते थे, उन पर भी शक है। इसके बाद जो कर्मचारी वीवीआईपी पास जारी करते थे, उन पर भी शक है। जबकि चढ़ावे को गिनने से लेकर उसे जमा कराने तक में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी ये शक के दायरे में है। इसके बाद जो कर्मचारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नजदीकी थे, उन पर भी शक है। जो कर्मचारी मंदिर के बड़े पदाधिकारियों की गाड़ी चलाते थे, शक उन पर भी है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। हमारा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। कुल 200 कर्मचारी एसआईटी के शक के घेरे में है, जिनमें से 125 कर्मचारी और पदाधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। अब सोचिए, अभी तो ये चोरी साबित नहीं हुई है, लेकिन 29 जून को एसआईटी ने अगर इसे स्वीकार कर लिया और इसमें इतनी बड़ी मिलीभगत साबित हो गई, तो फिर ये चोरी कहां रहेगी? ये लूट होगी। ऐसी लूट जिसमें इन लोगों ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने उनके इस पवित्र मंदिर को भी नहीं छोड़ा। ये मामला कितना गंभीर और कितना संजीदा है, इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे, तो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनके साथ नहीं थे। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि को भेजा गया था। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों ने मंदिर बनने के लिए 500 सालों का इंतजार किया, लेकिन अब उन्हें सिर्फ 15 दिन का इंतजार और करना है, और 29 जून को इस चोरी का पूरा सच देश के सामने होगा। सुनिए।
5: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: अब तक ये चोरी साबित नहीं हुई है, सच है, लेकिन सोचिए अगर ये चोरी साबित हो जाती है तो ये चोरी किसके पैसों की होगी? हकीकत तो ये है कि मंदिर की दान पेटियों में गिरने वाला पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, इसे श्रद्धा कह सकते हैं, इसे प्रार्थना कह सकते हैं, इसे उम्मीद कह सकते हैं। भगवान पर विश्वास का सबसे बड़ा आधार होता है। लेकिन मेहनत से कमाई अपनी जमा पूंजी को मंदिर में दान करते हैं लोग, क्योंकि वो भगवान के प्रति आभार जताना चाहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहते हैं। लेकिन सोचिए अगर इस पैसे को चोरी कर लिया जाए, तो ये भगवान के साथ, भगवान पर लोगों के विश्वास की कितनी बड़ी चोरी है। कोई महिला अपने गले का हार ऐसे ही निकाल कर चढ़ावे में भगवान के सामने भाव विभोर होकर दान कर देती है, कोई अंगूठी उतार कर डाल देता है, कोई पैसा, कोई कमाई, सब कुछ भगवान पर लुटाता है। यहाँ ये भी सोचिए कि इस घटना के बाद जब अगली बार कोई भी व्यक्ति मंदिर जाएगा, मंदिर में दान करेगा, तो उसके मन में कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह आएगा, सवाल आएगा कि ये जो मैं पैसा दे रहा हूं ये वाकई भगवान की सेवा में खर्च होगा या कोई अपनी जेब भरेगा, और इस सवाल से जो अविश्वास पैदा होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। साल 2025 में भारत के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने इस मुद्दे पर रिसर्च की थी और यह बताया था कि भारत में कुल 68% लोग दान करते हैं, जिनमें 46% दान धार्मिक कारणों से किया जाता है। अगर आंकड़ों में देखें तो साल 2025 में भारत के लोगों ने मंदिर, मस्जिदों, दरगाहों, गुरुद्वारों, चर्चेज में 54,000 करोड़ रुपए का दान दिया, 54,000 crores, और ये माना कि वो जो दान कर रहे हैं वो सुरक्षित ही रहेगा, वो उनके आराध्य की सेवा में खर्च होगा। लेकिन सोचिए इस घटना के बाद इस देश के लोगों की आस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी। कहते हैं कि किसी दुकान में चोरी हो जाए तो व्यापारी का नुकसान होता है, किसी घर में चोरी हो जाए तो परिवार का नुकसान होता है, लेकिन जब मंदिर की दान पेटी में चोरी होती है तो ये चोरी करोड़ों लोगों की श्रद्धा की चोरी होती है, और इस चोरी से चोट उस सामूहिक आस्था को लगती है जिसे लाखों करोड़ों लोगों ने मिलकर सजोया है, क्योंकि दान पेटी में रखा धन किसी एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, वो समाज की श्रद्धा का धन है। शायद यही वजह है कि ऐसे अपराध लोगों को भीतर तक विचलित कर देते हैं, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ कानून का नहीं होता, सवाल नैतिकता का होता है। आखिर कोई व्यक्ति उस स्थान को कैसे निशाना बना सकता है जहां लोग अपने सबसे पवित्र भाव को लेकर आते हैं। आज सोचिए लोग अपने परिवार पर किस पे कितना खर्च करना है इस पे दो बार सोच लेते हैं, लेकिन भगवान के सामने दान करते समय कृतज्ञ होकर कुछ भी डालने को तैयार हो जाते हैं, उस विश्वास को तोड़ना। आज आप खुद सोचिए कि राम मंदिर का ये प्रांगण, ये परिसर, ये बड़े बड़े कक्ष, ये सीढ़ियां, ये कमरे किस लिए बने थे। ये निर्माण इसलिए हुआ था ना ताकि देश का कण कण अपने आराध्य भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि पर स्थापित होते देख सके, राम दरबार में भगवान राम और मां सीता के दर्शन कर सके, उनके दर्शन के लिए वहां जा सके, उनसे अपने मन की बात कह सके। लेकिन सिर्फ इस घटना के कारण इस प्रांगण में, इसी परिसर में, इन्हीं बड़े बड़े कक्षों में, इन्हीं विशाल कमरों में SIT की जांच टीम घूम रही है और ये पता लगा रही है कि राम मंदिर की दान पेटियों से पैसा चुराया गया।

0: नकदी रिकॉर्ड में जो खामियां हैं उन्हें इनके द्वारा कभी नोट क्यों नहीं किया गया? और सूत्रों के मुताबिक इस सवाल का एसआईटी को कोई भी सही जवाब नहीं मिला है। इससे भी बड़ी बात यह सामने आई है कि राम मंदिर में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके पास महंगे आईफोन्स, 20 से 40 लाख रुपए की लग्जरी कार्स, महंगी गाड़ियां, और कहां से यह सब आया? किसी ने यह देखा क्यों नहीं? इन कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह 20,000 रुपए के आसपास है। इतने पैसों में कैसा वो कैसे ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे थे? और ये एक रेड फ्लैग था जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को खुद पकड़ना चाहिए था। लेकिन बात बढ़ती गई। आरोप है कि कई आम परिवारों से आने वाले कर्मचारी बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियों, महंगे फोन रखने लगे। यही नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ कि कई अधिकारियों की तैनाती को छुआ तक नहीं गया। मतलब जैसे राम मंदिर के जो रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी आरएमओ है, उनका 17 सालों में एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ। आरएमओ का काम होता है सीसीटीवी कैमरों का संचालन देखना, उसकी फुटेज को सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना कि निगरानी का काम सही से होता रहे। यहां आरोप यही लग रहे हैं कि जिस कमरे में चढ़ावे का पैसा गिना जाता था वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ की गई, और इस छेड़छाड़ के लिए जिन आरएमओ को शक के घेरे में माना जा रहा है वो तो यहीं पर टिके हुए थे, कभी बाहर ट्रांसफर नहीं हुआ। जब मंदिर नहीं बना था तब भी वो यहीं थे, तभी इतने लंबे समय से यहां पर है, जब मंदिर बना तब भी वो यहीं रहे, और सबसे बड़ी बात जिस रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव की भूमिका अभी संदिग्ध मानी जा रही है वो इस आरएमओ का एकदम खास था, जबकि महासचिव चंपत राय टिन्नू यादव को अपना खास मानते थे। इसके अलावा जो राम मंदिर चौकी इंचार्ज थे उनकी 5 साल से तैनाती नहीं बदली है। अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे से आज मैंने बात की। उन्होंने हमें यह बताया कि जो महिपाल सिंह पहले राम मंदिर के चढ़ावे की निगरानी करते थे उन्होंने इस चोरी की शिकायत की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि जितना चढ़ावा आता है उसका बहुत कम हिस्सा रजिस्टर में दर्ज होता है, लेकिन यह बात बड़े पदाधिकारियों ने नजरअंदाज कर दी। महिपाल सिंह को पद से हटा दिया गया। सुनिए पवन जी, इस पूरे मुद्दे को आपने जोर शोर से उठाया और मुझे लगता है जो शुरुआत में जो लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया उसमें सबसे प्रखर आप थे। पवन जी, ये जानकारी आप तक कैसे आई कि चढ़ावे में चोरी का संदेह पैदा हो रहा है? किसने आपको जानकारी दी और किस तरीके से इसको किया जा रहा था, इस बारे में आप क्या बताएंगे? आपका आरोप क्या क्या है?
1: सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एक ट्रस्ट बना और 140 करोड़ भारतीयों को इस ट्रस्ट को सौंपा गया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग हैं उन सब के विश्वास से ट्रस्ट बना। लेकिन 2021 से लगातार कभी जमीन का घोटाला, 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ों में, नजूल की ढेर सारी जमीनें, जिन जमीनों की कीमत 1 करोड़ 2 करोड़, उन जमीनों को लिया गया 40 करोड़ 50 करोड़ में। और सबसे बड़ी बात कि जो जमीन नजूल की थी उसका न क्रय हो सकता है न विक्रय हो सकता है जब तक सरकार फ्री होल्ड न करे, तो इस तरह का काम ट्रस्ट द्वारा किया गया, एक तरह से रुपए की बंडर बांट की गई। और इधर कुछ वर्षों से ट्रस्ट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनमें ये आपस में विवाद चल रहा था कि तू बड़ा चोर कि मैं बड़ा चोर, कौन बड़ा हाथ मार के अंदर से बाहर गया। और जब चोरी का एक कंपटीशन आपस में बढ़ गया चढ़ावा चोरों के बीच में तो ये बात मंदिर परिसर के बाहर आने लगी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो गणना के प्रभारी थे महिपाल सिंह, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोला कि जो बक्से जाते थे रुपए गिनकर बैंक, लिखा पढ़ी में रहता था 15 लाख, बक्से के अंदर रहता था 25 लाख, बक्से में लिखा जाता लिखा पढ़ी में रहता था 20 लाख, बक्से में रहता था 35 लाख। और जब उन्हें शक हुआ और शक के बाद उन्होंने जब एक दिन बक्सा रीओपन करवाया तो रजिस्टर में दर्ज था 20 लाख, निकला 35 लाख। और जब उन्होंने इसकी सूचना श्री चंपत राय जी, श्री अनिल सिंह मिश्रा जी, गोपाल राव जी, इन सारे लोगों को दी तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद महिपाल सिंह की ही विदाई कर दी गई। और अब सामने जो तथ्य सामने आ रहे हैं, आप सोचिए कि गोबर के ढेर में रुपया बरामद हो रहा है।
0: राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती का एक वीडियो भी आया है जिसमें कुछ संदिग्ध तो नहीं दिखता, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसको चढ़ावे की गिनती का काम सौंपा गया था एसबीआई को, उसमें कई खामियां थी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण

0: समिति के चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि महासचिव चंपत राय का दुरुपयोग हुआ, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी तो हुई है। सुनिए, आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं।
1: प्रबंधन को अनुभवी हाथों में देना होगा, यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ। गंभीर कमियां थी, कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी।
0: आइए सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। नृपेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज थोड़ी संकट की घड़ी है क्योंकि आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं। जब आज ये खबर आती है तो आपको कितनी पीड़ा होती है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं?
1: ये जो घटना है, श्रद्धालुओं के विश्वास पर तो चुनौती है ही, लेकिन इसी के साथ पूरे प्रबंधन पर चुनौती है।
0: पॉलिटिकल लड़ाई ना बने इसलिए प्रबंधन में क्या बदलाव की जरूरत है आपकी नजर में?
1: फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, बाकायदा वेतन हो, नियम हो, मैनुअल बने और उसके माध्यम से कार्य करें, ऐसा मेरा सुझाव है। और यदि उन्हें किसी अनुभवी अधिकारी की उच्च स्तर पे आवश्यकता है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
0: भूपेन जी, सबसे उसके लिए तो सही कैंडिडेट आप ही होंगे।
1: आपने कृपा की जो मुझे इस योग्य समझा है, मैं सचमुच आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं समझता हूं इसके लिए किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो अभी तत्काल सेवानिवृत्त हुए हों।
0: बताया तो ये गया कि 3 लेयर्स की सिक्योरिटी वहां पर होती है और कुछ प्राइवेट फर्म के लोग, ये SBI को दिया गया है, SBI ने एक प्राइवेट फर्म को दिया है, वो प्राइवेट फर्म इंश्योर करती है कि सबके सामने काउंटिंग हो।
1: कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। हाँ। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया।
0: ऐसा नहीं है कि मंदिरों के चढ़ावे में पहली बार हेराफेरी और गबन के आरोप लग रहे हैं। जनवरी 2025 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में एक संविदा कर्मचारी को सोना चुराते हुए पकड़ा गया। वो 2 साल से दान पेटी में जमा राशि की गिनती और छटाई कर रहा था, लेकिन इसके बाद एक दिन वो रंगे हाथ भंडार गृह से 100 ग्राम सोने के बिस्कुट चुराते हुए पकड़ा गया। दिसंबर 2025 में तिरुपति मंदिर की दान पेटियों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी और घोटाले के आरोप लगे, जिसे इस मंदिर के इतिहास की सबसे बड़ी लूट बताया जा रहा है। इसी तरह जून 2025 में शिरडी साईं बाबा मंदिर में 30 साल से कार्यरत स्थायी कर्मी बाला साहब नारायण गोंदकर ने हुंडी के चढ़ावे में कि उसकी गिनती के दौरान लाखों रुपए चुराए और इस दौरान उसकी ये चोरी CCTV कैमरों में पकड़ी गई। साल 2019 में केरल के सबरीमाला मंदिर में मूर्तियों पर जो सोने की परत चढ़ाई गई थी, उस सोने की भी चोरी के आरोप लगे, जिसकी आज तक जांच चल रही है। और इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था अपनाने की सख्त जरूरत है जिससे मंदिरों में चोरियों को रोका जा सके। कई मंदिर जैसे माता वैष्णो देवी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जगन्नाथ पुरी मंदिर, अच्छी व्यवस्था बनाई गई है जिसे बाकी मंदिर भी सीख सकते हैं। ये तस्वीरें लबनान, गाजा या फिर ईरान की नहीं है, जिस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों पर है, तब देखिए रशिया और यूक्रेन युद्ध की आग ने भयानक रूप ले लिया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन जलेगा तो फिर मॉस्को भी जलेगा। ये सारी तस्वीरें रशिया की राजधानी मॉस्को से आ रही है, जहां यूक्रेन ने इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। CNN तो अपनी रिपोर्ट में यह भी लिख रहा है कि यूक्रेन ने जितना बड़ा हमला रशिया पर किया है, उतना बड़ा हमला इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस हमले की संजीदगी को इसी बात से समझा जा सकता है कि मॉस्को में जो 4 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उन सभी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इनमें शेरेमेत्योवे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी शामिल है, जो मॉस्को ही नहीं बल्कि पूरे रशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। रशिया के मुताबिक यूक्रेन ने पूरे देश पर 1000 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन्स, कुल 4 क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया है। 7 लोग घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर के मुताबिक रशिया की राजधानी में एंटी एयर डिफेंस सिस्टम अब तक कुल 194 ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर चुका है। और यह सब होने के बाद यूक्रेन मॉस्को की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर बारूद बरसाने में कामयाब हो गया है। इसे कापोतनिया तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है, जो क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर है। और क्रेमलिन वही जगह है जहां से राष्ट्रपति पुतिन रशिया की सरकार चलाते हैं। क्रेमलिन वही जगह है जहां पर हमने जाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू किया था। वहां से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर आज ये सब हो रहा है। देखिए,

यूक्रेन ने लगातार तीसरी बार इस तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे रशिया को बहुत भारी नुकसान की आशंका है। जिस वक्त इस तेल रिफाइनरी में बड़ा विस्फोट हुआ, इसके ऊपर एक ऑयल

यूक्रेन ने लगातार तीसरी बार इस तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे रशिया को बहुत भारी नुकसान की आशंका है। जिस वक्त इस तेल रिफाइनरी में बड़ा विस्फोट हुआ, इसके ऊपर एक ऑयल टैंक का ढक्कन हवा में उड़ गया, तब मॉस्को में दहशत फैल गई। काले धुएं का गुबार और जलते हुए तेल के कण और काले हवा में घुलने से यूक्रेन ने लगातार तीसरी बार इस तेल रिफाइनरी पर

ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसके मुताबिक अमेरिका के बाद रशिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि यूक्रेन की सेना इस सूची में 20वें स्थान पर आती है। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने जिस तरह से मॉस्को और रशिया के दूसरे शहरों पर हमले किए हैं वो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यूक्रेन से मॉस्को की दूरी 500 किलोमीटर है और इस दौरान बीच में रशिया ने कई एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन रशिया के रक्षा कवच को भेदने में ना सिर्फ कामयाब हो रहा है बल्कि रशिया से ऐसी तस्वीरें बाहर आ रही हैं जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। देखिए,

यूक्रेन के हमलों के बाद रशिया ने भी पलटवार करते हुए 239 आत्मघाती ड्रोन्स, 7 क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन पर दागी, जिनमें यूक्रेन को दूसरी तरफ भारी नुकसान हुआ है। अब यूक्रेन की हालत देखिए।

0: अब ये समझिए कि ये युद्ध अचानक से क्यों भड़का, इसका ईरान युद्ध से आखिर कनेक्शन क्या है। असल में यहां भी भारी लड़ाई तेल की है। ईरान युद्ध के कारण रशिया के कच्चे तेल की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। जो रशिया पहले प्रतिबंधों के कारण अपना कच्चा तेल सिर्फ कुछ देशों को बेच रहा था, वो अब कई देशों को तेल की आपूर्ति कर रहा है। भाई खाड़ी देशों में ऐसी हालत है, मिडल ईस्ट से तेल जा नहीं रहा था, ऐसे में रशिया के लिए कमाई का मौका आया। इसके कारण कच्चे तेल के निर्यात में अमेरिका के बाद रशिया दूसरे स्थान पर आ गया और स्थिति यह है कि सऊदी अरब से ज्यादा तेल रशिया का बिक रहा है। और यही बात यूक्रेन को परेशान कर रही है। यूक्रेन को लगता है कि अगर रशिया तेल बेचकर ज्यादा पैसा कमाएगा तो वो ये पैसा युद्ध पर खर्च करेगा, युद्ध पर ये पैसा खर्च होगा तो रशिया को यूक्रेन पर एडवांटेज मिल जाएगा। और यही वजह है कि यूक्रेन लगातार रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। रशिया में कुल 33 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिनमें से 24 पर यूक्रेन ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है और इसकी वजह से रशिया के कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अब ये मई महीने में देखिए 89,50,000 बैरल था, जून आते आते 87,00,000 बैरल हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा। अब क्योंकि यूक्रेन रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है, इसीलिए ये युद्ध अचानक से और भड़कने लगी है। और ये युद्ध भड़क रहा है, इस दौरान रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत इस वक्त अपना जो कच्चा तेल है, जानते हैं रशिया से हम कितना ले रहे हैं? 35-40% कच्चा तेल रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब हम ये उम्मीद में थे कि अब ईरान युद्ध खत्म होने से कच्चा तेल सस्ता हो सकता है, तब रशिया यूक्रेन युद्ध ने हमारी चिंता फिर से बढ़ा दी है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि जब ईरान युद्ध 3 महीने के बाद, अमेरिका ईरान युद्ध 3 महीने के बाद खत्म हो गया, तो यूक्रेन युद्ध 4 साल से अभी तक जारी क्यों है? इसके पीछे बड़ी वजह है इलाकों की लड़ाई। राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के जिस 20% भूभाग पर कब्जा किया उसे यूक्रेन छोड़ दे, ये इलाके रशिया को मिले। और दूसरी मांग है यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। तीसरी मांग है कि यूक्रेन की सेना पर कुछ सीमाएं लगे, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें ये तीनों मांगे मंजूर नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये युद्ध कभी तभी खत्म होगा जब रशिया उसके इलाकों को वापस करेगा, यूक्रेन की संप्रभुता सीमाओं को बहाल किया जाएगा और भविष्य में रशिया दोबारा ऐसे हमले ना करने की गारंटी देगा, सुरक्षा गारंटी। इन्हीं सारी बातों पर यह युद्ध अब भी फंसा हुआ है और अब इसने एक नया रूप ले लिया। पूरी दुनिया में ये चिंता की बात पड़ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज राष्ट्रपति ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि इसराइल ने बड़ा दुख दीना। जिस मेज को राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के लिए सजाया था, उस मेज को इसराइल ने अब जंग के मैदान में बदल कर रख दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू होने के बाद सिर्फ 14 घंटे बीते और 14 घंटे बाद ईरान ने अपने प्रतिनिधिमंडल को स्विट्जरलैंड भेजने से ही इनकार कर दिया है। यह वही स्विट्जरलैंड है जहां अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील के लिए 60 दिनों की बातचीत होनी है। आपको याद होगा हमने एमओयू आपको दिखाया था, इस एमओयू में लिखा था कि 60 दिन तक बातचीत करके एमओयू पर जो भी फैसला है उसको फाइनल किया जाएगा और एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद यह बातचीत पूरी तरह फिक्स थी। लेकिन अमेरिका का आरोप है कि इसराइल उसकी बात नहीं मान रहा, इसराइल इस एमओयू को और पीस डील को खराब कर रहा है। इसराइल ने पिछले 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान पर इतना बारूद बरसाया कि यह बारूद अब बातचीत को बर्बाद कर रहा है। ईरान का सीधा आरोप है और एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद यह बातचीत पूरी तरह फिक्स थी। लेकिन अमेरिका का आरोप है कि इसराइल उसकी बात नहीं मान रहा, इसराइल इस एमओयू को और पीस डील को खराब कर रहा है। इसराइल ने पिछले 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान पर इतना बारूद बरसाया कि यह बारूद अब बातचीत को बर्बाद कर रहा है। ईरान का सीधा आरोप है,
1: निश्चित रूप से अगर इसराइल लेबनान पर कोई सैन्य हमला करता है या लेबनान की जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखता है तो हम इसे समझौते का उल्लंघन मानेंगे।
0: ईरान ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इसराइल लेबनान में अपनी जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल के इजरायली हवाई हमलों और गोलीबारी में कम से कम 16 लोग मारे गए जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये लेबनान में इसराइल की बमबारी है। अब हालात ये है कि लेबनान के लोग इसराइल के हमलों के कारण पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए
2: هذه اختي هيا هون هيا نحن بالشقه بعد البنايه عم طولع عم بشيلوا العالم يا الله يا الله ما يكون في حدا صاير شيء يا رب
3: I'm in the center of Kfar Tibnit right now. The entrance of Kfar Tibnit from this side, an artillery strike just targeted the area behind me. As you can see, there is heavy drone activity in the vicinity. And of course, the destruction, the amount of destruction is very strong. There is the Israelis did try to destroy the entire area. Tried to destroy the entire area.

0: तो लेबनान से पलायन करते लोग आपने देखे। इसराइल पर आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर अमेरिका और ईरान की डील तोड़वाने के लिए ऐसा कर रहा है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई नेतन्याहू इस डील को तोड़वा देंगे। उसका कारण यही है कि इस डील से ईरान को ज्यादा फायदा हो रहा है। ईरान के तेल निर्यात से प्रतिबंध हट रहे हैं, उसे उसका जब्त किया हुआ पैसा वापस लौटाया जा रहा है। पुनर्निर्माण के लिए 300 बिलियन डॉलर की योजना बनाई जा रही है। अमेरिकी ब्लॉकेड हटाया जा रहा है। अमेरिका ने यह वादा भी कर दिया है कि वो फिलहाल ईरान को उसके प्रॉक्सी संगठनों की मदद बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेगा। अब ईरान इसराइल का कट्टर दुश्मन माना जाता है और कई विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि अपने कट्टर दुश्मन को बातचीत में जीतता हुआ देखकर इसराइल इस डील को तोड़वाना चाहता है और इसीलिए उसने लेबनान पर हमले जारी रखे। हालांकि इसराइल इन आरोपों से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि हिजबुल्ला ने उसकी सेना पर हमले किए जिसमें उसके 4 सैनिक मारे गए और इन्हीं हमलों के बाद इसराइल हिजबुल्ला को अपना जवाब दे रहा है।
1: हम उत्तरी इलाकों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए दक्षिणी लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना जरूरी है। जब तक इसराइल को अपनी सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता महसूस होगी, हम वहां तब तक मौजूद रहने वाले हैं।
0: तो इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने भी सोशल मीडिया पर यह लिखा कि हर इजरायली माँ के एक आंसू के बदले 1000 लेबनानी माताएं रोनी चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका का सम्मान अपनी जगह है लेकिन इसराइल को दुनिया को यह दिखाना होगा कि उसके बेटों का खून, उसके नागरिकों की सुरक्षा किसी कीमत पर नहीं छोड़ी जा सकती। और सीधा मतलब यह है कि इसराइल तो अब किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। चाहे ये डील टूटे या ना टूटे, वो लेबनान में अपनी जंग को जारी रखेगा और यह बात इसराइल के रक्षा मंत्री ने भी कही है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अब भी यही कह रहे हैं कि वो इसराइल को लेबनान पर हमले करने से रोक सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा है कि क्या वो लेबनान को लेकर थोड़ा नरम रवैया नहीं अपना सकते। ट्रंप की ताजा बाइट सुनिए।
2: You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner. And that's true.
0: तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि बीबी, बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी कहते हैं, बीबी मान जाओ। और बीबी यानी प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं तो युद्ध नहीं रोकूंगा। तो ये चल रहा है मामला। मामला है बारूद बनाम बातचीत का, जिसमें इसराइल बारूद बरसाने की जिद पर अड़ा है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं। यहां आप यह भी देखिए कि कई बार वक्त चीजों को कितनी तेजी से बदल देता है। इस युद्ध की शुरुआत में अमेरिका इसराइल साथ हुआ करते थे, जिसे पश्चिमी मीडिया AI फ्रेंडशिप कहता है। अमेरिका, ए का मतलब अमेरिका और आई का मतलब इसराइल। अब इन्हीं दोनों देशों ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे, ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म किया। लेकिन आज स्थिति यह है कि अमेरिका ईरान के साथ अपने

0: रिश्ते सुधारने के लिए इसराइल को किनारे कर रहा है, बातचीत कर रहा है, बातचीत के लिए आतुर दिख रहा है। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप इन आरोपों से मुक्त होना चाहते हैं कि वो इसराइल के लिए काम करते हैं। तो अब तक उन पर यही आरोप लगा कि वो अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि इसराइल फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं, जिससे उनके अपने समर्थक नाराज हो गए। लेकिन अब इसी दाग को धोने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि वो इसराइल को भी सबक सिखा सकते हैं और इसराइल उनके बिना कुछ नहीं है। यहां आप ये भी समझिए कि इसराइल का असली निशाना हिजबुल्ला नहीं है, उसका असली निशाना अमेरिका और ईरान की पीस डील है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसराइल हिजबुल्ला से कई लड़ाइयां लड़कर देख चुका है और इनमें किसी भी लड़ाई में वो हिजबुल्ला को आज तक खत्म नहीं कर पाया। इनमें भी साल 2006 का जुलाई युद्ध बहुत बड़ा था, उस वक्त हिजबुल्ला ने इसराइल के 3 सैनिकों को मार दिया था और 2 सैनिकों को बंदी बना लिया था। इसके बाद 34 दिनों तक चले भीषण युद्ध में लेबनान के लगभग 1200 लोग मारे गए थे, करीब 4400 लोग घायल हुए थे। इसराइल के भी 158 लोगों की मौत हुई जिनमें कई सैनिक थे। उस भीषण युद्ध में हिजबुल्ला खत्म नहीं हुआ, आखिरकार इसराइल को यह युद्ध रोकना पड़ा था और यहां भी इसराइल ऐसा कर सकता था, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप खुद को ईरान युद्ध से बाहर निकालने के लिए पीस डील कर लेते हैं, एक एमओयू साइन कर लेते हैं, वो इसराइल के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। इसराइल नहीं चाहता कि ईरान को किसी भी तरह का कोई एडवांटेज मिले और इसी वजह से वो इस डील के खिलाफ है। और अब कहा जा रहा है कि इसराइल इस डील को तुड़वा भी सकता है। यहां आप ये भी देखिए कि अब तक दुनिया में अमेरिका ही अकेला ऐसा देश था जो ये कहता था कि उसके सहयोगियों पर हमला हुआ तो इन हमलों का जवाब वो खुद देगा। नेटो भी तो इसी तर्ज पर बना था, लेकिन अब यही चीज पहली बार ईरान कर रहा है। ईरान कह रहा है कि आप अगर हिजबुल्ला को मारोगे या यमन में हूती को मारोगे या इराक में सबसे बड़े मिलिशिया ग्रुप को मारोगे तो वो इन हमलों को खुद पर हुआ हमला मानेगा। और वो कह नहीं रहा है, वो सीधा वापस ही हमला कर रहा है और इनका जवाब अपनी मिसाइलों से देगा। तो ये सारी चीजें इस युद्ध से बदली हैं और इससे दुनिया पर अस्थिरता का एक नया खतरा भी मंडराने लगा है। खैर, इन सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना एक और दुश्मन बढ़ा लिया और वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी हेकड़ी निकाल दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इटली के एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए ये कहा कि फ्रांस में G7 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे, पर बाद में उन्हें उन पर तरस आ गया और उन्होंने प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ फोटो खिंचवा ली। इसका ये वीडियो भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मेलोनी का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने इटली का अपमान किया है। सुनिए,
1: कुछ बातों का तुरंत जवाब देना जरूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। सच कहूं तो मैं हैरान हूं। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगी देशों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, और ये पहली बार नहीं है। मैं केवल इतना कह सकती हूं कि ये निराशाजनक है कि वो पश्चिमी देशों और अमेरिका के दुश्मनों के प्रति वही सख्ती नहीं दिखाते बल्कि उनके नेताओं के साथ कहीं अधिक नरमी से पेश आते हैं। उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि ना मैं और ना ही इटली कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बर्ताव सबके याद है मुझे, मुस्कुरा कर मिलने को माफी मत समझना।
2: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच चल रही है। खबर है कि एसआईटी इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट भी जल्द सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
3: क्या चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही? क्या चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई? क्या राम मंदिर में गड़बड़ी का यह मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। टिन्नू यादव एसआईटी के रडार पर है। नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे

0: मुठभेड़ के बीच आभूषण के गायब होने का दावा भी किया गया है।
1: चांदी ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
2: जी, ये पहले दी थी 34.6 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
1: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
2: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
0: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए शिलाएं दी थी।
2: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
1: दीपक आपने दिया था?
2: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड जोत जलाई थी।
1: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
2: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
0: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई है। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई है, लेकिन ना ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और ना ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। एसआईटी जांच के अहम बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी है। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी अब सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है ताकि तय 45 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी एसआईटी जांच के दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। जाँच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इससे पहले एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की थी, दस्तावेजों की पड़ताल की थी ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों का पता लगाया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी पाई गई तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

0: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: क्या 15 दिन में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों का पता चल जाएगा? क्या दान चोरी में शामिल बड़े से बड़े नाम को पकड़ लिया जाएगा? योगी ने दिया आश्वासन, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन सूबे के मुखिया ने भी 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये 19 जून की तस्वीरें हैं, जब योगी अयोध्या पहुंचे थे। योगी जब राम मंदिर दर्शन के लिए आए तो चंपत राय साथ में नहीं थे। योगी आए, रामलला के दर्शन किए, पूजा की, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दान पत्र में दान भी डाला। यही वो दान पत्र है जिनसे चोरी करने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह हर रोज लाखों राम भक्त इन दान पत्रों में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं और आरोप है कि इसी चढ़ावे की चोरी हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन आज योगी ने साफ कर दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
0: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
1: योगी के आश्वासन का मतलब ये तो नहीं है कि सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि कोई भी शामिल हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वो जनता को भरोसा देने में कामयाब रहे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि अगर लोगों के पास सबूत हैं तो वो एसआईटी को सौंपे। योगी ने लोगों से सिर्फ 15 दिन और इंतजार करने को कहा, क्योंकि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। और ये भी कहा कि अपराधी कोई भी हो, वो बचेगा नहीं।
0: एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करे, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: चढ़ावा चोरी को सबसे ज्यादा तूल समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो पिछले 12 दिनों से लगातार इस केस को उठा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ चंदा चोर का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब इसे अलग मोड़ दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, तो योगी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो उपदेश न दे। अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। योगी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में कतई न आए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मंदिर जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनको फंसा न दिया जाए। योगी कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अखिलेश इसे महाघोटाला बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सनातन विरोधी गिरोह की गहरी पड़ताल होनी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम और उसका सम्मान हो, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं।
0: और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे।
1: सवाल है कि योगी की कही बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी

0: खबरें मिली तो वो बेहद आहत हुए हैं। लेकिन अब जब प्रदेश के मुखिया ने 15 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है तो क्या लोग संतुष्ट हैं?
1: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दूसरी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा तो उसमें अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं।
2: जिस तरीके से योगी जी ने कहा है तो अभी भी आप लोगों को पूरी तरीके से अब विश्वास है या जिस तरीके की ये घटना निकल करके आ रही है ये भी आप लोगों को व्यथित कर रहा है?
3: जी नहीं, विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र। अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि में चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा? ये दोहरा चरित्र योगी जी ने कहा, इससे सावधान रहे। योगी जी के ऊपर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
2: लोग व्यथित हैं सुन करके कि जो चीजें हुई हैं?
1: आत्मा में तो दुख हुआ एक बार कि पूरे विश्व की नजर हमारे भगवान प्रभु राम पे है, इतना सोना आया, इतना चांदी आया, इतने रुपये चढ़े, ये चढ़ावा क्या हो गया? एक बार तो कलंकित हुई, हम लोग झटका लगा। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लोगों से बताया कि इसकी बिल्कुल बारीकी से जांच की जाएगी, कोई भी दोषी व्यक्ति बचेगा नहीं, वो चाहे जितना अपना बड़े माफिया कहता हो, चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो, तो इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं। और माननीय योगी जी ये कार्य करेंगे, ये इनकी छवि का मामला है, इनकी प्रतिष्ठा का मामला है, हम तो एक जनमानस हैं।
0: उम्मीद कीजिए कि SIT समय पर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपे और चढ़ावे की चोरी का खुलासा हो। कुमार अभिषेक के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
4: अब बिहार में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर की अब भरत तिवारी का एक नया वीडियो सामने आया और ये वीडियो एनकाउंटर से पहले का है जिसमें भरत अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। इस वीडियो में भरत अपने अंगदान की भी बात कर रहा है और साथ ही बता रहा है कि उसके मोबाइल में व्यवस्था के खिलाफ बनाए गए वीडियोज हैं।
5: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
0: ये भरत तिवारी का आखिरी वीडियो था। जैसे भरत को इल्म हो गया था कि आज नहीं तो कल वो जीवित नहीं रहेंगे, अपने इस वीडियो में भरत कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनका मोबाइल किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए।
5: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
0: अब सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के फोन में ऐसा क्या था जो वो दुनिया के सामने लाने वाले थे? इसके साथ ही भरत अपने अंगदान की बात भी कर रहे हैं।
5: मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए, इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं।
0: भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जब भरत ने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, तो उसे चार गोलियां क्यों मारी गईं? भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है।
6: हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सजा दिलाया जाए।
0: सजा तो बहुत दूर की बात है, भरत तिवारी की मां ने पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उस आवेदन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अलबत्ता पुलिस ने खुद 3 FIR दर्ज की हैं, जिसमें भरत तिवारी के साथ उनके भाई और पिता को आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जवाब के नाम पर सन्नाटा है। सोनू सिंह, आरा आज तक।
4: भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर पर सूबे की सियासत अब गरमाई हुई है।
7: कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई

0: फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया गया। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई।
1: यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिस कर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।
2: जेडीयू की पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में नेतृत्व, भविष्य की रणनीति और संगठन की मजबूती जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई और बैठक में सर्वसम्मति से जेडीयू अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर मोहर लगी। वहीं निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य बताया गया।
3: बिहार के सीएम पद से हटने के बाद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ये पहली बैठक थी। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एक बार फिर नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया।
4: नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे निर्विरोध, जिसका राष्ट्रीय परिषद ने अनुमोदन किया।
3: नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, 2025 का जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला है। वो राज्यसभा भले चले गए हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए अपना मार्गदर्शन जारी रखेंगे। बिहार में जेडीयू 2025 के चुनाव से भी बढ़िया प्रदर्शन करे, इसे सुनिश्चित करना है। बिहार के बाहर भी जेडीयू को मजबूत करना है। जरूरत पड़ी तो बिहार के बाहर भी पार्टी के लिए जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मौजूदा सम्राट सरकार और केंद्र सरकार की भी सराहना की।
5: जो मौका मिला 2005 से, तो बहुत सारा काम हुआ और अभी जो एनडीए सरकार चल रही है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और केंद्र से भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
3: बैठक में निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य बताया गया। बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो सुनिए क्या बोले।
6: हमारी सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है, इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम सबको मिलकर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है।
3: इस बैठक से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार सरकार से दूर जरूर हुए हैं, मगर पार्टी पर अब भी उनका जबरदस्त कंट्रोल है। शशि भूषण, पटना आज तक।
2: टीएमसी में बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है। बागी गुट के 10 विधायकों की शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने का दावा है, जिस पर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया।
3: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची, लेकिन क्या अब टीएमसी की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है।
7: ये कम्प्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंस का पैसा है, ये सब प्रोब होना चाहिए। हम लोग तो प्रोब नहीं कर पाएंगे।
3: इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच टीएमसी की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
8: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके,
9: दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी एंड मिस्टर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, टीएमसी पार्टी मेंबर्स, वेदर यू आर विद अ न्यू पार्टी और वेदर यू आर विद टीएमसी, यू ऑल हैव चीटेड।
3: टीएमसी में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अब आपको राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप सहम जाएंगे, सवाल करेंगे कि अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों की दशा क्या ही होगी।
3: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। सिहरन पैदा करती हैं ये तस्वीरें। एक बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि इस बच्चे पर इस गाय ने हमला कर दिया है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के गली नंबर 10 की है। देखिए, बच्चा गाय से बचने के लिए भागता है, मगर गाय उसे सींग मार रही है। बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है, गाय उस पर हमला जारी रखती है। बच्चा दहाड़े मारकर चिल्लाता है, वो गाय से बचने का बार बार प्रयास कर रहा है। बच्चे की पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मगर सिर्फ देखते रहते हैं। फिर ये आदमी हिम्मत दिखाता है, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है। किसी तरह से ये बच्चे को गाय से अलग करता है, मगर ये बच्चे को संभालता है, इसके पहले ही गाय ने दोबारा अटैक कर दिया। बच्चे को लेकर ये भागता है, मगर गाय सींग मारती है और ये गिर पड़ता है। तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं और गाय को यहाँ से भगाते हैं। तस्वीरें 19 जून की बताई जा रही हैं। अब सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में आवारा पशुओं का आतंक कब तक रहेगा? आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
2: देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां दबंग युवकों ने सरेरात दो युवकों की जमकर पिटाई की। दबंग दिखाते हुए इन लोगों ने सबके सामने इन युवकों पर लाठी डंडों से हमले किए और बेल्ट बरसाए।
3: बीच सड़क पर कुछ दबंग इन दो युवकों को पीट रहे हैं। कभी इन पर बेल्ट बरसाई जा रही है, कभी इनकी पीठ पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन दोनों युवकों को ये दबंग मार डालने पर उतारू हैं। बेरहमी से ये इन दोनों युवकों को पीट रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि बीच सड़क पर ये दबंगई दिखा रहे हैं और कोई इन्हें रोक नहीं रहा। अलबत्ता लोग तमाशबीन बने इन्हें देख रहे हैं, मगर इन युवकों की कोई मदद नहीं कर रहा है। तस्वीरें लखनऊ की है, जहाँ KGMU के सामने इन दोनों युवकों की पिटाई हो रही है। देखिए, इस नीली टी शर्ट वाले लड़के को किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब पिटाई का ये वीडियो वायरल है, पुलिस जांच कर रही है कि सरेराह गुंडागर्दी करने वाले ये दबंग कौन है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
2: स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है, दोनों देश मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। इधर इसराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। सवाल है कि युद्ध विराम होगा भी या फिर आगे बढ़ेगा यह संग्राम?
3: एक बार फिर इसराइल ने लेबनान को बनाया है निशाना। एक बार फिर इसराइल के हमले से धुआं धुआं हुआ है लेबनान। एक बार फिर शांति समझौते पर मली गई है बारूद। जी हाँ, इसराइल ने पिछले दो दिन में लेबनान में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए हैं, जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली फौज का आरोप है कि हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में उसे ये कार्रवाई करनी पड़ी है और आतंकियों के खिलाफ इस तरह के हमले जारी रहेंगे। खुद नेतन्याहू कई बार इसराइल का रुख साफ कर चुके हैं। इस जिद की वजह से हाल ही में ट्रंप को कई तल्ख बयान भी देने पड़े हैं, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि लेबनान में हिजबुल्ला की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
10: אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו.
3: इसराइल के सैन्य अभियान को देखते हुए ईरान बिफर पड़ा है। ईरान ने शनिवार को ही सीज फायर टूटने के आरोप लगाकर होरमुज बंद करने का ऐलान कर दिया। अब एक तरफ इसराइल ट्रंप के पीस प्लान की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ होरमुज का हाहाकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान और लेबनान की रणभूमि से हजारों मील दूर स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम पर अंतिम मुहर लगती है, या फिर इसराइल की जिद ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फिरती है। आज तक ब्यूरो।
2: वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की इस शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया ए ने शानदार जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम कर ली है।
3: फाइनल फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, श्रीलंका को पीटकर चैंपियन बना हिंदुस्तान। जो सामने आ रहा था पिटकर ही जा रहा था, मैदान का हर कोना वैभव के इन शॉट से गुलजार हो रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में पूरे टूर्नामेंट की कसर निकाल दी। फाइनल से पहले उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं था, लेकिन फाइनल में उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि रनों की बरसात में कई रिकॉर्ड बह गए। वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। लिस्ट एक क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का यह सबसे तेज अर्धशतक है। आखिरकार वैभव शतक बनाने से चूक गए और 29 गेंदों पर 94 बनाकर लौट गए। उन्होंने इस पारी में 8 छक्के और 10 चौके जमाए। वैभव ने प्रियांश के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी 9 ओवर पूरा होने से पहले ही कर दी थी। उनके जाने के बाद भी रनों का सिलसिला चलता रहा। ऋतुराज और तिलक वर्मा की पारियों ने रनों का अंबार लगा दिया। जाते जाते अनुकूल रॉय ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 377 तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। जवाब में पहाड़ से स्कोर को पार करने का दबाव ही श्रीलंका को ले डूबा। 33 रन होते होते उसके दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन टीम इंडिया को चैंपियन बनने से रोकने के लिए वो नाकाफी थी। आज तक ब्यूरो
2: छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, फौरन हो गया हासिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: खुलासा, एसआईटी जल्द सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर किया गया हादसा, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे, कहा जब उन्हें कोई पूछता नहीं था तब हमने दिया था उनका साथ, यह हमें कमजोर करने के साजिश, में मतदाताओं से मांगता हूं माफी। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के भी नेताओं ने उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और खालिबाफ की अगुवाई में चर्चा, होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच चल रही है, खबर है कि एसआईटी इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट भी जल्द सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
1: क्या चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही? क्या चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई? क्या राम मंदिर में गड़बड़ी का यह मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। इन्नू यादव एसआईटी के रडार पर हैं, नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है, कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के बीच आभूषण के गायब होने का दावा भी किया गया है।
2: चांदी ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.644 किलो और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर न्यू में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है,
2: ये दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव उर्फ इन्नू,

0: ये दीपक अभी है वहां?
1: अब मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहां नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
2: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के चार पुजारियों से पूछताछ की गई है। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई है, लेकिन ना ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और ना ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब SIT अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। SIT जांच के अहम बिंदु CCTV फुटेज भी हैं। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 CCTV कैमरे लगे हैं। जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं तो ये कैसे संभव है? बिना CCTV को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि SIT अब CCTV की फॉरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है ताकि तय 45 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी SIT जांच के दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। जांच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इससे पहले SIT ने ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की थी, दस्तावेजों की पड़ताल की थी ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों का पता लगाया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ये कह चुके हैं कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी पाई गई तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

0: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: क्या 15 दिन में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों का पता चल जाएगा? क्या दान चोरी में शामिल बड़े से बड़े नाम को पकड़ लिया जाएगा? योगी ने दिया आश्वासन, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन सूबे के मुखिया ने भी 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये 19 जून की तस्वीरें हैं, जब योगी अयोध्या पहुंचे। योगी जब राम मंदिर दर्शन के लिए आए तो चंपत राय साथ में नहीं थे। योगी आए, रामलला के दर्शन किए, पूजा की, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दान पत्र में दान भी डाला। यही वो दान पत्र है जिनसे चोरी करने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह हर रोज लाखों राम भक्त इन दान पत्रों में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं और आरोप है कि इसी चढ़ावे की चोरी हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन आज योगी ने साफ कर दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
0: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई

0: डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
1: योगी के आश्वासन का मतलब ये तो नहीं है कि सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि कोई भी शामिल हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वो जनता को भरोसा देने में कामयाब रहे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि अगर लोगों के पास सबूत हैं तो वो एसआईटी को सौंपें। योगी ने लोगों से सिर्फ 15 दिन और इंतजार करने को कहा, क्योंकि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। और ये भी कहा कि अपराधी कोई भी हो वो बचेगा नहीं।
0: एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: चढ़ावा चोरी को सबसे ज्यादा तूल समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो पिछले 12 दिनों से लगातार इस केस को उठा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ चंदा चोर का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी से अलग मोड़ दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, तो योगी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो उपदेश न दे। अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। योगी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में कतई न आए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मंदिर जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनको फंसा न दिया जाए। योगी कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अखिलेश इसे महाघोटाला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन विरोधी गिरोह की गहरी पड़ताल होनी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम और उसका सम्मान हो, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं।
0: और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे।
1: सवाल है कि योगी की कही बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी की खबरें मिली तो वो बेहद आहत हुए हैं। लेकिन अब जब प्रदेश के मुखिया ने 15 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है, तो क्या लोग संतुष्ट हैं? सवाल है कि योगी की कही बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी की खबरें मिली तो

0: बिहार की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जब भरत ने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, तो उसे 4 गोलियां क्यों मारी गईं? भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है।
1: हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज कर।
0: भरत ने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, तो उसे 4 गोलियां क्यों मारी गईं? भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है।
1: हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सजा दिलाया जाए।
0: सजा तो बहुत दूर की बात है। भरत तिवारी की मां ने पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उस आवेदन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अलबत्ता पुलिस ने खुद 3 FIR दर्ज की हैं, जिसमें भरत तिवारी के साथ उनके भाई और पिता को आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जवाब के नाम पर सन्नाटा है। सोनू सिंह, आरा आज तक।
2: भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर पर सूबे की सियासत अब गर्माई हुए है।
3: कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है
0: गया है। अब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जवाब के नाम पर सन्नाटा है। सोनू सिंह,
4: और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।
2: जेडीयू की पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में नेतृत्व, भविष्य की रणनीति और संगठन की मजबूती जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई और बैठक में सर्वसम्मति से जेडीयू अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर मुहर लगी। वहीं निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य बताया गया।
0: बिहार के सीएम पद से हटने के बाद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ये पहली बैठक थी। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एक बार फिर नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया।
5: श्री नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे निर्विरोध, जिसका राष्ट्रीय परिषद ने अनुमोदन किया।
0: नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, 2025 का जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला है। वो राज्यसभा भले चले गए हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए अपना मार्गदर्शन जारी रखेंगे। बिहार में जेडीयू 2025 के चुनाव से भी बढ़िया प्रदर्शन करे, इसे सुनिश्चित करना है। बिहार के बाहर भी जेडीयू को मजबूत करना है। जरूरत पड़ी तो बिहार के बाहर भी पार्टी के लिए जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मौजूदा सम्राट सरकार और केंद्र सरकार की भी सराहना की।
6: मौका मिला 2005 से तो बहुत सारा काम हुआ और अभी जो NDA सरकार चल रही है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और केंद्र से भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
0: बैठक में निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य बताया गया। बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो सुनिए क्या बोले।
7: हमारी सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है, इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम सबको मिलकर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है।
0: इस बैठक से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार सरकार से दूर जरूर हुए हैं, मगर पार्टी पर अब भी उनका जबरदस्त कंट्रोल है। शशिभूषण, पटना आज तक।
2: टीएमसी में बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है। बागी गुट के 10 विधायकों की शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने का दावा है, जिस पर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया।
0: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची, लेकिन क्या अब टीएमसी की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है।
8: ये कम्प्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंस का पैसा है, ये सब प्रोव होना चाहिए। हम लोग तो प्रोव नहीं कर पाएंगे।
0: इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच टीएमसी की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
9: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी

0: ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके,
1: दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी। एंड मिस्टर अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी, टीएमसी पार्टी मेंबर्स, वेदर यू आर विद अ न्यू पार्टी और वेदर यू आर विद टीएमसी, यू ऑल हैव चीटेड।
2: टीएमसी में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अब आपको राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप सहम जाएंगे, सवाल करेंगे कि अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों की दशा क्या ही होगी।
2: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं, सिहरन पैदा करती हैं ये तस्वीरें। एक बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि इस बच्चे पर इस गाय ने हमला कर दिया है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के गली नंबर 10 की है। देखिए, बच्चा गाय से बचने के लिए भागता है मगर गाय उसे सींग मार रही है। बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है, गाय उस पर हमला जारी रखती है। बच्चा दहाड़े मार कर चिल्लाता है, वो गाय से बचने का बार बार प्रयास कर रहा है। बच्चे की पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं मगर सिर्फ देखते रहते हैं। फिर ये आदमी हिम्मत दिखाता है, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है। किसी तरह से ये बच्चे को गाय से अलग करता है मगर ये बच्चे को संभालता है, इसके पहले ही गाय ने दोबारा अटैक कर दिया। बच्चे को लेकर ये भागता है मगर गाय सींग मारती है और ये गिर पड़ता है। तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं और गाय को यहाँ से भगाते हैं। तस्वीरें 19 जून की बताई जा रही हैं। अब सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में आवारा पशुओं का आतंक कब तक रहेगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
3: देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां दबंग युवकों ने सरेरात दो युवकों की जमकर पिटाई की। दबंगई दिखाते हुए इन लोगों ने सबके सामने इन युवकों पर लाठी डंडों से हमले किए और बेल्ट बरसाए।
2: बीच सड़क पर कुछ दबंग इन दो युवकों को पीट रहे हैं, कभी इन पर बेल्ट बरसाई जा रही है, कभी इनकी पीठ पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन दोनों युवकों को ये दबंग मार डालने पर उतारू हैं। बेरहमी से ये इन दोनों युवकों को पीट रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि बीच सड़क पर ये दबंगई दिखा रहे हैं और कोई इन्हें रोक नहीं रहा। अलबत्ता लोग तमाशबीन बने इन्हें देख रहे हैं मगर इन युवकों की कोई मदद नहीं कर रहा है। तस्वीरें लखनऊ की है जहाँ KGMU के सामने इन दोनों युवकों की पिटाई हो रही है। देखिए, इस नीली टी शर्ट वाले लड़के को किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब पिटाई का ये वीडियो वायरल है, पुलिस जांच कर रही है कि सरेराह गुंडागर्दी करने वाले ये दबंग कौन हैं। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है, दोनों देश मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। इधर इसराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। सवाल है कि युद्ध विराम होगा भी या फिर आगे बढ़ेगा यह संग्राम।
2: एक बार फिर इसराइल ने लेबनान को बनाया है निशाना। एक बार फिर इसराइल के हमले से धुआं धुआं हुआ है लेबनान। एक बार फिर शांति समझौते पर मली गई है बारूद। जी हां, इसराइल ने पिछले दो दिन में लेबनान में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए हैं जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली फौज का आरोप है कि हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में उसे ये कार्रवाई करनी पड़ी है और आतंकियों के खिलाफ इस तरह के हमले जारी रहेंगे। खुद नेतन्याहू कई बार इसराइल का रुख साफ कर चुके हैं। इस जिद की वजह से हाल ही में ट्रंप को कई तल्ख बयान भी देने पड़े हैं, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि लेबनान में हिजबुल्ला की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
4: אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו.
2: इसराइल के सैन्य अभियान को देखते हुए ईरान बिफर पड़ा है।

0: ईरान ने शनिवार को ही सीज फायर टूटने के आरोप लगाकर हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। अब एक तरफ इसराइल ट्रंप के पीस प्लान की मुश्किलें बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ हॉर्मुज का हाहाकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान और लेबनान की रणभूमि से हजारों मील दूर स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम पर अंतिम मुहर लगती है या फिर इसराइल की जिद ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फिरती है। आज तक ब्यूरो
1: वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की इस शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया ए ने शानदार जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम कर ली है।
0: फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, श्रीलंका को पीट कर चैंपियन बना हिंदुस्तान। जो सामने आ रहा था पिट कर ही जा रहा था, मैदान का हर कोना वैभव के इन शॉट से गुलजार हो रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में पूरे टूर्नामेंट की कसर निकाल दी। फाइनल से पहले उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं था, लेकिन फाइनल में उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि रनों की बरसात में कई रिकॉर्ड बह गए। वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। लिस्ट एक क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का यह सबसे तेज अर्धशतक है। आखिरकार वैभव शतक बनाने से चूक गए और 29 गेंदों पर 94 बनाकर लौट गए। उन्होंने इस पारी में 8 छक्के और 10 चौके जमाए। वैभव ने प्रियांश के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी 9 ओवर पूरा होने से पहले ही कर दी थी। उनके जाने के बाद भी रनों का सिलसिला चलता रहा। ऋतुराज और तिलक वर्मा की पारियों ने रनों का अंबार लगा दिया। जाते जाते अनुकूल रॉय ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 377 तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। जवाब में पहाड़ से स्कोर को पार करने का दबाव ही श्रीलंका को ले डूबा। 33 रन होते होते उसके दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन टीम इंडिया को चैंपियन बनने से रोकने के लिए वो नाकाफी थी। आज तक ब्यूरो
1: छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, फौरन हो गया हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

एसआईटी जल्द सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर किया गया हादसा, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे, कहा जब उन्हें कोई पूछता नहीं था तब हमने दिया था उनका साथ, ये हमें कमजोर करने की साजिश, में मतदाताओं से मांगता हूं माफी। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के भी नेताओं ने उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड

0: इंसाफ की अगुवाई में चर्चा हॉर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच चल रही है। खबर है कि एसआईटी इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट भी जल्द सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
1: क्या चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही? क्या चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई? क्या राम मंदिर में गड़बड़ी का यह मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। टिन्नू यादव एसआईटी के रडार पर हैं। नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के बीच आभूषण के गायब होने का दावा भी किया गया है।
2: चांदी ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए। लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर न्यू में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: ये दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई है। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई है, लेकिन ना ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और ना ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। एसआईटी जांच के अहम बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी हैं। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी अब सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है, ताकि तय 45 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी एसआईटी जांच के दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। जांच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की थी, दस्तावेजों की पड़ताल की थी, ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों का पता लगाया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी पाई गई तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

0: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: क्या 15 दिन में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों का पता चल जाएगा? क्या दान चोरी में शामिल बड़े से बड़े नाम को पकड़ लिया जाएगा? योगी ने दिया आश्वासन, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन सूबे के मुखिया ने भी 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये 19 जून की तस्वीरें हैं, जब योगी अयोध्या पहुंचे। योगी जब राम मंदिर दर्शन के लिए आए तो चंपत राय साथ में नहीं थे। योगी आए, रामलला के दर्शन किए, पूजा की, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दान पत्र में दान भी डाला। यही वो दान पत्र है जिनसे चोरी करने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह हर रोज लाखों राम भक्त इन दान पत्रों में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं और आरोप है कि इसी चढ़ावे की चोरी हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन आज योगी ने साफ कर दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
0: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
1: योगी के आश्वासन का मतलब ये तो नहीं है कि सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि कोई भी शामिल हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वो जनता को भरोसा देने में कामयाब रहे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि अगर लोगों के पास सबूत हैं तो वो एसआईटी को सौंपे। योगी ने लोगों से सिर्फ 15 दिन और इंतजार करने को कहा, क्योंकि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। और ये भी कहा कि अपराधी कोई भी हो, वो बचेगा नहीं।
0: एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: चढ़ावा चोरी को सबसे ज्यादा तूल समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो पिछले 12 दिनों से लगातार इस केस को उठा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ चंदा चोर का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी से अलग मोड़ दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, तो योगी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो उपदेश न दे। अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। योगी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में कतई न आए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मंदिर जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनको फंसा न दिया जाए। योगी कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अखिलेश इसे महाघोटाला बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सनातन विरोधी गिरोह की गहरी पड़ताल होनी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम और उसका सम्मान हो, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं।
0: और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी,

0: प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे।
1: सवाल है कि योगी की कही बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी की खबरें मिली तो वो बेहद आहत हुए हैं। लेकिन अब जब प्रदेश के मुखिया ने 15 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है तो क्या लोग संतुष्ट हैं?
2: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दूसरी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा तो उसमें अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं।
3: जिस तरीके से योगी जी ने कहा है तो अभी भी आप लोगों को पूरी तरीके से अब विश्वास है या जिस तरीके की ये घटना निकल करके आ रही है ये भी आप लोगों को व्यथित कर रहा है?
4: जी नहीं, विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र, अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि में चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा? ये दोहरा चरित्र योगी जी ने कहा, इससे सावधान रहे। योगी जी के ऊपर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
3: लोग व्यथित हैं सुन करके कि जो चीजें हुई हैं।
2: आत्मा में तो दुख हुआ एक बार कि इतने पूरे विश्व की नजर हमारे भगवान प्रभु राम पे है, इतना सोना आया, इतना चांदी आया, इतने रुपये चढ़े, ये चढ़ावा क्या हो गया? एक बार तो कलंकित हुई, हम लोग झटका लगा। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लोगों से बताया कि इसकी बिल्कुल बारीकी से जांच की जाएगी, कोई भी दोषी व्यक्ति बचेगा नहीं, वो चाहे जितना अपना बड़े माफिया कहता हो, चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो, तो इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं और माननीय योगी जी ये कार्य करेंगे। ये इनकी छवि का मामला है, इनकी प्रतिष्ठा का मामला है, हम तो एक जनमानस हैं।
1: उम्मीद कीजिए कि SIT समय पर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपे और चढ़ावे की चोरी का खुलासा हो। कुमार अभिषेक के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
5: अब बिहार में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर की, अब भरत तिवारी का एक नया वीडियो सामने आया और ये वीडियो एनकाउंटर से पहले का है जिसमें भरत अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। इस वीडियो में भरत अपने अंगदान की भी बात कर रहा है और साथ ही बता रहा है कि उसके मोबाइल में व्यवस्था के खिलाफ बनाए गए वीडियोज हैं।
6: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे, मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
1: ये भरत तिवारी का आखिरी वीडियो था। जैसे भरत को इल्म हो गया था कि आज नहीं तो कल वो जीवित नहीं रहेंगे, अपने इस वीडियो में भरत कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनका मोबाइल किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए।
6: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे, मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
1: अब सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के फोन में ऐसा क्या था जो वो दुनिया के सामने लाने वाले थे। इसके साथ ही भरत अपने अंगदान की बात भी कर रहे हैं।
6: मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए, इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर

0: पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं।
1: भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जब भरत ने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, तो उसे चार गोलियां क्यों मारी गईं? भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है।
2: हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सजा दिलाया जाए।
1: सजा तो बहुत दूर की बात है। भरत तिवारी की मां ने पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उस आवेदन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अलबत्ता पुलिस ने खुद 3 FIR दर्ज की हैं, जिसमें भरत तिवारी के साथ उनके भाई और पिता को आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जवाब के नाम पर सन्नाटा है। सोनू सिंह, आरा, आज तक।
3: JDU की पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में नेतृत्व, भविष्य की रणनीति और संगठन की मजबूती जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई और बैठक में सर्वसम्मति से JDU अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर मुहर लगी। वहीं निशांत कुमार को JDU का भविष्य बताया गया।
1: बिहार के CM पद से हटने के बाद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ये पहली बैठक थी। पटना में JDU के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एक बार फिर नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया।
4: नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे निर्विरोध, जिसका राष्ट्रीय परिषद ने अनुमोदन किया।
1: नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, 2025 का जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला है। वो राज्यसभा भले चले गए हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए अपना मार्गदर्शन जारी रखेंगे। बिहार में JDU 2025 के चुनाव से भी बढ़िया प्रदर्शन करे, इसे सुनिश्चित करना है। बिहार के बाहर भी JDU को मजबूत करना है। जरूरत पड़ी तो बिहार के बाहर भी पार्टी के लिए जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मौजूदा सम्राट सरकार और केंद्र सरकार की भी सराहना की।
5: जो मौका मिला 2005 से, तो बहुत सारा काम हुआ और अभी जो NDA सरकार चल रही है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और केंद्र से भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
1: बैठक में निशांत कुमार को JDU का भविष्य बताया गया। बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो सुनिए क्या बोले।
6: हमारी सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है, इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम सबको मिलकर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है।
1: इस बैठक से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार सरकार से दूर जरूर हुए हैं, मगर पार्टी पर अब भी उनका जबरदस्त कंट्रोल है। शशिभूषण, पटना, आज तक।
3: टीएमसी में बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है। बागी गुट के 10 विधायकों की शिकायत के बाद TMC के 3 खाते फ्रीज होने का दावा है, जिस पर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है।
1: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची, लेकिन क्या अब TMC की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद TMC के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है।
7: ये कंप्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहां से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंस का पैसा है, ये सब प्रूव होना चाहिए। हम लोग तो प्रूव नहीं कर पाएंगे।
1: इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच TMC की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
8: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके,
9: दिस इज आवर टैक्सपेयर्स मनी। एंड मिस्टर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, TMC पार्टी मेंबर्स, वेदर यू आर विद अ न्यू पार्टी और वेदर यू आर विद TMC, यू ऑल हैव चीटेड।
1: TMC में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अब आपको राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप सहम जाएंगे, सवाल करेंगे कि अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों की दशा क्या ही होगी।
1: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं, सिहरन पैदा करती हैं ये तस्वीरें। एक बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है क्योंकि इस बच्चे पर इस गाय ने हमला कर दिया है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के गली नंबर 10 की है। देखिए, बच्चा गाय से बचने के लिए भागता है मगर गाय उसे सींग मार रही है। बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है, गाय उस पर हमला जारी रखती है। बच्चा दहाड़े मारकर चिल्लाता है, वो गाय से बचने का बार बार प्रयास कर रहा है। बच्चे की पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं मगर सिर्फ देखते रहते हैं। फिर ये आदमी हिम्मत दिखाता है, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है। किसी तरह से ये बच्चे को गाय से अलग करता है मगर ये बच्चे को संभालता है, इसके पहले ही गाय ने दोबारा अटैक कर दिया। बच्चे को लेकर ये भागता है मगर गाय सींग मारती है और ये गिर पड़ता है। तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं और गाय को यहाँ से भगाते हैं। तस्वीरें 19 जून की बताई जा रही हैं। अब सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में आवारा पशुओं का आतंक कब तक रहेगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
3: देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां दबंग युवकों ने सरेरात दो युवकों की जमकर पिटाई की। दबंगई दिखाते हुए इन लोगों ने सबके सामने इन युवकों पर लाठी डंडों से हमले किए और बेल्ट बरसाए।
1: बीच सड़क पर कुछ दबंग इन दो युवकों को पीट रहे हैं, कभी इन पर बेल्ट बरसाई जा रही है, कभी इनकी पीठ पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन दोनों युवकों को ये दबंग मार डालने पर उतारू हैं। बेरहमी से ये इन दोनों युवकों को पीट रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि बीच सड़क पर ये दबंगई दिखा रहे हैं और कोई इन्हें रोक नहीं रहा। अलबत्ता लोग तमाशबीन बने इन्हें देख रहे हैं मगर इन युवकों की कोई मदद नहीं कर रहा है। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां KGMU के सामने इन दोनों युवकों की पिटाई हो रही है। देखिए, इस नीली टी शर्ट वाले लड़के को किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब पिटाई का ये वीडियो वायरल है, पुलिस जांच कर रही है कि सरेराह गुंडागर्दी करने वाले ये दबंग कौन है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है, दोनों देश मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। इधर इसराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। सवाल है कि युद्ध विराम होगा भी या फिर आगे बढ़ेगा ये संग्राम।
1: एक बार फिर इसराइल ने लेबनान को बनाया है निशाना। एक बार फिर इसराइल के हमले से धुआं धुआं हुआ है लेबनान। एक बार फिर शांति समझौते पर मली गई है बारूद। जी हां, इसराइल ने पिछले दो दिन में लेबनान में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए हैं जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली फौज का आरोप है कि हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में उसे ये कार्रवाई करनी पड़ी है और आतंकियों के खिलाफ इस तरह के हमले जारी रहेंगे। खुद नेतन्याहू कई बार इजरायल का रुख साफ कर चुके हैं। इस जिद की वजह से हाल ही में ट्रंप को कई तल्ख बयान भी देने पड़े हैं, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि लेबनान में हिजबुल्ला की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजराइल के सैन्य अभियान को देखते हुए ईरान बिफर पड़ा है। ईरान ने शनिवार को ही सीज फायर टूटने के आरोप लगाकर होर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। अब एक तरफ इजराइल ट्रंप के पीस प्लान की मुश्किलें बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ होर्मुज का हाहाकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान और लेबनान की रणभूमि से हजारों मील दूर स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम पर अंतिम मुहर लगती है या फिर इजराइल की जिद ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फिरती है। आज तक ब्यूरो।
3: वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

0: वैभव की शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया ए ने शानदार जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम कर ली है।
1: फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, श्रीलंका को पीटकर चैंपियन बना हिंदुस्तान। जो सामने आ रहा था पिटकर ही जा रहा था, मैदान का हर कोना वैभव के इन शॉट से गुलजार हो रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में पूरे टूर्नामेंट की कसर निकाल दी। फाइनल से पहले उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं था, लेकिन फाइनल में उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि रनों की बरसात में कई रिकॉर्ड बह गए। वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। लिस्ट एक क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का यह सबसे तेज अर्धशतक है। आखिरकार वैभव शतक बनाने से चूक गए और 29 गेंदों पर 94 बनाकर लौट गए। उन्होंने इस पारी में 8 छक्के और 10 चौके जमाए। वैभव ने प्रियांश के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी 9 ओवर पूरा होने से पहले ही कर दी थी। उनके जाने के बाद भी रनों का सिलसिला चलता रहा। ऋतुराज और तिलक वर्मा की पारियों ने रनों का अंबार लगा दिया। जाते जाते अनुकूल रॉय ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 377 तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। जवाब में पहाड़ से स्कोर को पार करने का दबाव ही श्रीलंका को ले डूबा। 33 रन होते होते उसके दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन टीम इंडिया को चैंपियन बनने से रोकने के लिए वो नाकाफी थी। आज तक ब्यूरो।
0: छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, फौरन हो गया हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: किया गया हादसा, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे, कहा जब उन्हें कोई पूछता नहीं था तब हमने दिया था उनका साथ, यह हमें कमजोर करने के साजिश, में मतदाताओं से मांगता हूं माफी। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के भी नेताओं ने उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और खालिबाफ की अगुवाई में चर्चा, होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच चल रही है, खबर है कि एसआईटी इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट भी जल्द सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
1: क्या चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही? क्या चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई? क्या राम मंदिर में गड़बड़ी का यह मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। टिन्नू यादव एसआईटी के रडार पर है, नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है, कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है।

0: माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के बीच आभूषण के गायब होने का दावा भी किया गया है।
1: है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
2: जी, ये पहले दी थी 34.6 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
1: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
2: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
0: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए शिलाएं दी थी।
2: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
1: दीपक आपने दिया था?
2: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
1: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
2: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
0: मामले में राम शंकर यादव उर्फ किन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई है। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई है, लेकिन ना ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और ना ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। एसआईटी जांच के अहम बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी हैं। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी अब सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है, ताकि तय 45 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी एसआईटी जांच के दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। जांच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

इससे पहले एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की थी, दस्तावेजों की पड़ताल की थी, ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों का पता लगाया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी पाई गई तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

0: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: क्या 15 दिन में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों का पता चल जाएगा? क्या दान चोरी में शामिल बड़े से बड़े नाम को पकड़ लिया जाएगा? योगी ने दिया आश्वासन, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन सूबे के मुखिया ने भी 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये 19 जून की तस्वीरें हैं, जब योगी अयोध्या पहुंचे। योगी जब राम मंदिर दर्शन के लिए आए तो चंपत राय साथ में नहीं थे। योगी आए, रामलला के दर्शन किए, पूजा की, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दान पत्र में दान भी डाला। यही वो दान पत्र है जिनसे चोरी करने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह हर रोज लाखों राम भक्त इन दान पत्रों में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं और आरोप है कि इसी चढ़ावे की चोरी हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन आज योगी ने साफ कर दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
0: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
1: योगी के आश्वासन का मतलब ये तो नहीं है कि सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि कोई भी शामिल हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वो जनता को भरोसा देने में कामयाब रहे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि अगर लोगों के पास सबूत हैं तो वो एसआईटी को सौंपें। योगी ने लोगों से सिर्फ 15 दिन और इंतजार करने को कहा, क्योंकि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। और ये भी कहा कि अपराधी कोई भी हो, वो बचेगा नहीं।
0: एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा,

0: बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: चढ़ावा चोरी को सबसे ज्यादा तूल समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो पिछले 12 दिनों से लगातार इस केस को उठा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ चंदा चोर का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब इसे अलग मोड़ दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, तो योगी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो उपदेश न दे। अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। योगी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में कतई न आए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मंदिर जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनको फंसा न दिया जाए। योगी कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अखिलेश इसे महाघोटाला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन विरोधी गिरोह की गहरी पड़ताल होनी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम और उसका सम्मान हो, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं।
0: और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे।
1: सवाल है कि योगी की कही बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी की खबरें मिली तो वो बेहद आहत हुए हैं। लेकिन अब जब प्रदेश के मुखिया ने 15 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है, तो क्या लोग संतुष्ट हैं?
2: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दूसरी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, तो उसमें अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं।
3: जिस तरीके से योगी जी ने कहा है, तो अभी भी आप लोगों को पूरी तरीके से अब विश्वास है या जिस तरीके की ये घटना निकल करके आ रही है ये भी आप लोगों को व्यथित कर रहा है?
4: जी नहीं, विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र, अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि में चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा? ये दोहरा चरित्र योगी जी ने कहा, इससे सावधान रहे। योगी जी के ऊपर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
3: लोग व्यथित हैं सुन करके कि जो चीजें हुई हैं?
2: आत्मा में तो दुख हुआ एक बार कि इतने पूरे विश्व की नजर हमारे भगवान प्रभु राम पे है, इतना सोना आया, इतना चांदी आया, इतने रुपये चढ़े, ये चढ़ावा क्या हो गया? एक बार तो कलंकित हुए हम लोग, झटका लगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लोगों से बताया कि इसकी बिल्कुल बारीकी से जांच की जाएगी, कोई भी दोषी व्यक्ति बचेगा नहीं, वो चाहे जितना अपना बड़े माफिया कहता हो, चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो। तो इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं और माननीय योगी जी ये कार्य करेंगे। ये इनकी छवि का मामला है, इनकी प्रतिष्ठा का मामला है, हम तो एक जनमानस हैं।
1: उम्मीद कीजिए कि SIT समय पर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपे और चढ़ावे की चोरी का खुलासा हो। कुमार अभिषेक के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
5: अब बिहार में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर की, अब भरत तिवारी का एक नया वीडियो सामने आया और ये वीडियो एनकाउंटर से पहले का है जिसमें भरत अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। इस वीडियो में भरत अपने अंगदान की भी बात कर रहा है और साथ ही बता रहा है कि उसके मोबाइल में व्यवस्था के खिलाफ बनाए गए वीडियोज हैं।
6: मेरी एक इच्छा अच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
1: ये भरत तिवारी का आखिरी वीडियो था। जैसे भरत को इल्म हो गया था कि आज नहीं तो कल वो जीवित नहीं रहेंगे, अपने इस वीडियो में भरत कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनका मोबाइल किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए।
6: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
1: अब सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के फोन में ऐसा क्या था जो वो दुनिया के सामने लाने वाले थे। इसके साथ ही भरत अपने अंगदान की बात भी कर रहे हैं।
6: मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए, इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं।
1: भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जब भरत ने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, तो उसे चार गोलियां क्यों मारी गईं? भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है।
7: हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सजा दिलाया जाए।
1: सजा तो बहुत दूर की बात है। भरत तिवारी की मां ने पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उस आवेदन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अलबत्ता पुलिस ने खुद 3 FIR दर्ज की हैं, जिसमें भरत तिवारी के साथ उनके भाई और पिता को आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जवाब के नाम पर सन्नाटा है। सोनू सिंह, आरा, आज तक।
5: भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर पर सूबे की सियासत अब गरमाई हुए है।
8: कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया है। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई।
9: यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिस कर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।
5: जेडीयू की पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में नेतृत्व, भविष्य की रणनीति और संगठन की मजबूती जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई और बैठक में सर्वसम्मति से जेडीयू अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर मोहर लगी। वहीं निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य बताया गया।
1: बिहार के सीएम पद से हटने के बाद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ये पहली बैठक थी। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एक बार फिर नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया।
10: श्री नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे निर्विरोध, जिसका राष्ट्रीय परिषद ने अनुमोदन किया।
1: नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, 2025 का जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला है। वो राज्यसभा भले चले गए हैं लेकिन बिहार के विकास के लिए अपना मार्गदर्शन जारी रखेंगे। बिहार में जेडीयू 2025 के चुनाव से भी बढ़िया प्रदर्शन करे, इसे सुनिश्चित करना है। बिहार के बाहर भी जेडीयू को मजबूत करना है, जरूरत पड़ी तो बिहार के बाहर भी पार्टी के लिए जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मौजूदा सम्राट सरकार और केंद्र सरकार की भी सराहना की।
11: जो मौका मिला 2005 से तो बहुत सारा काम हुआ और अभी जो NDA सरकार चल रही है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही और केंद्र से भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
1: बैठक में निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य बताया गया। बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो सुनिए क्या बोले।
12: हमारी सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है, इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम सबको मिलकर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है।
1: इस बैठक से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार सरकार से दूर जरूर हुए हैं मगर पार्टी पर अब भी उनका जबरदस्त कंट्रोल है। शशि भूषण, पटना, आज तक।
5: इसी में बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है। बागी गुट के 10 विधायकों की शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने का दावा है, जिस पर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है।
1: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची, लेकिन क्या अब टीएमसी की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है।
13: ये कंप्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहां से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंस का पैसा है, ये सब प्रोव होना चाहिए। हम लोग तो प्रोव नहीं कर पाएंगे।
1: इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच टीएमसी की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
14: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके,
15: दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी। एंड मिस्टर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, टीएमसी पार्टी मेंबर्स, वेदर यू आर विद अ न्यू पार्टी और विद वेदर यू आर विद टीएमसी, यू ऑल हैव चीटेड।
1: टीएमसी में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: अब आपको राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप सहम जाएंगे, सवाल करेंगे कि अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों की दशा क्या ही होगी।
1: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं, सिहरन पैदा करती हैं ये तस्वीरें। एक बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि इस बच्चे पर इस गाय ने हमला कर दिया है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के गली नंबर 10 की है। देखिए, बच्चा गाय से बचने के लिए भागता है, मगर गाय उसे सींग मार रही है। बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है, गाय उस पर हमला जारी रखती है, बच्चा दहाड़े मार कर चिल्लाता है, वो गाय से बचने का बार बार प्रयास कर रहा है। बच्चे की पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मगर सिर्फ देखते रहते हैं। फिर ये आदमी हिम्मत दिखाता है, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है, किसी तरह से ये बच्चे को गाय से अलग करता है, मगर ये बच्चे को संभालता है, इसके पहले ही गाय ने दोबारा अटैक कर दिया। बच्चे को लेकर ये भागता है, मगर गाय सींग मारती है और ये गिर पड़ता है। तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं और गाय को यहाँ से भगाते हैं। तस्वीरें 19 जून की बताई जा रही हैं। अब सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में आवारा पशुओं का आतंक कब तक रहेगा? आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
5: देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां दबंग युवकों ने सरेरात 2 युवकों की जमकर पिटाई की। दबंग दिखाते हुए इन लोगों ने सबके सामने इन युवकों पर लाठी डंडों से हमले किए और बेल्ट बरसाए।
1: बीच सड़क पर कुछ दबंग इन 2 युवकों को पीट रहे हैं, कभी इन पर बेल्ट बरसाई जा रही है, कभी इनकी पीठ पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन दोनों युवकों को ये दबंग मार डालने पर उतारू हैं, बेरहमी से ये इन दोनों युवकों को पीट रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि बीच सड़क पर ये दबंगई दिखा रहे हैं और कोई इन्हें रोक नहीं रहा। अलबत्ता लोग तमाशबीन बने इन्हें देख रहे हैं, मगर इन युवकों की कोई मदद नहीं कर रहा है। तस्वीरें लखनऊ की है, जहां KGMU के सामने इन दोनों युवकों की पिटाई हो रही है। देखिए, इस नीली टी शर्ट वाले लड़के को किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब पिटाई का यह वीडियो वायरल है, पुलिस जांच कर रही है कि सरेराह गुंडागर्दी करने वाले ये दबंग कौन हैं। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
5: स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है, दोनों देश मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। इधर इसराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। सवाल है कि युद्ध विराम होगा भी या फिर आगे बढ़ेगा ये संग्राम।
1: एक बार फिर इसराइल ने लेबनान को बनाया है निशाना। एक बार फिर इसराइल के हमले से धुआं धुआं हुआ है लेबनान। एक बार फिर शांति समझौते पर मली गई है बारूद। जी हां, इसराइल ने पिछले दो दिन में लेबनान में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए हैं, जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली फौज का आरोप है कि हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में उसे ये कार्रवाई करनी पड़ी है और आतंकियों के खिलाफ इस तरह के हमले जारी रहेंगे। खुद नेतन्याहू कई बार इजरायल का रुख साफ कर चुके हैं। इस जिद की वजह से हाल ही में ट्रंप को कई तल्ख बयान भी देने पड़े हैं, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसराइल के सैन्य अभियान को देखते हुए ईरान बिफर पड़ा है। ईरान ने शनिवार को ही सीज फायर टूटने के आरोप लगाकर हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। अब एक तरफ इसराइल ट्रंप के पीस प्लान की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज का हाहाकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान और लेबनान की रणभूमि से हजारों मील दूर स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम पर अंतिम मुहर लगती है या फिर इसराइल की जिद ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फिरती है। आज तक ब्यूरो।
5: वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की इस शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया ए ने शानदार जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम कर ली है।
1: फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान। श्रीलंका को पीट कर चैंपियन बना हिंदुस्तान। जो सामने आ रहा था पिट कर ही जा रहा था। मैदान का हर कोना वैभव के इन शॉट से गुलजार हो रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में पूरे टूर्नामेंट की कसर निकाल दी। फाइनल से पहले उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं था, लेकिन फाइनल में उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि रनों की बरसात में कई रिकॉर्ड बह गए। वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। लिस्ट एक क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का यह सबसे तेज अर्धशतक है। आखिरकार वैभव शतक बनाने से चूक गए और 29 गेंदों पर 94 बनाकर लौट गए। उन्होंने इस पारी में 8 छक्के और 10 चौके जमाए। वैभव ने प्रियांश के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी 9 ओवर पूरा होने से पहले ही कर दी थी। उनके जाने के बाद भी रनों का सिलसिला चलता रहा। ऋतुराज और तिलक वर्मा की पारियों ने रनों का अंबार लगा दिया। जाते जाते अनुकूल रॉय ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 377 तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। जवाब में पहाड़ से स्कोर को पार करने का दबाव ही श्रीलंका को ले डूबा। 33 रन होते होते उसके दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन टीम इंडिया को चैंपियन बनने से रोकने के लिए वो नाकाफी थी। आज तक ब्यूरो।
5: छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, फौरन हो गया हासिल। आप देखते रहिए आज तक।

0: ऐसा एसआईटी जल्द सौंप सकते हैं शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर किया गया हादसा, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे, कहा जब उन्हें कोई पूछता नहीं था तब हमने दिया था उनका साथ, ये हमें कमजोर करने के साजिश, में मतदाताओं से मांगता हूं माफी। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के भी नेताओं ने उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और खालिबाफ की अगुवाई में चर्चा, होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच चल रही है। खबर है कि एसआईटी इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट भी जल्द सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
1: क्या चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही? क्या चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई? क्या राम मंदिर में गड़बड़ी का यह मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। इन्नू यादव एसआईटी के रडार पर है, नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के बीच आभूषण के गायब होने का दावा भी किया गया है।
2: चांदी ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.5 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए शिलाएं दी थी।
3: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: अब मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई है। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई है, लेकिन ना ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और ना ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। एसआईटी जांच के अहम बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी है। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी अब सीसीटीवी की फोरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है, ताकि तय 45 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी एसआईटी जांच के दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है, जांच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की थी, दस्तावेजों की पड़ताल की थी, ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों का पता लगाया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी पाई गई तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

0: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: क्या 15 दिन में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों का पता चल जाएगा? क्या दान चोरी में शामिल बड़े से बड़े नाम को पकड़ लिया जाएगा? योगी ने दिया आश्वासन, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन सूबे के मुखिया ने भी 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये 19 जून की तस्वीरें हैं, जब योगी अयोध्या पहुंचे थे। योगी जब राम मंदिर दर्शन के लिए आए तो चंपत राय साथ में नहीं थे। योगी आए, रामलला के दर्शन किए, पूजा की, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दान पत्र में दान भी डाला। यही वो दान पत्र है जिनसे चोरी करने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह हर रोज लाखों राम भक्त इन दान पत्रों में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं और आरोप है कि इसी चढ़ावे की चोरी हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन आज योगी ने साफ कर दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
0: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
1: योगी के आश्वासन का मतलब ये तो नहीं है कि सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि कोई भी शामिल हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वो जनता को भरोसा देने में कामयाब रहे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि अगर लोगों के पास सबूत हैं तो वो एसआईटी को सौंपे। योगी ने लोगों से सिर्फ 15 दिन और इंतजार करने को कहा, क्योंकि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, और ये भी कहा कि अपराधी कोई भी हो वो बचेगा नहीं।
0: एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: चढ़ावा चोरी को सबसे ज्यादा तूल समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो पिछले 12 दिनों से लगातार इस केस को उठा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ चंदा चोर का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब इसे अलग मोड़ दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, तो योगी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो उपदेश न दे। अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। योगी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में कतई न आए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मंदिर जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनको फंसा न दिया जाए। योगी कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अखिलेश इसे महाघोटाला बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सनातन विरोधी गिरोह की गहरी पड़ताल होनी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम और उसका सम्मान हो, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं।
0: और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे।
1: सवाल है कि योगी की कही बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी की खबरें मिली तो वो बेहद आहत हुए हैं। लेकिन अब जब प्रदेश के मुखिया ने 15 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है तो क्या लोग संतुष्ट हैं?
2: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दूसरी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा तो उसमें अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं।
3: जिस तरीके से योगी जी ने कहा है तो अभी भी आप लोगों को पूरी तरीके से अब विश्वास है या जिस तरीके की ये घटना निकल करके आ रही है ये भी आप लोगों को व्यथित कर रहा है?
4: जी नहीं, विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र, अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा? ये दोहरा चरित्र योगी जी ने कहा, इससे सावधान रहे। योगी जी के ऊपर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
3: लोग व्यथित हैं सुन करके कि जो चीजें हुई हैं?
2: आत्मा में तो दुख हुआ एक बार कि इतने पूरे विश्व की नजर हमारे भगवान प्रभु राम पे है, इतना सोना आया, इतना चांदी आया, इतने रुपये चढ़े, ये चढ़ावा क्या हो गया? एक बार तो कलंकित हुए हम लोग, झटका लगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लोगों से बताया कि इसकी बिल्कुल बारीकी से जांच की जाएगी, कोई भी दोषी व्यक्ति बचेगा नहीं, वो चाहे जितना अपना बड़े माफिया कहता हो, चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो। तो इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं और माननीय योगी जी ये कार्य करेंगे। ये इनकी छवि का मामला है, इनकी प्रतिष्ठा का मामला है, हम तो एक जनमानस हैं।
1: उम्मीद कीजिए कि SIT समय पर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपे और चढ़ावे की चोरी का खुलासा हो। कुमार अभिषेक के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
5: अब बिहार में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर की, अब भरत तिवारी का एक नया वीडियो सामने आया और ये वीडियो एनकाउंटर से पहले का है जिसमें भरत अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। इस वीडियो में भरत अपने अंगदान की भी बात कर रहा है और साथ ही बता रहा है कि उसके मोबाइल में व्यवस्था के खिलाफ बनाए गए वीडियोज हैं।
6: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे, मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
1: ये भरत तिवारी का आखिरी वीडियो था। जैसे भरत को इल्म हो गया था कि आज नहीं तो कल वो जीवित नहीं रहेंगे, अपने इस वीडियो में भरत कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनका मोबाइल किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए।
6: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे, मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
1: अब सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के फोन में ऐसा क्या था जो वो दुनिया के सामने लाने वाले थे? इसके साथ ही भरत अपने अंगदान की बात भी कर रहे हैं।
6: मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं।
1: भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जब भरत ने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, तो उसे चार गोलियां क्यों मारी गईं? भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है।
7: हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सजा दिलाया जाए।
1: सजा तो बहुत दूर की बात है। भरत तिवारी की मां ने पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उस आवेदन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अलबत्ता पुलिस ने खुद 3 FIR दर्ज की हैं, जिसमें भरत तिवारी के साथ उनके भाई और पिता को आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जवाब के नाम पर सन्नाटा है। सोनू सिंह, आरा, आज तक।
5: JDU की पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में नेतृत्व, भविष्य की रणनीति और संगठन की मजबूती जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई और बैठक में सर्वसम्मति से JDU अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर मोहर लगी। वहीं निशांत कुमार को JDU का भविष्य बताया गया।
1: बिहार के CM पद से हटने के बाद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ये पहली बैठक थी। पटना में JDU के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एक बार फिर नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया।
8: श्री नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे निर्विरोध, जिसका राष्ट्रीय परिषद ने अनुमोदन किया।
1: नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, 2025 का जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला है। वो राज्यसभा भले चले गए हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए अपना मार्गदर्शन जारी रखेंगे। बिहार में JDU 2025 के चुनाव से भी बढ़िया प्रदर्शन करे, इसे सुनिश्चित करना है। बिहार के बाहर भी JDU को मजबूत करना है। जरूरत पड़ी तो बिहार के बाहर भी पार्टी के लिए जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मौजूदा सम्राट सरकार और केंद्र सरकार की भी सराहना की।
9: जो मौका मिला 2005 से, तो बहुत सारा काम हुआ और अभी जो NDA सरकार चल रही है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और केंद्र से भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
1: बैठक में निशांत कुमार को JDU का भविष्य बताया गया। बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो सुनिए क्या बोले।
10: हमारी सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है, इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम सबको मिलकर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है।
1: इस बैठक से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार सरकार से दूर जरूर हुए हैं, मगर पार्टी पर अब भी उनका जबरदस्त कंट्रोल है। शशिभूषण, पटना, आज तक।
5: टीएमसी में बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है। बागी गुट के 10 विधायकों की शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने का दावा है, जिस पर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है।
1: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची, लेकिन क्या अब टीएमसी की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है।
11: ये कम्प्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंस का पैसा है, ये सब प्रोब होना चाहिए। हम लोग तो प्रोब नहीं कर पाएंगे।
1: इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच टीएमसी की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
12: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके,
13: दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी एंड मिस्टर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, TMC party members, whether you are with a new party or with whether you are with TMC, you all have cheated.
1: टीएमसी में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: अब आपको राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप सहम जाएंगे, सवाल करेंगे कि अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों की दशा क्या ही होगी।
1: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं, सिहरन पैदा करती हैं ये तस्वीरें। एक बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि इस बच्चे पर इस गाय ने हमला कर दिया है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के गली नंबर 10 की है। देखिए, बच्चा गाय से बचने के लिए भागता है, मगर गाय उसे सींग मार रही है। बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है, गाय उस पर हमला जारी रखती है। बच्चा दहाड़े मारकर चिल्लाता है, वो गाय से बचने का बार बार प्रयास कर रहा है। बच्चे की पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मगर सिर्फ देखते रहते हैं। फिर ये आदमी हिम्मत दिखाता है, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है। किसी तरह से ये बच्चे को गाय से अलग करता है, मगर ये बच्चे को संभालता है, इसके पहले ही गाय ने दोबारा अटैक कर दिया। बच्चे को लेकर ये भागता है, मगर गाय सींग मारती है और ये गिर पड़ता है। तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं और गाय को यहाँ से भगाते हैं। तस्वीरें 19 जून की बताई जा रही हैं। अब सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में आवारा पशुओं का आतंक कब तक रहेगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
5: देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां दबंग युवकों ने सरेरात दो युवकों की जमकर पिटाई की। दबंगई दिखाते हुए इन लोगों ने सबके सामने इन युवकों पर लाठी डंडों से हमले किए और बेल्ट बरसाए।
1: बीच सड़क पर कुछ दबंग इन दो युवकों को पीट रहे हैं, कभी इन पर बेल्ट बरसाई जा रही है, कभी इनकी पीठ पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन दोनों युवकों को ये दबंग मार डालने पर उतारू हैं। बेरहमी से ये इन दोनों युवकों को पीट रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि बीच सड़क पर ये दबंगई दिखा रहे हैं और कोई इन्हें रोक नहीं रहा। अलबत्ता लोग तमाशबीन बने इन्हें देख रहे हैं, मगर इन युवकों की कोई मदद नहीं कर रहा है। तस्वीरें लखनऊ की है, जहां KGMU के सामने इन दोनों युवकों की पिटाई हो रही है। देखिए, इस नीली टी शर्ट वाले लड़के को किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब पिटाई का ये वीडियो वायरल है, पुलिस जांच कर रही है कि सरेराह गुंडागर्दी करने वाले ये दबंग कौन है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
5: स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है, दोनों देश मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। इधर इसराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। सवाल है कि युद्ध विराम होगा भी या फिर आगे बढ़ेगा ये संग्राम।
1: एक बार फिर इसराइल ने लेबनान को बनाया है निशाना। एक बार फिर इसराइल के हमले से धुआं धुआं हुआ है लेबनान। एक बार फिर शांति समझौते पर मली गई है बारूद। जी हां, इसराइल ने पिछले दो दिन में लेबनान में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए हैं, जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली फौज का आरोप है कि हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में उसे ये कार्रवाई करनी पड़ी है और आतंकियों के खिलाफ इस तरह के हमले जारी रहेंगे। खुद नेतन्याहू कई बार इजरायल का रुख साफ कर चुके हैं। इस जिद की वजह से हाल ही में ट्रंप को कई तल्ख बयान भी देने पड़े हैं, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
14: אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו.
1: इजराइल के सैन्य अभियान को देखते हुए ईरान बिफर पड़ा है। ईरान ने शनिवार को ही सीज फायर टूटने के आरोप लगाकर होरमुज बंद करने का ऐलान कर दिया। अब एक तरफ इजराइल ट्रंप के पीस प्लान की मुश्किलें बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ हॉर्मुज का हाहाकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान और लेबनान की रणभूमि से हजारों मील दूर स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम पर अंतिम मुहर लगती है या फिर इजराइल की जिद ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फिरती है। आज तक ब्यूरो
5: वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की इस शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया ए ने शानदार जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम कर ली है।
1: फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, श्रीलंका को पीटकर चैंपियन बना हिंदुस्तान। जो सामने आ रहा था पिटकर ही जा रहा था, मैदान का हर कोना वैभव के इन शॉट से गुलजार हो रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में पूरे टूर्नामेंट की कसर निकाल दी। फाइनल से पहले उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं था, लेकिन फाइनल में उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि रनों की बरसात में कई रिकॉर्ड बह गए। वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। लिस्ट एक क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का यह सबसे तेज अर्धशतक है। आखिरकार वैभव शतक बनाने से चूक गए और 29 गेंदों पर 94 बनाकर लौट गए। उन्होंने इस पारी में 8 छक्के और 10 चौके जमाए। वैभव ने प्रियांश के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी 9 ओवर पूरा होने से पहले ही कर दी थी। उनके जाने के बाद भी रनों का सिलसिला चलता रहा। ऋतुराज और तिलक वर्मा की पारियों ने रनों का अंबार लगा दिया। जाते जाते अनुकूल रॉय ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 377 तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। जवाब में पहाड़ से स्कोर को पार करने का दबाव ही श्रीलंका को ले डूबा। 33 रन होते होते उसके दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन टीम इंडिया को चैंपियन बनने से रोकने के लिए वो नाकाफी थी। आज तक ब्यूरो
5: छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, फौरन हो गया हासिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: अवर चोरी में हो सकता है बड़ा खुलासा। एसआईटी जल्द सौंप सकते हैं शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर किया गया हादसा, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे, कहा जब उन्हें कोई पूछता नहीं था तब हमने दिया था उनका साथ, यह हमें कमजोर करने के साजिश, में मतदाताओं से मांगता हूं माफी। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के भी नेताओं ने उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और खालिबाफ की अगुवाई में चर्चा, होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच चल रही है। खबर है कि एसआईटी इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट भी जल्द सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
1: क्या चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही? क्या चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई? क्या राम मंदिर में गड़बड़ी का यह मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। टिन्नू यादव एसआईटी के रडार पर हैं। नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के बीच आभूषण के गायब होने का दावा भी किया गया है।
2: चांदी ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.644 किलो और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर न्यू में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: अब मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई है। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई है, लेकिन ना ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और ना ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। एसआईटी जांच के अहम बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी हैं। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी अब सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है, ताकि तय 45 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी एसआईटी जांच के दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। जांच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की थी, दस्तावेजों की पड़ताल की थी, ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों का पता लगाया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी पाई गई तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।

0: का आश्वासन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन सूबे के मुखिया ने भी दो दिन पहले साफ कर दिया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये 19 जून की तस्वीरें हैं जब योगी अयोध्या पहुंचे। योगी जब राम मंदिर दर्शन के लिए आए तो चंपत राय साथ में नहीं थे। योगी आए, रामलला के दर्शन किए, पूजा की, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दान पत्र में दान भी डाला। यही वो दान पत्र है जिनसे चोरी करने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह हर रोज लाखों राम भक्त इन दान पत्रों में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं और आरोप है कि इसी चढ़ावे की चोरी हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन आज योगी ने साफ कर दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
1: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
0: योगी के आश्वासन का मतलब ये तो नहीं है कि सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि कोई भी शामिल हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वो जनता को भरोसा देने में कामयाब रहे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि अगर लोगों के पास सबूत हैं तो वो एसआईटी को सौंपें। योगी ने लोगों से सिर्फ 15 दिन और इंतजार करने को कहा, क्योंकि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। और ये भी कहा कि अपराधी कोई भी हो वो बचेगा नहीं।
1: एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है तो कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
0: चढ़ावा चोरी को सबसे ज्यादा तूल समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो पिछले 12 दिनों से लगातार इस केस को उठा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ चंदा चोर का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी से अलग मोड़ दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, तो योगी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो उपदेश न दे। अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। योगी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में कतई न आए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मंदिर जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनको फंसा न दिया जाए। योगी कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अखिलेश इसे महाघोटाला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन विरोधी गिरोह की गहरी पड़ताल होनी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम और उसका सम्मान हो, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं।
1: और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक

0: लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है, 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है, 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे।
1: सवाल है कि योगी की कही बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी की खबरें मिली तो वो बेहद आहत हुए हैं। लेकिन अब जब प्रदेश के मुखिया ने 15 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है तो क्या लोग संतुष्ट हैं?
2: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दूसरी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा तो उसमें अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं।
3: जिस तरीके से योगी जी ने कहा है तो अभी भी आप लोगों को पूरी तरीके से अब विश्वास है या जिस तरीके की ये घटना निकल करके आ रही है ये भी आप लोगों को व्यथित कर रहा है?
4: जी नहीं, विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र, अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा? ये दोहरा चरित्र योगी जी ने कहा, इससे सावधान रहे। योगी जी के ऊपर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
3: लोग व्यथित हैं सुन करके कि जो चीजें हुई हैं।
2: आत्मा में तो दुख हुआ एक बार कि पूरे विश्व की नजर हमारे भगवान प्रभु राम पे है, इतना सोना आया, इतना चांदी आया, इतने रुपये चढ़े, ये चढ़ावा क्या हो गया? एक बार तो कलंकित हुई, हम लोग झटका लगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लोगों से बताया कि इसकी बिल्कुल बारीकी से जांच की जाएगी, कोई भी दोषी व्यक्ति बचेगा नहीं, वो चाहे जितना अपना बड़े माफिया कहता हो, चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो। तो इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं और माननीय योगी जी ये कार्य करेंगे। ये इनकी छवि का मामला है, इनकी प्रतिष्ठा का मामला है, हम तो एक जनमानस हैं।
1: उम्मीद कीजिए कि SIT समय पर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपे और चढ़ावे की चोरी का खुलासा हो। कुमार अभिषेक के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
5: अब बिहार में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर की, अब भरत तिवारी का एक नया वीडियो सामने आया है और ये वीडियो एनकाउंटर से पहले का है जिसमें भरत अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। इस वीडियो में भरत अपने अंगदान की भी बात कर रहा है और साथ ही बता रहा है कि उसके मोबाइल में व्यवस्था के खिलाफ बनाए गए वीडियोज हैं।
6: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
1: ये भरत तिवारी का आखिरी वीडियो था। जैसे भरत को इल्म हो गया था कि आज नहीं तो कल वो जीवित नहीं रहेंगे, अपने इस वीडियो में भरत कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनका मोबाइल किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए।
6: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
1: अब सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के फोन में ऐसा क्या था जो वो दुनिया के सामने लाने वाले थे? इसके साथ ही भरत अपने अंगदान की बात भी कर रहे हैं।
6: मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए, इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं।
1: भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार की पुलिस पर गंभीर, तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है।
7: हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सजा दिलाया जाए।
1: सजा तो बहुत दूर की बात है, भरत तिवारी की मां ने पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उस आवेदन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अलबत्ता पुलिस ने खुद 3 FIR दर्ज की हैं, जिसमें भरत तिवारी के साथ उनके भाई और पिता को आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जवाब के नाम पर सन्नाटा है। सोनू सिंह, आरा, आज तक।
5: भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर पर सूबे की सियासत अब गरमाई हुए है।
8: कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया है। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है,
9: यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिस कर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।
5: जेडीयू की पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में नेतृत्व, भविष्य की रणनीति और संगठन की मजबूती जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई और बैठक में सर्वसम्मति से जेडीयू अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर मोहर लगी। वहीं निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य बताया गया।
1: बिहार के सीएम पद से हटने के बाद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ये पहली बैठक थी। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एक बार फिर नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया।
10: श्री नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे निर्विरोध, जिसका राष्ट्रीय परिषद ने अनुमोदन किया।
1: नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, 2025 का जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला है। वो राज्यसभा भले चले गए हैं लेकिन बिहार के विकास के लिए अपना मार्गदर्शन जारी रखेंगे। बिहार में जेडीयू 2025 के चुनाव से भी बढ़िया प्रदर्शन करे, इसे सुनिश्चित करना है। बिहार के बाहर भी जेडीयू को मजबूत करना है, जरूरत पड़ी तो बिहार के बाहर भी पार्टी के लिए जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मौजूदा सम्राट सरकार और केंद्र सरकार की भी सराहना की।
11: जो मौका मिला 2005 से तो बहुत सारा काम हुआ और अभी जो NDA सरकार चल रही है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही और केंद्र से भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा।
1: बैठक में निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य बताया गया। बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो सुनिए क्या बोले।
12: हमारी सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है, इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम सबको मिलकर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है।
1: इस बैठक से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार सरकार से दूर जरूर हुए हैं मगर पार्टी पर अब भी उनका जबरदस्त कंट्रोल है। शशिभूषण, पटना, आज तक।
5: टीएमसी में बगावत वाली जंग पार्टी फ्रंट तक पहुंच गई है। बागी गुट के 10 विधायकों की शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने का दावा है, जिस पर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है।
1: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची, लेकिन क्या अब टीएमसी की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जाँच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है।
13: ये कम्प्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहां से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंस का पैसा है, ये सब प्रोब होना चाहिए, हम लोग तो प्रोब नहीं कर पाएंगे।
1: इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच टीएमसी की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
14: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके।
15: दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी एंड मिस्टर अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी, टीएमसी पार्टी मेंबर्स, वेदर यू आर विद अ न्यू पार्टी और विद वेदर यू आर विद टीएमसी, यू ऑल हैव चीटेड।
1: टीएमसी में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: अब आपको राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप सहम जाएंगे, सवाल करेंगे कि अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों की दशा क्या ही होगी।
1: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं, सिहरन पैदा करती हैं ये तस्वीरें। एक बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि इस बच्चे पर इस गाय ने हमला कर दिया है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के गली नंबर 10 की हैं। देखिए, बच्चा गाय से बचने के लिए भागता है, मगर गाय उसे सींग मार रही है। बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है, गाय उस पर हमला जारी रखती है। बच्चा दहाड़े मार कर चिल्लाता है, वो गाय से बचने का बार बार प्रयास कर रहा है। बच्चे की पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मगर सिर्फ देखते रहते हैं। फिर ये आदमी हिम्मत दिखाता है, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है। किसी तरह से ये बच्चे को गाय से अलग करता है, मगर ये बच्चे को संभालता है, इसके पहले ही गाय ने दोबारा अटैक कर दिया। बच्चे को लेकर ये भागता है, मगर गाय सींग मारती है और ये गिर पड़ता है। तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं और गाय को यहाँ से भगाते हैं। तस्वीरें 19 जून की बताई जा रही हैं। अब सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में आवारा पशुओं का आतंक कब तक रहेगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
5: देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां दबंग युवकों ने सरेरात दो युवकों की जमकर पिटाई की। दबंग दिखाते हुए इन लोगों ने सबके सामने इन युवकों पर लाठी डंडों से हमले किए और बेल्ट बरसाए।
1: बीच सड़क पर कुछ दबंग इन दो युवकों को पीट रहे हैं। कभी इन पर बेल्ट बरसाई जा रही है, कभी इनकी पीठ पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन दोनों युवकों को ये दबंग मार डालने पर उतारू हैं। बेरहमी से ये इन दोनों युवकों को पीट रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि बीच सड़क पर ये दबंगई दिखा रहे हैं और कोई इन्हें रोक नहीं रहा। अलबत्ता लोग तमाशबीन बने इन्हें देख रहे हैं, मगर इन युवकों की कोई मदद नहीं कर रहा है। तस्वीरें लखनऊ की है, जहां केजीएमयू के सामने इन दोनों युवकों की पिटाई हो रही है। देखिए, इस नीली टी शर्ट वाले लड़के को किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब पिटाई का यह वीडियो वायरल है, पुलिस जांच कर रही है कि सरेराह गुंडागर्दी करने वाले ये दबंग कौन है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
5: स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है, दोनों देश मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। इधर इसराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। सवाल है कि युद्ध विराम होगा भी या फिर आगे बढ़ेगा यह संग्राम।
1: एक बार फिर इसराइल ने लेबनान को बनाया है निशाना। एक बार फिर इसराइल के हमले से धुआं धुआं हुआ है लेबनान। एक बार फिर शांति समझौते पर मली गई है बारूद। जी हां, इसराइल ने पिछले दो दिन में लेबनान में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए हैं, जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली फौज का आरोप है कि हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में उसे ये कार्रवाई करनी पड़ी है और आतंकियों के खिलाफ इस तरह के हमले जारी रहेंगे। खुद नेतन्याहू कई बार इसराइल का रुख साफ कर चुके हैं। इस जिद की वजह से हाल ही में ट्रंप को कई तल्ख बयान भी देने पड़े हैं, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि लेबनान में हिजबुल्ला की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
16: אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו
1: इसराइल के सैन्य अभियान को देखते हुए ईरान बिफर पड़ा है। ईरान ने शनिवार को ही सीज फायर टूटने के आरोप लगाकर हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। अब एक तरफ इसराइल ट्रंप के पीस प्लान की मुश्किलें बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ हॉर्मुज का हाहाकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान और लेबनान की रणभूमि से हजारों मील दूर स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम पर अंतिम मुहर लगती है या फिर इसराइल की जिद ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फिरती है। आज तक ब्यूरो
5: वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की इस शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया ए ने शानदार जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम कर ली है।
1: फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, श्रीलंका को पीटकर चैंपियन बना हिंदुस्तान। जो सामने आ रहा था पिटकर ही जा रहा था। मैदान का हर कोना वैभव के इन शॉट से गुलजार हो रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में पूरे टूर्नामेंट की कसर निकाल दी। फाइनल से पहले उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं था, लेकिन फाइनल में उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि रनों की बरसात में कई रिकॉर्ड बह गए। वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। लिस्ट एक क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का यह सबसे तेज अर्धशतक है। आखिरकार वैभव शतक बनाने से चूक गए और 29 गेंदों पर 94 बनाकर लौट गए। उन्होंने इस पारी में 8 छक्के और 10 चौके जमाए। वैभव ने प्रियांश के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी 9 ओवर पूरा होने से पहले ही कर दी थी। उनके जाने के बाद भी रनों का सिलसिला चलता रहा। ऋतुराज और तिलक वर्मा की पारियों ने रनों का अंबार लगा दिया। जाते जाते अनुकूल रॉय ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 377 तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। जवाब में पहाड़ से स्कोर को पार करने का दबाव ही श्रीलंका को ले डूबा। 33 रन होते होते उसके दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन टीम इंडिया को चैंपियन बनने से रोकने के लिए वो नाकाफी थी। आज तक ब्यूरो
5: छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, फौरन हो गया हासिल। आप देखते रहिए आज तक।

0: खुलासा, एसआईटी जल्द सौंप सकते हैं शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर किया गया हादसा, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे, कहा जब उन्हें कोई पूछता नहीं था तब हमने दिया था उनका साथ, ये हमें कमजोर करने के साजिश, में मतदाताओं से मांगता हूं माफी। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के भी नेताओं ने उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और खालिबाफ की अगुवाई में चर्चा, होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच चल रही है, खबर है कि एसआईटी इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट भी जल्द सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
1: क्या चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही? क्या चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई? क्या राम मंदिर में गड़बड़ी का ये मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। टिन्नू यादव एसआईटी के रडार पर हैं, नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है, कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के बीच आभूषण के गायब होने का दावा भी किया गया है।
2: चांदी ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है,
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई है। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई है, लेकिन ना ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और ना ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। एसआईटी जांच के अहम बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी है। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं तो ये कैसे संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी अब सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है ताकि तय 45 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी एसआईटी जांच के दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है, जांच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की थी, दस्तावेजों की पड़ताल की थी ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों का पता लगाया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी पाई गई तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

0: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: क्या 15 दिन में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों का पता चल जाएगा? क्या दान चोरी में शामिल बड़े से बड़े नाम को पकड़ लिया जाएगा? योगी ने दिया आश्वासन, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन सूबे के मुखिया ने भी 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये 19 जून की तस्वीरें हैं, जब योगी अयोध्या पहुंचे। योगी जब राम मंदिर दर्शन के लिए आए तो चंपत राय साथ में नहीं थे। योगी आए, रामलला के दर्शन किए, पूजा की, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दान पत्र में दान भी डाला। यही वो दान पत्र है जिनसे चोरी करने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह हर रोज लाखों राम भक्त इन दान पत्रों में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं और आरोप है कि इसी चढ़ावे की चोरी हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन आज योगी ने साफ कर दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
0: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
1: योगी के आश्वासन का मतलब ये तो नहीं है कि सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि कोई भी शामिल हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वो जनता को भरोसा देने में कामयाब रहे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि अगर लोगों के पास सबूत हैं तो वो एसआईटी को सौंपे। योगी ने लोगों से सिर्फ 15 दिन और इंतजार करने को कहा, क्योंकि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। और ये भी कहा कि अपराधी कोई भी हो, वो बचेगा नहीं।
0: एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: चढ़ावा चोरी को सबसे ज्यादा तूल समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो पिछले 12 दिनों से लगातार इस केस को उठा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ चंदा चोर का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी से अलग मोड़ दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, तो योगी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो उपदेश न दे। अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। योगी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में कतई न आए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मंदिर जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनको फंसा न दिया जाए। योगी कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अखिलेश इसे महाघोटाला बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सनातन विरोधी गिरोह की गहरी पड़ताल होनी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम और उसका सम्मान हो, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं।
0: और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे।
1: सवाल है कि योगी की कही बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी की खबरें मिली तो वो बेहद आहत हुए हैं। लेकिन अब जब प्रदेश के मुखिया ने 15 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है तो क्या लोग संतुष्ट हैं?
2: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दूसरी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा तो उसमें अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं।
3: जिस तरीके से योगी जी ने कहा है तो अभी भी आप लोगों को पूरी तरीके से अब विश्वास है या जिस तरीके की ये घटना निकल करके आ रही है ये भी आप लोगों को व्यथित कर रहा है?
4: जी नहीं, विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र, अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा? ये दोहरा चरित्र योगी जी ने कहा, इससे सावधान रहे। योगी जी के ऊपर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
3: लोग व्यथित हैं सुन करके कि जो चीजें हुई हैं?
2: आत्मा में तो दुख हुआ एक बार कि इतने पूरे विश्व की नजर हमारे भगवान प्रभु राम पे है, इतना सोना आया, इतना चांदी आया, इतने रुपये चढ़े, ये चढ़ावा क्या हो गया? एक बार तो कलंकित हुई, हम लोग झटका लगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लोगों से बताया कि इसकी बिल्कुल बारीकी से जांच की जाएगी, कोई भी दोषी व्यक्ति बचेगा नहीं, वो चाहे जितना अपना बड़े माफिया कहता हो, चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो। तो इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं और माननीय योगी जी ये कार्य करेंगे। ये इनकी छवि का मामला है, इनकी प्रतिष्ठा का मामला है, हम तो एक जनमानस हैं।
1: उम्मीद कीजिए कि SIT समय पर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपे और चढ़ावे की चोरी का खुलासा हो। कुमार अभिषेक के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
5: अब बिहार में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर की, अब भरत तिवारी का एक नया वीडियो सामने आया और ये वीडियो एनकाउंटर से पहले का है जिसमें भरत अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। इस वीडियो में भरत अपने अंगदान की भी बात कर रहा है और साथ ही बता रहा है कि उसके मोबाइल में व्यवस्था के खिलाफ बनाए गए वीडियोज हैं।
6: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे, मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
1: ये भरत तिवारी का आखिरी वीडियो था। जैसे भरत को इल्म हो गया था कि आज नहीं तो कल वो जीवित नहीं रहेंगे, अपने इस वीडियो में भरत कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनका मोबाइल किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए।
6: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे, मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
1: अब सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के फोन में ऐसा क्या था जो वो दुनिया के सामने लाने वाले थे? इसके साथ ही भरत अपने अंगदान की बात भी कर रहे हैं।
6: मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं।
1: भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जब भरत ने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, तो उसे चार गोलियां क्यों मारी गईं? भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है।
7: हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सजा दिलाया जाए।
1: सजा तो बहुत दूर की बात है। भरत तिवारी की मां ने पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उस आवेदन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अलबत्ता पुलिस ने खुद 3 FIR दर्ज की हैं, जिसमें भरत तिवारी के साथ उनके भाई और पिता को आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जवाब के नाम पर सन्नाटा है। सोनू सिंह, आरा, आज तक।
5: JDU की पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में नेतृत्व, भविष्य की रणनीति और संगठन की मजबूती जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई और बैठक में सर्वसम्मति से JDU अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर मोहर लगी। वहीं निशांत कुमार को JDU का भविष्य बताया गया।
1: बिहार के CM पद से हटने के बाद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ये पहली बैठक थी। पटना में JDU के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एक बार फिर नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया।
8: श्री नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे निर्विरोध, जिसका राष्ट्रीय परिषद ने अनुमोदन किया।
1: नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, 2025 का जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला है। वो राज्यसभा भले चले गए हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए अपना मार्गदर्शन जारी रखेंगे। बिहार में JDU 2025 के चुनाव से भी बढ़िया प्रदर्शन करे, इसे सुनिश्चित करना है। बिहार के बाहर भी JDU को मजबूत करना है। जरूरत पड़ी तो बिहार के बाहर भी पार्टी के लिए जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मौजूदा सम्राट सरकार और केंद्र सरकार की भी सराहना की।
9: जो मौका मिला 2005 से, तो बहुत सारा काम हुआ और अभी जो NDA सरकार चल रही है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और केंद्र से भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
1: बैठक में निशांत कुमार को JDU का भविष्य बताया गया। बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो सुनिए क्या बोले।
10: हमारी सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है, इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम सबको मिलकर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है।
1: इस बैठक से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार सरकार से दूर जरूर हुए हैं, मगर पार्टी पर अब भी उनका जबरदस्त कंट्रोल है। शशिभूषण, पटना, आज तक।
5: टीएमसी में बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है। बागी गुट के 10 विधायकों की शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने का दावा है, जिस पर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया।
1: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची, लेकिन क्या अब टीएमसी की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है।
11: ये कम्प्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहां से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंस का पैसा है, ये सब प्रोब होना चाहिए। हम लोग तो प्रोब नहीं कर पाएंगे।
1: इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच टीएमसी की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
12: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके,
13: दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी एंड मिस्टर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, TMC party members, whether you are with a new party or with whether you are with TMC, you all have cheated.
1: टीएमसी में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: अब आपको राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप सहम जाएंगे, सवाल करेंगे कि अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों की दशा क्या ही होगी।
1: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं, सिहरन पैदा करती हैं ये तस्वीरें। एक बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि इस बच्चे पर इस गाय ने हमला कर दिया है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के गली नंबर 10 की है। देखिए, बच्चा गाय से बचने के लिए भागता है, मगर गाय उसे सींग मार रही है। बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है, गाय उस पर हमला जारी रखती है। बच्चा दहाड़े मार कर चिल्लाता है, वो गाय से बचने का बार बार प्रयास कर रहा है। बच्चे की पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मगर सिर्फ देखते रहते हैं। फिर ये आदमी हिम्मत दिखाता है, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है। किसी तरह से ये बच्चे को गाय से अलग करता है, मगर ये बच्चे को संभालता है, इसके पहले ही गाय ने दोबारा अटैक कर दिया। बच्चे को लेकर ये भागता है, मगर गाय सींग मारती है और ये गिर पड़ता है। तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं और गाय को यहाँ से भगाते हैं। तस्वीरें 19 जून की बताई जा रही हैं। अब सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में आवारा पशुओं का आतंक कब तक रहेगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
5: देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां दबंग युवकों ने सरेरात दो युवकों की जमकर पिटाई की। दबंगई दिखाते हुए इन लोगों ने सबके सामने इन युवकों पर लाठी डंडी। दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां दबंग युवकों ने सरेरात दो युवकों की जमकर पिटाई की। दबंगई दिखाते हुए इन लोगों ने सबके सामने इन युवकों पर लाठी डंडों से हमले किए और बेल्ट बरसाए।
1: बीच सड़क पर कुछ दबंग इन दो युवकों को पीट रहे हैं। कभी इन पर बेल्ट बरसाई जा रही है, कभी इनकी पीठ पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन दोनों युवकों को ये दबंग मार डालने पर उतारू हैं। बेरहमी से ये इन दोनों युवकों को पीट रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि बीच सड़क पर ये दबंगई दिखा रहे हैं और कोई इन्हें रोक नहीं रहा। अलबत्ता लोग तमाशबीन बने इन्हें देख रहे हैं, मगर इन युवकों की कोई मदद नहीं कर रहा है। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां केजीएमयू के सामने इन दोनों युवकों की पिटाई हो रही है। देखिए, इस नीली टी शर्ट वाले लड़के को किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब पिटाई का ये वीडियो वायरल है, पुलिस जांच कर रही है कि सरेराह गुंडागर्दी करने वाले ये दबंग कौन है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
5: स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है, दोनों देश मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। इधर इसराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। सवाल है कि युद्ध विराम होगा भी या फिर आगे बढ़ेगा यह संग्राम।
1: एक बार फिर इजराइल ने लेबनान को बनाया है निशाना। एक बार फिर इजराइल के हमले से धुआं धुआं हुआ है लेबनान। एक बार फिर शांति समझौते पर मली गई है बारूद। जी हां, इजराइल ने पिछले दो दिन में लेबनान में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए हैं, जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली फौज का आरोप है कि हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में उसे ये कार्रवाई करनी पड़ी है और आतंकियों के खिलाफ इस तरह के हमले जारी रहेंगे। खुद नेतन्याहू कई बार इजरायल का रुख साफ कर चुके हैं। इस जिद की वजह से हाल ही में ट्रंप को कई तल्ख बयान भी देने पड़े हैं, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि लेबनान में हिजबुल्ला की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
14: נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו, כשם שהחזרנו.
1: इसराइल के सैन्य अभियान को देखते हुए ईरान बिफर पड़ा है। ईरान ने शनिवार को ही सीज फायर टूटने के आरोप लगाकर हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। अब एक तरफ इसराइल ट्रंप के पीस प्लान की मुश्किलें बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ हॉर्मुज का हाहाकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान और लेबनान की रणभूमि से हजारों मील दूर स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम पर अंतिम मुहर लगती है या फिर इसराइल की जिद ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फिरती है। आज तक ब्यूरो
5: वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की इस शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया ए ने शानदार जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम कर ली है।
1: फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, श्रीलंका को पीट कर चैंपियन बना हिंदुस्तान। जो सामने आ रहा था पिट कर ही जा रहा था, मैदान का हर कोना वैभव के इन शॉट से गुलजार हो रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में पूरे टूर्नामेंट की कसर निकाल दी। फाइनल से पहले उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं था, लेकिन फाइनल में उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि रनों की बरसात में कई रिकॉर्ड बह गए। वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। लिस्ट एक क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का यह सबसे तेज अर्धशतक है। आखिरकार वैभव शतक बनाने से चूक गए और 29 गेंदों पर 94 बनाकर लौट गए। उन्होंने इस पारी में 8 छक्के और 10 चौके जमाए। वैभव ने प्रियांश के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी 9 ओवर पूरा होने से पहले ही कर दी थी। उनके जाने के बाद भी रनों का सिलसिला चलता रहा। ऋतुराज और तिलक वर्मा की पारियों ने रनों का अंबार लगा दिया। जाते जाते अनुकूल रॉय ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 377 तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। जवाब में पहाड़ से स्कोर को पार करने का दबाव ही श्रीलंका को ले डूबा। 33 रन होते होते उसके दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन टीम इंडिया को चैंपियन बनने से रोकने के लिए वो नाकाफी थी। आज तक ब्यूरो
5: छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, फौरन हो गया हासिल। आप देखते रहिए आज तक।

0: किया गया हादसा, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे, कहा जब उन्हें कोई पूछता नहीं था तब हमने दिया था उनका साथ, यह हमें कमजोर करने के साजिश, में मतदाताओं से मांगता हूं माफी। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के भी नेताओं ने उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और खालिबाफ की अगुवाई में चर्चा, होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच चल रही है, खबर है कि एसआईटी इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट भी जल्द सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
1: क्या चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही? क्या चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई? क्या राम मंदिर में गड़बड़ी का यह मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। टिन्नू यादव एसआईटी के रडार पर हैं, नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है, कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेर फेर के बीच आभूषण के गायब होने का दावा भी किया गया है।
2: चांदी ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.644 किलो और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर न्यू में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है,
2: ये दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई है। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई है, लेकिन ना ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और ना ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। एसआईटी जांच के अहम बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी हैं। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी अब सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है, ताकि तय 45 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी एसआईटी जांच के दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है, जांच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की थी, दस्तावेजों की पड़ताल की थी, ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों का पता लगाया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी पाई गई तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

0: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: क्या 15 दिन में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों का पता चल जाएगा? क्या दान चोरी में शामिल बड़े से बड़े नाम को पकड़ लिया जाएगा? योगी ने दिया आश्वासन, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन सूबे के मुखिया ने भी 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये 19 जून की तस्वीरें हैं, जब योगी अयोध्या पहुंचे। योगी जब राम मंदिर दर्शन के लिए आए तो चंपत राय साथ में नहीं थे। योगी आए, रामलला के दर्शन किए, पूजा की, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दान पत्र में दान भी डाला। यही वो दान पत्र है जिनसे चोरी करने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह हर रोज लाखों राम भक्त इन दान पत्रों में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं और आरोप है कि इसी चढ़ावे की चोरी हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन आज योगी ने साफ कर दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
0: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध

0: लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
1: योगी के आश्वासन का मतलब ये तो नहीं है कि सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि कोई भी शामिल हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा तो क्या वो जनता को भरोसा देने में कामयाब रहे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि अगर लोगों के पास सबूत हैं तो वो एसआईटी को सौंपें। योगी ने लोगों से सिर्फ 15 दिन और इंतजार करने को कहा क्योंकि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, और ये भी कहा कि अपराधी कोई भी हो वो बचेगा नहीं।
0: एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है तो कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: चढ़ावा चोरी को सबसे ज्यादा तूल समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो पिछले 12 दिनों से लगातार इस केस को उठा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ चंदा चोर का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी से अलग मोड़ दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, तो योगी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो उपदेश न दे। अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। योगी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में कतई न आए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मंदिर जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनको फंसा न दिया जाए। योगी कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अखिलेश इसे महाघोटाला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन विरोधी गिरोह की गहरी पड़ताल होनी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम और उसका सम्मान हो, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं।
0: और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे।
1: सवाल है कि योगी की कही बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी की खबरें मिली तो वो बेहद आहत हुए हैं। लेकिन अब जब प्रदेश के मुखिया ने 15 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है तो क्या लोग संतुष्ट हैं?
2: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश

0: देश में नहीं रहे उसी प्रकार से एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा तो उसमें अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं।
1: कि जिस तरीके से योगी जी ने कहा है तो अभी भी आप लोगों को पूरी तरीके से अब विश्वास है या जिस तरीके की ये घटना निकल करके आ रही है ये भी आप लोगों को व्यथित कर रहा है?
2: जी नहीं, विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र, अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि में चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा? ये दोहरा चरित्र योगी जी ने कहा, इससे सावधान रहे। योगी जी के ऊपर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
1: लोग व्यथित हैं सुन करके कि जो चीजें हुई हैं?
0: आत्मा में तो दुख हुआ एक बार कि इतने पूरे विश्व की नजर हमारे भगवान प्रभु राम पे है, इतना सोना आया, इतना चांदी आया, इतने रुपये चढ़े, ये चढ़ावा क्या हो गया? एक बार तो कलंकित हुई, हम लोग झटका लगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लोगों से बताया कि इसकी बिल्कुल बारीकी से जांच की जाएगी, कोई भी दोषी व्यक्ति बचेगा नहीं, वो चाहे जितना अपना बड़े माफिया कहता हो, चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो। तो इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं और माननीय योगी जी ये कार्य करेंगे। ये इनकी छवि का मामला है, इनकी प्रतिष्ठा का मामला है, हम तो एक जनमानस हैं।
3: उम्मीद कीजिए कि SIT समय पर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपे और चढ़ावे की चोरी का खुलासा हो। कुमार अभिषेक के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
4: अब बिहार में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर की, अब भरत तिवारी का एक नया वीडियो सामने आया और ये वीडियो एनकाउंटर से पहले का है जिसमें भरत अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। इस वीडियो में भरत अपने अंगदान की भी बात कर रहा है और साथ ही बता रहा है कि उसके मोबाइल में व्यवस्था के खिलाफ बनाए गए वीडियोज हैं।
5: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
3: ये भरत तिवारी का आखिरी वीडियो था। जैसे भरत को इल्म हो गया था कि आज नहीं तो कल वो जीवित नहीं रहेंगे, अपने इस वीडियो में भरत कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनका मोबाइल किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए।
5: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
3: अब सवाल ये है कि आखिर भरत तिवारी के फोन में ऐसा क्या था जो वो दुनिया के सामने लाने वाले थे? इसके साथ ही भरत अपने अंगदान की बात भी कर रहे हैं।
5: मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए, इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं।
3: भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जब भरत ने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, तो उसे चार गोलियां क्यों मारी गईं? भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है।
6: हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सजा दिलाया जाए।
3: सजा तो बहुत दूर की बात है, भरत तिवारी की मां ने पुलिस के चरम पर है।
6: हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सजा दिलाया जाए।
3: सजा तो बहुत दूर की बात है, भरत तिवारी की मां ने पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उस आवेदन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अलबत्ता पुलिस ने खुद 3 FIR दर्ज की हैं, जिसमें भरत तिवारी के साथ उनके भाई और पिता को आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जवाब के नाम पर सन्नाटा है। सोनू सिंह, आरा आज तक।
4: भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर पर सूबे की सियासत अब गर्माई हुए है।
7: कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया है। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई।
8: यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिस कर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।
4: जेडीयू की पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में नेतृत्व, भविष्य की रणनीति और संगठन की मजबूती जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई और बैठक में सर्वसम्मति से जेडीयू अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर मोहर लगी। वहीं निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य बताया गया।
3: बिहार के सीएम पद से हटने के बाद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ये पहली बैठक थी। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एक बार फिर नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया।
9: श्री नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे निर्विरोध, जिसका राष्ट्रीय परिषद ने अनुमोदन किया।
3: नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, 2025 का जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला है। वो राज्यसभा भले चले गए हैं लेकिन बिहार के विकास के लिए अपना मार्गदर्शन जारी रखेंगे। बिहार में जेडीयू 2025 के चुनाव से भी बढ़िया प्रदर्शन करे, इसे सुनिश्चित करना है। बिहार के बाहर भी जेडीयू को मजबूत करना है, जरूरत पड़ी तो बिहार के बाहर भी पार्टी के लिए जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मौजूदा सम्राट सरकार और केंद्र सरकार की भी सराहना की।
10: जो मौका मिला 2005 से तो बहुत सारा काम हुआ और अभी जो एनडीए सरकार चल रही है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और केंद्र से भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
3: बैठक में निशांत कुमार को जेडीयू का भविष्य बताया गया। बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो सुनिए क्या बोले।
11: हमारी सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है, इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम सबको मिलकर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है।
3: इस बैठक से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार सरकार से दूर जरूर हुए हैं मगर पार्टी पर अब भी उनका जबरदस्त कंट्रोल है। शशि भूषण, पटना आज तक।
4: टीएमसी में बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है। बागी गुट के 10 विधायकों की शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने का दावा है, जिस पर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है।
3: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची, लेकिन क्या अब टीएमसी की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद टीएमसी के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है।
12: ये कम्प्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहां से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंस का पैसा है, ये सब प्रोव होना चाहिए, हम लोग तो प्रोव नहीं कर पाएंगे।
3: इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच टीएमसी की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
13: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके,
14: दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी एंड मिस्टर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, टीएमसी पार्टी मेंबर्स, वेदर यू आर विद अ न्यू पार्टी और वेदर यू आर विद टीएमसी, यू ऑल हैव चीटेड।
3: टीएमसी में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब आपको राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप सहम जाएंगे, सवाल करेंगे कि अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों की दशा क्या ही होगी।
3: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं, सिहरन पैदा करती हैं ये तस्वीरें। एक बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है क्योंकि इस बच्चे पर इस गाय ने हमला कर दिया है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के गली नंबर 10 की हैं। देखिए बच्चा गाय से बचने के लिए भागता है मगर गाय उसे सींग मार रही है। बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है, गाय उस पर हमला जारी रखती है। बच्चा दहाड़े मार कर चिल्लाता है, वो गाय से बचने का बार बार प्रयास कर रहा है। बच्चे की पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं मगर सिर्फ देखते रहते हैं। फिर ये आदमी हिम्मत दिखाता है, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है। किसी तरह से ये बच्चे को गाय से अलग करता है मगर ये बच्चे को संभालता है, इसके पहले ही गाय ने दोबारा अटैक कर दिया। बच्चे को लेकर ये भागता है मगर गाय सींग मारती है और ये गिर पड़ता है। तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं और गाय को यहाँ से भगाते हैं। तस्वीरें 19 जून की बताई जा रही हैं। सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में आवारा पशुओं का आतंक कब तक रहेगा? आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
4: देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां दबंग युवकों ने सरेरात दो युवकों की जमकर पिटाई की। दबंगई दिखाते हुए इन लोगों ने सबके सामने इन युवकों पर लाठी डंडों से हमले किए और बेल्ट बरसाए।
3: बीच सड़क पर कुछ दबंग इन दो युवकों को पीट रहे हैं, कभी इन पर बेल्ट बरसाई जा रही है, कभी इनकी पीठ पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन दोनों युवकों को ये दबंग मार डालने पर उतारू हैं। बेरहमी से ये इन दोनों युवकों को पीट रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि बीच सड़क पर ये दबंगई दिखा रहे हैं और कोई इन्हें रोक नहीं रहा। अलबत्ता लोग तमाशबीन बने इन्हें देख रहे हैं मगर इन युवकों की कोई मदद नहीं कर रहा है। तस्वीरें लखनऊ की है जहाँ KGMU के सामने इन दोनों युवकों की पिटाई हो रही है। देखिए इस नीली टी शर्ट वाले लड़के को किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब पिटाई का ये वीडियो वायरल है, पुलिस जांच कर रही है कि सरेराह गुंडागर्दी करने वाले ये दबंग कौन हैं। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
4: स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है, दोनों देश मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। इधर इसराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। सवाल है कि युद्ध विराम होगा भी या फिर आगे बढ़ेगा यह संग्राम?
3: एक बार फिर इसराइल ने लेबनान को बनाया है निशाना। एक बार फिर इसराइल के हमले से धुआं धुआं हुआ है लेबनान। एक बार फिर शांति समझौते पर मली गई है बारूद। जी हाँ, इसराइल ने पिछले दो दिन में लेबनान में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए हैं जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली फौज का आरोप है कि हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में उसे ये कार्रवाई करनी पड़ी है और आतंकियों के खिलाफ इस तरह के हमले जारी रहेंगे। खुद नेतन्याहू कई बार इसराइल का रुख साफ कर चुके हैं। इस जिद की वजह से हाल ही में ट्रंप को कई तल्ख बयान भी देने पड़े हैं, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि लेबनान में हिजबुल्ला की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
15: אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו.
3: इसराइल के सैन्य अभियान को देखते हुए ईरान बिफर पड़ा है। ईरान ने शनिवार को ही सीज फायर टूटने के आरोप लगाकर होर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। अब एक तरफ इसराइल ट्रंप के पीस प्लान की मुश्किलें बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ होर्मुज का हाहाकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान और लेबनान की रणभूमि से हजारों मील दूर स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम पर अंतिम मुहर लगती है या फिर इसराइल की जिद ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फिरती है। आज तक ब्यूरो।
4: वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की इस शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया ए ने शानदार जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम कर ली है।
3: फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान। श्रीलंका को पीट कर चैंपियन बना हिंदुस्तान। जो सामने आ रहा था पिट कर ही जा रहा था। मैदान का हर कोना वैभव के इन शॉट से गुलजार हो रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में पूरे टूर्नामेंट की कसर निकाल दी। फाइनल से पहले उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं था, लेकिन फाइनल में उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि रनों की बरसात में कई रिकॉर्ड बह गए। वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। लिस्ट एक क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का यह सबसे तेज अर्धशतक है। आखिरकार वैभव शतक बनाने से चूक गए और 29 गेंदों पर 94 बनाकर लौट गए। उन्होंने इस पारी में 8 छक्के और 10 चौके जमाए। वैभव ने प्रियांश के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी 9 ओवर पूरा होने से पहले ही कर दी थी। उनके जाने के बाद भी रनों का सिलसिला चलता रहा। ऋतुराज और तिलक वर्मा की पारियों ने रनों का अंबार लगा दिया। जाते जाते अनुकूल रॉय ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 377 तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। जवाब में पहाड़ से स्कोर को पार करने का दबाव ही श्रीलंका को ले डूबा। 33 रन होते होते उसके दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन टीम इंडिया को चैंपियन बनने से रोकने के लिए वो नाकाफी थी। आज तक ब्यूरो
4: छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, फौरन हो गया हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: एसआईटी जल्द सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर किया गया हादसा, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे, कहा जब उन्हें कोई पूछता नहीं था तब हमने दिया था उनका साथ, यह हमें कमजोर करने की साजिश, में मतदाताओं से मांगता हूं माफी। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के भी नेताओं ने उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, जेडी वेंस और खालिबाफ की अगुवाई में चर्चा, होर्मुज और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच चल रही है, खबर है कि एसआईटी इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट भी जल्द सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
1: क्या चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही? क्या चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ की गई? क्या राम मंदिर में गड़बड़ी का यह मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। टिन्नू यादव एसआईटी के रडार पर है, नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है, कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर एसआईटी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के बीच आभूषण के गायब होने का दावा भी किया गया है।
2: चांदी ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.5 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए शिलाएं दी थी।
3: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है,
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई है। इस दौरान चांदी की ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई है, लेकिन ना ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और ना ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है। एसआईटी जांच के अहम बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी है। दरअसल राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं। जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए या कोई खेल किए ये चोरी संभव नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी अब सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच की तैयारी कर रही है, ताकि तय 45 दिनों से भी पुरानी फुटेज खंगाली जा सके। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर बनी एसआईटी जांच के दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है, जांच के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले एसआईटी ने ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की थी, दस्तावेजों की पड़ताल की थी, ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों का पता लगाया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी पाई गई तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

0: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: क्या 15 दिन में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों का पता चल जाएगा? क्या दान चोरी में शामिल बड़े से बड़े नाम को पकड़ लिया जाएगा? योगी ने दिया आश्वासन, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन सूबे के मुखिया ने भी 2 दिन पहले साफ कर दिया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये 19 जून की तस्वीरें हैं, जब योगी अयोध्या पहुंचे थे। योगी जब राम मंदिर दर्शन के लिए आए तो चंपत राय साथ में नहीं थे। योगी आए, रामलला के दर्शन किए, पूजा की, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर दान पत्र में दान भी डाला। यही वो दान पत्र है जिनसे चोरी करने का आरोप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह हर रोज लाखों राम भक्त इन दान पत्रों में करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं और आरोप है कि इसी चढ़ावे की चोरी हुई है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन आज योगी ने साफ कर दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
0: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
1: योगी के आश्वासन का मतलब ये तो नहीं है कि सवाल उठने बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि कोई भी शामिल हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वो जनता को भरोसा देने में कामयाब रहे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। ये भी कहा कि अगर लोगों के पास सबूत हैं तो वो एसआईटी को सौंपें। योगी ने लोगों से सिर्फ 15 दिन और इंतजार करने को कहा, क्योंकि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। और ये भी कहा कि अपराधी कोई भी हो, वो बचेगा नहीं।
0: एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करे, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
1: चढ़ावा चोरी को सबसे ज्यादा तूल समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो पिछले 12 दिनों से लगातार इस केस को उठा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ चंदा चोर का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी से अलग मोड़ दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो भगवान को भी धोखा दे दिया, तो योगी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो उपदेश न दे। अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। योगी कह रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में कतई न आए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मंदिर जाने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनको फंसा न दिया जाए। योगी कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अखिलेश इसे महाघोटाला बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सनातन विरोधी गिरोह की गहरी पड़ताल होनी चाहिए। योगी कह रहे हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम और उसका सम्मान हो, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं।
0: और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे।
1: सवाल है कि योगी की कही बातों से आक्रोशित जनता को कितना धैर्य मिला है। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी पीढ़ियां बिता दी, उन्हें जब भव्य मंदिर बनने के बाद दान चोरी की खबरें मिली तो वो बेहद आहत हुए हैं। लेकिन अब जब प्रदेश के मुखिया ने 15 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है तो क्या लोग संतुष्ट हैं?
2: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दूसरी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा तो उसमें अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं।
3: जिस तरीके से योगी जी ने कहा है तो अभी भी आप लोगों को पूरी तरीके से अब विश्वास है या जिस तरीके की ये घटना निकल करके आ रही है ये भी आप लोगों को व्यथित कर रहा है?
4: जी नहीं, विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र, अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा? ये दोहरा चरित्र योगी जी ने कहा, इससे सावधान रहें। योगी जी के ऊपर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
3: लोग व्यथित हैं सुन करके कि जो चीजें हुई हैं।
2: आत्मा में तो दुख हुआ एक बार कि पूरे विश्व की नजर हमारे भगवान प्रभु राम पे है, इतना सोना आया, इतना चांदी आया, इतने रुपये चढ़े, ये चढ़ावा क्या हो गया? एक बार तो कलंकित हुए हम लोग, झटका लगा, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लोगों से बताया कि इसकी बिल्कुल बारीकी से जांच की जाएगी, कोई भी दोषी व्यक्ति बचेगा नहीं, वो चाहे जितना अपना बड़े माफिया कहता हो, चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो, तो इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं और माननीय योगी जी ये कार्य करेंगे। ये इनकी छवि का मामला है, इनकी प्रतिष्ठा का मामला है, हम तो एक जनमानस हैं।
1: उम्मीद कीजिए कि SIT समय पर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपे और चढ़ावे की चोरी का खुलासा हो। कुमार अभिषेक के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
5: अब बिहार में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर की, अब भरत तिवारी का एक नया वीडियो सामने आया और ये वीडियो एनकाउंटर से पहले का है जिसमें भरत अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। इस वीडियो में भरत अपने अंगदान की भी बात कर रहा है और साथ ही बता रहा है कि उसके मोबाइल में व्यवस्था के खिलाफ बनाए गए वीडियोज हैं।
6: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
1: ये भरत तिवारी का आखिरी वीडियो था। जैसे भरत को इल्म हो गया था कि आज नहीं तो कल वो जीवित नहीं रहेंगे, अपने इस वीडियो में भरत कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनका मोबाइल किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए।
6: मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेलफोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर।
1: अब सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के फोन में ऐसा क्या था जो वो दुनिया के सामने लाने वाले थे। इसके साथ ही भरत अपने अंगदान की बात भी कर रहे हैं।
6: मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं।
1: भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जब भरत ने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, तो उसे चार गोलियां क्यों मारी गईं? भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है।
7: हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सजा दिलाया जाए।
1: सजा तो बहुत दूर की बात है। भरत तिवारी की मां ने पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उस आवेदन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अलबत्ता पुलिस ने खुद 3 FIR दर्ज।
5: राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में नेतृत्व, भविष्य की रणनीति और संगठन की मजबूती जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई और बैठक में सर्वसम्मति से JDU अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर मोहर लगी। वही निशांत कुमार को JDU का भविष्य बताया गया।
1: बिहार के CM पद से हटने के बाद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ये पहली बैठक थी। पटना में JDU के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एक बार फिर नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया।
8: नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे निर्विरोध, जिसका राष्ट्रीय परिषद ने अनुमोदन किया।
1: नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, 2025 का जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला है। वो राज्यसभा भले चले गए हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए अपना मार्गदर्शन जारी रखेंगे। बिहार में JDU 2025 के चुनाव से भी बढ़िया प्रदर्शन करे, इसे सुनिश्चित करना है। बिहार के बाहर भी JDU को मजबूत करना है। जरूरत पड़ी तो बिहार के बाहर भी पार्टी के लिए जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मौजूदा सम्राट सरकार और केंद्र सरकार की भी सराहना की।
9: मौका मिला 2005 से तो बहुत सारा काम हुआ और अभी जो NDA सरकार चल रही है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और केंद्र से भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
1: बैठक में निशांत कुमार को JDU का भविष्य बताया गया। बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो सुनिए क्या बोले।
10: हमारी सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है, इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम सबको मिलकर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है।
1: इस बैठक से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार सरकार से दूर जरूर हुए हैं, मगर पार्टी पर अब भी उनका जबरदस्त कंट्रोल है। शशि भूषण, पटना आज तक।
5: टीएमसी में बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है। बागी गुट के 10 विधायकों की शिकायत के बाद TMC के 3 खाते फ्रीज होने का दावा है, जिस पर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया।
1: पहले पार्टी विधायक टूटे, फिर सांसद बागी हुए, कलह बढ़ी, शिकायत लोकसभा स्पीकर तक पहुंची, लेकिन क्या अब TMC की बगावत वाली जंग पार्टी फंड तक पहुंच गई है? क्योंकि कुछ बागी विधायकों की पुलिस शिकायत के बाद TMC के 3 खाते फ्रीज होने की जानकारी है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर FIR दर्ज करने और खातों की विस्तृत जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का स्रोत संदिग्ध है, जिसकी जांच जरूरी है। विधायकों ने आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम कथित तौर पर अवैध गतिविधियों, कट मनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से जुड़ी हो सकती है।
11: ये कम्प्लेन इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कट मनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंस का पैसा है, ये सब प्रोव होना चाहिए, हम लोग तो प्रोव नहीं कर पाएंगे।
1: इन आरोपों और घटनाक्रम के बीच TMC की ओर से भी खाता फ्रीज होने की बात कही जा रही है। दावा है कि जिन 3 बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है।
12: हमारा जो फंड है वो 1998 से ये पार्टी, ये पूरा इतना सारे जो हमारा वर्कर्स है उसका खून पसीना एक करके,
13: दिस इज आवर टैक्स पेयर्स मनी एंड मिस्टर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, TMC पार्टी मेंबर्स, वेदर यू आर विद अ न्यू पार्टी और वेदर यू आर विद TMC, यू ऑल हैव चीटेड।
1: टीएमसी में टूट से पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। अब पार्टी के खातों में जमा 440 करोड़ के फंड पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: अब आपको राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप सहम जाएंगे, सवाल करेंगे कि अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों की दशा क्या ही होगी।
1: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं, सिहरन पैदा करती हैं ये तस्वीरें। एक बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि इस बच्चे पर इस गाय ने हमला कर दिया है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के गली नंबर 10 की हैं। देखिए, बच्चा गाय से बचने के लिए भागता है, मगर गाय उसे सींग मार रही है। बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है, गाय उस पर हमला जारी रखती है। बच्चा दहाड़े मार कर चिल्लाता है, वो गाय से बचने का बार बार प्रयास कर रहा है। बच्चे की पुकार सुनकर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मगर सिर्फ देखते रहते हैं। फिर ये आदमी हिम्मत दिखाता है, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है। किसी तरह से ये बच्चे को गाय से अलग करता है, मगर ये बच्चे को संभालता है, इसके पहले ही गाय ने दोबारा अटैक कर दिया। बच्चे को लेकर ये भागता है, मगर गाय सींग मारती है और ये गिर पड़ता है। तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं और गाय को यहाँ से भगाते हैं। तस्वीरें 19 जून की बताई जा रही हैं। अब सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में आवारा पशुओं का आतंक कब तक रहेगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
5: देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां दबंग युवकों ने सरेरात दो युवकों की जमकर पिटाई की। दबंगई दिखाते हुए इन लोगों ने सबके सामने इन युवकों पर लाठी डंडों से हमले किए और बेल्ट बरसाए।
1: बीच सड़क पर कुछ दबंग इन दो युवकों को पीट रहे हैं, कभी इन पर बेल्ट बरसाई जा रही है, कभी इनकी पीठ पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन दोनों युवकों को ये दबंग मार डालने पर उतारू हैं। बेरहमी से ये इन दोनों युवकों को पीट रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि बीच सड़क पर ये दबंगई दिखा रहे हैं और कोई इन्हें रोक नहीं रहा। अलबत्ता लोग तमाशबीन बने इन्हें देख रहे हैं, मगर इन युवकों की कोई मदद नहीं कर रहा है। तस्वीरें लखनऊ की है, जहां केजीएमयू के सामने इन दोनों युवकों की पिटाई हो रही है। देखिए, इस नीली टी शर्ट वाले लड़के को किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब पिटाई का ये वीडियो वायरल है, पुलिस जांच कर रही है कि सरेराह गुंडागर्दी करने वाले ये दबंग कौन है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
5: स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है, दोनों देश मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। इधर इसराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। सवाल है कि युद्ध विराम होगा भी या फिर आगे बढ़ेगा यह संग्राम।
1: एक बार फिर इसराइल ने लेबनान को बनाया है निशाना। एक बार फिर इसराइल के हमले से धुआं धुआं हुआ है लेबनान। एक बार फिर शांति समझौते पर मली गई है बारूद। जी हाँ, इसराइल ने पिछले दो दिन में लेबनान में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए हैं, जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली फौज का आरोप है कि हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में उसे ये कार्रवाई करनी पड़ी है और आतंकियों के खिलाफ इस तरह के हमले जारी रहेंगे। खुद नेतन्याहू कई बार इजरायल का रुख साफ कर चुके हैं। इस जिद की वजह से हाल ही में ट्रंप को कई तल्ख बयान भी देने पड़े हैं, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि लेबनान में हिजबुल्ला की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
14: אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו.
1: इसराइल के सैन्य अभियान को देखते हुए ईरान बिफर पड़ा है। ईरान ने शनिवार को ही सीज फायर टूटने के आरोप लगाकर होरमुज बंद करने का ऐलान कर दिया। अब एक तरफ इसराइल ट्रंप के पीस प्लान की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज का हाहाकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान और लेबनान की रणभूमि से हजारों मील दूर स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम पर अंतिम मुहर लगती है या फिर इजराइल की जिद ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फिरती है। आज तक ब्यूरो
5: वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की इस शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया ए ने शानदार जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम कर ली है।
1: फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, श्रीलंका को पीटकर चैंपियन बना हिंदुस्तान। जो सामने आ रहा था पिटकर ही जा रहा था, मैदान का हर कोना वैभव के इन शॉट से गुलजार हो रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में पूरे टूर्नामेंट की कसर निकाल दी। फाइनल से पहले उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं था, लेकिन फाइनल में उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि रनों की बरसात में कई रिकॉर्ड बह गए। वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। लिस्ट एक क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का यह सबसे तेज अर्धशतक है। आखिरकार वैभव शतक बनाने से चूक गए और 29 गेंदों पर 94 बनाकर लौट गए। उन्होंने इस पारी में 8 छक्के और 10 चौके जमाए। वैभव ने प्रियांश के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी 9 ओवर पूरा होने से पहले ही कर दी थी। उनके जाने के बाद भी रनों का सिलसिला चलता रहा। ऋतुराज और तिलक वर्मा की पारियों ने रनों का अंबार लगा दिया। जाते जाते अनुकूल रॉय ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 377 तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। जवाब में पहाड़ से स्कोर को पार करने का दबाव ही श्रीलंका को ले डूबा। 33 रन होते होते उसके दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन टीम इंडिया को चैंपियन बनने से रोकने के लिए वो नाकाफी थी। आज तक ब्यूरो
5: छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, फौरन हो गया हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: चोरी में हो सकता है बड़ा खुलासा। SIT जल्द सौंप सकते हैं शुरुआती रिपोर्ट। कैश के साथ जेवरातों पर किया गया हादसा, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे BJP पर बरसे, कहा जब उन्हें कोई पूछता नहीं था तब हमने दिया था उनका साथ, यह हमें कमजोर करने के साजिश, में मतदाताओं से मांगता हूं माफी। बिहार भरत भूषण मुठभेड़ को लेकर सियासी एनकाउंटर जारी, विपक्ष ने सम्राट सरकार को घेरा, बीजेपी के भी नेताओं ने उठाए सवाल, वीडियो से मचा बवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री ने योग उत्सव मनाया, कहा संतुलित जीवन की कला सिखाता है योग। ट्रंप की बयानबाजी के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बात, JD वेंस और खालिबाफ की अगुवाई में चर्चा, होर्मोस और लेबनान को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की SIT जांच चल रही है। खबर है कि SIT इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट भी जल्द सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
1: क्या चढ़ावा चोरी में राम मंदिर में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अहम लोगों की सीधी भूमिका रही? क्या चढ़ावे की चोरी के लिए मंदिर में लगे CCTV से भी छेड़छाड़ की गई? क्या राम मंदिर में गड़बड़ी का यह मामला सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि SIT जांच के बीच राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यही वजह है कि जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की भी तैयारी कर ली गई है। टिन्नू यादव SIT के रडार पर है। नकदी गिनने और रकम प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी पर SIT शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के बीच आभूषण के गायब होने का दावा भी किया गया है।
2: चांदी ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.5 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक SIT को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए शिलाएं दी थी।
3: रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव उर्फ